0: मैं कोई हार्डकोर वो नहीं हूँ, प्योर मेरे से भी होता है, पर जब तक हम इसको बात में
1: रिवाइव।
0: नहीं लाएंगे, बातचीत में नहीं लाएंगे, हम इसको अनुभव नहीं करेंगे, हम इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम रास्ते से भटक जाएंगे।
1: लेकिन आज से डिस्कस करने से एक चीज ऐसी और एड ऑन हो जाती है, जैसे एक नेगेटिव बचाया, पॉजिटिव एड ऑन किया, कभी ट्रुथनेस एड ऑन किया, तो ऐसी बात आपका जब आप बताते हैं ना मैम, तो सच में कोई ना कोई पॉइंट लाइफ में ऐड हो जाता है। इट्स रियली वेरी थैंकफुल टू यू, पर मेरा थोड़ा सा आवाज खराब हो रहा है, तो सॉरी फॉर
0: नहीं
1: दिस मैम।
0: नहीं ठीक
1: थैंक
0: है।
1: यू मैम,
0: हाँ,
1: बहुत
0: बस
1: अच्छा
0: मुझे
1: लगा।
0: ये है कि ये चीजें हम रोजमर्रा डिस्कस करें
1: जी
0: और प्रैक्टिस करें, तो लाइफ में बहुत कुछ हम चेंज ला सकते
1: जी
0: हैं,
1: मैम,
0: रास्ते
1: जी
0: अपने आप खुलते हैं,
1: जी
0: बहुत
1: मैम, अपने आप
0: हाँ
1: सबसे
0: अपने आप
1: अच्छी
0: खुलते
1: पॉइंट
0: हैं।
1: यही है कि अगर किसी के लिए कुछ भी छोटा सा किया जाता है तो अपने आप झोली में आ जाता है। सबसे मेन पॉइंट आपका यही है। थैंक यू मैम, थैंक यू
0: बिल्कुल,
1: सो मच।
0: ओके, थैंक यू जोस्ना।
1: थैंक यू।
0: एनीबॉडी एल्स?
2: थैंक यू मैम। और आपके एक नए वर्ड पे के माने जाने जो कंपैशन है।
0: हाँ जी, करुणा, उसका हिंदी शब्द
2: जी,
0: है करुणा।
2: एक वर्ड
0: हाँ
2: के बहुत सारे मायने आज आपके जरिए जान दिए।
0: हाँ ये पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं। मैं साथ में ये भी कह रही हूँ, बी अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बींग, बट वही मैंने बोला ना कि चैलेंज को हम किस तरीके से रिजॉल्व कर रहे हैं, चैलेंज को हम लड़ के रिजॉल्व कर रहे हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज में रिजॉल्व कर रहे हैं, नेगेटिव सोच से कर रहे हैं, या हम पॉजिटिव होकर अपनी करुणा पर्सनालिटी से, कंपैशन से उस चैलेंज को रिजॉल्व कर रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस वी हैव टू अंडरस्टैंड। और कोई?
3: नमस्ते मैम,
0: नमस्ते,
3: विजय बरानिया से मैम।
0: हाय।
3: बहुत बहुत अच्छा सेशन रहा आपका, बहुत कुछ सीखने को मिला लीडरशिप के संबंध में। एक्चुअली अभी हम सोचते हैं, और मैं अभी फिर वापस जब लीड से जुड़ा तो मुझे भी ऐसे फील हो रहा था, या मैंने अपने दिमाग से ऐसे सोचा कि भाई मुझे तो हायर किया गया है कि बच्चों को मुझे कंप्यूटर सिखाना है या महिलाओं को मुझे कंप्यूटर सिखाना है। तो इस थॉट प्रोसेस से मैं नहीं कह रहा था अभी तक कि एज ए लीडरशिप, क्योंकि मैं पहले भी संस्था में काम कर चुका हूं तो कुछ तो है लीडरशिप के इनपुट से, लेकिन इस बार मैं उस सोच से नहीं गया। लेकिन आज के आपके सेशन से मुझे लग रहा है कि मैं अगर इस सोच के साथ जाऊं और अपने काम को पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से, और अपने सोल की सुन के कि भाई कहाँ गलती हो रही है, मैंने अपने टास्क को कैसे प्लान नहीं किया, मेरा दिन आज कैसे कैसे कैसे कैसे करना है, और मैं कुछ सिखा रहा हूं तो कितने लोग उससे लाभ होंगे जो कल को जब मेरा ग्रेटफुल करेंगे वो लोग कि हाँ विजय जी तुमने मुझे ये सिखाया। हालांकि मैंने इतने ट्रेनिंग्स किए इस मेरे संकल्प संस्था में, तो लोग जो मेरे साथ यूथ जुड़े हुए थे जिनको मैंने ट्रेनिंग दी, आज कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, तो लोग मुझे जब भी मिलते हैं तो बहुत थैंकफुल कहते हैं मैम। लेकिन कभी इस तरह से जो आपने आज लीडरशिप की जो टेक्निक्स बताई ना मैम, ये मैं आज मतलब मेरा बहुत सारा इम्प्रूव हो गया कि मुझे एक्चुअली लीडर बनना है, तो मुझे अभी मेरे अंदर क्या क्या कमी है वो सारे मुझे ठीक करने हैं मैम। सो आज का सेशन बहुत
0: सो
3: अच्छा रहा मैम।
0: नाइस विजय, अब मैं नेक्स्ट आपको जब मिलूंगी, बहुत जल्दी मिलूंगी, दिसंबर में, आई विल कम टू बारान, आई विल डेफिनेटली मीट यू, मैं आपको बुलाऊंगी, आपसे मुलाकात करूंगी, तो मैं उस लीडर को देखना चाहती हूँ
3: जरूर
0: जिसको
3: मैम,
0: मैंने
3: जरूर
0: 10 साल पहले देखा था, एक छोटा सा बच्चा जो जिसमें पैशन था कुछ करने का, और
3: जी
0: वो
3: मैम,
0: पैशन से इस लेवल तक पहुंच गया है, और आगे वो लीडर कैसे, देखिए मोती जी हजारों यूथ को एम्पावर करके गए हैं, है ना, पर
3: जी
0: हमें हमने तो उनका उनके जैसा लीडर बनना है। दैट्स व्हाई
3: उनके जैसा
0: मैंने तो
3: बनना।
0: आपको सुप्रीम चीज का एग्जाम्पल दिया कि हमने भगवान को देखा नहीं है, भगवान के रास्ते पे चल रहे हैं, कल को हम भगवान, इंसान और दुनिया अगर एक हो जाएगी तो बुराई तो अपने आप ही निकल जाएगी,
3: मेरे
0: है ना।
3: साथ रेबा है मैम।
0: नमस्ते, नमस्ते रेबा।
4: मैं आपसे मिली थी आज से कम 15 साल पहले, जब फर्स्ट में रेड इंडिया शुरू हुई थी, चारू दी के साथ आई थी कंप्यूटर
0: हाँ
4: लेने।
0: जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ
4: तो
0: जी,
4: मैं अपने आप को बहुत बड़ा लीडरशिप मानती हूँ, क्योंकि चारू दीदी की तरह आज बोल रहे थे आप। मैंने विजय से कहा है कि उनको देख के मैं एकदम से इमोशनल हो गई मैं, कि आज चारों दिखी शक्ल आ गई मेरे सामने, है ना। तो
0: मुझे
4: मैं
0: बारह में सब लोग कहते हैं, मैं जहां भी जाती हूँ मुझे कहते हैं आपको देख के हमें चारू जी की बहुत याद आती है।
4: हाँ, तो क्या है कि आज मैंने लीडरशिप तो मैं संस्था छोड़ने के बाद भी मैं लीडरशिप की तरह काम कर रही हूँ। मुझे मुझे कंप्यूटर सीखा था तो मैं कहती ऐसा नहीं ऐसा, तो गुरु मेरा, लेकिन मैं कहती ऐसे। लेकिन आज यदि आपने बताया ना कि वास्तविक एक लीडरशिप में किस तरीके के गुण होने चाहिए, वो वास्तविकता है कि हमारे दिन का प्लानिंग कैसे हो और किस हिसाब से हमें तीनों चीज को मिला के काम करें, ये बहुत बहुत ही जरूरी है, तभी हम कहीं ना कहीं अपनी छवि बना पाएंगे। बहुत बड़ी बात है ये।
0: हाँ, मैं आप सबको एक और भी रिक्वेस्ट करूंगी। देखो मैं जो बोलती हूँ ना, मैं एक्सटेम्पोर बोल जाती हूँ, कहीं से थोड़े बहुत नोट्स लिख लिया या कुछ। आप प्लीज अपनी डायरी बनाइए जरूर, चार पांच लाइंस जो आप इस सेशन से लेकर जा रहे हैं ना, उसको लिख डालिए, और वो डायरी आपका एक मिरर बन जाएगी। आप कभी भी 2 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद आप उनको उसको पढ़ेंगे ना, और किसी को पढ़ने के लिए देंगे, शायद बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा।
3: राइट मैम,
4: हाँ,
0: आप जरूर लिखिए। ठीक है
2: नमस्ते।
0: मित्र। हाँ जी,
2: मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, जैसे विजय सर ने बोला ना अभी कि जैसे हमें कोई दूसरों को सिखाकर खुशी मिलती है बहुत, तो मैं उसका एक गीता जागता उदाहरण हूँ कि जब मैं भी ईट से जुड़ा था, तो फर्स्ट टाइम संकल्प के थ्रू जुड़ा था, तो उस टाइम मुझे आईटी की क्षेत्र में कुछ नहीं आता था, तो मैंने भी विजय सर से बहुत कुछ सीखा था, और शुरुआत विजय सर ने की थी, और कंप्लीट जो मुझे किया है आईटी के क्षेत्र में या ट्रेनिंग्स में या जो भी आप लीडरशिप की है लाइफ स्किल की ट्रेनिंग है, तो वो पूरा कुछ रीड ने पूरा कर दिया।
0: चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। और तुम तो लीडर हो ही अपने में, बहुत कुछ सिखा रहे हो लोगों को। बस ये थोड़े पर्सनालिटी ट्रेट्स हम अपने में अगर कॉन्शियसली इनग्रेन कर लें तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मैं भी कोशिश
2: जी
0: कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने बोल रही हूँ तो मेरे में सब ट्रेट्स हैं, नहीं। एवरी डे इज अ रिमाइंडर फॉर मी टू पॉलिश माई सेल्फ, टू हैव अ गुड डे फॉर मी, टू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स। वो क्या है कि जहन में बिठाना बहुत जरूरी है। जब हमारे जहन में बैठ जाता है ना, तो हमारे एक्शन हमेशा हमेशा हमारा दिल उसको कंट्रोल करता है। फिर तो आप सब लोग डायरी बनाएंगे, ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे, जिससे आपको फायदा होगा, आप रेफर कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं और दूसरों को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, विद दिस आई कंक्लूड द सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। थोड़ा हैवी टॉपिक था पर मुझे अच्छा लगा आप सब लोगों से शेयर करने के बाद, और हैवी बोलने में था, मैंने बहुत सारे नए वर्ड्स यूज करे थे यहाँ पे, बट बहुत सिंपल है अपनी लाइफ में इसको उतारना। ठीक है, और कोशिश से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट टिल नेक्स्ट वीक, हम फिर मिलेंगे। ठीक है,
3: थैंक यू मैम,
0: थैंक यू,
2: थैंक यू मैम।
4: थैंक यू मैम।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: I welcome everybody. This is a session on life skills. हमने पहले भी काफी सेशंस लाइफ स्किल्स पे करे हुए हैं, लेकिन जो अभी का हमारा कार्यक्रम चल रहा है, एक तो एक्सेंचर का जो चल रहा है स्किल्स टू सक्सीड, उसके अंतर्गत भी और इन जनरल हमारे सभी सेंटर्स में हम लाइफ स्किल के सेशंस लगातार करते आ रहे हैं. तो ये जो सेशन है ये करीबन 10 भाग में बांटा जाएगा, ये जो पूरा सीरीज है. तो आज हमारा फर्स्ट सेशन है. वी विल ट्राई टू मेक इट मोर इंटरैक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव, बिकॉज मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें जहाँ पे मैं सेशन दे सकूँ. इट्स जस्ट दैट कि हम लोग बातचीत के जरिए कुछ ऐसी की स्किल्स को समझेंगे जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वो पर्सनल स्किल्स हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, उसमें वो काम आती हैं. तो शुरुआत करते हैं लाइफ स्किल्स से. सो व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव लाइफ स्किल्स? लाइफ स्किल्स होती क्या है, कोई बताना चाहेगा हमें? लाइफ स्किल्स क्या होते हैं, जो ये शब्द हम बार बार इस्तेमाल करते हैं कि लाइफ स्किल्स, कोई बताना चाहेगा इसके बारे में? हम कोशिश करते हैं समझने की एक साथ. कोई भी, कोई सही या गलत आंसर नहीं रहेगा.
1: गुड आफ्टरनून मैम, अकबर फ्रॉम रामपुर.
0: जी अकबर जी, मुझे पता था आप ही जवाब देंगे सबसे पहले.
1: नो, एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट
0: आई
1: सेशन
0: ऑल्सो
1: है
0: नो
1: लाइफ
0: दैट.
1: मेरा ये फर्स्ट सेशन है लाइफ स्किल्स पे. मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली है इस पे, लेकिन मुझे इस नाम से थोड़ा सा लगता है कि लाइफ स्किल्स वो स्किल्स हैं जो हम अपने डेली लाइफ में, जो डेली हमारा रूटीन रहता है, हम लोगों से मिलते हैं और जो भी हम इंटरेक्शन रहता है, कल्चरल हैबिट्स हैं हमारी, तो उसमें जो काम आने वाले स्किल्स हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना, सोसाइटी से मिलना, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उन तक बात पहुंचाना, तो उसके जो हमारे काम आने वाले स्किल्स हैं, हम उसको लाइफ स्किल्स शायद बोलते हैं.
0: जी, बिल्कुल, बहुत बहुत हद तक हम इसी को कहते हैं. कोई और ऐड करना चाहेगा? अकबर ने जो कहा, थैंक यू अकबर. किसी
1: वेलकम मैम.
0: और ने अनम्यूट किया था अभी. तना
2: हेलो. हाँ जी मैम, मैं आमिर खान बोल रहा हूँ.
0: जी जान बताएं.
2: मैम जैसे कि लाइफ स्किल्स को मैं भी पहली बार सेशन ले रहा हूँ, तो इसमें कि मेरा एडिसिक जैसे कि लाइफ के बारे में कुछ, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज है, किस तरीके से सामने वाले से बात करनी है हमें, किस तरीके से अपने आपको मेंटेन करना है, तो उन चीजों के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि मेरा पहला सेशन है और इतनी ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी इस चीज के बारे में.
0: जी, तो बिल्कुल सही आपने कहा. हम इसको बेसिक शब्दों में बांट सकते हैं. लाइफ मतलब जिंदगी, और स्किल मतलब वो कला जो जिंदगी जीने में या जिंदगी को आसानी से जीने में हमें हेल्प कर सके. तो अगर हम बहुत ही सिंपल वे में इसको समझें, तो जिंदगी जीने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है, कौन कौन सी चीजें सीखने की जरूरत होती है. तो मोटे मोटे भाग में लाइफ स्किल्स को दो मेजर एरियाज में बांटा गया है. एक है हार्ड लाइफ स्किल्स, खाना खाना, चलना, बोलना, ये जो हम बचपन में सीख लेते हैं, जो बचपन में हम जैसे माइलस्टोन कहते हैं. अगर बच्चे का बर्थ होता है तो एक बर्थ चार्ट बनता है, उसका माइलस्टोन होता है कि अच्छा, अब उसने इतनी उम्र में अपने आप खाना खाना सीख लिया है, इतनी उम्र में वो खुद से जाके अपने काम कर सकता है, चलना सीखा है. तो ये जो बेसिक लाइफ स्किल्स होती हैं, ये हम शुरुआत में सीख लेते हैं. और किन चीजों की जरूरत होती है, हम खाना बना सकते हैं कि नहीं बना सकते. मान लीजिए हम कहीं अकेले हैं, हमें कोई खाना बना के देने वाला नहीं है, तो आज की जिंदगी में तो ये भी, अभी जैसे लॉकडाउन हो गया था, कुछ ऐसे लोग थे जो बिल्कुल अलग रह गए थे. मेरी मेरी फैमिली में भी कुछ ऐसे मेल थे. फीमेल्स को तो जनरली हम लोग सिखा देते हैं, बट क्या हम अपने मेल जनरेशन को भी सिखा रहे हैं खाना बनाना कि नहीं? ये है हार्ड लाइफ स्किल के मतलब बेसिक चीजें. क्या हमें बेसिक क्या कहते हैं, तार लगाना आता है, बल्ब चेंज करना आता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें हेल्प करती हैं, किसी और पे हम निर्भर ना रह सके. बेसिक जो हमारी चीजें हैं हम उन्हें पूरा कर सकें. तो ये हो गई हार्ड लाइफ स्किल. उसके अलावा होती है सॉफ्ट लाइफ स्किल्स, जिनके बारे में हम आज बात करेंगे. ये सॉफ्ट जो स्किल्स होती हैं, इनको कुछ भागों में बांटा गया है, इनके बारे में हम जानेंगे. और फिर हर एक सेशन में एक लाइफ स्किल के ऊपर बात करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर हम खुद से भी पढ़ें. हमारी लाइब्रेरी में अगर कुछ किताबें हैं उस पर्टिकुलर लाइफ स्किल के ऊपर जिसमें हम आज के दिन पे बात करेंगे, तो अगले सेशन में आने से पहले हम कुछ ना कुछ उस पर नया पढ़ के आएंगे, और जो भी चाहें वो लोग शेयर कर सकते हैं. तो लाइफ स्किल्स के बारे में हम आज बात करेंगे. तो अभी हमने बात करी कि लाइफ स्किल्स होती क्या है, अभी उसी का हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि हमारे जो हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने हमें हेल्प किया लाइफ स्किल्स समझने के लिए. तो जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि लाइफ स्किल्स आर एबिलिटीज टू अडैप्ट पॉजिटिव बिहेवियर दैट अनेबल्स ह्यूमन बींग्स टू डेवलप डील इफेक्टिवली विद डिमांड्स ऑफ द चेंजिंग लाइफ. दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो टर्म्ड एज साइकोसोशल कॉम्पिटेंसी, यानी कि जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हम एक पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप कर सकें, और जो चीजें बदलती जा रही हैं, एनवायरमेंट जो रोज बदलता जा रहा है उसमें एक अडैप्टिव बिहेवियर यानी कि एक रेजिलियंट, जो चीजें बदलती जाती हैं उसके साथ हम बैठ न जाएं, अपने आप को चेंज करते रहें, लगातार चेंज करते रहें, ऐसी स्किल्स हमें अपने में डेवलप करनी है जो हमारे साथ फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, हमारे अंदर लीडरशिप लाएं, एक ऐसा सेल्फ इनिशिएटिव लाने का भाव अंदर आए, हम प्रोडक्टिविटी की तरफ काम करते रहें, चाहे वो पर्सनल प्रोडक्टिविटी हो या प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी हो. और सबसे ज्यादा जरूरी है कि पॉजिटिव सोशल स्किल्स डेवलप हो सके, क्योंकि हम अकेले तो कहीं भी कुछ काम नहीं करते, हम जहां भी जाते हैं हमें आसपास लोगों से बातचीत करनी होती है, उनकी बातों को समझना होता है. तो हम कैसे इसको पॉजिटिवली अपने अंदर डेवलप कर सकें कि हमें बेहतर तरीके से अपनी कॉम्पिटेंसीज को बढ़ा सके. बहुत ही सरल शब्दों में ये जो डेफिनेशन है इसको बताया गया है. इसकी आप अगर नेट पे जाएंगे तो कई डेफिनेशंस हैं, तो जिस तरह मुझे लगता है कि जो सबसे सिंपल डेफिनेशन थी वो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट करी, शेयर करी है आप लोगों से. बट अगर आप चाहें, अगर आपको हिंदी में कोई डेफिनेशन मिलती है तो जरूर आप अपनी स्लाइड्स में इसे चेंज कर सकते हैं जब आप अपने बेनिफिशरीज के साथ इस पर चर्चा करेंगे. हमने बात करी लाइफ स्किल्स होती हैं जो हमारे अंदर एक पॉजिटिव बिहेवियर और अडैप्टिव बिहेवियर और रेजिलियंट बिहेवियर लेके आता है. पर हमें ये क्यों चाहिए? क्योंकि हमें हर वक्त जो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है, हर वक्त हम किसी ना किसी सिचुएशन में रहते हैं, अगेन चाहे वो पर्सनल सिचुएशन है, घर की कोई सिचुएशन है, या प्रोफेशनल ऑफिस की कोई सिचुएशन है, कोई नया प्रोजेक्ट आ गया है, उसमें पहले से हमारे पास 3 काम थे, वो प्रोजेक्ट में एक दो काम और आ गए, हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये कैसे करेंगे. तो अब इन सब चीजों को सॉल्व करने की जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो ये लाइफ स्किल्स हमें हेल्प करती हैं, जो हमें मतलब ये जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर लाने की कोशिश करती है लाइफ स्किल्स की, जो भी हो रहा है उसके लिए हम खुद कार्य करें, दूसरे को ब्लेम ना करें या सिचुएशन को ब्लेम ना करें. हम जब दूसरों से बात करें तो एक पॉजिटिव वे में बात करें, ग्रुप ग्रुप की कोलैबोरेटिव वे में बात करें, और कॉपरेशन में बात करें. तो ये सब चीजें हमें डेवलप करने में लाइफ स्किल्स हेल्प करती हैं, इसलिए हमें ये लाइफ स्किल्स जानना जरूरी है. अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है तो हम उसे ले सकते हैं, अदरवाइज हम अब आगे पढ़ेंगे कि लाइफ स्किल्स होती क्या, कौन कौन सी लाइफ स्किल्स को किन भागों में डिवाइड किया गया है. जैसे कि मैंने बताया कि लाइफ स्किल्स को कई कई डेफिनेशंस दी गई हैं, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये काफी सदियों से चला आ रहा कॉन्सेप्ट है. तो इनको हमने कई अगर आप चाहेंगे, अगर आप अगेन कुछ किताबें पढ़ेंगे या कुछ रिसर्च करेंगे तो कई बहुत अलग अलग डेफिनेशंस आपको मिलेंगी. लेकिन WHO ने 1999 में ऐसा एरियाज आइडेंटिफाई किए थे जो लाइफ स्किल्स को उन्होंने मेजर जो लाइफ स्किल्स आइडेंटिफाइड थी उनको इन 6 के एरियाज में बांट दिया था. तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको लेके चल सकते हैं, कुछ शब्द हमें डिफिकल्ट लगे तो हम उसका आसान वाला शब्द भी ले सकते हैं. तो फर्स्ट इज कम्युनिकेशन या फिर इंटरपर्सनल स्किल. दिस ब्रॉडली डिस्क्राइब्स द स्किल्स नीडेड टू गेट ऑन एंड वर्क विद अदर पीपल, पर्टिकुलरली टू ट्रांसफर एंड रिसीव मैसेज इधर इन राइटिंग और वर्बली. कहने का मतलब ये है इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल या इंटरपर्सनल स्किल. कम्युनिकेट हम कब करते हैं? जब हम किसी दूसरे इंसान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हम वर्बली कर रहे हैं, नॉन वर्बली कर रहे हैं, या फिर हम लिखित में कर रहे हैं. जब हम वर्बली करते हैं तो हम डेफिनेटली किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उस भाषा के प्रयोग में किन किन चीजों का ध्यान हमें रखना चाहिए उस पर हम बात करेंगे. अगर हम नॉन वर्बली कर रहे हैं तो कुछ ऐसे कौन सी बॉडी लैंग्वेज होती है, जैसे कि अभी हमने बात किया था, कभी भी किसी ने बॉडी लैंग्वेज की बात करी तो ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो हमें पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज डेवलप करने में हेल्प करते हैं, हम उन पे भी चर्चा करते हैं। और तीसरा तरीका है किसी से कम्युनिकेट करने का, रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन आज की टाइम में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रह गई है प्रोफेशनली। पर्सनली तो हम ये व्हाट्सएप और इन सब चीजों पे करते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम प्रोफेशनली कम्युनिकेट कर रहे हैं तब किन चीजों का ध्यान हमें रखना है। तो ये चीजों को हम एक्वायर कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल वीक है। इसके इम्पोर्टेंस क्या है वो हम आगे देखेंगे स्लाइड में, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। बोलना तो हम सीख जाते हैं बचपन में, भाषा तो हम सीख जाते हैं, बट भाषा का सही प्रयोग और जो हम कहना चाह रहे हैं सामने वाले को सही तरीके से समझ में आए, जो जो मकसद है हमारा बात करने का वो दूसरे तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। और किसी और को हर्ट ना करे, किसी की फीलिंग को या किसी के इमोशन को या किसी के बिलीफ को हर्ट ना करे। तो इन सब चीजों को इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर डाला जाता है। इसके ऊपर कई किताबें लिखी गई हैं। ये सबसे मुश्किल और यही एक स्किल है जो सबसे आसानी से भी एक्वायर हो सकती है। दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल है डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमने बात करी कि एनवायरनमेंट जो है हमारा लगातार चेंज हो रहा है। अब लगातार चेंज होने वाले एनवायरनमेंट में तो कुछ ना कुछ हर वक्त हमें लगेगा कि प्रॉब्लम ही चल रही है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो लाइफ, ये डिस्क्राइब करती है कि प्रॉब्लम को पहले समझें, उसे तोड़ें, उसे भागों में तोड़ें और उसका सॉल्यूशन या तो खुद या तो दूसरों की मदद से निकालें और उस पे हम एक्शन लें। तो ये भी एक कला होती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे हमारे पास गीता मैम का। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के हम अंदर तक जाते हैं कि कोई ऐसा इश्यू क्यों आया। वो इश्यू आने के बाद हम उस पे सोचते हैं कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और फिर हम सबको साथ में लेके उस पे एक एक्शन प्लान बनाते हैं और वो एक्शन प्लान पे हम अपना एक्शन लेते हैं। तो ये एक कला है जो कि जब आप एक लीडरशिप रोल में आते हैं, जो कि आप काफी लोग हैं जो अपने अपने सेंटर्स में लीडरशिप रोल निभा रहे हैं या निभाना चाहते हैं, तो ये कला सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप 10 लोग से ज्यादा लोगों के आसपास आपके लोग काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, चाहे वो आपके एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो। कोई भी ऐसी संस्था नहीं है या कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो प्रॉब्लम्स से अपने आप को सेफ करके चल सकता है हमेशा। तो ये भी हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे के आने वाले सेशंस में। क्रिएटिव थिंकिंग। अब क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो नए आइडियाज लेके आने में हेल्प करती है। ये हमारे अंदर होता है, हर हर इंसान के अंदर होता है, क्रिएटिविटी सभी के अंदर होती है, बट हम इसे और कैसे निखार सकते हैं ये भी एक कला है। सो क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जो न्यू आइडियाज हैं। अभी हम जो सुबह एक कॉल कर रहे थे, अब हमारे साउथ के सेंटर्स में, तो हम बात कर रहे थे कि जो रोज बच्चे आ रहे हैं सेंटर पे, ठीक है किताबें पढ़ के चले गए, ठीक है अब कंप्यूटर्स हो गए, ये एक रेगुलर रोजमर्रा की चीजें चल रही हैं। बट व्हाट इज द क्रिएटिविटी, व्हाट न्यू थिंग वी आर ब्रिंगिंग इन। सो अगेन दिस इज अ लाइफ स्किल दैट यू नो वी ऑल शुड हैव, सो दैट हमारा जो काम है वो कभी भी रिडंडेंट नहीं हो, हम न्यू इनोवेटिव आइडियाज लेके आते रहें और हर वक्त कुछ ऐसा नया करें कि जो हमारी ऑडियंसेस हैं, यानी कि जो हमारे बेनिफिशरीज हैं, उनको भी उन न्यू आइडियाज से या न्यू सर्विसेज से फायदा हो। बट अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स। कहीं भी आप काम के लिए जाते हैं बाहर या कुछ भी करते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑन इनोवेटिंग योर सेल्फ सो दैट कि आप एक जगह पे स्थिर ना रह जाए। वो कहते हैं कि खड़ा पानी जो होता है उसमें गंद जल्दी मतलब लग जाता है, गंदगी जल्दी इकट्ठी हो जाती है, लेकिन पानी अगर बेहतर रहेगा तो उसमें कभी भी गंदगी इकट्ठी नहीं होगी। तो हमें हमेशा अपने आप को एक बहते हुए पानी की तरह, कीप मूविंग अहेड, वॉट एवर वी आर थिंकिंग, जो भी हम सोच रहे हैं उसमें नयापन लेके आए। अगली लाइफ स्किल्स है सेल्फ अवेयरनेस या फिर एम्पथी। हम अपने आप को समझें, अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस लेके आए और हम ये समझें कि दूसरे कैसा सोच रहे हैं। एम्पैथी बहुत डीप मीनिंग होता है, इसके बारे में हम प्रॉपर एक पूरा सेशन रखेंगे, बट ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। ये काफी हेल्प करता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में, कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं वो क्यों होती हैं। जब एब्सेंस ऑफ एम्पैथी होता है, एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस अबाउट सेल्फ उसके बाद कहते हैं कि असर्टिवनेस, मतलब आप बात कह रहे हैं तो उसमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है अपनी बात को सामने वाले के यहाँ रखने के लिए। असर्टिवनेस का मतलब है उन अपनी बात को कहने का, रखने का एक तरीका होता है जिसमें कि आप अपने किन शब्दों का इस्तेमाल करें कि आप अपनी बात सामने रखें भी और आपको गुस्सा या आउट ऑफ कंट्रोल होने की जरूरत भी ना पड़े और सामने वाले को आपकी बात समझ भी आ जाए। क्योंकि जब हम कोई बात अपने सामने वाले के यहाँ रख रहे हैं, उसे नहीं समझ में आ रहा, हम अपनी आवाज तेज करते हैं, वो कॉन्फ्रंटेशन होता है, प्रोवोकेशन होता है, उन सब चीजों की जरूरत नहीं है। स्पेशली कहीं हद तक पर्सनल, जब हम आपस में बात करते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ है या हम अपने बच्चे से भी बात कर रहे हैं या भाई बहनों से भी बात कर रहे हैं या अपने सुपीरियर से बात कर रहे हैं या अपने सबॉर्डिनेट से बात कर रहे हैं, तो एजर्टिवनेस मतलब बात अगर आपको लगता है आपकी बात सही है तो उन्हें किन शब्दों में लेके आए। इट्स पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन ओनली, बट देन इट इज अ स्टेप अहेड, ये एक स्टेप अहेड है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल आज के दिन, आज के टाइम में है, इज रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है कि जो चीजें हमारे हमें सेटबैक्स लेके आ रही हैं या जो हमारे थ्रेड्स हैं के ऊपर कोपिंग अप, मतलब उनको पहले तो समझना कि हाँ ये ऐसा है, दूसरा उसको उसको अपने अंदर लेके आना, ठीक है अब इस सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकलेंगे और कैसे हम आगे ग्रो करेंगे, तो दैट इज अ रेजिलियंस एज अ की लाइफ स्किल। तो ये 6 लाइफ स्किल्स हमने आइडेंटिफाई करे हैं, कोई कुछ इस बारे में कहना चाहेगा, किसी का कोई एग्जाम्पल है तो वो शेयर कर सके हैं, किसी भी 6 इनमें से कोई भी 6 में से उठा के हम किसी चीज पे भी बात कर सकते हैं। इफ समबडी वॉन्ट्स टू एड, मैंने पहले भी कहा था आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, वी आर ऑल लर्निंग अबाउट लाइफ स्किल्स टुगेदर, तो आपके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो अगर इनमें से कोई भी आप उसमें एग्जाम्पल देना चाहते हैं, कम्युनिकेशन में, डिसीजन मेकिंग में, क्रिएटिव थिंकिंग में, किस तरह से आपको लगता है ये लाइफ स्किल हेल्प करती है या रेजिलियंस में। जो हमने 6 लाइफ स्किल्स देखी हैं उनको हम अगर चाहें तो इनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो लाइफ स्किल्स हैं ये सोशल स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स तो हम कहते ही हैं इनको, पीपल स्किल भी कहते हैं, पर्सनल स्किल्स भी कहते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी कह सकते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स भी कह सकते हैं और इंट्रा पर्सनल स्किल्स भी कह सकते हैं। सबको देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप कहीं फर्दर रीडिंग करते हैं या कुछ और किताबें हैं आपकी लाइब्रेरीज में पढ़ी इस पर्टिकुलर टॉपिक्स, और जो हमने पहले देखे थे ये वाले, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ये कहीं ना कहीं इन बॉक्सेस में हमें फिट करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अच्छा डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसमें हेल्प करेगी, इंटरनल स्किल्स में हेल्प करेगी, सोशल स्किल्स में हेल्प करेगी, पीपल स्किल्स में हेल्प करेगी। अगर हम रिलियंट हैं तो अगेन इंट्रा इंटर पर्सनल करेगी, हेल्प करेगी, तो ये कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। तो ये शब्दों में कंफ्यूज ना हो कि लाइफ स्किल माध्यम से हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। बट लाइफ स्किल्स सीखने से पहले या अपने अंदर लाने से पहले ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें अपने दिमाग को उसके यू नो वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि हाँ हमें अगर लाइफ स्किल एक्वायर करना है तो उसमें की इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए। तो कुछ चीजें जो मुझे लगती हैं मैंने यहाँ लिखी हैं, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो प्लीज ऐड करिएगा। अगर लाइफ स्किल हमें सीखनी है तो पहले तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं, वो जो कांट में से टी है उसे हमें काट के बाहर फेंकना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं, हम अच्छी कम्युनिकेशन स्किल एक्वायर कर सकते हैं। इसमें भाषा का नहीं मायने है, हिंदी इंग्लिश तेलुगु तमिल कोई भाषा का मायने उतना नहीं है, मायने है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर भाषा में बहुत अच्छा बोल सकते हैं और कुछ जिनको भाषा तो अच्छी आती है लेकिन जब वो बोलते हैं तो मन नहीं करता है उनको सुनने का। सो कम्युनिकेशन स्किल इज अ स्किल व्हिच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लैंग्वेज बट द वे यू कम्युनिकेट। सो इसी तरीके से हमें आई कांट डू इट में से टी निकाल के पहले तो फेंक देना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा। हु एम आई, इस लाइफ स्किल्स को एक्वायर करने के लिए करने से पहले हमें अपने आप से जरूरी है, पॉजिटिव सेल्फ इमेज होनी बहुत जरूरी है. ये हमें मानना बहुत जरूरी है कि मैं अलग हूं, मैं एक भीड़ का पार्ट नहीं हूं. कोई बात नहीं, ठीक है, मैं ऐसा दिखता हूं या मैं ऐसी दिखती हूं, मैं ऐसा बोलता हूं, मैं ऐसी बोलती हूं, मैं ये पहनता हूं, ये पहनती हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मैं अलग हूं लेकिन मुझे अपने आप से प्यार है. अगर आप खुद से प्यार कर भी, यू विल बी बेटर एबल टू डिवेलप योर स्किल्स कि दूसरे भी आपको एक्सेप्ट करें. क्योंकि लाइफ स्किल्स का मतलब ही यही है कि आप जब लोगों के अंदर हैं तो किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि लोग आपकी बात को समझें भी, अडाप्ट भी करें आपकी आपके जो आपके जो भाव हैं या जो आपके थॉट्स हैं, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहे, एक कोई झगड़े का या लड़ाई का एनवायरनमेंट नहीं रहे. ये हमें प्रोफेशनल स्किल्स में बहुत हेल्प करती हैं आगे बढ़ने के लिए या अपना जॉब रिटेन करके रखने के लिए. हमें ना कहना भी आना चाहिए लेकिन ना कहने का भी तरीका होता है. तो जरूरी नहीं कि हर जगह आप हाँ ही कहें. अगर आपके आपकी कोई आगे कोई ऐसी सिचुएशन आई है जो आप नहीं कर सके, टी आपने हटा तो दिया, लेकिन ये नहीं है कि हर वक्त हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ. आपको ये एनालाइज करना है कि करंट सिचुएशन में कहाँ पे ना कहना ज्यादा जरूरी है. आपको अपनी राइट्स एज ए इंडिविजुअल या एज ए एम्प्लॉय चाहिए, और आपको राइट्स के साथ साथ ज्यादा जरूरी है कि ड्यूटीज भी पता होना चाहिए. जब आप एक वर्क एनवायरनमेंट में जाएंगे तो आपकी ये लाइफ स्किल आपको हेल्प करेगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी स्पेसिफिक ड्यूटीज क्या है. मेरे वर्क एनवायरनमेंट में चैलेंजेस आते रहेंगे, हमें उनको फेस करना है और ये स्किल्स डेवलप करनी है कि हम ये चैलेंजेस को फेस कर सके. अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं. इसके लिए आपको बस एक पेन या पेंसिल चाहिए होगा और पेपर. जो हमने बात करी है पिछली स्लाइड में कि फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड हु वी आर, और अपने आप से अपने आप में जो पॉजिटिव इमेज है वो लेके आना बहुत जरूरी है. तो ये दो मैंने सेंटेंसेस स्टार्ट करे हैं लेकिन फिल आपको करने हैं. आपके पास ऑप्शन है, आप ऑप्शन वन ले सकते हैं या ऑप्शन टू ले सकते हैं. बट मैं किसी को भी रैंडमली पिक कर लूंगी एंड आई विल आस्क कि उन्होंने ऑप्शन वन लिया है या ऑप्शन टू लिया है और इस सेंटेंस को कैसे पूरा किया है. ये सेंटेंस इंग्लिश में लिखे हुए हैं, मैं आपको हिंदी में इसके मतलब बता देती हूँ. पहला ऑप्शन है आई लाइक हु आई एम बिकॉज, मैं अपने आप को अच्छा लगता हूँ, मैं अपने आप को अच्छी लगती हूँ क्योंकि. यहां तक लिखा हुआ है, आगे आपने भरना है. ऐसी कौन सी चीज है आपके अंदर जो आपको अच्छी लगती है खुद में, वो आपको यहाँ पे लिख के पूरा करना है. दूसरा ऑप्शन है आई फील हैप्पी व्हेन, आगे आपको पूरा करना है. मैं खुश होता हूँ या मैं खुश होती हूँ जब, जब के आगे आपको पूरा करना है. तो देन आई विल आस्क रैंडमली एनीबडी. सो आई रिक्वेस्ट, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है हिंदी या इंग्लिश समझने में, बिकॉज साउथ से भी लोग हैं, so I can repeat myself in whatever language you want. But after 5 minutes, I will be randomly picking up the participants. Okay, shall we start sharing our feelings? कोई volunteer करना चाहेगा?
3: Good afternoon, ma'am. Ma'am, आविता कलकर सेंटर से. Hello, ma'am.
0: जी बताएं, आपकी आवाज एक
3: जी. मैं जब बहुत खुश होती हूँ, जब मुझे लगता है कि मेरी मेहनत कामयाब हो रही है और उसको सराहा जा रहा है, और तब मैं जब बहुत खुश होती हूँ, जब मेरी मेहनत कामयाब होती है और जिस मकसद के लिए मैं मेहनत करती हूँ वो मकसद पूरा होता है, तब मैं बहुत खुश होती हूँ.
0: जब आपकी मेहनत कामयाब होती है तब आप खुश होते हैं.
3: जी मैम.
0: अच्छा, ठीक है, थैंक यू. और कोई बताना चाहे?
4: मैं स्पीक मैम, सीमा बात.
0: हाँ जी सीमा जी.
4: I have written, I like who I am because I give value to relationship, whether it is my professional relations or my personal, both. And I feel happy when I complete my target. Again, वो मेरे घर की कोई चीजों के हो या मेरे काम से related कुछ भी हो, जब मेरी चीजें पूरी हो जाती है, I feel so relaxed and I feel so happy for that.
0: तो सीमा जी आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी लाइफ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आप इनमें यूज करते हैं जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है यू नो मेक यू स्ट्रॉन्गर, मेक यू हैप्पी, मेक मेक्स हेल्प्स यू मेक बीइंग हैप्पी और यू नो लाइक योरसेल्फ?
4: हेलो, कैन यू हियर मी?
0: नाउ वी कैन हियर यू.
4: हेलो, एम आई ऑडिबल?
0: हाँ जी, आप ऑडिबल हैं.
4: हेलो, थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है मैम इधर थोड़ा.
0: ओके, नो प्रॉब्लम.
4: आई यूज माय प्रेजेंस ऑफ माइंड.
0: प्रेजेंस ऑफ माइंड, ओके ओके. वहां नेटवर्क इश्यू आ रहा है, वी मूव ऑन टू समबडी एल्स. कोई और वॉलंटियर करना चाहेगा इन दोनों ऑप्शंस में से? इसने क्या लिखा है?
5: मैम शैलजा हियर. मैम
0: जी, शैलजा मैम.
5: Ma'am, I feel very happy when I'm really with a small kids below 5 years to listen to their beautiful talk, that baby talk or whatever it is. And I feel very happy when I can do something for somebody. It could be a small help or could be a small advice, whatever it is.
0: What kind of life skill do you think you are using? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको help? Positive thinking.
5: I didn't get you, ma'am.
0: आप ऐसी कौन सी लाइफ स्किल यूज करते हैं? आपको क्या लगता है कि किस तरह की ऐसी एक एसेंस है आपके अंदर जो ये चीज आपको हैप्पी करती है?
5: आई थिंक इट इज समथिंग इमोशनल मैम.
0: इट्स इमोशनल, ओके, वेरी गुड, थैंक यू.
5: गुड आफ्टरनून मैम.
4: दैट कैन बी जॉय ऑफ गिविंग मैम.
0: जॉय ऑफ गिविंग,
5: वेरी गुड,
0: यस यस.
6: गुड आफ्टरनून मैम.
0: गुड आफ्टरनून जी.
6: इट्स दिव्या.
0: हाँ जी दिव्या.
6: I like who I am because I have some different abilities. Like I can easily connect with people.
0: Very good, very good. Interpersonal skill है जो हमने सबसे पहली skill पढ़ी थी. आपको ये लगता है कि वो आपको मदद कर रही है इन सब इसको आपको positive effect देने में?
6: Yes, ma'am. Because whenever I talk with, I always use positive behavior, even politeness.
0: Okay.
6: Yes, ma'am.
0: All right. Thank you, Divya.
7: Good afternoon, ma'am. Yes, Margaret. Ma'am. Ma'am, I feel happy when I'm teaching something to others, like a social people, student, and a center beneficiary. So the thing is, main thing is happy is teaching, ma'am. It includes a social skill, interpersonal, and my personal skill, ma'am.
0: So aap khush hote hain? You are happy. Ma'am. मार्गरेट ने कहा कि वो खुश तब होती हैं जब वो किसी को कुछ पढ़ाती हैं, जब वो एक इंटरपर्सनल स्किल को यूज करते हुए, सोशल स्किल्स को यूज करते हुए जो उन्हें आता है वो दूसरों से शेयर करती हैं. करेक्ट मार्गरेट?
7: यस यस यस मैम, यस मैम.
0: ऑलराइट, थैंक यू मार्गरेट.
7: वेलकम मैम.
8: मैं अपने आप को अच्छी लगती हूँ क्योंकि मैं किसी भी प्रॉब्लम हल ढूंढ लेती हूँ, चाहे पर्सनल हो चाहे ऑफिशियल हो.
0: जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो क्षमता है वो आप अपने अंदर समझते हैं, रखते हैं, यही कहना चाह रहे हैं. ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि आप जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये जो हमने एक स्किल पढ़ी थी, ये आपको लगता है ये सबसे स्ट्रांग है आपके अंदर, इसलिए जब भी आपकी ऐसी कोई सिचुएशन आती है और आप उसे सॉल्व करवाते हैं तब आपको अच्छा लगता है. ऑलराइट, थैंक यू.
2: मैं बोलना चाहूंगा चांदना
0: जी, बताएं.
2: Ma'am, I feel happy when my target and my problem solve and my official target completely.
0: जब आपका कोई टारगेट कंप्लीट हो जाता है तब आप खुश हो जाते हैं.
2: जी मैम, जी मैम.
0: ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू. कोई और बोलना चाहेगा कि हम आगे बढ़े?
9: गुड आफ्टरनून मैम.
0: गुड आफ्टरनून. हेलो
9: मैम, मैं देव सेंटर औरंगाबाद बिहार से बोल रही हूँ.
0: हाँ जी
9: मैम, मैं रीड इंडिया में स्टिचिंग ट्रेनर हूँ
0: जी,
9: और मुझे स्टिचिंग सिखलाने में, बच्चे को एडवाइस देने में बहुत बहुत बहुत अच्छा लगता है. फर्स्ट टाइम उन लोग बहुत नर्वस रहती हैं, उनको एडवाइस देकर हम बहुत उनका अच्छा फील करवाते.
0: पहले पहले आप कह रहे हैं आप नर्वस रहते थे और अब आपको लगता है आप अच्छे से कर पा रहे हैं?
9: हाँ, यस मैम.
0: ऐसा क्यों हुआ? पहले नर्वस लगते थे, अभी अच्छे से कर पा रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट.
9: बच्चे जो आते हैं मैम, स्टूडेंट जो आते हैं वो बस नर्वस रहते हैं, बट उनको हम समझाते हैं, एज ए फ्रेंडली बात करते हैं, एज ए फ्रेंडली सिखलाते हैं, तो अच्छा लगता है, तो मिलजुल कर रहते हैं, वो बहुत खुशी मिलता है मुझे।
0: अच्छा, तो बच्चे जो आते हैं वो नर्वस होते हैं शुरू शुरू में, बट आपके साथ जब मिलजुल के काम करते हैं, सीखते हैं, तो वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो आप करती हैं कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। सो वी स्टॉप हियर टेकिंग मोर, हम यहीं पे रुकते हैं फीडबैक लेने के लिए। तो सभी ने ये बताया कि जब वो कुछ काम करते हैं, कोई पॉजिटिव काम करते हैं, तब वो या तो खुश होते हैं या उनको खुद में एक अच्छी फीलिंग आती है और वो अपने आप को पसंद करते हैं। हमें ये भी देखना है कि कोई काम नहीं होता तब क्या हम अपने आप को हेट करना शुरू कर देंगे? क्या अगर हमारा काम बिगड़ जाता है तो हम अपने आप को बुरा कहना शुरू कर देंगे? क्योंकि जो एग्जाम्पल्स हमने सुने अभी, सभी ने ये बोला कि जब ये मैं कर लेती हूँ तो मुझे अपने आप को अच्छा लगता है, लेकिन जब वो नहीं हो पाएगा तब क्या होगा? कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आएगी तब क्या होगा? कोई प्रॉब्लम आ जाएगी आपके उस काम में तब क्या होगा? तब आप अपनी इमेज, जो आपकी खुद की इमेज है, आई विल नॉट फील हैप्पी देन, आई विल नॉट लाइक हु आई एम देन। तो इन्हीं सब चीजों को हमें अपने अंदर लाना है कि बाहर की सिचुएशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे आपका जो आत्मविश्वास है, जो सेल्फ इमेज है, उस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसे हमें ये देखना है कि वो एक सिचुएशन है जिसमें शायद हम और मेहनत करें तो वो सिचुएशन फिर से अच्छी हो सकती है। तो जब सब अच्छा हो रहा होता है तब तो हमें लगता है कि हम अब बहुत अच्छे हैं। जब हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं, हाँ बहुत अच्छे मार्क्स आए, आप तो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन तब क्या है, किसी वजह से मार्क्स अच्छे नहीं आए, तब हम अपने बच्चे से क्या बोलते हैं? और कुछ शब्दों का हम यूज करते हैं, कोई काम नहीं होता, बनती बात बिगड़ जाती है, कोई सिचुएशन आ जाती है, तब क्या होता है? उस वक्त भी हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखनी है। ये एक सर्कल हमें बनाना है अपने आसपास, हर एक इंसान के लिए, जो आप अपने लिए बनाएंगे, आप अपने आपके जो सर्कल में लोग हैं उनको भी बताएंगे कि एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज होना बहुत जरूरी है लाइफ स्किल्स को एक्वायर करने के लिए। अपने आप में ये बोलना कि मैं सक्षम हूँ, आई एम इनफ, मुझसे लोग प्यार करते हैं, आई एम लवेबल, आई एम ब्रेव, मैं हार्ड चीजें कर सकती हूँ, आई कैन डू हार्ड थिंग्स, मैं इन चैलेंजेस के लिए बना हूं या बनी हूं, मैं इन फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती हूँ, ऑल माई फीलिंग्स आर ओके, कोई भी अंदर मेरे फीलिंग आ रही है वो ठीक है, मैं इस जगह को बिलोंग करती हूँ, मैं कोई बाहरी नहीं हूं, मैं इस जगह को बिलोंग करती हूँ, मिस्टेक्स मुझे हेल्प करते हैं सीखने में, मैं इन चार्ज हूं, कैसे मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ एक सिचुएशन को, मैं इन चार्ज हूं, कैसे मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ एक सिचुएशन को। ये एक सर्कल ऑफ पॉजिटिव सेल्फ टॉक है जो हमें हर दिन तो करना ही चाहिए, खुद के बारे में खुद को एनालाइज करना चाहिए, क्या मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हूँ, क्या मैं टफ हूँ एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्या मैं अलग हूँ, क्या मैं खुश हूँ अपने आप से, क्योंकि जब हम अपने आप से खुश होंगे तब हम पॉजिटिव लाइफ स्किल्स अपने अंदर लेके आएंगे और हम मदद करेंगे दूसरों में भी ये लाइफ स्किल्स इनकलकेट करने के लिए। तो जब हमें लाइफ स्किल्स की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है कि लाइफ स्किल इम्पोर्टेंट क्यों है, और हमने वो 6 लाइफ स्किल्स पढ़ भी लिए हैं कि कौन से 6 लाइफ स्किल्स हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, सो टुडे वी आर टेकिंग फर्स्ट लाइफ स्किल विच इज द कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल। कम्युनिकेशन स्किल की अगर बुक डेफिनेशन पढ़ी जाए तो बुक डेफिनेशन यही कहती है कि ये एक इंटरपर्सनल स्किल है, यानी कि कम से कम 2 लोग चाहिए इस स्किल को यूज करने के लिए। Interpersonal skill that refers to our ability to communicate with, interact with other people. Communication skill involves our ability to take an idea or set of instructions and be able to convey them to the others in a manner that is comprehensible. कहने का मतलब ये है कि ये एक interpersonal skill है जो हमारी ability define करती है कि हम कुछ idea को, कुछ इंस्ट्रक्शन को या किसी बात को पहले तो समझें, उसे दूसरे तक पहुंचाने में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करें, और दूसरे को वो समझ में आनी चाहिए. आपने कह दिया और दूसरे को समझ में नहीं आया, या आपने सही तरीके से नहीं कहा उसके बारे में और दूसरे को समझ नहीं आया, तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल है ये बिल्कुल फेल हो जाती है. आपका कहना ही, आपका शब्दों का यूज करना ही जरूरी नहीं है, किस तरह से आप कह रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, और आप ये समझ रहे हैं कि सामने वाले को बात समझ में आ रही है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो चीजें कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट रहती हैं. इसमें हमने बात करी थी कि कम्युनिकेशन स्किल जो होते हैं वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन भी हो सकते हैं. जब हम लाइफ स्किल की बात करते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि यही एक स्किल है जो इंसानों के पास है. जो ये हम शब्द जो हम बातचीत करने की जो एबिलिटी है, ये सिर्फ इंसानों के पास ही है. जो हम एक जगह से, अभी मैं एक जगह से करीबन 70 लोगों से बात कर रही हूँ, तो ये एबिलिटी जो है ये हमें सबसे अलग करती है. चाहे वो कोई स्पीशीज है उससे अलग करती है, और विद इन ह्यूमन बींग्स में हम सेट अपार्ट हो जाते हैं. कुछ लोग इतना अच्छा बोलते हैं, जैसे कि आपने वीडियोस देखे होंगे, संदीप महेश्वरी के देखे होंगे, या फिर किसी गुरु के देखे होंगे, या फिर शिवानी बहन के देखे होंगे, या फिर किसी ओरेटर के देखे होंगे. कुछ लीडर्स आपको बहुत इंस्पायर करते हैं बोलते हुए. क्यों? क्योंकि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत स्ट्रांग है. वो हर चीज को साथ लेते हुए, चाहे नॉलेज है उनको, एक से ज्यादा सब्जेक्ट की नॉलेज रहती है उनको, और वो उस चीज को कैसे अपनी भाषा में, अपने बोलने के तरीके में उसे लेके आते हैं, वो एक कला है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस, रीडिंग, जितना आप पढ़ेंगे, जितना शब्दों को समझेंगे, जितना दूसरे लोगों को सुनेंगे. कम्युनिकेशन स्किल में बहुत इंपॉर्टेंस होता है सुनने की शक्ति का. जितना आप दूसरों को सुनेंगे, उतना आप कोशिश करेंगे ऐसी चीजों को पिकअप करने के लिए जो आपके अंदर अडेप्ट हो सकती हैं. ये स्किल बहुत प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल जगह पे यूज होने होती हैं. स्पेशली जो राइट रिटन कम्युनिकेशन है, ये तो प्रोफेशनल में बहुत ही काम आती है. तो जब आप अपने बेनिफिशरीज से भी बात करेंगे, जो स्टूडेंट्स रहेंगे, आप उनसे ये कहिए कि ये सेल्फ प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से आप इम्प्रूव कर सकते हैं. जितना इसे हम इम्प्रूव करते जाएंगे, उतना वो प्रोफेशनली हमें हेल्प करती जाएगी. बहुत सारी किताबें हैं हमारी लाइब्रेरीज में भी, ऑनलाइन ई बुक्स भी अवेलेबल हैं कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए. बहुत सारे वीडियोज हैं जो कि अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं. आप किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, किस तरह से हम हाव भाव का, जो हाथ हम हिलाते हैं, आंखों का, हमारा आई कांटेक्ट कैसा है अपने ऑडियंसेस से. ऑडियंस चाहे एक हो, चाहे आप एक ही जन से बात कर रहे हो, बट जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो कॉम्प्रिहेंड करेगा आपकी बात को. तो किस तरीके से हमें बात करने, किन शब्दों का, ऐसे कौन से टॉप शब्द होते हैं जो इफेक्टिवली हम कम्युनिकेट करने के लिए उनको यूज कर सकते हैं. बहुत आसान है सेल्फ प्रैक्टिस से इस कम्युनिकेशन स्किल को हर रोज पॉलिश करने का. यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया है, सेल्फ प्रैक्टिस लिसनिंग टू गुड स्पीकर्स हु इंस्पायर यू, चाहे वो हिंदी में है, इंग्लिश में है, एनी अदर लैंग्वेज, हूसोएवर इंस्पायर्स यू. एंड किताबें पढ़िए, और अगर आपको लगता है कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो शीशे के सामने खड़े से 5 मिनट ऊंची आदत नहीं डालेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू बी अ बेटर कम्युनिकेटर. द मोमेंट यू नो यू स्टार्ट, आप अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करिए, फोन तो अभी सभी के पास है, आप अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करिए और उसमें अपनी आवाज सुनिए कि आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ सरल शब्द हैं, जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो सही तरीके से रख पा रहे हैं, एक ही बात को 10 बार बोलने की जरूरत पड़ रही है सामने वाले को समझने के लिए. अगेन आई एम स्ट्रेसिंग अपॉन, इट्स वन ऑफ द मोस्ट बेसिक येट मोस्ट इजिली एक्वायर्ड कम्युनिकेशन स्किल. बट इसको जो पॉलिश करना है वो हम सिर्फ और सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं, सुनने से कर सकते हैं. कम्युनिकेशन स्किल हमें ओरली, रिटन कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, हम प्रेजेंटेशन जब बनाते हैं अपने आप में आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं उसमें हमारी मदद करती है। तो जो बच्चे हैं जो जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, ये एक पहली स्किल होगी। कल मैम ने लीडरशिप सेशन में एक इंटरव्यू के बारे में बात करी थी, जो कि IAS के तैयारी के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं उसकी तैयारी के लिए हो रही थी। तो जब आपकी पहली बेसिक स्किल कम्युनिकेशन स्किल ही वीक रहेगी, आप अगला स्टेप नहीं ले पाएंगे। IAS या कोई भी बड़े एग्जाम्स जो होते हैं उसमें रिटन एग्जाम तो होता ही होता है, बट ओरल एग्जाम भी होता है। क्यों? वो आपका कॉन्फिडेंस देखना चाह रहे हैं कि आप किस तरीके से बात रखते हैं। आप अगर कोई भाव को नहीं भी जानते, किसी सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, तो घबराइए नहीं, ना कहना भी सीखे कि हाँ मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं है, मैं पढ़ के या मैं समझ के आपसे इस चीज में बात करूंगा। बट उससे पहले वो कॉन्फिडेंस लेके आना अपने अंदर। यू हैव टू गो बैक टू द पॉजिटिव सेल्फ इमेज कि मैं, जरूरी नहीं है कि मुझे सब चीजों के बारे में पता हो, लेकिन जो मुझे पता है और जो मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, उसको मैं सरल भाषा में और साफ शब्दों में दूसरे तक ले जा सकूं। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो हमें कॉन्फ्लिक्ट, किसी जो सिचुएशन कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होती है, सबसे ज्यादा हेल्प करती है। जो बड़े बड़े कंट्रीज में डिप्लोमैट्स होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग होती है कि वो बोलते हैं कि ये तो बहुत डिप्लोमेटिक बात करता है। तो डिप्लोमेटिक रॉन्ग शब्द नहीं है, डिप्लोमेटिक मतलब कि दोनों साइड्स को या दो या तीन साइड्स की जो बातें हैं उनको समझना और बिना किसी के भाव को नुकसान पहुंचाए हुए एक एक सेंट्रल पोजीशन पे आना, तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत हेल्प करती है। नेगोशिएशन में बहुत हेल्प करती है, किसी किसी सिचुएशन में जब आप पढ़ जाते हैं कि आपको इधर की बात भी सुननी है उधर की बात भी सुननी है, तो ये एक स्किल है जो बार बार काम आती है। कुछ किताबें हैं, मुझे नहीं पता ये लाइब्रेरी में है कि नहीं, बट ये किताबें ऐसा नहीं है कि मैं रिकमेंड कर रही हूँ, मैंने इनके बारे में इनके पढ़े हैं तो मुझे लगी ये सरल भी हैं और ये हेल्प कर सकती हैं कम्युनिकेशन स्किल को, जो कि पहली लाइफ स्किल है एक्वायर करने के लिए और उसको पॉलिश करने के लिए। तो अगर आप चाहें आप ये बुक्स रेफर कर सकते हैं, या फिर आप अपने बेनिफिशरीज को भी कह सकते हैं कि वो ये बुक्स रेफर करें। टेड टॉक्स जो है, बहुत सारे टेड टॉक्स हैं, आप बस उनको सुनिए जब आपका फ्री टाइम होता है, 5 मिनट एक टेड टॉक को सुनिए, बहुत आपको पॉजिटिविटी आएगी आपके जो सिचुएशंस हैं लाइफ में। ऐसा लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में, देयर आर मेनी मेनी पीपल हु आर स्ट्रगलिंग एंड प्रोबेबली उनकी स्ट्रगल हमसे कई कई गुना ज्यादा है, बट वो कैसे उसको ओवरकम करके आए हैं। तो इन सब चीजों से बहुत बहुत हेल्प मिलती है, जो ये चीज जो सेल्फ लोग अपने बारे में बात करते हैं, जो कि टेड टॉक्स में है। तो अभी आज का सेशन हमारा कम्युनिकेशन लाइफ स्किल्स को समझने का था, उसकी इम्पोर्टेंस को समझने का था, और अपने आप से पहले तो अपनी सेल्फ इमेज को क्लियर करना है कि क्या मतलब, अपने आप में सेल्फ डाउट लाने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं किसी से कम हूँ या मैं किसी से कम, मतलब मेरी जो अपनी इमेज है, अपनी इमेज को सबसे ऊपर रख के उसको और किस तरह से निखार सकते हैं, वो लाइफ स्किल्स हमें हेल्प करती है। और हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन जो पहली लाइफ स्किल्स है उसके बारे में। सो इफ यू वांट वी कैन गो डीपर इनटू इट, बट आई वुड लाइक टू लीव इट हियर एंड आई विल रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी पार्टिसिपेंट्स से कि वो जाएं और कम्युनिकेशन के ऊपर कुछ ना कुछ पढ़ के, नेक्स्ट सेशन हमारा नेक्स्ट फ्राइडे को होगा, हम पहले 5 मिनट कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करेंगे। तो अगर कोई लाइव एग्जाम्पल लाइफ से देना चाहता है या कुछ किसी ने कुछ पढ़ा है उसके बारे में बताना चाहता है, सो वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू, बिकॉज ये सेशंस आपने आगे अपने बेनिफिशरीज को देने हैं। सो द मोर यू लर्न द मोर यू विल बी एबल टू यू नो डू जस्टिस टू द सेशंस। सो वी विल क्लोज द सेशन हियर, बट अभी भी हमारे पास 7 मिनट हैं और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं शेयर किया है, आई वुड रिक्वेस्ट इफ समबडी कैन शेयर, उनको कुछ अच्छा लगा इसमें या वो कुछ ऐड करना चाहते हैं। मैम, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? डू यू थिंक?
10: आई वाज लिसनिंग एवरीथिंग, इट्स अ वंडरफुल सेशन एंड आई वुड आल्सो लाइक टू मेंशन हियर दैट life skills are day to day life. What we do, how perfect we are, how our behavior is, and how our attitude is. So these all combination of all makes the personality, and that is the wonderful session. I would like to say that. My only request to all everyone is that they must practice it, because this is purposely added into our program

0: वैल्यू ऐड करता है, हमारी पर्सनालिटी में भी वैल्यू ऐड करता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि जितने भी बेनिफिशरीज हैं वो सब इसकी बात कम्युनिटी के साथ करें। इसमें ऐसा करने से ऑर्गेनाइजेशन का इमेज बढ़ता है, आपकी अपनी पर्सनालिटी का उनके ऊपर ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंक्रीज होता है, राइट? तो आप प्लीज इसको अपनी रोजमर्रा की बातचीत में भी लेकर आइए। 10 मिनट इसके ऊपर बात करिए और कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलिए जो रिफ्लेक्ट करें कि हाँ, आप एक बहुत ही वैल्यू ओरिएंटेड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं, ठीक है? तो आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल सेशन स्मिता, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प.
0: या टेक केयर, बाय बाय।
1: ऑल राइट, थैंक यू एवरीबॉडी.
0: बाय बाय।

0: गुड आफ्टरनून। ऑल वेल, सब ठीक ठाक है?
1: यस मैम,
2: यस मैम।
0: टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लीडरशिप। एवरीबॉडी इज अ लीडर, हर कोई लीडर है अपने अपने लेवल पे। एवरीबॉडी इज अ लीडर एट देयर ओन लेवल, वेदर वी से हाउस, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन। मैं यहाँ पे बोलूंगी कि हर कोई अपने घर में भी लीडर है, अपने समाज में भी लीडर है, और अपने रीड सेंटर पे भी लीडर्स हैं, और कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसमें भी लीडर है। वॉट एवर इट इज, लीडरशिप क्वालिटीज तो सब में होती हैं, एंड वी हैव टू शार्पन देम, वी हैव टू नर्चर देम, and we have to practice leadership qualities. When we are saying that we have to practice leadership qualities, उसके कुछ कुछ दायरे होते हैं, कुछ norms होते हैं, what we say that we are the leaders. वो norms कोई define नहीं कर सकता है कि अगर मुझे leader बनना है तो अगर मैं ये 5 या 10 norms सीख लूँ तो मैं leader हूँ। No. The first is that you have to put yourself into their shoes. अगर हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं और लीडरशिप के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ग्राउंड से ऊपर जाना है। We have to start from the bottom and rise up the ladder. बहुत सारे आपने कार्टून्स भी देखे होंगे, जो मैनेजर होता है, जो जिसमें लीडरशिप नहीं होते, उसको काम ही करवाना है, तो वो एक टॉप पे खड़ा हो जाता है और नीचे ऑर्डर देता है कि आप काम कर लो। और जो लीडर है वो फर्स्ट स्टेप पे ही खड़ा होता है और हाथ पकड़ के सबको ऊपर लेके जाता है। समझ में आ गई? ये फर्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट चीज हमारे वर्किंग पैटर्न में। लीडर्स को जो भी सर्कमस्टांसेस हमारे सामने हो तो हमें लर्न करना है, हमें सीखना है कि हम नीचे से ऊपर कैसे जा सकते हैं। और उन सर्कमस्टांसेस में सबके डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं,

0: जो भी ट्रू लीडर्स हैं, दे हैव टू लर्न टू राइज अबव ऑल द सर्कमस्टांसेस. सी, सर्कमस्टांसेस विल ऑलवेज बी देयर, हमेशा वहां पे रहेंगे. किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी को घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी को खेत में जाना है, किसी को घर का काम करना है, किसी के बच्चों का इश्यू है, किसी की फैमिली में कोई इश्यू है. बट शुड वी सकम टू ऑल दीज इश्यूज, बिकॉज देर आर मल्टीपल इश्यूज अराउंड अस, राइट? एंड इफ वी कीप ऑन सेइंग दैट ओ गॉड वी आर सराउंडेड बाय सो मेनी इश्यूज, हम हमेशा भगवान को ब्लेम करें कि भगवान मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही क्यों ये सब कुछ हो रहा है, मैं क्यों नहीं दूसरों की तरह आगे बढ़ रहा. तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आगे रोड ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हैं. रोड ब्लॉक्स क्या होता है कि हम अपने आगे एक बैरियर, एक एक दरवाजा बंद कर रहे हैं कि हमें आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में हैं. अगर 1,000 समस्याएं भी हैं हमारे जीवन में और हम ये ठान लेते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी सरकमस्टांसेस हो, तो हम आगे बढ़ सकते हैं. और ये मैं गारंटी से कहती हूँ कि ये सब कुछ हमारी सोच पे डिपेंड करता है. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट वी थिंक, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस एंड व्हाट इज द डिटर्मिनेशन इन आवर, हमने अपने मन में क्या ठाना है कि हमको क्या करना है. मैं ये बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहती हूँ कि रीड सेंटर्स में इस बात से बहुत सारे लोग ऊपर उठ गए कि एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, बिकॉज आई नो दैट एवरीबॉडी, रीड सेंटर्स में खासकर महिलाएं इस दायरे से बाहर आ जाए. और कोई लड़ झगड़ के नहीं, कोई फैमिली से अलग होके नहीं, या फैमिली को इग्नोर करके नहीं, बट यस दे हैव कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. जो इस मेरी बात से एग्री करते हैं, आप प्लीज अपना अनम्यूट करके एक बार यस बोलिए. आई रियली वांट टू काउंट द यस यू पीपल आस्किंग.
1: गुड आफ्टरनून मैम,
0: ज्योत्सना, ज्योत्सना, यस
1: यस
0: यस, नेक्स्ट
1: मैम,
0: नेक्स्ट, हु इज हियर, प्लीज टेक योर नेम एंड से यस. आप अपना नाम लीजिए और यस बोलिए.
1: माई सेल्फ सत्यम सिंह, यस मैम,
0: वेरी गुड. नेक्स्ट कौन है, जल्दी से 5 मिनट में, मैं बहुत सारे यस काउंट करना चाह रही हूँ.
1: यस मैम,
0: कौन
1: यस मैम,
0: बोल रहा है? ओके, और जल्दी जल्दी.
1: यस मैम,
0: यस मैम, वेरी
1: रवीना,
0: नाइस, वेरी
1: हमारे
0: नाइस,
1: भी ऐसे हैं मैम, बात तो सुन,
0: वेरी नाइस. और
1: जी
0: यस
1: मैम,
0: और
1: यस
0: वेरी नाइस. अब मैं
1: मैम,
0: किसी को ये बोलूंगी कि अपना कैमरा ऑन करके आप, हेलो,
1: करना बोल,
0: आप अपना कैमरा ऑन करके जो आज तक कभी नहीं बोले हैं वो बोलेंगे कि वो यस किसके बेसिस पे कह रहे हैं. एनीवन, मैं आई एम नॉट नेमिंग, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ. आप अपने कैमरा ऑन करके बोले कि आप में ये हिम्मत कैसे आई कि आपने अपनी लाइफ में कुछ करना है, उसकी आपने एक प्रण ले लिया है, एक ठान लिया है आपने, वो मैं सुनना चाह रही हूँ. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले अपना कैमरा ऑन करेगा उसी को चांस दिया जाएगा. मुझे एक से ही सुनना है, ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, मैं ये आपको बाद में बताऊंगी. पर जल्दी से कोई भी अपना कैमरा ऑन करे और बोले कि ये कैसे आए.
1: मैं, मेरी जो हिम्मत सबसे ज्यादा है मेरी माँ को देख कर आई, क्योंकि वो हमारे लिए 24 घंटे अवेलेबल रहती है और वो मतलब मल्टीपल काम्स कर लेती है एक टाइम में, तो उनसे सबसे बड़ी सीख मिली कि अगर वो बिना बैठे हम लोग के लिए कुछ कर रही तो हम लोग को भी कुछ बनता है कि उनको हम उनके लिए कुछ करें।
0: वेरी गुड, वेरी गुड। और अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, राइट? अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ
1: मैम
0: आगे बढ़ के करेंगे, है ना?
1: यस मैम
0: वेरी नाइस। एनीबॉडी एल्स? इनको अपनी मदर से प्रेरणा मिले। आप और कोई बोलेंगे प्लीज? कोई ना कोई लाइफ में होता है जो प्रेरणा देता है।
2: हेलो मैम
0: हाँ जी,
2: जी मैम नमस्ते। हाँ
0: नमस्ते मीना।
2: मैम, मुझे तो आज सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली वो आपसे और मोती जी सर दोनों से प्रेरणा मिली।
0: हाँ,
2: मैं अपनी
0: बहुत
2: लाइफ के रोल मॉडल हमेशा दो लोगों को मानती हूँ, एक मोती जी सर थे और एक आप हो। आपसे मैम मैंने इतना सीखा है, मोती जी से तो चलो मैंने काम करना सीखा था, पर काम के साथ साथ अपनी लाइफ लाइफ को भी कैसे बेहतर बनाए वो मैंने आपसे सीखा है। और कई बार मैं जब सोचती हूँ कि मेरे पास ज्यादा काम है या कुछ है, तो मेरे को तुरंत आपका ध्यान आ जाता है कि मैम इतने सारे लोगों को साथ में लेके चल रही हैं, और वो भी तो सब लोगों को लेके कर ही रही है ना, तो हम भी इंसान ही है, तो क्यों ना हम भी एक कोशिश करें। और मुझे इतनी हिम्मत मिलती है मैम, मैं बता नहीं सकती। कभी मैं हॉपलेस होती हूँ और आपके बारे में जैसे सोचती हूँ कि नहीं मैम भी तो कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मुझे एक पता नहीं एक ईश्वर का क्या हुआ है, मुझे ऑटोमेटिक एक ताकत मिल जाती है। ये एक बार
0: वेरी
2: नहीं 100 बार हुआ है।
0: गुड मीना, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। मैं अभी इसका एग्जाम्पल मैं लिंक कर रही हूँ जो मैंने 5 मिनट पहले बात करी थी। मैंने मैंने ये बोला था कि सरकमस्टांसेस कुछ भी हो, प्रेरणा हमें लेनी है अपने आसपास के सरकमस्टांसेस को समझ के। तो मीना उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। फतेहपुर से अभी somebody शेयर, मैं उनका नाम नहीं अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हमें जो इंटरनल आवाज आती है, जो हमारे दिल से आवाज आती है, वो एकदम सच्ची आवाज होती है, और वही प्रेरणादायक भी होती है। हम बाहर से लोगों को अपना मेंटर मानते हैं, अपना रोल मॉडल मानते हैं, पर जब तक अंदर से आवाज नहीं आती है, हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट? यू वॉन्ट टू से समथिंग? आप कैमरा के आगे बैठी हैं, कुछ कहना चाह रही हैं?
2: बड़ा कॉल सेंटर से मैम, हमको ज्यादा सबसे ज्यादा प्रेरणा ना सना मैम से ही मिलती है, क्योंकि जब भी हमें कुछ लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं तो वो मेरा सपोर्ट पूरा करती है, इसलिए अगर हम किसी को मानते हैं तो वो मैम को मानते हैं।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और ये जो
2: मैम
0: ये जो लीडर्स, रीट इंडिया के लीडर्स है ना, दीज
2: जी
0: लीडर्स आर द मेंटर्स फॉर ऑल ऑफ यू। यही लीडर्स
2: जी
0: मेंटर्स हैं, क्योंकि आप सना, मीना, मेनी पीपल आर देयर इन द रीट कम्युनिटी। और रीट का ना एक स्लोगन है, वन वुमेन
2: जी
0: वन फैमिली वन विलेज। एंड ये लीडर्स को बहुत पहले इसके बारे में सिखा दिया गया था कि आपने हर गांव में, हर फैमिली में एक लीडर तैयार करना है। एंड वो उनका मिशन बन चुका है, वो उस मिशन को आगे लेके जा रहे हैं और उसी पे अपने फोकस हैं। और वो आप लोगों को ये बात बोलते नहीं है, मैं बोल रही हूँ ना स्लोगन, तो वन वुमेन वन फैमिली
2: जी
0: वन विलेज, बट दे आर एट इट, दे आर वर्किंग ऑन इट। वो उसको एक मिशन के तौर पे आगे लेके जा रहे हैं और उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और अगर आज मैं सना या मीना को बोलू ना कि आप मुझे अपने गांव में हर फैमिली से एक लीडर का नाम दे दो, तो वो बना देंगे लिस्ट मुझे, और वो लिस्ट अभी मुझे चाहिए आप
2: जी
0: लोगों से। सना एंड मीना एंड ऑल अदर्स हु आर द लीडर्स इन दिस सेशन, प्लीज स्टार्ट मेकिंग दैट लिस्ट, ठीक है? और
2: यस
0: ये
2: मैम
0: लिस्ट, हाँ ये लिस्ट मुझे अगर एक हफ्ते दिवाली तक अगर आ जाती है या 15 नवंबर तक भी आ जाती है, वो लिस्ट मैं पब्लिश करना चाहती हूँ कि ये लीडर्स हैं हमारे, जहां जहां रीड के सेंटर्स हैं, ये हमारे लीडर्स हैं और ये हमारे एल्यूमिनाई हैं। एल्यूमिनाई का मतलब पता है कि ये हमारे सेंटर से जुड़े हैं, इस सेंटर की ताकत ये औरतें हैं, ये बच्चे हैं, ठीक है? तो आप मुझे जरूर उनके नाम देंगे और लिस्ट में उनके आगे उनके साइन भी कराएंगे, ठीक है? इज इट ओके?
2: यस मैम,
3: यस मैम।
0: हाँ, तो ये हम एक मैं मतलब कि जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं ना, अपने वोटिंग राइट्स इकट्ठे करते हैं कि हमारे वोटर्स कौन है, हम वोटर्स नहीं इकट्ठे कर रहे हैं, हम चेंज मेकर्स इकट्ठे कर रहे हैं। कि अगर 10 साल पहले मीना मोती जी से सीख रही थी या गीता के कांटेक्ट में आई थी, आज वो 1000 लड़कियों को मेंटर कर रही है, उनके सामने एक लीडर बन के खड़ी है, तो हम क्यों ना हर परिवार में से एक महिला को चुने अपने गांव में जो लीडर का रोल प्ले कर सकती है, और ये जो मिशन है हम इसको आगे लेके जाएं। क्योंकि जब तक ये मिशन के लेवल पे ये काम नहीं होगा, तब तक हम सोशल चेंज की जो बात करते हैं वो नहीं आएगी, है ना। कहीं ना कहीं कोई ना कोई औरत के सामने मल्टीपल चैलेंजेस हैं, और वो उन चैलेंजेस में खो जाती है, डूब जाती है, उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता है। पर अगर उन चैलेंजेस का हल निकाल के हम वहां से बाहर आ जाए, तो उसकी दुनिया बदल जाती है, उसको एक मिशन मिल जाता है कि वो अपनी सारी तकलीफें भूल जाती है और वो उस मिशन पे चलने के लिए तैयार हो जाती है। ये इसका निचोड़ है, राइट। तो आप लोग एग्री कर रहे हैं जो मैंने कहा है, और इससे मेरा काम भी आसान हो रहा है, क्योंकि मुझे रीड इंडिया ने कहा है कि पूरे भारत में औरतों की एल्यूमिनाई के नाम हमें दो, जो वुमेन लीडर्स हैं, और आप लोग मेरी मदद करेंगे उन लिस्ट बनाने में। मैं तो कह रही हूँ कि मेरे पास 50,000 नाम आएंगे, पर मुझे लगता है ये नाम 1 लाख से ऊपर जाए, जो मेरी समझ में आ रहा है। और फिर मैं एक और बड़ा सेमिनार करूंगी जिसमें हम इन सबको बुलाएंगे और बोलेंगे देखिए हमारे देश के लीडर्स, राइट। तो आप ये जरूर करिएगा, इसमें बहुत आपको भी सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी, रीड इंडिया को भी होगी, और जो औरतें आपके साथ जुड़ेंगी उनको भी एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट ये हो गया कि कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो, हमें आगे बढ़ना है। और सेकेंड चीज क्या है कि हमें अपनी सोच को बदलना। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तब तक हम आगे नहीं जा पाएंगे। सोच कैसे बदली जाती है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बात को लेके अपने परिवार में बहुत परेशान हूं, ठीक है। अगर मैं उस परेशानी से घर में बैठ जाऊं, छुट्टी ले लूं, अपने 4-5 लोग जो मेरी बातें सुनते हैं उनके सामने मैं वो बातें करना शुरू कर दूं, और मैं अपने आप को बहुत वीक समझना शुरू कर दूं, और मैं ये सोचना शुरू कर दूं कि मेरी जिंदगी बस अब खत्म है, तो वो एक नेगेटिव थॉट मेरे को घेर रहा है। मेरे को उस नेगेटिव थॉट से बाहर आना है। बाहर कैसे आना है कि मैं 10 औरतों को देखूं, उनकी लाइफ को रियलाइज करो और उनको मोटिवेट करो अपने आप को चेंज करने में, मैं खुद अपने आप ही चेंज हो जाऊं, राइट। ये एक साइकी है जो बहुत पावरफुल है, और ये हमारे माइंड पे काम करती है, ठीक है। दूसरी बात ये कि हम अपने पोटेंशियल को जान ही नहीं पाते। वी ऑलवेज डिबेट इन आवर माइंड्स, I don't know whether I'll be able to do it. I don't know what will be the outcome. I don't know whether this will help me to come out of any situation. तो क्या है, हम अपनी जो अंदरूनी ताकत है उसको पहचान ही नहीं पाते। उस ताकत को हर समय एक पॉजिटिव एंगल से पहचानना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने पोटेंशियल को नहीं पहचानेंगे, हम कैसे इतना बड़ी जिम्मेदारी ले सकते हैं कि हम दूसरों की जिंदगी को चेंज कर देंगे, है ना। और पोटेंशियल को पहचानना ये नहीं होता कि मैं बहुत जोर से, मैं बहुत चिल्ला के बोल रही हूँ, मैं सबके सामने ये कह रही हूँ कि आई एम द बेस्ट, मेरे से बढ़ के तो कोई है ही नहीं, जो मैं कर रही हूँ बस वो ही ठीक है। वो लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप ये है हलीमी से, बहुत ही सहज भाव से, बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही आई शुड से दैट अफेक्शनेट होके हम कैसे किसी को बहुत ही मुश्किल मुश्किल बातें समझा सकते हैं, बशर्ते आगे सुनने वाला भी उसी लहजे में हो। हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है उस ग्रुप के साथ बात करके जो हमें ऊपर से हाँ कर रहा है और अंदर से हमारी बात को समझ ही नहीं रहा है, राइट? अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारे में जो क्षमता है दूसरों को पहचानने की वो भी शार्प होती जाएगी, वो भी बढ़ती जाएगी। हमें आदत पड़ जाएगी कि हम जो हमारे सामने बैठे हैं हम उसको पहचाने कि वो हमारी बात को कितनी वेटेज दे रहे हैं, कितनी समझ रहे हैं, कितना अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं और हम उनको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यस, हम जो भी बात इनसे कर रहे हैं इनकी जिंदगी में बदलाव आस्ता आस्ता आना शुरू हो गया है। और जब हम ये देखते हैं कि बदलाव आना शुरू हो गया है तो हमारी टीम में वो जुड़ जाते हैं, वो लीडरशिप की क्वालिटीज को समझना शुरू कर देते हैं, तो हम एक कॉन्फिडेंस लेवल पे आ जाते हैं कि यस, हम जिस रास्ते में जा रहे हैं वो रास्ता ठीक है, हम अपने आप को तो बदल ही रहे हैं, हम दूसरों को बदलने की भी क्षमता रखते हैं। तो जब हम कहते हैं सेकंड पॉइंट जो मैं बोल रही हूँ कि पहला तो हमने कहा कि हमें नीचे से ऊपर उठना है और अपने साथ लोगों को जोड़ना है, दूसरा पॉइंट ये है कि अपने अंदर की क्षमता को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि हम जिनके साथ जाके बात करने वाले हैं उनकी क्षमता तो हमें पता है क्योंकि वो अपनी क्षमता को पहचान नहीं पा रहे हैं, और अगर हम भी अपनी क्षमता को नहीं पहचानेंगे तो हम दूसरों को कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे इंस्पायर करेंगे, कैसे उनके साथ हम हाथ पकड़ के अपनी टीम को बड़ा करेंगे और सोशल चेंज की तरफ जाएंगे। हमारी जो इस बार की एनुअल रिपोर्ट आई है उसमें भी हमने जो टॉपिक को हाईलाइट करा है उसमें ये हाईलाइट करा है कम्युनिटी फर्स्ट, एंड हमारे जो एडवाइजर्स हैं डीड इंडिया के वो भी हमें ये कहते हैं कि हमारे लिए कुछ मायना नहीं रखता है एक्सेप्ट आर कम्युनिटीज विद हुम वी आर वर्किंग, दे आर द रोल मॉडल्स फॉर अस। रोल मॉडल्स एक लेयर पे तो बन गए, यू ऑल आर रोल मॉडल्स, उसमें कोई दूसरी थॉट प्रोसेस ही नहीं है, बट आगे कैसे हमने ये रोल मॉडल्स क्रिएट करने हैं वो आपके हाथ में। आपने वहां पे जो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ आपने इस बात को 100 times रिपीट करना है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ। आप खुद अपने आप को पहचान पाएंगे, जो मैं कह रही हूँ ना कि अपने पोटेंशियल को समझने की जरूरत है। जब ये एक्सरसाइज आप बार बार करेंगे बार बार करेंगे तो क्या होगा, आपको अपनी पर्सनालिटी को रिफाइन तो करेंगे करेंगे बट आपको अपने पोटेंशियल का भी अंदाजा हो जाएगा। जब आप रात को सोएंगे ना, जिन्होंने हर्ष अरोड़ा के सेशंस अटेंड करे हैं वो यही कहते हैं कि सुबह हम साइलेंस से शुरू करें, पूरा दिन हम जो कर रहे हैं रात को सोने से पहले जब हम बेड पे लेट रहे हैं तो हम उस पर रिफ्लेक्ट करें, अगर हमने किसी के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करी है तो वी शुड से थैंक्स टू गॉड, ओ गॉड यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी, यू हैव गिवन मी दैट पोटेंशियल कि मैं किसी की लाइफ में थोड़ा सा बदलाव ला सकूं। यहाँ किसी के साथ हमने 5% 10% कुछ गुस्से में बात कर ली है या कुछ गलत बोल दिया है तो उसके लिए हम माफी भी मांग लें। तो क्या है, एवरी डे इज अ न्यू लाइफ, तो हम जब सुबह उठेंगे हम बिल्कुल फ्रेश माइंड से उठेंगे, हल्के माइंड से उठेंगे और फिर हम अपने मिशन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे कि नेक्स्ट डे भी मेरे लिए एक मिशन है। और मैं आपको बताऊं मेरा काम करने का तरीका यही है। चैलेंजेस हर एक की लाइफ में होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस हर एक की लाइफ में होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर एक की लाइफ में होती हैं, पर जब मैं एनविसेज कर रही हूँ कि अगर आज मैं रीड इंडिया की कंट्री डायरेक्टर हूँ, आप अपने सेंटर्स के डायरेक्टर हैं, राइट? और जब डायरेक्टर बनना है और आप कह रहे हैं कि आप गीता मैम से सुन रहे हैं, तो यहाँ पे मैं हंड्रेड्स ऑफ गीता क्रिएट करूंगी, राइट? और आप मेरे से आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के ये जो सोशल चेंज की हम चेन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वी वुड लाइक टू सी फिजिकली द वुमेन, हम ये नेटवर्क इतना बड़ा क्रिएट कर लेंगे कि अगर मैं कहूँ कि अच्छा मीना आप मुझे बताओ तुम्हारे इलाके में कितने वुमेन लीडर्स हैं, 100 के नाम मेरे सामने आ जाने चाहिए, है ना? क्योंकि आपने उन मैंने तो 50 लोगों की जिंदगी चेंज करी है ना सेंटर लीडर्स की, आप लोग तो 500 लोगों की जिंदगी चेंज करें, 5,000 लोगों की जिंदगी चेंज करें, एंड दैट इज द अचीवमेंट ऑफ रीड इंडिया एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनली एज गीता मल्होत्रा फॉर मी, बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू टू बिकम द चेंज मेकर्स। और फिर जब हम आपके नाम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे शेयर करेंगे कि दीज आर द चेंज मेकर्स फॉर अस, तो आप देखिए कितनी आपकी पहचान बढ़े, राइट? तो अब हम थर्ड पॉइंट पे जाते हैं कि हमने अपना पोटेंशियल तो देख लिया, हमने समझ लिया, और हमने कहा कि हम बहुत ही परसिवरेंस, परसिवरेंस क्या होता है कि हमारे में बार बार उस चीज को रिपीट करने की क्षमता है। हम बहुत पेशेंस क्या होता है कि हमारे पास पेशेंस है दूसरे को सुनने की, राइट? और हमारे पास एक पैशन है, हमने दूसरे लोगों को चेंज करना है, हमारे अंदर एक भूख है, हंगर है, और हंगर क्या है? वन वुमेन वन फैमिली वन विलेज, हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म, राइट? ये हंगर जब पैदा हो जाती है ना, तो फिर आपका मिशन कहीं भी रुकता नहीं, आपका मिशन आपको सपोर्ट करता है। आज आप अपने विलेज में हैं, कल आप अपने ब्लॉक में जाएंगे, कल आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, आप अपने स्टेट लेवल पे जाएंगे, तो आप देखिए आपकी लीडरशिप की क्वालिटीज आपको कहाँ लेके जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम कहते हैं कि हम अपने पोटेंशियल को पहचाने, तो फर्स्ट पोटेंशियल क्या है? ट्रूथ, सच्चाई। और सच्चाई आपके दिल में है, आपके आसपास है, आपकी जबान पे है, आपकी सोच में है, आपके ख्याल में है। और अगर सच्चाई आपको इस तरह से घेर रही है, तो आपका रास्ता अपने आप साफ होता जाएगा। और ये स्मिता विटनेस करती है इसको, और मेरी पूरी टीम रीड इंडिया के विटनेस करती है कि रीड इंडिया की बुनियाद जो है पिछले 16 साल की, वो सच्चाई पे निर्भर, कुछ भी ऐसा यहाँ पे झूठ नहीं बोला जाता। और जो मेरी टीम है वो भी इसको प्रैक्टिस करती है कि वी नेवर टेल लाई, और जो भी हमारे सामने आके झूठा झूठी बात करता है या रॉन्गली प्रेजेंट करता है या दिल में कुछ और सामने कुछ और है, वो हमेशा कट जाता है रीड से, वो रीड के साथ कभी भी कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये जो मैं बात आपको बोल रही हूँ, मैंने पिछले 16 साल से इसको प्रैक्टिस किया है, और इतनी हिम्मत आ जाती है बोलने की, अगर आपके सीनियर्स भी और बहुत मतलब कि आउटसाइडर्स भी आपके सामने कुछ ऐसे बात बोलते हैं जो आपको सच्चा नहीं लगता है, प्रैक्टिकल नहीं लगता है, क्योंकि कम्युनिटी हमारे सामने फर्स्ट है, अगर वो कम्युनिटी के हित में नहीं है, तो आप स्टैंड ले लेते हैं कि यस आई रिस्पेक्ट यू, बट इट इज नॉट वर्केबल विद द पीपल विद हुम आई एम वर्किंग, राइट? ये तब आता है कि जब आप सच्चे हो और सच्ची बात कर रहे हो। सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है गुड टू अदर्स। मैं कुछ फेसबुक पे बहुत सारी चीजें आती हैं, आजकल कार्तिक का महीना चल रहा है और मैं बच्चे की पाठ पूजा में भी बिलीव करती हूँ, तो मैं कल रात को एक मैसेज पढ़ रही थी कि कार्तिक के महीने में अगर हम एक अच्छाई करते हैं ना, तो 100 अच्छाइयां आपको वापस आती। नो डाउट विष्णु भगवान का ये महीना है और विष्णु भगवान बहुत दयालु हैं, हम एक अच्छाई करते हैं और वो हमें 100 अच्छाई देते हैं, पर ये एक बुनियाद है हमारी जिंदगी की हमेशा के लिए। इट्स नॉट दैट कि मैं कार्तिक के महीने का एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बट दिस इज द नेचर नेचर ऑफ द कॉस्मोस और द एनवायरमेंट अराउंड अस। इफ वी डू गुड टू अदर्स, गुडनेस ग्रोस एंड कम बैक टू अस इन अनकाउंटेबल वेज, बट वी शुड लर्न हाउ टू डू गुड टू अदर्स। अगर हम दूसरों के लिए अच्छा कुछ करेंगे और वो अच्छाई हमारे पास किसी ना किसी तरीके से वापस आएगी, और ये एक जिंदगी की बहुत ही दृढ़ पहचान है जो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ये पॉइंट मैं आपके सामने आज रखना चाहूंगी, क्योंकि लीडरशिप की ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि हम दूसरों के लिए हमेशा अच्छा करें। अगर कोई बुरा भी है और वो हमारी बात नहीं समझ रहा, मैं इसलिए कह रही हूँ एक बार समझाएं, दो बार समझाएं, पर अपना पूरा टाइम उस पे वेस्ट नहीं करें, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग भी लाइन में खड़े हैं जो समझ रहे हैं, उनका नंबर भी आना चाहिए। इनको साइड करके इग्नोर नहीं करें, जिनको आप बदल रहे हैं शायद वो लोग उनको बदल दें। हम उनके लिए कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, हम उनको कुछ कह भी नहीं रहे हैं, पर हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान इनको सक्षम बुद्धि दे, जब इनके पास बुद्धि आ जाए शायद ये मेरी बात समझ पाए। ऑलवेज हेल्प अदर्स इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, बट जब आपका इंटरनल इनर पोटेंशियल इतना स्ट्रांग हो जाएगा, लीडरशिप क्वालिटी आप में आ जाएगी, तो आप तुरंत ही समझ पाएंगे कि वो डिफिकल्ट सिचुएशंस में उसको कैसे बाहर निकालना है। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी एम्पैथेटिक, आप अपने आप को सिचुएशन में डाल के देखिए, जो आप अपने लिए समझते हैं कि ठीक है, वो सलाह आप उसको भी दे सकते हैं कि इन सिचुएशन से बाहर कैसे आया जा सकता है। पर सिचुएशन से बाहर उनको आना है, आपको नहीं। यू आर द एनेबलर, यू आर नॉट द डूअर फॉर देम। जब आप एनेबलर बनेंगे और उनकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे एनेबलमेंट के ऊपर, तो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली यू आर क्रिएटिंग द पावर इन देम, यू आर इनकलकेटिंग द पावर इन देम टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। और सक्सेस कहाँ रहती है? सबसे पहले सक्सेस आपके अंदर रहती है, आपकी आपके एक्शंस में रहती है, कि बिकॉज सक्सेस इज द आउटकम ऑफ योर एक्शंस। एक्शंस कहाँ से आते हैं? आपके माइंड से आते हैं। माइंड में क्या आता है? थॉट प्रोसेस आते हैं। थॉट प्रोसेस कहाँ से आते हैं? आपके पॉजिटिव, जो पॉजिटिविटी है उससे आपके थॉट प्रोसेस का बहुत ही गहरा संबंध है। दूसरी बात ये यहाँ पे कि सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऐसी ऐसी जगह पे बैठी हूँ, बीइंग अ कंट्री डायरेक्टर, जो बहुत सारे सेंटर्स हैंडल करती है, बहुत सारे लोगों को हैंडल करती है, बहुत सारे सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करती है, आपकी बात डोनर्स तक रखती है, डोनर्स की बात आप तक रखती है। पर अगर मेरे में सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल इन एनी सिचुएशन, सबसे पहला सेल्फ कंट्रोल क्या है? हम अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करते, हम किसी की बातों के बहाव में तो नहीं आते, हमें कोई कोई चरा तो नहीं रहा, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज बोल रही हूँ, कोई हमें चालाकी से हमारा माइंडसेट तो नहीं चेंज कर रहा है, कोई हमें गलत रास्ते पे चलने के लिए तो नहीं कह रहा है, कोई हमें कोई हेरा फेरी करने के लिए तो नहीं कह रहा है, तो अगर ये सारे सेल्फ कंट्रोल के करेक्टरिस्टिक्स हैं और हम एक-एक करके अपने आप में इसको दृढ़ करते रहते हैं, तो ये एक लीडर की बहुत बड़ी पहचान होती है कि वो हमेशा, फिर बाहर वाले लोग क्या कहते हैं, शी इज अ रॉक, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज हर, यू कैन नॉट चेंज हर थॉट प्रोसेस, शी विल नॉट कम इन टू योर टॉक्स, है ना। तो लोग आपके बारे में ऐसी बातें कहनी शुरू कर देते हैं। जब लोग ऐसी बातें कहते हैं दूसरों के सामने आपके बारे में, तो उनकी हिम्मत ही नहीं बढ़ती आपके बारे में, आपके सामने आके आपको कुछ गलत करने के लिए उत्साहित करें। ठीक है, ये पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो हमसे कोई इसके बारे में बात नहीं करता है, पर ये मैं क्यों आपसे चर्चा कर रही हूँ, बिकॉज यू आर द बडिंग लीडर्स। मेरे मेरी लाइफ में भी मेंटर्स थे जिन्होंने मुझे सिखाया, जो मुझे इस लेवल तक लेकर आए, और अगर हम ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं तो लाइफ में बहुत सारी चीजों की समझ आ जाती है कि हमने लाइफ को किस तरीके से आगे लेके जाना। ठीक है, और आप दूसरों को समझाने के लिए भी सक्षम हो जाती हैं। अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब तक हम अपनी लाइफ के गोल सेट नहीं करते हैं, हम दूसरों को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं कि तुम अपने लाइफ के गोल सेट करो, आई एम स्टैंडिंग देयर, आई विल सी टू इट दैट टू अचीव दोस गोल्स, नेवर एवर पॉसिबल। आपको अपने लाइफ के गोल भी सेट करने हैं। गोल, मैं बहुत बड़े बड़े गोल्स नहीं कह रही हूँ अभी, मैं छोटे छोटे गोल सेट करने की कोशिश करती हूँ। एक अपनी लिथार्जी को छोड़ दीजिए, जो काम करना है वो खुद प्रोत्साहित होके करिए। दूसरा, हम फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत छोटी बात करती हूँ, कि हम सुबह 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, हम कहते हैं कि हमारे दिनचर्या सेट हो जाए, पर हम उठ नहीं पाते। हमने 10 चीजें सोची हैं कि आज इस ये 10 चीजें आज के दिन में कर लेंगे, पर हम 2 ही कर पाते हैं। अगर 2 कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हम अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हम टाइम को ऐसे ही वेस्ट करते जा रहे हैं। अगर 10 में से हम 5 चीजें भी कर लेते हैं, तो दैट मीन्स वी आर मूविंग इन अ राइट ट्रैक, बिकॉज काम तो एक प्रार्थना है, एक वर्शिप है, भगवान का नाम लेने की बात है। और अगर हम काम ही नहीं करेंगे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए, अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए, या अपनी जिंदगी को ऊपर उठाने के लिए, तो हम उसका मतलब ये सब कुछ हमारे थॉट्स में है, हम उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, इनका एक दूसरे के साथ तालमेल है, और अगर हम ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, करना शुरू कर दें, अब कैसे चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप देखो, संस्था को चलते हुए 16 साल हो गए, और अगर मैं अपना हर काम अगले दिन पे डाल दूं, उससे अगले दिन पे डाल दूं, उससे अगले दिन पे डाल दूं, कैसे संस्था ग्रो करेगी, नहीं कर पाएंगे ना। तो मैं ये एक बहुत साधारण सा एग्जाम्पल दे रही हूँ आपके सामने, और ये साधारण एग्जाम्पल करते करते करते करते कितना बड़ा एग्जाम्पल हो गया। और जो कुछ मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने अंदर की प्रैक्टिस आपको बता रही हूँ, मैं कोई किताब में से नहीं बता रही हूँ, मैंने कोई किताब नहीं खोली हुई है, कुछ भी मेरे सामने नहीं है, आई एम जस्ट शेयरिंग द स्टेप्स हाउ आई पॉलिश माई लीडरशिप क्वालिटीज, एंड आई वुड लाइक यू टू पॉलिश योर लीडरशिप क्वालिटीज। जैसे मैंने अपनी लाइफ में बदलाव लाए हूँ, वैसे मैं आप सब लोगों को अपनी जिंदगी की किताब खोल के आपके सामने रख रही हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इन सब बातों पे खरे उतरेंगे और अपनी जिंदगी में बदलाव लाएंगे। और हमेशा जो चीज आपको लगता है कि ठीक है, उसको अपनी जिंदगी का एक लॉ बना लीजिए। लॉ मतलब कि अगर मैं, बस ये मेरे लिए कानून बन गया है, उस कानून से मुझे हटना नहीं है। जब आप इस सिचुएशन पे आ जाएंगे तो आप रॉक बन ही जाएंगे, आपको कोई नहीं झुठला सकता, आपको कोई आपके दृढ़ विश्वास से डगमगाने की कोशिश भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो लॉ कैसे बनता है, जब आप रेगुलेशंस में आ जाते हैं, जो मैंने आपके साथ बातें करी हैं, आप अपनी लाइफ में उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देती हैं। प्रैक्टिस करने के बाद जब आप रात को सोती हैं तो आपको अंदर से ही ख्याल आता है कि मैं ठीक थी या गलत थी। देखिए मैं आपको बताऊं, जो हमारा मन है ना, वो हमारा आईना है। वो आईना पे थोड़ी सी भी धूल आती है ना तो हमको तकलीफ होती है। ये प्रैक्टिकल बात है। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ फिलोसफी की बात कर रही हूँ, आप अपने को अनम्यूट करके बाद में, बस 2 मिनट है मैं खत्म कर रही हूँ अपनी बात, आप मुझे बता सकती हैं कि उस आईने को कभी भी आप मैला नहीं होने दीजिए। ये मेरी आपसे प्रार्थना भी है और एक लॉ की तरह बोल रही हूँ। जिस दिन आपने अपने आईने को मैला कर लिया, उस दिन आपकी लीडरशिप क्वालिटी सब पानी में बह जाएंगी, धरी की धरी रह जाएगी। इसको तो आप एक मंत्र की तरह बांध लीजिए अपने साथ और हमेशा अच्छे कर्म करिए और सक्सेस की सीढ़ियों पर आस्था आस्था चढ़ने की कोशिश करिए। बिल्कुल ऊपर जाके गिरने की कोशिश मत करना। हमेशा सक्सेस जो आती है दृढ़ विश्वास से आती है, छोटे छोटे कदम लेकर आती है, और वो छोटे कदम लेके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे कदम स्ट्रांग होंगे, एक एक दृढ़ता से वो कदम लिए हुए होंगे, वो कदम कभी डगमगाएंगे नहीं। आपको अपने रास्ते से कभी भी अंधेरे की तरफ नहीं लेके जाएंगे, आप अपनी जिंदगी में रोशनी लाएंगे और दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी लाएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाह रही थी। अब कोई बोलना चाहता है तो प्लीज बोलिए, मैं अपना ऑफ कर रही हूँ स्पीकर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।
1: मैम नमस्ते, विजय बोल रहा हूँ बारा से। मैम
0: हाँ जी विजय जी बोलिए।
1: मैं मुझे आप बिना दीदी ने वापस रीड इंडिया में जोड़ा है।
0: हाँ जी विजय, बहुत अच्छी बात है।
1: मैं पिछले 1-2 महीने से लगातार अभी रीड इंडिया के साथ जुड़कर काम कर रहा हूँ। अभी परानिया में कंप्यूटर सेंटर खोला है हमने, तो वहाँ पे भी
0: वेरी नाइस
1: 25-30 लड़कियां और महिलाएं हैं, उसमें अधिकांश गांव की महिलाएं हैं, जो काफी दिनों से मुझसे कह रही थी कि कंप्यूटर सीखना चाहती हो, कंप्यूटर सीखना चाहती हो। तो फिर ये मौका दिया उन्होंने, मीना दीदी ने कहा एक प्रोजेक्ट चल रहा है अभी सोनी नेटवर्क का है हमारे पास, कुछ लोगों का ट्रेनिंग कर सकते हो तुम, तो उनको जोड़ लो। तो मैंने अभी शुरू किया है मैम, और अभी अभी रिसेंटली मैं अभी घट्टी में हूँ, घट्टी ग्राम पंचायत में हूँ। यहाँ पे कुछ लड़कियों को बुलाया मैंने, उनका नया नामांकन किया है, एनरोलमेंट किया अभी। तो उससे पहले आपकी मीटिंग थी तो मैं टाइम से जुड़ नहीं पाया, लेकिन आज आपने लीडरशिप के ऊपर बहुत अच्छा सेशन दिया कि खुद की क्षमताओं को पहचानना है, उसके साथ आगे बढ़ना है सच्चाई के साथ। तो ये बहुत अच्छा सेशन था आपका, अच्छा लगा मैम, और अभी लगातार जुड़ के काम करूंगा आप लोगों के साथ।
0: हाँ विजय जुड़े ही रहिएगा, क्योंकि हमारे पास और भी प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, और आपने जो अपनी स्किल्स डेवलप कर रही है उसको अब आपको दुनिया को दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, है
1: जी,
0: ना।
1: वही एक्सप्लोर करना है मैम, एक मंच चाहिए जो रीड जैसा बेहतर मंच मुझे शायद नहीं मिलेगा, तो एक बार फिर से शुरुआत करके वापस अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ।
0: ठीक है, महिपाल के टच में रहिएगा और महिपाल आपको बताएगा कि कैसे हम आपके स्किल्स को आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है,
1: जरूर
0: ठीक है, ठीक है। एनीबॉडी एल्स?
4: हेलो मैम।
0: हाँ जी, हाँ जी ज्योत्सना,
4: कैसे हैं मैम? मैं भाई जी आपको बहुत अच्छे से सुन रही है और सब लोग बहुत खुश हैं। आज हमारा सेशन बहुत टाइम बाद थोड़ा सा हुआ है, हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे, और सीरियसली हम लोग इस पे बहुत वर्क कर रहे हैं, सच पे और अपनी पोटेंशियल को जज करके काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने भी एक बहुत अच्छा सेशन स्टार्ट किया लेटेस्टली, छोटा सा ग्रुप बनाया है स्टूडेंट्स का, छोटे छोटे बच्चों का जो डांस कर रहे हैं। आशा मैम उनको हैंडल कर रही है। हाँ जी मैम, 2 छोटे छोटे बैच बने हैं, स्पेस के अकॉर्डिंग 5-10 बच्चे हैं टोटल, 2 बैच में 5-5, 6-6 स्टूडेंट, और मैम बहुत अच्छा है, बस अच्छे से सीख रहे हैं बच्चे, धीरे धीरे हम इस सबको आगे और प्रोसेस पे भी लेके जाएंगे। छोटे छोटे स्टार्ट कर रहे हैं मैम, लेकिन कोशिश करते रहेंगे, और लीडरशिप
0: बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, छोटे छोटे
4: हम
0: स्टेप्स से
4: सेशन
0: आगे
4: सुनते
0: बढ़ना।
4: हैं मैम, सीरियसली यू आर माई रोल मॉडल. ऑनेस्टली सबसे पहले तो मैंने आपसे पोलाइटनेस सीखी है, पर मेरे में अभी भी बहुत लगता है कि मुझे बहुत सीखना है. जब भी मैं आपको सुनती हूँ तो मैं दो स्टेप सीखती हूँ, दो स्टेप सीखती हूँ, धीरे धीरे जरूर उसको कन्वे करने की कोशिश करती हूँ. मैं थोड़ी और अच्छा पोलाइट और ट्रुथ वर्क कर सक. थैंक यू मैम, सब लोग थैंक
0: थैंक
4: यू बोलना चाहते हैं. थैंक यू
0: यू,
4: मैम.
0: थैंक यू सो मच। हेलो मैम, प्रिया बंसल फ्रॉम
2: अच्छा
0: बारान।
2: रिया बंसल बारान। यस यस
0: मैम ये मेरे साथ और 20 लर्नर्स और स्टूडेंट बैठे हैं। तो
2: यस
0: मैम जैसे आपने बोला कि जैसे मैं बहुत सारी गीता रेडी कर रही हूँ, तो मैम मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है। तो एक गीता मूवी है साउथ की, तो उसमें भी
2: अच्छा
0: जैसे आपका जैसा रोल है वैसे ही उस मूवी में गीता मैम का रोल है। तो जैसे स्टूडेंट्स को उनसे जो वो सलाह मिलती है, तो वो भी जैसे बहुत सारी गीता रेडी कर रहे थे। तो आप जैसे हमें आपसे सीखने को, सबसे पहली बात तो जब आपकी शक्ल देखते हैं, आपका फेस देखते हैं, तो आपकी वो पोलाइटनेस देख के अपने आप फेस पे स्माइल आ जाती है। तो आज का जो सेशन था मैम बहुत बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम।
2: थैंक यू। प्रैक्टिस करना है उसको, है ना?
0: यस मैम,
2: या सेंटर से बात कर रहे हैं हम, हमारे घर हम बात कर रहे हैं, हम
0: कहाँ से?
2: करेगा
0: कार्यगाम से। यस यस हाँ जी हाँ जी। नमस्ते,
2: मैम.
0: कैसे? सुवर्णा बोल रही है ना? हाँ ठीक है, कैसे
2: हाँ,
0: आप? हाँ
2: कंपनी के क्लास करते हैं हम बाहर जा नहीं सकते, यहाँ फ्री में बहुत अच्छा सिखाते हैं. मैं आपकी धन्यवाद देना चाहती हूँ.
0: थैंक यू थैंक यू।
2: थैंक यू
0: सुवर्णा, कुछ बोलना चाह रही हैं आप? ये
2: सो मच मैम.
0: आपकी लीडर है, सुवर्णा इज योर लीडर, है ना
2: हाँ
0: सुवर्णा?
2: मैम,
0: तुमको, हाँ तुमको सबकी जिंदगी बदलनी है। हाँ
2: हाँ हाँ मैम, बहुत अच्छा सेशन लिया मैम आपने. थैंक
0: चलो
2: यू सो मच मैम. और
0: ठीक
2: सभी
0: है,
2: स्टूडेंट का ये मानना है मैम, एक बार हमारे यहाँ पे सर्टिफिकेट देने के लिए आ जाए आप. मैंने
0: मैं
2: आपको
0: आऊंगी
2: लेटर,
0: पक्का पक्का, मैं
2: यस
0: आऊंगी
2: मैम, यस.
0: आपकी। मेरे को लेटर मिल गया था और वो ग्रीटिंग कार्ड भी मिल गया है जो मैंने
2: हाँ
0: अपने पास संभाल के रखा हुआ है,
2: हाँ
0: और ये मुझे
2: मैम,
0: याद दिलाता है कि मुझे जाना है आपके पास। तो मैं
2: हाँ मैम,
0: जरूर आऊँ, जरूर आऊँ।
2: ओके मैम,
4: थैंक यू सो मच मैम,
0: थैंक यू थैंक यू थैंक
2: थैंक यू
0: यू
2: मैम,
0: थैंक यू
2: बाय
0: सो
2: मैम.
0: मच, थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, ये सेशंस रेगुलर होंगे, बीच में किसी तरीके से नहीं हो पाए उसके लिए सॉरी, और हम हर हफ्ते मिलेंगे। प्लीज वेट फॉर दिस सेशंस एंड बी रेडी टू शेयर, आप भी कुछ शेयर करिएगा जरूर, ठीक है? ओके,
2: थैंक
0: ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर,
4: यू मैम,
2: थैंक यू मैम,
0: थैंक
2: बाय,
0: यू।
1: थैंक यू मैम.

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

अपने समुदाय की बात नहीं कर रही हूँ, पर पूरे पूरे जहान में मैं सबसे अच्छी हूँ, क्योंकि मैं रोज रात को सोने से पहले ये सोचती हूँ कि आज मैंने अच्छा काम किया क्या। और अगर मैं 10 काम भी रोज अच्छे कर लेती हूँ, तो साल के एंड में अगर मैं अपनी डायरी देखूंगी, जो मैंने पहले कभी बहुत बार ही बोला है कि अपनी डायरी लिखनी चाहिए, तो एंड ऑफ द ईयर मेरे पास इतने अच्छे कामों का खजाना हो जाएगा कि मैं कभी कुछ गलत करना ही नहीं चाहूंगी। मेरी सोच में से ही निकल जाएगा कि मुझे कुछ गलत करना है, तो नेचुरली देन आई एम द बेस्ट इन द होल वर्ल्ड। यू कैन सी हाउ वी कैन गो स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड टू रीचिंग अप टू दीस पॉइंट्स। दिस इज पॉसिबल इफ यू हैव अ पैशन। और पैशन क्या है? कंटेजियस है, एक बीमारी है छूत की। मैं आपको बताऊं, अगर मैं आज पैशनेट हूं कुछ करने के लिए, और जब तक मैं उसको कर नहीं लूंगी, मेरे को अंदर इरिटेशन होएगी, मुझे अंदर ये फीलिंग आएगी कि वाई आई एम नॉट एबल टू डू। तो ये सारी चीजें भी हमें ध्यान रखनी है। वॉचिंग ए पैशनेट लीडर एनर्जाइजेस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जो लीडर होता है वो दूसरों में भी पैशन की वो आग लगा देता है कि यू शुड ऑल्सो बिकम पैशनेट। और जो पैशनेट नहीं है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में टिक ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जो लीडर है वो इतना एनर्जाइज करता है सबको कि वैल्यूज की बात करेगा, गोल्स की बात करेगा, परफेक्शन की बात करेगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की बात करेगा, अपने ये जो एटीट्यूड्स हैं और जो अपनी वैल्यू सिस्टम है वो सबको बार बार बार बार शेयर करेगा। तो ये क्या है, एक कंटेजियस भी हो जाता है, और वो जो पैशन है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन को, जो लीडरशिप है सारी ऑर्गेनाइजेशन को एनर्जाइज कर देती है। तो लीडर्स सेंस ऑफ पैशन एंड जॉय सेंस ए टिंगल डाउन टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। टिंगल डाउन का यहाँ पे क्या मतलब है कि वो हमेशा पोक करता रहता है कि यू जस्ट मूव टुवर्ड्स परफेक्शन, यू जस्ट मूव टुवर्ड्स आई शुड से दैट कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन द फ्रंट लाइन। उसकी प्रोग्रेस के लिए हम बात करते रहे, द रिजल्ट इज प्योर मैजिक। व्हेन यू विल डू दिस यू विल नॉट रियलाइज कि आपके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। अब आप देख लो, रीड इंडिया को देख लो, अगर हमारे में पैशन नहीं होता, अगर मेरी टीम एनर्जाइज नहीं होती, तो क्या हम 1 करोड़ की बैलेंस शीट से 13 करोड़ तक पहुंच जाते, या 10 करोड़ तक पहुंच जाते 13 साल में? पॉसिबल ही नहीं था, बिकॉज काम ने अपने आप को दिखाया। हमने काम किया, हम एक्सपैंड हुए, हमने इतने सारे सेंटर्स बनाए, तो जो रिजल्ट अभी हमारे सामने आया है तो हम उसको डॉक्यूमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। वो इतना मैजिक आउटकम आ गया हमारे सामने। हमें जो भी कोई कहता है कि आप इतना काम कैसे कर रहे हो, पर हम कर रहे हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है, काम तो नजर आ रहा है ग्राउंड पे, आपके सामने है जो आप काम कर रहे हो। और अगर आप लोग भी डॉक्यूमेंट हमारे लिए, तो इट्स टू लेट टू डॉक्यूमेंट नाउ कि आप मुझे पिछले 13 साल का वो लिखना पड़ेगा, पर आप लोग तो अभी से लिखना शुरू कर दो। आप क्या कर रहे हो, लिखना क्या है, आप लोगों के टच में हो, कोई भी स्टोरी आपको अच्छी लगती है आप अपनी डायरी में लिख लो, कोई भी काम आपको अच्छा लगता है आप अपनी डायरी में लिख लो, किसी की भी लाइफ आपने ट्रांसफॉर्म करी है जो आपके सामने आके बता रहे हैं कि हाँ मेरी लाइफ में ये चेंज आ गया, आप उसको लिख लो। आपने जो ट्रेनिंग करी उसके बारे में लिख लो, जो भी आपने काम किया उसका क्या आउटकम आया, अपनी सिंपल लैंग्वेज में आप उसको लिखते जाओ। तो ये क्या होगा, आपका एक इतना बड़ा डॉक्यूमेंट बन जाएगा कि आप किसी भी ऑथर को दोगे वो बोलेगा अच्छा मैं प्रिंट कर देता हूँ इसको, ये तो बड़ी अच्छी स्टोरी है जो ग्रास रूट से उभर के आई है, जो एक्चुअली द नेक्टर ऑफ सोशल डेवलपमेंट, आई शुड से द एसेंस ऑफ सोशल डेवलपमेंट जो है वो आप लोग कर रहे हो। एंड इट्स अ फैक्ट, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा है जो सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो काम करते हैं, जो फंड रेज करते हैं, पर
पर मैं उन सबको एक साइड पे रखूंगी, पर जो काम आप लोग कर रहे हो उसको मैं बहुत ही हाइट पे रखूंगी, बिकॉज डायरेक्ट कम्युनिटी के साथ काम करना ही एक सोशल डेवलपमेंट का मकसद है, ठीक है? जो रिजल्ट्स नेचुरली दे विल बी मैजिकल रिजल्ट्स, तो हमें उस सिचुएशन तक अपने आप को लेके जाना है। नेगेटिविटीज आती हैं, गुस्सा मुझे भी आता है, मैं भी बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ, पर मैं इमीडिएटली अपने आप को करेक्ट कर लेती हूँ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके कि नहीं, मुझे राइट स्टेप लेना है, मुझे नेगेटिव नहीं जाना। और अगर इस चीज को मैं डिले कर देती हूँ ना, तो उतना ही जो मैजिकल रिजल्ट्स हैं वो वापस आने शुरू हो जाते हैं। आपको पता है नेगेटिविटी कितनी स्पीड से चलती है, पर पॉजिटिविटी को पकड़ के हाथ में रखने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। ये सबको पता है, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड नेगेटिव हाईएस्ट स्पीड से भागता है, पर उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये पैशन और जो मैं बात कर रही हूँ, हंगर और डिसिप्लिन, ये बहुत तीनों चीजें लिंक करती हैं। आर यू एमिंग टू बी बेस्ट यू, ठीक है? तो चलो हम हंगर की बात करते हैं। यू वॉन्ट टू विन एंड यू हैव टू विन, ये सबको पता है। ये तो मैं अभी पिछली स्लाइड्स में भी मैंने इनडायरेक्टली बोल दिया है कि हमें विन तो करना ही है। इफ यू वॉन्ट टू विन यू मस्ट फर्स्ट फील हंगरी फॉर यू। हंगर जब तक नहीं आएगी हम कैसे विन करेंगे? When we swim, we keep our mouth out of water to breathe. We cannot put our head in water for long time as we need air to breathe. अगर हम अपना सिर पानी में डुबो के ही तैरते जाएंगे तो हमें सांस कैसे आएगा? इवन फिश भी अपना मुंह थोड़ा सा बाहर करती है पानी से, कभी कभी उसको हवा चाहिए होती है। When you want to win and need wisdom as badly as you need the air when you are underwater, you will get it because you struggle to get the air and relaxed when you got it. तो ये बहुत एग्जाम्पल डायरेक्टली रिलेटेड है आपके विजडम से। जब आपको कुछ चाहिए और आप बैडली उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि जब अपना सर आप पानी में डुबा के तैरते हो तो आपको उस समय क्या चाहिए? हवा चाहिए, एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए। तो आप डेस्परेटली अपना सिर बाहर करते हो एयर लेने के लिए। और जब आप चल रहे हो एंड यू वॉन्ट टू विन, यू वॉन्ट टू अकॉम्प्लिश, एंड वेन यू आर स्ट्रगलिंग टू अकॉम्प्लिश एंड यू गेट द रिजल्ट्स, देन यू फील रिलैक्स। उसमें गैप क्या था? जब हम स्विम कर रहे हैं एयर का गैप था, और जब हम अपना काम करते हैं तो हमारे सामने कोई भी गैप आ सकता है, और उस गैप को फिल करने के लिए, उस चीज तक पहुंचने के लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है। और जब हम स्ट्रगल करते हैं तो हम रिलैक्स्ड फील करते हैं कि मैंने एक मकाम या दो मकाम या तीन मकाम अपने पार कर लिए अपनी हार्डशिप से, अपने स्टेप से। सिमिलरली व्हेन यू वांट टू रियलाइज योर पैशन यू नीड हंगर, एंड व्हेन यू आर एबल टू गेट द फूड यू रिलिश यू रिलैक्स। अगर सिंपलेस्ट वर्डिंग में मैं बोलूं, हम रोज सुबह उठते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, किसके लिए? लेबर को देख लो, हमें देख लो, बड़ों को देख लो, एक्सेप्ट जो माल फंक्शनल है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। हम सब लोग अपने घर से निकलते हैं एक गोल के लिए कि हमें पैसा चाहिए सर्वाइवल के लिए। पैसे से हमने खाना खरीद है, अपनी फैमिली को चलाना है, अपने परिवार को चलाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। हम ये सब अचीव कर रहे हैं, स्ट्रगल करते हैं। किसी को नौकरी नहीं मिलती, वो भी स्ट्रगल करता है। किसी को कुछ और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो उनके लिए स्ट्रगल करता है। पर जब हम उनको अचीव कर लेते हैं तो हम रिलैक्स फील करते हैं। यही पैशन हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी होना चाहिए, ठीक है? तो ये मैं फिर ये मैं पैशन और हंगर को कोरिलेट कर रही हूँ। तो लास्ट में मेरा एक ही पॉइंट है कि डू नॉट गिव अप, कोई
कोई भी चैलेंज आता है तो प्लीज डू नॉट गिव अप, जस्ट ट्राई टू रिजॉल्व इट. अब तीसरा पॉइंट क्या है, डिसिप्लिन. हमने हंगर की बात कर ली, पैशन की बात कर ली, द मैजिक इन योर हेड फॉर एक्शन. वंस यू हैव द पैशन एंड हंगर, यू विल सी अ रोड एमर्ज इन फ्रंट ऑफ यू लीडिंग यू टू योर गोल. ये हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था. देयर विल बी ऑब्स्टेकल्स ऑन द वे, देयर विल बी रोड ब्लॉक्स. You need discipline to do right things.

0: वो ये भी नहीं कहते कि आज तो मैं पिक्चर देखने चला जाता हूँ, आज अपने फुटबॉल की क्लास मिस कर देता हूँ। कितना वो डिसिप्लिन रखते हैं अपनी लाइफ में, कितना उनके अंदर पैशन होता है, कितना उनके अंदर हंगर होता है उस गोल्ड मेडल को लेने के लिए। सिमिलरली जो बच्चे ब्राइट हैं, जो स्कूल में स्कॉलरशिप्स और आगे बढ़ते हैं, उनकी मेहनत और जनरल एक किसी भी बच्चे की मेहनत को हम कंपेयर करें तो फर्क होता है। बिकम अ पैशनेट हंगरी एंड डिसिप्लिन पर्सन, सक्सेस इज कॉलिंग, आर यू रेडी? यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। तो ये तीनों पॉइंट्स पे, पैशन, हंगर और डिसिप्लिन में कोई कोई सुझाव और देना चाहते हैं? किसी के दिमाग में कोई और बात आ रही है या कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हम ऐसा करते हैं, 5 मिनट डिवोट करते हैं इस पे, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है? तो आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं।
1: गुड आफ्टरनून मैम, अकबर बोल रहा हूँ रामपुर से। मैम पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपका जो ये प्रेजेंटेशन थी जो आपने हमें समझाया, एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल थी, इनलाइटनिंग थी। हमें बहुत ज़्यादा मतलब एक मोटिवेशन फील हो रहा है कि डिसिप्लिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसको मेंटेन करना आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ डिसिप्लिन में अपनी लाइफ लाने की, लेकिन कभी ना कभी ऐसा मुझे हो जाता है कि वो फिर ब्रेक हो जाता है और फिर उसको रीगेन करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, मतलब ट्रैक पे वापस आने के लिए। वो कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर मैं चाहूँ कि मैं प्रे करूँ, मैं नमाज के लिए अगर बोलता हूँ कि मैं अपनी एक स्पेसिफिक टाइम से नमाज पढ़ता रहूँ, वो नहीं होता है, बीच बीच में छूट जाता है, तो ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपने जैसे बोला कि इसको कंटिन्यू रखो, एक कंसिस्टेंसी में अगर लाना है तो उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। लेकिन मेरा एक आपसे सवाल भी है, अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे पास पैशन भी है, हंगर भी है, हम डिसिप्लिन में मेंटेन आने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो हम फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं कि यार हमने इतना कुछ करा और फिर भी हमें ये चीज़ नहीं हासिल हुई, तो उसके लिए हम क्या करें फिर?
0: एक तो जो मैंने पॉइंट बोला है ना कि आप लिखो जरूर आप क्या कर रहे हो, दैट इज रेफरेंस बैक, रिफ्लेक्शन ऑन व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन द पास्ट। और जब हम नहीं एनालाइज करते, स्मिता मेरा सेशन अटेंड कर रही है, हम दोनों एक ही कमरे में बैठते हैं, और स्मिता आपको बता सकती है कि कितनी बार मैं ऑफिस में कोई गलती होती है और वो गलती मैं अपने ऊपर लेती हूँ और मैं इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ, और इंट्रोस्पेक्ट करके अगले दिन सुबह ही 6 बजे या 7 बजे ऑफिस आने से पहले उसके ऊपर मेल लिखती हूँ, और मैं डिस्कस करती हूँ स्मिता से, शिवम से, और मैं इनको भी बोलती हूँ कि हमें इंट्रोस्पेक्ट करना, इंट्रोस्पेक्ट मतलब कि खुद सोचना है कि हम कहाँ गलत थे, इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि द अदर्स वर रॉन्ग। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, नॉट सेइंग दैट यू कोरिलेट विद योर थिंग, बट दिस इज द प्रैक्टिस आई डू एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे। और जो मैं बात करती हूँ ऑफिस में, वो कोई इलॉजिकल नहीं होती है, उसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक होते हैं। और मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं ये कहती हूँ कि मैं ये आपके सामने रख रही हूँ, आप बताओ कि ये ठीक है कि। तो व्हाट आई एम डूइंग, ए आई एम रियलाइजिंग वेयर आई हैव गॉन रॉन्ग, दैट्स व्हाई आई से दैट वी शुड रन राइट। सेकेंड पॉइंट, आई एम डिस्कसिंग माई मिस्टेक विद एवरी वन, प्लीज टेल मी वेदर आई वॉज रॉन्ग और नॉट। और क्या मैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मैं दूसरों को भी इन्वॉल्व कर रही हूँ अपने साथ, फिर मैं उनसे पूछती हूँ, फिर हम कलेक्टिवली एनालाइज करते हैं कि हम ठीक है या गलत है, फिर उसके ऊपर जो कलेक्टिव डिसीजन आता है हम उसको आगे लेके जाते हैं। नाउ इन योर केस, पैशन इज देयर, हंगर इज देयर, डिसिप्लिन इज देयर, बट समवेयर वी आर पुशिंग आवरसेल्फ्स बैक। और वो क्या चीज है? हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, क्योंकि हम ये पैशन, हंगर और डिसिप्लिन को अपने

0: माइंड और ब्रेन के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते हैं, राइट? मैं भी ये गलत करती हूँ, मैं बहुत बार ही सोचती हूँ कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, मैं नहीं कर पाती हूँ. मे बी बिकॉज लैक ऑफ टाइम, मे बी आई एम नॉट एबल टू सिंक्रोनाइज ऑल दीज थ्री थिंग्स विथ माई ब्रेन एज वेल एज माई माइंड. और मैंने अभी बोला है ब्रेन और माइंड नेगेटिव बहुत स्पीड से भागता है, पॉजिटिव की लेस स्पीड होती है, और इसकी रेशियो होती है 80:20. 80% तो नेगेटिव चला जाता है, हमारा माइंड सेकेंड्स में नेगेटिव चला जाता है. पर हमें साथ साथ वो भी प्रैक्टिस अपनानी है कि हम अपने नेगेटिव माइंड को कैसे कंट्रोल करके रखें, और ये प्रैक्टिस से आता है. इसके पीछे कोई थ्योरी नहीं है, मैं आपको इसके ऊपर बता भी नहीं सकती कुछ, क्योंकि आपका अपना माइंड है, हर एक का अपना अपना माइंड है, हर एक का अपना अपना ब्रेन है. तो उसको कैसे सिंक्रोनाइज करना है इन तीनों चीजों के साथ, और कैसे उसको डिसिप्लिन में लाना है, ये आपके हाथ. Am I able to answer your question?
1: Yes, ma'am. Very right. मतलब बहुत ज़्यादा useful.
0: तो
1: Thank
0: ये
1: you.
0: प्रैक्टिस से आएगा अकबर. ये अभी तो 3 हफ्ते हुए आपको ये सेशन अटेंड करते हुए, और आपको ये चीजें शायद पहले हम अपनी रूटीन में इतने बिजी होते हैं कि इन चीजों के ऊपर हम बात भी नहीं करते हैं. तो ये इसीलिए हफ्ते में 2 सेशन रखे गए हैं. ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस भी सिंक्रोनाइज हो रहा है हर एक चीज के साथ, राइट? तो
1: यस मैम.
0: और किसी का कोई क्वेश्चन? और जो मैंने अभी बताया है, आप लोग सहमत हैं उस चीज के साथ या हवा में लग रहा है कुछ? गीता मैम हवा में बात कर रही है कि आपका लिंक इतना स्ट्रांग बन जाए कि हर एक लिंक आपके साथ आगे बढ़ता जाए. तो ये मेरी कोशिश होती है, तो इसलिए मैं इधर रुक गई पैशन हंगर और डिसिप्लिन में. अब आगे मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने वाली हूँ, ठीक है? जैसे आप टी बैग नहीं भूल पाए, जैसे माउंटेन की क्लाइंबिंग नहीं भूल पाए, ऐसे आप ये स्टोरी भी रखेंगे और बहुत सारे लोगों को सुनाएंगे, और सबसे पहले घर के लोगों को भी सुनाएंगे. तो हम ये स्टोरी सुनते हैं, ठीक है? मैं क्यों ये स्टोरी हाईलाइट कर रही हूँ कि वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी. बींग अ मदर आई कैन वेरी वेल को रिलेट माई सेल्फ विद दिस स्टोरी, एंड बींग अ फादर ऑल्सो इन फ्यूचर यू कैन ऑल्सो वेरी वेल को रिलेट विद दिस स्टोरी. तो एक जो बेबी जिराफ होता है गाँव में, सीमा कैन वेरी वेल को रिलेट क्योंकि वो एक फॉरेस्ट के साथ रहती है. तो हम एक बेबी जिराफ की मदर से ये स्टोरी सुनते हैं. और जब बेबी जिराफ पैदा होता है ना, तो जिराफ तो बहुत ऊंचा होता है, तो जब बेबी वूम से निकलता है तो वो पटैक करके जमीन पे गिरता है. चोट तो उसको तब लगती है जब वो पटैक करके जमीन पे गिरता है. उसकी मदर उसको प्यार करती है, उसके फोरहेड पे अपनी गर्दन नीचे करके किस करती है, पर इमीडिएटली वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लेती है, और वो उसको जोर से नीचे उठा के ऊपर हवा में फेंकती है न्यू बॉर्न बेबी को, और वो फिर पटाख से गिरता है. और वो कांपता हुआ जब जमीन पे गिरता है, उसकी मदर को अंदर बहुत पीड़ा होती है, पर वो उसको बार बार रिपीट करती है, बार बार रिपीट करती है, जब तक उसके हाथ और टांगे उसके वो जो गोल बॉडी, जैसे वो गिरता है बच्चा जब पैदा होता है, एवरीबॉडी नोस कि जब उसके हाथ और पैर खुल नहीं जाते, तब वो इतनी खुश होती है कि मैंने अपनी एक सीढ़ी क्लाइंब कर ली, अपने बच्चे को पैर करके उसको उसके पैरों पे खड़ा कर दिया. सीइंग द चाइल्ड स्टैंडिंग ऑन इट्स फीट, अनदर किक इज गिवन टिल द चाइल्ड स्टार्ट्स रनिंग. फिर वो उसको दोबारा से किक करती है ऊपर उठा के. यू कैन इमेजिन द जिराफ हाइट, वो इतना ऊपर हवा में फेंके, वो फिर न्यू बॉर्न बेबी को नीचे फेंकती है, जिससे वो बच्चा दौड़ना नहीं शुरू कर देता. पर उसके पीछे उसका एक बहुत बड़ी सोच होती है, जो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे. और हम क्या करते हैं कंट्रारेरी, जब हमारा बच्चा पैदा होता है और जब तक बड़ा नहीं हो जाता, हम उसको इतना प्रोटेक्टेड रखते हैं, इतना प्रोटेक्टेड रखते हैं हर एक चीज से, कि उसकी जो सेल्फ लर्निंग है हम कहीं ना कहीं उसको किल कर रहे हैं। यही एक लीडरशिप क्वालिटी को जब मैं कोरिलेट करती हूँ तो हमें सबको ग्राउंड पे काम कैसे करना है उसकी एक सैक्रिफाइसिंग नेचर होनी चाहिए। कैसे हमने ग्राउंड में लोगों को एम्पावर करके आगे लेके जाना है। और इस स्लाइड से मैं आपको एक स्टेप आगे लेके जाऊंगी कि अगर हमें मुश्किलों में भी काम करना हो और दूसरों को भी मुश्किल में डाल के काम करवाना हो उसमें हिचकना नहीं चाहिए। आप हमेशा उनको जिराफ की स्टोरी सुनाए, ठीक है। और वो क्यों ऐसे करती है, उसके पीछे उसकी कोई गलत इंटेंशंस नहीं होती है, उसकी कोई गलत भावना नहीं होती है। नेक्स्ट स्टोरी में हम ये देख रहे हैं कि व्हाट इज द गोल ऑफ मदर जिराफ। मदर जिराफ कहती है कि वो सोचती है कि मेरा बच्चा पैदा हो रहा है, ये जैसे ही पैदा होगा अगर ये भागा नहीं, अगर ये चला नहीं, तो इसको लायन या लेपर्ड्स खा जाएंगे, क्योंकि सॉफ्ट मीट है, मीट बहुत डिलीशियस है और मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां से भाग जाऊंगी। पर वो अगर कंपैरिजन करेंगे, मैं अगर लायन को कहती हूँ या लेपर्ड को कहती हूँ तो मेरे बच्चे को छोड़ दे तो मेरा मीट खा ले, तो वो बच्चे का मीट ही प्रेफर करेगा, बिकॉज दैट इज सॉफ्ट, दैट इज फ्रेश एंड उसको वो टेस्टी लगता है। तो मदर जिराफ कंसीव करने से पहले ही ये हैबिट डाल लेती है कि जैसे ही मेरा बच्चा पैदा होगा उसको मैंने कैसे सड़क पे दौड़ाना है, कैसे जंगल में दौड़ाना है। तो अनलेस द बेबी जिराफ क्विकली लर्न्स टू स्टैंड एंड रन, इट हैज नो चांस ऑफ सर्वाइवल। जिराफ की पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी, बिकॉज ये सब लोग आपको पता है फॉरेस्ट में इकट्ठे रहते हैं और ये जिराफ जो है मदर जिराफ का एक कमिटमेंट होता है अपने बेबी की तरफ कि जैसे ही पैदा होगा मुझे इसको दौड़ाना है, राइट। सो द टेक अवे फ्रॉम द स्टोरी इज द लेसन्स वी लर्न अर्ली बिकम पार्ट ऑफ आवर हैबिट आउट इंस्टिंक्ट एंड हेल्प अस स्टैंड इन बेटर पोजीशन ऑल थ्रू आवर लाइफ्स। तभी कहते हैं ना कि बच्चे का 8 साल तक ब्रेन चलता है। हम अपने मॉन्टेसरी स्कूल्स में भी कहते हैं कि अगर हम बच्चे को 8 साल तक अच्छा अच्छा पढ़ा दें, अच्छा सिखा दें, उसकी हैबिट्स बना दें, तो उसका ब्रेन नई चीजें एडॉप्ट करने के लिए तैयार रहता है और 8 साल के बाद जब वो बुकिश नॉलेज तो वो उसी को ग्रहण करता है। तो ये हमारा लेसन है कि हम दूसरों के साथ जब काम कर रहे हैं हम उनको उनके पैरों पे खड़े होने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम उनको उनके पैरों पे खड़े होने के लिए आगे बढ़ने के लिए ये सब ट्रेनिंग दे रहे हैं। रीड का मॉडल यही है। अगर उनको सेटबैक्स लगते हैं, उनको मेहनत करनी पड़ती है, हमें औरतों को उनके जो कैकून्स में है, जो अपने आप को कोजीनेस में रखती हैं, उनको हमेशा पहले यही, तभी ये क्वेश्चनर क्यों बनाया था कि आप उनसे पूछो कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहो तभी आप ज्वाइन करो, उसको हॉबी नहीं समझो। तो ये कितनी स्टोरी कोरिलेट करती है इन सब बातों से। आप प्लीज ये सबको सुनाइए स्टोरी। वी नीड टू लर्न टू गेट बैक टू ऑन आवर फीट। वी लिव सच प्रोटेक्टेड कोकून लो रिस्क लाइफ इन आवर अर्ली इयर्स दैट वी आर नॉट क्वाइट प्रिपेयर्ड फॉर द बिग बैड वर्ल्ड देन वी एंटर इट। आप समझ के, हमने एज रखी हुई है लड़कियों के 20 से 45 साल तक। अब गांव की औरत जो है, लड़की जो है, वो 20 साल तक तो इतनी प्रोटेक्टेड रहती है कि उसके घर वाले भी उसको बाहर नहीं जाने देते। और रीड क्या कोशिश कर रहा है कि उनको घर में ही रख के उनको ट्रेनिंग दे रहा है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। हम उनके कल्चर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, हम उनको स्लोली एंड स्टेडिली बाहर आने की कोशिश करवा रहे हैं और हम उनको फैमिली से अलग भी नहीं कर रहे हैं। हम उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके डायनामिज्म को रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट करते हैं। तभी तो हम उनके पास जाके आप लोगों को सबको सेंटर्स खोल के दिए कि आप उनकी लाइफ में बदलाव लाइए। यू हैव टू एक्ट एज अ जिराफ मदर। उनको किक करिए, किक इन द सेंस नहीं उनको मारना नहीं है, पर उनको बोलो कि आपको टाइम निकालना है, ये आपके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। शायद सीमा जी की किस्मत में वापस जाना इसलिए लिखा था गुड़गांव से कि आपने बहुत सारे लोगों की लाइफ्स को बदलना था, राइट? आप इस तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटी को ढूंढिए, अपने अंदर जो वो मैं पैशन की बात कर रही हूँ, हंगर की बात कर रही हूँ, आप उसको लिखिए कि आप क्यों गए। सीमा जी, यू विल डू द बेस्ट वर्क व्हेन यू विल राइट द डे यू वेंट बैक टू योर विलेज, द डे यू ओपन द सेंटर, द डे यू स्टार्टेड वर्किंग विद दिस वुमन एंड यू ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स। So we need to convert our habits to our strong culture and values. Akbar, this sentence is for you. This is the answer for your question. हमारा जो 80% mind negative चला जाता है, उसको हम positive कैसे करें, उसको values के साथ कैसे convert करें, और within our culture, how we can focus on values, keeping in view the passion, hunger and discipline. Is it okay? आगे बढ़े। ये मेरी लास्ट स्लाइड है। लेसन्स लर्न फ्रॉम द स्टोरी को रिलेटेड विद लीडर्स। स्टडी द लाइव्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। अब वो जिराफ मदर तो सक्सेसफुल हो गई ना, उसने अपने बच्चे को दौड़ना पहले दिन ही विद इन वन आवर ऑफ हिज और हर बर्थ उसने सिखा दिया कि चलो भाई दौड़ना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो कितना बड़ा रिस्क से वो अपने बच्चे को दौड़ना सिखा रही है। और जो हम अगर सक्सेसफुल लोगों की लाइफ पढ़े तो वो भी ऐसे ही एडवर्सिटी में आगे बढ़े हैं। अगर मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल दूं, मैं बहुत प्रोटेक्टेड थी जब मैंने 24 साल तक पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया में काम करा था। बहुत सारे स्टालवर्ड्स या डिटाटा, एस पी गॉडरेज, सिंघानिया, ये वो सब बहुत लीडर्स, मेन भी वुमेन भी, वी वर जस्ट प्रोटेक्टेड चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ देम। बहुत हमें प्यार करते थे, नर्चर करते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज 30s। शादी भी मेरी शायद PFI से पहले हो गई थी, उषा इंटरनेशनल, नहीं PFI में, पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर दैट इयर्स नाउ। बट मैं जब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ज्वाइन किया, इवन PFI में भी मैं ट्रैवल करती थी पर हम इकट्ठे करते थे, पर जब मैंने वनवर्ड साउथ एशिया में ज्वाइन किया तो मुझे अकेले ट्रैवल करना था। एंड माय फर्स्ट ट्रैवल वाज टू नेपाल। फाइन, नेपाल में कंट्री ऑफिस था, बट श्रीलंका हमारी वो कंट्री डायरेक्टर थी पर कोई ऑफिस नहीं था। अब रात को 12:30 बजे यहाँ से फ्लाइट जा रही है, मैं अकेले जा रही हूँ, कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया, डर लग रहा है एयरपोर्ट पे भी। फ्लाइट 2:30 बजे श्रीलंका पहुँचती है और श्रीलंका एयरपोर्ट से जो सिटी है वो 2.5 घंटे का डिस्टेंस है। मैं अकेली टैक्सी में रात को ड्राइव कर रही हूँ। यू कैन इमेजिन द स्टेट ऑफ माई माइंड। आई वॉज सो स्केर्ड, पर भगवान को याद कर करके मैंने अपने ऑफिस में, मैं अपने आप को वीक भी नहीं शो करना चाह रही थी, ठीक है भाई अब पोजिशन लिया है तो ट्रैवल तो करना ही है, ट्रैवल कर रहा। और वहां पे मैंने बोला मुझे ना होटल नहीं चाहिए, मुझे कोई गेस्ट हाउस बुक कर दो, जो कम्युनिटी स्टे वाले गेस्ट हाउस श्रीलंका में बहुत हैं बिकॉज इट्स अ टूरिस्ट प्लेस। एंड दे बुक्ड मी इन अ हाउस ऑफ ए तमिलियन फैमिली where one lady was staying alone, that lady was old lady. Okay, fine. I reached there by 3:34 early morning, very early morning. Khola darwaza samne, itna bada sher babba jaise dog. Aur main to dog se itna darti hoon ki, oh God, main to puri raat apni khidkiyan, darwaze, sab kuch बार बार देख रही थी कहीं खुला तो नहीं है, कोई पक्का दरवाजा है या वो डॉग टांग मारेगा तो दरवाजा खुल जाएगा, कुंडी मजबूत है या नहीं है। तो दीज वर एडवर्सिटीज फॉर मी, आई एम शेयरिंग द लाइव एग्जांपल विद यू। वो औरत, मैं सुबह 6 बजे उठने वाली लड़की, अपने कमरे से 8 बजे तक बाहर नहीं निकली क्योंकि मुझे यही डर था कि मेरे दरवाजे के बाहर ही वो डॉग बैठा होगा। then I called my director there, ki, see, I'm stuck in this situation. I'm scared of the dogs. So please call the owner of the house and tell her to keep the dog in the backyard so that I can have my breakfast and leave this place. That's how I solved my adversities. और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन, ये तो एक एग्जाम्पल, मैंने बहुत लाइट एग्जाम्पल दिया है. टू रीच टू दिस लेवल टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन आई कैन राइट बुक्स एंड बुक्स ऑन द एडवर्सिटीज आई फेस्ड. मेनी एडवर्सिटीज, मेनी मेनी एडवर्सिटीज, इंक्लूडिंग सम पॉलिटिक्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. सो इट्स नॉट, द जर्नी इज नॉट ईजी. सो were they always successful in all they did? No, big no, capitals. Hamesha tum galtiyan karke hi seekhte ho. Did success come to them quick and easy? No, not at all. Aaj main kyun manage kar pa rahi hu organization? Kyunki mere piche koi theory ki knowledge nahi hai. Practical knowledge hai combination with combination of my academic knowledge, tabhi main kar pa rahi hu. तो एक्सपीरियंस, सेटबैक्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं. तो हमें कभी भी हारना नहीं है. सो देयर इज अनदर फेदर इन योर कैप दैट यू आर गोइंग टू रजिस्टर योर एनजीओस. फ्यू ऑफ द सेंटर्स, दोज हु हैव कंप्लीटेड बियॉन्ड 5 years एंड रेस्ट ऑफ द सेंटर्स वी विल डिस्कस 1-to-1. तो यू आर गोइंग टू फेस मैनी मैनी चैलेंजेस, बट थिंक ऑफ योर सेल्फ आफ्टर 10 years, यू विल बी द लीडर्स. मुझे तो ये ट्रेनिंग किसी ने दी नहीं जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, फिर भी हमने सीखा. पर आप तो आधे सीख के चले हो आगे, बिकॉज आप यू आर वर्किंग डायरेक्टली विद द कम्युनिटी. आधा आप सीख रहे हो और आपके लिए जर्नी तो बहुत इजी है क्लेम करना कि आप लीडर बन गए, राइट? व्हाट मेड देम सक्सेस इज देयर एबिलिटी टू स्टैंड अप एवरी टाइम दे फॉल. ये सेंटेंस बहुत, आप अपने इसको बिल्कुल माइंड में बिठा लो कि गिरना तो है ही है, पर गिर के कैसे खड़े होना है, ये लीडरशिप की क्वालिटी है. द एबिलिटी दैट द बेबी जिराफ एक्वायर्स. द रोड ऑफ सक्सेस इज नेवर एन इजी वन. देयर आर रोड ब्लॉक्स, यू बाउंड टू फॉल. ठोकर तो लगेगी लगेगी, इसको तो आप समझ लो. बट सक्सेस लाइज इन बीइंग एबल टू गेट अप एवरी टाइम यू फॉल. किसी के ऊपर भी इतना निर्भर नहीं रहो कि कल को अगर आप गिरो तो आप इधर उधर देखो कि मेरा कोई हाथ पकड़ के मुझे उठा ले. वो सिचुएशन ना तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में लाओ और ना ही आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लाओ. लीडर खाली प्रोफेशनल नहीं होता, लीडर सारे स्पेयर्स में होता है, ऑल ओवर होता है. तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू फैमिली मेंबर्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हस्बैंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, विद ड्यू लव विद ऑल ऑफ देम, ऑलवेज ट्राई कि हमारा हाथ हमें किसी की तरफ नजर जो उठा के ना देखना पड़े कि मैं गिर गया हूं या गिर गई हूं, मुझे प्लीज कोई उठाने आ जाए. अपने में इतनी हिम्मत रखो कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ. तभी नेचर भी हेल्प करती है, तभी जो एनवायरमेंट में पॉजिटिविटी है वो भी हेल्प करती है. दैट इज द क्रिटिकल लाइफ स्किल दैट ऑल सक्सेसफुल पीपल हैव इंटरनलाइज्ड. और जो ये सेशन ले रहा है उसने तो बहुत ज्यादा इंटरनलाइज की हुई है ये बात कि किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पूरी लाइफ. अपनी लाइफ को ऐसे आगे बढ़ाओ कि हम इतने सेल्फ सफिशिएंट हो. बहुत ही किस्मत खराब होगी तो यू कांट हेल्प इट. मैंने लक वर्ड भी यूज किया था पहली स्लाइड में. पर अगर हम पैशनेट हैं, हम स्किलफुल हैं, हम हंगर है हमारे में, हम डिसिप्लिन है कुछ हद तक. मैं भी डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करूंगी कि मैं डिसिप्लिन हूँ, बट यस, मैं एडवर्सिटीज को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हूँ. मैं इमीडिएटली इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ अपने आप को और क्रिटिकल सिचुएशन से ऐसे एक एक को रिजॉल्व करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ी हूँ तभी मैं इन सब चीजों को इंटरनलाइज भी कर सकती हूँ, कर रही हूँ और आगे भी कोशिश करूंगी, और जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं मैं उनको भी ये लेसन दूंगी। दैट्स ऑल आई जस्ट वांटेड टू से। आई एम लुकिंग एट द वॉच और मेरा ये टाइम का एक थोड़ा सा है कि मैं सेशन को टाइमली कंक्लूड करती हूँ। और मैं आप सबको ये बोलूंगी कि जिराफ की स्टोरी याद रखना अपनी लाइफ में हमेशा।

हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, यू आर ऑल वेलकम इन टुडे सेशन। तो आज का जो सेशन है, मतलब अभी हमारा 12th नंबर सेशन था, जैसे तो ये अभी तक के सेशंस में हम करियर से रिलेटेड काफी कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कई स्ट्रीम्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। और मेरे हिसाब से कई स्ट्रीम्स आपको ऐसी नई भी पता चली होंगी अभी, जो शायद पहले आपको नहीं पता हो, या कई स्ट्रीम्स के बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिली होगी, जो हो सकता है आपको आगे अपना करियर बनाने में काफी हेल्पफुल रहे। आज के सेशन में हम जो बात करेंगे कि 10th के बाद जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जिसे हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कहते हैं, उनमें क्या क्या स्कोप रहता है, किस किस टाइप के डिप्लोमाज होते हैं। आप सब जानते हैं, आप जहां भी रहते हैं, जिस भी एरिया में आप हैं, तो आपके आसपास में काफी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं जो डिप्लोमा ऑफर करते हैं 10th क्लास के बाद में। ये जो 10th क्लास के बाद में डिप्लोमा होता है, आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होता है और इक्विवेलेंट टू 12th माना जाता है। मतलब आप देखेंगे कहीं भी 12th के बेस पे कोई भी वैकेंसी निकलती है, कुछ भी एडमिशन अगर 12th के बेस पे है तो वहां लिखा होता है क्लास 12th और 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। तो ये जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है आपका, एक तरह से 12th के इक्विवेलेंट होता है। तो जो लोग 10th के बाद, मतलब एक तरह से ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें किस स्ट्रीम में जाना है, या वो आगे कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल क्या लें, तो वो क्या करते हैं कि 10th के बाद वो डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं जो 3 ईयर का रहता है, विच इज इक्विवेलेंट टू क्लास 12th। अब डिप्लोमा की जो फिलॉसफी थी, ये एक तरह से वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट था, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको कुछ टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड की जाए, जिस भी स्ट्रीम में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपने उस फील्ड में डिप्लोमा किया और उसके बाद आप लोअर लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली देखा गया है कि आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको जो जॉब मिलती है वो हम ये कह सकते हैं, जैसे A to D क्लास में अगर हम जॉब्स को डिवाइड करें तो सी कैटेगरी की जॉब्स आपको मिलती हैं, और वही अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आपकी जॉब जो है वो आपकी बी कैटेगरी की हो जाती है। जैसे आप किसी भी फैक्ट्री में देखिए, वर्कशॉप में, या इतनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, आज मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर भी कहां कहां वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है। आप इंटरनेट पे सर्च करके देखिए, आज ही मैं सर्च कर रहा था इंटरनेट के ऊपर कि डिप्लोमाज, मतलब वैकेंसीज आफ्टर डिप्लोमा, तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज आर देयर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में निकलती हैं, या प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट फैक्ट्रीज आप देखेंगे NCR एरिया के अंदर, गुड़गांव के अंदर इतनी सारी वर्कशॉप्स है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, तो वहां पर डिप्लोमाज की जॉब काफी निकलती है, ठीक है। थोड़ा सा लाइन हार्डवर्किंग होता है आपको, मतलब बिल्कुल लोअर लेवल से स्टार्ट करना रहता है और धीरे धीरे धीरे धीरे आपका लेवल इंप्रूव होता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी। तो ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा वोकेशनल कोर्सेज के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट विद इट। थोड़ा ये समझें कि वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, थोड़ा सा उसकी थ्योरी के बारे में बताऊंगा आपको पहले, फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं 10th के बाद। मैंने आपको पहले ही बताया कि 10th के बाद कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पेरेंटल, जो हमारे फैमिली जो है, वो ज्यादा फाइनेंशियली हमें सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उनका कहना ये होता है 2-3 सालों में आप कोई ऐसा टेक्निकल कोर्स कर लीजिए जिसके बाद उसको यूज करके आप अपना कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट कर सकते हैं, या कहीं पर आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे पेरेंट्स का एक एम सा होता है कि 2-3 साल कुछ आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर दी और उसके बाद फिर आप अपना कुछ काम करना स्टार्ट कर सकें। तो वोकेशनल कोर्सेज एक तरह से करियर स्टार्ट करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इट इज अर्ली बिगनिंग, ठीक है। मतलब वही अगर हम पहले 12th करें, फिर हम बीटेक करें 4 साल की, और फिर उसके बाद एमटेक करें, तो वो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। वही डिप्लोमा कोर्सेज में हमें बहुत जल्दी, मतलब 3 साल का डिप्लोमा आपने किया और उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर में, काफी गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफी वैकेंसीज आती हैं डिप्लोमाज की, गवर्नमेंट PSUs में भी काफी वैकेंसीज आती हैं। आप उसके बाद इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, वो भी मैं बात करूंगा आज के इस सेशन में कि उसका क्या प्रोसीजर रहता है। तो वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज ना स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं। आपने एक तरह से हैंडीक्राफ्ट में डिप्लोमा करना है, ब्यूटिशियन में डिप्लोमा करना है, ठीक है, इस तरह से मतलब बहुत स्ट्रीम है। अभी हम जनरली जो मानते हैं कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, ये 5-6 स्ट्रीम की हम बात करते हैं,
बट अगर आप इनडेप्थ में जाओगे तो वोकेशनल कोर्सेज में काफी ज्यादा स्ट्रीम्स अवेलेबल होती है। कई जो गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर स्ट्रीम ही बहुत कम होती है, पर वो तो जैसे भी आप जहां भी अप्लाई करेंगे, बाकी काफी ज्यादा स्ट्रीम्स होती है वोकेशनल कोर्सेज के अंदर, और उसमें आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि 3 ईयर स्पेंड करने के बाद में आप कहीं ना कहीं अपना वर्क करने की स्टेज में आए, आप अपना करियर स्टार्ट कर पाए डिप्लोमा करने के बाद में। तो जैसे पॉलिटेक्निक्स को हम कहते हैं बेसिकली दैट इज वोकेशनल कोर्स, तो पहली चीज की 10th क्लास के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं और ये इक्विवेलेंट टू 12th क्लास होता है, तो इसका मतलब 3 साल में आपकी 12th भी हो जाती है और प्लस में आपका टेक्निकल एजुकेशन भी आप सीख जाते हैं जिस स्ट्रीम में आप अपना काम करना चाहें। इसके कई सारे किन किन स्ट्रीम में ये रहता है आप देखेंगे, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, हेल्थ केयर में, ऑटोमोबाइल्स में, एनिमेशन में, फैशन एंड टेक्सटाइल में, मतलब इतनी स्ट्रीम्स हैं वोकेशनल कोर्सेज के अंदर। यस, टीचिंग में है, ब्यूटी कल्चर में है, तो ये सारी ट्रेनिंग जो है ना वोकेशनल में आती है। आप देखते हैं जैसे रीड के ऊपर भी एक तरह से हम ये कहेंगे, जैसे आप स्टिचिंग, जैसे बहुत आप में से लेडीज ऐसी हैं जो स्टिचिंग का कोर्स करती हैं, एक टाइप से जो ब्यूटिशियन का लेवल करती हैं, तो वही चीज आप ऐसे मतलब जो यहाँ रहता है वो इसे इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, मतलब उसका आपने सीखा और उसको आपने डायरेक्ट फिर इम्प्लीमेंट किया, अपना काम स्टार्ट किया। एक होता है कि 10th के बाद आपने फॉर्मली कोर्स में एडमिशन लिया, 2 या 3 साल का आपने कोर्स किया, ठीक है। तो ये मतलब इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना करियर चूज कर सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा जो लोग पॉलिटेक्निक में जाने से जो बचते हैं, या जी हम ये कहें कि काफी लोग ऐसे भी हैं आपको मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि पॉलिटेक्निक के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी कम होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज तो है बट आपको मतलब कुछ साल मेहनत करनी रहती है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे लेवल से एंट्री नहीं होती, एक तरह से बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से आप किसी इंडस्ट्री में एंटर करते हैं और धीरे धीरे 2-4-5 साल मेहनत करने के बाद में फिर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाते हैं, एक हैंडसम सी सैलरी आपकी हो जाती है, बट स्टार्टिंग में आपको 2-4 साल हार्डवर्क करना रहता है क्योंकि एज भी आपकी कम है ना। अभी 10th के बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा किया, मतलब 20-21 साल के आसपास आपकी एज है, तो 20-21 ईयर्स के अंदर आपने अपना जॉब स्टार्ट किया और 4 से 5 सालों में आप जब आपकी एज 25 ईयर्स तक होती है तो आप एक ठीक ठाक सैलरी पे पहुंच जाते हैं, अगर आपने स्टार्टिंग आपकी ठीक ठाक हो गई है तो, राइट। तो ये एक सारे एडवांटेजेस हैं डिप्लोमा कोर्सेज के। अब देखिए किन किन फील्ड्स में है, थोड़ा मैं टाइम जो है वो इस बात पे स्पेंड करूंगा कि किन किन फील्ड्स में है। थोड़ा सा डिप्लोमा की दिक्कत क्या है कि जैसे आप कोई हरियाणा से बिलोंग करता है, कोई आप में से उत्तराखंड से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, तो हमारे आसपास जो डिप्लोमा कॉलेजेस है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं, कुछ कॉलेजेस में उतने कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, एक स्पेसिफिक से कोर्स अवेलेबल है। एक बहुत बड़ी हमारे कॉलेजेस की प्रॉब्लम क्या रहती है कि कॉलेजेस में प्लेसमेंट की फैसिलिटी ज्यादा नहीं होती, मतलब जितने डिप्लोमा कॉलेजेस हैं वहां प्लेसमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो अगर उस चीज को थोड़ा एक तरह से ध्यान दिया जाए तो बच्चों की अगर वहीं से ही प्लेसमेंट होनी स्टार्ट हो जाए तो डिप्लोमा कोर्सेज भी काफी मार्केट में वेटेज ले के आ सकते हैं। तो जैसे पहले हम बात करेंगे कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्सेज, ठीक है, ये भी आपके डिप्लोमा के अंदर आते हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। ये बेसिकली होटल से डील करते हैं या ऐसा इंडस्ट्री जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, इसमें आपका डिप्लोमा होता है फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंदर। अब ये फूड एंड बेवरेज सर्विस जो है, जैसे जितनी भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक जिसे हम कहते हैं, कोका कोला है, कोक है, तो आप अगर यहां से डिप्लोमा करते हैं तो उसमें जॉब आपको मिल जाती है एज ए फूड एनालिस्ट की, ठीक है, इस तरह की जॉब्स रहती हैं। डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी होता है, जैसे आप सोच के देखिए गुड़गावा में या NCR के अंदर अगर आप बेकरी का प्रोडक्ट जो बनाना सीखना चाहते हैं तो उसकी क्लासेज के काफी ज्यादा फीस चार्ज की जाती है प्राइवेट के अंदर, ठीक है, मतलब आपको बेकरी और जो कन्फेक्शनरी की आइटम्स होती हैं काफी ज्यादा हैवी फीस चार्ज की जाती है सिखाने के लिए, केक बनाना सिखाना और प्रोफेशनली काम करना। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का बेकरी के अंदर तो उसके बाद आप अपनी बेकरी ओपन कर सकते हैं। और स्मॉल स्केल पे आप देखिए आज के टाइम के अंदर
जो बेकरीज हैं बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट है। देखिए ये वो चीजें हैं बेसिकली जो वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट ही यही था कि आप लो इन्वेस्टमेंट से अपना काम स्टार्ट कर सके। ठीक है, जैसे अगर आपने बेकरी में कोर्स किया हुआ है तो आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से अपनी बेकरी ओपन कर सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, राइट। डिप्लोमा 3 साल का होता है, जितने भी डिप्लोमा होते हैं ना, देखिए 10th क्लास के बाद में जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो सभी 3 साल के होते हैं। ठीक है, कि जो डिप्लोमा होल्डर है वो 12th के इक्विवेलेंट है, तो 3 साल का डिप्लोमा रहता है। क्वेश्चन था जैसे मैंने आंसर किया उसका। हाँ जी, मैं बात कर रहा था बेटे बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का, तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आज के समय में केक्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा हो चुकी है, मेरे हिसाब से कोई विरला ही घर ऐसा होगा जिसमें बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाता है बिना केक। ठीक है, छोटे छोटे बच्चा, ठीक है, तो वो मतलब अगर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है या फैमिली में कोई भी फंक्शन है, एनिवर्सरी है किसी की, तो केक तो बहुत छोटा, मतलब केक तो एक आप मान के चलिए असेंशियल आइटम है। ठीक है, आप अपने आसपास में भी देखेंगे काफी बेकरीज होती हैं, तो अगर आपने प्रोफेशनली तरीके से कोर्स किया हुआ है तो आप उसको काम कर सकते हैं। डिप्लोमा की एज लिमिट जो है वो मतलब 22 से 23 साल तक है, मतलब जैसे आपकी 10th जो है ना 17 ईयर में हो जाती है, ऑलमोस्ट 17 नहीं तो 18 में हो जाती है, तो उसके बाद 4-5 साल तक आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। गैप ईयर के लिए आपको सर्टिफिकेट देना होता है, एक एफिडेविट आपको देना होता है कि ये जो गैप आपका है इसमें आपने कुछ किया है। ऐसे ही फूड प्रोडक्शन में क्राफ्ट कोर्स है। आप देखिए रीड के सेंटर्स पे भी कई सेंटर्स पे ऐसी एक्टिविटी की गई है, जैसे जहां पर फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड, फूड मतलब एक तो हम खाना बनाते हैं एट अवर होम, ठीक है, एक हम प्रोफेशनल कुकिंग करते हैं। प्रोफेशनल कुकिंग मतलब हमें 50 लोगों का खाना बनाना है, 100 लोगों का खाना बनाना है। मैंने देखा है पीछे कई सेंटर्स के ऊपर, जैसे आपका एक तरह का जो कुमासपुर सेंटर है, कई सेंटर्स में इस तरह की ट्रेनिंग भी हुई है। तो जो डिप्लोमा की एज जो है वो आपकी मिनिमम 17 है, मैक्सिमम जैसे मैंने आपको बताया 4 से 5 साल है, बट भाईपाल जी ने आंसर किया कि 24 साल तक आप डिप्लोमा कर सकते हैं, तो 17 से 24 साल तक एज है इसमें। ठीक है, फिर डिप्लोमा इन कुकरी है, हाउस कीपिंग है, रेस्टोरेंट एंड काउंटर सर्विस है, होटल रिसेप्शन है, हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशन मैनेजमेंट है। आप देखिए जैसे अगर आपको होटल इंडस्ट्री में काम करना है तो उसमें एक ऑप्शन तो क्या रहता है कि 12th के बाद आप होटल मैनेजमेंट करिए, कोर्स करिए। ठीक है, वो आपका 3 साल का कोर्स रहता है BSc इन होटल मैनेजमेंट, उनका भी हम एक अलग से क्लास लेंगे कि जिसमें मैं होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग का भी हमने एक अलग से सेशन प्लान किया हुआ है। तो एक तरीका तो क्या रहता है कि पहले आपने 12th किया और 12th के बाद में आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, 3 साल का आपका कोर्स रहता है, BSc इन होटल मैनेजमेंट होती है। सेकेंड ऑप्शन क्या रहता है कि आपने डिप्लोमा किया 3 साल का 10th के बाद, और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के किसी भी कोर्स में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो वो करने के बाद आप उस इंडस्ट्री में काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आपके आसपास में इतने होटल्स ओपन होते हैं, काफी रेस्टोरेंट्स हैं, तो उन रेस्टोरेंट्स में जो लोग काम करते हैं, पहले तो क्या होता था कि जो एक तरह से जो वेटर है या जो कुक है वो कोई भी एरा गेरा रख लिया जाता था, बट आज के समय में आप देखेंगे जैसे ही होटल का लेवल ज्यादा बढ़ता जाता है तो दे ऑल्सो नीड सम प्रोफेशनल पीपल, ऐसे लोग जिनको उसके बारे में पता हो। तो एक ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का भी स्कोप है और इसमें भी सोचा जा सकता है डिप्लोमा करने का, अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो। इसके बाद सेकंड आता है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जो हमारे एक तरह से जो टेक्निकल हम कहें जिसको, कि ज्यादातर बच्चे जिस लाइन में जाके डिप्लोमा करते हैं, मैक्सिमम आप देखेंगे जब जहां भी हम वोकेशनल कोर्सेज या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बात करेंगे तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करते हैं। ठीक है, जिसमें आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप होता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जॉब जल्दी मिल जाती है। आप देखेंगे इंडिया में इतनी कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ट्रक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, जहां पर आपको अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको मतलब जॉब मिल जाती है इजिली। स्टार्टिंग लेवल से आपकी एंट्री होती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, फिर आप धीरे धीरे अपना करियर बना सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होता है, सिविल इंजीनियरिंग में होता है, सिविल इंजीनियरिंग में तो गवर्नमेंट जॉब्स भी काफी निकलती हैं अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो। रेलवेज में पीछे हमने बात किया था, जैसे रेलवेज में तो डिप्लोमाज की वैकेंसी ज्यादा आती है,
जैसे आपको ध्यान हो मैंने अभी पीछे एक सेशन लिया था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रेलवे, भी जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है उसमें अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। तो रेलवे में जो भी हमारी टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है, उन टेक्निकल पोस्ट में काफी पोस्ट ऐसी हैं जो डायरेक्ट आपसे डिप्लोमा मांगती है। तो उसमें अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, मतलब ये सारी स्ट्रीम्स हैं, इनमें इंजीनियरिंग भी होती है, इन सब में आप बीटेक भी कर सकते हैं। पर अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ इसके अंदर तीन तीन साल का, अब तेरी समस्या थोड़ी ये रहती है, मैं आपको बताऊं एक्चुअल रूट कोज क्या है, दिक्कत कहां पर है। दिक्कत सारी यहां पर है कि हमारे इंडिया में वोकेशनल कोर्सेज या हम डिप्लोमाज को कहें, इनको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, ठीक है। उसके पीछे कारण क्या है कि इतना सीरियसली नहीं लेते, जो कॉलेज में टीचर्स हैं वो भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, और दूसरा बच्चे भी नॉन सीरियस एटीट्यूड इसमें रखते हैं। अगर आप किसी अच्छे पॉलिटेक्निक से तीन साल का डिप्लोमा करते हैं, थ्री ईयर बहुत बड़ा टाइम होता है, तो जिस भी फील्ड में आप डिप्लोमा करेंगे उस फील्ड में आपको एक अच्छा नॉलेज हो जाता है, अच्छा अवेयर हो जाते हैं उस फील्ड से रिलेटेड, आपको उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल नॉलेज काम करने में चाहिए उतना टेक्निकल नॉलेज आपको मिल जाता है। आप देखेंगे, जैसे मैं आप एक चीज और ऐड करूं यहां पर, काफी बच्चे ऐसे हैं जो दे गो फॉर आईटीआई, वो क्या करते हैं आईटीआई भी करते हैं, ठीक है। अब वही चीज देखिए, जो आईटीआई है वो डिप्लोमा से भी लो लेवल में काउंट किया जाता है, मतलब ये तीन आपकी लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर जैसे सबसे लो लेवल पे अगर हम बात करें तो आईटीआई आता है, सेकेंड लेवल पे आपके डिप्लोमाज होते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमाज होते हैं, और थर्ड लेवल पे आपका बीटेक होता है। तो एक तरह से ये तीनों ही टेक्निकल एजुकेशन की लेयर्स हैं, राइट। तो आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से जो भी करना चाहें, ठीक है, वो आप उसमें कर सकते हैं, राइट। तो जैसे इसमें ये सारे इस फील्ड्स में आप अपना डिप्लोमा कर सकते हैं कि जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, और उसके बाद अगर आप उसी में अपना करियर बनाना चाहें आगे फर्दर, आप उसमें इंजीनियरिंग करना चाहें तो फिर अपना इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं स्टेट वाइज, जैसे हरियाणा की हम बात करें चाहे हम यूपी की बात करें, तो आपका जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, या टाउन एंड प्लानिंग का डिपार्टमेंट है, या काफी डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर डिप्लोमा होल्डर की वैकेंसीज आती है। आपका जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है वहां पर डिप्लोमा होल्डर्स की, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल्स में किया हुआ है, उनकी काफी वैकेंसी आती है। आपके जो एक तरह से टाउन प्लानिंग है उनमें सिविल इंजीनियरिंग की काफी वैकेंसीज आती है अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्ट्रीम में डिप्लोमा किया है। लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण, देखो जनरली क्या होता है, मैंने देखा है बहुत बच्चों से मिलते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया और बाद में दे से भी डिप्लोमा करने का कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। वो क्या होता है कि वो बाहर जॉब से अप्लाई नहीं कर पाते ज्यादा, मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ वैकेंसी निकली हुई है, कॉलेज उसमें सपोर्ट नहीं करता प्लेसमेंट के अंदर, तो जिस कारण फिर वो दे फील कि डिप्लोमा का कोई ज्यादा यूज नहीं हुआ। बट काफी बच्चे ऐसे भी हैं एनसीआर एरिया में स्पेशली, जो डिप्लोमा करने के बाद में एक ठीक ठाक कंपनी में जिनकी सेटलमेंट हो जाती है और एक अच्छा लेवल पे धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ और भी काफी फील्ड्स हैं जिसमें डिप्लोमा होता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म में है, इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड पर्सनल दैट इज प्रेजेंटेशन स्किल्स में, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में, फैशन डिजाइनिंग है, हेयर एंड स्किन केयर में। आप देखते हैं आजकल वीएलसीसी का नाम आप सबको पता ही होगा, वीएलसीसी एक तरह से आपका जो ब्रिटिशियन से रिलेटेड कोर्सेज कराते हैं, ठीक है, या उसमें आपका हेयर या जो स्किन केयर के कोर्सेज रहते हैं, तो वो एक तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। बट वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये इनसे रिलेटेड डिप्लोमाज होते हैं, ब्यूटिशियन का डिप्लोमा है, इवेंट मैनेजमेंट है, ऑफिस मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, कॉस्मेटिक एंड लाइफ प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, कैटरिंग मैनेजमेंट है। तो मतलब इट्स अ वेरी वाइड एरिया, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा स्कोप है, काफी ज्यादा इसमें स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, ज्यादा स्ट्रीम्स हैं, इसलिए आप अपना फ्यूचर बिल्डअप कर सकते हैं अगर आपने किसी भी कोर्स में डिप्लोमा किया है। बट स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता, इमीडिएट बहुत अच्छी जॉब्स नहीं है डिप्लोमा में, डिप्लोमा करने के बाद कुछ टाइम आपको मेहनत करनी रहती है तभी आप अच्छी जॉब ले सकते हैं।
अब क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। देखो डिप्लोमा तो आपने कर लिया, डिप्लोमा करने के बाद क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, जैसे मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको देता हूँ। वेब डेवलपर का आप काम कर सकते हैं। वेब डेवलपर मतलब जो एक टाइप से जो आप लोगों की जो वेबसाइट्स होते हैं जो डेवलप करते हैं, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया हुआ है और उसके बाद आपने किसी प्राइवेट कॉलेज से साल डेढ़ साल का कोई कोर्स भी किया है थोड़ा लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, तो वेब एज ए डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। साइट्स जो बनती है वो आप बन सकते हैं बना। जो डेटा एनालिस्ट का काम होता है, ब्यूटिशियन का आप अपना काम कर सकते हैं। आप देखो मैं काफी रीड के कई सेंटर्स पे मैं एज ए लास्ट ईयर मैंने कई सेंटर्स आपके देखे जहां पर क्या होता है कि एक टाइप से ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया जाता है, ठीक है, और ब्यूटिशियन का कोर्स में भी आपके लेवल्स हैं लेवल वन लेवल टू, और जब आप एडवांस कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद मोटिवेट किया जाता है फीमेल्स को कि आप अपना ब्यूटी पार्लर खोलें। कई जगह पर मैंने देखा है कि काफी सक्सेसफुल ब्यूटी पार्लर भी है। मैं जैसे रामपुर की बात करूंगा, रामपुर में मैं गया था पीछे हो गया मुझे साल सवा साल, तो वहां पर जैसे भी हमने जैसे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे काम किया था, तो वहां पर काफी एग्जांपल्स ऐसे थे जिन्होंने रीड के सेंटर के थ्रू ब्यूटिशियन का कोर्स किया और ब्यूटिशियन का कोर्स करने के बाद फिर उन्होंने अपना जो पार्लर ओपन किया और काफी पार्लर उसमें ऐसे हैं जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक टाइप से जो कुमासपुर में भी ऐसा चल रहा था आपका माने, मतलब काफी सेंटर्स पे ये कोर्सेज चलते हैं। तो मतलब वही चीज है कि वहां पर हम जो इनफॉर्मल कोर्स आपको दे रहे हैं, वही अगर आपने 10th के बाद एक 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो एक तरह को हम कह सकते हैं ये फॉर्मल एजुकेशन है आपकी, तो ये चीजें आप सारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आजकल जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये भी एक बहुत फ्यूचर का एक तरह से हम ये कह सकते हैं द करियर। SEO बेसिकली क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि आप देखते हैं आजकल लोग YouTube के थ्रू Facebook के थ्रू अपने चैनल्स बनाते हैं या काफी एक्टिविटी करते हैं ताकि उनको वहां से इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो लोग साइट्स बनाते हैं और ये चाहते हैं कि जब सर्च किया जाए तो उनका साइट सबसे ऊपर आए, उनका नाम सबसे ऊपर आए। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसका एक कोर्स होता है, अगर आपने ये किया हुआ है SEO का कोर्स किया हुआ है तो फिर आप एज ए SEO पर्सन काम कर सकते हैं कंपनीज के लिए। हेयर ड्रेसर का भी काम रहता है, आपका ग्राफिक डिजाइनर है, सोशल मीडिया मैनेजर है, शेफ है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मतलब इट्स अ वेरी वाइड स्ट्रिंग। मैं आपको बताऊं जो अगर हम कई और कंट्रीज को कंपेयर करें, USA की बात करें, UK की बात करें, तो वहां पे अर्ली एज से ही टेक्निकल एजुकेशन पे ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि हमारे इंडिया में अलग है। हमारे इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन का भी ज्यादा रोल नहीं है अभी, इतना ज्यादा मतलब क्रेज नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काम किया गया है, थोड़ा सा उसमें कहा गया है कि वोकेशनल कोर्सेज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एकेडमिक कोर्सेज, क्योंकि वोकेशनल कोर्सेज के बाद आप बहुत जल्दी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना कुछ काम कर सकते हैं। आप देखते हैं सुनते भी होंगे कि जो मोदी जी जितनी बार भी स्पीच देते हैं, कई मैक्सिमम टाइम चाहे वो अपने मन की बात में दे चाहे कहीं भी दे, तो उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा रहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जाए। मतलब हम ये ना माने कि सरकार हमें जॉब देगी, हम खुद ही अपने एंड के ऊपर जॉब क्रिएशन की बात करें, ठीक है। मतलब अभी हमारे यहाँ ट्रेंड थोड़ा रिवर्स है, हम चाहते हैं कि हमने एजुकेशन कंप्लीट किया, अपना कोर्स कर लिया, अब कोर्स करने के बाद में अब जो गवर्नमेंट है वो हमें जॉब दे दे, एक तरह से ये हमारी एक तरह से हम कह सकते हैं कि दैट इज साइकोलॉजी, हमारा सोच ये है, जबकि गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो हमें खुद कुछ भी कोर्स कोई भी टेक्निकल स्किल लेने के बाद में हमें अपने लेवल पे मेहनत करनी चाहिए और खुद भी हम अपने पैरों पे खड़ा हों, और उसके साथ साथ हमने कुछ लोगों को अपने साथ में एम्प्लॉय भी करा, उनको भी हमने जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी। तो ये एक तरह से मतलब ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं जो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप एक तरह से अपना काम कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आपको किसी की नौकरी करने की नीड नहीं है, आप थोड़ी सी मेहनत करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं।
तो डिप्लोमा के बाद एक ये काम हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका डेवलपमेंट है वो काफी उसको हेल्प मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स है, ऐसा नहीं कि मतलब प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं, एक तरह से काफी गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलती हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, ठीक है। मैंने पिछले जैसे अभी अक्टूबर और सितंबर की मैंने काफी जॉब्स निकाल के हमें शो करता हूँ किन किन कंपनीज में, किन किन ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिलती है, जो गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है। देखिए आप सब जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, मतलब एक तरह से जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, जिसमें सेल या आपकी स्टील की कंपनी है, भेल है, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, बेल है, गेल है, IOCL है, मतलब पेट्रोलियम कंपनीज है, HPCL है, ONGC को तो सब जानते ही है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है, तो मतलब ये सारी जो है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, ठीक है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके इंडिया में कई कई जगह पर काफी बड़े बड़े प्लांट हैं, ठीक है। अब उन प्लांट्स में क्योंकि जब टेक्निकल काम होगा तो टेक्निकल लोग चाहिए काम करने के लिए, और टेक्निकल लोग जो काम करने के लिए चाहिए होते हैं उसमें प्राइमरी दो तरह के टेक्निकल लोग चाहिए होते हैं। पहले तो वो जो हायर क्वालिफिकेशंस के हैं, हायर क्वालिफिकेशंस का मतलब क्या है, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, ठीक है। सेकंड जो एक तरह से जो मिडिल लेवल जो एम्प्लॉयज होते हैं वो चाहिए होते हैं, जिसमें डिप्लोमा होल्डर्स को काफी एक तरह से उनकी डिमांड रहती है। तो इसमें डिप्लोमा होल्डर्स को जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी मिलती है या टेक्नीशियन की वैकेंसी मिलती है। अब देखिए कहीं भी JEE की वैकेंसी निकलती है ना जूनियर इंजीनियर की, क्योंकि जो डिप्लोमा होल्डर एक तरह से जूनियर इंजीनियर ही है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जहां भी JEE की वैकेंसी निकलती है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है, वो बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होती है। तो वहां पर आप कर सकते हैं। हाँ सर, जो बीटेक मई में, हाँ उनको अगर उसमें जाना है तो फिर गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये आपने सही यहां बताया, मैं भी इसको बाद में पूरे उसमें डिस्कस करूंगा एक तरह से कि अगर जो बीटेक वालों को अगर इनमें जाना है, इन PSU में जाना है तो गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही जा सकते हैं, पर डिप्लोमा होल्डर्स में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज डिप्लोमा करने के बाद ही उन्हें मिल जाती है। देखिए ये मैं ये स्ट्रीम्स है सारी, एग्रीकल्चर में भी डिप्लोमा होता है, ऑटोमोबाइल्स है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, तो ये अलग अलग वैकेंसीज के स्ट्रीम्स है। होटल मैनेजमेंट में है, मैरीन इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में है, तो मतलब ये इतनी स्ट्रीम्स में इतने अगर आपने इन स्ट्रीम्स में डिप्लोमा किया हुआ है तो इनकी वैकेंसीज आती रहती है टाइम टू टाइम। ये मैंने कुछ पिछले कुछ टाइम की वैकेंसीज का मैं एक चेक कर रहा था, अभी इसमें हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी आई हुई है, राइट। तो ये सभी वैकेंसीज जो है वो अलग अलग कंपनीज में है, जैसे ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे CMPDI आई है, ये अभी 29 सितंबर को वैकेंसी निकली है इसके अंदर, CMPDI, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये इसलिए आपको मैं यहां बता रहा हूं कि इसमें जो वैकेंसीज आती है ना अलग अलग पूरे इंडिया में PSU फैली हुई है। आप देखेंगे हमारे इंडिया में काफी बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, पर इसमें थोड़ा ये रहता है कि या तो हमारा घर ऐसी जगह पे हो जो मतलब जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि जॉब तो वहां मिलेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, आप में से जो लोग रामपुर के पास है, उत्तराखंड से जैसे हैं, तो आप जैसे उत्तराखंड से हल्द्वानी की तरफ जाएंगे तो वहां पर अब काफी बड़ा इंडस्ट्रियल वो है, मतलब एक तरह से जो लाल कुआं है, पंत नगर है, वो जो बेल्ट है, तो वहां काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई हुई है, मतलब वहां जॉब इजिली मिल जाती है। हाँ दैट इज द रुद्रपुर। और वहीं अगर आप इधर आए अपना NCR एरिया में आते हैं, अगर आप गुड़गावा की बात करते हैं तो जैसे आपका मानेसर है, तो यहाँ पर काफी इंडस्ट्रीज हैं, तो बहुत इजीली डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब्स मिल जाती है। या फिर अलग अलग प्लेसेस पर, जैसे कुछ स्टेट वाइज भी वैकेंसी निकलती है, जैसे देखो आप इसमें देखेंगे जो सेकंड पोस्ट है, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 1661 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज आई है, ठीक है, जो फ्रेशर्स के लिए है, जिसमें फिक्स किया होता है कि आपका ऑफिस एंड मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मतलब वैकेंसीज काफी होती हैं, थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए, आपके पास में
लिंक्स के सोर्सेज होने चाहिए भी, कहां से आपको पता चल पाए कि किस किस फील्ड की वैकेंसी कहां से आई हुई है। आजकल तो इंटरनेट के थ्रू आप घर बैठे ही पता कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज और ऐड करूं कि आप में से जो लोग ऑलरेडी डिप्लोमा होल्डर है या कोई आगे डिप्लोमा करने की अभी सोच रहा है, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ जो भी आपने 3 साल का जिस भी स्ट्रीम में आपने डिप्लोमा किया, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ आप थोड़ा सा एजुकेशन अपने आप को इंटरनेट नो हाउ जिसे हम कहते हैं, कि अभी अगर हम इंटरनेट नो हाउ की बात करें तो हमें सभी को फेसबुक यूट्यूब तो सबको पता है, सभी लोग उसे यूज भी करते हैं, ठीक है, पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गूगल अलर्ट यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको जॉब्स के बारे में पता करना है, वैसे तो काफी एक तरह से साइट्स भी है जो आपको एक टाइप से जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स निकलती हैं वो आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर भी अगर आपको एक स्पेसिफिक जॉब चाहिए, जैसे आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा होल्डर से रिलेटेड आपको जॉब्स के बारे में पता करना है, तो आपने गूगल अलर्ट के अंदर जॉब्स आफ्टर डिप्लोमा डाल दिया, तो उसमें क्या रहता है कि एवरी डे पूरे इंडिया के अंदर किसी भी पेपर में, किसी भी वेबसाइट के ऊपर, गूगल पे किसी वेबसाइट के ऊपर अगर डिप्लोमा के बाद की जॉब निकली है ना, तो उसका एक तरह से आपको लिंक मिल जाता है, तो वहां से आप सर्च आउट कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि वैकेंसीज काफी ज्यादा है। बस ये है कि थोड़ा सा एरिया फर्क पड़ जाता है कि आप अगर NCR में रह रहे हैं और आपकी जॉब निकली है वो आपकी बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, कहीं महाराष्ट्र में है, तो हम अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज हम अगर डिप्लोमा होल्डर्स की बात करें तो 12th, 10th के बाद में 3 साल कोर्स करने के बाद जॉब लेना कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है, और एक तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैकेंसीज रहती है। पर एक प्रॉब्लम और भी है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैकेंसीज है के बाद एग्जाम होता है आपका, एग्जाम मतलब दे टेक द टेस्ट, और टेस्ट में जो आता है वो बेसिकली क्या रहता है कि एक तो आपका जो भी जिस फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस भी फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उस फील्ड के बारे में नॉलेज आपको अच्छी हो, आपने अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रखी हो, और उसके साथ साथ जो सेकेंड पेपर आपका रहता है उसमें जनरल रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जो बेसिक आपके सब्जेक्ट होते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत तैयार करना रहता है जो आपको हेल्प करते हैं जॉब लेने के लिए। ये और भी ये आप देखेंगे सभी अक्टूबर मंथ की वैकेंसीज है, आप देखिए ये 7th अक्टूबर, 6th अक्टूबर, 5 अक्टूबर, मतलब ये सारी वैकेंसीज जो है ये बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, ठीक है, कहीं पर 500 वैकेंसीज है, कहीं 42 है, कहीं 21 है, कहीं 36 है, राइट, किसी में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, कोई फ्रेशर के लिए है, ठीक है। और जनरली आप देखेंगे जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस मैंने लिखी हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपकी PSU या गवर्नमेंट

एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्म भी, उसके बाद प्रिपरेशन करना भी, मतलब एवरीथिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, अब ये तो मैंने आपके ऑलमोस्ट सारी बातें आपको समझा दी कि क्या क्या डिप्लोमा में रहता है, और कुछ चीजें और भी हैं भी, जैसे जो अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो उसमें आप प्रोफेशनल स्किल साथ साथ सीख जाते हैं। ठीक है भाई, आपने जो टेक्निकल जो भी आपने ट्रेनिंग किया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया, ठीक है, और वो टेक्निकल स्किल आपने सीख लिया तो जॉब लेने में आसानी रहती है। स्किल्ड एम्प्लॉयज की डिमांड हमेशा से रही है इंडिया में स्पेशली, और आप देखेंगे भी आने वाले टाइम में तो स्कोप और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे आपने सुना होगा अभी कोविड के बाद में, जैसे कोरोना का अटैक हुआ कोविड-19 के बाद में, वर्ल्ड वाइड चाइना को माना गया भी इसके पीछे, जो एक तरह से चाइना वाज रेस्पॉन्सिबल। और स्टार्टिंग में तो यू हैव हर्ड इनटू द न्यूज, जैसे काफी वर्ल्ड में काफी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम चाइना में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वहां से हम अपनी इंडस्ट्रीज को चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे जिसमें जापान था, यूएसए था, फ्रांस था, तो वो मतलब वो चाइना से, दे आर नॉट हैप्पी विद चाइना। ठीक है, अब देखिए वहां से इंडस्ट्री अगर निकल के इंडिया में आती है, आप देखेंगे इंडिया ने उसमें फिर काफी इनिशिएटिव लिया और एक तरह से ऑफर भी किया भी आप इंडस्ट्रीज इंडिया में लगाइए, यहाँ पर आपको ये टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा, ये बेनिफिट दिया जाएगा, तो ये काफी ज्यादा बातें चल रही हैं। तो अगर इतनी इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी तो आप सोच के देखिए भी उनमें काम करने वाले लोग भी तो चाहिए ना, और काम करने वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादातर टेक्निकल लोगों की डिमांड होती है, और टेक्निकल लोगों में तो फिर जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वही आपके सामने रहते हैं। ठीक है, तो ये एक हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में अच्छा साइन है कि अगर जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी, जितना प्रोडक्शन एक्टिविटी यहां पर होगा उतना ही डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब मिलेगी। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं। दूसरा एक बहुत बड़ी बात और भी है कि जैसे आपके मेट्रो कॉरपोरेशन है, मैं आपको बताता हूं जो DMRC है, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, हजारों लोग ऐसे हैं, हजारों एम्प्लॉयज ऐसे हैं DMRC के अंदर जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे काम करते हैं DMRC में। और उसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ओनली उसके अंदर क्या कहा गया है कि आपने डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में 10th के बाद। काफी वैकेंसीज निकलती है, आप तो देखो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सैचुरेशन आ चुका है क्योंकि DMRC ऑलरेडी काफी रिक्रूटमेंट कर चुका है, बट स्टार्टिंग में जब नया नया ये कॉरपोरेशन आपका बना था उसमें जब नई नई वैकेंसी निकलनी स्टार्ट हुई थी तो बहुत बच्चे ऐसे थे जो DMRC के अंदर लग गए जिन्होंने थोड़ा बहुत मेहनत किया था और डिप्लोमाज किए हुए थे। और ऐसी अब हर स्टेट में आगे जो मेट्रो एक्सपेंड हो रही है तो जितनी ज्यादा एक्सपेंड होगी उतना ही जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है लोगों के लिए। फिर एक और बहुत बड़ी चीज है कि डिप्लोमा करने के बाद अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहें तो उसमें भी आपको लेटरल एंट्री मिल जाती है। ठीक है, मतलब क्या है कि देखो वैसे तो बीटेक आपकी 4 साल की होती है, ठीक है, अगर आप 12th के बाद करते हैं तो अगर आपने 12th-10th के बाद डिप्लोमा किया है 3 साल का तो उसमें भी आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, तो 1 साल आपका बच जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो इक्वलेंटी हो जाता है, किसी बच्चे ने 10th क्लास के बाद में पहले डिप्लोमा किया फिर उसने बीटेक में एडमिशन लिया, या आपने पहले 12th किया फिर आपने बीटेक में एडमिशन लिया, तो टोटल टाइम स्पेंडिंग जो है वो ऑलमोस्ट इक्वली रहेगी आपकी, वो आपका 1 साल वेस्ट नहीं जाएगा, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। हर स्टेट इस तरह का लेटरल एंट्री का अपना अलग अलग एग्जाम लेता है, जैसे हरियाणा के जो बच्चे हैं वो लीट का एग्जाम देते हैं, LEET, लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है आपका, लीट का पेपर होता है, हर स्टेट का एग्जाम होता है, उसमें जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं तो वो अपना एक टाइप से जो लेटरल एंट्री का एग्जाम लेते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर क्या होता है कि आपको वो पेपर पास करना होता है डिप्लोमा के बाद में, और फिर आपका डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा स्कोप हो जाता है भी, आपको टेक्निकल नॉलेज भी आपने सीखा 3 साल के अंदर, अगर आपका उस फील्ड में करियर बनाने का इंटरेस्ट है, हाई से हम लीट कहते हैं लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट, तो अगर आप उस फील्ड में आगे फ्यूचर में और टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप उसी फील्ड के अंदर बीटेक कर सकते हैं और आपका कोई ईयर भी वेस्ट नहीं होगा, तो सेम उसमें आप अपनी इंजीनियरिंग करके अपना करियर आगे लेके जा सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले डिप्लोमा करते हैं फिर 1-2 साल जॉब करते हैं, ठीक है, उसके बाद दे टेक एडमिशन इन द बीटेक, राइट, तो ये एक अच्छी आपके लिए वो जाता है भी आपकी

0: हायर क्वालिफिकेशन भी हो गया और आपको इंडस्ट्री के बारे में पता भी चला, आपने इंडस्ट्री में काम भी किया, टेक्निकल एक्सपीरियंस भी आपका हुआ, तो ये भी एक स्कोप रहता है। और हर स्टेट में पेपर होता है, मैंने तो हरियाणा का आपको बताया जैसे लीट का पेपर है, ऐसे ही डीटीई केरला के अंदर होता है, वो मतलब एग्जाम का नाम अलग अलग है, बाकी पेपर जो है एग्जाम जो है वो हर स्टेट में होता है लेटरल एंट्री के लिए, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं लेटरल एंट्री की स्कीम के अंदर। ठीक है, तो ये आज का हमारा सेशन था, मैंने काफी चीजें आपको बताई इससे रिलेटेड, या एक दो चीजें मैं और भी ऐड करूंगा कि जैसे मैं पीएसयू की बात कर रहा था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, जिसमें आपको मैंने ओएनजीसी गेल इन सबके बारे में बताया। देखिए उनमें क्या होता है ओएनजीसी में गेल में कि अगर आपको वैसे जॉब लेनी है इंजीनियर की तो बीटेक आप करते हैं, तो बीटेक के बाद फिर आपको गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना रहता है। ठीक है, और वही अगर आपको जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी अप्लाई करनी है तो जूनियर इंजीनियर की काफी वैकेंसीज निकलती हैं, जिसमें आपको एक आपके फील्ड से रिलेटेड टेक्निकल नो हाउ से रिलेटेड आपने एग्जाम देना है, और उसके बाद फिर आपको अपना जो थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग का पेपर रहता है तो वो आप उसे दे सकते हैं। तो स्कोप इज वेरी वाइड, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड वाइड कंपेयर करते हैं तो डिप्लोमा कोर्सेज को काफी वेटेज दिया जाता है। और मैं एक चीज और यहाँ पर ऐड करूं कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप बाहर भी जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो उन लोगों की है जो टेक्निकल काम कर सके, मतलब टेक्निकल मतलब जिसको हम लोअर टेक्निकल कहते हैं, जैसे आप अपने यहाँ पर जो फिटर का काम होता है, ठीक है, मतलब ऐसे काम, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में वहां के जो लोग हैं वो मतलब दे यू कैन से दैट दे हैव सो मच मनी, या हम ये कह सकते हैं कि वो छोटे काम नहीं करते। जबकि इंडिया से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी फील्ड के अंदर तो आप फॉरेन में जाके भी अपना एक ऐसे करियर स्टार्ट कर सकते हैं उसमें, और आपको वहां पे जॉब्स मिल जाती है। ठीक है, तो मतलब स्कोप इज वाइड, थोड़ा सा पॉजिटिव लेके आपने इस चीज को करना है। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको अपनी ओर से बताया है। इसके अंदर एक चीज और ऐड करूं, जैसे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होता है, अब फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो लोग डिप्लोमा करते हैं तो उसका भी काफी स्कोप है। अब देखिए आज इतनी इंडस्ट्रीज ओपन हो चुकी है फूड जो फूड से एसोसिएटेड है, तो मतलब स्कोप काफी रहता है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आपको इसमें काम करने की जरूरत रहती है। ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम माय साइड, बाकी आपकी कोई क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे।
1: हाँ दिनेश जी, इसमें है ना दो तीन पॉइंट ऐड था, टेंथ के पास, टेंथ पास करके जैसे कि फुटवेयर टेक्नोलॉजी जैसे कि आगरा में है, टेंथ पास
0: जी, जी सर जी बिल्कुल सर,
1: और आप जिस तरह ज्वेलरी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जैसे पुणे में है, आपको ऑलरेडी चेन्नई में भी है, जैसे ज्वेलरी पर भी आपको डिप्लोमा करना चाहता है उसका भी है। प्लस सबसे बड़ी बात है, शायद किसी को पता हो या नहीं भी हो, जो हमारे पूरे भारतवर्ष में जो है टेंथ पास करके 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होती है, वो जो टेंथ पास करके भी लड़के अप्लाई करते हैं प्लस टू करके भी, जैसे इंडो डेनिश टूल रूम और इंडो जर्मन टूल रूम, इंडिया और डेनमार्क के कोलेब्रेशन से कॉलेज बनी हुई है, जमशेदपुर में है, और एक है इंडो जर्मन टूल रूम, इंडिया और जर्मनी के कोलेब्रेशन से कॉलेज बनी हुई है, वो है इंदौर में। ये दोनों टेंथ पास करके या प्लस टू पास आउट करके, टेंथ पास करके जाएंगे तो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है, प्लस टू करके जाएंगे तो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसके लिमिटेड सीट होते हैं, तो ये लोग अप्रैल में भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका मेन एग्जाम होता है और जुलाई से सेशन स्टार्ट होता है।
0: तो मतलब ये सारा बात यह है कि वोकेशनल कोर्सेज में स्कोप काफी है, ठीक है, वो एक आप स्कोप है, मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं कि बहुत छोटी एज में आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब अपना आपने जॉब स्टार्ट कर दिया और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे उसमें यू कैन गेट प्रमोशंस, और अगर आप अपना भी काम करना चाहें तो इसमें लो इन्वेस्टमेंट पे अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये काफी वाइड एरिया होता है।
1: गोल्फ कंट्री में भी सर आपने बताया भी है, जैसे साउथ अफ्रीका हुआ, गोल्फ कंट्री में भी काफी डिमांड होती है डिप्लोमा के।
0: गोल्फ कंट्री में बहुत डिमांड,
1: बहुत बहुत सर, मेरा है कि वो स्टेट वाइज जो एनटीपीसी है, जैसे कि स्टेट वाइज जहाँ पे इनकी ये मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस होती है, इंटरनल वो लोग शायद आईटीआई वालों को या अदरवाइज लेकर के डिप्लोमा वाले को भी वो लोग हायर करते हैं क्या, जैसे जैसे उनका ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम नहीं होकर के जो कंडक्ट जो जहाँ पे इनकी ऑफिस है, जैसे कि चित्रकूट में उसका एनटीपीसी का है, फिर उसके बाद यहाँ दादरी में एनटीपीसी, तो ये लोग इंटरनल भी शायद निकालते हैं।
0: क्या है सर कि वैसे तो जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसमें एनटीपीसी भी है, नेशनल थर्मल पावर है, तो इनका तो प्रोसेस ये होता है सर कि ये अपनी दो तरह की जॉब्स निकालते हैं, एक तो सर जो परमानेंट बेसिस पे निकालते हैं और सेकंड वो जो एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं। जो तो एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं वो तो ये इंटरनल सोर्सेज से या कहीं से भी कर लेते हैं, बट जो परमानेंट पोस्ट निकालेंगे ना, परमानेंट पोस्ट में तो इनको नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है और उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। मतलब जो एक तरह से जो परमानेंट पोस्ट रहती है वहां तो एक प्रॉपर प्रोसेस से ही वो काम चलता है, उसका टेस्ट भी लेते हैं ये लोग, सारी चीजें करते हैं। हाँ ये है कि कई बार कुछ पोस्ट ऐसी होती है जो आपकी एडहॉक इन नेचर होती है, एक साल की, दो साल की, या जो टेम्परेरी पोस्ट होती है, तो वहां तो ये इंटरनल सोर्सेज से कहीं से भी कुछ ना कुछ कर जाते हैं, बट एक्चुअल जो जो आपके परमानेंट जॉब्स हैं, जिसको हम जूनियर इंजीनियर की जॉब कहते हैं इसके अंदर, तो वो तो एक प्रॉपर प्रोसेस से निकालते हैं।
1: बहुत सारा स्कोप है, टेंथ पास करने के बाद, आईटीआई करने के बाद या पॉलिटेक्निक, बहुत सारे स्कोप है। थैंक यू दिनेश जी।

निडरता और साहस की शौर्य गाथा परमवीर चक्र, नायक जदुनाथ सिंह। एक गोली सिर में लगी, दूसरी सीने में, पर वो लड़ते रहे और देश के लिए जीत ली वो जंग। ऐसे थे परमवीर चक्र नायक जदुनाथ सिंह। 21 नवंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के खजूरी गांव में जन्मे नायक जदुनाथ सिंह 1941 में भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट में भर्ती हुए। जनवरी 1948 में कबायली आक्रमण के समय इन्होंने नौशेरा इलाके में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया। लड़ते लड़ते इनकी टुकड़ी के सिपाही कम होते गए, पर हौसले बुलंद थे। फिर एक वक्त ऐसा आया जब जदुनाथ सिंह ने अकेले ही स्टेन गन लेकर मोर्चा संभाला और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ मिलकर इन्होंने भारत की जीत सुनिश्चित तो की, पर अपनी शहादत देकर। मरणोपरांत नायक जदुनाथ सिंह को सेना के सबसे बड़े सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ वैष्णवी। श्रोताओं, आज पूरी दुनिया के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, बढ़ती ऊर्जा की आवश्यकताएं और जलवायु परिवर्तन। ऐसे में ऐसे ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता है जो स्वच्छ भी हो, भरोसेमंद भी हो और लगातार बिजली उपलब्ध करा सके। यही कारण है कि दुनिया में एक बार फिर परमाणु ऊर्जा की ओर ध्यान बढ़ रहा है। सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोत स्वच्छ तो हैं, लेकिन उनकी उपलब्धता मौसम और समय पर निर्भर करती है। इसके विपरीत परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2400 घंटे लगातार बिजली उपलब्ध करा सकते हैं, इसलिए इन्हें बिजली व्यवस्था की एक विश्वसनीय आधारशिला माना जाता है। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार कई स्तरों पर एक साथ काम कर रही है। एक ओर शांति अधिनियम के माध्यम से कानूनी और नीतिगत ढांचे को आधुनिक बनाया गया है, वहीं दूसरी ओर स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकियों के विकास और नई पीढ़ी के रिएक्टरों पर निवेश बढ़ाया जा रहा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ईंधन सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि हाल के वर्षों में किस प्रकार भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को नई दिशा मिली है और इस क्षेत्र में हुई प्रमुख उपलब्धियां भारत की ऊर्जा सुरक्षा तथा स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को किस प्रकार मजबूती प्रदान कर रही है। श्रोताओं, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का एक लंबा इतिहास रहा है। वर्ष 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम देश के परमाणु कार्यक्रम की आधारशिला बना। इसके बाद संशोधनों के माध्यम से सरकार ने इस क्षेत्र में सरकारी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं, तकनीकी क्षमताओं और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े लक्ष्यों में तेजी से बदलाव आया है। ऐसे में आवश्यकता महसूस की गई कि परमाणु ऊर्जा से जुड़े विभिन्न प्रावधान को एक आधुनिक और व्यापक कानूनी ढांचे में समाहित किया जाए। इसी सोच के साथ शांति अधिनियम 2025 लाया गया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं।
2: भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो देश के कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की वर्ष 2024-25 में हिस्सेदारी लगभग 3% रही, जबकि देश की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 8.78 गीगावाट है। सरकार का लक्ष्य स्वदेशी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से विकसित रिएक्टरों के माध्यम से वर्ष 2031-32 तक 22 गीगावाट से अधिक की क्षमता विकसित करना है। वहीं दीर्घकालिक लक्ष्य वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की घोषणा की गई। इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि देश में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMR के डिजाइन, विकास और तैनाती को बढ़ावा दिया जा सके। लक्ष्य ये भी है कि वर्ष 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी SMR विकसित किए जाएं। इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए लाया गया शांति अधिनियम 2025 भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक आधुनिक कानूनी ढांचा उपलब्ध कराता है। इसके तहत नियामकीय निगरानी के अंतर्गत निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सीमित भागीदारी की अनुमति दी गई है। वे परमाणु बिजली संयंत्रों के संचालन, बिजली उत्पादन, उपकरण निर्माण और निर्धारित सीमा तक परमाणु ईंधन निर्माण जैसी गतिविधियों में भाग ले सकेंगी। हालांकि संवेदनशील गतिविधियां केंद्र सरकार या उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में ही रहेंगी। अधिनियम में ऊर्जा और विकिरण से जुड़ी गतिविधियों के लिए लाइसेंस तथा सुरक्षा स्वीकृति की स्पष्ट व्यवस्था की गई है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी AERB को वैधानिक दर्जा देकर नियामक व्यवस्था को और सशक्त बनाया गया है। इसके साथ ही परमाणु क्षति से जुड़े दायित्व, मुआवजा, दावों के निपटान और अपील की प्रक्रिया को भी अधिक व्यवस्थित स्वरूप दिया गया है। स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और अनुसंधान जैसे शांतिपूर्ण क्षेत्रों में परमाणु तथा विकिरण तकनीकों के उपयोग के लिए भी स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था बनाई गई है। समाचार से निखिल कुमार।
1: श्रोताओं, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कोई अल्पकालिक योजना नहीं, बल्कि 6 दशकों से अधिक समय में विकसित हुई एक दीर्घकालिक रणनीति का परिणाम है। सीमित यूरेनियम संसाधनों और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तैयार किया। इसकी खास बात ये है कि हर चरण अगले चरण की नींव तैयार करता है। पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम से बिजली उत्पादन किया जाता है, वहीं दूसरे चरण में उसी प्रक्रिया से प्राप्त ईंधन का उपयोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में किया जाता है। इसके बाद तीसरे चरण में भारत के विशाल थोरियम भंडारों के उपयोग का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी दूसरे चरण की दिशा में भारत ने इस वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। 6 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु के कल्पक्कम स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने पहली बार क्रिटिकलिटी प्राप्त की। सरल शब्दों में कहें तो इसका अर्थ है कि इस रिएक्टर में पहली बार नियंत्रित और सतत परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया सफलतापूर्वक शुरू हुई। इसके साथ ही भारत ने अपने 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में औपचारिक रूप से प्रवेश कर लिया है। लेकिन आखिर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता क्या है और इसे भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों माना जा रहा है, इस विषय पर आकाशवाणी समाचार ने वरिष्ठ वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरन से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बताया।
3: एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी में हम लास्ट अबाउट 30 ईयर्स उसी कल्पक्कम में टेस्ट कर रहा था। उस अनुभव का बेसिस में ये हम बिल्ड किया है। यूजुअली आप एक एटॉमिक रिएक्टर लिया तो वो एटॉमिक रिएक्टर से वेस्ट प्रोड्यूस होता है, बट इस रिएक्टर में एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो वर्ड ब्रीडर। ब्रीडर का मतलब किसी चीज को नया पैदा कर सकता है ना, तो उस तरह से फ्यूल को ये पैदा करता है, वेस्ट को पैदा नहीं करता है। इस रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन फास्ट तरीके से निकलेगा। इसके कारण वो क्या करेगा, ये रिएक्टर के बाहर एक कवच के रूप में हम किसी नॉन फिसाइल मटेरियल को हम रखेंगे, लाइक थोरियम को हम रख सकता है, उसमें ये फास्ट न्यूट्रॉन टकरा के उसको फ्यूल बन, एक न्यूक्लियर रिएक्टर में एक विशेष मात्रा में न्यूक्लियर फ्यूल होने के बाद अपनी आप एक चेन रिएक्शन में उसे एनर्जी प्रोड्यूस होगा, वही है क्रिटिकलिटी। इंडिया का एक अपनी आप एटॉमिक पावर का प्लान है, उस प्लान में 3 स्टेज बोलेगा, ये सेकेंड स्टेज है। ये स्टेज बहुत क्रिटिकल है, इसमें हमको कामयाब हो गया तो होगा, पक्का होगा, मुझे यकीन है। सो कामयाब होने के बाद हम देखा तो स्टेज 3 में हम इंडिया में अवेलेबल है थोरियम, वो थोरियम को हम यूज कर सकता है। थोरियम बहुत सेफ विषय है, तो ये एटॉमिक पावर प्रोड्यूस करने का थोरियम यूज किया तो बहुत सेफ होगा। एंड सेकेंड वो पूरा की पूरा इंडिया में अवेलेबल, सो इसका मतलब दैट हमको एक एनर्जी सॉवर्निटी, एनर्जी इंडिपेंडेंस मिलेगा।
1: श्रोताओं, भारत के पास यूरेनियम के सीमित भंडार हैं, जबकि थोरियम के दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक भारत के पास है। भारत का 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम इसी सोच पर आधारित है कि भविष्य में इन विशाल थोरियम संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। आइए इस विषय पर वरिष्ठ वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरन की राय सुनते हैं।
3: लास्ट 20-30 वर्ष में एटॉमिक पावर के ऊपर एक नेगेटिव व्यू था, बट अभी पेट्रोलियम एंड कोल का ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट देख के बहुत लोग ये बोलने लगा दैट हम नया दौर पर नया दृष्टिकोण से एटॉमिक पावर को देख, तो एक एटॉमिक पावर ग्रीन एनर्जी है, इसका मतलब एक ग्लोबल वार्मिंग करने वाला चीज को नई पैदा कर। एंड हम थर्ड स्टेज दैट इज थोरियम यूज करने लगाया तो इवन एटॉमिक सेफ्टी का इश्यू बहुत इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सो फ्यूचर में आई थिंक सर्टनली ये एटॉमिक पावर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंडिया में, एंड बिकॉज वी हैव थोरियम इन ह्यूज रिजर्व, बहुत ज्यादा मात्रा में थोरियम इंडिया में है, तो फ्यूचर में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन एटॉमिक पावर प्ले करेगा।
1: श्रोताओं, आने वाले वर्षों में ऊर्जा की मांग और अधिक बढ़ने का अनुमान है, और ऐसे समय में पश्चिम एशिया और रूस यूक्रेन जैसे वैश्विक संघर्षों ने ये दिखाया है कि ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अनेक देश परमाणु ऊर्जा को एक दीर्घकालिक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। वर्ष 2023 में आयोजित COP28 सम्मेलन में 20 से अधिक देशों ने वर्ष 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा दक्षता को कम से कम 3 गुना करने की प्रतिबद्धता जताई थी। भारत भी अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लगातार विस्तार दे रहा है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागरिक परमाणु सहयोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया है। इस समझौते के अंतर्गत भारत के शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के कुल यूरेनियम संसाधनों का 1/3 से अधिक हिस्सा है। ऐसे में ये व्यवस्था भारत के बढ़ते परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए ईंधन सुरक्षा को मजबूत करेगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम की आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी और सुरक्षा प्रावधानों के तहत की जाएगी। साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG की सदस्यता के लिए भारत के समर्थन को भी दोहराया है। कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक है अलका सिंह।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

റീഡ് ഇന്ത്യ മാനെ റൂറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഗ്രാമീൺ ശിക്ഷ എവം വികാസ് ഹമാരാ കാം തോ ലൈബ്രറീസ് ബനാനാ ഹൈ ഓർ ആജ് കേ സമയ മേ ജോ ചർച്ച ഹോ രഹി ഹൈ ലൈബ്രറീസ് ഖാലി കിതാബ് പഢ്നേ കേ ലിയേ നഹീ ഹൈ ലൈബ്രറീസ് ഏക് ഐസി ജഗഹ ഹൈ ജഹാൻ ഹം ബഹുത് കുഛ് അപ്നേ ലിയേ ഭി കർ സക്തേ ഹൈ ഓർ സമുദായ കേ ലിയേ ഭി കർ സക്തേ ഹൈ മാനെ പഠേ തോ ഹം അപ്നേ ബച്ചോ കോ ഭി പഠായേ ഹം ബഡോ കോ ഭി പഠായേ ഹം ഛോട്ടേ ബച്ചോ കേ സാഥ് ഭി ആക്ടിവിറ്റീസ് കരേ കി കിതാബ് ക്യാ ചീസ് ഹൈ ഓർ കിതാബ് ഉൻകേ ജീവൻ മേ ക്യാ മഹത്വ രഖ്തി ഹൈ പർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ജേർണി ഇസ് സമയ കേ സാഥ് സാഥ് ഹംനേ യേ സോചാ കി ഹമേ മഹിലാഓ കേ ലിയേ ഭി കുഛ് കാര്യക്രമ കർനേ ചാഹിയേ അഗർ മഹില അപ്നേ ആപ് കോ നിഖാർ സക്തി ഹൈ അപ്നേ ആപ് കോ സക്ഷം ബനാ സക്തി ഹൈ और जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे ले सकती है कि अपने बच्चों का विकास कैसे करना है वो भी रीड इंडिया अपने कम्युनिटी लाइब्रेरीज और रिसोर्स सेंटर्स में करती है। हमने औरतों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए जैसे सिलाई सिखाना ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देना और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो हम अपने सेंटर्स में करते हैं पर उसका जो आउटकम है जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं, ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं, अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं। और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े बीबीए और एमबीए की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीड इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो बीए कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाके अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सरफिरोजी। श्रोताओं, भारत आज ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेज गति से विस्तार किया जा रहा है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा अब केवल भविष्य की संभावना नहीं बल्कि वर्तमान की एक मजबूत वास्तविकता बन चुकी है। सौर और पवन ऊर्जा की बढ़ती स्थापित क्षमता, घरेलू विनिर्माण में विस्तार, ऊर्जा भंडारण, हरित हाइड्रोजन और नई तकनीकों के विकास ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र को नए चरण में पहुंचाया है। इसी क्रम में 31 जुलाई को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना यानी PMSSY को मंजूरी दी। ये योजना ऊर्जा भंडारण के साथ 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने पर केंद्रित है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता किस तरह तेजी से बढ़ रही है, सौर और पवन ऊर्जा इस परिवर्तन के प्रमुख आधार क्यों बन रहे हैं, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना किस तरह फ्लोटिंग सोलर और ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा दे सकती है और हरित हाइड्रोजन आधारित परिवहन में भारत ने किस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल किया है। श्रोताओं, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा में पिछले एक दशक के दौरान उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। वर्ष 2014 में भारत की सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 2.82 गीगावाट थी। ये क्षमता 30 जून 2026 तक बढ़कर 162.15 गीगावाट हो चुकी है, यानी एक दशक से कुछ अधिक समय में सौर ऊर्जा क्षमता में 53 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। ये बदलाव केवल बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों तक सीमित नहीं है। सोलर पार्क, रूफटॉप सौर ऊर्जा, सौर कृषि पंप और अब फ्लोटिंग सौर ऊर्जा जैसी नई व्यवस्थाएं भारत के ऊर्जा परिदृश्य को व्यापक बना रही हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में वितरित सौर ऊर्जा ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दौरान जोड़ी गई 44.61 गीगावाट सौर क्षमता में लगभग 16.3 गीगावाट यानी करीब 36% वितरित सौर ऊर्जा से आया। इसमें रूफटॉप सौर ऊर्जा और पीएम कुसुम के तहत स्थापित क्षमता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इससे स्पष्ट है कि भारत का सौर परिवर्तन केवल बड़े बिजली संयंत्रों तक सीमित नहीं है, ये घरों, खेतों और स्थानीय स्तर तक पहुंच रहा है। अब बात करते हैं भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा के एक नए और महत्वपूर्ण आयाम फ्लोटिंग सौर ऊर्जा की।
2: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना भारत में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना का उद्देश्य ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक यानी FSPV परियोजनाओं को समर्थन देना है। योजना के तहत कम से कम 2 घंटे की ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी जिसकी कुल क्षमता 10,000 मेगावाट होगी। इससे पीक डिमांड के समय बिजली की अतिरिक्त मांग पूरी की जा सकेगी। फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं में सौर पैनल जलाशयों और जल निकायों की सतह पर लगाए जाते हैं। इससे बड़े पैमाने पर भूमि की आवश्यकता कम होती है और उपलब्ध जल संसाधनों के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन की नई संभावनाएं भी जन्म लेती हैं। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के लिए 5,070 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। योजना से हर वर्ष लगभग 1 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है। इस योजना का महत्व केवल अतिरिक्त सौर क्षमता विकसित करने तक सीमित नहीं है। ऊर्जा भंडारण को सौर ऊर्जा के साथ जोड़ने से दिन में उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को आवश्यकता के समय इस्तेमाल करने में मदद मिल सकती है।
1: श्रोताओं, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा में सौर ऊर्जा के साथ पवन ऊर्जा भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुकी है। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में।
3: भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में पवन ऊर्जा क्षमता में 6.057 गीगावाट की अब तक की सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। इसके साथ ही 30 जून 2026 तक देश की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता बढ़कर 57.44 गीगावाट हो गई है। पवन ऊर्जा से वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 106 अरब यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष के 83 अरब यूनिट की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। भारत वर्तमान में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर है। मार्च 2014 में देश की पवन ऊर्जा क्षमता लगभग 21.04 गीगावाट थी, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 56.09 गीगावाट हो गई। पवन ऊर्जा की खासियत ये भी है कि इसका उत्पादन सौर ऊर्जा के साथ बेहतर तालमेल बना सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पवन ऊर्जा उत्पादन का लगभग 45% हिस्सा पीक डिमांड के समय आता है। इससे ग्रिड की विश्वसनीयता मजबूत करने में मदद मिल सकती है। पवन टर्बाइन के घरेलू विनिर्माण में भी तेजी आई है। मार्च 2026 तक भारत की विंड टर्बाइन विनिर्माण क्षमता थी लगभग 24 गीगावाट, जबकि 2014 में ये करीब 10 गीगावाट थी। इस तरह सौर और पवन ऊर्जा मिलकर भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिश्रण को मजबूत कर रहे हैं।
1: श्रोताओं, नवीकरणीय ऊर्जा की कहानी केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है, अब स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल परिवहन जैसे क्षेत्रों में भी नए अवसर पैदा कर रहा है। इसका एक बड़ा उदाहरण है भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन।
4: 17 जुलाई 2026 को भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को जीन सोनीपत रेल खंड पर हरी झंडी दिखाई गई। ये ट्रेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से ट्रेन के भीतर ही बिजली पैदा करती है। इसके संचालन के दौरान मुख्य उप उत्पाद के रूप में जल वाष्प निकलती है और टेल पाइप से कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। भारत की ये हाइड्रोजन ट्रेन स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 10 कोच वाली इस ट्रेन में 2 ड्राइविंग पावर कार हैं, जिनकी कुल क्षमता 2400 किलोवाट है। इसकी परिचालन गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा और डिजाइन गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाइड्रोजन की आपूर्ति के लिए जींद में समर्पित हाइड्रोजन भंडारण और रीफ्यूलिंग व्यवस्था भी विकसित की गई है। ट्रेन के संचालन के शुरुआती चरण में ही ये 1200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर चुकी है और 3200 लीटर से अधिक डीजल की बचत दर्ज की गई है। ये उपलब्धि दिखाती है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा को केवल बिजली उत्पादन में ही नहीं बल्कि परिवहन क्षेत्र में भी अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
1: श्रोताओं, सौर और पवन ऊर्जा के तेजी से विस्तार के साथ ऊर्जा भंडारण की आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। सौर ऊर्जा का उत्पादन सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है, जबकि पवन ऊर्जा का उत्पादन हवा की गति पर। इसलिए भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था के लिए केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा, हमें ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता होगी जो जरूरत के समय बिजली उपलब्ध करा सके और ग्रिड को स्थिर बनाए रखे। यहीं पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, पंप्ड स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड और फ्लोटिंग सौर ऊर्जा जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ जाती है। श्रोताओं, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्रांति अब कई महत्वपूर्ण आयामों को एक साथ आगे बढ़ा रही है। पहला है अधिक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, दूसरा ऊर्जा भंडारण और ग्रिड की विश्वसनीयता, तीसरा घरेलू विनिर्माण और रोजगार, और चौथा परिवहन तथा उद्योगों में स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग। वर्ष 2025-26 में भारत ने 55.3 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा की क्षमता जोड़ी, जो अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि है। मार्च 2026 तक देश की कुल गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 283.46 गीगावाट हो चुकी थी। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की दिशा में सौर और पवन ऊर्जा के साथ साथ ऊर्जा भंडारण, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ परिवहन की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा अब उस चरण में प्रवेश कर रही है जहां सूर्य, हवा, जल, हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण मिलकर देश के भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था को आकार दे सकते हैं। स्वच्छ ऊर्जा से ऊर्जा सुरक्षा से आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता से विकसित भारत, यही भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्रांति की व्यापक दिशा है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक है अक्षत ममगई। नमस्कार।

0: मानव सेवा से राष्ट्रोत्थान के नायक श्री बृजलाल भट्ट, पद्मश्री 2026। दुनिया इसे धरती का स्वर्ग कहती है, लेकिन इस स्वर्ग ने अपनों को दूर जाते देखा। साल 1990 एक अनिश्चितता का दौर था, जब अपने ही घर छूट रहे थे, तब बृजलाल भट्ट ने इसके विपरीत जाने का साहस दिखाया।
1: मेरे दिल में एक ही बात आई कि मुझे कश्मीर नहीं छोड़ना है। हमारा लक्ष्य एक ही है, मानव सेवा से राष्ट्र उत्थान,
2: मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग।
0: इसके नींव उनके बचपन में ही पड़ गई थी। अनंतनाग के एक बड़े संयुक्त परिवार में पले बड़े भट्ट साहब की सुबह इंद्रनाग चश्मे, गुरुद्वारा, देवी बल मंदिर और ऋषि साहब की जियारत से होकर गुजरती थी। यही गंगा जमुनी तहजीब आगे जाकर उनके जीवन का सबसे बड़ा मिशन बन गई। वे पिछले 55 वर्षों से नागदंडी के श्री रामकृष्ण महासम्मेलन आश्रम और विवेकानंद केंद्र के सानिध्य में सनातन धर्म के मूल मंत्र मानव सेवा और वैश्विक भाईचारे का प्रसार कर रहे हैं। 1996-97 के कठिन दौर में भट्ट साहब के नेतृत्व नागदंडी आश्रम ने माता खीर भवानी में भंडारा शुरू करने की ठानी।
1: शुरू में भंडारे में माता खीर भवानी मुश्किल से 400-500 लोग थे, पर बिना किसी परवाह के हम बस आगे बढ़ते गए और मेरी अर्धांगिनी हर मोड़ पर मेरे साथ खड़ी रही।
3: भरपूर साथ ताऊन।
0: उनके उस निडर पहल का रंग आज साफ नजर आता है। 2024-25 में उसी भंडारे की पंगत में 35,000 से अधिक लोगों ने भोजन किया। समाज को जोड़ने के साथ साथ अमेरिका से हॉर्टिकल्चर की उच्च शिक्षा प्राप्त भट्ट साहब ने कश्मीर की बंजर और वीरान जमीनों को भी संवारा। वैज्ञानिक सोच से सेब और अखरोट के लहलहाते बाग खड़े किए। कोल्ड चेन और नई पैकेजिंग से गांव वालों को आत्मनिर्भर बनाया। युवाओं को योग शिक्षा शिविर, संस्कार वर्ग और युवा सम्मेलन द्वारा सही दिशा दिखाई, ताकि उनके हाथों में कलम हो। अब वे नागदंडी आश्रम का विस्तार कर रहे हैं, ताकि एक साथ 400 लोग वहां ठहर सके। आज कश्मीर का युवा जान चुका है कि असली ताकत आपसी भाईचारे में है। सम्मान और पुरस्कार तो बस एक पड़ाव है, उनकी असली वसीयत वो बीज है जो उन्होंने यहाँ के दिलों में बोए हैं।
1: जब हमारे युवाओं का जोश और माता पिता का होश एक साथ आएगा, तभी हमारा कश्मीर फिर से एक खूबसूरत गुलदस्ता बनकर महकेगा।
0: उनकी ये यात्रा अब एक महायात्रा बन चुकी है, जो सदैव चलती रहेगी। श्री बृजलाल भट्ट, पद्मश्री 2026।

गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अर्चना कुमारी बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के बेनीपट्टी सेंटर से हूँ। गीता मैम और रीड इंडिया, मैं आपके आभार हमेशा रहूंगी क्योंकि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मैं फर्स्ट टाइम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मुझे थोड़ी सी नर्वस भी हो रही है। और मैंने अपनी लाइब्रेरी में मैम एक ही बात शेयर करती हूँ कि ये फाइनेंशियल ईरा है तो सबको पैसे कमाने की चिंता लगी हुई है, लेकिन जो भी आ रहे हैं, क्योंकि यदि हमारे पास एक रुपए है और मैं आपको दे देती हूँ तो आपके पास दो रुपए जरूर हो जाएंगे लेकिन हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन नॉलेज यदि हम शेयर करते हैं तो मेरे पास भी एक है और आपके पास भी एक है, तो फिर जब हम शेयर करेंगे तो मेरे पास भी दो हो जाएंगे और आपके पास भी दो हो जाएंगे। तो इस तरह बच्चे हमारी लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं और अपने नॉलेज को शेयर भी करते हैं। और मैं आभारी रहूंगी हमेशा क्योंकि सर सब अपने स्टोरी के, सब अपने लाइफ के नायिकाएं हैं, सब स्ट्रगल करती हैं अपनी लाइफ में। हमारी भी गवर्नमेंट जॉब जब छूट गई थी तो मैम ने मुझे पनाह दी, इसलिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी आजीवन। और मैम मैं तो इतनी लायक नहीं हूँ कि जी से स्टार्ट करूँ, लेकिन मैं आपके ए को बरकरार रखूंगी जैसा।

हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, यू आर ऑल वेलकम इन टुडे सेशन। तो आज का जो सेशन है, मतलब अभी हमारा 12th नंबर सेशन था, जैसे ये अभी तक के सेशंस में हम करियर से रिलेटेड काफी कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कई स्ट्रीम्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, और मेरे हिसाब से कई स्ट्रीम्स आपको ऐसी नई भी पता चली होंगी अभी, जो शायद पहले आपको नहीं पता हो, या कई स्ट्रीम्स के बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिली होगी, जो हो सकता है आपको आगे अपना करियर बनाने में काफी हेल्पफुल रहे। आज के सेशन में हम जो बात करेंगे कि 10th के बाद जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जिसे हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कहते हैं, उनमें क्या क्या स्कोप रहता है, किस किस टाइप के डिप्लोमाज होते हैं। आप सब जानते हैं, आप जहां भी रहते हैं, जिस भी एरिया में आप हैं, तो आपके आसपास में काफी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं जो डिप्लोमा ऑफर करते हैं 10th क्लास के बाद में। ये जो 10th क्लास के बाद में डिप्लोमा होता है, आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होता है, और इक्वलेंट टू 12th माना जाता है। मतलब आप देखेंगे कहीं भी 12th के बेस पे कोई भी वैकेंसी निकलती है, कुछ भी एडमिशन अगर 12th के बेस पे है तो वहां लिखा होता है क्लास 12th और 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। तो ये जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है आपका, एक तरह से 12th के इक्वलेंट होता है। तो जो लोग 10th के बाद, मतलब एक तरह से ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें किस स्ट्रीम में जाना है, या वो आगे कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल क्या लें, तो वो क्या करते हैं कि 10th के बाद वो डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं जो 3 ईयर का रहता है, विच इज इक्वलेंट टू क्लास 12th। अब डिप्लोमा की जो फिलोसफी थी, ये एक तरह से वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट था, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको कुछ टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड की जाए, जिस भी स्ट्रीम में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपने उस फील्ड में डिप्लोमा किया, और उसके बाद आप लोअर लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली देखा गया है कि आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको जो जॉब मिलती है वो हम ये कह सकते हैं, जैसे A to D क्लास में अगर हम जॉब्स को डिवाइड करें तो सी कैटेगरी की जॉब्स आपको मिलती हैं, और वहीं अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आपकी जॉब जो है वो आपकी बी कैटेगरी की हो जाती है। जैसे आप किसी भी फैक्ट्री में देखिए, वर्कशॉप में, या इतनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, आज मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर भी कहां कहां वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है। आप इंटरनेट पे सर्च करके देखिए, आज ही मैं सर्च कर रहा था इंटरनेट के ऊपर कि डिप्लोमाज, मतलब वैकेंसीज आफ्टर डिप्लोमा, तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज आर देयर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में निकलती हैं, या प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट फैक्ट्रीज, आप देखेंगे NCR एरिया के अंदर, गुड़गांव के अंदर इतनी सारी वर्कशॉप्स है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, तो वहां पर डिप्लोमाज की जॉब काफी निकलती है, ठीक है। थोड़ा सा लाइन हार्डवर्किंग होता है आपको, मतलब बिल्कुल लोअर लेवल से स्टार्ट करना रहता है, और धीरे धीरे धीरे धीरे आपका लेवल इंप्रूव होता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी। तो ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा वोकेशनल कोर्सेज के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट विद इट। थोड़ा ये समझें कि वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, थोड़ा सा उसकी थ्योरी के बारे में बताऊंगा आपको पहले, फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं 10th के बाद। मैंने आपको पहले ही बताया कि 10th के बाद कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पेरेंटल, जो हमारे फैमिली जो है, वो ज्यादा फाइनेंशियली हमें सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उनका कहना ये होता है भी 2-3 सालों में आप कोई ऐसा टेक्निकल कोर्स कर लीजिए, जिसके बाद उसको यूज करके आप अपना कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट कर सकते हैं, या कहीं पर आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे पेरेंट्स का एक एम सा होता है कि 2-3 साल कुछ आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, और उसके बाद फिर आप अपना कुछ काम करना स्टार्ट कर सकें। तो वोकेशनल कोर्सेज एक तरह से करियर स्टार्ट करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इट इज अर्ली बिगनिंग, ठीक है। मतलब वही अगर हम पहले 12th करें, फिर हम बीटेक करें 4 साल की, और फिर उसके बाद एमटेक करें, तो वो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। वही डिप्लोमा कोर्सेज में हमें बहुत जल्दी, मतलब 3 साल का डिप्लोमा आपने किया और उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर में, काफी गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफी वैकेंसीज आती हैं डिप्लोमाज की, गवर्नमेंट PSUs में भी काफी वैकेंसीज आती हैं। आप उसके बाद इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, वो भी मैं बात करूंगा आज के इस सेशन में कि उसका क्या प्रोसीजर रहता है। तो वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज ना स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं। आपने एक तरह से हैंडीक्राफ्ट में डिप्लोमा करना है, ब्यूटिशियन में डिप्लोमा करना है, ठीक है, इस तरह से, मतलब बहुत स्ट्रीम है। अभी हम जनरली जो मानते हैं कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, ये 5-6 स्ट्रीम की हम बात करते हैं,
बट अगर आप इनडेप्थ में जाओगे तो वोकेशनल कोर्सेज में काफी ज्यादा स्ट्रीम्स अवेलेबल होती हैं। कई जो गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर स्ट्रीम ही बहुत कम होती है, पर वो तो जैसे भी आप जहां भी अप्लाई करेंगे बाकी काफी ज्यादा स्ट्रीम्स होती हैं वोकेशनल कोर्सेज के अंदर, और उसमें आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि 3 ईयर स्पेंड करने के बाद में आप कहीं ना कहीं अपना वर्क करने की स्टेज में आए, आप अपना करियर स्टार्ट कर पाए डिप्लोमा करने के बाद में। तो जैसे पॉलिटेक्निक्स को हम कहते हैं बेसिकली दैट इज वोकेशनल कोर्स, तो पहली चीज की 10th क्लास के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं और ये इक्वलेंट टू 12th क्लास होता है, तो इसका मतलब 3 साल में आपकी 12th भी हो जाती है और प्लस में आपका टेक्निकल एजुकेशन भी आप सीख जाते हैं जिस स्ट्रीम में आप अपना काम करना चाहें। इसके कई सारे किन किन स्ट्रीम में ये रहता है आप देखेंगे, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, हेल्थ केयर में, ऑटोमोबाइल्स में, एनिमेशन में, फैशन एंड टेक्सटाइल में, मतलब इतनी स्ट्रीम्स हैं वोकेशनल कोर्सेज के अंदर। यस, स्टिचिंग में है, ब्यूटी कल्चर में है, तो ये सारी ट्रेनिंग जो है ना वोकेशनल में आती है। आप देखते हैं जैसे रीड के ऊपर भी एक तरह से हम ये कहेंगे, जैसे आप स्टिचिंग, जैसे बहुत आप में से लेडीज ऐसी हैं जो स्टिचिंग का कोर्स करती हैं, एक टाइप से जो ब्यूटिशियन का लेवल करती हैं, तो वही चीज आप ऐसे मतलब जो यहाँ रहता है वो इसे इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, मतलब उसका आपने सीखा और उसको आपने डायरेक्ट फिर इम्प्लीमेंट किया, अपना काम स्टार्ट किया। एक होता है कि 10th के बाद आपने फॉर्मली कोर्स में एडमिशन लिया, 2 या 3 साल का आपने कोर्स किया, ठीक है। तो ये मतलब इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना करियर चूज कर सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा जो लोग पॉलिटेक्निक में जाने से जो बचते हैं, या जी हम ये कहें कि काफी लोग ऐसे भी हैं आपको मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि पॉलिटेक्निक के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी कम होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज तो है बट आपको मतलब कुछ साल मेहनत करनी रहती है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे लेवल से एंट्री नहीं होती, एक तरह से बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से आप किसी इंडस्ट्री में एंटर करते हैं और धीरे धीरे 2-5 साल मेहनत करने के बाद में फिर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाते हैं, एक हैंडसम सी सैलरी आपकी हो जाती है, बट स्टार्टिंग में आपको 2-4 साल हार्डवर्क करना रहता है क्योंकि एज भी आपकी कम है ना। अभी 10th के बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा किया, मतलब 20-21 साल के आसपास आपकी एज है, तो 20-21 ईयर्स के अंदर आपने अपना जॉब स्टार्ट किया और 4-5 सालों में आप जब आपकी एज 25 ईयर्स तक होती है तो आप एक ठीक ठाक सैलरी पे पहुंच जाते हैं, अगर आपने स्टार्टिंग आपकी ठीक ठाक हो गई है तो, राइट। तो ये एक सारे एडवांटेजेस हैं डिप्लोमा कोर्सेज के। अब देखिए किन किन फील्ड्स में है, थोड़ा मैं टाइम जो है वो इस बात पे स्पेंड करूंगा कि किन किन फील्ड्स में है। थोड़ा सा डिप्लोमाज की दिक्कत क्या है कि जैसे आप कोई हरियाणा से बिलोंग करता है, कोई आप में से उत्तराखंड से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, तो हमारे आसपास जो डिप्लोमा कॉलेजेस है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं, कुछ कॉलेजेस में उतने कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, एक स्पेसिफिक से कोर्स अवेलेबल है। एक बहुत बड़ी हमारे कॉलेजेस की प्रॉब्लम क्या रहती है कि कॉलेजेस में प्लेसमेंट की फैसिलिटी ज्यादा नहीं होती, मतलब जितने डिप्लोमा कॉलेजेस हैं वहां प्लेसमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो अगर उस चीज को थोड़ा एक तरह से ध्यान दिया जाए तो बच्चों की अगर वहीं से ही प्लेसमेंट होनी स्टार्ट हो जाए तो डिप्लोमा कोर्सेज भी काफी मार्केट में वेटेज ले के आ सकते हैं। तो जैसे पहले हम बात करेंगे कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्सेज, ठीक है, ये भी आपके डिप्लोमा के अंदर आते हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। ये बेसिकली होटल से डील करते हैं या ऐसा इंडस्ट्री जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, इसमें आपका डिप्लोमा होता है फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंदर। अब ये फूड एंड बेवरेज सर्विस जो है, जैसे जितनी भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक जिसे हम कहते हैं, कोका कोला है, कोक है, तो आप अगर यहां से डिप्लोमा करते हैं तो उसमें जॉब आपको मिल जाती है एज ए फूड एनालिस्ट की, ठीक है, इस तरह की जॉब्स रहती हैं। डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी होता है, जैसे आप सोच के देखिए गुड़गावा में या एनसीआर के अंदर अगर आप बेकरी का प्रोडक्ट जो बनाना सीखना चाहते हैं तो उसकी क्लासेज के काफी ज्यादा फीस चार्ज की जाती है प्राइवेट के अंदर, ठीक है, मतलब आपको बेकरी और जो कन्फेक्शनरी की आइटम्स होती है काफी ज्यादा हैवी फीस चार्ज की जाती है सिखाने के लिए, केक बनाना सिखाना और प्रोफेशनली काम करना। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का बेकरी के अंदर तो उसके बाद आप अपनी बेकरी ओपन कर सकते हैं, और स्मॉल स्केल पे आप देखिए आज के टाइम के अंदर
जो बेकरीज हैं बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट से, देखिए ये वो चीजें हैं बेसिकली जो वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट ही यही था कि आप लो इन्वेस्टमेंट से अपना काम स्टार्ट कर सके, ठीक है। जैसे अगर आपने बेकरी में कोर्स किया हुआ है तो आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से अपनी बेकरी ओपन कर सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, राइट। डिप्लोमा 3 साल का होता है, जितने भी डिप्लोमा होते हैं ना, देखिए 10th क्लास के बाद में जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो सभी 3 साल के होते हैं, ठीक है, कि जो डिप्लोमा होल्डर है वो 12th के इक्विवेलेंट है, तो 3 साल का डिप्लोमा रहता है। क्वेश्चन था जैसे मैंने आंसर किया उसका, हाँ जी मैं बात कर रहा था बेटे बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का, तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आज के समय में केक्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा हो चुकी है, मेरे हिसाब से कोई विरला ही घर ऐसा होगा जिसमें बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाता है बिना केक, ठीक है, छोटे छोटे बच्चा, ठीक है, तो वो मतलब अगर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है या फैमिली में कोई भी फंक्शन है, एनिवर्सरी है किसी की, तो केक तो बहुत छोटा, मतलब केक तो एक आप मान के चलिए असेंशियल आइटम है, ठीक है। आप अपने आसपास में भी देखेंगे काफी बेकरीज होती हैं, तो अगर आपने प्रोफेशनली तरीके से कोर्स किया हुआ है तो आप उसको काम कर सकते हैं। डिप्लोमा की एज लिमिट जो है वो मतलब 22 से 23 साल तक है, मतलब जैसे आपकी 10th जो है ना 17 ईयर में हो जाती है, ऑलमोस्ट 17 नहीं तो 18 में हो जाती है, तो उसके बाद 4-5 साल तक आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। गैप ईयर के लिए आपको सर्टिफिकेट देना होता है, एक एफिडेविट आपको देना होता है कि ये जो गैप आपका है इसमें आपने कुछ किया है। ऐसे ही फूड प्रोडक्शन में क्राफ्ट कोर्स है, आप देखिए रीड के सेंटर्स पे भी कई सेंटर्स पे ऐसी एक्टिविटी की गई है, जैसे जहां पर फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड, फूड मतलब एक तो हम खाना बनाते हैं एट अवर होम, ठीक है, एक हम प्रोफेशनल कुकिंग करते हैं, प्रोफेशनल कुकिंग मतलब हमें 50 लोगों का खाना बनाना है, 100 लोगों का खाना बनाना है। मैंने देखा है पीछे कई सेंटर्स के ऊपर, जैसे आपका एक तरह का जो कुमासपुर सेंटर है, कई सेंटर्स में इस तरह की ट्रेनिंग भी हुई है। तो जो डिप्लोमा की एज जो है वो आपकी मिनिमम 17 है, मैक्सिमम जैसे मैंने आपको बताया 4 से 5 साल है, बट भाईपाल जी ने आंसर किया है कि 24 साल तक आप डिप्लोमा कर सकते हैं, तो 17 से 24 साल तक एज है इसमें, ठीक है। फिर डिप्लोमा इन कुकरी है, हाउस कीपिंग है, रेस्टोरेंट एंड काउंटर सर्विस है, होटल रिसेप्शन है, हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशन मैनेजमेंट है। आप देखिए जैसे अगर आपको होटल इंडस्ट्री में काम करना है तो उसमें एक ऑप्शन तो क्या रहता है कि 12th के बाद आप होटल मैनेजमेंट करिए, कोर्स करिए, ठीक है, वो आपका 3 साल का कोर्स रहता है BSc इन होटल मैनेजमेंट। उनका भी हम एक अलग से क्लास लेंगे कि जिसमें मैं होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग का भी हमने एक अलग से सेशन प्लान किया हुआ है। तो एक तरीका तो क्या रहता है कि पहले आपने 12th किया और 12th के बाद में आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, 3 साल का आपका कोर्स रहता है, BSc इन होटल मैनेजमेंट होती है। सेकेंड ऑप्शन क्या रहता है कि आपने डिप्लोमा किया 3 साल का 10th के बाद, और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के किसी भी कोर्स में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो वो करने के बाद आप उस इंडस्ट्री में काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आपके आसपास में इतने होटल्स ओपन होते हैं, काफी रेस्टोरेंट्स हैं, तो उन रेस्टोरेंट्स में जो लोग काम करते हैं, पहले तो क्या होता था कि जो एक तरह से जो वेटर है या जो कुक है वो कोई भी एरा गेरा रख लिया जाता था, बट आज के समय में आप देखेंगे जैसे ही होटल का लेवल ज्यादा बढ़ता जाता है तो दे ऑल्सो नीड सम प्रोफेशनल पीपल, ऐसा लोग, ऐसे लोग जिनको उसके बारे में पता हो। तो एक ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का भी स्कोप है और इसमें भी सोचा जा सकता है डिप्लोमा करने का अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इसके बाद सेकंड आता है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जो हमारे एक तरह से जो टेक्निकल हम कहें जिसको, कि ज्यादातर बच्चे जिस लाइन में जाके डिप्लोमा करते हैं, मैक्सिमम आप देखेंगे जब जहां भी हम वोकेशनल या वोकेशनल कोर्सेज या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बात करेंगे तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करते हैं, ठीक है, जिसमें आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप होता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जॉब जल्दी मिल जाती है। आप देखेंगे इंडिया में इतनी कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ट्रक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, जहां पर आपको अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको मतलब जॉब मिल जाती है इजिली, स्टार्टिंग लेवल से आपकी एंट्री होती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, फिर आप धीरे धीरे अपना करियर बना सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होता है, सिविल इंजीनियरिंग में होता है, सिविल इंजीनियरिंग में तो गवर्नमेंट जॉब्स भी काफी निकलती हैं अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो, रेलवेज में पीछे हमने बात किया था, जैसे रेलवेज में तो डिप्लोमाज की वैकेंसी ज्यादा आती है,
जैसे आपको ध्यान हो मैंने अभी पीछे एक सेशन लिया था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रेलवे भी, जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है उसमें अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। तो रेलवे में जो भी हमारी टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है, उन टेक्निकल पोस्ट में काफी पोस्ट ऐसी हैं जो डायरेक्ट आपसे डिप्लोमा मांगती है। तो उसमें अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, मतलब ये सारी स्ट्रीम्स हैं, इनमें इंजीनियरिंग भी होती है, इन सब में आप बीटेक भी कर सकते हैं। पर अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है इसके अंदर तीन तीन साल का, अब तेरी समस्या थोड़ी ये रहती है, मैं आपको बताऊं एक्चुअल रूट कोज क्या है, दिक्कत कहां पर है। दिक्कत सारी यहां पर है कि हमारे इंडिया में वोकेशनल कोर्सेज या हम डिप्लोमाज को कहें, इनको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, ठीक है। उसके पीछे कारण क्या है कि इतना सीरियसली नहीं लेते, जो कॉलेज में टीचर्स हैं वो भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, और दूसरा बच्चे भी नॉन सीरियस एटीट्यूड इसमें रखते हैं। अगर आप किसी अच्छे पॉलिटेक्निक से तीन साल का डिप्लोमा करते हैं, थ्री ईयर बहुत बड़ा टाइम होता है, तो जिस भी फील्ड में आप डिप्लोमा करेंगे उस फील्ड में आपको एक अच्छा नॉलेज हो जाता है, अच्छा अवेयर हो जाते हैं उस फील्ड से रिलेटेड, आपको उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल नॉलेज काम करने में चाहिए उतना टेक्निकल नॉलेज आपको मिल जाता है। आप देखेंगे, जैसे मैं आप एक चीज और ऐड करूं यहां पर, काफी बच्चे ऐसे हैं जो दे

आगे फर्दर आप उसमें इंजीनियरिंग करना चाहें तो फिर आप अपना इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं स्टेट वाइज, जैसे हरियाणा की हम बात करें चाहे हम यूपी की बात करें, तो आपका जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, या टाउन एंड प्लानिंग का डिपार्टमेंट है, या काफी डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर डिप्लोमा होल्डर की वैकेंसीज आती है। आपका जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है वहां पर डिप्लोमा होल्डर्स की, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल्स में किया हुआ है, उनकी काफी वैकेंसी आती है। आपके जो एक तरह से टाउन प्लानिंग है उनमें सिविल इंजीनियरिंग की काफी वैकेंसीज आती है अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्ट्रीम में डिप्लोमा किया है। लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण, देखो जनरली क्या होता है, मैंने देखा बहुत बच्चों से मिलते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया और बाद में दे से भी डिप्लोमा करने का कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। वो क्या होता है कि वो बाहर जॉब अप्लाई नहीं कर पाते ज्यादा, मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ वैकेंसी निकली हुई है, कॉलेज उसमें सपोर्ट नहीं करता प्लेसमेंट के अंदर, तो जिस कारण फिर वो दे फील कि डिप्लोमा का कोई ज्यादा यूज नहीं हुआ। बट काफी बच्चे ऐसे भी हैं एनसीआर एरिया में स्पेशली जो डिप्लोमा करने के बाद में एक ठीक ठाक कंपनी में जिनकी सेटलमेंट हो जाती है और एक अच्छा लेवल पे धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ और भी काफी फील्ड्स हैं जिसमें डिप्लोमा होता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म में है, इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड पर्सनल दैट इज प्रेजेंटेशन स्किल्स में, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में, फैशन डिजाइनिंग है, हेयर एंड स्किन केयर में। आप देखते हैं आजकल वीएलसीसी का नाम आप सबको पता ही होगा, वीएलसीसी एक तरह से आपका जो ब्यूटिशियन से रिलेटेड कोर्सेज कराते हैं, ठीक है, या उसमें आपका हेयर या जो स्किन केयर के कोर्सेज रहते हैं, तो वो एक तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, बट वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये इनसे रिलेटेड डिप्लोमाज होते हैं। ब्यूटिशियन का डिप्लोमा है, इवेंट मैनेजमेंट है, ऑफिस मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, कॉस्मेटिक एंड लाइफ प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, कैटरिंग मैनेजमेंट है। तो मतलब इट्स अ वेरी वाइड एरिया, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा स्कोप है, काफी ज्यादा इसमें स्ट्रीम्स है, ठीक है, ज्यादा स्ट्रीम्स हैं, इसलिए आप अपना फ्यूचर बिल्डअप कर सकते हैं अगर आपने किसी भी कोर्स में डिप्लोमा किया है। बट स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता, इमीडिएट बहुत अच्छी जॉब्स नहीं है डिप्लोमा में। डिप्लोमा करने के बाद कुछ टाइम आपको मेहनत करनी रहती है, तभी आप अच्छी जॉब ले सकते हैं। अब क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, देखो डिप्लोमा तो आपने कर लिया, डिप्लोमा करने के बाद क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, जैसे मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको देता हूं। वेब डेवलपर का आप काम कर सकते हैं, वेब डेवलपर मतलब जो एक टाइप से जो आप लोग की जो वेबसाइट्स होते हैं जो डेवलप करते हैं, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया हुआ है और उसके बाद आपने किसी प्राइवेट कॉलेज से साल डेढ़ साल का कोई कोर्स भी किया है थोड़ा लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, तो वेब एज ए डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। साइट्स जो बनती हैं वो आप बन सकते हैं बना, जो डेटा एनालिस्ट का काम होता है, ब्यूटिशियन का आप अपना काम कर सकते हैं। आप देखो मैं काफी रीड के कई सेंटर्स पे मैं एज ए लास्ट ईयर मैंने कई सेंटर्स आपके देखे, जहां पर क्या होता है कि एक टाइप से ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया जाता है, ठीक है, और ब्यूटिशियन का कोर्स में भी आपके लेवल्स हैं लेवल वन लेवल टू, और जब आप एडवांस कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद मोटिवेट किया जाता है फीमेल्स को कि आप अपना ब्यूटी पार्लर खोलें। कई जगह पर मैंने देखा है कि काफी सक्सेसफुल ब्यूटी पार्लर भी है, मैं जैसे रामपुर की बात करूंगा, रामपुर में मैं गया था पीछे हो गया मुझे साल सवा साल, तो वहां पर जैसे भी हमने जैसे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे काम किया था, तो वहां पर काफी एग्जांपल्स ऐसे थे जिन्होंने रीड के सेंटर के थ्रू ब्यूटिशियन का कोर्स किया और ब्यूटिशियन का कोर्स करने के बाद फिर उन्होंने अपना जो पार्लर ओपन किया और काफी पार्लर उसमें ऐसे हैं जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक टाइप से जो कुमासपुर में भी ऐसा चल रहा था आपका, माने मतलब काफी सेंटर्स पे ये कोर्सेज चलते हैं। तो मतलब वही चीज है कि वहां पर हम जो इनफॉर्मल कोर्स आपको दे रहे हैं, वही अगर आपने 10th के बाद एक 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो एक तरह को हम कह सकते हैं ये फॉर्मल एजुकेशन है आपकी, तो ये चीजें आप सारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आजकल जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये भी एक बहुत फ्यूचर का एक तरह से हम ये कह सकते हैं द करियर। SEO बेसिकली क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि आप देखते हैं आजकल लोग YouTube के थ्रू, Facebook के थ्रू अपने चैनल्स बनाते हैं या काफी एक्टिविटी करते हैं,
ताकि उन

0: तो वहां से इनकम आनी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो लोग साइट्स बनाते हैं और ये चाहते हैं कि जब सर्च किया जाए तो उनका साइट सबसे ऊपर आए, उनका नाम सबसे ऊपर आए। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसका एक कोर्स होता है। अगर आपने ये किया हुआ है, एसईओ का कोर्स किया हुआ है, तो फिर आप एज ए एसईओ पर्सन काम कर सकते हैं कंपनीज के लिए। हेयर ड्रेसर का भी काम रहता है, आपका ग्राफिक डिजाइनर है, सोशल मीडिया मैनेजर है, शेफ है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मतलब इट्स अ वेरी वाइड स्ट्रीम। मैं आपको बताऊं, जो अगर हम कई और कंट्रीज को कंपेयर करें, यूएसए की बात करें, यूके की बात करें, तो वहां पे अर्ली एज से ही टेक्निकल एजुकेशन पे ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि हमारे इंडिया में अलग है। हमारे इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन का भी ज्यादा रोल नहीं है, अभी इतना ज्यादा मतलब क्रेज नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काम किया गया है, थोड़ा सा उसमें कहा गया है कि वोकेशनल कोर्सेज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एकेडमिक कोर्सेज, क्योंकि वोकेशनल कोर्सेज के बाद आप बहुत जल्दी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना कुछ काम कर सकते हैं। आप देखते हैं, सुनते भी होंगे कि जो मोदी जी जितनी बार भी स्पीच देते हैं, कई मैक्सिमम टाइम चाहे वो अपने मन की बात में दे चाहे कहीं भी दे, तो उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा रहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जाए। मतलब हम ये ना माने कि सरकार हमें जॉब देगी, हम खुद ही अपने एंड के ऊपर जॉब क्रिएशन की बात करें। ठीक है, मतलब अभी हमारे यहाँ ट्रेंड थोड़ा रिवर्स है। हम चाहते हैं कि हमने एजुकेशन कंप्लीट किया, अपना कोर्स कर लिया, अब कोर्स करने के बाद में अब जो गवर्नमेंट है वो हमें जॉब देते, एक तरह से ये हमारी एक तरह से हम कह सकते हैं कि दैट इज साइकोलॉजी, हमारा सोच ये है। जबकि गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, तो हमें खुद कुछ भी कोर्स, कोई भी टेक्निकल स्किल लेने के बाद में हमें अपने लेवल पे मेहनत करनी चाहिए और खुद भी हम अपने पैरों पे खड़ा हों, और उसके साथ साथ हमने कुछ लोगों को अपने साथ में एम्प्लॉय भी करा, उनको भी हमने जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी। तो ये एक तरह से मतलब ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है, जो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप एक तरह से अपना काम कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आपको किसी की नौकरी करने की नीड नहीं है, आप थोड़ी सी मेहनत करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिप्लोमा के बाद एक ये काम हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका डेवलपमेंट है वो काफी उसको हेल्प मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स है, ऐसा नहीं कि मतलब प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं, एक तरह से काफी गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलती हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। ठीक है, मैंने पिछले जैसे अभी अक्टूबर और सितंबर की मैंने काफी जॉब्स निकाल के हमें शो करता हूँ किन किन कंपनीज में, किन किन ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब मिलती है या गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है। देखिए, आप सब जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, मतलब एक तरह से जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती है, जिसमें सेल या आपकी स्टील की कंपनी है, भेल है, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, बेल है, गेल है, IOCL है, मतलब पेट्रोलियम कंपनीज है, HPCL है, ONGC को तो सब जानते ही है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है। तो मतलब ये सारी जो है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। ठीक है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिनके इंडिया में कई कई जगह पर काफी बड़े बड़े प्लांट हैं। ठीक है, अब उन प्लांट्स में क्योंकि जब टेक्निकल काम होगा तो टेक्निकल लोग चाहिए काम करने के लिए, और टेक्निकल लोग जो काम करने के लिए चाहिए होते हैं उसमें प्राइमरी दो तरह के टेक्निकल लोग चाहिए होते हैं। पहले तो वो जो हायर क्वालिफिकेशंस के हैं, हायर क्वालिफिकेशंस का मतलब क्या है, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है। ठीक है, सेकंड जो एक तरह से जो मिडिल लेवल जो एम्प्लॉयज होते हैं वो चाहिए होते हैं, जिसमें डिप्लोमा होल्डर्स को काफी एक तरह से उनकी डिमांड रहती है। तो इसमें डिप्लोमा होल्डर्स को जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी मिलती है या टेक्नीशियन की वैकेंसी मिलती है। अब देखिए, कहीं भी JEE की वैकेंसी निकलती है ना जूनियर इंजीनियर की, क्योंकि जो डिप्लोमा होल्डर एक तरह से जूनियर इंजीनियर ही है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, जहां भी JEE की वैकेंसी निकलती है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है, वो बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होती है। तो वहां पर आप कर सकते हैं। हाँ सर, जो बीटेक मैं हाँ, उनको अगर उसमें जाना है तो फिर गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये आपने सही यहां बताया, मैं भी इसको बाद में पूरे उसमें डिस्कस करूंगा एक तरह से कि अगर जो बीटेक वालों को अगर इनमें जाना है, इन पीएसयू में जाना है, तो गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही जा सकते हैं, पर डिप्लोमा होल्डर्स में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज डिप्लोमा करने के बाद ही उन्हें मिल जाती है। देखिए ये स्ट्रीम्स है सारी, एग्रीकल्चर में भी डिप्लोमा होता है, ऑटोमोबाइल्स है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, तो ये अलग अलग वैकेंसीज के स्ट्रीम्स हैं। होटल मैनेजमेंट में है, मैरीन इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में है, तो मतलब ये इतनी स्ट्रीम्स में इतने अगर आपने इन स्ट्रीम्स में डिप्लोमा किया हुआ है तो इनकी वैकेंसीज आती रहती हैं टाइम टू टाइम। ये मैंने कुछ पिछले कुछ टाइम की वैकेंसीज का मैं एक चेक कर रहा था, अभी इसमें हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी आई हुई है, राइट। तो ये सभी वैकेंसीज जो है वो अलग अलग कंपनीज में है, जैसे ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे CMPDI है, ये अभी 29 सितंबर को वैकेंसी निकली है इसके अंदर, CMPDI सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये इसलिए आपको मैं यहां बता रहा हूं कि इसमें जो वैकेंसीज आती है ना अलग अलग पूरे इंडिया में PSU फैली हुई है। आप देखेंगे हमारे इंडिया में काफी बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, पर इसमें थोड़ा ये रहता है कि या तो हमारा घर ऐसी जगह पे हो जो मतलब जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि जॉब तो वहां मिलेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, आप में से जो लोग रामपुर के पास हैं, उत्तराखंड से जैसे हैं, तो आप जैसे उत्तराखंड से हल्द्वानी की तरफ जाएंगे तो वहां पर अब काफी बड़ा इंडस्ट्रियल वो है, मतलब एक तरह से जो लाल कुआं है, पंत नजर है, वो जो बेल्ट है, तो वहां काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई हुई है, मतलब वहां जॉब इजिली मिल जाती है। हाँ, दैट इज द रुद्रपुर। और वहीं अगर आप इधर आए अपना NCR एरिया में आते हैं, अगर आप गुड़गांव की बात करते हैं तो जैसे आपका मानेसर है, तो यहाँ पर काफी इंडस्ट्रीज है, तो बहुत इजीली डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब्स मिल जाती है। या फिर अलग अलग प्लेसेस पर, जैसे कुछ स्टेट वाइज भी वैकेंसी निकलती हैं। जैसे देखो आप इसमें देखेंगे जो सेकंड पोस्ट है, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 1661 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज आई है, ठीक है, जो फ्रेशर्स के लिए है, जिसमें फिक्स किया होता है कि आपका ऑफिस एंड मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मतलब वैकेंसीज काफी होती हैं, थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए, आपके पास में लिंक्स के सोर्सेज होने चाहिए भी, कहां से आपको पता चल पाए कि किस किस फील्ड की वैकेंसी कहां से आई है। आजकल तो इंटरनेट के थ्रू आप घर बैठे ही पता कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज और ऐड करूं कि आप में से जो लोग ऑलरेडी डिप्लोमा होल्डर हैं या कोई आगे डिप्लोमा करने की अभी सोच रहा है, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ जो भी आपने 3 साल का जिस भी स्ट्रीम में आपने डिप्लोमा किया, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ आप थोड़ा सा एजुकेशन अपने आप को इंटरनेट नो हाउ, जिसे हम कहते हैं कि अभी अगर हम इंटरनेट नो हाउ की बात करें तो हमें सभी को फेसबुक यूट्यूब तो सबको पता है, सभी लोग उसे यूज भी करते हैं, ठीक है, पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गूगल अलर्ट यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको जॉब्स के बारे में पता करना है, वैसे तो काफी एक तरह से साइट्स भी हैं जो आपको एक टाइप से जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स निकलती हैं वो आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर भी अगर आपको एक स्पेसिफिक जॉब चाहिए, जैसे आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा होल्डर से रिलेटेड आपको जॉब्स के बारे में पता करना है, तो आपने गूगल अलर्ट के अंदर जॉब्स आफ्टर डिप्लोमा डाल दिया, तो उसमें क्या रहता है कि एवरी डे पूरे इंडिया के अंदर किसी भी पेपर में, किसी भी वेबसाइट के ऊपर, गूगल पे किसी वेबसाइट के ऊपर अगर डिप्लोमा के बाद की जॉब निकली है ना, तो उसका एक तरह से आपको लिंक मिल जाता है, तो वहां से आप सर्च आउट कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि वैकेंसीज काफी ज्यादा है। बस ये है कि थोड़ा सा एरिया फर्क पड़ जाता है कि आप अगर NCR में रह रहे हैं और आपकी जॉब निकली है वो आपकी बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, कहीं महाराष्ट्र में है, तो हम अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज हम अगर डिप्लोमा होल्डर्स की बात करें तो 12th, 10th के बाद में 3 साल कोर्स करने के बाद जॉब लेना कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है, और एक तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैकेंसीज रहती है। पर एक प्रॉब्लम और भी है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैकेंसीज है के बाद एग्जाम होता है आपका, एग्जाम मतलब दे टेक द टेस्ट, और टेस्ट में जो आता है वो बेसिकली क्या रहता है कि एक तो आपका जो भी जिस फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस भी फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उस फील्ड के बारे में नॉलेज आपको अच्छी हो, आपने अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रखी हो, और उसके साथ साथ जो सेकंड पेपर आपका रहता है उसमें जनरल रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जो बेसिक आपके सब्जेक्ट होते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत तैयार करना रहता है जो आपको हेल्प करते हैं जॉब लेने के लिए। ये और भी ये आप देखेंगे सभी अक्टूबर मंथ की वैकेंसीज है। आप देखिए ये 7th अक्टूबर, 6th अक्टूबर, 5 अक्टूबर, मतलब ये सारी वैकेंसीज जो है ये बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, ठीक है। कहीं पर 500 वैकेंसीज है, कहीं 42 है, कहीं 21 है, कहीं 36 है, राइट। किसी में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, कोई फ्रेशर के लिए है, ठीक है। और जनरली आप देखेंगे जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस मैंने लिखी हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपकी पीएसयू या गवर्नमेंट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन, मैंने किसी प्राइवेट का नाम नहीं लिखा इसके अंदर, ये बताने के लिए आपको कि गवर्नमेंट में भी डिप्लोमाज की काफी ज्यादा वैकेंसी आती है, बशर्ते अगर हम उसमें थोड़ा सा अवेयर हो उनके बारे में, ठीक है। और अवेयर होने के साथ साथ हम अप्लाई भी करें, क्योंकि बहुत बच्चों की प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो अप्लाई नहीं करते जॉब्स के लिए। आप मतलब मैं हम कई बच्चों को जानते हैं कि उनका एम तो है भी मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बट उनसे पूछे अगर भाई कहाँ का फॉर्म अप्लाई किया, कहता जी मैंने तो कभी फॉर्म अप्लाई नहीं किया, फिर फॉर्म अप्लाई करता है तो वो तैयारी नहीं करता। तो मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि अवेयरनेस होना भी, एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्म भी, उसके बाद प्रिपरेशन करना भी, मतलब एवरीथिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अब ये तो मैंने आपके ऑलमोस्ट सारी बातें आपको समझा दी कि क्या क्या डिप्लोमा में रहता है, और कुछ चीजें और भी हैं भी, जैसे जो अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो उसमें आप प्रोफेशनल स्किल साथ साथ सीख जाते हैं, ठीक है भाई। आपने जो टेक्निकल जो भी आपने ट्रेनिंग किया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया, ठीक है, और वो टेक्निकल स्किल आपने सीख लिया तो जॉब लेने में आसानी रहती है। स्किल्ड एम्प्लॉयज की डिमांड हमेशा से रही है इंडिया में स्पेशली, और आप देखेंगे भी आने वाले टाइम में तो स्कोप और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे आपने सुना होगा अभी कोविड के बाद में, जैसे कोरोना का अटैक हुआ कोविड-19 के बाद में, वर्ल्ड वाइड चाइना को माना गया भी इसके पीछे, जो एक तरह से चाइना वाज रेस्पॉन्सिबल, और स्टार्टिंग में तो यू हैव हर्ड इनटू द न्यूज, जैसे काफी वर्ल्ड में काफी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम चाइना में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वहां से हम अपनी इंडस्ट्रीज को चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे जिसमें जापान था, यूएसए था, फ्रांस था, तो वो मतलब वो चाइना से दे आर नॉट हैप्पी विद चाइना, ठीक है। अब देखिए वहां से इंडस्ट्री अगर निकल के इंडिया में आती है, आप देखेंगे इंडिया ने उसमें फिर काफी इनिशिएटिव लिया और एक तरह से ऑफर भी किया भी आप इंडस्ट्रीज इंडिया में लगाइए, यहाँ पर आपको ये टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा, ये बेनिफिट दिया जाएगा, तो ये काफी ज्यादा बातें चल रही हैं। तो अगर इतनी इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी तो आप सोच के देखिए भी उनमें काम करने वाले लोग भी तो चाहिए ना, और काम करने वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादातर टेक्निकल लोगों की डिमांड होती है, और टेक्निकल लोगों में तो फिर जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वही आपके सामने रहते हैं, ठीक है। तो ये एक हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में अच्छा साइन है कि अगर जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी, जितना प्रोडक्शन एक्टिविटी यहां पर होगा उतना ही डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब मिलेगी, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं। दूसरा एक बहुत बड़ी बात और भी है कि जैसे आपके मेट्रो कॉरपोरेशन है, मैं आपको बताता हूं जो DMRC है, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, हजारों लोग ऐसे हैं, हजारों एम्प्लॉयज ऐसे हैं DMRC के अंदर जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे काम करते हैं DMRC में, और उसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ओनली उसके अंदर क्या कहा गया है कि आपने डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में 10th के बाद। काफी वैकेंसीज निकलती है। अब तो देखो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सैचुरेशन आ चुका है, क्योंकि DMRC ऑलरेडी काफी रिक्रूटमेंट कर चुका है, बट स्टार्टिंग में जब नया नया ये कॉरपोरेशन आपका बना था उसमें जब नई नई वैकेंसी निकलनी स्टार्ट हुई थी तो बहुत बच्चे ऐसे थे जो DMRC के अंदर लग गए, जिन्होंने थोड़ा बहुत मेहनत किया था और डिप्लोमाज किए हुए थे। और ऐसी अब हर स्टेट में आगे जो मेट्रो एक्सपेंड हो रही है, तो जितनी ज्यादा एक्सपेंड होगी उतना ही जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं लोगों के लिए। फिर एक और बहुत बड़ी चीज है कि डिप्लोमा करने के बाद अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहें तो उसमें भी आपको लेटरल एंट्री मिल जाती है, ठीक है। मतलब क्या है कि देखो वैसे तो बीटेक आपकी 4 साल की होती है, ठीक है, अगर आप 12th के बाद करते हैं, तो अगर आपने 12th, 10th के बाद डिप्लोमा किया है 3 साल का, तो उसमें भी आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, तो 1 साल आपका बच जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो इक्वलेंट ही हो जाता है। किसी बच्चे ने 10th क्लास के बाद में पहले डिप्लोमा किया फिर उसने बीटेक में एडमिशन लिया, या आपने पहले 12th किया फिर आपने बीटेक में एडमिशन लिया, तो टोटल टाइम स्पेंडिंग जो है वो ऑलमोस्ट इक्वली रहेगी आपकी, वो आपका 1 साल वेस्ट नहीं जाएगा, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। हर स्टेट इस तरह का लेटरल एंट्री का अपना अलग अलग एग्जाम लेता है। जैसे हरियाणा के जो बच्चे हैं वो लीट का एग्जाम देते हैं, LEET, लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है आपका, लीट का पेपर होता है, हर स्टेट का एग्जाम होता है, उसमें जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं तो वो अपना एक एक टाइप से जो लेटरल एंट्री का एग्जाम लेते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होता है कि आपको वो पेपर पास करना होता है डिप्लोमा के बाद में, और फिर आपका डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा स्कोप हो जाता है, भी आपको टेक्निकल नॉलेज भी आपने सीखा 3 साल के अंदर, अगर आपका उस फील्ड में करियर बनाने का इंटरेस्ट है, हाई से हम लीट कहते हैं लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट, तो अगर आप उस फील्ड में आगे फ्यूचर में और टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप उसी फील्ड के अंदर बीटेक कर सकते हैं, और आपका कोई ईयर भी वेस्ट नहीं होगा, तो सेम उसमें आप अपनी इंजीनियरिंग करके अपना करियर आगे लेके जा सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले डिप्लोमा करते हैं फिर 1-2 साल जॉब करते हैं, ठीक है, उसके बाद दे टेक एडमिशन इन द बीटेक, राइट। तो ये एक अच्छी आपके लिए वो हो जाता है, भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन भी हो गया और आपको इंडस्ट्री के बारे में पता भी चला, आपने इंडस्ट्री में काम भी किया, टेक्निकल एक्सपीरियंस भी आपका हुआ, तो ये भी एक स्कोप रहता है। और हर स्टेट में पेपर होता है, मैंने तो हरियाणा का आपको बताया जैसे लीट का पेपर है, ऐसे ही DTE केरला के अंदर होता है, वो मतलब एग्जाम का नाम अलग अलग है, बाकी पेपर जो है एग्जाम जो है वो हर स्टेट में होता है लेटरल एंट्री के लिए, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं लेटरल एंट्री की स्कीम के अंदर, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन था, मैंने काफी चीजें आपको बताई इससे रिलेटेड, या एक दो चीजें मैं और भी ऐड करूंगा कि जैसे मैं PSU की बात कर रहा था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, जिसमें आपको मैंने ONGC, गेल इन सब के बारे में बताया। देखिए उनमें क्या होता है ONGC में गेल में कि अगर आपको वैसे जॉब लेनी है इंजीनियर की तो बीटेक आप करते हैं, तो बीटेक के बाद फिर आपको गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है। और वही अगर आपको जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी अप्लाई करनी है तो जूनियर इंजीनियर की काफी वैकेंसीज निकलती हैं, जिसमें आपको एक आपके फील्ड से रिलेटेड टेक्निकल नो हाउ से रिलेटेड आपने एग्जाम देना है, और उसके बाद फिर आपको अपना जो थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग का पेपर रहता है तो वो आप उसे दे सकते हैं। तो स्कोप इज वेरी वाइड, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड वाइड कंपेयर करते हैं तो डिप्लोमा कोर्सेज को काफी वेटेज दिया जाता है। और मैं एक चीज और यहाँ पर ऐड करूं कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप बाहर भी जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो उन लोगों की है जो टेक्निकल काम कर सके, मतलब टेक्निकल मतलब जिसको हम लोअर टेक्निकल कहते हैं, जैसे आप अपने यहाँ पर जो फिल्टर का काम होता है, ठीक है, मतलब ऐसे काम, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में वहां के जो लोग हैं वो मतलब दे यू कैन से दैट दे हैव सो मच मनी, या हम ये कह सकते हैं कि वो छोटे काम नहीं करते। जबकि इंडिया से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी फील्ड के अंदर तो आप फॉरेन में जाके भी अपना एक ऐसे करियर स्टार्ट कर सकते हैं उसमें, और आपको वहां पे जॉब्स मिल जाती है, ठीक है। तो मतलब स्कोप इज वाइड, थोड़ा सा पॉजिटिव लेके आपने इस चीज को करना है, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको अपनी ओर से बताया है। इसके अंदर एक चीज और ऐड करूं, जैसे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होता है, अब फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो लोग डिप्लोमा करते हैं तो उसका भी काफी स्कोप है। अब देखिए आज इतनी इंडस्ट्रीज ओपन हो चुकी है फूड जो फूड से एसोसिएटेड है, तो मतलब स्कोप काफी रहता है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आपको इसमें काम करने की जरूरत रहती है, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड, बाकी आपकी कोई क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करें।
1: हाँ दिनेश जी, इसमें है ना 2-3 पॉइंट ऐड था। 10th के पास, 10th पास करके जैसे कि फुटवेयर टेक्नोलॉजी जैसे कि आगरा में है, 10th पास
0: जी, जी सर जी बिल्कुल सर।
1: और आप जिस तरह ज्वेलरी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जैसे पुणे में है, आपको ऑलरेडी चेन्नई में भी है, जैसे ज्वेलरी पर भी आपको डिप्लोमा करना चाहता है उसका भी है। प्लस सबसे बड़ी बात है, शायद किसी को पता हो या नहीं भी हो, जो हमारे पूरे भारतवर्ष में जो है टेंथ पास करके 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होती है, वो जो टेंथ पास करके भी लड़के अप्लाई करते हैं, प्लस टू करके भी, जैसे इंडो डेनिश टूल रूम और इंडो जर्मन टूल रूम, इंडिया और डेनमार्क के कोलेब्रेशन से कॉलेज बनी हुई है, जमशेदपुर में है, और एक है इंडो जर्मन टूल रूम, इंडिया और जर्मनी के कोलेब्रेशन से कॉलेज बनी हुई है, वो है इंदौर में। ये दोनों टेंथ पास करके, प्लस टू पास आउट करके, टेंथ पास करके जाएंगे तो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है, प्लस टू करके जाएंगे तो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसके लिमिटेड सीट होते हैं। तो ये लोग अप्रैल में भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका मेन एग्जाम होता है और जुलाई से सेशन स्टार्ट होता है।
0: तो मतलब ये सारा बात यह है कि वोकेशनल कोर्सेज में स्कोप काफी है, ठीक है, वो एक आप मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं कि बहुत छोटी एज में आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब अपना आपने जॉब स्टार्ट कर दिया और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे उसमें यू कैन गेट प्रमोशंस, और अगर आप अपना भी काम करना चाहें तो इसमें लो इन्वेस्टमेंट पे अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये काफी वाइड एरिया होता है।
1: कंट्री में भी सर आपने बताया भी, जैसे साउथ अफ्रीका हुआ, गोल्फ कंट्री में भी काफी डिमांड होती है डिप्लोमा के।
0: गोल्फ कंट्री में बहुत डिमांड,
1: बहुत बहुत सर। मेरा है कि वो स्टेट वाइज जो एनटीपीसी है, जैसे कि स्टेट वाइज जहाँ पे इनकी ये मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस होती है, इंटरनल वो लोग शायद आईटीआई वालों को या अदरवाइज लेकर के डिप्लोमा वाले को भी वो लोग हायर करते हैं क्या? जैसे जैसे उनका ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम नहीं होकर के जो कंडक्ट जो जहाँ पे इनकी ऑफिस है, जैसे कि चित्रकूट में उसका एनटीपीसी का है, फिर उसके बाद यहाँ दादरी में एनटीपीसी, तो ये लोग इंटरनल भी शायद निकालते हैं।
0: क्या है सर कि वैसे तो जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसमें एनटीपीसी भी है, नेशनल थर्मल पावर है, तो इनका तो प्रोसेस ये होता है सर कि ये अपनी दो तरह की जॉब्स निकालते हैं, एक तो सर जो परमानेंट बेसिस पे निकालते हैं और सेकंड वो जो एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं। जो तो एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं वो तो ये इंटरनल सोर्सेज से या कहीं से भी कर लेते हैं, बट जो परमानेंट पोस्ट निकालेंगे ना, परमानेंट पोस्ट में तो इनको नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है और उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। मतलब जो एक तरह से जो परमानेंट पोस्ट रहती है वहां तो एक प्रॉपर प्रोसेस से ही वो काम चलता है, उसका टेस्ट भी लेते हैं ये लोग, सारी चीजें करते हैं। हाँ ये है कि कई बार कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो आपकी एडहॉक इन नेचर होती है, एक साल की, दो साल की, या जो टेम्परेरी पोस्ट होती है, तो वहां तो ये इंटरनल सोर्सेज से कहीं से भी कुछ ना कुछ कर जाते हैं, बट एक्चुअल जो जो आपके परमानेंट जॉब है, जिसको हम जूनियर इंजीनियर की जॉब कहते हैं इसके अंदर, तो वो तो एक प्रॉपर प्रोसेस से निकालते हैं।
1: बहुत सारा स्कोप है टेंथ पास करने के बाद, आईटीआई करने के बाद या पॉलिटेक्निक, बहुत सारे स्कोप है। थैंक यू दिनेश जी।
2: ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी कूड़ा पीछे भी, दाएं भी कूड़ा बाएं भी।

0: नहीं, गली में कूड़ा है, पार्कों में कचरा, दुनिया हमारी अब स्वर्ग नहीं। ए भाई
1: जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चों की बीमारियों का कारण आपके मोहल्ले का कूड़ा भी हो सकता है? पर यह कूड़ा आता कहाँ से है? अरे जनाब, आप ही के तो घर से। आपने कूड़े को निकाला, भरा और फेंक दिया, और बदले में आपको क्या मिला? बदबूदार नालियाँ, मक्खियाँ जो लाती हैं बीमारियाँ। आपका बच्चा घर से बाहर जाए और बीमारियाँ घर लाए।
2: तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें आप क्या कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं कूड़े का विभाजन। कूड़े को दो तरह के थैले में बांट लें, एक में गीला कूड़ा जैसे कि फल व सब्जियों के छिलके, बचा खाना, और दूसरे थैले में सूखा कूड़ा जैसे कि पेपर और प्लास्टिक डाल दें।
1: सरकार ने आपके मोहल्ले में दो प्रकार के कूड़ेदान रखे हैं, हरा गीले कूड़े के लिए और नीला सूखे कूड़े के लिए। यदि आप कूड़ा अलग अलग करके इसमें डाल देते हैं तो गीले कूड़े में खाद बनाई जा सकती है और सूखे कूड़े को तैयार कर दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है।
2: इससे दूर रहेंगी बीमारियां और सुंदर होगा वातावरण। तो अब जब आपका बच्चा घर से बाहर जाए तो बीमारी घर में लेकर ना आए।
1: याद रखिए,
3: कूड़ा निवारण स्वस्थ जिंदगी।

भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी का करो या मरो आह्वान और देश भर से अनगिनत आजादी के मतवाले बलिदान की राह पर चल पड़े। उन्हीं में से एक वीरांगना थी कनकलता बरुआ। असम के गोहपुर में जन्मी कनकलता के मन में क्रांति का अंकुर महज 7 वर्ष की उम्र में ही फूट चुका था, जब कनकलता ने पास के गांव में हुई एक क्रांतिकारी सभा में हिस्सा लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तेजपुर में मृत्यु वाहिनी दल के गठन के दौरान कनकलता दल की सक्रिय सदस्य बन गईं। आंदोलन के समर्थन के लिए मृत्यु वाहिनी ने गोहपुर पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्णय लिया और 20 सितंबर 1942 को हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लिए कनकलता जुलूस के साथ आगे बढ़ने लगी। पुलिस की चेतावनी से बेपरवाह निर्भीक कनकलता के नेतृत्व में जुलूस आगे बढ़ता रहा। जुलूस को रोकने के लिए पुलिस ने गोली चला दी। गोली लगते ही कनकलता गिर पड़ी और आखिरकार हाथ में तिरंगा और दिल में आजाद राष्ट्र का सपना लिए ये महान स्वाधीनता सेनानी हमेशा के लिए पंचतत्व में लीन हो गई।

0: बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा इतना सम्मान किया। मैंने आपको तब सुनाया था कि इतना सारा नेशनल अवार्ड मिला है। मेरा फादर 90 इयर्स ओल्ड है और ब्लाइंड है। इतना सारा नेशनल अवार्ड मिला तो जो नेशनल अवार्ड हमको जो मिला था ना, उनको सबको बुलाया, बिठाया और बात किया कि नेशनल अवार्ड इतना सारा लेकर क्या करोगे। तो हम तो सब चुप हो गए कि क्या करेंगे, तो मतलब क्या है। तो बोले और कुछ नहीं करना है, लेकिन आपके पास जो स्किल है वो बांटो, अब सबको बांटो, सबको दो, वो स्किल दूसरों को सिखाओ। तो योगानुयोग मैडम से भी मुलाकात हो गई और ये मौका मिल गया, अब ये बांटना है बस। धन्यवाद।
1: इनको ना एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं इटली से, जर्मनी से। ही कांट स्पीक इंग्लिश, वो समझ नहीं सकते हिंदी, तो वो कहते हैं मैं उनको अपनी ही किसी लैंग्वेज में ऑर्डर ले लेता हूँ और सप्लाई कर देता हूँ और कम्युनिकेशन।
0: हमारा एक मिशन है, हमारा फैमिली का एक मिशन है, एफ टू एफ, फार्मर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फाइबर, फाइबर से फैब्रिक, फैब्रिक से फैशन, फैशन से फॉरन।

आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हमने पहले स्लाइड्स में बात करी थी कि हम सबके गोल्स हम डिफाइन करते हैं। लीडर्स हमेशा अपने गोल्स डिफाइन करते हैं और उस पे बाय हुक एंड क्रूक, वेदर दे स्टैंड अलोन, वेदर दे हैव चैलेंजेस, वेदर दे हैव पीपल दोज हु आर नॉट सपोर्टिंग देम, दे वॉक थ्रू ऑल दीज थिंग्स। तो इसको क्या बोलते हैं? चेजिंग योर गोल्स। हम अपने गोल्स को चेज करते हैं कि हम कैसे उनको फुलफिल करें। तो जब हम अपने गोल्स चेज करते हैं, हमारे ड्रीम्स, हमारे एम्बिशंस, तो हमें डिसरिगार्ड द पीपल हु टेल यू इट कैन नॉट बी डन। जो लोग बोलते हैं कि ये तो हवा में बात है, ये हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो सकता, तो उन लोगों को डिसरिगार्ड ही कर देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो क्या होगा, अगर 10 में से 5 लोग बोल रहे हैं नहीं हो सकता, तो आपकी 50% एनर्जी तो उन्होंने लाइक वैनिश कर दी, बिकॉज यू ऑल्सो गेट कंफ्यूज वेदर वी आर एबल टू डू और नॉट, राइट? तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में सुनना नहीं चाहिए, और इसका यही मकसद है। डिसरिगार्ड मींस, मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल बायकॉट कर दो उनके साथ। डिसरिगार्ड मींस डोंट वेस्ट योर एनर्जीज, योर टाइम, योर पेशेंस टू लिसन टू देम, दोज हु आर सेइंग इट कैन नॉट बी डन, बिकॉज यू एज ए लीडर हैज सम मिशन, मीनिंगफुल काम करना है आपको। तो अगर आप मीनिंगफुल काम करने में कोई भी ऐसे बोल रहा है कि ये नहीं हो सकता, तो वो हमें नजरअंदाज कर देना, हमें सुनना ही नहीं है। टर्न अ डेफ ईयर टू क्रिटिक्स, राइट? बिकॉज क्रिटिसिज्म करना बहुत इजी है, पर साथ चल के काम करना बहुत टफ है। तो मैं ये भी हमेशा अपनी टीम को बोलती हूँ कि अगर कुछ नहीं हो रहा फील्ड पे, तो हमें एनालाइज करने की भी जरूरत है कि शायद वो कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और उनको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, राइट? सो व्हाट यू अचीव इन लाइफ विल बी लिमिटेड ओनली बाय योर एम्बिशंस। कुछ एम्बिशन होगी लाइफ में कुछ करने के लिए, विदाउट एम्बिशन तो लाइफ ही नहीं है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो जब हमें कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है, तो हमारे एम्बिशंस तो है ही है, राइट? और अगर हम अपनी अचीवमेंट्स को कम करेंगे, तो हमारे एम्बिशंस भी लिमिटेड हो जाएंगे। और अगर हम अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर काम करते रहेंगे, और नेचुरली रिजल्ट आएगा। क्योंकि पिछली बार मैंने बोला था कि अगर पॉजिटिव रिस्पांस है, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव सोच है, तो व्हेन वी लर्न हाउ टू गिव द रिटर्न विल बी डेफिनेटली देयर, राइट? तो ये वहां भी फिट इन होता है कि व्हाट यू अचीव इन लाइफ विल बी लिमिटेड ओनली बाय योर एम्बिशंस। गिव अप चेजिंग योर ड्रीम्स इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, बट गेटिंग टू योर गोल्स एंटेल्स हार्ड वर्क। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हमें अपने आप को ऐसे ट्यून करना है कि हम मेहनत करें। हम सब लोग मेहनत कर सकते हैं और कर भी रहे हैं और करेंगे भी, पर अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है, अपने आप को टाइम देना है, अपने घर को टाइम देना है, अपने काम को टाइम देना है, और हम कैसे हार्ड वर्क करें, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। मैनी गिव अप एट द थॉट लेवल, कि जब हम थॉट ही लेते हैं अपने माइंड में, हम सोचते ही हैं, तो हम कह देते हैं नहीं नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, इसको तो सोचना ही बेकार है, राइट? होता है ना ऐसे हमारे साथ? और बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं एक्शन लेवल पे। 3-4 दिन काम किया, 5 दिन किया, महीना किया, फिर वी गिव अप, नो आई एम नॉट फाइंडिंग एनी वैल्यू, एनी इंटरेस्ट, एनी थिंग इन इट, बिकॉज वी आर नॉट विजनरीज, राइट? दोज हु डिफाइन द गोल्स विद वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्शन गो अहेड टू देयर लैडर अप। हम बोलते हैं, मतलब कि हम कमिट करते हैं, हम उसके ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं और अपनी सोच को एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, और हम साथ साथ सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं अपनी प्रोग्रेस की तरफ, तो हम
Somehow we are able to realize our dreams. Somehow we are able to, ambitiously do the things what we want to do. Do you all agree with me what I have said? Chasing your goals. बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं. मैंने कोई थ्योरी नहीं लिखी है यहाँ पे. सारी ये प्रैक्टिकल डे टू डे हमारी लाइफ में हमारे साथ ऐसे ही होता है. तो हम एक स्टोरी छोटी सी मैंने लिखी नहीं है प्रेजेंटेशन में. आई विल जस्ट नरेट अ स्टोरी टू यू. सब लोगों को पता है फ्रॉग उछलता है, छोटे छोटे स्टेप लेके उछलता है बहुत. एक बार एक बहुत सारे फ्रॉग्स इकट्ठे जमीन पे थे और अगर अपनी निगाहें ऊपर करके देख रहे थे कि बहुत बड़ा टीवी टॉवर है. एंड दे कलेक्टिवली डिसाइडेड कि आज हम टीवी टॉवर पे क्लाइंब करके चले जाते हैं. राइट, तो चलना शुरू कर दिया उन्होंने ग्रुप में. थोड़े जो बहुत ज्यादा तेज छलांग मार सकते थे वो ज्यादा तेज आगे बढ़ गए, जो कम छलांग मार सकते थे वो पीछे पीछे थे. कुछ ने तो वहीं पे ग्राउंड पे ही छोड़ दिया और जोर जोर से आवाजें लगाने शुरू कर दी कि पागल हो, क्यों जा रहे हो, गिर जाओगे, इतनी ऊपर जा रहे हो, किसी के पैर के नीचे आ जाओगे, दब जाओगे, ऊपर पहुंच गए तो वापस कैसे आओगे, कोई आपको वहां से गिरा देगा. मतलब कि देवर शाउटिंग इन देयर ओन लैंग्वेज. तो तीन चार ऐसे फ्रॉग्स थे जो आगे बढ़ गए और टीवी टॉवर तक पहुंच गए. एंड दे वर वेरी हैप्पी रीचिंग द टीवी टॉवर. ऊपर टॉप में पहुंच गए एंड दे सेड, ओ गॉड, इट्स अ ड्रीम फुलफिल्ड. और वहां से फिर नीचे आ गए क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी. वहां पे अपना झंडा लगा दिया उन्होंने कि हमने तो टीवी टॉवर के टॉप पे पहुंच गए. जब वापस आए तो नीचे जो फ्रॉग्स बैठे हुए थे उनकी वेट कर रहे थे, जो आधे रास्ते से वापस आ गए थे और जो गए ही नहीं थे, थॉट लेवल पे ही गिव अप कर दिया था, वो सारे बैठे. और उन्होंने वो दो तीन जो फ्रॉग्स थे उनसे एक एक करके पूछा कि तुम लोग कैसे चले गए वहां पे. और जो भी हमने तो इतना शाउट किया था, मत जाओ, डर रहे थे हम लोग. तो जिसने टॉप पे पहुंच गया था ना, वो फ्रॉग कहता है कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं आप क्या कह रहे थे मुझे, क्योंकि मैं तो बहरा था. वो फ्रॉग ही बहरा था, उसने कुछ सुना ही नहीं. लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसने आसपास परवाह ही नहीं करी कि क्या हो रहा है, क्या शोर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा. बस उसके माइंड में तो एक ही था कि मुझे टीवी टॉवर पे जाना है. तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. इसके टर्न ए डेफ ईयर टू क्रिटिक्स. तुम सुनो ही नहीं कि लोग क्या बोल रहे हैं, कि तुम्हारा मिशन इतना क्लियर है, तुम्हारा तुम्हारा गोल इतना क्लियर है कि आपको वो कंबाइन करना है. बाकी के दो से पूछा कि तुम्हारा क्या था, मतलब कि तुम कैसे चले गए ऊपर. तो उसने बोला कि हमने ये जो डेफ फ्रॉग था उसको फॉलो किया, बिकॉज हम यही सोच के चल रहे थे कि अगर ये हमारा लीडर है, हमें रास्ता दिखा रहा है, तो हम तो इसके पीछे पीछे चलेंगे, तो हम तो पहुंच ही जाएंगे ऊपर. तो हमने तो क्रिटिसिज्म को बॉदर ही नहीं किया, रास्ते में हमने किसी की परवाह नहीं करी और हम इसके पीछे पीछे पीछे पीछे चल के ऊपर पहुंच गए इसके साथ. तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे. और फ्रॉग बहुत टिमिड होता है देखा जाए तो, बहुत छोटा सा होता है. तो वो क्या टीवी टॉवर पे चढ़ने का, तो वो उसने तो अपनी लाइफ में इमेजिन ही नहीं किया होगा कि कभी टीवी टॉवर पे मैं चढ़ जाऊंगा. पर उसका गोल बहुत क्लियर था, उसका माइंड में बहुत ही पावर थी कि उसको चढ़ना है. और दो लोग जो उसके साथ चढ़े वो उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे क्योंकि उनका ट्रस्ट फैक्टर था उसके ऊपर कि ये अगर चढ़ जाएगा तो हम भी चढ़ जाएंगे. तो ये इन नटशेल इस स्टोरी को आप प्लीज याद रखना. और अपने गोल्स को कैसे चेस करना है वो इस स्टोरी के माध्यम से, बहुत इजी स्टोरी है और इस माध्यम से आप जरूर अपने गोल्स को चेस कर लोगे और पहुंच भी जाओगे. तो आई फाउंड दिस स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग. आई थॉट लेट मी शेयर विद यू. बहुत लंबी स्टोरी थी, मैंने तो उसका जिस्ट बताया आपको. तो आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम दीज स्मॉल स्मॉल स्टोरीज एंड अचीव आर बिग गोल्स.
नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स इन लाइफ्स फोकस ऑन गैप्स एंड रिजॉल्व. हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हर एक के काम में प्रॉब्लम्स है. वी ऑल फेस प्रॉब्लम्स इन लाइफ्स. वी एनकाउंटर हर्डल्स दैट सीम टू ब्लॉक आर प्रोग्रेस. बहुत सारे हर्डल्स आती हैं और हमारी जो अचीवमेंट है उसको वो ब्लॉक कर देती है. वी ऑलवेज डिस्कस एंड हाईलाइट द हर्डल्स एंड आर ऑब्सेस्ड बाय देम एंड फेल टू ऑब्जर्व द अपॉर्चुनिटीज दैट मे बी ओपनिंग अप इन फ्रंट ऑफ अस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये जब मैं पढ़ रही हूँ तो सुबह मैं जब अपनी टीम के साथ बात कर रही थी तो ये बहुत फिट बैठती है वहां पे कि हम हाइलाइट्स करते हैं जो हर्डल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, और हम उस इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उसके साथ कि हम हमेशा फेलियर्स की ही बात करते हैं. पर उसमें से एक जो रे ऑफ होप है, जो एक सनशाइन की छोटी सी किरण है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं. और उसमें से जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, जो हमारे सामने आने वाली हैं, हम उसको बिल्कुल ही उस ब्राइटनेस से नहीं देखते जैसे मैं एक सन की रे की ब्राइटनेस की बात कर रही हूँ. तो अल्टीमेटली वही है चीज जो मैंने पहली स्लाइड्स में बोला था कि हम हमेशा क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं, हम अपनी परेशानियों को ज्यादा लेके बैठ जाते हैं, हम अपने सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं. और जो हमें अपॉर्चुनिटीज, कई बार ऐसे होता है कि हम 80% अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर जाते हैं और 20% में हम फिर नीचे डाउनफॉल आ जाता है. हम अपने आप को इतना स्ट्रांगली बना पाते कि हम 20% और मेहनत कर रहे हैं तो शायद हम आगे बढ़ जाएंगे. तो इस चीज का भी हर समय हमें ध्यान रखना चाहिए. मैं बहुत आई एम वेरी पॉजिटिव इन द सेंस कि आई एम वेरी आई नो एवरीथिंग कि चैलेंजेस क्या आते हैं, बट उन चैलेंजेस को लेके बैठे रहेंगे तो कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे. पर अगर हम अपॉर्चुनिटीज को भी देखेंगे कि क्या है, तो तभी आपको पता है ट्रेनिंग्स में हम बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स भी यूज करते हैं, स्वॉट एनालिसिस दिस दैट, पर द मेजर स्वॉट एनालिसिस इज योर थॉट प्रोसेस विच इज द इनर वॉइस व्हाट इज टेलिंग यू राइट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. वी फोकस ऑन प्रॉब्लम्स रादर देन द सॉल्यूशंस. The psychologists have proved that what your mind focuses on that tends to grow. Scientists ये भी कहते हैं कि हमारे ब्रेन में 80% जो नेगेटिविटी है वो इतनी हावी हो जाती है कि हमें पॉजिटिव सोचने ही नहीं देते. पर हमें अपने आप को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ऐसा ट्यून करना है कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ें. और अपॉर्चुनिटीज ऐसे डोर स्टेप पे तो बहुत ही कम आती हैं, अपॉर्चुनिटीज को भी चेज करना पड़ता है. और अपॉर्चुनिटीज को चेज हम तभी कर सकते हैं जब हम 100% कमिटेड हैं अपने गोल की तरफ कि हमें ये करना ही करना है. अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं. ये सारे जार्गन्स हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं ना कि हम एक अल्टरनेट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं. वॉट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज. अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता कहाँ खुल रहा है, तीसरा रास्ता हमें कहाँ लेके जाएगा, हम कैसे उस रास्ते पे चलें कि हम अपने जो पड़ाव है उनको पार कर लें. सो द प्रॉब्लम्स लुक बिगर, फोकस ऑन गैप्स एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स. द लास्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगर गैप्स को एनालाइज कर लें और हम उसके ऊपर बातचीत करें अपनी टीम के साथ कि हम इन गैप्स को कैसे रिजॉल्व करें, तो हमारे प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस हम खुद ही निकाल सकते हैं और हमें किसी से मदद लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर्स आर विजन. ग्रेट लीडर्स हैव अ विजन. They can see into the future. They have a clear, exciting idea of where they are going and what they are trying to accomplish and are excellent at strategic planning. मैंने बहुत simple words में पहली दो slides में बताया. ये definition है कि great leaders vision होती है, हम बहुत देर से बात कर रहे हैं इसकी. They can see the future.
वो जो मैं रे ऑफ सनलाइट की बात कर रही हूँ, दे हैव अ वेरी क्लियर एक्साइटिंग आइडियाज, उनके आइडियाज बहुत क्लियर हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, एंड दे आर गोइंग वेयर दे आर गोइंग एंड वॉट दे आर ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश, वो उनको सब क्लियर है, एंड दे हैव वेरी एक्सलेंट वेरी गुड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑल्सो. तो जो लीडर्स हैं उनमें ये सब हुनर है, और इन हुनर को शेप देके वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वही विजनरी कहलाते हैं. दूसरा क्या है, करेज. वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर इज करेज. अब वो फ्रॉग में तो करेज ही था जो नीचे से जमीन से खड्डे में से निकल के टीवी टॉवर पे क्लाइंब कर गया. हैविंग द क्वालिटी ऑफ करेज मीन्स दैट यू आर विलिंग टू टेक रिस्क इन द अचीवमेंट ऑफ योर गोल्स विथ नो एश्योरेंस ऑफ सक्सेस. अब आज अगर मैं कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती हूँ, मैं प्रपोजल लिखती है, स्मिता हम शुरू करते हैं प्रोजेक्ट, मुझे ये तो नहीं पता कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, मैं बिल्कुल नहीं डिफाइन कर पाती हूँ. क्या मुझे पता था कोविड आ जाएगा जब हम प्रपोजल लिख रहे थे? पर हमने क्या किया, कोविड में हमने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, हम आईसीटी प्लेटफॉर्म पे आ गए और हम बेटर अचीव कर पाए क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन पे कनेक्ट कर लिया और हमारे कार्यक्रम कहीं पे भी रुके नहीं. तो करेज था कि हम कैसे करें. अभी बहुत सारे कॉरपोरेट ऑफिसेस हैं वो बंद पड़े हैं जो सितंबर 2020-21 में खुलेंगे, बट हम सेंटर्स भी खोल के बैठे हैं, हम ऑफिस भी खोल के बैठे हैं, हम ट्रैवल भी कर रहे हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग द रिस्क. वाई रिस्क? रिस्क इज नॉट ओनली फॉर माई ओन जॉब, रिस्क इज फॉर द वर्क द होल ऑल द सेंटर्स ऑफ रीड इंडिया इज डूइंग इन इंडिया. दे आर रीचिंग टू 400,000 प्लस पीपल. उनका क्या होगा, वो काम कहाँ जाएगा? वो गोल तो अचीव करना है हमें, तो वो कलेक्टिव गोल है जो हमें अचीव करना है, तो हम रिस्क भी ले रहे हैं, राइट? और मुझे एश्योरेंस नहीं है सक्सेस की. मुझे आज नहीं पता कि रीड इंडिया का अगले साल एनुअल टर्नओवर क्या होगा, बिकॉज बस हम मेहनत कर रहे हैं, हम प्रपोजल्स लिख रहे हैं, हम डोनर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग डोनर्स इफ बेनिफिशरीज हैं इस लाइन पे, मैं उनको भी एजुकेट करना चाह रही हूँ इस लेवल पे कि हमारे जो डोनर्स हैं हमारे साथ पिछले 6-6 साल से काम कर रहे हैं. क्या है? ट्रस्ट है. क्या देखते हैं कि ग्राउंड पे हम अच्छा काम कर रहे हैं. क्यों हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं? क्योंकि हम उनको फुल रिस्पेक्ट और बहुत डिग्निटी से हम उनके सामने बात करते हैं. फोर्थ पॉइंट क्या है कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं उनके सामने. जो रियलिटी है वही हम उनको बताते हैं कि ऐसे रियलिटीज हैं, ये चैलेंजेस हैं, हम इसको फेस कर रहे हैं. कोविड के दौरान हमने उनको बोला कि हम नहीं ट्रैवल कर पाएंगे, इट वॉज यूनिवर्सली नोन टू एवरी वन, बट हम आईटी प्लेटफॉर्म पे आ गए, आईटी प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है, इमीडिएट नीड्स क्या है, कम्युनिटी की मास्क चाहिए, खाना चाहिए, सैनिटाइजर्स चाहिए, इमीडिएटली दे शिफ्टेड टू ऑल दीज थिंग्स. किसने उनको बोला करने के लिए? हम ही ने बोला. तो ट्रस्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने हम पे विश्वास किया. और कोई ऐसा डोनर नहीं है एक्सेप्ट वन और टू अमॉन्ग 13-14 डोनर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कि किसी ने एक साल में ही हमारे साथ काम करके बंद कर दिया हो. दे ऑल आर कंटिन्यूइंग विद अस. सो बिकॉज देर इज नो सर्टेनिटी इन लाइफ और बिजनेस, एवरी कमिटमेंट यू मेक एंड एवरी एक्शन यू टेक एंटेल्स अ रिस्क ऑफ सम काइंड. हम कुछ भी करते हैं उसमें रिस्क तो है ही है, पर हम रिस्क को सोच के बैठे रहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे. हम करके उस रिस्क को कैसे मिटिगेट करेंगे, वो हमारा एक्शन है, राइट? तो जब हम कहते हैं वर्ड्स थॉट्स एंड एक्शन, तो जब हम एक्शन लेते हैं तो हम रिस्क को साथ में लेके चलते हैं, और रिस्क को मिटिगेट करना भी हमें सिचुएशंस सिखाती हैं, राइट? तो दिस इज वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ए लीडर.
आप लोग सब ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आपका रोजमर्रा का ये काम है कि आप क्या रिस्क आपके सामने आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और आपको नहीं पता. आपको पता था आपके स्कूल बंद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं पता था. आपने जब स्कूल चलाए थे तो आपने हमें तो नहीं ये कमिटमेंट दी थी कि 1 साल के बाद हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, क्योंकि हम बिजनेस की तो बात ही नहीं कर रहे थे. तो चैलेंजेस हमने भी समझे आपके, हमने कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट दी, बट विजन हमारी एक थी कि हम पूरे भारत में स्कूल चलाएंगे, हम पूरे भारत में लाइब्रेरीज बनाएंगे, हम पूरे भारत में औरतों को सक्षम करेंगे, हम पूरे भारत में आत्मनिर्भरता का नारा लगाएंगे कि हमने औरतों को सक्षम बनाया, वो अब अपना पैसा कमा रही है, चाहे 2,000 कमाए, चाहे 4,000 कमाए, चाहे 6,000 कमाए, राइट. और हमारी कोशिश हमेशा रहेगी उनको हम 2,000 से 6,000 तक लेके जाए, 6,000 से 12,000 तक लेके जाए, ये कोशिश हमने करनी करनी है. सेंटर्स को सेल्फ सस्टेन करना है, ये हमारा गोल है, हमारा मिशन है. हम कैसे करें उसको हमें करना है. जो मैं अभी ट्रूथफुलनेस की बात कर रही थी, इंटीग्रिटी में वही लिखा हुआ है, इंटीग्रिटी रिक्वायर्स दैट यू ऑलवेज टेल द ट्रूथ टू ऑल पीपल इन एवरी सिचुएशन. ट्रूथफुलनेस इज द फाउंडेशन क्वालिटी ऑफ द ट्रस्ट दैट इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस. कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमारा ओपननेस ट्रस्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए हर एक सिचुएशन पे, क्योंकि हम मैं ये डेफिनेशंस क्यों शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि हम एक सोशल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें ट्रस्ट फैक्टर बहुत जरूरी है. इवन बिजनेस में भी बहुत जरूरी है. मैं ये नहीं कहूंगी कि बिजनेस में तुम झूठ बोल सकते हो. जितना तुम सच बोलोगे, जितने तुम ट्रांसपेरेंट रहोगे, उतना आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा. द बेस्ट क्वालिटीज अगेन अनदर इज ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी डज नॉट मीन दैट यू आर वीक और अनश्योर ऑफ योर सेल्फ, राइट. इट मीन्स दैट यू हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस टू रिकग्नाइज द वैल्यू ऑफ अदर्स विदाउट फीलिंग थ्रेटन्ड. समझ में आया सबको? मतलब कि अगर मैं बहुत ही हलीमी से बात करती हूँ, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ, बहुत प्यार से बात करती हूँ, दैट डजेंट मीन कि मैं कमजोर पर्सनैलिटी हूँ या मुझे अपने के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है. इसका ये मतलब है कि मैं बहुत हलीमी से बात कर रही हूँ, पर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है, मैं सेल्फ अवेयर हूँ, और मैं जो लोग मुझे वैल्यू मेरे में वैल्यू देखते हैं वो तो मेरे लिए थ्रेट नहीं है, पर अगर मेरी वैल्यूज के ऊपर मतलब कि दे आर थ्रेटनिंग मी, तो आई एम नॉट टेकिंग दोज, राइट. तो ह्यूमिलिटी पर्सनालिटी में लाना बहुत जरूरी है. दिस इज वन ऑफ द रेयरर एट्रीब्यूट्स और ट्रेट्स ऑफ गुड लीडर्स, बिकॉज इट रिक्वायर्स कंटेनमेंट ऑफ वन ईगो. अपनी ईगो को हम पैरों में लेके चलते हैं, क्योंकि हम ईगो को अगर सिर पे लेके चलेंगे तो हमें हर एक की बात बुरी लगेगी, हमें हर एक का कमेंट बुरा लगेगा, हम क्रिटिसिज्म में चले जाएंगे, हम पॉजिटिव सोच को नेगेटिव में बदल देंगे. पर अगर हम अपनी ईगो को अपने शूज में डाल के रखेंगे तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, जो हमारी सोच है, वो इतनी क्लियर होगी और वो हमारे गोल के ऊपर फोकस करेगी विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, राइट. इट मीन्स दैट यू आर विलिंग टू एडमिट यू कुड बी रॉन्ग, दैट यू रिकग्नाइज यू मे नॉट हैव द आंसर्स, बट इट मीन्स दैट यू गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, विच मैनी पीपल स्ट्रगल टू डू. बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं कि ये फ्लैग तो हमारे कंधे पे ही लगना चाहिए. हम कभी भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते और हम अपनी गलतियां दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं कि ये अगर गलत हुआ तो उसकी वजह से हुआ. मैं तो ठीक था, बिल्कुल. मैं तो टीवी टावर पे चढ़ रहा था. अगर वो डेफ नहीं होता तो वो किसको ब्लेम करता, जो नीचे से शाउट कर रहे थे फ्रॉग्स, जो आधे रास्ते से उनको कह रहे थे वापस चलो वापस चलो, जो नीचे से कह रहे थे ये तो पागल है, इनका तो दिमाग खराब है, टीवी टावर पे चढ़ के क्या करेंगे. पर
इसका ये मतलब नहीं था कि वो नहीं चढ़े, पर उसने क्रेडिट किसको दिया? जो दो लोग दूसरे थे, दो फ्रॉग्स दूसरे थे, उसने क्रेडिट किसको दिया? जो डेफ था उसने उसको दिया कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं श्योर, और जो दो वो थे उसने बोला हमारा लीडर चढ़ रहा था तो हम भी चढ़ गए। लीडर एक दूसरे को क्रेडिट देना भी एक बहुत बड़ी कला है कि अगर हम कुछ अचीव करते हैं तो टीम की वजह से अचीव करते हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर पाते हैं, तो क्रेडिट भी देना बहुत जरूरी है। और ये अपनी पर्सनालिटी में आप इम्बाइब कर सकते हैं। ये जो तीन क्वालिटीज मैं ह्यूमिलिटी की बता रही हूँ, ये बहुत लाइफ में पे करती हैं इन द लॉन्ग रन, इतनी ज्यादा पे करती है ना कि इसका इम्पैक्ट आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, राइट? और ये ऐसी क्वालिटीज हैं तीनों की, वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपकी पर्सनालिटी के साथ इतनी इम्बाइब हो जाती हैं कि आपकी पर्सनालिटी ही वही बन जाती है। तो अगर एक लीडर बनना है तो इसके ऊपर आप जरूर फोकस करिए, और जो बाकी के तीन है ना, विजन, करेज और इंटेग्रिटी, ये अपने आप आ जाते हैं। बिकॉज इफ यू हैव दिस ह्यूमिलिटी एज योर पर्सनैलिटी ट्रेट, देन द रिस्पॉन्स इज 100% श्योर, यू विल डेफिनेटली गेट द रिस्पॉन्स, उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। द बेस्ट क्वालिटीज में तीसरा आ रहा है ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। लीडर्स हैव द एबिलिटी टू एंटिसिपेट ट्रेंड्स वेल इन एडवांस ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स तो हर एक जगह पे ही होते हैं, एनजीओस मशरूम कर रही हैं इतनी, पर हम उनको थ्रेट ना मान के अगर हम उनके ट्रेंड्स को समझ लें कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या करें, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। दे कॉन्टिन्यूअली आस्क बेस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग टुडे, वेयर इज द मार्केट गोइंग, वेयर इज इट लाइकली टू बी इन 3 मंथ्स, 6 मंथ्स।

कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो हम एक बेटर स्टेक पे हैं कि हमारे फंड्स क्यों नहीं बंद हो रहे हैं, क्योंकि हम उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिनको जरूरत है, जिनके साथ हमें अभी काम करना है, उनको सक्षम बनाना है। तो दैट्स व्हाई द डोनर्स, जब मैं कह रही हूँ कि वो हमें पिछले 5 साल से 6 साल से सपोर्ट करें, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ग्राउंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, ग्राउंड पे काम कर रही है। और जब हम मैं बिजनेस की बात करती हूँ तो ये सोच आपको बनानी है जब आप अपने सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस की बात करें कि मार्केट क्या मांग रही है, अगले 3 महीने में मार्केट क्या मांगेगी, अगले 6 महीने में मार्केट क्या मांगेगी और अगले 2 साल में क्या ट्रेंड्स होंगे। दे डू दिस थ्रू थॉटफुल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। और ये इतना बड़ा गैप है हमारे लीडर्स में जो हमारे सेंटर्स चला रहे हैं कि हम इस पे सोच नहीं बना रहे हैं, राइट? हम आज के बारे में सोचते हैं और 1 महीने के बारे में सोचते हैं, पर उसके बियॉन्ड हम सोच ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम इतने इंग्रॉस्ड हैं और सब चीजों में, हम ये सस्टेनिंग एंटरप्राइज को लेके फोकस नहीं हो पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटेटिवनेस, ओनली द लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट कैन एक्यूरेटली एंटिसिपेट फ्यूचर मार्केट्स कैन पॉसिबली सर्वाइव। ओनली लीडर्स विद फोरसाइट कैन गेन द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होती है कि हम जितने लोग और भी काम कर रहे हैं उनसे हम आगे एलोन कैसे, सबसे आगे कैसे स्टैंड करें। तो ये जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अब मैं बात रीड इंडिया की नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, अब मैं आपके इंडिविजुअल सेंटर्स की बात कर रही हूँ, उसको मैं नाम दे रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे लेके जा सकते हैं? क्या आप लोग मुझे एक पेज विजनरी नोट लिख के दे सकते हैं दैट यू रिफाइन एंड मेक एज योर गोल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टेकिंग लीडरशिप ट्रेनिंग्स। दिस इज द प्रैक्टिकल एक्शन विच यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, राइट? तो मैंने पिछली बार जब वो उनकी ट्रेनिंग हुई थी स्टोरी टेलिंग की सैटरडे को, तो मैंने बोला था कि आप अपने सेंटर्स के बारे में अपनी अपनी स्टोरी, जब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट कि आप जहाँ बैठे हो आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या विजनरी हो, उसको कहाँ लेके जाना चाह सकते हो, क्या आप लिख के दे सकते हो मुझे? दैट विल बी अ ग्रेट ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट? दे फोकस ऑन द स्ट्रेंथ्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द थिंग्स दैट द कंपनी डज बेस्ट इन सेटिस्फाइंग डिमांडिंग कस्टमर्स इन ए कॉम्पिटेटिव मार्केट प्लेस। आप किस पे फोकस कर रहे हो? अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास कंप्यूटर्स हैं, आप डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हो। जिनको कंप्यूटर्स नहीं आता, कभी आपने उनको बोला कि आगे आने वाले टाइम पे देखो कोविड ने ही हमें सिखा दिया कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म आना चाहिए? जिनको नहीं आता, दे आर हाईली क्वालिफाइड बट दे आर अनएजुकेटेड। बिकॉज अगर कंप्यूटर यूज करना नहीं आता तो हम अपनी लाइफ को आगे कैसे चलाएंगे? मुझे पेटीएम नहीं आता था, मैंने पेटीएम सीखा। मुझे बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑनलाइन नहीं आती थी, मैंने बैंकिंग ट्रांजेक्शन सीखी। बिकॉज बैंक कह रहे थे कि 60+ के लोगों को हम बैंक आना अलाउ नहीं करेंगे, हम नहीं एनकरेज करते। तो टाइम ने मुझे सब कुछ सिखाया। इसी तरह से अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, हम एक पेपर पे लिखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम, हमारे कस्टमर्स कौन है, हमारे बेनिफिशियरीज, राइट? और हम उनको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं अपनी सर्विसेज से, हम कैसे इसको सेल्फ सस्टेन बना सकते हैं, दैट यू पीपल हैव टू टॉक एंड डिसाइड, राइट? योर एबिलिटी एज ए लीडर टू कॉल द शॉर्ट्स एंड मेक श्योर दैट एवरी वन इज फोकस्ड एंड कंसेंट्रेटेड।

0: and the most valuable use of their time is essential to the excellent performance of the enterprise. मैंने जान के ये बिजनेस लैंग्वेज लिखी है यहाँ पे बिकॉज हमारा 1/3 फोकस ऑर्गेनाइजेशन का एंटरप्राइज ही है. तो इसका ये भी मतलब है कि क्या हम अपना टाइम जो 8 घंटे 10 घंटे हम लगा रहे हैं वो हम फ्रूटफुली यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. एवरी डे वेदर इट्स एडिंग वैल्यू टू माई ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, ये बहुत जल्दी आपके ऊपर भार आने वाला है. ये बहुत जल्दी अभी आप अपनी संस्था को चलाने के लिए आगे बढ़ेंगे और ये सारे पॉइंट्स आपको उस समय याद आएंगे कि गीता मैम ने ये सारे पॉइंट्स हमें बताए थे. राइट, द लास्ट पॉइंट इज कोऑपरेशन. गेन द कोऑपरेशन ऑफ अदर्स बाय मेकिंग अ कमिटमेंट टू गेट अलोंग वेल विद ईच की पर्सन एवरी सिंगल डे. रोज आप अपने कनेक्शंस, अपनी नेटवर्किंग, अपने स्टाफ का लाइक यू नो टीम वर्क को हमेशा ये सोचो कि हम कैसे रिफाइन करें इसको, हम कैसे इकट्ठे आगे बढ़ सकते हैं, किसमें क्या स्ट्रेंथ्स हैं. आपको मैं ये भी बोलूंगी कि आप ये एक एक्सरसाइज करो, मैं भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रीड में करूंगी कि हमारे जितना स्टाफ है 5 है 6 हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच द ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन. सी दीज 5 जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन. These 5 qualities I have the strength, I can contribute additionally. Do this exercise. This will really help you to do that, right? You always have a choice when it comes to a task. You can do it yourself or you can get someone else to do it for you. Which is it going to be? Ye exercise aapko bahut bahut help karegi. मैं दोबारा से ये पॉइंट्स पढ़ना चाहूंगी आपके सामने. बहुत इंपॉर्टेंट है विजन, करेज, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फोकस एंड कोऑपरेशन. ठीक है, आप इनको सेल्फ एनालिसिस भी करें और ये 7 पॉइंट टीम में बैठ के डिस्कस भी करें और जो एक्शन पॉइंट्स मैंने बताया अगर आप उन पे फोकस करेंगे तो आई एम 100% श्योर यू कैन रीच द टीवी टावर. राइट, लीडरशिप स्टाइल, बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल हैं, बहुत सारे, बट मैं जो हमारे को सूट करता है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. ट्रांसफॉर्मेशनल, हम कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज, हम ऐसे ही थोड़ा लिख रहे हैं उसको. अभी हम डायरी प्रिंट करा रहे हैं आप सब लोगों के लिए, उसके ऊपर लिखा है 14 इयर्स ऑफ सर्विस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज. झूठ तो नहीं लिख सकते ना, हम कर रहे हैं तभी तो हम लिख रहे हैं ना. इज ऑफन डिफाइंड एज ए सिंगल मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल. दिस स्टाइल वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग द लेट 1970s एंड लेटर एक्सपेंडेड अपॉन बाय रिसर्चर बर्नार्ड एम बास. मैं क्यों ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो जार्गन्स हैं ये कहीं ना कहीं सच हुए हैं और तभी हम इनको आगे लेके चल रहे हैं और हम इस पे बात कर रहे हैं. ठीक है, दीज लीडर्स टेंड टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक एंड पैशनेट. दे आर नॉट ओनली कमिटेड टू हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल but also to helping group members fulfill their potential. This sentence mein maine summarize kiya hai jo last 7 points maine bataye hain ek leader ki qualities ke bare mein. ab leader ki qualities to bata di ki leader ko karna kya hai. pehle to humne goals bhi chase kare, fir humne apne wo points bhi yahan pe highlight kare best qualities ke. फिर अभी हम कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बेस्ट है क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है. इमोशनली इंटेलिजेंट का मीन्स है कि मैं दूसरों के पर्सनालिटी की कदर करती हूँ, उनके थॉट्स की कदर करती हूँ, उनके जो वॉट एवर दे आर शेयरिंग और सेइंग और हेल्पिंग आई रिस्पेक्ट दैट. और ये एनर्जेटिक भी है और पैशनेट भी है. तो इन सबको कंबाइन करके हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं ये हमें बहुत ध्यान रखना है. Research shows that this style of leadership results in higher performance. अगर आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हैं तो उसकी परफॉर्मेंस हमेशा हायर होगी एंड मोर इम्प्रूव्ड ग्रुप सेटिस्फेक्शन, आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपकी सोच के मुताबिक कर रहे हैं, हमारी सोच कॉमन है, हमारे हमारे थॉट्स कॉमन है और हमारे एक्शन भी कॉमन है. तो ये इस पे रिसर्च हो चुकी है कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है ये हमेशा संस्था को आगे लेके जाता है, कभी भी संस्था को पीछे नहीं करता है, क्योंकि हम डिक्टेटर नहीं हैं. हम मींस रॉब से और दबाव से काम नहीं करा रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेट करके काम करा रहे हैं, हम लोगों को इंस्पायर करके काम करा रहे हैं. तो यही एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाने का बेस्ट तरीका है. द लास्ट स्लाइड इज कि जब हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, मैंने अभी मोटिवेशन वर्ड यूज करा था, तो मोटिवेशन है क्या चीज? हम बहुत वर्ड यूज करते हैं कि हम मोटिवेशन कर रहे हैं, हम मोटिवेट कर रहे हैं, पर उसको समझने की भी जरूरत है. मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स. इट इज व्हाट कॉजेस यू टू एक्ट. मोटिवेशन ये नहीं कि हमने दो बात कर दी तो मोटिवेट हो गए हम, हमें उसको एक्शन में कैसे लाना है, अपने बिहेवियर में कैसे लाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. थ्री पॉइंट्स हैं इसके, एक्टिवेशन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी. हम मोटिवेट तो करके हम अगर चुप करके बैठ जाएंगे तो कोई भी मोटिवेट नहीं होगा. उसके साथ हम बोलते हैं ना कि हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं. हैंड होल्डिंग का क्या मतलब है कि हम उनके साथ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन मतलब कि वी आर वॉकिंग विद देम, राइट, वी आर डूइंग वर्क विद देम. और परसिस्टेंस जो मैंने बोला था, परसिवेरेंस, एक स्लाइड में पिछले तीन चार सेशन में मैंने बात की थी परसिस्टेंस की, हम कितना उसको कॉन्टिन्यूसली करते हैं, चाहे फेलियर्स आए चाहे चैलेंजेस आए, और किस इंटेंसिटी के साथ करते हैं. अगर हम एक्टिवेशन, परसिस्टेंस और इंटेंसिटी को कंबाइन करके हम एक्शन ओरिएंटेड काम करते हैं तो तभी हम कह सकते हैं कि हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, राइट. हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड का पीछे मीनिंग होता है. बहुत सारे, मैं इधर एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. हम ट्रेडमिल पे चढ़ते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, राइट, हम बटन दबाते हैं तो ट्रेडमिल चलता है. तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं ट्रेडमिल को, हम चल रहे हैं, हम दो मिनट करते हैं, हम थक जाते हैं, हमारी बॉडी हमें बोलती है कि नहीं, अब हम नहीं और भाग सकते. वही मैं ब्रिगेडियर वाला एग्जांपल ले रही हूँ कि पहले तो तुम अपनी लेग से भाग रहे थे, अब अपने माइंड से भागो. तो हम परसिस्ट करते हैं, हम घड़ी देखते हैं, अच्छा 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट. जब हम 10 मिनट ट्रेडमिल पे भाग लेते हैं इंटेंसिटी के साथ, तो क्या हुआ, हमारा जो, हमारे पसीने भी छूटते हैं, हमारा वेट भी कम होता है, तो हम स्लोली अपने गोल पे पहुंच रहे हैं कि आज मुझे अगर 1 महीने में मुझे 10 किलो वेट कम करना है तो मुझे ट्रेडमिल में 10 मिनट से कम नहीं भागना है, राइट. दैट इज मोटिवेशन, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन. और जो जिम में कोच होता है वो आपको मोटिवेट कर रहा है, इंटेंसिटी आपकी वर्ड आ रहा है, आपको परसिस्टेंस की बात कर रहा है, आपको बोल रहे ट्रेडमिल पे भागो. बहुत सिंपल एग्जाम्पल से मैंने आपको ये चीज समझाई कि मोटिवेशन है क्या. हमारे यहाँ पे लड़कियां आती हैं सीखने के लिए और हम बीच में ही छोड़ देते हैं उनको, वो चली जाती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हम उनको मोटिवेट इन तीनों पॉइंट से नहीं कर पा रहे, राइट. तो ये बहुत जरूरी है. Help improve the efficiency of people as they work towards goal. Efficiency improve करने की जरूरत है. Help people take action. Encourage people to engage in health-oriented behaviors. Health-oriented behaviors मतलब कि अगर तबीयत ही खराब हो गई तो वो सेंटर में तो आएगी नहीं, right? Help people avoid unhealthy and maladaptive behaviors. ये दूसरा रिस्क मैं बात कर रही हूँ कि जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस है उसको रोकने की जरूरत है, राइट. बहुत जरूरत है रोकने की, क्योंकि हम हमारा माइंड इतना नेगेटिव भागता है कि हम छोटी छोटी बात पे दूसरों के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं, हमें विश्वास ही नहीं बैठता। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, पर इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अगर हम ट्रांसपेरेंट हैं, है ना, ट्रांसपेरेंट हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, जो मैंने पीछे क्वालिटीज बताई हैं, अगर उसको हम मद्देनजर रखेंगे तो हम एक दूसरे पे डाउट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट चल रहा है यहाँ पे। हेल्प पीपल फील मोर इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स, बहुत इस पे हम बात कर चुके हैं, 10 स्केल फॉर्मूला ही इस पे है। इम्प्रूव ओवरऑल वेलबींग एंड हैप्पीनेस। तो ये मैं आप सबको समझाना चाह रही थी थोड़ा, क्योंकि मेरी 7 प्रेजेंटेशंस थोड़ी लाइट थी, ये थोड़ी सी मैंने टफ की है। बिकॉज किस लिए टफ की है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए। एक लीडरशिप को करना क्या है, एक लीडर में क्या क्या होना चाहिए, अगर मैं इसको रिट्रेट करूं, आप प्रेजेंटेशन स्टाइल देखेंगे कि मैंने गोल्स की पहले बात की, फिर मैंने एक लाइट सी स्टोरी सुना दी, फिर उसके बाद मैंने बोला कि हम नेगेटिव ना सोचें, हम प्रॉब्लम्स को ना फोकस करें, हम उसमें जो एक सूर्य की किरण आ रही है उसकी तरफ देखें और आगे बढ़ें। फिर मैंने बेस्ट क्वालिटीज क्या है लीडरशिप की, उस पे मैंने 7 क्वालिटीज की बात की, विजनरी, करेज, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, देन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, फोकस एंड कोऑपरेशन। ये एक संस्था के करेक्टरिस्टिक्स भी हैं। ये 7 करेक्टरिस्टिक्स इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इसको एक को भी इग्नोर कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन नीचे चली जाएगी, वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद मैंने लीडरशिप स्टाइल की बात करी कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होता है, इमोशनली इंटेलिजेंट, वो वीक नहीं होता है पर लोग उसको वीक समझते हैं, पर उसमें इतनी पावर होती है कि वो कैसे सबको अपने पैशन के साथ जोड़ के रखे, राइट। और लास्ट है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात करें तो हम मोटिवेशन की बात करें, पर मोटिवेशन का मतलब क्या है? आप हमेशा कहते हो कि हम अपनी कम्युनिटी को बहुत मोटिवेट करते हैं, पर अब आप इन 3 पॉइंट्स के साथ मोटिवेट करके देखना रिजल्ट में क्या चेंज आता है। एक्शन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी, राइट। इन तीनों के अगर मीनिंग चाहिए, एक्शन मतलब कि हम काम करें, परसिस्टेंस मतलब कि हम अपना उसको लगातार करें, और इंटेंसिटी की हम अपनी पूरी एनर्जीज उस काम में लगा दें और उसको फेलियर नहीं होने दें। दैट इज द आउटकम ऑफ मोटिवेशन। दैट्स ऑल। आज मैंने बहुत बोला है, 4 बजने वाले हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ इसका, ठीक है? 5 मिनट है
1: यस
0: हमारे पास। हाँ, और ये स्लाइड्स रो हमेशा हर सेशन के बाद आपके पास आती हैं। मैं आप सबको एनकरेज करूंगी कि इस स्लाइड्स को पढ़ के आप अपनी एक डायरी लिखनी शुरू कर दें कि हर पॉइंट में आप कैसे अपनी लाइफ में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप उसको कैसे इम्बाइब कर रहे हैं अपने एक्शन लेने के लिए, आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे चेंज कर रहे हैं इन पॉइंट्स के अलावा। अगर ये आप होमवर्क करेंगे तो इट विल हेल्प यू सो मच, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, राइट। आप प्लीज ये करिए, आपका जरूर 10 मिनट रात को ज्यादा जाएगा इस पे, पर अगर 8 स्लाइड्स है, 8 स्लाइड्स के ऊपर आप हर पॉइंट पे एक एक लाइन भी लिख लेंगे या एक स्लाइड के ऊपर एक पॉइंट लिखेंगे तो आपकी डायरी में 10 पॉइंट आ जाएंगे लिखने के लिए। आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, आपकी सोच बढ़ेगी, आपका विजन स्ट्रांग होएगी और आप एनकरेज फील करेंगे और आप बहुत वेल डिफाइंड अपने अपने शार्प कर लेंगे अपने विजन को, और एक्शन उसी तरीके से लेंगे, ये मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज के। आप करके देखिए, ये सारे मैनेजमेंट के लेसन्स हैं जो मैं बहुत मेहनत करके इसको आपके मतलब कि लाइक आई ब्रिंग दैट इन टू अ डिस्कशन लेवल कि कहाँ मैं ये लीडरशिप आपको समझा सकती हूँ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। जस्ट 5 मिनट्स फॉर एनी क्वेश्चन आंसर्स। आई एम ओपन फॉर दैट.
1: ये आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। ब्लेम करके ही हम अपने अपने अच्छे अच्छे काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ फेलियर कहीं हो किसी बात में तो दूसरे को ब्लेम कर जाते हैं हम लोग।
0: हाँ
1: तो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग यू टोल्ड अस कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, एंड हर चीज में वी शुड ऑलवेज टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस, पर्सनल लाइफ में भी, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी।
0: बिल्कुल.
1: हमेशा कोई
0: पर्सनल
1: चीज
0: लाइफ
1: हो जाती है, घट
0: क्यों
1: जाती है।
0: बहुत बहुत मायने रखता है ये पर्सनल लाइफ में, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमें ना सुनने की क्षमता होनी चाहिए. हम बिना हम ना सुनने
1: मैम,
0: की अपनी जो स्किल है ना, उसको हम हमेशा बहुत कम टाइम देते हैं. हम हमेशा अपने बोलने की स्किल को ज्यादा टाइम देते हैं. ये ह्यूमन
1: हाँ जी,
0: बिहेवियर है, टेंडेंसी है. वेरी नाइस, कंटिन्यू.
1: यस मैम, हाँ जी। हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे तो और हम डिमोरलाइज हो जाते हैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को रिपीटेडली व्हेन वी टॉक अबाउट, तो लगता है तो गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे ठीक होगा। तो हो चुका, वो तो घट गया, उसको तो अब असाइड करके, तो उसके बाद फैमिली में भी बैठे हुए हैं या अपने स्टाफ के साथ भी आप बैठे हुए हैं, सबके व्यूज लेके फटाफट फटाफट आप सॉल्यूशंस के बारे में बात करो, फिर वो प्रॉब्लम फिर छोटी लगने लग जाती है। तो ये आपने बहुत ही सुंदर पॉइंट बताया कि रे ऑफ आप देखिए हर चीज में, पूरा डार्क नहीं होता कभी भी, कहीं ना कहीं एक सनशाइन होती है, एंड वी शुड चेज दैट एंड वी शुड फॉलो दैट, और हमेशा सॉल्यूशंस के बारे में बात, प्रॉब्लम्स को फटाफट रिजॉल्व करें। ये आप
0: वेरी
1: बता रहे थे, दिस वाज वेरी नाइस मैम,
0: नाइसली समराइज
1: थैंक यू सो
0: किया.
1: मच।
0: थैंक यू सो मच फॉर समराइजिंग दिस वेरी वेल. एनीबॉडी एल्स? थैंक यू सीमा, आपने तो बड़ी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर दी. मुझे लग रहा था कि मैं ही बोलती जा रही हूँ, पर आपने समराइज करके तो बहुत उसको इजी बना दिया.
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
2: गुड इवनिंग मैम, अकबर बोल रहा हूँ रामपुर से। जी मैम, जैसे सीमा मैम ने बोला और आपके हमने ट्रेनिंग में ये सुना भी था, आपने बहुत पहले ही बोला था कि प्रॉब्लम्स को क्रिएटिव माइंड के थ्रू आप सॉल्व करते हैं। आपकी एक आदत है कि आप उस प्रॉब्लम को लेके बैठते नहीं है और उसको आप क्रिएटिव माइंड के थ्रू, अभी लास्ट स्मिता मैम ने भी हमें फ्राइडे में बताया था लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग में, आपका ये एग्जाम्पल देके, और मैंने उसको ना एक जेस्ट कर लिया इस पॉइंट को, और उस पॉइंट पे अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 3-4 दिन से। मैं इस पे बहुत फोकस करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे सामने जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं पहले क्या होता था कि जो प्रॉब्लम आती थी अगर उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता था तो मैं हार मान के बैठ जाता था, और एक टेंशन दिमाग को होती थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन सा लगता था कि यार अब क्या होगा, कैसे होगा। बट जब मैंने इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, मतलब जैसे सीमा मैम ने बोला कि प्रॉब्लम्स को हम असाइड कर दें और उसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करें, तो अब सेम वही मैं करना स्टार्ट करा है, तो इतना मतलब लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल ही जाता है जब उसके ऊपर दिमाग लगाओ और उस पे करते रहो फोकस, कि कुछ तो आएगा हल, कुछ तो आएगा। वो अल्टीमेटली आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, भले से थोड़ा सा ही आए लेकिन आता है। उससे मुझे बहुत फायदा हुआ, रियली थैंक यू मैम। आपने मतलब इतने अच्छे से उसको समझाया था कि वो दिमाग में एकदम बैठ गया है।
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है. और ये अगर हम सोचते ही रहेंगे प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, तो हमारे कंधे के ऊपर जो बैग है ना, वो इतना भर जाएगा कि एक दिन वो इतना भारी हो जाएगा कि हमें दबा देगा वो. पर अगर हम हर प्रॉब्लम का सलूशन लेके वो बैग हम खाली करते रहेंगे, तो वी विल फील लाइट, हमारा ब्रेन लाइट फील करेगा, और हम कुछ नया सोच पाएंगे करने के लिए. तो जो अपने कंधे के ऊपर बैग लेके हम चलते हैं ना, उसको बस ये याद रखिए कि हमें लाइट ही रखना है. देयर एंड देन यू फाइंड अ सोल्यूशन एंड स्टार्ट एक्शन ऑन दैट, राइट?
2: बिल्कुल। और एक चीज और कि हम कभी भी, मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं बहुत आगे तक की सोचता हूँ कि यार कल क्या होगा, अगर मैं ऐसा एक्शन करूंगा तो इसमें फिर क्या होगा, आगे वाले नतीजे क्या रहेंगे, तो उसको लेके क्या होता था, एक स्टेप फॉरवर्ड होने के बजाय और बैकवर्ड हो जाता था। लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि नहीं, जो होगा उसके लिए भी कोई ना कोई नया सॉल्यूशन निकाला ही जाएगा, अभी फिलहाल जो है उसको पूरा करो।
0: बिल्कुल. मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि जब हम प्रपोजल लिखते हैं तो हमें नहीं पता सक्सेस क्या होगी, तो डोनर को ये थोड़ा कर देते हैं कि हम 1 साल के बाद जी हम ये 100% करके दिखा देंगे आपको, हम प्रपोज करते हैं कि हम कोशिश करेंगे करने की, राइट?
2: यस मैम।
0: तो हमेशा जो एक्शन है उसको हम अगर सीधे रास्ते पे रखें या सीधी सोच के साथ रखें तो रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है?
2: यस मैम।
0: थैंक यू सो मच, और मैं इनकरेज करूंगी अगर किसी के कोई और भी डाउट्स रहते हैं तो दे आर वेलकम टू राइट बैक टू मी, राइट? बिकॉज लीडर्स आपको बनना ही बनना है, राइट? ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: नमस्कार, मेरा नाम तनीषा सुदाम पवार है और मैं स्वामी ब्रह्मानंद स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं कविता बनाने में रुचि रखती हूँ। मैं मेरी खुद की कविता बनाती हूँ और अभी मैं आपको मेरी बनाई हुई कविता सुनाने जा रही हूँ। आओ आओ मिलकर बैठे हम, कुछ कहते हैं कुछ बनते हैं, जीवन की सुंदर माला में सपनों के मोती चुनते हैं। बिना थके बिना रुके हम पढ़ाई करते रहे, सभी पाठशाला आके उन्नति करते रहे। अलग अलग है रास्ते, सभी पार करेंगे हंसते हंसते, यह तो है जीवन के गुलदस्ते, यह तो है जीवन के गुलदस्ते।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन की।
1: ये वतन का राग।
0: एक छोटा सा मंत्र मैं आपको देता हूँ, इसे आप अपने हृदय में अंकित कर लें और अपनी हर सांस में उसे अभिव्यक्त करें। ये मंत्र है, करो या मरो। अपने इस प्रयास में हम या तो स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या फिर जान दे देंगे। इस वक्तव्य के साथ 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आर पार की उस लड़ाई का उद्घोष किया जिसे आज हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये गांधी जी की एक शस्त्रविहीन युद्ध की अद्भुत खुली घोषणा थी। इसके साथ ही 9 अगस्त 1942 को पूरे देश में आरंभ हो गई ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध वो निर्णायक लड़ाई जिसने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़कर अपनी आजादी का सूर्य गढ़ा। द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों को पराधीन भारत ने एक अवसर की तरह देखा और ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष पूर्ण स्वराज की मांग पुरजोर तरीके से रखी। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र हारने लगे थे और ब्रिटेन पर दबाव बन रहा था कि वो भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करे। इसी उद्देश्य से स्टेफर्ड क्रिप्स 23 मार्च 1942 को भारत की किस्मत का पुलिंदा अपनी अटैची में लिए दिल्ली पहुंचे, लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग पर भारत के समक्ष जो प्रस्ताव उन्होंने रखे वो बेहद निराशाजनक थे। इस प्रस्ताव के सबसे आपत्तिजनक बिंदु ये थे कि ब्रिटिश सत्ता भारत की सुरक्षा अपने हाथों में रखना चाहती थी और गवर्नर जनरल के वीटो के अधिकार को भी वो बनाए रखने के पक्ष में थी। इसके साथ ही भारतीय एकता की जमीन में फूट डालते हुए ये प्रावधान दे रही थी कि भारत के जो प्रांत संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है उन्हें भारतीय संघ के समान ही पूर्ण स्वराज का दर्जा प्रदान किया जाएगा। अंग्रेजों की इस कुटिलता से भारत की आशाओं को गहरा धक्का पहुंचा और भारतीय प्रतिनिधियों ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। गांधी जी ने कहा कि ये प्रस्ताव एक दिवालिया होने वाले बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। इसी पृष्ठभूमि पर आंदोलन की रणनीति तैयार हुई और 14 जुलाई 1942 को वर्धा अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इस आंदोलन के लिए 9 अगस्त की तारीख चुनी गई, जिसे देशभर में प्रतिवर्ष काकोरी कांड स्मृति दिवस के रूप में मनाने की परंपरा सरदार भगत सिंह ने शुरू की थी। 1925 की 9 अगस्त ही वो तारीख थी जब ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलटने के लिए पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के 10 वीर क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया था। इसी ऐतिहासिक तारीख 9 अगस्त को एक बार फिर महासमर का शंखनाद होना था। 8 अगस्त 1942 को रात 10 बजे गांधी जी ने बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में अंग्रेजों को बलपूर्वक चेतावनी दी कि या तो इच्छापूर्वक भारत का शासन भारतवासियों के हाथों में सौंपकर यहां से चले जाओ, अन्यथा तुम्हें संपूर्ण भारत की उभरती हुई शक्ति का सामना करना पड़ेगा। इस तरह ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध भारतीयों की एक खुली लड़ाई की रणभेरी बज उठी।

8 अगस्त की बंबई की हलचलों को लेकर सरकार अत्यधिक चौकन्नी थी। ब्रिटिश सत्ता ने रात 12 बजे ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर अलग अलग जेलों में डाल दिया। गिरफ्तारी से कुछ पहले ही सारे शहर के टेलीफोन तार काट दिए गए ताकि हंगामा न हो। गांधी जी के साथ भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को यरवदा पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में और अन्य नेताओं को अहमदनगर के किले में नजरबंद कर दिया गया। 8 अगस्त को ही ये घोषणा हो चुकी थी कि 9 अगस्त को सुबह ग्वालिया टैंक के मैदान में राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी जाएगी। सुबह उठते ही जब जनता ने नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार सुना तो सभी लोग ग्वालिया टैंक मैदान की ओर चल पड़े। वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि सारे मैदान पर पुलिस ने कब्जा कर लिया है। पुलिस की परवाह न करते हुए जनता निर्भय और निसंकोच सभा स्थल में एकत्रित हो गई। सभी मुख्य नेताओं के जेल चले जाने के बाद नेतृत्व के अभाव में लोगों के बीच से ही नेतृत्व उभरा। एक मोटर आई जिसमें भूला भाई देसाई के सुपुत्र सवार थे। उन्होंने आते ही राष्ट्रीय झंडा अपने हाथ में ले लिया। इस पर एक यूरोपियन सार्जेंट ने आगे बढ़कर ऊंचे स्वर में कहा, इस मैदान पर अब पुलिस और मिलिट्री का कब्जा है, तुम सब यहां से हट जाओ वरना आंसू गैस का प्रयोग किया जाएगा। समारोह की संचालिका थी अरुणा आसफ अली। उन्होंने छोटे लड़के लड़कियों को वहां से दूर हटा दिया और स्वयं भाषण देना प्रारंभ किया। इस पर पुलिस के सिपाही आंसू गैस के थैले लेकर सभा स्थल पर पहुंच गए। तमाम विरोध और अफरा तफरी के बीच अरुणा आसफ अली ने ग्वालिया टैंक मैदान में झंडा फहराकर आंदोलन की शुरुआत कर दी, जिसने देशवासियों के मन को उत्साह से भर दिया। जनता को नेताओं की ओर से पहले ही समझाइश दी गई थी कि आंसू गैस छोड़ने पर जमीन पर लेट जाना चाहिए। लोगों ने वैसा ही किया। 2 मिनट तक सभी नीचे लेटे रहे, परंतु जैसे ही उठकर खड़े हुए आंसू गैस फिर छोड़ दी गई। लोग फिर से लेट गए। तब पुलिस ने सबको लाठियों से मारना शुरू कर दिया। बहुत से लोग घायल हुए। दिन के 10 बजते सारा बंबई शहर खुले विद्रोह का अखाड़ा बन चुका था। जनता इस अत्याचार से विक्षुब्ध हो गई। लोगों ने सरकारी संपत्तियों पर हमला किया, रेलवे पटरियों को उखाड़ दिया, डाक और तार व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया और सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराने लगे। देश की जनता ब्रिटिश सत्ता के आक्रमण का उत्तर देने के लिए मैदान में उतर आई थी, क्योंकि करो या मरो का संदेश देश के कोने कोने में गूंज उठा था। जन मन में प्रतिरोध इतना तेज था कि देश के कई भाग, जैसे संयुक्त प्रांत में बलिया, बंगाल में तामलुक, महाराष्ट्र में सतारा, कर्नाटक में धारवाड़ और उड़ीसा में तालचेर और बालासोर में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। पहली अस्थायी सरकार बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी। सतारा में विद्रोह का नेतृत्व YV चौहान और नाना पाटिल ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की चिंगारी जो बंबई से उठी तो पूरे देश में फैल गई। सारा देश एक धधकता हुआ ज्वालामुखी बन गया।

अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये ललकार जैसे धरती से उठकर आसमान तक पहुंच रही थी। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने तैयार किया था, जिन्होंने बंबई के मेयर के रूप में भी काम किया। ये वही यूसुफ मेहर अली हैं जिन्होंने साइमन गो बैक के नारे को भी गढ़ा था। इस अगस्त क्रांति में अनगिनत नेता जेल की सलाखों के पीछे थे और जो बाहर थे वो भूमिगत रहते हुए इसे गति दे रहे थे। जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, एस एम जोशी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे कई नेता लगभग पूरे आंदोलन के दौरान भूमिगत रहते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों को हवा देते रहे। सन 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ, उस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल में नजरबंद थे। जब सरकार की ओर से हिंसक कार्रवाई शुरू हुई तब जयप्रकाश जी से सहा नहीं गया और 11 नवंबर 1942 को दीपावली की अंधेरी रात में 5 अन्य सहयोगियों के साथ वो जेल की दीवार फांदकर भाग निकले। बाहर पहले से ही मोटर की व्यवस्था थी। पहले मोटर से और फिर पैदल रांची गया होते हुए बंबई पहुंचकर वो आंदोलन में जुट गए। 1943 के मई महीने में नेपाल की तराई में राष्ट्रीय सेना तैयार करते हुए वो और उनके कई साथी गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिए गए। परंतु वहां भी वो देर तक नहीं टिके। योजनानुसार रात के समय बहुत से नवयुवकों ने जेल पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया, जेल का फाटक तोड़ डाला और जयप्रकाश जी अपने सहयोगियों के साथ बाहर निकल गए। उस समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी उनके साथ थे। इस प्रकार 2 वर्ष तक लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने सरकार की सारी शक्ति को अंगूठा दिखाकर इस क्रांति का अभूतपूर्व संचालन किया। इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी भी बहुत महत्वपूर्ण रही। ब्रिटिश सरकार ने भूमिगत अरुणा आसफ अली को पकड़वाने वाले को 5,000 रूपये का इनाम देने की घोषणा कर रखी थी। उधर उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने सहयोगियों के साथ 14 अगस्त 1942 को एक खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था। ये रेडियो लगभग हर दिन अपनी जगह बदलता था ताकि अंग्रेज अधिकारी उसे पकड़ न सकें। 3 महीने तक प्रसारण के बाद अंततः अंग्रेज सरकार ने उषा मेहता और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। लाखों युवाओं ने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। 1942 के अंत तक लगभग 60,000 से अधिक लोग जेल में डाल दिए गए और कई हजार लोग मारे गए। बंगाल के तामलुक में 73 वर्षीय मातंगनी हाजरा, असम के गोहपुर में 17 वर्षीय कनकलता बरुआ, बिहार के पटना में 7 युवा छात्र, ऐसे हजारों लोग प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से मारे गए। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन से संबंधित समाचारों को प्रकाशित करने पर पाबंदी लगा दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1857 के बाद दूसरा सबसे बड़ा जन आंदोलन साबित हुआ। 1943 के अंत तक इस आंदोलन ने भारत को संगठित कर दिया था और अंततः ब्रिटिश सरकार ने संकेत दे दिया कि सत्ता का हस्तांतरण कर अब उसे भारतीयों के हाथ में सौंपा जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसी खुली लड़ाई थी जिसके बाद भारतीयों ने पहली बार स्वाधीनता की आहट को महसूस किया था। इस आंदोलन ने अंततः भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं जागृति शर्मा। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अगस्त को भारत की राष्ट्रीय एकीकृत योजना गोबरधन कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG को मंजूरी दे दी है। कुल 23,771 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली ये योजना देश के जैविक कचरे और कृषि अवशेषों को स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आर्थिक विकास के अवसर में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि गोबरधन योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस तरह मजबूत कर सकती है, किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए इसके क्या अवसर हैं, और कचरे से कंचन तथा आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ये पहल कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। श्रोताओं, भारत दुनिया की प्रमुख और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ने के साथ देश की ऊर्जा आवश्यकताएं भी लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन प्राकृतिक गैस की जरूरत का लगभग 50% हिस्सा भारत अभी आयात के माध्यम से पूरा करता है। हाल के वैश्विक भू राजनीतिक घटनाक्रमों और ऊर्जा आपूर्ति में सामने आई चुनौतियों ने ये स्पष्ट किया है कि किसी भी देश के लिए घरेलू ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है। भारत के LNG आयात का एक बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों से होकर आता है। ऐसे में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी तरह का व्यवधान ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि भारत लगातार ऐसे स्वदेशी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे रहा है जो आयात पर निर्भरता कम करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास को भी गति दे सके। इसी सोच को आगे बढ़ाती है गोबरधन योजना। गोबरधन का पूरा नाम है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। वर्ष 2018 में इसे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पशुओं के गोबर, रसोई के जैविक कचरे, कृषि अवशेषों और बाजार से निकलने वाले जैविक कचरे को बायोगैस और जैविक खाद में बदलना था। अब इस पहल को एक व्यापक राष्ट्रीय CBG कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाया गया है। पहले CBG इकोसिस्टम विभिन्न मंत्रालयों के दायरे में था। बेहतर समन्वय और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अब पूरी योजना को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एकीकृत किया गया है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और ये CBG क्षेत्र को किस प्रकार नई गति देने वाली है।
2: गोबरधन योजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य देश में कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाना है। इसके लिए योजना में पूरी CBG मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है। योजना के तहत सबसे पहले CBG उत्पादकों के लिए निश्चित बाजार और खरीद का भरोसा सुनिश्चित किया जाएगा। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी CGD संस्थाओं के माध्यम से CBG की खरीद को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है स्थिर CBG मूल्य निर्धारण। इसके तहत सरकार ने 2,110 रुपए प्रति MMBTU की कीमत तय की है जो लगभग 105 रुपए प्रति किलोग्राम CBG के बराबर है। न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि वाला यह मूल्य ढांचा उत्पादकों को राजस्व की स्थिरता प्रदान करने और नई परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा। तीसरे घटक के रूप में पात्र ग्रीन फील्ड CBG परियोजनाओं को स्थापित क्षमता के आधार पर प्रति टन प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत सहायता दी जाएगी। उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाले ब्राउन फील्ड परियोजनाएं भी इसके दायरे में आ जाएंगी। चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र है पाइपलाइन अवसंरचना। CBG संयंत्रों को ट्रक पाइपलाइन और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ने के लिए आवश्यक पाइपलाइन अवसंरचना को सहायता दी जाएगी। इससे परिवहन लागत कम होगी और CBG के लिए बाजार तक पहुंच आसान होगी। पांचवें घटक के तहत पात्र MSME आधारित CBG परियोजनाओं को संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने के लिए ऋण गारंटी तंत्र विकसित किया जाएगा। इसके तहत ऋण पर 85% तक ऋण गारंटी कवर उपलब्ध कराया जा सकेगा। छठा घटक है CBG इकोसिस्टम चैलेंज फंड। इसके माध्यम से जिला स्तर पर कच्चे माल का आकलन और मैपिंग, कच्चा माल एकत्रीकरण, तकनीक सुधार, जैविक खाद का मूल्य संवर्धन, क्षमता निर्माण और जागरूकता जैसे कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा।
1: श्रोताओं, गोबरधन योजना का महत्व केवल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध किसानों की आय, ग्रामीण रोजगार, कचरा प्रबंधन और स्थानीय अर्थव्यवस्था से भी है। हर सीबीजी संयंत्र के पास कृषि अवशेष, पशुओं का गोबर और अन्य जैविक कचरा कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इससे गाँव में कचरे के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ कच्चा माल एकत्र करने, परिवहन, संयंत्र संचालन और जैविक खाद के उत्पादन जैसे क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सीबीजी उत्पादन के साथ निकलने वाले जैविक उर्वरक भी कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार पहले से ही फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मेन्योर, लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मेन्योर और फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मेन्योर जैसे जैविक उर्वरकों को बढ़ावा दे रही है। इससे एक ऐसी चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था विकसित हो सकती है जिसमें खेतों से निकलने वाला अवशेष कचरा नहीं बल्कि आर्थिक संसाधन बन जाए और सीबीजी संयंत्रों से प्राप्त जैविक खाद वापस कृषि क्षेत्र में उपयोग हो। यानी गोबरधन का मूल विचार है कचरे को संसाधन में बदलना, संसाधन को ऊर्जा में बदलना और ऊर्जा को आर्थिक विकास का माध्यम बनाना। श्रोताओं, गोबरधन योजना के जरिए भारत अपने विशाल जैविक संसाधनों को ऊर्जा सुरक्षा के साथ जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस पहल के बारे में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी जानकारी दी।
3: कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीस नेशनल जीडीपी को ऐड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
1: श्रोताओं, गोबरधन योजना की रूपरेखा और इसके प्रमुख घटकों को समझने के बाद अब ये जानना भी जरूरी है कि भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति में सीबीजी को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं कि गोबरधन भारत की ऊर्जा सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है।
2: भारत के गांवों में बड़ी मात्रा में कृषि अवशेष, पशु अपशिष्ट और अन्य जैविक संसाधन उपलब्ध हैं। यदि इन संसाधनों को संगठित तरीके से एकत्र कर सीबीजी संयंत्रों तक पहुंचाया जाए तो किसानों और स्थानीय उद्यमियों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा हो सकते हैं। सीबीजी संयंत्र केवल ऊर्जा का उत्पादन नहीं करेगा बल्कि अपने आसपास एक स्थानीय आर्थिक चक्र भी तैयार करेगा जो कच्चे माल का संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण, गैस उत्पादन और जैविक खाद का निर्माण करेगा। इस तरह गोबरधन ग्रामीण भारत को केवल ऊर्जा का उपभोक्ता नहीं बल्कि ऊर्जा का उत्पादक और ऊर्जा सुरक्षा का भागीदार बनाने की क्षमता रखता है। पर्यावरण की दृष्टि से भी ये पहल महत्वपूर्ण है। कृषि अवशेषों और जैविक कचरे के वैज्ञानिक उपयोग से खुले में कचरा जलाने और लैंडफिल में जैविक कचरे के जाने को कम किया जा सकता है। इससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आएगी।
1: श्रोताओं, गोबरधन योजना के तहत पहले से चल रहे प्रयासों को भी अब राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत रूप दिया जा रहा है। बायोगैस एकत्रीकरण मशीनरी योजना

0: हो चुके हैं और लगभग 0.4 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन गैस का उत्पादन कर रहे हैं, जबकि 339 संयंत्र निर्माणाधीन हैं। श्रोताओं, गोबर्धन भारत की उस विकास यात्रा का हिस्सा है जिसमें आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण को एक दूसरे का विकल्प नहीं बल्कि एक दूसरे का पूरक बनाया जा रहा है। कचरे से ऊर्जा, ऊर्जा से रोजगार और रोजगार से ग्रामीण समृद्धि, यही चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था का आधार बन सकता है। गोबर्धन योजना कचरे से कंचन, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल ने, प्रस्तुति सहायक अक्षत ममगाई। नमस्कार।
1: मेरा नाम कार्तिक है, मैं कक्षा 7वीं ए का छात्र हूँ। मैं शहबाद मोहम्मदपुर के रीड इंडिया लाइब्रेरी में आता हूँ। मैं आपके सामने पोयम प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सीखो फूलों से नित हंसना, सीखो भोरों से नित गाना, दिनकर की किरणों से सीखो जगना और जगाना, चिड़ियाओं से हंसकर सीखो सबसे हिल मिल करना।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं यादें, स्वाधीनता संघर्ष की बातें, राष्ट्र की पहचान, हमारे अभिमान की।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

भारत हिंदुस्तान। हम भारतीयों के लिए विश्व शब्दकोश का ये सबसे महान शब्द है, जिसके ध्वनित होते ही मन गौरव से भर जाता है, श्रद्धा से झुक जाता है। यूं लगता है कि भारत इस धरती पर उजाले की किरण से लिखी एक अद्भुत कविता है, एक लुभावनी सी कहानी है, जिसकी रोशनी हर अंधेरे से लड़कर फिर जाग उठी। और भारत की इस महागाथा के उन 90 वर्षों की कहानी जो सन 1857 से 1947 के बीच से बहते हुए समय को कहती है, हर भारतीय के दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये कहानी अंग्रेजी राज के विरुद्ध जन गर्जना की है। ये कहानी है अनगिनत क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान की, आजादी के दीवानों के अद्भुत साहस और पराक्रम की। पराधीन भारत जिन पगडंडियों पर चलता हुआ, पथरीले रास्तों को सहता हुआ 15 अगस्त 1947 की गौरवपूर्ण तारीख तक पहुंचा, उस महामार्ग पर अनगिनत गाथाएं बिखरी पड़ी हैं। कैसी कैसी महान तस्वीरें हैं उस संघर्ष गाथा की।

1857 का महासमर, मंगल पांडे की बगावती हुंकार, रानी लक्ष्मीबाई का अद्भुत पराक्रम, कमल और रोटी के बहाने एक विराट जन आंदोलन का उद्भव, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक के इस नारे से जागती हुई भारत भूमि, गुलामी के अंधेरे के विरुद्ध महात्मा गांधी के स्वर से फूटता सत्य का प्रकाश, जो दुनिया को सिखा रहा था कि युद्ध बिना अस्त्र शस्त्र के अहिंसा के बल पर भी लड़े और जीते जा सकते हैं। इन्हीं अविस्मरणीय तस्वीरों में शामिल है भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों हजार युवाओं की बुलंद आवाज में गूंजती मुकम्मल आजादी की मांग कि जहां मानव द्वारा मानव का शोषण पूरी तरह से बंद हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आगे बढ़ती आजाद हिंद फौज और ब्रिटिश सरकार के समानांतर भारतीयों की सरकार, जंगल पर्वत शहर गांव देश परदेश, कहां नहीं पहुंची विद्रोह की चिंगारी, कहां नहीं गूंजा आजादी का महामंत्र वंदे मातरम। इसी कथा को श्रद्धापूर्वक बार बार बांचने का शुभ अवसर है आजादी का अमृत महोत्सव। 15 अगस्त सन 2022 को भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होंगे। इसके 75 सप्ताह पहले 12 मार्च 2021 को आजादी के 75 वर्षों का ये जश्न शुरू हुआ साबरमती आश्रम से। आजादी के इस अमृत महोत्सव में स्वाधीनता के इतिहास से जुड़ी घटनाओं, स्थानों और अमर सेनानियों का स्मरण किया जा रहा है। इस अमृत महोत्सव में शामिल है भारत के सांस्कृतिक गौरव की झलक और आधुनिक भारत की चमक, इंडिया एट 2047, यानी 25 वर्ष बाद के भारत का एक स्वप्न, एक विजन। अपनी आजादी के 75 साल को समारोहित करने का उद्देश्य यही है कि आजादी का ये अमृत महोत्सव भारत के जन जन का, हर मन का पर्व बने। तो आइए इस उत्सव को मनाते हुए हम भी गुनगुनाएं आजाद तराना।

ऊंचे आसमान में आजाद तिरंगा अपना कौमी झंडा फहराते हुए जनमन गौरव से भर जाता है। इन तीन रंगों से ही रचते हैं हम भारतीय भरा पूरा सा इंद्रधनुष। हमारे जीवन का हर रंग इन तीन रंगों में ही समाया हुआ है। देश की आन बान और शान है ये तिरंगा, हमारी पहचान है ये तिरंगा। राष्ट्रध्वज किसी भी देश के स्वतंत्र होने का संकेत होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हमारे लिए ये अनिवार्य होगा कि हम भारतीय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अन्य सभी जिनके लिए भारत एक घर है, एक ही ध्वज को मान्यता दें और उसके लिए मर मिटें। और आजादी के अनगिनत मतवालों ने इस पर अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। उन्होंने कितनी ही बार अलग अलग स्थानों पर अपना झंडा फहराकर बगावत का बिगुल बजाया, यूनियन जैक के समकक्ष भारत का झंडा फहराकर ब्रिटिश सत्ता को खुली चुनौती दी। ये शंखनाद था स्वातंत्र्य समर का, ये उद्घोष था स्वराज का। हमारे राष्ट्रध्वज तिरंगे की भी एक विकास यात्रा है। अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने से पहले ये कई पड़ावों से गुजरा है। 7 अगस्त सन 1906 को पारसी बागान चौक कलकत्ता में जो झंडा फहराया गया, इसमें लाल, पीली और हरी आड़ी पट्टियां थीं। ऊपर 8 कमल, नीचे सूरज चांद और बीच में वंदे मातरम अंकित था। सन 1907 में भीकाजी कामा द्वारा बर्लिन में जो झंडा फहराया गया, वो भी पहले के ध्वज के समान ही था, सिवाय इसके कि इसकी सबसे ऊपर की पट्टी में केवल एक कमल था, बाकी 7 तारे सप्तऋषि को दर्शाते थे। इसके बाद सन 1917 में डॉ एनी बिसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन के दौरान जिस झंडे को फहराया था, उसमें 5 लाल और 4 हरी आड़ी पट्टियों पर सप्तऋषि के विन्यास में 7 तारे, ऊपर बाईं ओर यूनियन जैक और दाईं ओर अर्धचंद्र और सितारा था। इसके बाद सन 1921 में विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के एक युवक ने लाल और हरी पट्टी का एक झंडा गांधी जी को दिया। गांधी जी ने इसमें एक सफेद पट्टी और बीच में एक चलता हुआ चरखा जोड़ा। सन 1931 हमारे राष्ट्रध्वज के इतिहास का एक यादगार वर्ष है, जब तिरंगे ध्वज को हमारे राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। ये ध्वज हमारे राष्ट्रध्वज का पूर्वज कहा जा सकता है। केसरिया, सफेद और हरी आड़ी पट्टियां और बीच में चलता हुआ चरखा, और फिर बना हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा। केसरिया, सफेद और हरी आड़ी पट्टी, और सफेद पट्टी के बीच गहरे नीले रंग का 24 तीलियों वाला अशोक चक्र। इस झंडे को आजादी के कुछ दिन पूर्व ही 22 जुलाई सन 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया, और आज शांति और सत्य जैसे जीवन मूल्यों को संजोए भारत की शक्ति और साहस, देश की उर्वरता और विकास का उद्घोष करता हमारा राष्ट्रध्वज हमारी पहचान, हमारा अभिमान है।

आजादी एक स्वाभाविक भाव है जो मनुष्यों में ही नहीं जीव जंतुओं और वनस्पतियों तक में होता है। बीज को धरती में दबा दें तो वो उसे फाड़कर कोंपल बनकर धूप हवा की तलाश में बाहर झांकने लगता है। जड़ें गमलों मकानों किलों पहाड़ों तक को तोड़ फोड़ डालती हैं। फिर मनुष्य तो मनुष्य है, अपनी जमीन अपने आसमान को लेकर उसका अंतर्मन हमेशा भीगा रहता है। अपने इतिहास अपने दर्शन अपनी संस्कृति से उसका आत्मिक जुड़ाव होता है। और तब राष्ट्र चेतना जागृत हो कवि के शब्दों में कहती है कि भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द है, जहां कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। यूं अपने देश के गौरव को जनमन गाता रहा है और राष्ट्रगान किसी भी देश की आत्मा का संगीत होता है। जनगणमन भारत का राष्ट्रगान है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1911 में एक कविता लिखी थी जिसके 5 पद थे। इसी कविता के पहले पद को हमने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। जनगणमन की रचना बांग्ला भाषा में हुई जिसमें संस्कृत के शब्द भी शामिल हैं। गुरुदेव ने राष्ट्रगान के बोल और धुन को आंध्र प्रदेश के मदनापल्ली में तैयार किया था। 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में इस गीत को पहली बार गाया गया और 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से इसे राष्ट्रगान के तौर पर अपना लिया गया। राष्ट्रगान के साथ साथ हमारा एक राष्ट्रगीत भी है, जिस गीत को मंत्र की तरह गाते हुए अनगिनत क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल गए। वही गीत वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत बना, जिसके रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम की अवधारणा बंकिम चंद्र चटर्जी को तब सूझी जब अंग्रेजों ने ब्रिटेन का राष्ट्रगान गॉड सेव द क्वीन को गाना अनिवार्य कर दिया। 7 नवंबर सन 1875 को बंकिम बाबू ने इस गीत की रचना की थी। वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी। सन 1882 में जब उनका उपन्यास आनंदमठ प्रकाशित हुआ तब ये गीत उसमें शामिल कर लिया गया। लिखे जाने के बाद जदुनाथ भट्टाचार्य ने इसकी धुन बनाई थी। तब बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि मैं इसकी लोकप्रियता देखने के लिए चाहे जीवित न रहूं, लेकिन ये गीत हर भारतीय द्वारा गाया जाएगा। और उनका ये कथन अक्षरशः सत्य साबित हुआ। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान लोगों में जोश भरने के लिए ये गीत गाया जाने लगा। आगे चलकर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इसकी धुन बनाई और सन 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया। इसके बाद सन 1901 में इसे एक अन्य अधिवेशन में चरण दास ने गाया और सन 1905 में बनारस अधिवेशन में सरला देवी चौधरानी ने जब इसे गाया तो ये अत्यंत सराहा गया। ये गीत इस कदर लोकप्रिय हो गया कि ब्रिटिश सत्ता इस पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने लगी। वंदे मातरम जैसे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध बगावत का बीज मंत्र बन गया। ये एक ऐसा कालजयी गीत बन गया जिसकी लोकप्रियता आज भी वैसी ही बनी हुई है। अलग अलग राग रागिनियों में ये गीत स्वरबद्ध हुआ। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने भी राग काफी में इसकी धुन बनाई और लाहौर में इसे गाया था। यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को भारतीय स्वाधीनता संग्राम में वंदे मातरम की ऐतिहासिक भूमिका को रेखांकित करते हुए इसे भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनाने संबंधी अपना वक्तव्य पढ़ा, जिसे सहर्ष स्वीकार किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हम नमन करते हैं स्वतंत्रता संग्राम के सभी अमर बलिदानियों को और वंदन करते हैं अपनी मातृभूमि का।

0: आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।
1: ये वतन का राग।
2: गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सबको। मैं स्टिचिंग ट्रेनर हूँ, मेरा नाम रीना। मैं गरिमा ग्रह में पहली बार आई थी, तो इससे पहले मैं कंपनी में जॉब करती थी। मुझे नहीं लगा था, जब लॉकडाउन हुआ था तो मुझे ऐसा लगता मेरे बेटा 12वीं क्लास में पढ़ रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मैं उसको आगे नहीं पढ़ा सकती हूँ। लेकिन फिर गरिमा ग्रह में मैं आई और शिवानी मैडम से मिली, फिर मुझे जॉब पाकर मुझे इतना अच्छा लगा और मैं अपने आगे बेटा को पढ़ा रही हूँ और मेरी बेटी भी एमए करी। मुझे
3: I'd like to call the speakers and talk about how the role of transformative libraries are implementing this mission on ground, and where read libraries could learn further and move further on this journey. So first in this series, I'd like to call upon Dr. Shantanu Ganguly. Please, sir.
4: A big round of applause.
5: Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank Geeta for inviting me to share my experiences with all of you. Thank you very much, Geeta. I think since morning I learned a lot. I don't know what is the acronym stands for Read Word. And I did it myself. R stands for resilience. E stands for enlightenment or engagement. A stands for access to knowledge resources, and D stands for development. That is how the entire Read Word stands for. That is what I could point.
6: After 17 years, we are getting the new name. Thank you, sir.
5: Second thing is that my colleague, Mr. Vibhutinath Jha, Vibhuti, please stand up. My colleague, Mr. Vibhutinath Jha, is there. In fact, he told me, sir, hame yahan se jab hum jayenge, तो हमें कुछ करके जाना चाहिए। ऐसे क्या करेंगे, अभी तो हम मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जस्ट वन मंथ बैक आई हैव टेकन ओवर अशोका यूनिवर्सिटी में। सर, वी आर गोइंग टू डोनेट 2000 चिल्ड्रन बुक्स टू रीड इंडिया, एंड दैट ही प्रॉमिस्ड एंड ही सेड, सर लेट्स मेक इट एंड वी विल डू इट। सो दैट इज अ स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस कॉन्फ्रेंस फॉर यू। लेट मी टेल यू, I am in this profession for the last 26-27 years, and all my stalwarts are here, starting from Dr. D.V. Singh, Dr. Jagtar Singh, Dr. P.R. Goswami. They are like my mentors, and Rangashri, my predecessor from Ashoka. And I had a very interesting dialogue with Jay. And when I discussed with him regarding that, one of the important component in today's context is the sustainability of the libraries. How do you take this journey for the next 17 years or maybe next 70 years? How do you look at it? What would be the journey is that? There are a couple of ideas. I told him that I'm ready to be a part of Read India, being in this profession, because I have a very strong backbone of research. I have completed almost 41 research projects, which are funded by the bilateral, multilateral organizations, Department of Biotechnology, DSIR, DST and all, where I have worked on some of the leading projects which is making a marriage between a library information system and sustainable development goals, and reaching out to those sustainable development goals. And that's where basically I come from. Let me give you a very small presentation on this. Well, this is a beautiful quote from Alvin Toffler, Future Shock. And he said that the illiterate of the century for those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. And let me tell you, all my friends here, Today I have proved this and I have learned a lot from this entire session. This is a very common, you know, platform. This is a very common platform. Can anybody tell me? What is this?
4: WhatsApp.
5: I want to be an interactive. WhatsApp. Who discovered WhatsApp? Who discovered WhatsApp? That's my question is. And there is a relationship by the word which is talked about by Steve Jobs. Connecting the dots. These two guys, I don't know how many of you know, Yan Koum and Brian Acton, came out of once again a Stanford University, sitting in a garage, and developed the entire model of WhatsApp. And that is what how the birth of WhatsApp has taken. And you know it is based on what? Connecting the dots. This is what connecting the dots is today. It is the content. It is the context. And third is the technology. Content, what do you write? Arey yaar, ye kya khade hoke stage mein baat kar raha hai? Khana khaya, sona hai. Somebody must be typing out on that. Context. Somebody want to escape this lecture today. And technology is that what is the platform is. Simple thing, but has given birth to the entire information and revolution today. So, content, when we look at it, it is a multi-format in today's context. It is textual. It is the figures and the numbers. It is the images. And it is the videos which has come up. And many more formats. When you talk about context, it is the purpose, it is the objective, it is the scope. And it is the right content for the right person in the right time. And that is when you provide a service. I'll give you an example. I was doing a project in Almora. And I was trying to develop what is called as a village knowledge resource center. It is called a VKRC model. When I was in Terry, I went to their public library. It was completely in a dilapidated condition. बहुत हालत खराब था उसका और उसको डेवलप करने के लिए जमीन के सारे वहां के बच्चों से जुड़ा उनके लोगों से जुड़ा और वहां पर एक विलेज नॉलेज रिसोर्स सेंटर बनाना. जब वहां पर पहुंचा विलेज नॉलेज रिसोर्स सेंटर तो वहां के गांव के लोग हमको ये कहते हैं, सर हमको आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना है, हम कैसे करेंगे बताएंगे हमको. हम अपना पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हम अपना सब्सिडी में गांव गेहूं लेना चाहते हैं, कहां जाएंगे, कौन सी स्कीम को अवेल करेंगे, गवर्नमेंट कैसे बताएगा हमको. फिर मैंने उनको बोला कि यस, ये नॉलेज रिसोर्स सेंटर सिर्फ किताबें नहीं देगा, ये यहां के लोगों को एजुकेट करेगा. वो एजुकेशन एम्पावरमेंट इज नेसेसरी. एंड द टेक्नोलॉजी वॉज करेंटली देर इज अ बूम. Like Jay already talked about the artificial intelligence. It is in a very big way. It is coming up. I was reading and there is something called as frugal innovation, which is currently social and frugal innovation is one of the big thing. In fact, when one of my event, Geeta was also one of the speakers, the Professor Sarvindu Bhaduri was talking about how the frugal innovation is making a radical change in the current context. Ask frugal innovation. Frugal innovation hai kya? These are very big jargons. Let me easy way mein aap logon ko batata hun. Aapke paas resources ki constraint hai. Jab aap rural community pe kaam kar rahe hain, to wahan par aapke paas resources ki kami hai. Aur usi kami ke saath, jab aap koi solution leke aate hain, aur wo solution ek दूसरे चीज पे रूपांतरित होता है, तो उसको हम फ्रूगल इनोवेशन कहते हैं. इज अ वेरी सिंपल क्रूड वे. एंड सो वी आर लुकिंग टुवर्ड्स अ स्मार्ट लाइब्रेरी नाउ. स्मार्ट का मतलब ऐसा नहीं मैंने अच्छा ड्रेस पहना है, जय ने बढ़िया ड्रेस पहना है, मैडम ने पहना है, ऐसा स्मार्ट नहीं है. स्मार्ट वर्ड का मैंने क्वाइन किया है. मेरे को वर्ड क्वाइन करना अच्छा लगता है. सस्टेनेबल, measurable, achievable, retrievable and transformational. Sustainable. Green library लेके बहुत बातें हो रही हैं. आप लोगों को मालूम है कि इफला ने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंटेशन भी रिलीज किया है. वी हैव टू टॉक अबाउट ग्रीन लाइब्रेरी. सो मच ऑफ रिन्यूअल एनर्जी इज यूज इन द ग्रीन लाइब्रेरीज. हमने अपनी एचडीएफसी लाइब्रेरी के अंदर जो है सेंसर बेस्ड लाइट्स लगाई है. अगर इस रूम के अंदर कोई नहीं बैठा है, नोबडी सिटिंग हेयर इन दिस रूम, तो क्या ये लाइट्स जलनी चाहिए? वी शुड सेव दिस एनर्जी ना. तो वो कैसे करेंगे? पेपरलेस लाइब्रेरी हमने स्टार्ट किया है अपने एचडीएफसी लाइब्रेरी में. मैक्सिमम कम्युनिकेशन हमारी ऑनलाइन में हो रही है. फ्यूचरिस्टिक. देयर आर केस स्टडीज. आई कुड हैव प्रेजेंटेड दोस केस स्टडीज. वहां पर ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी का एप्लीकेशन किया जा रहा है, और वो भी हायर एजुकेशन सेक्टर में. एंड द थर्ड बट नॉट द लीस्ट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ऑलरेडी सर ने हमें, बहुत लोगों ने बताया, एसडीजीज को अगर आप नहीं बताएंगे तो आप नहीं सर्वाइव कर सकते आज के डेट में. एसडीजीज इज मस्ट. और एसडीजी का जो सस्टेनेबल गोल्स हैं, जो सारे गोल्स हैं, मैं कई गोल्स पे काम किया हुआ है मैंने. एक छोटा सी चीज आपको मैं बताता हूं. आई वॉज वर्किंग इन VHEI, वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और हम वहां पर एक छोटा सा न्यूज लेटर निकालते थे, हमारी चिट्ठी आपके नाम, हमारी लाइब्रेरी से, और वो 22 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होता था. तो आई वॉज वर्किंग विद दिस सहारिया ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश की सहारिया ट्राइब्स के साथ जब मैं काम किया वहां पर, तो वहां पर एक चाय वाला जो है वो शाम के टाइम एक छोटा सा अपना एक वो कैंडल टाइप लेके बैठता था और गांव वालों को साथ में बिठा देता था. और साथ में वो जो हमारी चिट्ठी आपके नाम की, हम जो डॉक्यूमेंट उनको देते थे, जो पतला सा न्यूज़लेटर देता था, उसको पढ़ के सुनाता था. और उसमें कौन सी स्पेसिफिक चीजें होती थी? एनवायरमेंट की नॉलेज देते थे हम लोग, पर्यावरण की नॉलेज देते थे, पानी का नॉलेज देते थे, ऐसे बहुत सारी चीजों की नॉलेज हम उनको डिसमिनेट करते थे. हेल्थ का, स्वस्थ का सबसे ज्यादा देते थे, क्योंकि ये जो गर्मी का टाइम आ रहा है, बरसात का टाइम है, ये सबसे ज्यादा बीमारियों का जन्म लेता है. इन चीजों की हम देते थे. सो वी स्टार्टेड हिटिंग ऑन दीज एरियाज. एंड इनफैक्ट आई हैव डन क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, एक्सक्लूसिवली ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. मेजरेबल इज द लाइब्रेरी एनालिटिक्स. आज के डेट में इतनी रिसोर्सेस हम खरीदे जा रहे हैं, लेकिन क्या उसकी इस्तेमाल प्रॉपर हो रही है? कितने किताबें लोगों ने रैक से निकाल के खोल के देखा है? लोग तो डिजिटल वर्ल्ड में घूम रहे हैं. आजकल के बच्चे भी, जेन सी जनरेशन है, वो डिजिटल वर्ल्ड में है. कितने किताबें रैक से निकाल के देखते हैं? टीचिंग एनालिटिक्स, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम समझा रहे हैं. मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूंगा, रीड इंडिया जय के, जय इज अ फाउंडर ट्रस्टी, गीता मैम है. मैम प्लीज, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट एज एन एक्सटर्नल एडवाइजर, कि अगर आप कोई ऑनलाइन में लाइब्रेरी साइंस के बच्चों का कोर्स करवाना चाहते हैं, आई वुड बी हैप्पी टू डू दैट. आई हैव गॉट 40 रिसर्च वीडियोज इन स्वयं पोर्टल. मैंने खुद ट्रेन किया है, मैं हार्डकोर ट्रेनर. आई थिंक वन ऑफ माई स्टूडेंट मे बी स्टडिंग देयर. ऐसे कई लोगों को किया है. और आज जब हम लोगों को कोई लाइब्रेरी इंटर्न्स की जरूरत पड़ती है, आई डोंट फाइंड दैट काइंड ऑफ अ पर्सन टू कम एंड वर्क विथ मी, बिकॉज देयर इज अ गैप एंड वी ऑल ऑफ अस हैव टू मिनिमाइज दैट गैप. एंड द लास्ट कॉम्पोनेंट इज सेंटिमेंट एनालिटिक्स. जो भी चीज हम खरीदते हैं, जो भी चीज हम लेते हैं, कुछ भी करते हैं, सेंटिमेंट एनालिटिक्स, उसका आपका जो फीडबैक है वो जानना बहुत जरूरी है. वो आपने कैसे किया है? एंड इज अ वेरी बेसिक मेथड. आई कैन ट्रेन पीपल ऑन दीज एरियाज. अचीवेबल, दैट इज बेसिकली जितना हम अभी कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड आइसबर्ग मेटाफर, नॉलेज मेटाफर है. एक्चुअल सेंस में अगर देखा जाए, सिंस आई हैव थ्रू आउट माई लाइफ आई वर्कड ऑन केम सिस्टम्स, आई हैव इंप्लीमेंटेड क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ केम सिस्टम. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ केम. In fact, in Accenture, PwC, I have given a lot of trainings. Even in Ernst & Young, McKinsey, a lot of sessions I have taken on KM systems implementation. I'll give an example. I was working in the in Bhopal, in one of the leading multinational NGO there. Unke wahan par mere ko, there was something called as State Climate Change Knowledge Management System banana tha, under National Action Plan on Climate Change, NAPCC ke under mein. Hume State Climate Change Knowledge Management System banana tha, so I went there along with my climate change expert, humne wahan par banane ke liye gaya. Jab main wahan banane ke liye gaya, so there was a stakeholder workshop was taking place, and see how do we know, can catch the tacit knowledge there. वहां गांव के लोग आए हुए थे, उन्होंने हम लोगों को वाटर लेके बड़ी प्रॉब्लम हो रहा था कि कहां पर पानी का कैसा लेवल है, उसका ग्राउंड लेवल पे कैसा है, क्योंकि वहां पर पानी की बहुत खपत है, इतनी पानी मिलती नहीं है, बहुत जमीन के नीचे चला जाता है, बहुत ड्रिलिंग करनी पड़ती है तब जाके पानी निकलता है. देयर वाज अ बिग प्रॉब्लम विद वाटर. जब हमने वहां के गांव के लोगों से, कई लोगों से पूछा, तो उन्होंने बोला हम आपको मट्टी उठा के बता सकते हैं कि यहां पर आपको पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा. एंड दी एज एंड यू वॉन्ट इमेजिन, आई मीन आई एम हैविंग माई गूज़बम्प्स, दैट गाय द वे ही पिक्ड अप द सॉयल एंड सेड यहां पर कितना पानी कितने ग्रेडियंट में आपको मिल जाएगा. ही सेड दैट, आई मीन दिस इज अनइमेजिनेबल. एंड हाउ डू वी कैप्चर दैट नॉलेज? That is actually the below the surface. We don't know these techniques. In fact, some of these areas I have also worked extensively in the northeastern belt with all the nine sisters, jahan par is tarah ki knowledge ko preserve karne ka, conserve karne ka bahut prayas kiya ja raha hai. Bahut prayas kiya ja raha hai. So, best possible way to retrieve. So, retrieval is a very important thing. कितना बढ़िया आप रिट्रीव कर रहे हो, क्योंकि रिसोर्सेस के तो कमी नहीं है. लेकिन आज के डेट पे एक्चुअल रिसोर्स जब आपको निकाल के ले आना है, समुन्द्र में से दो बूंद पानी आपको निकाल के ले आना है, क्या आपके पास उस तरह का डीप लर्निंग का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म है विच कैन टेक आउट दैट एक्चुअल इन्फॉर्मेशन और कॉन्टेक्चुअल, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज कॉन्टेक्चुअल सर्चिंग. मशीन लैंग्वेज को यूज करके कॉन्टेक्चुअल सर्चिंग में उस इंफॉर्मेशन को निकाल के ले आना. इनफैक्ट वी आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू हैव दैट इन आवर ओन लाइब्रेरी ऑल्सो. द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज ट्रांसफॉर्मेशनल. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशनल, दिस इज अ वेरी बिग वर्ड. व्हाट इज दैट ट्रांसफॉर्मेशनल? हमें अपने आप में एक बार देखना चाहिए. हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हम? वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटाइजेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटलाइजेशन, और वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. कौन सी एरिया पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम? डिजिटाइजेशन, आपके पास इतने सारे पेपर्स हैं, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया डिजिटल में, हो गया आपका. डिजिटलाइजेशन इज अ प्रोसेस बेस्ड, and digital transformation takes place in the entire organization where everything goes into the digital framework, which is a very long way journey and it is not a very easy thing also. I was reading this book 4.0 Insight, and one of the important area was knowledge 4.0. aaj ke date mein ek naya terminology, ye once again is a jargon, lekin hum sab karte hain yahan par baith ke. Main piche se bahut sari saman khareeda hai aaj maine. I bought many things for my wife, my daughter, my family members. जो चीज मेरे को बाहर पीछे देखने को मिला, and I was completely flabbergasted after seeing that. Co-creative, collaborative, comprehensive, problem solving and simulation analytics based. जब तक आप करोगे नहीं एक धागा को, कैसे, अगर आप वो मूवीज को देखेंगे जो WE का मूवीज, जैसे एक धागा को कितना बारीक से वो उसको डाल रहे थे और उसके अंदर उसको स्टिचिंग कर रहे थे, ये प्रोसेस को कोई अगर नहीं देखेगा तो समझ में नहीं आएगा. इनफैक्ट Under the NEP 2020, in my last organization at NIMS University, the fashion department was under me, and I started working towards sustainable fashion, where different kinds of reused materials in the fashion industry, how they can be further taken to a next level. I worked on that level also. So, if I look at these five laws of library science, which was coined by S.R. Ranganathan, and I relate them with artificial intelligence, I find that there is a very correlation with that. Starting from books are for use, every reader, his or her book, every book its reader, save the time of the reader, and library is a growing organism. But what is most important today, we need to empower our information professionals. Hamare jitne bhi information professionals, library information professionals hai, unko sahayata chahiye, kaise wo practically apne systems mein jaye aur wahan seekhe aur wahan par implement kare cheezon ko. Ye hame chahiye. Library has come up on a robotic process automation, like data migration. Completely a data based. It is a completely an automated base. Ye bahut technicality hai iske andar. Hum logo ko computer science ke saath milke kaam karna pad raha hai. Hum computer science ke expert nahi hai. Shelf management, forms processing, email marketing, ye sari cheeze iske andar gayi hai. Jaise smart libraries ki maine baat ki, isi tarah patrons will engage on the personal digital assistants. मैं ये जानना चाह रहा हूं, जैसे आप लोग फेसबुक या किसी भी चीज पे या अमेजॉन में कभी भी कोई किताब खरीदते हैं, मैं एक किताब को खरीदा तो मेरे नीचे जो है वो चार पांच और किताबों का रिकमेंडेशन दे देता है कि आप इन किताबों को भी ले सकते हैं. हाउ आई मीन साइकोलॉजी, हाउ दे रीड अवर साइकोलॉजी एंड गिव्स अस फ्रॉम अवर ओन रिक्वेस्ट दैट व्हाट आर द थिंग्स आई शुड टेक लेटर, और वो रिकमेंडेशंस ऑटोमेटिकली मेरा यूसेज को बढ़ाना के कोशिश करेगा. आई एम वर्किंग ऑन दिस विद माय टीम ऑन दिस. यूजर सर्विसेज लाइक चैट बॉक्स वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट वेरी सून ऑन दिस. एआई एप्लीकेशंस एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स. आई मीन लाइब्रेरी एनालिटिक्स में अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू लुक एट मेरा मिसिंग बुक कहां गया, अभी तो रैक में था कोई लेके चला गया, कहां गया है, हाउ डू आई ट्रैक दैट. There is a technology which has come up. We are working on towards that also. Like I am a user of a book. Mere ko ye kitab chahiye. I reserved that book from my own counter. Mere pas mere mobile pe maine usko wo kiya. And there is a library GPS system we are trying to implement. Phir accordingly, it will through that technology, it will take me to that rack and will tell me your book is here, so you can get it issued. It's a library GPS system. These kinds of technologies are available, but it is the right time to implement or not. But most of these technologies are international, but what we need is basically an indigenous technologies and all. We need to have an indigenous technologies. Same with information retrievals. I mean, I can keep on going on. These are all AI-based things. It takes a lot of time for me to describe. Data analytics has come up in a big way. For decision making process, collaboration and knowledge sharing. Aaj ke date mein main kahe silos mentality nahi chalta hai knowledge 4.0 mein. Ye mera hai. Main apne computer mein rakhunga, main share nahi karunga. Ye nahi chalega. I know how the corporate sector like Accenture and Ernst & Young and how they work. I have seen their work. Even their computers are also through their server. Their laptop is connected to the server. जो भी वो करेंगे वो सिस्टम पे काम करेंगे और वो सारा कुछ वहां पर कैप्चर होता जा रहा है ऑनलाइन में. सो नथिंग इज योर्स, इट इज ऑल कोलैबोरेटिव. एनीबडी कैन हैव अ लुक एट इट. आई हैव सीन देयर सिस्टम्स. एआई फॉर कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशंस. ऑटोमेटिकली क्लासिफिकेटेड सिस्टम्स हैव ऑलरेडी बीन, देयर आर सेवरल लीडिंग यूनिवर्सिटीज, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, दे हैव ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड सच काइंड ऑफ अ थिंग. वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू लुक एट इट ऑन दीज एरियाज. एआई फॉर प्रिडिक्टिव एनालिसिस. मेरा एक्स प्रोफेसर वो हमेशा इस तरह की किताबें, इस तरह के रिसोर्सेज मांगते हैं. वो आगे जाके भी इस तरह का मांगेंगे. हु डज दैट प्रेडिक्शन? सो देयर आर प्रेडिक्टिव मॉडलिंग हैज कम अप ऑन एआई बेस्ड. वो वो आगे क्या मांगेंगे उसकी एनालिसिस पे हम जा रहे हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड देयर आर टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट. सबसे बड़ा जो टेक्नोलॉजिकल वन कॉम्पोनेंट इज दैट देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट. क्या है कि हर कोई टेक्नोलॉजी नहीं जानता. That is the biggest thing. So for that, what is the solution? We have a solution like Read India. They can launch a what is called as a online skill based programs. You can earn a revenue from that too. But one of the important thing is technology obsolescence. 2 saal kaam kiya, 3 se 3 saal pata chala uska naya version aa gaya. So that's a very big problem. So technological constraints, and there is a privacy issues are also there, ethical issues are there. Jitna digital hota ja raha hai utna jyada aapki ethical issues mein questions raise ho raha hai, and digital rights management wagera pe bhi bahut jyada questions raise ho raha hai. Social media is a very big thing, all of you know, you are all there. So there was a, I just want to end here, there is a IFLOS statement on libraries and artificial intelligence. In fact, on just a few weeks, a day back when Geeta was also there, so we organized a open access where IFLA president was there, Vicky MacDonald. So what she thinks is that the adoption of the artificial intelligence, that is AI and machine learning, in private and public spheres is rapidly growing. The policy statement aims to outline the key consideration for the use of these technologies in the library sector, and suggest the roles which libraries should strive to take on in a society with a growing AI integration. AI integration is a very, very important thing. So thank you very much. Thanks for your patient listening.
7: Good morning everyone. My name is Sumiti and I am from Garima Grave, Read India. एंड मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मैंने अपनी इस रीड इंडिया की जॉब से मैं अपनी हायर स्टडीज कर रही हूँ. अभी मैं बीएससी कर रही हूँ और मेरे को आगे चल के बीटेक करना है, तो मैं उसमें एडमिशन लेना चाहती हूँ. और इस जॉब से मुझे बस फाइनेंशियली नहीं, और मतलब उसमें मेरे को सोशली और फैमिली में भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है कि मैं ये जॉब भी कर रही हूँ साथ में अपनी स्टडीज भी कर रही हूँ. थैंक यू टू एवरीवन.
3: I would like to call Dr. D.V. Singh, former Chief Librarian, Delhi University, for sharing his views.
8: पहले तो धन्यवाद. मेरा टॉपिक है जो मुझे बताया गया वो है ट्रांसफॉर्मेटिंग रोल ऑफ द लाइब्रेरीज. एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, वो कैसे होता है पता नहीं चलता, लेकिन जैसे हम कई बार कहते हैं कि पानी में आग है, कई लोग एग्री नहीं करते, लेकिन है. पानी को हमने रोका, हमने टरबाइन में डाला, इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट की, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, हीटर में लगाया, आग पैदा हो गई. कहां थी? पानी में. लेकिन हमने उस चैनल को क्रिएट किया, तो लाइब्रेरी भी ये काम करती है. जिन्होंने एटम बम बनाया था, दो लोग थे, एक आर्मी के जनरल थे. वैसे तो लोग कहते हैं कि अभी तक नहीं पता एग्जैक्ट कौन जिम्मेदार, बट उन दो लोगों को माना जाता है, ओपेनहाइमर और वो दोनों ने कहीं लिखा है, मैंने किसी जर्नल में पढ़ा कि ये गलती हो गई, बट गलती लाइब्रेरी में बैठ के हो गई. क्यों? क्योंकि वो सब कुछ वहीं देखते थे, वहीं से लाते थे, स्टडी करते थे, सोचते थे. और जब वो ड्रॉप किया, वो भी कहा जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टोरी में कि वर्ल्ड वार एटम बम से नहीं जीता गया, लाइब्रेरी से जीता गया. कि लाइब्रेरी में तय किया गया कि जापान के किस शहर में कितने बजे, क्योंकि डाटा वही था, उसका बम गिरा जाए. कहने का मतलब है यूज एंड मिसयूज. अब बहुत सी बातें, लाइब्रेरी तो बहुत कुछ करती है. पता नहीं आप लोग कितने जानते हैं, श्वेत लाना का नाम सुना होगा, जो बहुत बड़े डिक्टेटर, वर्स्ट डिक्टेटर ऑफ दी नोन हिस्ट्री, उसका नाम स्टालिन था. उसकी एक लड़की थी, वो इंडिया गई, यहां ब्रजेश सिंह से शादी की, वहां नहीं मानी. बड़े उस डिटेल में मैं नहीं जाता. उसे पूछा, आप उसने स्ट्रेसफुल लाइफ में जहां आपके पिताजी किसी पे विश्वास नहीं करते थे, आप एक शब्द विपरीत नहीं बोल सकते, आप सर्वाइव कैसे किए? बोले एक ही रास्ता था, लाइब्रेरी। वो कैसे कि बस मैं जाते थे लाइब्रेरी में, किताब पढ़ती थी, कुछ लिखते थे और बस वहीं से मुझे स्ट्रेस मेरा निकल जाता था, अब मैं सर्वाइव किया। इसका मतलब तो तय होगा कि लाइब्रेरी स्ट्रेस को खत्म करती है, तो फिर इकोनॉमिक स्ट्रेस को भी खत्म करती है। और आजकल तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेस है। शाम को देखो यहां चौराहे पे क्या हाल होता है, मेरी समझ में आता है आदमी दौड़ रहे हैं कि कीड़े मकोड़े दौड़ रहे हैं, ये कहां जाएंगे क्या होगा। मेरे गांव का आदमी आया बोला दिल्ली तो खाली हो जाएगी मां, क्योंकि इतने लोग दौड़ रहे हैं निकलने के लिए, तो कहां जाएगी ये दिल्ली। लेकिन कहीं कोई नहीं जाता, वहीं दिल्ली में है और यूं ही दौड़ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, बस एक ही बात कहूंगा, रंगानाथन जी ने 67 में वो लेक्चर कोई दिया था, वो मेरे पास रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा था कि ऑटोमेशन बहुत जरूरी है, लेकिन किस काम का, जो रिपीटेटिव नेचर की जॉब हो, बाकी ह्यूमन टच अगर चला गया तो लाइब्रेरी की भी इंतजार मत कीजिए, वो भी चली जाएगी, प्रोफेशन भी चला जाएगा और हमने सरेंडर कर भी दिया इसी चक्कर में। रिपीटेटिव जॉब क्या है, क्लासिफिकेशन, वो आप नहीं कर सकते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कभी टच कर पाएगी, वो अलग बात है। कैटलॉगिंग कर सकते हैं, आपको इश्यू रिटर्न करना है कर सकते हैं, लेकिन जो आपको इंफॉर्मेशन सर्विसेज देनी है वो आपको केवल ह्यूमन टच के द्वारा देनी है, क्योंकि वो क्वालिटेटिव इन नेचर है, वो क्वांटिटेटिव इन नेचर नहीं। एंड विच इज इन क्वालिटेटिव नेचर, इट रिक्वायर्स द ह्यूमन टच ऑल द टाइम। कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मां भी पैदा कर देगी, लेकिन मां ने, मेरी मां ने जो मुझे छाती से लगा करके थपकी दी है और उससे जो मेरे अंदर इमोशंस डेवलप हुई है, वो मशीन उनको खत्म कर देगी और आदमी मशीन बन के रह जाएगा, उस तरफ मत जाए। डिटेल में पढ़ना है तो 21st लेसन फॉर 21st सेंचुरी नो हारी की किताब है, प्लीज डू रीड दैट बुक। हिस्टोरियन है, इसराइल के हैं, और टाइम गड़बड़ ना हो जाए तो टाइम बता दीजिए, कि ऑर्गेनाइजर की सबसे बड़ी समस्या समय होती है और बोलने वाले की सबसे बड़ी समस्या भी समय की, उसे पता ही नहीं होता मैंने कितना खा लिया, उन्हें समझ नहीं आता कि कब चुप होगा, तो वो स्थिति ना पैदा हो। तो वो जो बात है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ओके फाइन, लेकिन एक सीमा से परे नहीं। ह्यूमन इज ह्यूमन, यू कैन नॉट ट्रीट ए ह्यूमन थ्रू द मशीन, मशीन कैन नॉट रिप्लेस द ह्यूमन। डिटेल मैं नहीं जाऊंगा, बहुत जा सकते हैं, किताब बता दी और रेफरेंस लीजिए, उसको पढ़िए। अब लाइब्रेरी कैसे ट्रांसफॉर्म करती है, वो घटना मैं बार बार सुनाता हूं, फिर भी सुनाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे जीवन में उसका बहुत बड़ा योगदान है। गांधी जी की सेंटिनरी मनी थी 1969 में, तो हम अपने गांव में पढ़ते थे, शायद थर्ड फोर्थ में थे, और मेरे गांव में एक थोड़ी दूर पे मुल्ला जी कुछ कुरान शरीफ पढ़ाते थे, और वो आपने कभी देखना मदरसे में जाके कुरान शरीफ पढ़ने वाले को यूं यूं यूं यूं गर्दन करके वो लगे रहते हैं, रुकते नहीं, बस यूं यूं यूं यूं, जो भी कुछ उनका है उस पर मुझे कुछ आता भी नहीं तो मैं कमेंट भी नहीं करूंगा। तो मैं सोचा यार ये सिर हिला हिला के इतनी बड़ी कुरान शरीफ याद कर लेते हैं, ये थोड़ी सी तो चीजें हैं जो मुझे एग्जाम में देनी है, मैं कैसे सीख लूंगा, क्योंकि इससे जल्दी सीखा जाता है। बच्चा था, एनालिटिकल एबिलिटी नहीं थी, क्योंकि वेद में तीन बात कही है, उसको बताते हुए आगे बढ़ूंगा। स्वर्ण मनन निधि ध्यास, सुनना, कभी आप किताब पढ़ते हैं तो आंख से सुनते हैं, तब कान से नहीं सुनते, आंख से सुनते हैं उस लेखक को, या आप मुझे सुन रहे हैं कान से सुन रहे हैं आप, तो मुझे सुनना है, उसके बाद विचार होना चाहिए, उसका मनन होना चाहिए, उस पर चिंतन होना चाहिए, अन्य निधि ध्यास।

ने वो बंद कर दिया, तो किसका प्रभाव था? लाइब्रेरी की किताब का। और मैं देख रहा हूं ऐसे बहुत से लोगों जो बहुत गर्दन हिला के कुछ याद करते हैं, उनकी बुद्धि ठीक नहीं हो पा रही दुनिया में। बहुत कोशिश हो रही है सारी दुनिया में, किसी का नाम तो मैं क्या लूं। तो लाइब्रेरी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। और एक चीज मैं क्या बताऊं आपको, ये हिंदुस्तान है, यहां उन चीजों पे बहुत खर्च कर देती है सरकार जिनका कोई मतलब नहीं होता, और जिनका मतलब होता है उन पे विचार नहीं करते, तो जानते नहीं या वो करना नहीं चाहते। वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने इनिशिएट किया कि इंडिया का यूथ लीडरशिप सर्वे होना चाहिए, अप्रूव हुआ। होते आते 2009 में जाकर के ये काम एनसीआर को, नेशनल काउंसिल इकोनॉमिक रिसर्च जो है आईटीयू पे, उसको दिया गया, और एनबीटी के कोलोबोरेशन में वो सर्वे हुआ, उसकी रिपोर्ट 11 में आई। बहुत फैंटास्टिक रिपोर्ट है। अमेरिका में तो अल्टरनेटिव ईयर पर यूथ लीडरशिप सर्वे होता है, यहां तो एक ही बार हुआ। उसमें यही जो बात पहले कही गई, किसने कही थी कि जहां रीडिंग बढ़ी वहां पर क्राइम घटा, उसने यही बात कही कि जो जो एरिया डिस्टर्ब थे वहां रीडिंग जीरो थी, जिन एरिया में रीडिंग अच्छी थी वो एरिया कम डिस्टर्ब थे, और जहां पहले से रीडिंग हैबिट्स अच्छी थी वहां डिस्टर्बेंसेस कम हुए और सोशल लॉस कम हुआ। ये हमारी इंडिया की रिपोर्ट है, एनबीटी से मिल जाएगी, नेट पे भी पड़ी हुई है, इस पे काम होना चाहिए। सैंपल ही सही, इंडिया बहुत बड़ा है, हम किसी डिस्टर्ब एरिया में थोड़ा सा एक सैंपल कर सकते हैं। कई बार हमारे पास रिसर्च की थीसिस भी आ जाती है तो पता नहीं क्या क्या लिखा होता, तो हम कहते यार ये क्यों नहीं करते, लीडरशिप सर्वे क्यों नहीं दे देते, इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर ऑफ द मूच वाला, इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमिक्स, पता नहीं क्या क्या क्या क्या एक ही चीज रिपीट होती रहती है। मैं ओल्ड वाइन इन न्यू बोटल में क्यों रखते हो, लेट हैव द न्यू वाइन इन न्यू बोटल, अर्थात कुछ नए एरिया लेने चाहिए। जो हम बात करते हैं कि भाई हम बहुत ज्यादा ऑटोमेशन की, मैं इसके फेवर में नहीं हूं, अगेंस्ट तो नहीं हूं, बट इसके फेवर में नहीं हूं। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में एक चीज समझ लीजिए, उसकी एक सोशल कॉस्ट होती है। व्हाट इज दैट? ये जो आज चैन छीन रही है ना, आप 3 मिलियन महिला का पर्स छीन लिया क्योंकि उसके पास जेब होती नहीं, उसके कपड़े कुछ इस तरह के हैं तो सब उसी में होता है, छीन के भाग गए। और जब वो पकड़े जाते हैं अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयड है। अब उस क्राइम को रोकने के लिए आपने पुलिस बढ़ानी पड़ती है, उस पुलिस के लिए आपको थाने बढ़ाने पड़ते हैं, कॉस्ट तो पे करनी पड़ती है। जैसे एक जोक भी है और सच्चाई भी है, मेरे एक मित्र थे हरिद्वार में, मैं पढ़ता था, बहुत विद्वान आदमी थे, सारे शास्त्र उनको, सच में मैं उनकी धूल हो जाऊं तो भी जीवन सार्थक समझूं। एक लंगोटी खाली पहनते थे, पेड़ के नीचे सोते थे सर्दी में, अदरवाइज खुले में। एक टाइम किसी के घर जाके मिल गया, जो मिल गया वो उसने खा लिया, वो कोई संपत्ति नहीं थी। वो अमृतसर गए और उन्होंने कहा मैं माथा टेकूंगा गुरुद्वारे में और गुरु महाराज के यहां। जब वो गुरुद्वारे में गेट पे गए तो उन्होंने कहा भाई सिर पे कपड़ा रखो, उसने कहा कसम खाई है एक ही कपड़ा रहेगा, चाहे इसको यहां बंधवा लो चाहे इसको यहां बंधवा लो। गुरुद्वारे से रोक नहीं सकते, जाऊंगा मेरे भी गुरु हैं, चलो अलग विषय। तो कहने का मतलब है, तो जस्ट हंसने के लिए थी कि एक ही रास्ता है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके सोशल कॉस्ट पे कर लो, चाहे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके सोशल कॉस्ट लेस कर लो, ये आपका डिसीजन है। इसलिए लाइब्रेरी में कंप्यूटराइजेशन की उतनी सीमा रखो जितना जरूरी है। किसी की आंख बंद कर करके पूंछ पकड़ करके नदी पार नहीं होती, नदी तैरने से पार होती है। आगे एक चीज मुझे आज बहुत अच्छी लगी, एक दो चीज मैं लेके जाऊंगा, एक दो उतनी जरूरत नहीं है जितना उनके लेने की जरूरत है, क्योंकि मैं वो चीज यहां खरीदूंगा तो कहीं दूर में बैठा हुआ एक व्यक्ति जिस जो हैव नोट्स की कैटेगरी में आता, उसे कुछ रोजगार मिलेगा, उसको साहस मिलेगा, उसको उत्साह मिलेगा। मैं मंदिर मंदिर में दान नहीं देता, मैं रस्ते में भिखारी को तो बिल्कुल भी नहीं देता हूं, और अगर किसी को रेफरेंस मिल जाए मैं रेफरेंस देता हूं। आर्टिकल सब पढ़ना, 1980 में लिस्टेड वीकली एक मैगजीन आती थी, उसमें एक आर्टिकल आया था जेआरडी टाटा और पीएन अक्षर का। पीएन अक्षर बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इफ यू गिव टू वन बैगर यू क्रिएट 10 मोर, आफ्टर रीडिंग दैट आई हैव स्टॉप्ड इट। हर चौराहे पर 10 खड़े किसको किसको दीजिए, तो वो

0: गलत है। तो मैं कहता हूं डोंट गिव ए ब्रेड टू ए पर्सन, गिव देम द आर्ट टू अर्न योर ब्रेड एवरी डे। रीड इंडिया उस काम को कर रही है। एक दिन रोटी खिला दी, कब तक? लेकिन स्किल दे दी, वो स्किल से रोज आपकी रोटी खाएगा। एक भंडारा करते हैं, मुंह चेहरते आपने 100 लोगों को खाना खिला, बड़ा काम किया, और जब खिला कर चले गए, वहां कुत्तल पड़ी, यहाँ ग्लास पड़ा, यहाँ कुत्ते चाट रहे हैं, यहाँ मक्खी घूम रही है, हमने पुण्य का काम कर लिया। पुण्य का काम होता है जो दूसरे को कभी भी कष्ट ना दे। वो पुण्य का काम नहीं हो सकता किसी को कष्ट दे के आप कोई कार्य करें। तो एनवायरमेंट इतना सा भी ध्यान दे ले तो काम चले। मैं कई बार देखता हूँ अच्छी खासी गाड़ी है, मर्सिडीज है, हमारी गाड़ी की टोटल को उसके बराबर इंश्योरेंस देते होंगे, शीशा खोते भाई खाते ही क्यों, तुमने तो थूक दिया। तो खैर बहुत सी चीजें हैं, तो एंडलेस बातें हैं। तो रीड इंडिया एक बहुत अच्छा काम कर रही है जो सब काम हो रहा है, और लाइब्रेरी को डाइवर्सिफाई करना होगा। उसका उदाहरण है, वो एसेंचर के लोग शायद चले गए, डाइवर्सिफिकेशन का क्या लाभ होगा लाइब्रेरी को, एक छोटा सा उदाहरण। आर्थर एंडरसन का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ी कंपनी थी, दुनिया की टॉप 4 ऑडिट कंपनी थी। लेमन ब्रदर्स को गलत सलत रिपोर्ट दी, लेमन ब्रदर बैठ गए अमेरिका में 2008 में, इकोनॉमी बैठ गई, रोना धोना मच गया, आर्थर एंडरसन भी मर गई। लेकिन एसेंचर भी उन्हीं की कंपनी थी, अलग थी, और उसने ठीक से काम किया, एसेंचर सर्वाइव की। क्यों? क्योंकि आर्थर एंडरसन ने डाइवर्सिफाई, एक पार्ट मर गया, दूसरा फिर भी जिंदा है। अगर लाइब्रेरी डाइवर्सिफाई करेंगी, लाइब्रेरी का डाइवर्सिफिकेशन ये है जो रीड इंडिया कर रहा है। खाली किताब पढ़ा के कुछ नहीं। बहुत सारी बातें हुई हैं, एक बहुत बड़ा आदमी है, मैम टाइम, ओके, नाउ आई क्लोज इट, जस्ट लास्ट है, शुड आई कंटिन्यू और क्लोज? ओके, एलन ग्रांट नाम का एक बहुत बड़ा आदमी है, वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है। उसने कहा ये बिगड़ क्यों गया, व्हाट इज वर्क, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज बैलेंस। उसने अल्टीमेटली ही केम बैक टू इंडिया। एक छोटा सा उदाहरण सुनाऊंगा, उसी बात को उसने दूसरे तरीके से कहा। आपने कभी देखा बिच्छू किसी को काट ले तो वो क्या होता है, उसका उछलता है, लहर सी चलती, मुझे एक बार काटा हुआ है, बहुत परेशानी होती है, कई बार जीवन भी चला जाता। बंदर देखे हैं आपने कभी? बंदर को देखा होगा, यहां बैठा, एक सेकंड रुकता नहीं कहीं भी, देखा है ना? अगर उसको बिच्छू काट ले तो क्या होगा? तो हमारा जो मन है बंदर है, इस पे एक्स्ट्रा एम्बिशन का बिच्छू काट गया, इसलिए उछलते फिरते हैं, इसलिए टेंशन है। इस बिच्छू को अनावश्यक हमको काटने, मैं मानता हूं एम्बिशन के बिना जीवन कैसे होगा, और कल्पना के बिना एम्बिशन पूरी कैसे होंगी। लेकिन यशपाल एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं, उनकी किताब दिव्या है, वो महिला एसेंटिक उपन्यास है, बहुत सुंदर उपन्यास है, सोशल इश्यू को। उसने कहा कल्पना की उड़ान के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन कल्पना के दौर में जमीन से पैर नहीं उठने चाहिए। हम तो पैर ही उठाए फिर रहे जमीन से, जब नशा टूटेगा तो क्या होगा मुझे नहीं पता। और फिर लोग कहते हैं कि वो तो 10 मंजिल से गिरा था इसलिए मर गया, मैं तो 7 मंजिल से कूदूंगा बच जाऊंगा, कि 3 मंजिल कम हूं, चाहे 10 से कूद लो चाहे 7 से कूद लो, मरना तो पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ओवर एम्बिशन का, और यही वर्क लाइफ बैलेंस को खराब करता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी लाइब्रेरी में रहे, बहुत किताब पढ़ी है, बहुत किताबों से डील किया है, अब बोलने को तो कितना भी बोल सकते हैं, बट समाप्त भी करना होता है। अब हो क्या गया है जो रीड इंडिया कर भी रही और करना भी चाहिए। हम अभी तक हिंदुस्तान की लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज सेक्टर में थी। गांधी ने बहुत विरोध किया था कि हर चीज को ऑर्गेनाइज सेक्टर में मत ले जाना, नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, सोशल कॉस्ट होगी, सोशल हार्मोनी खराब होगी। अब जूते हमारे गांव में लेते थे हम लोग, गांव के आदमी आज भी गांव जाते हैं, एंजॉय करते हैं अपने गांव को, वहीं की वजह से यहां खड़े हैं। अगर वहां नहीं होते तो यहां भी नहीं होते, यहां होते तो नकली होते, क्योंकि यहां पड़ोसी का पड़ोसी से लेना देना नहीं। मेरे गांव में तो मैं किसी कोने में खड़ा होकर पेशाब कर दो, उस कोने में चर्चा होगी उनका लड़का पढ़ा लिखा होकर भी खड़ा होकर पेशाब करता है, मैं उस समाज से आया हूं और उसी में जाना पसंद करूंगा, जहां हर किसी को एक दूसरे का कंसर्न है, यहां तो कहते सन्मुखी, पंजाबी में एक सब बड़ा यूज होता है दिल्ली में, सन्मुखी हमें क्या है, कोई मर गया तो मर गया। गांव में ऐसा नहीं है, आज भी कोई मरगा पूरा गांव जब तक उसकी अंत्येष्टि नहीं होती भोजन नहीं करता, जब उसकी तेरवी होती है चाहे दुश्मन हो आके खड़ा होता है, अभी भी बचा हुआ है वो हारमोनी बची हुई है, क्योंकि अभी सारा गांव ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आया है। हम जूती गांव में लेते थे, गांव में जूती बनती थी, हमारे गांव के पशु मरते थे उसी चमड़े से होती थी, उसका रोजगार था, हमारे पास एक साधन था, वो बाटा पे चला गया, एडिडास पे चला गया एटसेट्रा, और वो बाटा एडिडास का 10,000 का जूता पहन के अगर मैं अपने खेत में निकल जाऊं तो वो शाम को खराब हो जाएगा, लेकिन आज भी वो जूती पहन के मेरे गांव के किसान लोग खेत में घूमते हैं, जब वो सख्त हो जाती है थोड़ा सरसों का तेल डाल के रख देते हैं फिर पहनते। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बचाना पड़ेगा और लाइब्रेरी को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लाना पड़ेगा। हमने क्या किया, ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये कॉलेज की लाइब्रेरी है, ये यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, कहीं कहीं ये पब्लिक लाइब्रेरी है, गवर्नमेंट के एक बाबूजी के कब्जे में, ये जो भी आई है तो मैंने बाबूजी कहता हूँ, ये बड़े बाबू छोटे बाबू के कब्जे में है, उसने एक रूल बना दिया, उसके बाहर चलोगे आप सस्पेंड हो जाओगे। इसका रिजल्ट क्या निकला कि लाइब्रेरी रही ना लाइब्रेरी पढ़ने वाले रही। अब ये प्रयास हो रहा है रीड का, ये इसको मैं टेक्निकल लैंग्वेज में कह रहा हूं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑर्गेनाइज सेक्टर को ले जाया जा रहा है, हर गांव में ले जाएंगे, वहां केवल किताब नहीं होगी, वहां की लोकल स्किल पे ध्यान देंगे, किसी को कुछ ट्रेनिंग देंगे, किसी को कुछ देंगे, यानी एक होलिस्टिक सोसाइटी का डेवलपमेंट करेंगे, जिसके बारे में योगीराज अरविंदो ने कहा था इंटेग्रल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी इज द ओनली डेवलपमेंट विच यू कैन सस्टेन दिस सोसाइटी। व्हाट इज दैट, ये मेरा हाथ बहुत मोटा हो जाए, एक बीमारी होती है एलिफेंटाइस, पैर बहुत मोटा हो जाता है, बाकी तो बुरा लगता है आदमी, लेकिन प्रोपोर्शनेटली पैर मोटे हो प्रोपोर्शनेटली वो आदमी कितना सुंदर कि क्या यार फिटनेस है कि वो उसका इंटेग्रल डेवलपमेंट है। वो इंटेग्रल डेवलपमेंट में केवल फिजिकल डेवलपमेंट नहीं, आपका मेंटल सोशल भी है इमोशनल भी है, वो इंटेग्रल डेवलपमेंट इसी तरह से होगा जब लाइब्रेरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएगी कि तभी वो ट्रांसफॉर्मेट करेगी। आज भी जगता जी ने बड़ा सही कहा, हैव नोट्स और जिन पे बहुत है, जिन पे नहीं, अंग्रेजी अंग्रेजी आती नहीं है, थोड़ी सी आती है, काम चलाओ, तो जिन पे नहीं है और जिन पे बहुत है दोनों की एक ही समस्या है, एक भूखे मारे शुगर का मरीज है, एक बहुत ज्यादा के मारे भूख शुगर का मरीज है। क्यों, तो हमें इसको हैव एंड हैव नोट्स, जिनके पास नॉलेज नहीं है उनका शोषण हो रहा है, जिनके पास नॉलेज है उनका भी शोषण हो रहा है। जैसे एक उपनिषद है हमारे यहां ईशो उपनिषद, तदे जति तन्ने जति तद, नहीं भूल गया गलत होगा, अभी अभी एक सेकेंड, हाँ अब ध्यान आएगा, वो लोग जो केवल विद्या की उपासना करते हैं दंडम तम प्रविशन्ति, वो अंधकार में जा रहे हैं। बोले क्यों, कि उसका अभ्यास नहीं करते, राय बहादुर है अभी बुला लीजिए आप, जो अंधम तम प्रशांति ये विद्यान उपासते, अब ठीक से याद है, वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो विद्या की उपासना करते हैं अगली लाइन का। क्यों, क्योंकि उस पर व्यवहार नहीं करते, तो वो विद्या वो जो नॉलेज है जिस पर हम व्यवहार नहीं करते वो अंधकार में ले जाती है, लास्ट में कह के खत्म करूंगा और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लाइब्रेरी ले जाए बिना इस देश का कल्याण नहीं हो सकता, हैव नोट्स का कल्याण नहीं हो सकता। यहाँ अनिता बहन जी हमारी जो आदिवासी ड्रेस में है, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ इस बात के लिए, नहीं कि वहां बहुत काम करते हैं, इसके लिए करता हूँ, अपनी संस्कृति में अथाह विश्वास रखती है और हमने वो छोड़ रखा है, हम पैंट पहन के खड़े हैं और वो अपनी आदिवासी ड्रेस पहन के खड़ी, उनसे कुछ सीखो और लर्न, मैं उनका सम्मान करता हूँ इस बात के लिए। आदमी को अपने में विश्वास रखना चाहिए, मेरे सिर पर चोटी है, एक दिन एक सरदार जी मेरे मित्र है, ये क्या है, मैं गुरु गोविंद सिंह जी ने दी थी, मैं क्या करूं। बोले वो कैसे, मगर वो इन मुगलों से ना लड़ते तो मेरा नाम अब्राहिम मोहम्मद होता तो चोटी कहां होती, तो गुरु सिंह गुरु जी की देन है, मैं सब फेंका सकता हूं, सच में उनकी देन है। तो कहने का मतलब है अपनी संस्कृति में विश्वास रखिए, अपने काम में विश्वास रखिए, अपने समाज में विश्वास रखिए, तो फिर राष्ट्र के सबसे बड़े एसेट आप हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत करी जा सकती है, लेकिन एक बस लास्ट छोटी सी बात है। 88 में मेरे एक दोस्त थे केरल के, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ होगी, उन्होंने मुझे एर्नाकुलम में बुलाया, कोचिन हमने कहा यार यहाँ आदि शंकराचार्य जी एक वहां से 60 किलोमीटर पर अलो एक जगह है, उससे थोड़ी दूर जाएंगे कोई 8-7 किलोमीटर कालडी गांव है जहाँ आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। मैं यार थोड़ा ट्रैकिंग करते हैं, गांव वाँव भी देख लेंगे और वहां जाएंगे, उधर से गाड़ी। बोले ठीक है चलो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहानी नहीं है, सच्चाई है। तो जगह जगह लोग बीड़ी बना रहे थे और ग्रुप में बैठे हुए थे। अब पता नहीं वो अभी भी है कि नहीं वो चीज। एक आदमी किताब पढ़ रहा था, 10 जगह ऐसा हुआ। मैंने पूछा ये क्या? बोले यहाँ ऐसे ही होता है, एक आदमी किताब पढ़ता है बाकी बीड़ी बनाते हैं। इसका क्या होता कि जितना वेज उन सबको मिलता है इतना ही वेज इसको ये अपने में से देते हैं। तो क्या हो रहा था? लर्निंग अर्निंग, किसके थ्रू? बुक्स के थ्रू। एक आदमी, चलिए तुम किताब पढ़ो, ये कहानी पढ़ो, वो कहानी पढ़ो, सब सुन रहे हैं। जगह जगह मैंने उस चीज को देखा। मैं ये कहां से पैदा हुई? बोले तो मुझे भी नहीं पता, पहली बार देख रहा हूं, क्योंकि ट्रैकिंग कभी नहीं की। हम क्या हुआ कि आज में बैठे दिल्ली से बंबई चले गए, हिंदुस्तान देख ले, लेकिन पता कुछ नहीं। तो रेलवे पता चलता नहीं हिंदुस्तान का, तो हम हवाई जहाजों में उड़ करके अर्थात ये देखा वो देखा, यहां से वहां गए, बढ़िया सी अंग्रेजी अंग्रेजी बोली, पीपीटी बनाई और हमने कहा हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं होता, जुड़ना पड़ता है। और थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात सुनी। टाइम दिया इसके लिए इंडिया का, धन्यवाद। बहुत सारी मैं एक बात हमेशा कहता हूं, दो बात लास्ट में, बहुत छोटी सी है, ज्यादा टाइम नहीं उसमें। गीता का एक 18वें श्लोक 18वें अध्याय का 63वां श्लोक, उसमें कहा गया, हिंदी में मैं बता देता हूं, कि जो मेरे पास अर्जुन गहरे से गहरी जानकारी थी, गंभीरतम ज्ञान में रखता, तो आपको दे दिया। और दूसरी लाइन में गुह्यतम ही थी गुहा में, आप जो मेरे पे गहरे से गहरा गूढ़ से गूढ़ ध्यान ज्ञान ज्ञान था वो तुम्हें दे दिया, जो मेरे पे था। उसने कहा, और की बात नहीं करता मैं। और दूसरी लाइन में कहा विमर्श, इस हिंदी में इस पे आप क्रिटिकली विमर्श एतद विशेषण यथेसिज तथा करू, इस पे विशेष प्रकार से विचार करना। सुन लिया, विचार करना तो आचरण, यथेसिज तथा करू, विचार करके जो तुम्हें अच्छा लगे वो करना। तो जो मेरे पास अच्छे से अच्छी जानकारी अकॉर्डिंग टू मी वो आपको दे दे, इस पे आलोचना पूर्वक विचार करना, और जो अच्छा लगे उस पर आचरण करना, नहीं लगे छोड़ देना। अगली लाइन बसीर बद्र की, इन सब लोगों ने ज्ञान के दीपक जलाए, अभी भी और जलेंगे। इन चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिराग समझते हैं ना दीपक, इन चिरागों को आंखों में महफूज रखना, दूर तक अंधेरी रात ही रात होगी। जिंदगी में अंधेरे बहुत आते हैं, मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर मैं भी हूं, ना जाने फिर किस मोड़ पर मुलाकात होगी। थैंक यू।
1: मेरा नाम दिव्यांश वर्मा, 8वीं का छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के सामने गुरु के ऊपर 4 लाइनें बोलना चाहता हूँ। अक्सर अक्सर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी डांट से कभी प्यार से जीवन जीना हमें सिखाते।
2: नमस्कार, सलोना गुरु प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सबला। मैं हूं आरती।
3: प्रीति की ओर से भी सभी सुनने वाले श्रोताओं को ढेर सारा नमस्कार।
2: हाँ प्रीति, तो आज हम श्रोताओं को किस विषय पर बातें करेंगे?
3: हाँ आरती, हम अपने श्रोताओं को आज देव सूर्य मंदिर के बारे में बताएंगे और चर्चा करेंगे।
2: तो अब हम श्रोताओं को ले चलते हैं देव सूर्य मंदिर की ओर।
4: हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं देव सूर्य मंदिर की ओर, जो कि बिहार के औरंगाबाद जिले से 18 किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर देव में स्थित है।
2: बाबा मंदिर के बारे में अभी विशेषता बताइए ना।
5: मेरा नाम सच्चिदानंद पाठक है। मैं देव सूर्य मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ। यह सूर्य मंदिर जो बना हुआ है, यह त्रेता युग का बना हुआ मंदिर है। इस मंदिर में कोई चूना सीमेंट वगैरह का प्रयोग नहीं है, केवल पत्थर पर पत्थर रखा हुआ है। यह मंदिर, भगवान जो वहाँ बैठे हुए हैं, अलग अलग ब्रह्मा महेश और विष्णु की यह प्रतिमा है। भविष्य पुराण से 12 नाम आदित्य का भगवान का लिया हुआ है। आदित्य है प्रथमो नाम द्वितीयम तु दिवाकर तृतीयम भास्करम प्रोक्तम चतुर्थम तु प्रभाकर पंचमम तु सहस्रांशु अष्टम चैव त्रिलोचनम सप्तम हरिदशस्वश्च अष्टम च विभावसो नवमम दिन कृत प्रोक्तम दशम द्वादशात्मक एकादशम त्रिमूर्ति द्वादशम सूर्य बचा। बारहवा नाम सूर्य है जो हम नित्य प्रति दर्शन करते हैं। यहाँ एकादश सूर्य की प्रतिमा विराजमान है। उदय काले ब्रह्मणे रूपं उदय काल में ब्रह्मा के रूप में रहते हैं भगवान। मध्याने तु महेश्वर और मध्यान्ह काल में महेश्वर के रूप में रहते हैं। अष्टमाने स्वयं विष्णु अष्ट काल में विष्णु के रूप में रहते हैं। त्रिमूर्तिश्च दिवाकर तीनों मूर्ति दिवाकर हैं। यह भगवान सूर्य नारायण की विशेषता में विशेष तो नहीं लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यह भगवान सूर्य नारायण प्रत्यक्ष के देवता हैं। सारे जीवों की ऊर्जा इन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है। ये जब छुप जाते हैं तो अंधेला हो जाता है, पूरा विश्व अंधेला रहता है। जहाँ उगते हैं वहाँ दिन होता है, जहाँ नहीं उगते हैं वहाँ रात होता है। ये जलचर थरचर नभचर ये तीनों लोक में जितने भी जीव हैं सारे जीवों की ऊर्जा इन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है। ग्रहों के राजा हैं सूर्य, प्रत्यक्ष के देवता हैं सूर्य। ये जितने भी तारे चंद्रमा तक चमकते हैं सब इन्हीं के प्रकाश से प्रकाशवान हैं, समझे कि नहीं। ये शरीर के मालिक हैं, समझे। इनके यहाँ आते हैं लोग, दंडवत वगैरह देते हैं, उससे उनका शरीर आरोग्य होता है। जो राजा इस मंदिर को बनवाए वे राजा कुष्ठ से ग्रसित थे। ये राजा अहिल थे, उस बाहर लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है सुन्न व्योम नभोर सिंधु कर भू इन द्वितीय जुगे बाघे बाने यमौ तिथौ तिथे गुरु दिने देवे दिनेशालाम प्रारभे दृष्टान रचित सभ्यादी तस्नराधिप प्रभुते आलोको विशुको भूवि। कहता है कि माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को गुरुवार के दिन देव नामक स्थान में इला के पुत्र अहिल ने त्रेता में 12,16,000 वर्ष बीत जाने के बाद में इस सूर्य मंदिर का शिलान्यास किया। जबकि 12,96,000 वर्ष का त्रेता व्यतीत तो हो गया, मतलब 80,000 वर्ष त्रेता में बचा हुआ था तब इस सूर्य मंदिर का शिलान्यास हुआ। द्वापर 8,64,000 वर्ष व्यतीत हो गया। वर्तमान कलियुग 5,910 वर्ष व्यतीत हो गए। ये कुल मिलाकर के 9.5 लाख वर्ष तक इस मंदिर को बने। इसका लगभग 110 फीट ऊंचाई है पूरे। लंबाई चौड़ाई तो हमको ज्ञान नहीं है। यह करीब करीब 1 एकड़ में यह पूरे मंदिर है। हाँ हाँ, मंदिर तो सार्वजनिक है, सभी लोग यहाँ आते हैं, दर्शन पूजा पाठ करते हैं, सभी की कामना पूर्ण होती है। जो सच्चे हृदय से भगवान सूर्य नारायण को आवाहन पूजा करता है उसकी कामना को पूर्ण करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता, नहीं जाता है। जो राजा अहिल इस मंदिर को बनवाए वे कुष्ठ से ग्रसित थे। वो राजा अहिल कौन थे? तो हर युग में एक मनमंत्र होते हैं, जैसे ये कलयुग में वैवस्व नाम के मनमंत्र हैं, उसी प्रकार से ये त्रेता में मनु नाम के मनमंत्र थे। तो वो मनु की लड़की थी इला और चंद्रमा के लड़का बुध, ये दोनों के संयोग से जो पुत्र पैदा हुए वही राजा अहिल हुए। और जो कि कुष्ठ से ग्रसित थे, कुष्ठ उनका यही निवारण हुआ, उन्हीं के द्वारा जो है सो यह मंदिर का निर्माण किया गया, भगवान सूर्य का स्थापना किया गया।
6: देखिए श्लोक का अर्थ है, ये श्लोक जो शिलापट लिखा हुआ है, इस श्लोक का अर्थ है माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को गुरुवार के दिन देव नामक स्थान में इला के पुत्र एल ने त्रेता में 12,16,000 वर्ष बीत जाने के बाद इस सूर्य मंदिर का शिलान्यास कराया गया। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का होता है। इसमें से 12,16,000 वर्ष घटा देने पर 80,000 वर्ष त्रेता बचा, तब देव सूर्य मंदिर का शिलान्यास कराया गया। द्वापर 96,400 वर्ष का होता है। वर्तमान कलयुग के 50,078 वर्ष बीत चुके। इस प्रकार माघ बसंत पंचमी संवत 2029 को देव मंदिर को बने हुए 80,000 प्लस 96,864,000 वर्ष प्लस 50,078 वर्ष कुल मिलाकर 96,009,000 9,46,078 वर्ष हो गए। कुल मिला के 9.5 लाख वर्ष इस मंदिर को बने हुए हो गए आज तक। देव सूर्य मंदिर के दाहिने तरफ से प्रांगण में परिक्रमा करने के वक्त दुर्गा जी का प्रतिमा स्थापित किया गया है। यहाँ पर जितने श्रद्धालु नारियल अंदर में सूर्य नारायण भगवान को चढ़ाते हैं, उस नारियल को वहाँ से चढ़ेला के बाद श्री दुर्गा जी के पास आनकर यहाँ उसको संकल्प करके फोड़ा जाता है और उसका जल माँ को अर्पण किया जाता है। पर भगवान का चरणामृत स्थान है, जितने भी वहाँ पर भगवान को स्नान कराया जाता है, सुबह शाम जो आरती होता है, उस स्नान में जितने भगवान का स्नान किया हुआ जो जल है, उस इसी प्रकार के रास्ते से निकलकर बाहर जाता है। सीधे मंदिर के पीछे मुंडन स्थान है, जो अपने श्रद्धालु आते हैं, अपने मनोकामना को यहाँ मांगते हैं कि हमको बाल बच्चा नहीं है, बाल बच्चा हो जाएगा तो हम यही मुंडन कराएंगे, तो उस श्रद्धालु यहीं पर आके अपना बाल बच्चे को मुंडन करा के बाल मुंडन बाबा पर चढ़ा देते हैं। ये मंदिर जो बनाया हुआ है वो पत्थर पर पत्थर रखा हुआ है। जब ये पत्थर पर पत्थर रखा हुआ है तो इसमें कहीं कील है, जो लोहा का कील चारों पत्थर के कोन पर लगाया हुआ है और एक बीच में कील लगाया हुआ है लोहा का, उसी कील के सहारे ये पूरे मंदिर का निर्माण कराया गया है। जो कील है जो लोहा का लगाया हुआ है, देखिए लोहा प्रमाणित करता है आपको, देखिए लोहा प्रमाणित करता है कि लोहा का कील यहाँ देखिए ठोका हुआ
7: जी,
6: यहाँ भी देखिए लोहा का कील ठोका हुआ है, ये देखिए लोहा का कील ठोका हुआ है, और इसमें भी लोहा का कील जो प्रमाणित करता है, जो एक चारों कोन पर लोहा का कील ठोका हुआ है, हाँ चारों कोना पर पत्थर का लोहा का कील है।
7: सुनते हैं कि ये भगवान का मंदिर विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया है?
6: नहीं, विश्वकर्मा भगवान त्रेता युग में थे, त्रेता युग में विश्वकर्मा भगवान तो उस समय हम लोग देखे नहीं, सुना हुआ बात कहते हैं। भगवान सूर्य नारायण की भी विश्वकर्मा भगवान को आदेश किए होंगे भगवान कि जाके मंदिर एक रात में बना दो, तो हम लोग भी सुनते हैं कि विश्वकर्मा भगवान बनाए हैं मंदिर को, हम लोग तो देखे नहीं है कि विश्वकर्मा भगवान बनाए, लेकिन कहने का मतलब है कि जब लोहा लगाया हुआ है इसमें तो लोह युग का निर्माण कब हुआ, जब लोहा का निर्माण किया गया होगा तब इस मंदिर का निर्माण हुआ
7: जी।
6: तभी तो लोहा चारों कोण पर लगाया गया, इसलिए हम लोग मानते हैं कि त्रेता युग में जब कुछ दिन बीच जाने के बाद भगवान श्री रामचंद्र उस समय थे, विश्वकर्मा भगवान को आदेश दिए होंगे कि जाके देव सूर्य मंदिर को बना दीजिए, और तीन रात में तीन मंदिर बना, देव देवकुड़ और उमगा, यही इसका प्रमाणित है। अब आगे में चलिए, समझे ना, जहाँ भी है महेश्वर भगवान में ही सूर्य है, त्रिकाली सूर्य का यहाँ पूजा होता है, जैसे उदय ब्रह्मणे रूपम मध्याने तु महेश्वर अस्तमाने स्वयं विष्णु त्रिमूर्तिश्च दिवाकर, तीनों रूप में सूर्य नारायण भगवान यहाँ विराजमान है। जो उदय लेते हैं सूर्य नारायण भगवान तो ब्रह्मा के रूप में रहते हैं, मध्य काल में महेश्वर के रूप में हो जाते हैं, जब अभी का समय है वो महेश्वर भगवान का है, और अस्त काल में विष्णु भगवान का रूप धारण करके अस्त हो जाते हैं, वही त्रिकाली सूर्य का यहाँ पूजा होता है। अब आइए कि भगवान सूर्य नारायण का हर मंदिर में दरवाजा पूर्व की दिशा होता है, तो ये देव सूर्य मंदिर का दरवाजा पश्चिम दिशा क्यों है? तो ये लोग पहले का बूढ़ बुजुर्ग लोग जो थे वो कहते थे कि इस मंदिर का दरवाजा पश्चिम इस तरफ से हो गया कि औरंगजेब लोग जब उस समय आया था, जब मंदिर विध्वंस करने लग रहा था, तो उस समय यहाँ पर भी आया उन लोगों ने आक्रमण करने, तो आक्रमण के दौरान उन्होंने यहाँ पर भी तोड़ना चालू किया, तो यहाँ का पुजारी ये मूर्ति जो है से सब मूर्ति खंडित हुए हुए हैं, जितना भी मूर्ति है यहाँ सब भी खंडित हैं, जितने भी मूर्ति यहाँ है सब खंडित हैं, समझे ना, विष्णु भगवान ब्रह्मा जी दुर्गा जी जितना भी मूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी का सब मूर्ति खंडित है, जितने विशाल मंदिर है यहाँ उतने विशाल मूर्ति भी थे यहाँ, लेकिन वो खंडित के चलते सब निकाल दिया गया है बाहर में, उन सब का पूजा अर्चना होता है। हाँ, औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ फोड़ कर दिया, उसके बाद जब मंदिर ढहने का प्रक्रिया चालू किया तो उस समय सब आग्रह करने लगा कि हमारे मंदिर में सत्य है इसलिए मत तोड़िए, इसको छोड़ दीजिए, तो उस आग्रह पर औरंगजेब ने, लोग कहता है हमने सुना नहीं है और कहीं लिखा हुआ नहीं है ऐसा, लोग कहता है कि पुजारी लोग, महात्मा लोग, यहाँ का जितने रहने वाले थे बूढ़ बुजुर्ग लोग, उन्होंने मना किया, तो औरंगजेब ने मना करने के बाद कहा कि तुम्हारे मंदिर में जब सत्य है तो अगर एक रात में अगर दरवाजा पूर्व से पश्चिम की ओर हो जाएगा तब मैंने छोड़ देगा, मंदिर को नहीं ढहाएंगे। तो इसी प्रकार भगवान को आराधना करते हुए सब बुजुर्ग पुजारी लोग बैठ गए दरवाजे पर, और सुबह हुए उन लोग को नींद आ गया, और सुबह हुआ तो एक बैग देखा जा रहा है कि पूर्व से दरवाजा पश्चिम भर खुल गया और पूर्व भर मंद आ गया, इसलिए औरंगजेब ने इस मंदिर को सत्य मानकर छोड़ दिया, नहीं तोड़ा गया। देव सूर्य मंदिर का पौराणिक हवन कुंड है, इसमें जितने भी देव सूर्य मंदिर में श्रद्धालु आते हैं वो मंदिर में दर्शन कैला के बाद अपना धूप अगरबत्ती कपूर जो भी होता है वही इसी हवन कुंड में उन लोग जलाते हैं और कपूर का आरती करते हैं। इस हवन कुंड से जितने भी घीव हवन कुंड में डलाता है और सब घीव एक जगह पर जला हुआ जमा हो जाता है, उस घी से यहाँ पर घी को जितने भी भक्त आते हैं उनको अगर बाई चांस कभी किसी को भगवान न करे कि वैसा हो और जिसको कुष्ठ रोग से ग्रसित रहते हैं वो घी का सेवन करते हैं तो उनका भी कुष्ठ रोग निवारण होता है, समझे ना। इसीलिए हवन कुंड को जैसे कि हवन कुंड को यहाँ पर जलाते हैं लोग और उसका जैसे कि जो घी बचा हुआ रहता है, जो जला हुआ रहता है, उसको शरीर में अपना लगाते हैं, जहाँ जहाँ किसी किसी को दाग होता है उससे इस घी से, जले हुए घी से वो कंचन शरीर हो जाता है, यही हवन कुंड है। हवन कुंड बहुत पुरानिक हवन कुंड है जो हम लोग के होश से पहले से ही हम लोग ने देख रहे हैं कि यहीं पर हवन कुंड स्थापित किया गया था, जो आज तक इसको विराजमान रखा गया है और इसको जैसे कि बाहर ऊपर से छा छोप दिया गया है। हमारे पास 1957 का फोटो है जो उस समय भी ये भोलेनाथ का प्रतिमा उस फोटो में भी दर्शाता है, इसलिए ये भोलेनाथ का बाबा का जो मूर्ति है शंकर जी का ये बहुत पुरानी मूर्ति है, जिस समय मंदिर बना था उसी समय से ये भोलेनाथ का शिवलिंग है, यहाँ स्थापित किया गया था और इसको भगवान पूजा अति भगवान के दरबार में पूजा श्रद्धालुओं करते हैं और अपना मनोकामना पूर्ण करते हैं। का प्रतिमा जो अंदर में है जो स्थापित किए हुए ब्रह्मा विष्णु शंकर जी का, तीन कमल आसन है ये, जो एक दो तीन, तीन कमल आसन है, इसीलिए इनको भी पूजा लोग करता है श्रद्धालु लोग आन के, यहाँ भी पूजा पाठ करने से श्रद्धालुओं का मनोकामना पूर्ण होता है क्योंकि भगवान का आसन है, इसलिए यहाँ पर भी श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ करते हैं। अब देखिए भगवान का मंदिर है, जो भगवान का मंदिर है इसमें 12 मंदिर बने हुए हैं, भगवान का जो बाहर 12 नाम है उस इसमें 12 मंदिर भी बने हुए हैं, जो दो मंदिर तो आपको उसी में लोक रहा है, जो एक गणेश जी के नीचे मंदिर और एक ऊपर स्वयं बड़ा मंदिर, देखिए 5 मंदिर दरवाजा पर है और इसी के जस्ट पीछे जो दरवाजा भगवान के पास है उस पर 5 मंदिर है, तो 5×10 और 2×12 मंदिर और 12 को भगवान सूर्य नारायण का नाम है और 12 को मंदिर है, ऊपर में सोना का कलश है
7: जी, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहते
6: हैं?
7: हाँ,
6: सोना के कलश है, तो सोना के कलश कम से कम 1.25 मन का सोना का कलश ऊपर सूर्य नारायण भगवान पर रखा गया है जी? जो उस मंदिर पर रखा गया तो आज से नहीं है, त्रेता युग से ही कलश रखाया है जी? उस कलश को भी ओरिजिनल सोना लोग कहते हैं कि है जी? हम लोग तो वहाँ गए नहीं है, देखे नहीं है, वहाँ कोई जा नहीं सकता है और जो जाता है,
8: बाबा सुने कि कोई गया है वहाँ पास?
6: हाँ, गया था जो उनका गर्दन तक तो लोग जाता ही है माइक तक बांधने के लिए, जो बहुत वो आत्मा का अपना मतलब परिपूर्ण रहता है वो वहाँ जाता है गर्दन तक चढ़ जाता, सभी आदमी नहीं, एक दो आदमी जाता है, उस कलश पास कोई नहीं पहुँचता है, जो प्रयास करता है कि उस कलश पास जाए उसको भगवान वहीं पर सटा लेते हैं कि तुम यहाँ किस लिए आया हो, उसको वहीं पर सटा लेते हैं, जैसे प्रमाणिक है, पहले लोग कहते हैं, पहले लोग कहते हैं कि 4 चोर चढ़ रहे थे उस सोने को कलश को उतारने के लिए, जो भगवान उसी कलश उसी मंदिर में अपने सटा लिए, पत्थर को बना दिए, इसलिए कोई ऐसा काम नहीं करता है आज के, अब नहीं करता है, हम लोग देखे नहीं है, सोने हुए बात कर रहे हैं कि चोर लोग जो है ऐसे चढ़ रहा था, जो भगवान वहीं पर उसको जला दिए और इसके बाद पुनः फिर भगवान का जो है से कि स्थापना हुआ और जो है से उसी समय से पौराणिक मंदिर सब श्रद्धालुओं का आस्था है पूर्ण होता है और आस्था को अपना बरकरार रखने के लिए हिंदू लोग हिंदू भाई धर्म जो है जितने भी हैं मंदिर में दर्शन पूजा करते हैं।
9: मेरा नाम सतीश कुमार राय है, मैं इस मंदिर का कोषाध्यक्ष हूँ और पिछले 7 वर्ष से यहाँ कोषाध्यक्ष है। इस किला के अंतिम राजा राजा जगन्नाथ प्रसाद थे जिनका देहांत 1934 में हो गया था और उन्हीं के नाम पर एक यहाँ पर विद्यालय है राजा जगन्नाथ उच्च विद्यालय। इस किला के विषय में यह जानकारी है कि यह लगभग 1000 वर्ष पुराना किला है और इसके प्रथम राजा कौन थे ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन राजा जगन्नाथ प्रसाद जो लास्ट राजा थे जिनकी मृत्यु 1934 में हुई थी, इनकी 3 रानियां थी, तो एक बेगम अभी बेगम से ही इनका बाल बच्चा था, अन्यथा 2 रानियों का किसी भी प्रकार का कोई बाल बच्चा नहीं हुआ और वे लोग ऐसे ही मृत हो गए। बेगम से जो उनके औलाद हैं वो अभी जीवित हैं, उनके और लोग जीवित हैं। रही बात इस किला का, यह छोटा सा किला है लेकिन अपने आप में गौरवान्वित इसलिए है कि यह अंग्रेजों का पिट्ठू नहीं रहे हैं, ये अंग्रेजों से लोहा भी लिया। वीर कुंवर सिंह जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनका ससुराल इसी किला में है, उनका ससुराल इसी किला में हुआ करता था और वीर कुंवर सिंह के विषय में विशेष तो आप लोग खुद जानकारी है कि वो 80 वर्ष की अवस्था में भी कभी भी लोहा अंग्रेजों से लोहा लेने में कमी नहीं महसूस की। हाँ, और इसी सूर्य मंदिर का जो भी प्रताप पुण्य प्रताप रहा हो इन्होंने उनसे उक्ति ली, उनसे आशीर्वाद लिया और अंग्रेजों से बराबर लोहा लेते रहे।
10: जी अंकल, सुनने में आता है ये महल पहले मुस्लिम लोग का था, मुस्लिम शासक थे यहाँ पहले?
9: ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि राजा जगन्नाथ प्रसाद के जो पूर्वज थे वो 7-8 पुश्त से ही है, तो 7-8 पुश्त से यहाँ पर है तो ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए कि मुस्लिमों का जहाँ भी साम्राज्य रहा है वहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा रही है। लेकिन देव एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की हर जातियों का हर धर्म का लोग रहे हैं, लेकिन यहाँ मुस्लिमों का प्रभाव आज तक नहीं रहा है बल्कि कहा जाए कि नहीं ही है, तो इसलिए कहीं भी राजा अगर मुस्लिमों का है तो वहाँ पर अपने अनुसार वो मुस्लिमों को बसाए हैं, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं रही, यहाँ 100-200 मुसलमान ही आज के डेट में भी निवास करते हैं।

0: बहुत पुराना मंदिर है। लोगों का कहना है कि अगर बरसात के दिनों में पानी ना हो तो इनको दूध में डुबाने से या पानी में डुबाने से वर्षा होने लगती है, और सभी किसान जिस साल अकाल होने की संभावना रहती है उस साल इनको दूध या पानी में डुबाते हैं जिससे वर्षा होने लगती है, ऐसा लोगों का कहना है।
1: सूर्य मंदिर पर जानकारी दे रहे थे अलका, प्रीति, पूजा, आरती, अंजू, सविता, खुशबू और संजू।
2: तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आप जल्द ही सूर्य मंदिर से देव औरंगाबाद से रूबरू होंगे। तो अब हम लोगों को दीजिए इजाजत। नमस्कार,
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: अभिता और फरा, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम पे जिसका नाम है नीडल एंड थ्रेड, और जिससे आप रोजाना काम करती हैं। और आपको ये भी पता है और हम सबको पता है कि नीडल और थ्रेड के बिना हमारा गुजारा भी नहीं है, बिकॉज सबको कपड़े सिलवाने हैं, पहनने हैं। और बहुत सारी औरतें जो हैं, जो रीड के साथ जुड़ी हैं या वैसे भी काम करती हैं, उनको स्टिचिंग करके जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो यू कैन नॉट इमेजिन दैट। और अभी प्रोफेशनल कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, यूनिवर्सिटी में भी हैं, इंस्टीट्यूशंस में भी हैं अपैरल डिज़ाइनिंग के। और जैसे अबीदा ने भी छोटा कोर्स किया है अपैरल डिज़ाइनिंग पे, और आज की जो चर्चा है हम इसी पे बेस करेंगे। और अबिदा और फरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अबिदा, शशांक ने आपके बारे में इंट्रोडक्शन दी है, और आपने अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बहुत सारी मेहनत करी है, बचपन से मेहनत करी है। आप अपना गांव छोड़ के दिल्ली में भी आई रहने के लिए, पढ़ने के लिए, और फिर वापस जाके जब आपके मन में जुनून था कुछ करने का तो आपने उसको पूरा कर दिखाया। और मैं यहाँ भी ये भी कहना चाहूँगी कि जुनून अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है और ज़िंदगी बहुत लंबी है, और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने की आप इच्छा भी रखती हैं, और उसके उसको पूरा करने के लिए आप में दृढ़ विश्वास भी है। तो चलो हम बातचीत शुरू करते हैं। अबिदा, आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं, थोड़ी जानकारी दें, और फिर हम आगे इस चर्चा को लेकर जाएंगे। अबिदा प्लीज।
1: गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम आबिदा है और मैं रामपुर शहर के छोटे से मोहल्ले कलगत के रहने वाली हूँ। मैम, यहाँ का माहौल हमारे यहाँ मतलब ऐसा है कि लड़कियों को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। शुरू से ही हम अपने आसपास का माहौल यही देखते आए, अपने घर का भी, कि हमारे भाइयों को एजुकेशन दी जाती थी और अच्छे से वो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम लड़कियों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। जैसे मैं अपनी बड़ी बहनों को देखती थी, वो घर का काम काज कर रही हैं और सिर्फ घर तक ही सीमित रहती थी, किचन तक, घर तक उनकी लाइफ रहती थी। लेकिन मेरे अंदर बचपन से ही एक जुनून था कि मुझे अपनी लाइफ कुछ चेंज करनी है। मुझे लड़कों से लड़कियों को क्यों अलग समझा जाता है, मुझे वो सोच हटानी है लोगों की, और मुझे भी पढ़ना है, आगे कुछ बढ़ना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, लड़कियों का नाम रोशन करना है। ये सारी इच्छाएं मेरे अंदर बचपन से ही रहती थी। मैंने अपने घर वालों को बहुत फोर्स किया कि मुझे आप पढ़ने दें, तो घर वाले ने यही कहा कि नहीं, आप लोग, आप जैसे लड़कियां यहाँ घर में रहती हैं, आप भी ऐसे रहिए और घर का काम काज सीखिए। हालांकि मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत चाहत थी कुछ बनने की। तो मैं अपने घर वालों को कन्विंस किया, उन्होंने मेरा एडमिशन एक गवर्नमेंट स्कूल में कराया, कवरलगा स्कूल, वहां से मैंने 8th क्लास पास की। फिर उसके बाद यहाँ रामपुर में कारोबार नहीं है, बहुत प्रॉब्लम थी, घर के खर्च की, पापा एक जॉब करते थे छोटी सी, और उसी से हमारा गुजर बसर काफी मुश्किल से होता था। तो इसी वजह से काम के लिए हम लोग दिल्ली चले गए, हमारे भाई ने वहाँ काम शुरू किया। मैंने अपने घर वालों को कोर्स किया बहुत ज्यादा कि मुझे आगे पढ़ने दें, कुछ बनने दें, ताकि मैं भी अपने भाइयों के साथ सपोर्ट करूँ घर का। तो मेरे घर वालों ने मेरी हेल्प की और मुझे आगे पढ़ने दिया। मैंने मदरसा जामिया से अपनी एजुकेशन आगे की, और जिसमें मैंने बीए फाइनल किया, और अरबिक साइड से, अरबी लैंग्वेज सीखी उस साइड से मैंने किया। लेकिन फिर भी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मेरे अंदर एक सोच रहती थी कि मैं किस तरह आगे बढ़ूं, किस तरह अपने पैर पर खड़ी हूँ, किस तरह लड़कियों का नाम रोशन करूँ। ये सारी सोच मेरे अंदर हर टाइम रहती थी, लेकिन किस तरह, ये सवाल मेरे अंदर रहता था, बार बार ये सवाल मेरे अंदर उठता था कि मैं किस तरह अपने पैर पर खड़ी हूँ। उसके बाद फिर इसके दौरान मेरी एक फ्रेंड के थ्रू मैंने एक सिलाई सेंटर ज्वाइन किया, और मैंने वहां से स्टिचिंग कोर्स किया, काफी अच्छे से कोर्स किया, काफी मेहनत से, मन से, क्योंकि वो कोर्स सीखने के लिए मैंने, ये नहीं कि मैं शौक में कर रही हूँ, मुझे कुछ बनना है, आगे कुछ बनना है, कि सिलाई के करियर ही बनना है, लेकिन मुझे कुछ बनना है, ये सोचकर मैंने सेंटर ज्वाइन किया। और काफी मेहनत से, लगन से, जो लड़कियां मुझसे पहले की थी वहां पर, उनको भी पीछे छोड़ा मैंने, और इतनी मेहनत से मैंने वहां से कोर्स किया। और मुझे कहते बहुत खुशी है कि मैं वहाँ कोर्स आई, बहुत अच्छे से मुझे उन लोगों ने प्रेजेंट भी दिया, काफी लोग आए थे, उन्होंने मुझे सराहा, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की, लेकिन घर से सपोर्ट नहीं मिला जॉब का। उसी दौरान मेरी दोनों सिस्टर की शादी हो गई, और शादी के बाद फिर घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे पर आ गई, घर घर वालों ने जॉब के लिए नहीं मुझे सहारा दिया, उसके बाद फिर हम लोग रामपुर यहाँ आ गए, अब लोग हम शिफ्ट हो गए रामपुर। वहाँ उसी दौरान मेरे पापा काफी बीमार रहने लगे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम रहने लगी, उससे पापा का काम छूट गया। और उसी सिलसिले में फिर मैं काफी टेंशन में रहने लगी कि मैं क्या करूँगी। तभी मुझे री नौकर अकबर सर आए जहाँ, और हमारा हॉल पसंद किया और रील इंडिया ने मुझे ऑफर जॉब की। तो मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, और सबसे बड़ी सपोर्ट मेरी भाइयों ने की, क्योंकि यहाँ इस हॉल में वो लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे और मुझे चाहिए था हॉल। तो मेरे भाइयों ने अपना काम रोककर हॉल दिया मुझे, तो मैंने रील इंडिया सेंटर चलाया। और मेरे सेंटर काफी अच्छे से चलाया। इस सेंटर में आने से पहले मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था और काफी दिक्कत मुझे थी, और लड़के से अच्छे से बोल नहीं पाती थी, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। वो कॉन्फिडेंस मुझे सिखाने के साथ आया। मैंने जितना लड़कियों को सिखाया उतनी मेरी खुद की स्किल्स डेवलपमेंट होने लगी, और मुझे लड़कियों से बात करने का तरीका आने लगा, और सिखाने के साथ साथ लड़कियां मेरी काफी मेरी इज्जत करने लगी, मेरी वैल्यूज बढ़ी। मोहल्ले में मुझे कोई नहीं जानता था, मोहल्ले में मुझे काफी जान मेरी जान पहचान बढ़ गई और लोग मुझे जानने लगे। और मैंने 3 साल से सेंटर चला रही हूँ, जिसमें मैंने 400 तक लड़कियों को सिखा दिया है और 400 घरों तक मेरी पहचान बढ़ गई। और इन 400 घरों तक मेरी पहचान बढ़ी है, और वो 400 लड़कियां और 400 लड़कियों को लेकर आई थी। हमारे यहाँ का अभी माहौल वही है कि लड़कियों को निकलने नहीं देते, लड़कियों को आगे कुछ बढ़ने नहीं देते। लेकिन मैंने लड़कियों के घरों पे गई, उनके पेरेंट्स से बात की कि आप लोग अपनी लड़कियों को यहाँ भेजें और हमारे सेंटर भेजें, उनको कुछ सिखाएं। तो उन लोगों ने मेरी बात एग्री किया और मेरे पास में लड़कियों को भेजा, और यहाँ पर लड़कियों ने आकर सीखना शुरू किया, जिससे काफी इंप्रूवमेंट आया। हमारे मोहल्ले में भी काफी लड़कियां ऐसी थी जो घरों से निकलना नहीं जानती थी, जिनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, बात करने का तरीका नहीं आता था, वो सब उन्होंने सेंटर से ही सीखा। और यहाँ से उन्होंने देने के बाद कमाना शुरू किया और अपने पैर पर खड़ी हुई है। उन लोगों ने अपनी फैमिली को सपोर्ट भी किया, काफी लड़कियां ऐसी हैं जो अच्छे से कमा रही कमा भी रही।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फरा आपके साथ बैठी है फरा, और आप तो रीट से बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं, जब आप बहुत छोटी थी तब से ही रीट से जुड़ी हैं। और ये स्टोरी जो अबिदा अपनी बता रही है, आपके क्या विचार हैं इस स्टोरी पे? और आपने अबिदा को अपने सेंटर में जोड़ा, कलघट में इन्हीं के घर में आपने सेंटर बनाया सी। जब आपके दिल में जुनून होता है तो नेचर भी आपको सपोर्ट करती है उसी काम को करने के लिए। अब जब पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे किसी भी रीजन से, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली ये बात बोल रही हूँ और मैं उनकी बहुत इज्जत भी करती हूँ, कि ये होता है कि लड़कियों को बाहर भेजने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है पेरेंट्स को, तो वो कॉन्फिडेंस पेरेंट्स में भी टाइम से आता है, एकदम शुरू से नहीं आता है। और जब मैं अबिता की स्टोरी सुन रही हूँ तो मुझे फरा की स्टोरी भी याद आ रही है सामने। तो फरा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी अबिता की स्टोरी में, क्योंकि आप इसको 2019 से देख रही हैं।
1: जी मैं ऐड करना चाहूंगी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रीड इंडिया रामपुर सेंटर से फरहा। आबिदा की स्टोरी में मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि आबिदा बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की है, जिनको मैं पहले दिन मिली थी और आज मिल रही हूँ। बहुत बड़ा फर्क है उनके अंदर। जैसे मेरी जर्नी थी रीट में, मैं यहाँ थी और अब यहाँ आ गई हूँ रीट से जुड़ने के बाद, ऐसे ही आबिदा ऐसी थी और आज यहाँ आ गई है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज वो लाइव आप सबके सामने अपनी स्टोरी शेयर कर रही है। जो कुछ मतलब जब हम फर्स्ट डे आए थे तो कुछ बता भी नहीं पा रही थी, तो जब मेरी इनसे फर्स्ट डे मुलाकात हुई थी तो ये नकाब में और बुरके वगैरह में थी घर में ही, और ऐसे ही मतलब रहती थी। तो मैंने इनसे पूछा कि, इन्होंने हमसे बोला कि हम यहाँ पर, हमारा ये थोड़ा सा घर का हिस्सा है और यहाँ पर हम ऐसे से कोई कुछ चलाना चाहते हैं। तो हमने बोला यहाँ पर लड़कियां वगैरह कैसी हैं और लड़कियां आ जाएंगी यहाँ तक, क्या घर में से पेरेंट्स निकलने देंगे, क्या आपके अंदर वो जज्बा है कि आप सिखा पाएंगी, लड़कियों से जुड़ पाएंगी और या लड़कियों से बातचीत कर पाएंगी। तो उन्होंने अपना पूरा कॉन्फिडेंस दिया हमें कि हाँ हम करेंगे, मतलब इन्होंने मना नहीं करा, इनके पेरेंट्स मना कर रहे थे कि कोई
2: कोई जॉब नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम करेंगे, तो मुझे लगा कि हाँ भाई फरा के जैसी भी कोई और है करने के लिए जज्बा रखती है, तो वहीं से इन्होंने स्टार्ट करा और हमसे हामी भरी करने के लिए, तो हमें लगा कि हमारा यहाँ पर सेंटर चल सकता है डियर इंडिया का, और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो आबिदा के जैसी बाहर निकल के कुछ कर सकती हैं। तो जब हमने इनसे बात करी और इन्होंने मोबिलाइजेशन करा, तो जब भी हमारे पास 100-150 लड़कियां आई बाहर निकल के, और इन्होंने घर घर में जाके मोबिलाइजेशन करा, पेरेंट्स को समझाया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे पेरेंट्स हैं, मुस्लिम इलाका है, जो घर से बिल्कुल लड़कियां नहीं निकल पाती है, तो इन्होंने घर घर जाके, हमने इन्हें एक हफ्ते का टाइम भी दिया कि आप जाइए और हमें बताइए कि आप कर सकती हैं, तो इन्होंने हमें 150 लड़कियां लाके दी। और जब हमने उन लड़कियों से मुलाकात की, तो वो फर्स्ट टाइम अपने घर से निकल के किसी सेंटर पे आई थी। उन्होंने हमें बताया कि मैम हम फर्स्ट टाइम अपने घर से निकले हैं, हमें फर्स्ट टाइम इजाजत मिली है, क्योंकि सिर्फ हम पढ़ाई के लिए जाते हैं और या फिर हम अपने घर पे रहते हैं, पढ़ाई के लिए भी हम अपने भाई या फादर के साथ जाते हैं, एग्जाम वगैरह देते हैं, तो वो बाहर खड़े होते हैं और फिर हम देकर उन्हीं के साथ आ जाते हैं वापस। लेकिन ये एक पहला सेंटर है जो हमारे घर के करीब समझिए, या फिर एक टीचर के अंदर, टीचर ने उनको किस तरीके से उनके पेरेंट्स को समझाया, वो एक विश्वास समझिए जो हमारे पेरेंट्स ने हमें यहाँ तक भेज दिया। तो हमें बहुत खुशी हुई, और मुझे ये भी खुशी हुई कि आबिदा उन लड़कियों को घर से निकाल के लाई, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया, आगे बढ़ने का जुनून आया कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और इतनी लड़कियों के पास ये पहुंची और उनको समझाने में कामयाब रही। लड़कियां यहाँ धीरे धीरे आई, और लड़कियां आज इतनी हैं कि 400 से लेके 500 लड़कियां तक आबिदा को जानती हैं, और उनके घर वाले कभी भी किसी टाइम भी यहाँ भेज देते हैं, उनको कोई भी चिंता नहीं है, उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आते हैं, और हम लोगों ने पेरेंट्स से भी बात की है कि आप अपनी लड़कियों को बाहर तो कहीं जाने देते हो, लेकिन हमारे सेंटर तक आप भेज रहे हो, क्या आपको हमारे सेंटर में ऐसी कौन सी अच्छी चीज लग रही है? तो उन्होंने यही हमसे बोला है कि आपके सेंटर के अंदर एक तो लड़की कुछ सीखने आती है, कुछ सीख के जाती है, और दूसरा ये एक विश्वास और एक लड़की के लिए सेफ्टी वाला सेंटर है, जो हमें लगता है कि हमारी लड़की वहां जाके बिल्कुल सेफ है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो हमें बहुत खुशी हुई। कभी कभी लड़कियां ये भी होती है कि घर से पूरे दिन के लिए भी कही जाती है कि मम्मी हम वहां पूरे दिन रहेंगे, हमें मतलब कोई काम करना है, या स्विंग का कोई काम है, या फिर प्रोडक्शन में कुछ करना है, या फिर कोई डिजाइनिंग सूट सिलना है, तो उनके पेरेंट्स वो भी अलाउ कर देते हैं। जब उनके पेरेंट्स का फोन आता है तब वो दिन भर में जाती है। तो यहाँ तक लड़कियों के अंदर फर्क आया, और वो फर्क लाने के लिए आबिदा ने बहुत कोशिश की है, और बहुत अच्छा कनेक्ट करती है लड़कियों से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी जैसी और लड़कियां बन रही है, फरा से आबिदा, आबिदा से और 150-150 से 400 लड़कियां बन जाए, और ऐसे ही हमारा सोशल वर्क कामयाब रहे हमेशा, और हम ज्यादा से ज्यादा लड़कियों, औरतों और लड़कों तक पहुंचे, और रीज का नाम बहुत रोशन। तो मैम ये आबिदा की जो अंदर की कॉन्फिडेंस था वो निकल के आया।
0: वेरी गुड फरा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि रीड का मॉडल ही ऐसे है। रीड का मॉडल ये है कि हम गांव में जाके कैसे गांव की लड़कियों के साथ मिलके काम करें, जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, और उन्हीं के एरिया में हम ऐसे सेंटर खोलें जहाँ पे लड़कियां बड़े कॉन्फिडेंस से आ सकें और अपने हम उम्र की लड़कियों से बहुत कुछ सीख सकें, और अपने परिवार को भी सपोर्ट करें, अपनी लाइफ में भी चेंज लेके आए, और अपने आने वाले जिंदगी की सोच भी उनकी क्लियर बन जानी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है फरा। और मैं यहाँ पे एक और चीज भी कहना चाहूंगी, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मेरी ये सोच नहीं है कि हम घर से लड़के, घर की रजामंदी ना होने की वजह से, या हम अपनी जिद से कुछ करें। जैसे फरा की स्टोरी थी कि फरा ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, अपने गांव में ही सेंटर था और उस गांव के सेंटर में काम करके अपनी जिंदगी में बदलाव लाई, अपनी सोच में बदलाव लाई, अपने पेरेंट्स की सोच में बदलाव लाई, अपने पैरों पे खड़ी हुई। ऐसे अबिदा ने भी किया। अबिदा बिल्कुल अपने पेरेंट्स की बात मानती थी, कोई जिद नहीं थी कि मुझे घर से बाहर जाना है, पर ऐसे सरकमस्टांसेस में रीड का मॉडल उनके लाइफ के साथ इतना अच्छा तालमेल बिठाया उसने कि उसने अपने घर में ही जगह दी, और अपने घर में ही उसने सिलाई मशीन रखने के लिए इजाजत मांगी अपने पेरेंट्स से, और देखिए उसके ब्रदर ने कितना सपोर्ट किया कि अपना काम बंद करके उसने अपनी बहन को जगह दी। क्योंकि क्योंकि उसकी भी यही सोच थी कि आज अगर मैं अपनी बहन को सपोर्ट करूंगा तो मेरी बहन बहुत आगे बढ़ जाएगी और उसके दिल की जो ख्वाहिश है उसको मैं प्रोत्साहित करूंगा कुछ करने के लिए। तो ये खाली अबिदा का रोल नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अबिदा के पेरेंट्स का, अबिदा के भाई का, फरा एज एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ हर एंड ऑल्सो फरा पेरेंट्स और आसपास का माहौल जो पॉजिटिव बना, ये सब चीजें बहुत रोल प्ले करती हैं। तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी इस सोच को समझने के लिए, इस सोच को आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि जब हम अपनी सेल्फ ग्रोथ की बात करते हैं, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो महिला को अपने दायरे में ही रह के अपने परिवार की सहमति से कैसे अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना, ये बहुत बड़ी बात है। और इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम सबका सलाम है, बिकॉज ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत टफनेस अपनी लाइफ में, बहुत हार्ड वर्क अपनी लाइफ में करके, बहुत चैलेंजेस को फेस करके आता है। और हम जब आगे बढ़ते हैं और जो इसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है वो हम किसी और चीज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो फरा और अबिदा, आपका जो जर्नी रही, जो दोनों ने जर्नी पार करी है, इस जर्नी को सलाम। और आपने जो लोगों को कन्विंस करा और जो लोगों को प्रोत्साहित करा आज के दिन में 400 लड़कियों को सिलाई सिखाना और उनके घर में इनकम ऐड करना, ये बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है, इसको आप छोटा मत समझिए। आपने जो अपनी लाइफ में किया है इसका बहुत सारे लोगों पे, बहुत सारी लड़कियां जो आपसे डायरेक्ट जुड़ी हैं, उनका पेरेंट का फैमिली जो उनके माँ बाप हैं, उनके बहन भाई हैं, और जब उनकी शादी के बाद ससुराल गए हैं और उनके माँ बाप, उनके हस्बैंड, उनकी पूरी फैमिली पे इसका क्या असर पड़ता है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से रियलाइज करती हूँ, तभी रीड गांव गांव में जाके, गांव गांव में लोगों से बात करके, गांव में ऐसी लड़कियों को तराशते हैं जिनमें हुनर है पर वो कुछ कर नहीं सकती हैं। और आज हमारे सामने इस प्रोग्राम में दो लड़कियां बैठी हैं, फरा और अबिदा, जिनके अंदर एक टैलेंट छुपा हुआ था, उसके ऊपर धूल थी, हमने खाली उस धूल को हटाया है और आज ये ब्राइट स्टार बनके हमारे सामने बैठी हैं। थैंक यू अबिदा सो मच फॉर शेयरिंग योर, इस ये स्क्रीन पे शेयर करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए और मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ। अभी मुझे ये बताइए कि जो लड़कियां आपके पास सिलाई सीखने आती हैं, उनकी जिंदगी में कैसे बदलाव आया?
1: ऐसा है जैसे यहाँ हमारी लड़कियां कुछ ज्यादातर रहती हैं जिनकी फैमिली सपोर्ट ज्यादा नहीं था उन पर, लेकिन हमने उनके घर बात की, उनके पेरेंट्स से बात की, तो उन्होंने यहाँ भेजा। उनकी माली हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी, मजदूरी करती है काफी लड़कियों के वालिद, वालिद उनके पापा, तो लड़कियों को हमने वो हुनर दिया और स्किल्स दी उनको इतनी कि उन्होंने यहाँ सीखने के दौरान ही सिलाई करना शुरू कर दी। उन्होंने अपने खुद के कपड़े सीकर और अपने पैसे बचाए और फिर उसके साथ साथ उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला गया और उन्होंने बाहर की सिलाइयां भी लेना शुरू कर दी, और जिससे उन्होंने घर में अच्छा सपोर्ट किया उन लड़कियों ने। और अपने पेरेंट जो उनको इजाजत नहीं देते थे, वो खुद उनकी अम्मियों ने आकर मुझसे बात की और शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारी बेटियों को इस लायक बनाया है कि आज हमारी बेटियां इस लायक हैं कि अर्निंग कर रही हैं, अपना खर्च भी उठा रही हैं और अपने घर का खर्च भी उठा रही हैं। कुछ लड़कियां ऐसी थी जिनकी पढ़ाई भी रुक गई थी, घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि उनकी पढ़ाई रुक गई थी और उन्होंने इतना कमाने लगी है वो लड़कियां कि उन्होंने अपनी पढ़ाई भी दोबारा स्टार्ट कर दी है और कुछ लड़कियों ने ट्यूशन वगैरह भी लगा ली है अपनी। और कितनी लड़कियां ऐसी हैं कि मेरे पास एक दो लड़की ऐसी है जिनकी डिवोर्स हो चुकी है और वो अपने घर में थी, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करती थी, लेकिन यहाँ सिलाई सीखने के बाद वो खुशी से ये बात कहती है कि अब हम किसी पर डिपेंड नहीं है और हम अपना खर्च अपने बच्चों का खर्च खुद से उठा रहे हैं।
0: बहुत बढ़िया, आपने तीन पहलू यहाँ पे हमारे सामने शेयर कर रहे हैं। एक तो लड़कियों ने सिलाई सीख के अपने पेरेंट्स की जो फैमिली की इनकम थी उसमें योगदान दिया। दूसरा उन्होंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करी, ये बहुत बड़ा
1: जी
0: स्टेप है अपनी लाइफ में। फरा ने तो करा ही है, पर और भी ऐसी लड़कियों ने करा जिन्होंने अपनी पढ़ाई आगे करी, अपनी पढ़ाई को सपोर्ट किया, सेल्फ सपोर्ट किया। और तीसरा जिनका डिवोर्स हो गया वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो गई। तो ये तीन
1: जी
0: मेजर लाइफ चेंजर्स जो हैं, जो आए उनके लाइफ में, इसका श्रेय आपको जाता है, जो आपने बहुत सहनशीलता से, बहुत समझदारी से और बिना इसकी शोर मचाए, शोर मचाए मतलब कि किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही है इस चीज की, तभी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि गांवों में कैसे बदलाव आ रहा है। ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए बात, क्योंकि हम कोई मीडिया में स्टोरी नहीं देते हैं, हम कोई इसको शो ऑफ नहीं करते हैं, बट जो रियलिस्टिक चेंज आ रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बातों से सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, बिकॉज यू आर द चेंज मेकर। हम कहते हैं ना कि हमने सोशल कैपिटल बिल्ड करा, हमने सोशल गेन्स की बात की, हमने

0: समाज में उनको कैसे इज्जत मिली, कैसे उनकी इज्जत बढ़ी परिवार में, समाज में, और कैसे उनको धन का भी लाभ हुआ फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और जो लड़कियां बहुत ही डिफिकल्ट सरकमस्टांसेस में थी, वो उन्होंने उन सरकमस्टांसेस को रिजॉल्व करा, उस कठिन समय से बाहर आई। तो फरा, आपके यहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होंगी, क्या हमें सुना सकती हैं ऐसी स्टोरी आप?
1: जी मैम, बिल्कुल सुना सकती हूँ। पटवाई तो हमारा सेंटर अभी 6-5 ईयर्स हो गए चलते हुए, और उसमें लगभग 1,000-1,200 लड़कियों ने वहां पर सीखा है। स्विमिंग, ब्यूटी और कंप्यूटर है, और लाइब्रेरी भी है। तो कुछ लड़कियों की मैं स्टोरी बताऊंगी कि जैसे अभी हमारे पास लॉकडाउन में क्या हुआ कि कुछ बच्चे जूम ऐप के जरिए पढ़ नहीं पा रहे थे और मतलब पैसों से भी परेशान थे। तो अभी हमें दीदी दिया ने ऑनलाइन सेलिंग की एक ट्रेनिंग दी थी, सोशल मीडिया मार्केटिंग की और साइबर सेफ्टी की। तो वही ट्रेनिंग हमने ऑनलाइन के जरिए लड़कियों को दी, कंप्यूटर की लड़कियां हैं, स्विमिंग की लड़कियां हैं, ब्यूटी की लड़कियां हैं, क्योंकि साइबर सेफ्टी से भी बचना जरूरी है। और ऑनलाइन सेलिंग तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि घर पे रह के कोई भी लड़की कुछ भी अर्निंग कर सकती है। तो जब ये हमें ट्रेनिंग मिली तो हमें बहुत खुशी हुई और हमें लगा कि ऑनलाइन के जरिए भी हम लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। अभी लॉकडाउन में कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, कोई नहीं जा पा रहा है, तो फर्स्ट लॉकडाउन जो लगा उसके बाद हमारे सेंटर खुले, उसमें हमने वो ट्रेनिंग दी। सेकेंड लॉकडाउन बाद में लगा था, तो कुछ लड़कियों को हमने जूम ऐप की ट्रेनिंग दी। जिस तरीके से हमारी रीड में ट्रेनिंग होती थी कि मीटिंग्स होती थी, वो लड़कियां वहां पर आके कंप्यूटर भी सीखती थी और वो देखती थी कि मैम आप ये ट्रेनिंग लेते हैं, ये ऑनलाइन आप फेस टू फेस कैसे बात करते हैं, कैसे ट्रेनिंग लेते हैं। तो हमने ऑनलाइन सेलिंग में ही उनको एक ये ट्रेनिंग दी कि किस तरीके से हम अपनी जीमेल आईडी बनाएं, उसके बाद हमारे पास अगर टच फोन है एंड्रॉइड का तो हम किस तरीके से जूम ऐप के जरिए बच्चों को भी क्लासेस दे सकते हैं जो हमारे स्क्रीन गुड स्कूल में चल रहा है, और किस तरीके से हम खुद भी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लड़कियां बहुत खुश हुई क्योंकि कुछ लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी, वो नहीं पढ़ पा रही थी, वो अपने बुक से या फिर जो भी कॉपियां पहले की थी उससे पढ़ाई कर रही थी। जूम ऐप के बारे में उन लोगों को नहीं पता था। जब उनको इस जूम ऐप के बारे में पता चला तो धीरे धीरे हमने उनके घरों से उनके फोन मंगाए, मतलब पापा के या भाई के, जो भी घर में फोन रहते थे, उनके पास तो नहीं थे, लेकिन हमने कहा कि आप 2 या 3 दिन के लिए हमारे सेंटर पे फोन लेकर आओ, हम वो जूम ऐप आपको डाउनलोड करके देंगे, आपको पूरी मीटिंग बताएंगे किस तरीके से लेंगी आप, और इससे आप अर्न भी कर सकते हो घर पर बैठ के। जो भी बच्चों की क्लासेस छूट रही है वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, जो आपकी क्लास छूट रही है आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो सारी ही लड़कियां अपने फादर, अपने भाई, अपनी मदर का फोन लेकर हमारे सेंटर पे आ गई। जब दूसरे दिन आई तो हमें लगा कि काफी इच्छुक हैं लड़कियां ये करने में, तो हमने उनकी सभी की जीमेल आईडी बनवाई और जूम ऐप के द्वारा ट्रेनिंग उनको बताया कि किस तरीके से हम लेते हैं। तो लड़कियां काफी खुश हुई। 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने एक बच्चों का ग्रुप बना लिया, पांच पांच बच्चों का, और उनको फीस रख दी 100 रुपए कि हम आपको ये ऑनलाइन क्लासेस देंगे। गांव की लड़कियां जो मतलब बच्चे जो थे सिर्फ फेस टू फेस पढ़ते थे, उनको ऑनलाइन का पता भी नहीं था, लेकिन जब उन्होंने हमारे वहां से जूम ऐप की ट्रेनिंग ली तो उन्होंने देखा कि स्क्रीन गुड स्कूल की भी क्लासेस ली जाती हैं, क्योंकि मैं उन्हीं के सामने देती थी वो क्लासेस। तो उन्होंने 100-100 रुपए बच्चों से कहा कि आप फीस दो और हम आपके ऑनलाइन के जरिए आपकी पढ़ाई करेंगे। कोरोना के टाइम आप कहीं जा नहीं पा रहे हो, आपकी पढ़ाई बीच में रुकी हुई है। तो जब उन्होंने अपने गांव में एक एक देश बनाया, हर लड़की ने पांच पांच चार चार लड़कियों बच्चों का या दो दो बच्चों का, वो 200 भी कमा रही हूँ तो उनके लिए बहुत है, वो फर्स्ट टाइम था उनका, वो बेज बनाया और उन्होंने उससे स्टार्टिंग कर दी। जब जूम ऐप से स्टार्टिंग कर दी तो जब वो अगले मंथ हमारे वहां आई ये सारी चीजें सीखकर, वो क्लासे लेके, तो बहुत खुश होकर आई और बोली मैम हमने तो अपनी क्लासेस इस पे स्टार्ट कर दी जूम ऐप के जरिए और हम बच्चों की क्लास ले रहे हैं, इस पे अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे लॉकडाउन में हमारी पढ़ाई छूट गई थी वो भी हमारी कंटिन्यू रहती है, लिंक भेज देती है मैम, और हम बच्चों की भी इसमें ट्यूशन जारी रखे हुए हैं, जिससे हमें 200, 300 या 500 के लगभग हम बच्चों को क्लास दे देते हैं। अब हमने उनको इसके साथ साथ ऑनलाइन सेलिंग के बारे में भी बताया कि आपके अंदर कोई भी हुनर है आप वो भी कर सकते हो। जैसे आप फेसबुक पे अगर आपके अंदर स्विंग का बहुत अच्छा आपको प्रोडक्ट बनाना आता है, वो सूट बना के आप सिर्फ अपने घर में टांगोगे तो आपके मोहल्ले वाले देखेंगे या आपके घर वाले देखेंगे या एक दो गांव के लोग और आ जाएंगे वो चीज देखने के लिए, लेकिन आप इसी चीज को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी डालोगे तो पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। अब आप इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करते हो अपने रिश्तेदारों को, तो चैटिंग करते हो, हमने उन्हें बताया, बात करते हो, फेसबुक से अपने दोस्तों को बात करते हो, तो आप बात करते करते आप उसको अपना प्रोडक्ट भी भेजो कि हम तो ये बहुत

0: अच्छी कुर्ती बनानी आती है या हमें सूट आता है, आप हमारे सूट भी देखो, वो अपने आगे और दोस्तों को भेजेगा, वो दोस्त उसके आगे को भेजेगा, तो इससे आपकी अर्निंग भी शुरू होगी और अपना काम आप स्टार्ट कर सकोगे। तो कुछ लड़कियों ने ये करना भी स्टार्ट किया था, लेकिन उनको पैसे लेन देन में भी थोड़ी ज्यादा वो आई थी कि दिक्कत की कैसे, क्योंकि उन्हें गूगल पे का पता नहीं था। तो हमने धीरे धीरे उन्हें गूगल पे के बारे में बताया। अधिकतर लड़कियां जो पटवाई में हैं वो इतनी मतलब मेहनती हैं, एक जो हमारे यहाँ ये जो चुन्नी होती है माता की, वो चुन्नी बनने के लिए आती है, तो वो जो 1 रुपया 1.5 रुपया, तो दिन भर में लड़कियां 10 या 15 या 20 वो चुन्नियां निकाल लेती है उससे। तो एक लड़कियों ने ग्रुप बनाया और वो उन चुन्नी वाले अंकल से रामपुर में आई, बात करके गई और हम मेरे साथ ही गई, मतलब हमें किसी ने बताया था कि वो चुन्नी वहां वहां से लेनी है, तो हमने लड़कियों का ग्रुप बनाया कि ये काम स्टार्ट करके देखते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, आप घर भी ले जाना और सेंटर पे भी करेंगे। तो लड़कियों ने जब ग्रुप बनाया और हम लोग तब बस से रामपुर आए, रामपुर से हमने उन भैया से बात करी वो चुन्नी के लिए, तो उन्होंने बोला आप जितनी सिलवा सकते हो सिलवाओ और हमारे यहाँ से ये चुन्नी ले जाओ। तो उन्होंने हमें 500 चुन्नियां दी, वो 500 चुन्नियां लड़कियां हमारे पास बहुत थी और हमने आपस में 20 20 30 30 चुन्नी बांट दी। लड़कियों ने एक हफ्ते के अंदर अंदर वो चुन्नियां तैयार भी कर दी मैम, और आज की कंडीशन है लड़कियां खुद जाके वो चुन्नियां ला रही हैं माता रानी की, खुद सिलती हैं, खुद उनको देती हैं, और उससे जो भी अर्निंग होती है उनकी 1000 1500 ज्यादा तो नहीं हो पाती है, उससे वो अपनी कमाई कर रही है। तो पटवाई सेंटर में लड़कियों के आने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो बात करने का तरीका है, जब वो आती है तो उनके अंदर कुछ भी नहीं, उन्हें ये भी नहीं होता हमें बस सिलाई सीखनी है, हम पूछते हैं आप आगे क्या करना चाहती हो, मैम सिलाई सीखना है, उसके बाद हम अपने घर में करेंगे। उसके बाद मतलब मैंने उनसे पूछते पूछते हम लोग थक जाते हैं, आगे क्या सोचा है लाइफ में, तो वो कुछ नहीं बता पाती है। फिर हमें उन्हें बीच बीच में ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जैसे लाइफ स्किल है, लीडरशिप की है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की है, आर्ट थेरेपी की है, तो हम उनको वो उनकी जो अंदर का जज्बा है ना वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और वो निकल के भी आता है। आज भी 1000 है हमारे वहां जो सीखी हुई है, 1000 में से हम सीना चौड़ा करके और मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि 300 लड़कियां आगे बढ़ गई हैं, 500 लड़कियां आगे बढ़ गई हैं, 300 ऐसी हैं जो मार्केट से भी काम लाके चाहे छोटा सा ही कर रही है वो कर रही है, और 500 ऐसी है जो अपने घर बैठ के ही सिलाई कर रही है, बट कुछ ना कुछ कर रही है, उनके अंदर जज्बा निकल के आया है कुछ करने का।
1: बहुत बढ़िया फरा, आपकी आपकी स्टोरी सुन के और आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के मुझे ऐसे लगता है कि आप इतनी खुश होती हैं उसका आउटकम बयान करके कि आपकी मेहनत कैसे रंग ला रही है। और अभिदा, आपने जो 400 लड़कियों को और उससे भी ज़्यादा लड़कियों को सिलाई सिखाई है, तो वो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं क्योंकि उनके जो फैमिली है उनको घर से बाहर तो जाने नहीं देती है। तो सीखने के बाद जो फरह ने बताया है वो आपके एरिया में भी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, लड़कियां बहुत आगे बढ़ सकती हैं, अपने डिजाइन्स को प्रमोट कर सकती हैं। तो क्या अभी ऐसी कुछ शुरुआत हुई है या नहीं हुई?
2: जी मैम, मैं हमारे सेंटर में 10-12 लड़कियों ने ग्रुप कराया था, जिसमें हमने प्रोडक्शन तैयार किए थे, लड़कियों ने आपस में ये ग्रुप बनाकर उसमें पैसे जमा किए और फैब्रिक लेकर आए, लेस वगैरह लेकर आए, और मैंने उनकी हेल्प की डिजाइन करने में, लड़कियों ने कुर्तियां डिजाइन की, प्लाजो दुपट्टे वगैरह डिजाइन किए, तो उन्होंने ऑनलाइन के जरिए अपने प्रोडक्ट सेल भी किए हैं काफी लड़कियों ने, और अभी कर भी रही है, उनको काफी अर्निंग भी हुई अच्छे से और लड़कियों को कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा। एक दो लड़कियां ऐसी थी जिनकी शादी फिक्स हो गई थी और वो करना नहीं चाहती थी, उन्होंने मुझसे बात की कि मैम हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनके पेरेंट्स से बात की, जब आपके बच्चों ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग ली है, सिलाई के साथ साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, तो आप घर में घर से नहीं निकलने दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर के अंदर ही अपनी लड़कियों को सपोर्ट कीजिए। तो घर वालों ने उनको सपोर्ट किया, लड़कियों ने बस हफ्ते में एक दो बार मेरे पास आ जाया करती थी ताकि मैं उनके हेल्प कर दूँ, उन्होंने घर से ही काफी प्रोडक्ट बनाए और सेल करे, और अभी भी लड़कियां कर रही हैं, काफी लड़कियां कर रही हैं।
1: वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और मैं फरह को बोलूंगी कि अबिदा के साथ मिलके यहाँ भी ग्रुप्स बनाए और लड़कियों को ऑनलाइन सेलिंग की ट्रेनिंग दे, बिकॉज ये हमारा कोर है। कोर इसलिए मैं बोलूंगी कि रीड इंडिया का मॉडल ऐसे ही है कि हर लड़की को सक्षम बनाना, हर लड़की को बताना कि वो अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो सकती है, और होलिस्टिक डेवलपमेंट। जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसकी एजुकेशन में कैसे वो आगे बढ़ सकती है, अपने हुनर को कैसे आगे लेके जा सकती है, अपनी इज्जत कैसे कमा सकती है समाज में, फैमिली में और सोशल मीडिया अब हमारे लिए एक कंपल्शन बन गई है, बिकॉज कोविड ने हमें सोशल मीडिया के बारे में भी कंपेल कर दिया है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं और लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, और इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बोलूँगी कि हम बहुत सारे ऐसे ग्रुप बनाएं और उनको हम सपोर्ट करें काम करने के लिए, और हम एक इतना बड़ा कलेक्टिव एंटरप्राइज खड़ा कर दें रामपुर एरिया में कि सब लड़कियां मिलके इसको आगे लेके जाएं। और रीड इंडिया की गुड विशेस भी हैं, और रीड इंडिया अभी कंटिन्यू कर रहा है प्रोग्राम, और इस थोड़ी सी ड्यूरेशन के अंतर्गत मिलके हम कैसे एक बड़ा उद्योग शुरू कर सकते हैं, ये आप अपनी सोच बनाइए और बहुत सारी लड़कियों को उसके साथ जोड़िए, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और आपके अंदर जो जज्बा है वो जज्बा भी आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा। मैं अभी थोड़ा सा टॉपिक ट्विस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं सिलाई की और कैसे हम अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं या कुछ, क्या कभी आपको ऐसे लगा है कि अच्छे डिज़ाइंस की कमी है और आप हमें बताएं? और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि किस तरह के वहाँ पे डिमांड आती है ड्रेसेस की या कुर्तीज की, या किस तरह के कपड़े वहाँ पे लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उस तरीके की सिलाई आना भी बहुत ज़रूरी है, और क्या वो जो डिमांड है आबिदा और फर्रा उसको पूरा कर पा रहे हैं या उनको कोई चैलेंजेस फेस होते हैं?
0: यहाँ पर जो डिमांड है मैम, ज्यादातर प्लाजो कुर्ती की ज्यादातर डिमांड आती है लड़कियों के लिए और गरारों की, कि पार्टी वियर में अगर वो जाती हैं तो वो गरारे बहुत ज्यादा चल रहे हैं यहाँ पर, और अगर वो सिंपल घर में भी पहन रही हैं तो प्लाजो प्लाजो और गरारे बहुत यहाँ पर चल रहे हैं। बट हमारे वहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ टीचर बहुत ही मतलब अच्छी हैं और इनको सारी ही चीजें आती हैं। हमें कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट से कुछ स्विंग करवाना हो या फिर कोई स्विंग के लिए यहाँ पर लेकर भी आता है तो हमें वापस भेजना हो, क्योंकि हमारी जो टेलर हैं और जो भी हमारी आबिदा स्विंग टीचर हैं बहुत अच्छे से उनको मैनेज करती हैं, और पटवाई में भी फातिमा है, और जो चीज उन्हें नहीं आती है वो उसकी ट्रेनिंग लेने की भी कोशिश करती है। जैसे यूट्यूब पे हमारा बहुत अच्छा है कि हम कभी भी यूट्यूब पे कुछ भी डाल के देख सकते हैं। हमने इन्हें यही बताया है कि कभी भी उस चीज के लिए ना नहीं करो, अगर हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया है या फिर कोई भी चीज स्विंग के लिए आया है या फिर कोई सिलवाने के लिए आया तो उसको ना नहीं करना है, चाहे भले ही आपको नहीं आता हो तो उसकी ट्रेनिंग लो, उससे मतलब सोचो कि हमें कैसे करना है। आज आप एक को मना करोगे कल फिर दो नहीं आएंगे तीन नहीं आएंगे, इससे हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो चाहे आप उसकी ट्रेनिंग लो या आगे बढ़ो या फिर आपके अंदर जो भी कमी है उसको पूरा करो, हमारे वहाँ जो भी आएंगे उसको मना नहीं करो, जाना नहीं चाहिए यहाँ से।
1: बहुत बढ़िया फरा, आपने बताया कि ये भी एक नेटवर्क बनाने का टेक्निक है कि किसी को मना नहीं करना है, और हमारा इसी तरीके से नेटवर्क भी बढ़ता है। अभी तक आपने लड़कियों को क्या क्या सिखाया है, थोड़ा उसके बारे में भी बताएंगे?
2: पहले मैं बेबी फ्रॉक से करवाती हूँ, बेबी क्रॉप्स वगैरह अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उसके बाद कुर्ती सलवार और डिजाइनिंग, फिर उसके बाद डिजाइनिंग नेक वगैरह, ये काफी पसंद है यहाँ पर, काफी डिमांड आती है इस चीज की। लड़कियाँ बस यही कहती हैं मैम हमें सिलाई के बाद अच्छे से हमें नेक डिजाइन सिखाइए, नेक डिजाइन लड़कियों को काफी पसंद आते हैं, और ब्लाउज पेटीकोट फरारे और पटियाला सलवार, ट्यूलिप सलवार, धोती सलवार, और यही सारा कुछ, साड़ी में फॉल लगाना, ब्लाउज वगैरह करना, और लहंगा और शादियों के गरारे और चुनिया तैयार करना, ये सब हम सिखाते हैं।
1: वेरी नाइस, तो आपने पूरा ही एक कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जो नहीं सिखाई, मेरा ये कहने का मतलब है, और बहुत अच्छे से सिखाई है। और क्या हम जरी जरदोजी को और सिलाई को मिक्स करके बना सकते हैं कुछ ऐसे ड्रेसेस, या आप ऑलरेडी बना रही हैं?
0: जैसे अभी जरी वर्क के हमने कुशन्स कवर बनाए थे तो स्विंग इन लोगों ने ही की थी, और अभी जैसे कुर्तियां मैंने भेजी थी ऑफिस में तो जो मैंने जरी वर्क का करवाया तो स्विंग इन्होंने की, बट ये हो जाता है कि हम लोग यहाँ से जरी वर्क करवा रहे हैं और ये लोग हमें स्विंग करके देते हैं।
1: वेरी नाइस वेरी नाइस, तो एक तालमेल बैठता है। जरी वर्क जो है, आप तो शादी के लहंगे से लेके बहुत भारी दुपट्टे से लेके एक नेक लाइन पे भी जरी करते हैं। ये जो आर्ट है ये बहुत कमाल का है और इसको भी हम सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि जो लहंगे जहाँ तक मुझे पता है जो भी करोल बाग में या चांदनी चौक में लहंगे मिलते हैं वो सारे ज्यादातर रामपुर से भी बनकर आते हैं और लड़कियां बहुत इसमें अपना कौशल दिखाती हैं कि कैसे अच्छे बना सकते हैं। और जो दुपट्टे बनाती हैं आप, जाल वाले दुपट्टे या बॉर्डर वाले दुपट्टे या अलग से बॉर्डर भी डिज़ाइन कर देती हैं और ऐसे गले में भी काट देती हैं डिज़ाइन थोड़ा सा करके, तो ये जो हुनर है इसको बहुत आगे जाने की ज़रूरत है। और कैसे हम इसको आगे लेके जाएं, ये एक टीम वर्क होता है, जैसे अबिदा है, फरा है, अकबर है और भी बहुत सारा एक टीम है आपके पास, इसको आप आगे ले जाने की प्लानिंग करें, सोचें कैसे करेंगे, तो फिर पीछे मुड़ के देखने की कभी भी आपको अपनी जिंदगी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये काम तो कभी भी बंद होने वाला नहीं है। अभी ये हमारा पुश्तों से चलता आ रहा है, आज आप कर रही हैं और आगे भी इसको ले जाने वाले बहुत आपको मिल जाएंगे, तो इसको आप बनाए रखिए, आगे लेके जाइए। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रीड मॉडल का एक कंपोनेंट है वो एजुकेशन। अभी अबिदा ने भी बोला, फरा ने भी बोला, अबिदा ने भी अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करी, फरा ने भी कंटिन्यू करी, ये हमें पता। और आपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी दिए कि लड़कियां अपनी फीस खुद भर के अपनी एजुकेशन को आगे लेके जा रही हैं, पर एक बात का ध्यान आप रख भी रही हैं और आगे भी रखेंगी कि जितनी भी लड़कियाँ यहाँ पर आके स्किल्स की ट्रेनिंग लेती हैं वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगे और अपने बच्चों की पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में एजुकेशन की डिग्री तो चाहिए चाहिए पर डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल लिटरेसी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिसको कंप्यूटर या लैपटॉप या फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन चलाना नहीं आता है वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम पर पिछड़ जाएगा। और उसकी भी हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपके यहाँ पे कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि उस ट्रेनिंग में कितने लोगों का इंटरेस्ट है, रुझान है और कैसे हम इसको स्केल कर सकते हैं इस ट्रेनिंग।
0: ऑनलाइन वाली ट्रेनिंग को नाम है?
1: ऑनलाइन ट्रेनिंग को टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर सीखना, लैपटॉप में सीखना, काम करना, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना और आगे बिजनेस को भी लेके जाना, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो एक टूल है और उस टूल को हम कैसे यूज करें जिससे हम अपनी बात भी रख सके, जैसे ऑडियो विजुअल की ट्रेनिंग है, लैपटॉप को यूज कर सके आगे एजुकेशन और ट्रेनिंग करने के लिए, कैसे सोशल मीडिया को यूज कर सके फोन के द्वारा, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इन सब चीजों का और आपके हुनर का तालमेल बैठना आने वाले समय में बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता था कोविड आ जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। और जो 2 साल हम पीछे रह गए हैं उस 2 साल की जो टाइम है उसको भी पूरा करने की बहुत ज़रूरत है, तो डबल मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वो मैं जानना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी में कितना रुझान है लोगों का?
0: टेक्नोलॉजी में मैम ज्यादातर रुझाव नहीं दिखा पाती हैं लड़कियां, उनको बहुत समझाना पड़ता है। ज्यादातर वो सोचती हैं कि हमें स्विंग आ जाए तो हम अपने घर पे बैठ के सिलाई करते रहें, जो भी हमें 100-200 रुपए घर के आस पड़ोस के कपड़े आ जाएं या फिर थोड़े से गांव के दूर के आ जाएं, हम यहीं पर करते रहें। बट जब उनसे बात करते हैं कि हम इस चीज से बहुत आगे तक जा सकते हैं, आप ये सूट सिल के आपके घर में ही मतलब 2-3 लोगों को अर्न कर सकती हो, यही आप अगर टेक्नोलॉजी के जरिए बेचेंगी तो दिन में 10 सूट, 15 सूट, 20 सूट, 50 सूट, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी तो 100 सूट भी बेच सकती हैं। तो हमें उन्हें बहुत ज्यादा समझाना पड़ता है और उनसे कहना पड़ता है कि इसमें ज्यादा रुचि मतलब अपनी लगाइए। और जैसे ही अभी लॉकडाउन में सारी चीजें आप लोग फ्लिपकार्ट से मंगा रहे थे, हमें उनसे ये भी बताना पड़ता है, हम किसी दुकान पे भी नहीं जा पा रहे थे कोई भी चीज लेने के लिए, तो हमें क्या याद आ रहा था, सिर्फ ऑनलाइन की हर चीज याद आ रही थी कि हमारे पास क्रीम नहीं है तो हम ऑनलाइन पे कर दें, या फिर हमारे फोन में बैलेंस खत्म हो गया तो हम ऑनलाइन पे करेंगे, या फिर हमें घर में कोई भी खान पीने की चीज चाहिए तो हम ऑनलाइन मंगाएंगे। तो हर चीज का जरिया कहाँ था? ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन वाले ये सोचते कि हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे तो हमारे पास कोई जरिया नहीं रहता, और वो ऑनलाइन जो हम मंगा रहे थे वो भी नहीं मंगा पाते। तो हम हर लड़की को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर इतना अच्छा हुनर है, इतना अच्छा काम है, तो आप बस सिर्फ इसको आगे बढ़ाइए, अपने चाहे फोन से बढ़ाइए, कंप्यूटर है यहाँ पर रीड इंडिया ने इतने सारे कंप्यूटर लैपटॉप दे रखे हैं, आपको सिखाया भी है कि किस तरीके से हम टेलिंग कर रहे हैं, हम सब आपके साथ भी हैं। तो बस हमें बहुत ज्यादा उन्हें यही समझाना पड़ता है कि इसमें आइए, वो ऑनलाइन में आने में बहुत ज्यादा घबराते हैं, आते हैं बहुत कम रुचि दिखाते हैं।
1: पर फरा, अगर हम अगले 6 महीने इसके ऊपर फोकस करें और मेहनत करें, और मुझे लगता है कि जब आपने इतने पड़ाव पार कर लिए, और ये पड़ाव कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप जरूर कर पाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अभिदा, थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचती हैं, कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। फरा का फ्यूचर तो हमें पता है कि फरा अब पीछे मुड़ के नहीं देखेगी, फरा के प्लान्स, फरा के थॉट्स बहुत क्लियर हैं। और आज मेरे को ये कहते हुए भी खुशी होती है कि फरा हमसे भी आगे निकल गई है, और फरा इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देती हूँ। और अमिता, आपके क्या प्लान्स हैं?
2: मेरे प्लान यही है कि मैं आगे और आगे बढ़ूं। अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो हूँ रीट के जरिए हूँ और मैं रीट के साथ ही जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि रीट इंडिया जैसे मेरा परिवार है, मुझे सपोर्ट किया हर तरीके से, ऐसे ही मुझे रीट इंडिया हमेशा सपोर्ट करे और मैं रीट इंडिया के साथ ही जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। मेरी शादी फिक्स हो गई थी लेकिन मैंने खुद से फैसला किया घर वालों से कि मुझे अभी शादी नहीं करना है, मुझे अभी आगे और बहुत कुछ करना है और अपना नाम अच्छी तरीके से रोशन करना है। जैसे मुझे मेरा यहाँ मोहल्ला और पड़ोस जानता है, मैं चाहती हूँ कि पूरा शहर मुझे अच्छे से जाने, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं आगे बुलंदियों तक पहुंचूँ और रीड इंडिया का नाम रोशन करूँ और अपने ख्वाब पूरे करूँ, अपने और अपने घर वालों।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अबिदा, मैं थोड़ा सा इधर अगर बात करूं तो यूएन ने कुछ गोल्स डिफाइन करे हुए हैं, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब ये है कि हम इस तरीके से आगे बढ़ें कि हमारे प्रोग्राम्स सस्टेन हो जाएं। जैसे एजुकेशन है, आप एजुकेशन पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट है, आप तो रोल मॉडल हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। जब लाइवलीहुड की बात करते हैं तो लाइवलीहुड आप बहुत आगे लेके जा चुकी हैं। देखिए, अगर हम गांव की स्थिति को गांव से ही कंपेयर करें तो आप एक बहुत अच्छे मकाम पे पहुंच चुकी हैं। कभी भी आंकड़ों को अर्बन और रूरल से जब हम कंपेयर करते हैं, वो रिसर्च के लिए होता है कि कैसे हम और डेवलप कर सकते हैं। बट अगर हम गांव के आंकड़े गांव के लेवल तक ही एनालाइज करें, तो अगर आप 3,000 या 5,000 या 10,000 कमा रहे हैं तो बहुत बढ़िया कमाई है। इसको आप कभी भी शहर की कमाई के साथ कंपेयर नहीं करिएगा, नहीं तो आपके माइंड में हमेशा यही रहेगा कि हम कुछ भी नहीं हैं। आप बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ कर रही हैं, और आगे बहुत कुछ करने का जज्बा भी रखती हैं। और जो मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आप नोइंगली अननोइंगली उनको ग्रास रूट्स पे इस तरीके से एड्रेस कर रही हैं कि डेवलपमेंट है जो वो रूट से हो रही है, और जब रूट मजबूत होती है तो उसको कोई भी उखाड़ के फेंक नहीं सकता उस पेड़ को, और उस पेड़ पे फल लगने ही लगने हैं, और उस फलों का जो जो उसका फायदा है वो बहुत सारे लोग जो जिसको हम समाज कहते हैं, जिसको हम सोसाइटी कहते हैं, वो उनसे कलेक्टिव फायदा उठाते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और आपको सैल्यूट भी करूंगी कि आपने अपनी लाइफ में जिस तरीके से मेहनत की, जैसे मेहनत करके अपने सरकमस्टांसेस से आप बाहर आए, ऐसे आगे चल के बहुत सारी औरतों को सिखाएं और बहुत सारी औरतों को अपने साथ जोड़ें, उनके बच्चों को पढ़ाएं, उनको बताएं कि आने वाले टाइम पे एजुकेशन भी बहुत बहुत ज़रूरी है। जो चैलेंजेस आपने अपनी लाइफ में फेस करे हैं, आने वाली जनरेशन उन चैलेंजेस को फेस नहीं करे। तो इसी मैसेज से मैं इस कार्यक्रम को कंक्लूड करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।

0: नमस्कार। आज हम मेवात की बात करने जा रहे हैं और मेवात में जो रीड इंडिया का प्रयोग है उसका बात करने जा रहे हैं। और बात करने के लिए हमारे साथ हैं रीड इंडिया की कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर गीता मल्होत्रा जी। फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेवात। मेवात इज ए लोकेलिटी वेयर मेवातीज मोस्टली मुस्लिम्स आर लिविंग। This locality is just 35 kilometers away from Gurgaon, the mega city, and 50 kilometers away from Delhi, in the most developed, growing industrial state of Haryana. And if you go to that state, people are in a pathetic conditions. Most of the truck drivers, the maximum truck drivers that we have, are from Mewat. The rate of illiteracy is very high. Women are not allowed to go to the school and do the proper schooling. The situation of male literacy is also not very prominent. There is a complete sense of ignorance. People don't know how to do, what to do. And there is an inherent history of Mewat. They were the warriors. They fought against the Mughals. And Mughals didn't take care of them. They thought that they are the warriors, they are the looters, they are the nefarious people, they are not the good people, so they were always sidelined by the Mughals. Then came the British. They were the real freedom fighters. You can find many villages in Mewat where in one mound 30-35 men were buried because they were the freedom fighters. In 1857 and also in the later phase of Indian freedom movement, if the Mewat is being properly studied, explored, if the historians are taking interest into it, then you will realize the role of Mewat in the freedom struggles. There are many people in Mewat who often call me and say, Misra Sahab, बहुत सारी चीजें खत्म हो रही है, आप उनके बारे में कुछ कर लो, गीता मैम कुछ कर ले, नहीं तो सारे चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर आप क्या करोगे। एंड बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस वी डू व्हाट एवर मैक्सिमम वी कैन डू इन दैट मेवात। रीड इंडिया अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ डॉक्टर गीता मल्होत्रा इंटर्ड into that locality where women were not even allowed to talk with the women. The every person outsider was kind of alien for them. They were not allowed, even the male were not allowed to have, you know, proper interactions with them. And with this situation, Dr. Gita Malhotra with her team went there and they have two things to convince them. Culture matters, number one, and understand that, respect that nativity, the native cultures. With these two things, they motivated the people. They said, we are not outsiders. They ate together. They talked together. They could somehow manage to convince them that we are not alien. We are an insiders. We have come here with the message to improve your lifestyle, the way you want to improve yourself. And that was the power of Dr. Gita Malhotra and the entire team of Reed India and the Reed Global. They changed the world. How do they change the world? That is also a very interesting, Dr. Gita ji will tell you. But I must tell you, after 1 year and so, they happily agreed to donate the land and they themselves constructed the library. Reed India paid the cost of the library, not the land. And some of them also contributed significantly, nominal, but that contribution was significant. And then the library was made, women started reading. Now the women which were motivated by Read India, they are the representatives of the Gram Panchayat and they are powerful women. And the new beginning was made and prevalence of Read India can easily be found in the locality of Mewat. Mewat is now divided into two districts. Initially, it was a Mewat district. That was Firozpur, Jhirka, Nuh, Tavru, Punahana, Hathin and Nagina. Now the Hathin part is in Palwal district and remaining is in you know the Mewat district. So before I go to invite Dr. Geeta Malhotra ji to talk about her experience and experience of Read India, her innovations and everything that she did. Now, without any delay, I would request Dr. Geeta Malhotra, the country director of Read India, the visionary, the leader, the master. She is a proper leader who works 24/7. And this is, I remember one thing, I am not exaggerating. I have been feeling her commitment. I am the witness from last 12 years, what she has been doing and how she has been motivating, energizing, emotionally evaporating the people who have been working with her. So, Geeta ji, aapka bahut bahut swagat hai. Humne chaha tha ki log jo hai, wo dekh le ki aap kaise karti hai. Aapka presence, I have seen people is teaching their vision, decision and future. I have seen women reading and writing. I have seen women, you know, using the library. I have seen people using the computer. I have seen women reading. So, you know, this is a new discovery that you have created. Please.
1: Thank you. Thank you, Dr. Mishra, for such a elaborate description, which I don't need at all. But I'm so thankful to you for giving this gesture to me. You know that I am very simple, very introvert person, but I do believe in doing. I do believe in action. That's what you have narrated. Thank you so much. मेरा जो सोच है आप मुझे अपने 5 मिनट की एक्सप्लेनेशन में 2012 में ले गए मुझे 2012 में जब मैं रीड ग्लोबल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और रीड ग्लोबल के साथ बात कर रही थी 2012-14 कुछ ऐसे ही है मुझे पक्का याद नहीं है बट हाँ 7 साल पहले की बात है मुझसे टीना शाबिका हमारी उस समय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी शी वॉज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दैट टाइम एंड द ईयर शी ज्वाइंट शी केम टू चाइसा विलेज टू डू द स्टोन लिंग सेरेमनी ऑफ द कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर शी केम इन मे इट वॉज वेरी हॉट एंड आई टुक हर टू चाइसा फॉर स्टोन लिंग सेरेमनी But before stone laying ceremony, she asked me that Geeta, one of my very close friend settled in Singapore would like to dedicate one of the library in her mother's name. Her mother was live. She's live now also. But she said, "Ki I would like to build a community library, but let me know the area, the geography, who need the most." That time back home, I was interacting with Mewat people, the stakeholders there. And Asif Ali, who was the sarpanch that time, came to my house in Gurgaon and said that Geeta ji, we need the most. Hamari community ko bahut zarurat hai. Agar aap wahan aake study karein, जो डॉक्टर मिश्रा ने स्टडी करी तो आपको पता चलेगा कि कितनी जरूरत है तो आई वॉज कन्विंस्ड आई विजिटेड द एरिया आई सैट विद हिम आई सैट विद अदर मेवाती स्टेक होल्डर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज हाउस द लैंड आई वॉज द ओनली वुमेन ऑल वर मैन बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट that I have to come back again in this area. I have to work in that area. Mujhe wahi kaam karna hai. Mujhe unhi logon ke saath kaam karna hai. Because one thing which I experienced, because I am a great observer for culture and attitude of the people, they gave me lot of respect. Lot of respect. First time, the woman came in one room, they gathered. They did not come out where I was sitting with the stakeholders. They told me later on that the women are waiting inside the room. When I went inside, there were more than 100 women sitting in just in each other's on each other's lap, and they welcomed me. They said, "Hum aapko dil se swagat karte hain aur aapka bahut bahut welcome hai. Aap hamare liye, hamare bachiyon ke liye, hamare bachchon ke liye, hamare samuday ke liye kuch kariye." That changed my mind 100%. I said, whatever challenging it would be, but I have selected a community. Next very day, I called my executive director in US and said, I have found a community where I would like to set up a community library and resource center. Then I started working there. And that Singapore friend of my executive director committed that she will come on the inauguration of the building, which was great, great emotional attachment with the building, which I'm going to show you the inauguration also. Then we did the stone laying ceremony. Asif Ali had a house on the main road of Hathin block in Chansa village. He said, ma'am, the whole land, whole building is for you. You decide what you want to take. Then I said, okay, main road part I will not take because the children will come. It will be risky for them to cross the road and come through the main road because it was part of the highway. I said, give me the backyard. And he divided completely half of his land. उन्होंने वो प्रोग्राम देख भी रहे होंगे जरूरी, मैंने उनको लिंक भेजा है. एंड ही वो इतने जेनरस थे, मैं ये एक्नॉलेजमेंट हिंदी में बोलना चाह रही हूँ उनके लिए. वो इतने जेनरस थे, उन्होंने अपने प्लॉट की जो लंबाई थी उसको बिल्कुल आधा करके उसमें दीवार बना दी और बोला, ये पीछे वाला लैंड आपका, आप जो मर्जी करिए, आप बिल्डिंग आप सेंटर बनाइए, मेरी 100% सपोर्ट आपके साथ है. तो दैट वॉज द कमिटमेंट ही गेव मी एंड आई वॉज सो कॉन्फिडेंट एंड ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन एरिया. मैं मिस्टर आर एस दलाल का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी इस फोरम पे, क्योंकि ही वॉज द वन हु एनकरेज्ड. ही इज द रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर ऑफ हरियाणा. व्हेन बिफोर द बिल्डिंग वॉज यू नो इनॉग्रेटेड, आई वेंट टू हिम एंड आई सेड, सर आपके एरिया में हमने एक कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर बनाया है और मैं आपको इन्वाइट करने आई हूँ कि आप उस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करिए. एंड ही वेलकम दिस अपॉर्चुनिटी और उन्होंने बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया और दैट वॉज द जर्नी वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड दैट वॉज ग्रेट ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड फॉर अस बिकॉज एट द बैक ऑफ अस उनका हाथ था, उनका आशीर्वाद था, उनकी सपोर्ट थी और आज तक हर रोज जो एक मैसेज वो नहीं भेज लेते हमें एनकरेजमेंट का, वो आराम से नहीं बैठते हैं. तो मैं उनकी एसोसिएशन को यहाँ पे एक्नॉलेज करना चाहती हूँ. और उन्होंने खाली हथीन ब्लॉक में हमारे सेंटर को इनॉग्रेट नहीं किया, हरियाणा में हमने जितने भी सेंटर बनाए हैं उन्होंने उनको इनॉग्रेट किया है, क्योंकि वो दिल से बोलते हैं, दिल से वो रीड को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ग्रास रूट्स की के साथ जुड़ी हुई एक संस्था है जो काम करती है और लोगों को साथ लेके चलती है, लोगों के दिलों तक पहुंचती है अपने कार्यक्रम से, ये वो बहुत अच्छे से जान गए हैं. तो डॉक्टर मिश्रा अलोंग विद यू आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज Mr. R. S. Dalal on this platform because he supported us a lot and till today he is supporting us. So, aapne launch
0: mein... He's a doubling star. He is a bubbling star, an energized, you know, he is an energizer. He is emotionally charged. He makes you work and work for the community. That is the power that we have learned from him. He has donated his entire Haveli for the Eid activities, you know.
1: तो झज्जर उन्होंने कैसे हमें अपनी पूरी हवेली दे दी कि गीता जी एक सेक्टर मेरी कम्युनिटी के लिए भी बना दीजिए. तो दैट इज जेस्चर ही एक्सटेंडेड टू अस अंटिल नाउ ही इज वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग दैट झज्जर विलेज, मेहंदीपुर विलेज, दबोदा विलेज अ ब्यूटिफुल विलेज वेयर वन कैन गो एंड इवन यू नो स्पेंड डेज टुगेदर. The community is so, you know, welcoming, and the plants, the gardens he has created there, it's worth visiting that place also. So, main yahan pe ye bhi kehna chahungi ki Read India ke jitne bhi center hain, wo community tourism ko bhi support karte hain, because home stays are welcomed there by the communities, and we always make it a point that people come there and होम स्टे तो है ही है, पर जो खाना वो लोग हमें परोसते हैं, जो खाना हमें वो खिलाते हैं घर में बिठा के, घर में फ्रेश खाना कुक करके, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी वेलकमिंग आई शुड से दैट. और आसिफ अली जी के घर में तो मैंने कम से कम 100 बार ही खाना खाया होगा. उनके घर में उनकी वाइफ को मैं नहीं मिल पाती थी, पर उनके ड्रॉइंग रूम में बैठ के खाना जरूर खाती थी. इतना तो मैं कह सकती. और मैं वेजिटेरियन थी और उनके घर में तो नॉनवेज इट्स अ कल्चर देयर, आई शुड से दैट इट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर. बट व्हेन आई यूज्ड टू गो विद माय टीम, स्मिता राय, नाहिद जुबेर एंड अदर्स, ही मेड इट अ पॉइंट कि दो डिशेस तो वेजिटेरियन होनी ही हैं, क्योंकि स्मिता और मैं दोनों ही वेजिटेरियन थे. तो ये हमारी बिगनिंग थी मेवात में चाइसा के सेंटर के साथ. और अभी डॉक्टर मिश्रा, यू कैन से समथिंग अबाउट द बेसलाइन.
0: जब आपने मुझे बोला कि डॉक्टर मिश्रा हमें मेवात में काम करना है, तो मेरी एक आईएएस फ्रेंड हुआ करती थी डॉक्टर निरुपमा, अनुपमा. तो जो डॉक्टर अनुपमा थी, शी वाज एन आईएएस ऑफिसर और शी वाज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मेवात डेवलपमेंट एजेंसी, व्हाट यू कॉल इट, एमडीए. और उस समय बाद में जो भारत के उपराष्ट्रपति बने अंसारी साहब, उनकी पत्नी भी मेवात में कुछ काम करना चाह रही थी. सी ऑल्सो टोल्ड मी, डॉक्टर मिश्रा, लेट अस गो टू मेवात एंड डू समथिंग देयर. मैं दोनों के साथ मेवात गया और मैं आपको और अपने दर्शकों को बहुत ही विनम्रता और निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक कहना चाहता हूं कि मुझे हिम्मत नहीं हुआ मेवात में काम करने का. लेकिन जब डॉक्टर गीता जी हमको बोली कि डॉक्टर मिश्रा हमें मेवात में काम करना है, तो पता नहीं मुझे कहाँ से एनर्जी मिली और मैंने कहा कि मैम लेट अस वर्क देयर. और हम वहां गए. जब हम वहां गए तो मैं एक महिला से मिला और वो महिला अनाज को हिला रही थी. उस महिला के साथ उसके 17 बच्चे थे, जो फोटोग्राफ मेरे पास है. तो और And she was expecting one more baby. उसके बाद मैंने देखा वहां का सिचुएशन, वहां की गंदगी देखी, वहां का बहुत सारे चीजों को हमने देखा. Then I realized कि ये एरिया है जहां पर काम करने की जरूरत है. हमने उनके नमाज में भाग लिया, उनसे दोस्ती की और हम वहां पे काम करने लगे. शुरू में थोड़ा सा हुआ, लेकिन बाद में वो हमें इतने प्यार करने लगे, खास करके अशरफ जी, आसिफ जी और सारे लोग, पूरे गांव के लोग, महिलाओं को, वहां के लोगों को, वहां के बच्चों को, स्कूल के शिक्षकों को, उनको लगा कि ये लोग अपने लोग हैं. और हमने उनकी सारी जानकारी ली. वहां पे हर एक घर में 2-4 भैंस है और एक जो दूध वाला होता है जिसको दूधिया कहते हैं, उनसे भी उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था. उनके दूध को बहुत ही थ्रो अवे प्राइसेस में खरीदते थे. हमने सारा रिपोर्ट इसमें क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है. उसके बाद जो गीता जी ने कहा कि एक प्रपोजल आया और वो प्रपोजल 2011 में ही आ गया था मैं, और 12 में वो बन गया था. तो वो प्रपोजल आया और गीता जी वर्क डे एंड नाइट वो एक विजन ही कह सकता है कि अगर कोई दूसरा कंट्री डायरेक्टर होता तो रोड के साइड का ही जगह ले लेता। लेकिन गीता जी एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि ये इन्होंने कहा कि हमें रोड के साइड का जगह नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? मदर वॉज हिडन इन साइड हर एंड द मदर से लुक, बच्चे एक्सीडेंट में कुछ हो सकता है, बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो पीछे का वहां भी रास्ता है, पक्की रास्ता हो गया है लिया और वहां पे काम शुरू करने लगे। बाद में धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट मिला और लोगों ने ये महसूस किया कि रीड जो है ये रीड कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, कोई धर्मांतरण की संस्था नहीं है, कोई पॉकेट की संस्था नहीं है, यह कमिटमेंट की संस्था है। इस संस्था में ज्यादातर महिलाएं हैं जो बहुत मातृस्नेह के भाव से काम करना चाहती हैं। और वैसा ही जिस तरह से ये कहने की तो जरूरत है कि गीता जी ने बहुत ही मातृभाव से अपनत्व को लगाते हुए वहां पर काम करना शुरू किया, लेकिन उनका जो रिस्पॉन्स था उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। और उससे हमें ये लगता है कि इफ यू वर्क ऑनेस्टली नो मैटर, आप दुनिया के किसी भाग में काम करें, लोग आपको उसी समर्पण से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको गिव बैक आपको मिलेगा, आपको रिटर्न मिलेगा। वो जो कंसेप्ट था वो गजब कंसेप्ट था और वो आपने देखा।
1: ओवर टू स्मिता। थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर मिश्रा। एज राइटी सेड, इट्स अ वेरी वेरी रिच कल्चर इन दिस कम्युनिटी, वेरी वेरी वार्म वेलकमिंग कम्युनिटी। As shared in the PPT, there are many, many programs that we have done in partnership with this community. We have done the setting up of community library and resource center. There are many, many women who have been trained on livelihood skills. Then we've had trainings on as advanced computer skilling. This was done through Adobe IT skilling program for youth. Then since past 4-5 years, we have been doing Skills to Succeed program in this area and skilling women on enhancing their livelihood skills. We are having programs for mother and girl child literacy in this community. So each household have one mother and her girl child get coming to the center and walking towards a more literate future. So this is beautiful Mevat for us. As far as culture is concerned, they have very beautiful crafts such as they make changeris, the baskets made out of moonj grass. This grass is eco-friendly and it helps in keeping. They normally use it to store food. Like, we have covered more than 12 villages as Kamlesh is rightly.
2: Thank you, Smita. जैसा कि स्मिता ने कहा, लिटरेसी से लेके बच्चों की पढ़ाई से लेके महिलाओं की पढ़ाई तक हमने काम किया। महिलाओं को हमने सक्षम बनाया, उनकी जो कल्चरल स्किल्स थी उसको एनहेंस किया। और कल्चरल स्किल्स को एनहेंस करने के लिए अब रीड तो बहुत छोटी सी संस्था है, तो हमने सृष्टि स्कूल ऑफ डिजाइन से ग्रेजुएट्स मंगवाए जो डिजाइनिंग ग्रेजुएट्स थे, और उन्होंने मेवात में लाइब्रेरी में रह के रात को वहीं बिस्तर बिछा के सोना और महिलाओं के साथ चर्चा करनी और महिलाओं के जो हुनर था, जो छिपा हुआ हुनर था, उसको उभारा। और उन्होंने इतने सुंदर प्रोडक्ट्स बनाए जो दरी था और तापर से उन्होंने बास्केट्स और बहुत सारे हमारे गिफ्ट आइटम्स बनाए जो हमने कॉर्पोरेट्स को गिफ्ट दिए, बिकॉज हमें फंड रेज भी करना था और मेवात के लिए फंडिंग लेना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। पर मैं उन डोनर्स का भी शुक्रगुजार करती हूँ जिन्होंने हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस को, हमारे कमिटमेंट को रिकग्नाइज किया। और सीरीज ऑफ डोनर्स आए जिन्होंने हमें अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं मेवात में काम करने के लिए। तो ये एक मैं ये भी शेयर करना चाहूंगी, बिकॉज वर्क स्पीक्स वॉल्यूम। जब हमने काम किया, डोनर्स ने अप्रिशिएट किया और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर एक साल का एमओयू साइन होता है और कुछ ऐसे डोनर्स हैं जो हमारे साथ पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं उस एरिया में. बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं मेवात में. मैं सबका बहुत ही मतलब कि आई नो देम वेरी वेल. दे आर डूइंग एंड आई एम अप्रिशिएबल ऑफ देयर वर्क ऑल्सो. बट एट द सेम टाइम गोइंग टू द ग्रास रूट्स, catching their culture, understanding their attitudes and bringing value to their lives was what Reed has done. These are the 3 major achievements we have done in this area. Dr. Mishra, would you like to add something here, what I have said?
0: Without any political motive, you know, yes. Reed has gone there as an organization to work. Without any political motivation, without any political inclination, without any interest. The only interest was to see that people are raising their social economic status, their livelihood. They are well respected people, well educated people, well cultured people. Their culture glory is restored. So these the women are well respected. There is a continuous harmony, you know, visible harmony between men and women, between husband and wife. So these are the things that are clearly visible, tangibly see. People can go and view. You know, that is the USP of working Reed in the Mewat, you know, area. That is really very, very great.
2: Memory goes back when we saw. पावर तो है ही नहीं तो कंप्यूटर कैसे सीखेंगे बच्चे. ओ पावर हाउ दे विल रीड द बुक्स. देन वी रिक्वेस्टेड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन. दे गेव अस अ स्पेशल ग्रांट टू पुट सोलर पैनल्स इन द एरियाज वेयर वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स विद रिगार्ड टू द पावर. सो यू कुड सी इन द फिल्म ऑल्सो वी पुट सोलर पैनल्स ऑन टॉप ऑफ द बिल्डिंग सो दैट 24/7 there is a power in the library and there is no power cuts and the children can come enjoy it there, talk to each other, learn from each other, study the books, and 50% of the books are their own language because we did not want to put the book they cannot touch, they cannot read.
3: बिगावली की रहने वाली हूँ और ताराक्षर में मैं जुड़ी हुई हूँ. मेरे को पढ़ने लिखने में बड़ा मन लग रहा है, अच्छा लगता है. ऐसा है कि हमारे पास में ताराक्षर का अध्यक्ष लेके आए थे सुनील कुमार, तो इन्होंने कहा कि आप पढ़ाई कर लो. हमने कहा ऐसे बुढ़ापे में क्या हो, कौन पढ़ावेगो, कौन पढ़ पावेगो. उसने कहा नहीं जी, कोशिश करके देखो एक बार. तो हमने कोशिश करी तो हमको अच्छा लग रहा है पढ़ने में लिखने में, हमारा मन भी लग रहा है. प्रयोग हम तो हर जगह पे कर लेंगे. कोई हिसाब है, किताब है, घर का धंधा है, घर के बच्चे हैं, घर की पढ़ाई है, काम है, कोई भी दूसरा सब में काम आती है पढ़ाई. मतलब ठीक है क्या ना, हर चीज में आती है. अब छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, उनको भी बैठा के पढ़ा सकते हैं. बच्चे ये है हरप को, इसे पढ़ो, ये पढ़ो, ये करो, वो करो.
4: पहले भैया हमने इसलिए पढ़ा मान पढ़ते तो हमने आवाज दी कि भैया हम पढ़ लिख जाएंगे तो हम बैंक में भी काम करते हैं, चाहे घर पे करते हैं, आदमी का नाम भी लिखने सीख जाते हैं, अपनों भी सीख जाते हैं. तो बैंक में जाते अपने पैसा निकाले तो अपने हिसाब करे आते हैं बैंक में जाके. इसीलिए हम भैया के पास पढ़े थे, यही बारे हम अनपढ़ते थे. भैया पढ़ा देंगे तब इससे सीख जाएंगे.
3: मेरा नाम गजना है और हमारे ये भैया आए पढ़ाने के सुखवीर सिंह, और इनने पढ़ाई पूछी कि तुम पढ़ सको. एक बार आए, दो बार आए, तीसरा के हम बोले अब तो हम पढ़ेंगे. जब ये भैया पढ़ाने लगे यहाँ स्कूल खोल दियो तो आगे पढ़ाने.
5: आपको क्या फायदा हुआ इससे?
3: अब हम सीखने लग गए, जो भी हम पे आ गए यहाँ पे देख देख के चैट में. पहले हम पे आ गई ना हो कुछ तो हम नाम भी लिख लें, अब हम अपने काम कर ही ले जाइए. भैया बताऊ
6: सर्वे और पढ़ना चाहते अपने बच्चे ने पढ़ा ले, घर का काम कर ले, कोई काम काज आ जाए उसे कर ले, और सेंटर आ जाए, कोई काम आ जाए. इसीलिए
3: मेरा सीख लूंगी कुछ तो कुछ काम कर बैठूंगी मैं। परेशान आदमी आंगनबाड़ी लग जाए या कुछ सिलाई में लग जाए कुछ भी काम जो तुम खिलाओगे वो हम करने तो जाए।
7: पढ़ाने आवे हम लोग हम ना पढ़े पर दो बार आए तीन बार आए हम बोले हम पढ़ेंगे हमको पहले कुछ नहीं आवे हम नाम भी लिख ले और जो काम दे पूरा काम कर ले।
8: हम पता एन आर भी ना आवे अब तो एन आर ने भी सीख ले। अरे बेचारा आया पढ़ने के सुखवीर पहला को ना भाई लाली पढ़ लियो माता जी पढ़ लियो हम बोले हम ना पढ़े हम अब बुढ़ाते हम कहा पढ़ेंगे तो बेचारा कई बार आया फिर हम पढ़ने लग गए कई सीखो हमने पढ़ना हम पे एन आर भी ना आवे अब तो या भी सीख गए नाम भी सीख गए अपना।
9: मेरा नाम अंता है आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं ताराक्षर में पढ़ती हूँ। पहले इन लोगों ने आकर हमारे गांव में सर्विस करी थी हमने जाने क्यों कर रहे हैं वो जब हमारे सब आई थी तो हम पढ़ाई करने लगे पहले हम पढ़ाई नहीं जानते थे और अब इससे पढ़ के नहीं पढ़ना सीखे हैं और इससे पढ़ने से हमें बहुत कुछ आने लगा है और हमारे गाँव के अंदर तीन ताराक्षर एक ज्ञान चौपाली खुली हुई है और हम बचत पढ़ते हैं सभी और उसके बारे में भी जानते हैं पहले जानते नहीं कुछ।
10: मेरा नाम भगवती है मैं स्वामी के रहने वाली मुंह पे कुछ भी नहीं आता है मैं अक्षर समाज जान गई नाम नाम हाँ अक्षर जान गई मैं अक्षर समझ गई नाम लिख लेती हूँ।
11: मेरा नाम रजनी है मैं स्वामी के रहने वाली हूँ मैं पहले से कुछ नहीं जानती थी और यहाँ पे बैठ के बहुत कुछ पढ़ चुकी हूँ और बहुत कुछ जान सकती हूँ।
12: मेरा नाम आशा है मैं स्वामी के मैं रहने वाली हूँ मुझे तारा अक्षर से जुड़कर बहुत अच्छा लगा हमने हम पर पहले अपने साइन भी करने नहीं आते थे हम पर साइन कर सकते हैं अक्षरन की पहचान कर सकते हैं।
13: मेरा नाम सरस्वती है गाँव रिहौली में तारा अक्षर का स्कूल खुला है ये लोग आए तो कहने लगे हम पढ़ाएंगे हमें अपनी गाँव की बात समझ में आई और पढ़ाई लिखना शुरू कर दिया ये इनसे पढ़ के हमें बहुत नॉलेज मिली और बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ हम कुछ भी नहीं जानते थे और ये गांव के अंदर जो समूह खुली रहती है उनके बारे में भी कुछ नहीं जानते बैंक में जाते थे पैसे भरना निकालना कुछ नहीं जानते थे अब हम खूब पैसे भी निकाल लेते हैं फार्म वार्म भर देते हैं। पढ़ाई से ये फायदा है कि अपने बच्चे जहाँ भी कहीं पढ़ने जाते पहले कुछ नहीं जानते उसकी किताब कॉपी वगैरह देख सकते हैं क्या लिखा है कहीं हम भी काम करते हैं तो हमारे लिए पैसे वैसे मिलते हैं तो हमें पता नहीं लगता था कितने दे रहे हैं कितने नहीं दे रहे हैं तो अब हम उसे पढ़ के बता सकते हैं।
14: अपना नाम कांति
15: और कौन से गाँव से यहाँ
14: छाए से
15: तो आपको पहले और अब में क्या फर्क नजर आ रहा
14: है इतना फर्क है पहले हम 100-200 रुपया का हिसाब लगा सके अब हम 500 रुपए तक हिसाब लगा लें पढ़ाई इतने जब थोड़ी बहुत पढ़े अब फिर थोड़ी बहुत अक्षर हम मिला के मात्रा मिला के सब कुछ अब हम कर लें मात्रा लगा दें डंडा लगा दें।
16: मेरा नाम मीना है छाए से रहने वाली पहले कुछ ना बनाओ अब हम लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत आने लगो हिसाब जोड़ 100-200 रुपया आए 500 है उन्हें भी जोड़ सके।
17: मेरा नाम बबीता जी है छाए से रहने वाली पहले कुछ नहीं आता था अब बहुत कुछ सीख गई बहुत अच्छा लगा पढ़े के इन्होंने नीतू जी ने बहुत अच्छा सिखाया हमें लोग के सीखे बात अच्छा पढ़ाने लिखना है वो
18: हम चार तारा सर में ट्रेनिंग ली थी हमने जो कि मतलब अनपढ़ लोगों को पढ़ाना जन अक्षर होते हैं अब वो पढ़ लिख थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जान गई है और अपना नाम लिखना सीख गई है अपने गाँव का नाम कहीं भी आ जा सकती है हिसाब किताब लगा लेती है। इस प्रोग्राम से जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है इनको भी और हमको भी।
19: तो सबसे पहले हमने औरतों को मोटिवेट किया पढ़ने के क्या क्या फायदे होते हैं उनको मैंने फिर क्लास में बुलाया बिगाड़ी में मेरी ड्यूटी है वहाँ पे मैं 3 बैच चलाता हूँ वहाँ पर 10-10 महिला आती है प्रत्येक बैच में 10 महिला होती है बहुत ही अच्छी तरह के वो पढ़ रही है और उनसे मैं बातें करता हूँ अगर किसी को प्रॉब्लम होती है मैं उनके घर जा करके अगर कोई मना करता है तो उनके घर जा करके परिवार वालों से मिलता हूँ और उनसे समझाता हूँ पढ़ाई के फायदे क्या होते हैं तो वो भी क्लास में आ जाती है ऐसी कोई परेशानी नहीं है आप तो बहुत खुश हैं इसमें आकर।
20: ताराक्षर जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा कार्यक्रम क्योंकि हम इसमें जो निरक्षर महिलाएं हैं उसको साक्षर बनाने के लिए काम कर रहे हैं ये कार्यक्रम अभी है अम्बेवात इलाके के 3 गाँव में चला हुआ है छायसा बिघावली और स्वामी का इसमें लगभग 90-100 महिलाएं इसका लाभ उठा रही है इस कार्यक्रम का और ये 3 गाँव में कार्यक्रम चल रहा है प्रत्येक गाँव में 3 बैचेस चलते हैं इसे कुल मिला के 9 बैचेस चलते हैं और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है पहले जो महिलाएं बोल नहीं पाती थी किसी के सामने आज अब वो महिलाएं बोलने लगी हैं।

गांव को अच्छा समझ के इस गांव में वो काम कर रही हैं। इसमें हर एक जन जन को इसमें जुड़ना चाहिए और इनका सहयोग करना चाहिए। मैं गीता मल्होत्रा जी का और मैडम मई जी का तह दिल से अपने गांव की तरफ से, अपने तीनों चारों गांव की तरफ से बहुत बहुत दिल से तह दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इनका एहसान मंद हूं कि इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमारे गांव और हमारे अड़ोस पड़ोस को चुना।

0: Wonderful, wonderful. So much to be shown. We have so much of content to be shown to the audience, but the time is so short that we have to move further also. इसके अलावा आप कमेंट्स में भी पढ़ रहे हैं कि मेरी टीम लिखती जा रही है कि हमने क्या क्या और काम किए. तारा अक्षर के अलावा हमने स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एक कार्यक्रम किया यहाँ पे मैजिक बस के साथ मिलके, क्योंकि हमें उनके एटीट्यूड को बदलना था कि हमें लाइफ स्किल्स सिखाने थे. अगर हम लाइफ स्किल्स की बात करें तो वो डायरेक्टली ट्रेनिंग लेने नहीं आते थे, हमने स्पोर्ट्स के माध्यम से यूथ को लाइफ स्किल्स सिखाए कि कैसे एक लड़की लड़के की इज्जत करती है और लड़का लड़के की इज्जत करता है, कैसे फैमिली में हम एक एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं. तो ये हमने स्पोर्ट्स के माध्यम से अपनी कम्युनिटी को सिखाया था. और इन सब कार्यक्रम को बंद करने का दिल नहीं करता है क्योंकि बहुत बहुत जरूरत है. मैं कहती हूँ जितनी भी पॉपुलेशन है मेवात की, उन सबको इन सब प्रोग्राम्स की बहुत बहुत जरूरत है. इसके आगे की जर्नी में हमने औरतों को स्पिनिंग सिखाई, धागा लेके कैसे धागा बुनते हैं ये उनको सिखाया, चरखा कैसे चलाते हैं, उस धागे से कपड़ा कैसे बनता है, उस कपड़े की सिलाई कैसे करते हैं, ये पूरी जर्नी हमने कंप्लीट करी. यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे करते हैं, यही सोच के सब कुछ किया कि कभी औरत को काम करने की जरूरत पड़े तो वो अपने हुनर को निखार सके और अपने हुनर को पहचान सके और अपने बुरे टाइम पे इस हुनर को यूज करके अपनी आमदनी को इंक्रीज कर सके. यही हमारा सोच थी और कंट्रीब्यूशन था. अभी हम छायसा से आगे तारू में जाएंगे. तारू में हमने एक और सेंटर लॉन्च किया था तो हमें Amazon ने सपोर्ट किया था. आई वुड लाइक टू शो दैट फिल्म डॉक्टर मिश्रा रीड इन तारो.
1: इस फिल्म के में जो अभी हमने दिखाया उसके बारे में एक चीज मैं गीता मैम ये कहना चाह रहा हूँ कि जो परिवर्तन आपने देखा वो तो हुआ. सबसे बड़ी बात है कि जो समाज को ये भी, जिस महिलाओं को ये भी नहीं मालूम था कि हम अपने पैसे को कैसे रखें, क्या करें, कहाँ रखें, उनको न्यूमरेसी लिटरेसी का ज्ञान हो गया. इतना ही नहीं, आपने देखा होगा उनके कपड़े साफ हो गए, उनमें हाइजीन का सेंस आया, उनमें हेल्थ और क्लीनिनेस के प्रति एक बहुत बड़ी जवाबदेही का है ना निर्माण हुआ. तो ये जो छोटे छोटे विजिबल चेंज है, वो कहते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये चेंज अगर आप डे वन से उस दिन तक को देखें तो महिलाओं में जो स्वच्छता, निर्मलता, लिटरेसी न्यूमरेसी, काउंटिंग करना, ये सब चीज में, और एकाएक सारे महिलाओं के चेहरे पे एक गजब ही नैसर्गिक हंसी, उल्लास का भाव था जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है.
2: Partnered with Read India in 2015 to set up Amazon Care Community Outreach Centers in Taulu in the villages Chamwars, Dingaveri and Gujarat. Through these centers, we are covering five villages, including

0: Sagar and Sheikhpur. The center focuses on education, women empowerment and livelihood, skill development and entrepreneurship, and health awareness and advocacy. We do focus on education by designing programs on improving reading and writing habits of children, studying in government schools, training Anganwadi teachers on teaching small children through playful activities and the same activities are repeated at the Reed Center. We have a library with more than 1,000 books where children, youth and other community members come and have access to books for reading and reference. We conduct classes to enable youth for competitive examination and do career counseling. We have funds for regular and uninterrupted supply of power. We have special workshops with women on women empowerment and provide them a safe space to learn stitching and weaving to start with and enable them to learn how they can start their small enterprise and also collectively join the group for walking together to Reed Center. We have also designed the programs to make them learn financial and adult literacy. Women have started moving out from their villages to other Reed Centers and also to other organizations to learn from other women how they are involved in these programs and enhance their networks. Job-oriented workshops are organized for youth, girls and boys, to focus on their future careers and learn specific skills for suitable jobs. Farmers' meetings are conducted on a regular basis with planned visits to other parts of Haryana, including meeting with government officials so that they themselves realize where they are and where they have to reach in relation to profit making, agribusiness they can do. Health intervention is the important component. We do regular workshops on best practices and also partner with other organizations to organize health camps. Audio workshops are being organized at the center to enable youth on voice modulation, and exposure visits are done at community radio stations. Various visuals are displayed at the centers, Anganwadis and the villagers to constantly remind the villagers about best practices. Women and men are understanding the gaps in their lives and uniting together for the progress of their villages, and also focusing on their children's growth by creating a positive environment at the Reed Centers and at their homes. Reed India and Amazon Care work closely with local government, completing the collective efforts. Within 1 year, this partnership was extended to another village, Tamaspur in Sonipat. The center is creating the same activities through effective community mobilization, effective involvement of the school teachers and other stakeholders.
1: एक दिन ज्योति ने बताया कि यहाँ सिलाई सेंटर गांव में आया हुआ है जो रीड इंडिया एंड अमेजोन मिलकर चला रहे हैं, तो मैंने आके देखा कि यहाँ सिलाई हो रही है और सिलाई का काम ज्योति सिखाएगी। तब मैंने ज्योति से बात की कि मुझे भी सिलाई सीखनी है। तब ज्योति ने सिलाई सिखाई मुझे, तो मैंने 3 महीने तक सीखी और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे कार्यशाला भी होती है, जो फार्मर भी की भी मीटिंग्स हुई, हेल्थ वर्कशॉप भी हुए और पढ़ाई के बारे में बताया, आगे कैसे बढ़ते हैं, सरकारी नौकरियों के बारे में भी बताया। तब मैंने 10वीं के ओपन पेपर फॉर्म भरे और अपनी पढ़ाई चालू की फिर से, और फिर आगे मैं पढ़ना चाहती हूँ।
2: मैंने सिलाई सीखना मुझे बहुत फायदा हुआ और मैंने देखा कि मैं अपने भी कपड़े सिल सकती हूँ और दूसरों के भी, और इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है।
3: मैं रीड इंडिया अमेजोन सेंटर में लाइब्रेरी कम कंप्यूटर ट्रेनिंग की जॉब कर रहा हूँ। मेरे को इस बात की खुशी है कि मैं यहाँ बच्चों को सिखा पा रहा हूँ और उनके साथ कुछ सीख भी पा रहा हूँ। यहाँ पे रीड की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम कार्यशाला की जाती है, जैसे सर ने कैरियर गाइडेंस के बारे में बताया, उस प्रोग्राम से बच्चों ने कुछ सीखा और साथ में मैंने भी बहुत कुछ सीखा है।
1: रील इंडिया एमजोन तरफ से जो सेंटर चल रहा है इसमें मैं जो छोटे बच्चों का एसीटी का सेक्शन है वो देखती हूँ। यहाँ सेंटर पे नई नई एक्टिविटी होती है जैसे हेल्थ की भी हुई है के बारे में भी होती है, तो उसमें भी क्योंकि मैंने खुद ही बीए करके बीएड करी हुई है तो उससे मेरे को भी बेनिफिट मिल रहा है कि यहाँ को कह रही कि कोई मीटिंग हो रही है तो उसमें मैं भाग ले रही हूँ तो उससे मेरे को भी कुछ बेनिफिट मिलेगा।
3: मैंने प्लस टू करने के बाद जेबीटी किया है और सरकारी नौकरी के लिए स्टेट हरियाणा का एक टेस्ट होता है वो क्लियर करना जरूरी है। वो क्लियर करने के लिए किताबों की आवश्यकता थी। मैंने रील इंडिया एंड अमेजोन के सामुदायिक लाइब्रेरी है वहां से मैंने मुबारक सर से संपर्क कर दो बुक्स प्राप्त की और वहां दो बुक्स लेकर मैंने उनकी पढ़ाई की और टेस्ट आने पर मैंने टेस्ट दिया जिससे मेरा पहली बार में टेस्ट क्लियर हो गया।
1: यहाँ पर पहले मैंने सिलाई सीखी थी उसके बाद मैं कंप्यूटर के सिखाते जिससे उसे सिखाने में मुझे भी बहुत फायदा हुआ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा है उसे सिखाते सिखाते बहुत अच्छा है। वैसे यहाँ पे सब चीज क्योंकि यहाँ पे सिलाई सेंटर कंप्यूटर का भी है लाइब्रेरी भी है ईसीडी का भी है यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीजें सुधार की गई है। मैं अकेडमी भी जाती हूँ और रीड एंड राइटिंग का कोर्स चल रहा है बच्चों को कराती हूँ और इससे इधर मीटिंग होती है इससे किसानों की मीटिंग होती है इधर डॉक्टर आते हैं और इधर हमने सिलाई भी सीखी है इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। मैं रीड इंडिया अमेजोन को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ।
4: रीड इंडिया अमेजोन सेंटर में सिलाई सिखाती हूँ। अब तक मैं 10 लड़कियों को सिलाई सिखा चुकी हूँ जो कि वो अपना काम आराम से कर लेती है और घर में दिन महीने में 2-4 हजार रुपए भी कमा लेती है। अब उनको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती वो हर कार्य को अच्छे से कर लेती है।
5: मेरा नाम राम बाबू आपकी लाग में पढ़ता हूँ। अब मैं जब छुट्टी हो जाए सेंटर में आता हूँ बुक पढ़ता हूँ फिर खिलौना से खेलता हूँ फिर कंप्यूटर पे बैठ जाता हूँ।
6: पहले ये सिलाई सेंटर यही नहीं था तो अब इसके आने से हमारी जितनी लड़कियां हैं औरत हैं जो यहाँ पे सब सिलाई सीखने के लिए आ जाती हैं इससे काफी सुविधा है क्योंकि हमें बाहर नहीं जाना पड़ता यही कपड़े सी जाते हैं तो अपना काम हल हो जाता है पैसे की भी बचत है।

पर्यावरण प्रदूषण। आज सभी की एक ही पुकार, पर्यावरण में अवश्य करो सुधार। हमारे पर्यावरण को मुख्य रूप से चार तरह के प्रदूषण से खतरा है। भूमि प्रदूषण, बनावटी खादों के प्रयोग से भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है तथा भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है। भूमि बचाओ, नहीं तो बीमारियां पाओ। जल प्रदूषण, बड़े बड़े कारखानों का गंदा पानी तथा कूड़ा कचरा नदियों में मिलकर उसके जल को प्रदूषित कर रहा है। हमें इसे रोकना होगा। जल है तो कल है। वायु प्रदूषण, पेड़ों के काटने से, कारखानों और वाहनों के धुएं से वायु प्रदूषण फैल रहा है। मनुष्य को इससे सांस की कई बीमारियां हो रही हैं। पेड़ लगाओ, देश बचाओ। ध्वनि प्रदूषण, बड़े बड़े कारखानों, वाहनों के शोर, विवाह शादी में ऊंची आवाज में बजते गाने से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे उच्च रक्तचाप तथा बहरेपन जैसी बीमारियां हो जाती हैं। बंद करो ये शोर शराबा, नहीं तो सुनोगे आधा आधा। प्रदूषण के कारण ही भूकंप, सूखा, बाढ़ आदि का प्रकोप भी झेलना पड़ रहा है। पर्यावरण पर बड़ी बड़ी बातें करने से पहले हमें खुद कई प्रयास करने होंगे, जैसे कि घरों में पानी की टैंकियां ओवरफ्लो ना हो, इसका तो हमें अवश्य ध्यान रखना होगा। कारों को धोना बंद करें और सिर्फ गीले कपड़े से ही पहुंचें। कूड़ा खाली प्लाट तथा सड़कों पर ना डालकर कूड़ेदान या कूड़े वाली गाड़ी में ही डालें। अपने आसपास पेड़ लगाएं, उन्हें पानी दें, उनकी देखभाल करें। कम से कम अपने प्रत्येक जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाएं। बाजार जाते समय अपने पास कपड़े या जूट का एक थैला अवश्य रखें। कहीं आसपास जाना हो तो पैदल जाएं या साइकिल पर। घर में पानी, बिजली, ईंधन आदि की बचत करने का प्रयास करें। घर में सभी एक साथ खाना खाएं ताकि खाना बार बार गर्म ना करना पड़े। आइए आज हम सभी मिलकर प्रण लें कि हम पर्यावरण दिवस सिर्फ 5 जून को ही ना मनाकर हर रोज ही मनाएंगे।

0: मेरा नाम वंश है, मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ और मेरा रोल नंबर 6 है और मैं यहाँ पर NGO में पढ़ने के लिए आता हूँ और अच्छी बातें सीखने के लिए आता हूँ और शिक्षा सीखने के लिए आता हूँ। थैंक यू।
1: मेरा नाम आदित्य है, मैं 4th कक्षा में पढ़ता हूँ और मुझे इस सेंटर में आकर बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर रीडिंग करने आता हूँ और स्कूल और ट्यूशन का काम।
2: मेरा नाम हैप्पी है, मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ पर रोज 3 बजे आकर रीड इंडिया लाइब्रेरी में आके मैं पढ़ता हूँ। हमारी रेशमा मैम हमें बहुत पढ़ाती है और प्रियंका मैम भी पढ़ाती है। रेशमा मैम कभी कभी हमें पढ़ाती भी है, खिलाती भी है, डांस भी करवाती है।

मेरा नाम अंतिमा सिंह है। मैं सिमराई बाराबंकी से बोल रही हूँ। मेरी उम्र 16 साल है। मैं आपके सामने एक छोटा सा भजन सुनाने जा रही हूँ।

0: रोहित, मैं गांव बासलांबी और मुझे आर्ट ले रखे और मैं गेम में बहुत इंटरेस्ट हूँ और मैं कबड्डी और रनिंग में बहुत अच्छा खेलता हूँ और मैं आगे इसी में भाग लूँगा।
1: आज का जो सेशन हुआ था ना बिंसी मैडम ने जो पढ़ाया, उसमें से
0: हाँ,
1: आपको क्या क्या समझ में आया?
0: बहुत कुछ सीखने को मिला और आर्ट में बहुत चीज़ें बताई थी, 7-8 चीज़ बताई गई थी, LLB, BB और डांसिंग, रनिंग, आर्मी, पुलिस।

my name is Deepak and I read in 11th class. My village name is Jatola. आज मैंने सीखा मेरे करियर के बारे में जो मुझे आगे करना है, इसलिए मैंने कॉमर्स ले रखी है और मैम ने बहुत अच्छा बताया कॉमर्स में बैंकिंग CA और बहुत स्ट्रीम से आगे, तो इसलिए मुझे बहुत मदद मिली अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू।

हेलो, माय नेम इज़ विकास। मैं सांपका से हूँ। मैंने कॉमर्स ले रखे। मैं 11 क्लास में पढ़ता हूँ। मैंने आज सीखा कि मेरे को पता नहीं था कि आर्ट से LLB वगैरह कर सकते हैं। आज पता चला कि आर्ट से बहुत ऑप्शन है। मैं CA करना चाहता हूँ। थैंक यू।

माई नेम इज़ सचिन, आई रीड इन 11th क्लास। मैंने आर्ट्स ले रखी है, मेरे को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है और मेरे को रनिंग में और क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है। आज की सेशन से हमें ये फ़ायदा पहुंचा कि हम आर्ट्स से बहुत सारे वो कर सकते हैं।

हेलो, आई एम आशीष एंड आई एम फ्रॉम बासलम्बी. मैंने साइंस ले रखी है एंड आई वांट टू बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर, बट माय आल्सो इंटरेस्ट इन कबड्डी एंड एथलेटिक्स, सो माय अदर एम इज टू गेट अ मेडल इन नेशनल्स.

मैं जितेंद्र, आई रीड इन 11th कॉमर्स, आई लिव इन बसलांबी। आज गाइडेंस से हमें ये पता चला कि हमें अपना कुछ भी करने से पहले हमें अपना एम कर लेना चाहिए। मैंने साइंस ले रखी है तो मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। थैंक यू।

मेरा नाम मनु, मैं बारहवीं कक्षा के छात्र हूँ। मैंने मैथ ले रखा और मैं यहाँ पर बिंसी मैम ने करियर के बारे में बताया था कि हम बारहवीं के बाद क्या कर सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग टीचर्स लाइन में जा सकते हैं। मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ, इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिला।

My name is Anjali. I read in 11th class. I am 15 years old. My hobby is playing. I am interest of Hindi and math. और आज मैं यहाँ पे career counseling के बारे में जानने के लिए आई थी. तो यहाँ पे प्रिंसी मैम ने हमें तीन streams बताई, science, commerce और arts. जैसे कि science है, उससे हम doctor बन सकते हैं. Commerce है, account है, चार्टर्ड अकाउंट्स कर सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, और आर्ट है, उससे तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. गवर्नमेंट सर्विस फॉर्म तो सभी कर सकते हैं. इससे मुझे अपने करियर के बारे में बहुत सी जानकारी. थैंक यू.

पायल, आई रीड इन सेवेंथ क्लास. आज मैं यहाँ करियर के बारे में जानने से आई थी. मेरा यहाँ पे मैम ने बहुत कुछ बताया और मेरे को पता लगा कि हम अपने करियर में क्या क्या कर सकते हैं आगे जाके, और हम बहुत कुछ समझ में आया. थैंक यू.

0: के रहे जिला जजर और माजरी गांव और इंदु बड़बोला की तरफ से सब ने राम राम। तो मैं इंदु बड़बोला आप सभी के सामने दो चार शायरी प्रस्तुत करना चाहती हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। तो सबसे पहले मम्मी पापा के ऊपर है एक के रहे, जब मैंने उनका जिक्र कर दिया ना तो बात किसे का समाणी कोनी। के रहे जब मैंने उनका जिक्र कर दिया ना तो बात किसे का समाणी कोनी। अरे या दुनिया मैंने बहुत आजमाक देख ली मेरे भाई, इब और आजमानी कोनी। और उनने मेरे ऊपर बहुत उपकार कर रखे है मेरे भाई, मेरे माँ बाबू बरगे तो कोई राजा रानी भी कोनी। एक है भाई के ऊपर है के रहे, दुनिया में माँ बाप के अलावा एक और प्यारा है। के रहे दुनिया में माँ बाप के अलावा एक और प्यारा है, और वो है मेरा भाई जो सब ते न्यारा है। और जब भी वो मैंने बुंडी शक्ल की कवे है ना, बेशक ते चिड़ो वह है पर उसका मजा ही न्यारा है। एक सुनियो फौजियों के ऊपर है के रहे, गले में माला पहरणिया और संतरी बाणा पहरणिया, और किसे मानस ने जोगी नहीं कह सकते। के रहे गले में माला पहरणिया और संतरी बाणा पहरणिया, और किसे मानस ने जोगी नहीं कह सकते। और जो मारे खातर खून पसीना बाक दिन रात बॉर्डर पर लड़े जाने मेरे भाई, जय फौजी नहीं हो ना तो हम एक रात भी चैन ते नहीं सो सकते। एक सुनियो के रहे, शर्म ओढ़न पहरण की ना होया करे, आख्या की बतेरी होया करे। और जी मैं कुछ करण की लगन होने वो बंदा दिन रात नहीं सोया करे, और जो जमकर करे मेहनत वो कामयाब जरूर होया करे। वाई बात है राम के घर देर होया करे पर अंधेर नहीं होया करे। तो आप सबका धन्यवाद।
1: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी उनकी जुबानी।
2: मैं बी ए फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं पीडब्ल्यूडी कॉलोनी बदोई टोला रामपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी फैमिली 5 मेंबर्स है, जिसमें मेरे पापा बैंड का काम करते हैं और वे बैंड में गाना गाते हैं। मेरे छोटा एक भाई है और एक बहन है जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। एक दिन इन इंडिया का स्टाफ मेरे गाँव में सर्वे करना है, जहाँ इन्होंने हमें अलग अलग कोर्सेज के बारे में बताया। यहाँ आकर मैंने अपना कंप्यूटर कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराया और मैंने कंप्यूटर कोर्स की ट्रेनिंग कम्प्लीट करी। यहाँ आकर मुझमें काफी कॉन्फिडेंट भी आया और स्किल भी अच्छी हुई। पहले मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी और अब मैं लोगों से कम्युनिकेट भी कर पाती हूँ। एक दिन इंडिया के स्टाफ ने मुझे जॉब के बारे में बताया और मैंने मोलीचार इंटर कॉलेज में जाकर अपना रेज्यूम लगाया और सर्टिफिकेट भी दिया। वहाँ उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था और इंटरव्यू में मैं क्लियरली पास हो गई थी। मोलीचार इंटर कॉलेज में अब मैं एज अ कंप्यूटर टीचर जॉब कर रही हूँ। यहाँ मुझे 5,000 रुपये सैलरी मिलती है। मैं अपनी सैलरी से काफी खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रही हूँ और मेरी फैमिली भी मुझसे काफी खुश है। मैं रीड इंडिया को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी है और मुझे एक अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी भी दी। रीड इंडिया का स्टाफ और रीड इंडिया को मैं अपनी तरफ से थैंक यू बोलना चाहती हूँ।
3: मेरा नाम आशा नाज है, मैं रामपुर यूपी के एक पटवाई नाम के गांव में रहती हूँ। मेरी उम्र 23 साल है और मैंने 2019 में अपना बीए पूरा किया था, और बीए के साथ साथ मैंने स्पीकिंग एंटिटी नर्स लाइब्रेरी और कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी ली है, और क्राफ्टिंग एंड ड्राइंग मेरी स्पेशलिटी है। मेरी फैमिली में 5 मेंबर हैं, मेरे पापा मम्मा मेरे दो भाई। मेरे पापा की टायर सेलिंग की दुकान है। मेरे घर में मेरे पापा और मेरे बड़े भाई कमाते हैं, जिसमें मेरा छोटा भाई और मैं पढ़ाई करते हैं। जैसे कि मैं एक पटवाई गाँव से हूँ जहाँ पे पढ़ाई को इतना महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन मेरा था कि मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे अपने ड्रीम्स खुद से पूरे करने हैं, अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरे करने हैं, जिसके लिए मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता जो फैमिली वाले अलाउ नहीं करते थे। फिर 2017 में मुझे पता चला कि हमारे पटवाई में रीड इंडिया नाम से एक सेंटर खुल रहा है जहाँ पे तरह तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं। मैं ओपनिंग में आई, मुझे अच्छा लगा, मैंने वहाँ पे कंप्यूटर और लाइब्रेरी में एडमिशन लिया। मैंने वहाँ पे लाइब्रेरी और कंप्यूटर की ट्रेनिंग ली। उसके साथ साथ मैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करती थी। मेरी फैमिली वालों को रीड स्टाफ पे बहुत भरोसा हो गया था। मैं अपना ज़्यादातर टाइम सेंटर पर ही बिताया करती थी। फिर मुझे पता चला कि हमारे पटवाई में ही रीड इंडिया की तरफ से एक स्कूल भी खुल रहा है जहाँ पर टीचर की ज़रूरत है। फिर मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, वहाँ पे 15-20 लड़कियों का इंटरव्यू हुआ, जिसमें से थैंकफुली मेरा सिलेक्शन हुआ। वहाँ से मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला। तो थैंक यू सो मच रीड इंडिया, मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज करने के लिए थैंक यू सो मच।
4: हाय आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम ईशा चौहान है, मेरी उम्र 40 वर्ष है, मैंने एमए बीएड किया है, मैं रामपुर ज्वाला नगर में रहती हूँ। मैंने बहुत सारे पर्सनल कोर्स किए हैं, जैसे कंप्यूटर, सिलाई, पार्लर, कम्युनिटी एलिमेंट्री का कोर्स किया है, और कुछ मेरी हॉबीज भी हैं, जैसे बुक रीडिंग करना, डांस करना, क्राफ्टिंग। मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, मेरे हस्बैंड, 2 बेटे। मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जो अब रिटायर्ड हैं, और मेरे हस्बैंड एक छोटी सी प्राइवेट जॉब करते हैं, टीचर हैं, जो कोरोना की वजह से उनकी जॉब छूट गई, तो मैं ही एकमात्र महिला हूँ अपने परिवार में कमाने के लिए। और मेरे फैमिली की कंडीशन काफी बेटर नहीं है, और सब कुछ मेरी जॉब पे ही टिका हुआ है। जैसे मुझे पढ़ने का शौक था, मुझे पता चला कि आकापुर में एक लाइब्रेरी है, तो वहां मैं पढ़ने के लिए जाती थी, जैसे हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर और सारे सब्जेक्ट वहां से पढ़ती थी, अपनी स्टडी जारी रखती थी। तो वहां के स्टाफ ने मुझे बताया कि स्कूल ओपन हो रहा है, वहां पर रिक्वायरमेंट है टीचर की। मैंने अपना रिज्यूम लगाया, मेरा सिलेक्शन हो गया और वहां से मेरी लाइफ स्टार्ट होती है। मैंने वहां जाकर काफी सारे कोर्स करे, जैसे सिलाई, कंप्यूटर, पार्लर, कम्युनिटी एलिमेंट्री का कोर्स किया। मोस्टली एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स करने के बाद मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, मैं कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, मेंटेलिटी कैसी होती है बच्चों की, पेरेंट्स को कैसे डील किया जाता है, एक्टिविटी द्वारा बच्चों को कैसे डील करते हैं, पढ़ाते पढ़ाते उन बच्चों को कैसे खेल के द्वारा पढ़ाएं, शौक उनकी कैसे, उनकी मेंटेलिटी को समझें, उनकी उनकी बातों को समझें, ये सब मैंने एलिमेंट्री एजुकेशन से सीखा है। और मेरे अब आगे ये लक्ष्य है कि मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनूं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूं, और इसके लिए मुझे रीड वाले भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू रीड इंडिया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।
0: नमस्कार, मैं कामिनी आपके सामने एक देशभक्ति सॉन्ग प्रस्तुत करना चाहती हूँ।

रोमना बापू तेरी बेटे की शहीदी बेकार नहीं जावेगी। अरे मेडल कोनी आंदे माई, ईब ते बैरी की लाश आवेगी, अरीब ते बैरी की लाश।

0: थैंक यू।
1: आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम चांद खान है। मैं राजस्थान के दौसा जिले के सिकराय तहसील के गिजगढ़ गांव का रहने वाला हूँ, जहाँ पर रेड इंडिया का सेंटर है, गिजगढ़ ज्ञान केंद्र के नाम से है। सबसे पहले मैं आपको गिजगढ़ के बारे में बताता हूँ कि यह गांव पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। 100 से अधिक पुराने मंदिर हैं, इसकी आबादी करीब 15,000 के करीब है। यहाँ के लोग गाँव से शहरों की ओर पलायन कर रहे थे रोजगार के लिए। तभी एक गिजगढ़ गाँव में रेड इंडिया संस्था आई, जो 8 मार्च को आई थी, जिससे लोगों को रोजगार में काफ़ी सहायक रही, क्योंकि लोगों ने वहाँ पर उनको हुनर सिखाया गया, स्किल सिखाया गया। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ आप लोगों को कि मैं कहीं भी नहीं जाता था, ना ही मैं किसी से बात किया करता था। आज मेरे अंदर, इस संस्था के अंदर, मुझे काफ़ी सीखने को मिला। मैंने काफ़ी ट्रेनिंग्स में, जैसे हेल्थ कैंप है, रेडियो ट्रेनिंग है, मोबाइल वाणी है, ताराक्षर है, इनमें काफ़ी पार्टिसिपेट किया मैंने और यूथ ने। तो मैंने बहुत कुछ सीखा और आज मैं इस संस्था में काम कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पर एक वॉलंटियर था और आज मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। इस संस्था के कार्य में हमारे सेंटर कोऑर्डिनेटर चंद्र प्रकाश जी का भी बहुत सहयोग रहा है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस संस्था के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पर जो स्किल वगैरह है उनके बारे में बताता हूँ मैं आपको। लाइब्रेरी के अंदर हमारा सबसे पहला पार्ट आता है लाइब्रेरी सेक्शन। लाइब्रेरी के अंदर काफ़ी यूथ, काफ़ी बच्चे आया करते थे पढ़ने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की और आज वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। कंप्यूटर सेक्शन के अंदर बच्चों ने कंप्यूटर सीखा, स्किल सीखा कंप्यूटर का, आज वो प्राइवेट जॉब कहीं पर कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं। ब्यूटी पार्लर है, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, ECD है, तो इन सब के अंदर काफ़ी हुनर सीखा और आज वो खुद कमा रहे हैं। ECD सेक्शन में बच्चों को पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था, फ्री सिखाया जाता था उन बच्चों को, उसके बाद में स्कूल में एडमिशन दिलाया जाता था। जो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम थे, जैसे कि ऑर्गेनाइज किए गए थे रेड इंडिया द्वारा गिजगढ़ गाँव में, हेल्थ कैंप है, रेडियो प्रोग्राम है, होटल मैनेजमेंट है, ताराक्षर है, किसान मोबाइल है, हैंडीक्राफ्ट है और हैंडलूम ट्रेनिंग है। जैसे हेल्थ कैंप के अंदर गांव में काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो हेल्थ कैंप लगाया गया था। रेडियो प्रोग्राम के अंदर काफ़ी यूथ ने पार्टिसिपेट किया। होटल मैनेजमेंट में काफ़ी बच्चों ने सीखा और आज वो वर्क कर रहे हैं। तारा अक्षर में जो महिलाएँ साइन सिग्नेचर करना तक नहीं जानती थी, अंगूठा लगाती थी, उन महिलाओं को पढ़ाया और उन महिलाओं को सिखाया। किसान भाइयों के लिए किसान मोबाइल वाणी का एक प्रोग्राम चलाया गया था। हैंडीक्राफ्ट का प्रोग्राम महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई थी और आज महिलाएं जॉब वर्क कर रही हैं और काफ़ी इनकम भी कर रही हैं। हैंडीक्राफ्ट है तो हैंडीक्राफ्ट के अंदर जॉब वर्क करके ही कमा रही हैं। हैंडलूम ट्रेनिंग दी गई थी औरतों को, तो हैंडलूम के अंदर कपड़ा बनना सिखाया गया था, तो औरतों ने कपड़ा बनना सीखा और खुद इनकम जनरेट कर रही है। स्टिचिंग, ब्यूटी पार्लर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इनके अंदर काफ़ी स्किल सीखा औरतों ने और आज औरतें खुद कमा रही हैं, खुद की इनकम जनरेट कर रही हैं, खुद का घर खर्च चला रही हैं। जो हमारा रोज़गार का प्रोग्राम था, वो गाँव से शहरों की ओर लोग जा रहे थे रोज़गार के लिए, वो रुक गए और काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला और इसमें काफ़ी गरीब परिवारों को सहायता मिली। उसके बाद हमारे पास भारती वॉलमार्ट के वर्क आया था बैग्स का, तो जिन औरतों ने हमारे पास स्किल सीखा था उन लोगों को वह वर्क दिया गया। उन लोगों ने काफ़ी पैसा किया, इनकम किया इस भारती वॉलमार्ट में। 10,000 से अधिक लोगों को ट्रेनिंग रेड इंडिया संस्था द्वारा दी गई है। रेड इंडिया संस्था द्वारा स्किल सिखाया गया था औरतों को, औरतों में काफ़ी स्किल हुआ। जो औरतें घर से नहीं निकलती थी, जो औरतें घर तक ही सीमित थी, उन औरतों ने ट्रेनिंग ली और आज खुद की शॉप खोल रखी है घर के अंदर मार्केट में। जो औरतें शॉप नहीं खोल पा रही, वो औरतें आस पड़ोस के कपड़े सिलकर इनकम जनरेट कर रही है। जैसे मैं कुछ नहीं जानता था और मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ आकर और आज मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। हमारे सेंटर कोऑर्डिनेटर चंद्र प्रकाश जी का इसमें बहुत सहयोग रहा। धन्यवाद रेड इंडिया, धन्यवाद गीता मैम।
0: राम राम। मैं कामिनी झज्जर जिला बादली ब्लॉक माजरी गांव से हूँ और मैं आपको एक रागिनी सुनाना चाहूंगी। तो किस्सा है रूप बसंत का। तो उसमें क्या होता है कि धारा नगरी में राजा खड़क सिंह, उनकी रानी रूपवती और उनके दो बच्चे रूप और बसंत रहते थे। तो जो रानी है वो अचानक से बीमार हो जाती है और बीमार अवस्था में राजा को पास बुलाती है और उससे कहती है कि मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करवाओगे। तो जो राजा है वो कहता है कि ठीक है रानी, मैं ऐसा ही करूँगा। लेकिन जो रानी है वो कहती है राजा से कि मैंने ना एक पेड़ पर एक चिड़िया और एक चिड़े को देखा है और उसकी जो चिड़िया है वो मर जाती है और जो चिड़ा है वो दूसरी चिड़िया ले आता है और वो दूसरी चिड़िया उन दोनों बच्चों को मार मार कर नीचे गिरा देती है। तो जो रानी है ये दृश्य देखकर बहुत घबरा जाती है और वे राजा से एक बात के द्वारा क्या कहती है भला, हाँ

0: 같아. Thank you.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: नमस्ते रीड इंडिया, मेरा नाम रश्मि हो जाए, मेरी एज 20 साल है, मैं बमरगढ़ गांव में रहती हूँ। मेरी एजुकेशन BA प्लस RACIT प्लस PTT का एग्ज़ाम भी दिया है। मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है और मैं एक अच्छी शिक्षक बनना चाहती हूँ ताकि बच्चों को अच्छा से अच्छा प्रशिक्षण दे सकूँ। मुझे बच्चों को पढ़ाना और उनको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं जिसमें मम्मी पापा और हम 4 भाई बहन हैं। मेरे पिताजी किसान और प्लस सिलाई भी का कार्य भी करते हैं। मम्मी घर का काम व मजदूरी भी करती हैं। एक बड़ी दीदी हैं जो सिलाई का कार्य करके

0: खेल कूद के माध्यम से और पजल्स के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। यह सब कुछ हमने ट्रेनिंग के माध्यम से जाना। इस ट्रेनिंग के बाद मुझ में एक नया परिवर्तन आया, क्योंकि मैं पहले किसी के सामने ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी, ना अपनी बात रख पाती थी, और आज मैं मंच पर अपनी बात बोल भी सकती हूँ और समझा भी सकती हूँ। मैं रीड इंडिया को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे इस ट्रेनिंग करने का अवसर प्रदान किया।
1: नमस्ते रीड इंडिया, मेरा नाम गुंजन प्रजापत है। मैं बारा जिले के कैलवाड़ा कस्बे से हूँ। मेरी उम्र 20 साल है और मैंने नर्सिंग और ग्रेजुएशन किया हुआ है। इसके अलावा मुझे सिंगिंग, एक्टिंग, कॉमेडी करना अच्छा लगता है। हमारे परिवार में हम दो लोग हैं, मैं और मेरी मम्मी। मेरी मम्मी की मंथली इनकम 10 से 15 हज़ार रुपये हो जाती है। मैं रीड इंडिया से बचपन से जुड़ी हूँ और मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली हुई हैं रीड इंडिया से, लेकिन मैंने हेल्थ वर्कर की जो ट्रेनिंग है वो ली थी, जिसमें मैंने पूरे सेशंस अटेंड किए। निधि मैम ने जैसा जैसा समझाया वैसा फॉलो किया। उसके बाद मुझे इतना इंटरेस्ट आया उस सेशंस में, तो मैंने उसके बाद नर्सिंग में अप्लाई किया फॉर्म, और मेरा उसमें सिलेक्शन भी हो गया। निधि मैम के जो नोट्स थे, जो उन्होंने जैसा बताया था, उसको मैंने पढ़ा और मैंने इससे नर्सिंग में कॉलेज भी टॉप किया। रीड इंडिया से मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत डेवलप हुआ। मुझे पहले मैं बोलने में झिझकती थी, लेकिन अब मैं अच्छे से बोल सकती हूँ, मेरी बात सबके सामने रख सकती हूँ। इस वजह से मैंने स्टेट लेवल पे एक कंपटीशन में भी पार्ट लिया था, जिसमें मैं पूरे राजस्थान में थर्ड आई थी। और रीड इंडिया से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं रीड इंडिया की बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेरा सपना यही है कि मैं आगे चल के एक अनाथ आश्रम खोलूं, जिसमें मैं लोगों को फ्री में उनकी कुछ मदद कर सकूं। जैसे रीड इंडिया ने हमें इतना कुछ प्रोवाइड किया, ऐसे मैं भी आगे चल के जो जो लोग सक्षम नहीं हैं उनको सब कुछ प्रोवाइड इतना कुछ प्रोवाइड किया ऐसे मैं भी आगे चल के जो जो लोग सक्षम नहीं हैं उनको सब कुछ प्रोवाइड करवाना चाहती हूँ और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। थैंक यू रीड इंडिया।
2: मेरा नाम जूली खान है, मैं 19 साल की हूँ और मैं भवरगढ़ कस्बे में रहने वाली हूँ। मैं अभी बीए टीचर्स ट्रेनिंग कर रही हूँ और मुझे पढ़ाई का भी शौक़ है और मैं मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का और अच्छा अच्छा खाना खाने का भी शौक़ है। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, जिसमें हमारे 15 से 16 सदस्य हैं और उसमें मेरे पापा और मेरे चाचू खेती का काम करते हैं। हमारे बस खेती बाड़ी की जाती है, इसके अलावा कोई अन्य व्यवसाय नहीं है, जिसमें हमारे मंथली 8 से 10 हज़ार रुपये इनकम हो जाती है। हम जॉइंट फैमिली में सबसे बड़ी मैं हूँ। मैं अगर अपने घर वालों को कुछ पैसा कमा के दूंगी, उनकी हेल्प करूँगी, तो उससे वो फर्क पड़ेगा कि छोटे भी इससे प्रेरणा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैंने रीड इंडिया में सुना रिया मैम से कि उसमें बहुत सारी कोर्स और ट्रेनिंग होती है। मेरा इंटरेस्ट ब्यूटी वेलबिंग में था तो मैंने उसमें नाम लिखाया। हमने वहां पर पार्लर की चीजें सीखी और पार्लर का कोर्स सीखा और मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, जिसमें मैं घर पे पार्लर का काम करती हूँ, जिसमें मेरी 3 से 4 हज़ार रुपये इनकम हो जाती है। और उसमें 3 से 4 हज़ार रुपये इनकम हो जाती है तो खुद का खर्चा खुद निकाल लेती हूँ, इसके लिए मुझे अपने घर से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जिसमें मैं अपने घर वालों का सपोर्ट भी कर देती हूँ। रीड इंडिया ज्वाइन करने के बाद मुझ में काफ़ी बदलाव आया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और तर्क वितर्क करने की क्षमता भी बढ़ी और 10 इंसानों के सामने अपनी बात रखने की भी क्षमता बढ़ी। थैंक यू रीड इंडिया।
3: नमस्ते रीड इंडिया, मेरा नाम पूजा गुजर है, मैं राजस्थान के बारा जिले के घड़ावली गांव की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 20 वर्ष है और मैं बीए फाइनल ईयर में पढ़ रही हूँ और मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा है। मैं कबड्डी कुश्ती की प्लेयर हूँ, मैंने 5 बार स्टेट खेल चुकी हूँ कबड्डी में और मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिल चुका है। और मैं एक जॉइंट फैमिली से मैं रहती हूँ, मेरी फैमिली में 9 से 10 फैमिली मेंबर है, जिसमें मैं हम 6 बहन है और एक छोटा भाई है। हमारा व्यवसाय पशुपालन का है और हमारे फैमिली में सिर्फ हमारे पापा जी कमाने वाले हैं, उससे हमारे ज़्यादा इनकम नहीं हो पाती, 5 से 6 हज़ार रुपये इनकम हो पाती है, जिससे हमारा घर खर्चा तक नहीं चल पाता। इसलिए मैं अपने पापा जी कुछ काम करके हेल्प करना चाहती हूँ। तो इसी तरह मेरी एक दिन मुलाकात मीना मैम से हुई, जिन्होंने मुझे रीड इंडिया के बारे में बताया।

0: इंडिया सेंटर से फिर मैंने कंप्यूटर कोर्स किया और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज बहुत अच्छे से ली। उसके बाद अब मैं एक RSIT कोर्स कर रही हूँ ताकि मैं राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकूँ। और ये अब मैं RSIT कोर्स में बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा है और रेड इंडिया सेंटर पे आने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ा है। तो थैंक्स फॉर रेड इंडिया।
1: हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जी दोस्तों, मैं हूँ संजना, मैं झज्जर जिले के माजरी गांव से हूँ। आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का प्रोग्राम दहेज प्रथा पर है, तो दोस्तों आइए सुनते हैं ये दहेज की कहानी।
2: बहू बहू जरा सुनती हो?
3: क्या बात है माँ जी, आपने मुझे बुलाया?
2: बुलाया तो है, मगर तेरी शक्ल देखने के लिए नहीं बुलाया है। तेरे माँ बाप ने जो 3 लाख रुपए गाड़ी देने की जो बात की थी, वो पैसे और गाड़ी अब तक देने क्यों नहीं आए?
3: माँ जी, बाबूजी के पास पैसे नहीं है, वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? उन्होंने मेरे पढ़ने लिखने में सारे पैसे लगा दिए।
2: अपने पापा से कह देते, अपना मकान गिरवी रख कर दहेज के पैसे दे देती।
3: माँ जी मुझे घर से मत निकालो, मैं अपने घर से दहेज ले आऊंगी।
2: दहेज के तो पैसे नहीं लाई, मेरी माँ से ऐसे जुबान लड़ाएगी? निकल जा मेरे घर से।
3: माँ जी मुझे मत निकालो। बाबूजी बाबूजी।
4: हाँ बेटी।
3: मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया और कहा है कि जब तक तुम पैसे नहीं लेके आओगे, जब तक तुम्हारी शक्ल नहीं मत दिखाना।
4: ठीक है तो बेटी, मैं घर को गिरवी रख कर दहेज के पैसे दे दूंगा।
3: अगर वो अपने लिए पैसे मांग सकते हैं, अपने लालच को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो पापा मैं आपके साथ हूँ, कोई जरूरत नहीं है आपको घर गिरवी रखने की। आप है तो हम है, किसी से दबकर नहीं, सिर उठाकर और अपनी हिम्मत से जीना सीखिए।
1: तो दोस्तों आपने सुना, दहेज लेना और देना पाप है। तो दोस्तों संजना को दीजिए इजाजत, तो कल मिलेंगे इस समय और इसी चैनल पर। आप सबको मेरा नमस्कार।

नमस्कार, मैं भुवनेश्वर शर्मा रीड इंडिया के गीजगढ़ ज्ञान केंद्र सेंटर में आईटी ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर कम मोबिलाइजर पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं एडिली वेंचर प्राइवेट लिमिटेड में कार्य करता था। मुझे प्रकृति एवं पेड़ पौधों से बहुत लगाव है। गांव के नवयुवक बेरोजगार न रहे, इसके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। गांव में हमने एक जल संरक्षण समिति का भी निर्माण किया है, जिसमें मुझे जो है सचिव का कार्य प्रदान किया गया है। हमारी समिति जल संरक्षण एवं अधिक से अधिक गांव में पेड़ पौधे लगाए जाएं, इसके लिए कार्य करती है। हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहाड़ों से आ रहे वर्षा के जल को रोक करके जन सहयोग से कुएं में इकट्ठा करते हुए घटते हुए जल स्तर को बढ़ाने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं, और आगे भी हम इस प्रकार के कार्यों को करते रहेंगे। गांव की बंजर श्मशान भूमि में, जहां कभी कोई पेड़ नहीं होते थे, जन सहयोग से हमने वहां 100 पेड़ लगाए। लगभग 60 पेड़ वहां नए तैयार हो गए हैं। ऐसे कार्यों को करने के लिए ईश्वर जो है हमें शक्ति बल प्रदान करें। सभी का धन्यवाद।

जिला झज्जर माजरी गांव और तन्नु की तरफ तय आप सबने मेरी राम राम। तो प्रिय साथियों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक छोटी सी कहानी और हमारी कहानी का शीर्षक कुछ इस प्रकार है कि दिल की कहानी और मेरी जुबानी। तो सुनिए किस प्रकार एक छोटी सी बच्ची अपने पापा से कहती है, शाम हो गई है घूमने चलो ने पापा, कि शाम हो गई है घूमने चलो ने पापा, चलते चलते थक गई हूँ कंधे पर बिठा लो ने पापा, मम्मा तो सो गई है अब आप ही थपकी देकर सुलाओ ने पापा, कि मम्मा तो सो गई है अब आप ही थपकी देकर सुलाओ ने पापा, पाला पोसा बड़ा किया कि पाला पोसा बड़ा किया, अब जुदा तो मत करो न पापा, आपने मेरी हर बात मानी एक बात और मान जाओ न पापा, स्कूल तो पूरी हो गई है कॉलेज जाने दो न पापा, कि स्कूल तो पूरी हो गई है कॉलेज जाने दो न पापा, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है एक बार मुस्कुराओ न पापा, कि आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है एक बार मुस्कुराओ न पापा, इस धरती पर बोझ नहीं हूँ मैं, कि इस धरती पर बोझ नहीं हूँ मैं, दुनिया को समझाओ ने पापा, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है एक बार मुस्कुराओ ने पापा।

0: तो प्रिय साथियों, जैसा कि आपने इस छोटी सी कहानी में सुना कि किस प्रकार एक छोटी सी बच्ची शाम के समय अपने पापा के सामने अपनी बात रखती है और उनसे कहती है कि आपने मेरी सारी बातें मान ली, मैंने स्कूल भी पूरी कर ली है, लेकिन मैं अब आगे पढ़ना चाहती हूँ और अपने भविष्य में कुछ बनना चाहती हूँ, आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी बात समझ आई होगी और आप इस दुनिया की सभी उन बेटियों का साथ देंगे जो अपने जीवन में कुछ न कुछ जरूर बनना चाहती हैं और वो किसी न किसी वजह से पीछे रह गई हैं। तो प्रिय श्रोताओं, मैं आपसे अब इजाजत चाहूंगी और कल फिर इसी समय आपसे जरूर मिलेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।
1: सबको मेरा नमस्कार, मैं हूं किरण, गांव माजरी से। मैं आज आपके सामने एक छोटी सी शायरी कहना चाहती हूं। के घणिए बोल्या करती इब कुछ दिन आते चुप हूँ, के घणिए बोल्या करती इब कुछ दिन आते चुप हूँ, बताओ मन्ने के मैं इसी थी जिसी इब हूँ, बताओ मन्ने के मैं इसी थी जिसी इब हूँ। इनकी हर बाता ने रुवाई हूँ, इनकी हर बाता ने रवाई हूँ, इनकी हर आदता ने सताई हूँ, इनकी हर आदता ने सताई हूँ। माँ बाबू भाई भाण, माँ बाबू भाई भाण, हर रिश्ते तो भरी है मेरी जिंदगी, पर मन नहीं ना बेरा मैं क्यों ना खुश हूँ, बताओ मन्ने कि मैं इसी थी जिसी ईब हूँ, बताओ मन्ने कि मैं इसी थी जिसी ईब हूँ। मैं भी फूल की तरह चाह हूँ खिलना, मैं भी फूल की तरह चाह हूँ खिलना, मैं भी चिड़िया की तरह चाह हूँ चहचाना, मैं भी चिड़िया की तरह चाह हूँ चहचाना। और तू के कर लेगी, और तू बाहर निकल कर के कर लेगी, रोकी हूँ माँ बाबू और चाचा ताई का कहना, मानी हूँ माँ बाबू और चाचा ताई का कहना, बताओ मन्ने के मैं इसी थी जिसी ईब, बताओ मन्ने के मैं इसी थी जिसी ईब। रोना चाहूँ रोना पाऊँ, हंसना चाहूँ हंसना पाऊँ, रोना चाहूँ रोना पाऊँ, हंसना चाहूँ हंसना पाऊँ, और चाहूँ मैं भी कुछ घर के आता अलग करना, पर कुछ अपना नहीं रोकी हूँ और उन अपना के खिलाफ मैं जाना पाऊँ। नमस्कार।

0: और मैं ग्रेट नोएडा तुगलपुर गांव से आती हूँ, और यहाँ पे सर मैं आई थी मतलब अपने बच्चों का ही एडमिशन कराने के लिए, और मुझे पता लगा कि यहाँ पे लेडीज़ों को भी पढ़ाते हैं, तो मैं यहाँ पे कम से कम एक साल करीब पढ़ी हूँ सर यहाँ पर। फिर सर यहाँ पे मार्क्स वगैरह बने थे तो उन चीजों वो भी हम लोगों ने निकाले थे, तो हमें सर ने मार्क्स दी बनाने के लिए, हम लोग यहाँ मार्क्स बनाते थे, तो कम से कम उसमें हमने 15-16 हजार रुपए का काम किया था सर 2-2.5 महीने में। तो सर मैंने अपनी बेटी को एक फोन दिलाया उससे, मेरी लड़की तो 12th में पढ़ती थी, हमारे पास फोन वगैरह कुछ नहीं थे, तो मतलब बेटी भी बहुत खुश हुई और मुझे भी लगा कि मैंने कुछ मेहनत की है, तो उस मेहनत से मैंने अपनी बेटी को फोन दिलाया सर, मेरी बेटी बहुत खुश हुई। कभी सोचा भी नहीं था सर कि हम लोग मतलब हम भी पैसे कमा सकते हैं, कभी नहीं सोचा था हमने। तो पहली बार जब हमें पैसे मिले थे यहाँ से मार्क्स बनाने के, बहुत खुशी हुई थी सर, सच्ची में इतनी खुशी हुई थी कि मतलब हम लोग घर में इतनी सालों से ऐसे ही पढ़े हैं, अगर हम पहले ऐसा कुछ सोचते तो आज हम कहाँ से कहाँ होते।
1: मेरा नाम सुषमा है, मैं रहती हूँ तुगलपुर में, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ी एक साल में, तो आज लगा मेरे पे पढ़ना, तो अब मैं फिर इस अब ये सेंटर खुल गया था इसका सिलाई करती, मुझे अच्छा लगा, पैसे कमाए, मास्क भी बनाए थे मैं सर मैंने, तो पैसा भी कमाया था, 4,000 रुपये मैंने कमाया यहाँ पे। एक फोन खरीदा मैंने अपने पैसों से और घर वाले को दे दिया मैंने।
2: मेरा नाम मोनी है और वो पार्लर का कोर्स किया, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ बिल्कुल भी, फिर मुझे मतलब बोलने में कंफ्यूज रहती थी कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, फिर मुझे यहाँ के बारे में किसी ने बताया यहाँ पढ़ाई वढ़ाई भी होती है, फिर मैं यहाँ किसी के थ्रू आई, फिर मैंने यहाँ से पढ़ना सीखा, काफी कुछ सीखा यहाँ से, फिर मुझे यहाँ पे बिनटेक से पार्लर वालर भी मिला, काफी कुछ काफी हेल्प मिली मुझे यहाँ से। पहले मुझे सर किसी से भी पैसे वैसे लेने में मुझे डर लगता था, मैं काम कर लेती थी, मैं सोचती थी कैसे मांगू पैसे इससे, कैसे नहीं, अपने पैसे मांगने में मुझे डर लगता था, पर अब वो चीज नहीं है, अब मैं मांग लेती हूँ सीधे, तो काफी कुछ चीजें यहाँ से सीखने को मिली है, मेरा जो डर था वो यहाँ पे आके सारा निकल गया है।
3: सर मेरा नाम मिथिलेश है, तुगलपुर में रहते हैं हम। पहले हम बोलना भी नहीं झिझकते थे, बहुत ज्यादा डरते थे कि हम ये देखो लेडीजों के साथ, क्यों गांव के आदमी ऐसे ही हैं, नहीं जाने देते नहीं बोलने देते, थोड़ी हमारी झिझक खत्म हुई यहाँ से, थोड़ा हम अपने आप को संभालने लगे, वो कहने लगे अपने लिए जीना सीखो, कब तक ऐसे दबके रहोगे, तो हम थोड़ा सा आने लगे यहाँ पे, फिर पढ़ने लगे पढ़ाने लगे, हम पे कुछ नाम वाम कुछ नहीं आता था, अब तो हम नाम भी थोड़ा मिला मिला के किताब भी पढ़ लेते हैं। लॉकडाउन में बहुत हालत खराब थी, हम पे मास्क मशीन चलाना नहीं आता था, फिर मैं उस पर लड़की ने मेरे चलाया सिखाया, फिर बेटी ने और मैंने हेल्प बहुत ली यहाँ से, फिर उन्होंने मार्क्स दिए, उससे मार्क्स बनाए हमने 10-12 हजार रुपए कमाए थे सर। हाँ, तो उससे मैंने एक महीने का राशन उससे लिया था, मेरे हस्बैंड की बहुत दिमाग की हालत ऐसी थी, उनसे दवाई गोली ली उनसे सर, बहुत हेल्प हुई हमारी इसमें।
4: मेरा नाम संध्या सिंह है, मैं वाराणसी की हूँ, यहाँ तुगलपुर में रहती हूँ, मैं यहाँ सिलाई सीखने के लिए आती हूँ अभी और पढ़ने भी आती थी, थोड़ा अच्छा लगता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, सबके बीच में रहना, अलग अलग चीजें सीखने को मिलती हैं, और बाकी अगल बगल मेरे यहाँ जो भी रहती हैं अगर खाली बैठी हैं तो मैं उनको बोलती हूँ चलो कुछ टाइम पास हो जाएगा, मान लो कुछ सीखने को भी यहाँ पे आने का मतलब कुछ सीखने को तो जरूर ही मिलता है।
2: जून में हुआ कि अनलॉक होने लगा तो काफी लोगों का डिमांड आने लगी कि मैम पैसे नहीं है, घर नहीं चल रहा, कैसे करे क्या करे, तो लगा कि उनको सपोर्ट करने के लिए लॉकडाउन में, तो हम लोगों ने जो गरीब लेडीज थी उनको हमने एनवलप का एक वो दिया कि हमको रद्दी दे के आते थे, वो एनवलप बनाते थे, हम उनकी एनवलप मेकिंग देते थे क्योंकि ऐसे हम उनको कैसे वो करते तो पेमेंट देते, तो हमने सोचा कि एक आइडियल फॉर्म में एक स्मार्ट फॉर्म में हम लोगों को पेमेंट देते तो उनकी जिससे उनकी आत्म उसको भी ना कोई लगे चोट लगे। तो फिर वहां से हम लोगों को ख्याल आया कि अब कैसे इनको अर्निंग करी जाए, तो देखा कि मास्क की डिमांड बहुत है मार्केट में, तो एक हमारे यहाँ लेडीज थी बेनिफिशियरी थी गीता, तो हमने उनसे पूछा कि गीता क्या तुम मास्क बना सकती हो, गीता ने कहा मैम मेरे को यूट्यूब दिखाइए, हम लोगों ने बैठ के यहाँ यूट्यूब देखी और यहीं पर बैठ के हम लोगों ने एक दिन एक डेमो मास्क बनाए, एक बनाया अच्छा नहीं बना, दूसरा बनाया अच्छा नहीं बना, तीसरे चौथे में हमारी बड़ी अच्छी फिनिशिंग आ गई, तो हम लोगों ने जब दूसरों को दिखाया बाहर वालों को तो उन्होंने बड़े अच्छे रिव्यूज दिए कि नहीं नहीं बड़ा अच्छा लग रहा है यार, तो ऐसा लग रहा है मार्केट में बनाया, तो हम लोग भी बड़े मोटिवेट हुए। वहां से हम लोगों ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं 1000 मास्क बनाते हैं और उनको कुछ पैसा मिलेगा, वो 1000 की हम लोगों का टारगेट था और हम लोगों ने करीबन 20,000 मास्क हम लोगों ने बनाए और उससे लोगों को हम फर्स्ट टाइम हम लोगों ने अर्निंग कराई।
5: कोविड में जिस समय सारा दुनिया बंद थी, लोगों के रोजगार छूट रहे थे, एक अवसाद में लोग वहां जा रहे थे और उनके पास में रोजगार के साधन खत्म से होते जा रहे थे, खास तौर से लोअर मिडिल क्लास, वो इसमें सबसे ज्यादा सफलर था। ऐसे समय में रीड इंडिया और कुछ अन्य संस्थाएं साथ में आई और हमने यहां मास्क बनाने का कार्य, पहले प्रशिक्षण दिया इन महिलाओं को और उसके बाद में इनसे मास्क बनवाए गए, जिससे इन 3 महीनों में लगभग 20 परिवारों को औसतन 5,000 रुपए प्रति परिवार की आय में बढ़ोतरी हुई। ये बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है, लेकिन ऐसे समय में जबकि कुछ भी नहीं हो रहा था, सारा बंद पड़ा था, तो ऐसे समय ये बहुत बड़ा सहयोग था।

0: ग्रिड इंडिया के माध्यम से अब यहां पर एडवांस प्रोग्राम्स इन आईटी जैसे साइबर सिक्योरिटी, ऑडियो एंड वीडियो मेकिंग डॉक्यूमेंट्रीज, टैली, इस तरीके के कई प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स जो है रीड इंडिया ने यहां लॉन्च किए हैं। उन्होंने अपने ट्रेनर्स हमको प्रदान किए हैं एवं कई अन्य प्रकार की भी सहायता वो प्रदान कर रहे हैं, जिससे कहना चाहिए फाइनेंशियली वीकर सेक्शन है उसको एक बड़ा फायदा होने वाला है।
1: मैं शुक्रिया अदा करती हूँ गीता मैम और रीड इंडिया का, क्योंकि मुझे ये फील्ड के दौरान ही पता चला था कि यहाँ पर एक सेंटर है और मैंने उस सेंटर में जाकर कंप्यूटर सीखा और उसके बाद मैंने दिल्ली महिला आयोग में जॉब ज्वाइन की और जो मैं दीपशिखा में ही दूसरे प्रोजेक्ट में काम करती हूँ दिल्ली महिला आयोग में, वो सब संभव हो पाएगा आपकी वजह से ही। तमाम थैंक यू।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: Good evening, everyone. Welcome to today's episode of Nurturing Grassroots Leaders, Branding the Local Culture with Development. Today's guest will be Mrs. Sana from Barabanki, UP, who's here to share her story with us. As for a little background about her, she did her schooling in Barabanki but got married at a very early age, so had to wait for a while before continuing her studies. She did MA in English Literature and started teaching in Central Academy School. While working there, she and her husband got involved in an organization named ASI, which now goes under the name of Tanager. And while working in ASI, she was given a project regarding different farming communities. And through that, she got to know about Read India organization. She later joined Read India in March 2018 and is currently working as a center coordinator. Her current goal is to make sure that Read India is providing facilities and benefits to as many people as possible. This was just a little background about her, and she is going to explain that in much greater detail. So with that being said, I would like to request Smita ma'am to continue the program.
1: Thank you, Shashank. Thank you for the brief introduction about Sana. I welcome everybody, all our viewers, to another exciting episode of Nurturing Grassroots Leaders. Jaisa ki Shashank ne bataya, humare saath aaj Sana hai. So welcome, Sana. Welcome to our show. So Sana, और देर ना करते हुए हम आपके बारे में और जानना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे. आप थोड़ा बताएंगे अपने बैकग्राउंड के बारे में. ब्रीफ में शशांक ने बताया, बट आप भी बताएं कि कहाँ पे आपका बर्थ हुआ, कहाँ पे आपने एजुकेशन कंप्लीट करी, फिर आपकी जैसे जर्नी आगे बढ़ी उसके बारे में आप बताना चाहेंगे.
2: गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. थैंक यू मुझे ये चांस देने के लिए कि मेरी जर्नी हम शेयर कर सकें रीड इंडिया के थ्रू. जितने भी लोग अब सुन रहे हैं, रीड इंडिया में के वजह से आज हम यहाँ तक लाइफ में पहुँच पाए हैं. आज मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं और मेरे नाम से जानते हैं. थैंक्स, वेरी थैंकफुल टू रीड इंडिया फॉर दिस. सो स्टार्टिंग माई जर्नी, मेरी जो बर्थ हुई थी वो मेरे नानी के घर में हुई थी, बरेली में. वो एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, यूपी में ही है, बट वो दैट इज नियर रामपुर. तो मेरी बर्थ बरेली में ही हुई थी मेरे नानी के घर पे. उसके बाद जब वापस आए दादी के घर पे हम लोग, तो मेरी स्कूलिंग शुरू हुई बाराबंकी से. बाराबंकी से हम एट्थ में ही थे, तो सामने दर्टल स्टैसेस की वजह से थोड़ा सा, एज मेरे फादर फॉरन में रहते थे, ही वॉज डूइंग हिज जॉब देयर, ही वॉज नॉट लिविंग विद अस. हम लोग अपने दादी के घर में रहते थे बट पापा बाहर काम करते थे. तो ऐसे हमारी लाइफ शुरू हुई. बट जब हम एट क्लास में थे तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स घर में होने लगी थी, मम्मी पापा का ये, तो थोड़ा बहुत इसकी वजह से. फिर जब मेरा नाइन्थ था, जब टेंथ में मेरे क्लासेस शुरू होने वाले थे, तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे बाराबंकी छोड़कर अपने फादर के साथ शिफ्ट होना पड़ा, जिसकी वजह से मेरी स्कूलिंग एक रेगुलर CBSE स्कूल से होल्ड होकर के एक प्राइवेट टेंथ कि मुझे ऑप्ट करना पड़ा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी CBSE रजिस्ट्रेशन होता है कुछ प्रोसेस, तो वो चल रहा था. तो टेंथ में हमको FA करना पड़ा. फिर टेंथ में होते होते ही मेरी शादी फिक्स कर दी गई. और फिर ना चाहते हुए भी उस एज पर, एट द एज ऑफ 16 and a half, आई हैड टू गेट मैरिड ड्यू टू दैट. मेरी शादी हुई थी बट एक विल पावर था कि नहीं, ऐसे तो नहीं बैठ सकते, मतलब दिस इज नॉट फॉर मी. तो मेरी शादी हुई टेंथ में. मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया टेंथ का एग्ज़ाम देने. वो मुझे लेकर जाते थे शादी के 3 महीने बाद ही. मार्च जनवरी में शादी हुई, मार्च में एग्ज़ाम्स आ गए. उन्होंने मुझे पूरा टाइम दिया कि मैं पढ़ें, अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें. फिर वो मुझे एग्ज़ाम्स के लिए लेकर जाते. फिर मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मुझे 12th भी करना है. तो उन्होंने इमिडिएटली हाँ कर दिया विदाउट एनी थिंग. इवन दो आई वॉज मीन लाइक मेरा बेबी था ऑलरेडी, अब्दुल्ला वॉज बॉर्न आफ्टर टेन, बट ही सेड अगर तुम्हें करना है तो यू कैन गो फर्दर. तो फिर उन्होंने मुझे 12th करना है. फिर ग्रेजुएशन मैंने इस तरह पूरा किया. 12th के बाद एक्चुअली मेरी बेटी ट्विंस डॉटर भी. फिर मुझे 2 साल के लिए पढ़ाई अपनी रोकनी पड़ी, होल्ड कराना पड़ा, बिकॉज इट वॉज वेरी टफ फॉर मी टू स्टडी विद 3 of the kids और 2 ट्विंस के साथ. इट वॉज वेरी टफ. सो ऐसे 10th हुआ, 12th हुआ. उसके बाद हमारा फिर ग्रेजुएशन, फिर मैंने MA किया. इस सारे प्रोसेस के दौरान आई वॉज हैविंग माई फैमिली सपोर्ट अ लॉट. इंटर के बाद MA का फाइनल ईयर का रिजल्ट आया, तो मुझे लगा कि अब क्या करना है. तो फिर मैंने यही सोचा कि अब स्टडी को ब्रेक लगा देते हैं, बिकॉज आई नीड कि मुझे बाहर जाना चाहिए। घर में बैठकर हमने पढ़ाई तो कर ली, घर में बैठकर सब कुछ कर लिया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आई मतलब मैं पूरा टाइम फ्री हूँ। देन आई स्टार्टेड मैंने अपनी सीरीज दी, मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हुई, उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि आपने कहीं पर भी आप इतने बड़े स्कूल में आपने अप्लाई कर दिया सेंट्रल में, आपने ये भी नहीं सोचा कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने बोला मैम एक्सपीरियंस तो पढ़ाने से ही आएगा, कोई भी फ्रेशर कभी एक्सपीरियंस तो नहीं हो सकता, एंड एवरीबडी नीड अ चांस कि वो कुछ अपने आप को प्रूव करे। तो आप एक डेमो दे दो, उसके बाद हम देखते हैं। फिर मैंने उन्हें डेमो दिया तो थैंकफुली मेरा हो गया सिलेक्शन वहाँ पर। इस तरह हमने जॉब स्टार्ट कर दी। जॉब स्टार्ट करने के 3-4 साल के बाद ही मेरा रीड इंडिया के साथ कनेक्शन हुआ थ्रू ऑब्वियसली थ्रू मैनेजर और अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर इस तरह से हम रीड में जॉब स्टार्ट की। रीड में जॉब स्टार्ट करने का सबसे फर्स्ट रीज़न जो मेरा था कि शायद ये बहुत मुझे मतलब हमेशा से एक इनर फीलिंग आती थी कि मुझे सोशल वर्क करना चाहिए। सोशल वर्क करने की जो विल थी उससे ही हमको टीचिंग की तरफ अट्रैक्ट किया था। बिकॉज आप थोड़ा सा सोशलाइज हो जाते हो जब आप इतने सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हो, आप क्लासेस लेते हो, उनमें से कुछ हर बच्चे की एक अलग स्टोरी होती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। मेरा रेसेस का टाइम भी मेरा क्लास में ही जाता था, हम कभी स्टाफ रूम में बैठ कर लंच नहीं करते थे, हम बच्चों के साथ क्लास में, इवन दो वो 10-12 के सीनियर स्टूडेंट्स थे, बट मेरा लंच टाइम क्लास में ही होता था। तो बाकी टीचर ऑप्शन भी करते थे कि आपको स्टाफ रूम में आना चाहिए, मैंने बोला नहीं, मेरा एक वो है कि मेरा उनके साथ कुछ है अट्रैक्शन क्योंकि वो मेरी क्लास है। तो इस तरह से चलता रहा। फिर जब रीड इंडिया के साथ हम कनेक्ट हुए तो रीड इंडिया में के लिए मैंने अपनी जॉब को इमीडिएटली, स्मिता मैम से मेरी पहली मुलाकात दिसंबर में हुई। स्मिता मैम जब पहली बार आई थी यहाँ पर जगह देखने के लिए, गीता मैम, स्मिता मैम एंड नाइट सर, तब भी हम जॉब पर थे, मेरी स्मिता मैम से फर्स्ट टाइम मुलाकात भी नहीं हुई थी। तब जब सेकेंड टाइम में गीता मैम और नाइट सर आए तब हम घर पे थे, इट वॉज दिसंबर। तो जब मैं गीता मैम से मिली और मैंने उनकी बातें सुनना शुरू की, मैं शी वॉज लाइक मैंने ये स्वेटर पहना हुआ है, ये भी यहाँ के वीमेन से रीज किया है, हम लोग ऐसे काम करते हैं। तो एट द टाइम मतलब कुछ आई वॉज लाइक ब्लैंक, मैम क्या है रही है, क्या ये रियलिटी है, ऐसा होता है, जो ऐसा काम करते हैं। बिकॉज एक इमेज थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक इमेज थी, आप न्यूज देखते हो, आप आसपास का अपने माहौल देखते हो कि नहीं ऐसा नहीं होता, एनजीओ वाले ऐसा तो काम कर ही नहीं सकते, बस नाम का एनजीओ, मतलब दैट वॉज एन इमेज। अगर आप एक ऑर्डिनरी पर्सन से पूछो तो यही इमेज है एनजीओ की। आई वॉज लाइक दैट, मतलब आज शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए बिकॉज आई एम वर्किंग इन एनजीओ टू, बट वो इमेज थी, रियलिटी यही थी मेरे लिए। तो मैम बोल रही थी और मैं सुनी थी ऐसे बैठकर, मैम हम मैम सामने बैठे हुए थे, बट मैम बोल रही थी और मैं सोच रही थी अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। देन मैम हमारा गुसाईगंज का भी सेंटर तब दिसंबर में ही खुला था हमारे सेंटर के सीमा पर, तो मैम ने बोला कि आप आइए आप देखिए हमारा क्या है। फिर मैंने एक बार कम्युनिटी बोला कि मना मत करिएगा, हम लोग जाएंगे क्योंकि मुझे देखना है क्या है, रियलिटी ऐसी है, मैम का सेंटर कहता है, एक बार को भी ये था कि हाँ अगर हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, जगह दे रहे हैं, तो चलो एक बार देख लेते हैं व्हाट इज दैट। जब हम लोगों ने स्टेप इन किया, जब हमने स्टेप इन किया गोसाईगंज के सेंटर के अंदर, मैं इट वॉज लाइक मतलब मैं देख रही थी स्कूल है कि ये स्किल सेट्स हैं, मतलब लाइब्रेरी भी है, उसमें कंप्यूटर्स भी रखे हुए हैं, मतलब लाइब्रेरी इट वॉज लाइक अ ड्रीम, क्योंकि लाइब्रेरी तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। जैसे लाइब्रेरी होती है हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे गाँव में लाइब्रेरी है, हमारे शहर में लाइब्रेरी है। और आई वॉज लाइक यार लाइब्रेरी है यहाँ पे, इन्होंने कंप्यूटर्स भी रखे हुए हैं, इन्होंने मशीन भी लगाई, इन्होंने गाँव में ला के प्रोजेक्टर भी लगा रखा है। मीन्स ये सारी चीज़ें एक बंदे के माइंड को बहुत इम्पैक्ट करती है जिन्हें इसकी वैल्यू पता होती है। तो आई वॉज लाइक की मतलब मैंने बहुत अच्छे से,
3: आप थोड़ा बताएंगे व्यूअर्स को, शायद आइडिया नहीं होगा कि ये जो गांव की आप बात कर रहे हैं गोसाईगंज बाराबंकी, इनकी लोकेशन के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दीजिए, बिकॉज ऑल ओवर द कंट्री और समटाइम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर व्यूइंग द प्रोग्राम। तो आप थोड़ा बताएंगे जो आप विलेज की, ताकि वो भी विजुअलाइजेशन कर सकें कि जिन गाँव की आप बात बता रहे हैं वो शहर से कितनी दूर है, वहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि कई बार सुनने वाला ये अंदाजा नहीं लगा पाता कि शायद एक कंप्यूटर को देखना, हाथ लगाना भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आप उसके बारे में भी दीजिए सना।
2: यस यस तो बालवन टीचर सेंटर है यूपी में है, गुसाईगंज सेंटर भी यूपी में ही है। इंडिया में यूपी एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश यूपी सिटी है लखनऊ, विच इज़ वेरी वेल नोन बाई एवरीबडी। लखनऊ के बाहर जब हम आते हैं तो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर आता है, बाराबंकी सेंटर जो बड़ा गाँव में जिस पे अभी हम वर्क कर रहे हैं करेंटली। और गुसाईगंज सेंटर में है वो अदर रूट पर है, वो लखनऊ से अप्रॉक्स 20-20 किलोमीटर्स की रेंज में है। तो ये बड़ा गाँव सेंटर है जिसके पिक्चर्स अभी डिस्प्ले हो रहे हैं, ये वो सेंटर है, ये पूरी लोकेशन है। तो इस तरह से फिर हम जब बस्तिया गए, बस्तिया में मैंने देखा सारी चीजें, फिर मैंने वहाँ के लोगों से बात करना शुरू की कि ये सेंटर के बारे में आपको पता है, आप लोग यहाँ आए हैं इनॉग्रेशन में, आपको क्या लगता है सेंटर में क्या, क्योंकि मतलब मेरे अंदर क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, तो यहाँ आया तो क्यों आया, उसे क्या बताया गया, वो क्यों आया, सेंटर कैसे सर्वाइव करेगा, लोगों को इम्पोर्टेंस पता है। तो उन्होंने कहा कि जी जी मैम यहाँ पे सब गए थे बताने के बारे में, हम लोगों को बताया गया सेंटर खुलने वाला है, तो हमने पूछा आप लोग आएंगे सेंटर, क्योंकि गांव में शायद आपने कभी देखा नहीं। बोले मैम यही तो बात है कि हमने तो कभी कंप्यूटर देखे ही नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं कंप्यूटर होता कैसा है, खाली नाम ही सुने। गुसाईगंज जो सेंटर है ना बस्तिया, दैट इज वेरी फार फ्रॉम लखनऊ, और वो बहुत ज्यादा ही मतलब बैकवर्ड है, यू नो मतलब प्रॉपर विलेज, विच इज कॉल्ड अ प्रॉपर विलेज, दैट इज दैट प्रॉपर विलेज, मतलब जहाँ पे बच्चों को प्राइमरी स्कूल भी शायद वहाँ उनके घर से थोड़ी दूर पर ही होगा, उन्हें स्कूल भी जाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। तो वो ये सेंटर तो उनके लिए वॉज लाइक अ चांस कि उन्हें लाइफ में कुछ अचीव होने वाला है, वो ऐसे सेंटर पे खुला हुआ था वो जगह। तो वहां से वो मुझे मतलब दिमाग में आ गया कि नहीं ये बेस्ट है जो बड़ा गाँव में होने वाला है, इट विल चेंज बड़ा गाँव, इट विल गिव अ ट्रांसफॉर्मेशन टू द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन बड़ा गाँव। सो वी वर लाइक ओके, मतलब मी एंड इवान वर सो सैटिस्फाइड कि नहीं अब आप करते हैं, बस अब यही करना है। तो नेक्स्ट से जाने के बाद मैंने जाके सबसे पहले अपना रेजिग्नेशन लिखा, मैंने कहा मुझे अब काम नहीं करना स्कूल में, मुझे अब यहाँ काम करना है। दैट वाज सो मतलब एक बार वो फ्रेंड पहले सोच तो लो, मैंने कहा नहीं मुझे अब यही करना है, मुझे वो जॉब देंगे नहीं देंगे वो तो बात की बात है, मतलब मुझे करना है।
3: हम व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये हमारे ये बाराबंकी सेंटर की है जिसकी बात सना कर रही है, जो हाँ जहाँ पे सना बेस्ड है। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं सेटअप है पूरे सेंटर का, और जो विजिटर्स आए हैं ये कैलिसंस के ग्रुप के मेंबर्स हैं, और भी फॉरेनर्स भी विजिट करते हैं, लोकल टीम से भी बहुत लोग आते हैं। जो ये सेंटर है ये कैलिसंस नाम की एक कंपनी है जो मिंट फार्मर्स के साथ काम करती है, ये उनके सपोर्ट से ये सेंटर चल रहा है। करीबन 3 साल से ये सेंटर इस एरिया में चल रहा है, जिसको कि सना अपनी टीम के साथ और अपने टीम ऑफ वॉलंटियर्स टीम ऑफ स्टाफ के साथ मैनेज करती हैं, जिसकी स्टोरी सना बताई। तो सना हमने शुरू से ही देखा आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रोल उन्होंने प्ले किया, स्पेशली अर्ली मैरिज हुआ, अर्ली आपके बच्चे हो गए, देन इवन देन यू हैव नॉट गिवन अप। सो ये फीलिंग कैसी थी जब आपको, बिकॉज हमने देखा है स्पेशली इंडिया में सर्टन ग्रुप्स में सर्टन एरियाज में तो बिल्कुल इनकरेज ही नहीं करते, स्पेशली शादी के बाद तो ये एकदम ऐसे ड्रीम कम ट्रू हो गया जिस तरह का माहौल, जिस तरह का यू नो सपोर्ट आपको मिला है। सो यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट?
2: Yes, ma'am. Being in a community, in a Muslim community, is very tough to come out of the house. मतलब हमारे यहाँ का तो culture नहीं है वो कि हम घर से बाहर भी जाएं. But education changes everything. I believe in that. और ये क्योंकि जो लोग इसकी importance ज़्यादा जानते हैं, जिसे इकबाल को ये लगता था कि चलो कुछ तो अगर वो करना चाहिए तो करने देते हैं. और हमको ये था कि हमें करना है तो करना है, अगर कोई कुछ बोलता भी है कुछ रोक भी रहा है तो वो अपने रोक रहा है, एक दिन बोलेगा, दो दिन बोलेगा, तीन दिन बोलेगा, फिर खत्म हो जाएगा। और वो ही हुआ मैम, दो बार तीन बार सबने ऑब्जेक्शन किया, फिर सब सारे चुप हो गए मैम। और अब तो ये है मैम, लोग मेरा नाम लेके अपने घर में लोगों को मोटिवेट करते हैं कि सना मैम को देखो, सना मैम को देखो, कुछ सीख जाते हैं उनसे कैसे वो के साथ रहती है, कैसे वो सेंटर का काम करती है, वो घर का भी काम करती है, छोटे बच्चे को भी देखती हैं, बाहर के बच्चों के साथ भी वो ऐसे बिहेव करती है। तो मैम सुनने में खुद को भी अच्छा लगता है, वेरी ऑनेस्ट, खुद को भी सुनने में बहुत और फील होता है कि मेरे लिए लोग ऐसी बात करने लगे हैं। ये सब कुछ पॉसिबल है तो सिर्फ रेड इंडिया की वजह से, रेड इंडिया नहीं होता तो डेफिनेटली मेरे बारे में कोई आज ऐसी बात ही नहीं कर रहा होता, क्योंकि लोग मुझे जानते ही नहीं कि हम कौन हैं।
3: कि ये पॉइंट हम इसीलिए लाना चाहते थे बिकॉज आज का जो हमारा टॉपिक है नर्चरिंग ग्रास रूट लीडर्स, तो आप जैसे लीडर्स जो हैं एक इमेज, पॉजिटिव इमेज बना रहे हैं कम्युनिटी में, जो कि चेंज एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो कैसी बहुत सारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है फैमिली से, तो ये मैसेज हम आपके माध्यम से ये भी देना चाहते हैं कि अगर फैमिली सपोर्टिव हो तो महिलाएं लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं, एंड आप उसका जीता जागता एक एग्जाम्पल हैं जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, आपके जैसे बहुत लोग होंगे। So that is what I wanted to bring to the audiences. Special mention to you and your family for this initiative जो आपने life changing अपने लिए और अपनी community के लिए लिया है कि एक second नहीं लगाया और आपने कहा कि मैं अपना job resign कर रही हूँ और मैं Reed के साथ जुड़ के ये कार्यक्रम करना चाहती हूँ। So we congratulate you for this effort and we want to know more about your center now. बाराबंकी में आपका जो ये सेंटर है इसमें कौन कौन सी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, कैसे आप कम्युनिटी में जाते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं आपको कम्युनिटी में जाने में?
2: मैम कैलेसेंस जो हमारा प्रोजेक्ट है तो दिस इज बेसिकली फॉर मेन पावर के, हम मेन पावर को भी उतना ही डायरेक्ट करते हैं जितना हम बाकी कम्युनिटीज को करते हैं। तो मेन फार्मिंग की अगर हम बात करें तो मेन फार्मिंग कम्युनिटीज में हमें चैलेंज काम करने में जो हमारे साथ पहला चैलेंज है वो ये था कि वहाँ पर लोग बच्चों से मेंट की फार्मिंग कराते हैं क्योंकि वो उनका काम है, तो उन्हें सेंटर तक लाना वो अ बिग चैलेंज, क्योंकि उनको समझा के कन्विंस करना कि आप काम छोड़ कर आओ। तो कभी कभी जो हमारे सेंटर पे जो एक्टिविटीज चल रही थी स्टार्टिंग में, जब हमने 2018 में स्टार्ट किया था, तो हमारे पास बेसिक सेविंग, बेसिक कंप्यूटर कोर्स एंड ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स एंड लाइब्रेरी, हमारी चार कॉम्पोनेंट्स तब थे। अभी तो हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। जब हमारा स्टार्ट हुआ था तो हमें ज्यादा मेहनत तब नहीं करनी पड़ी 2018, बिकॉज नया नया सेंटर खुला था यहाँ पर और ऐसा कोई भी कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही थी जो जिससे इनको ये बेनिफिट मिलता। तो स्टार्टिंग में तो हमारे पास बहुत अच्छी फुटफॉल थी 2018, इट वॉज वेरी नाइस। हम लोगों को बहुत कम मोबिलाइजेशन के लिए जाना पड़ता था बिकॉज इतने सारे एडमिशन 6-7 महीने तो बिल्कुल नहीं करनी पड़ी। बट आफ्टर 7 मंथ्स आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये तो सिर्फ गांव के ही लोग गा रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा। और मैं क्योंकि एक कैलिसेंस उसका हमारा डोनर है तो वी शुड फोकस मोर ऑन मिंट फार्मिंग कम्युनिटी दैट दे शुड कम टू द सेंटर एंड लर्न समथिंग। तो हमने फिर हमने बासा एक पॉइंट है यहाँ पर 5 किलोमीटर यहाँ से दूर है जहाँ पर बहुत मतलब टोटल कम्युनिटी वहाँ पर फार्मिंग ही करती है और मिंट फार्मर्स ही हैं। तो हमारे एक SHGs के ग्रुप्स थे पहले, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो उन ग्रुप्स में जाकर वहाँ पर सारी फीमेल्स आती हैं, वो अपने सारी प्रॉब्लम्स शेयर करती हैं। उन ग्रुप्स के अंदर मैंने जाकर के मीटिंग्स लेना स्टार्ट किया, हमने उन लोगों से जाकर बात करना शुरू किया कि आप लोग क्यों अपने लड़कियों को बाहर नहीं निकालती हैं। तो वो कहती हैं मैडम हमारे बच्चों के पास टाइम नहीं है, वो स्कूल जाते हैं फिर वो खेत जाते हैं। तो मैंने कहा कभी ऐसा होता होगा कि वो स्कूल नहीं जाते होंगे, कभी ऐसा होता होगा कि आपका मिंट का सीजन 3 महीने ही रहता है, उसके बाद आप तो आप फ्री रहते हो, मतलब मार्च टू जून एक टाइम है, आप उस टाइम मत भेजो सेंटर पर, बट आप जब भेज सकते हैं जब आपके बच्चे फ्री रहते हैं आप उन्हें तब स्किल्स लर्न करने के लिए सेंटर में भेजिए, क्योंकि वो एक ऐसे स्किल्स आप सीख जाएंगे जो आपके लाइफ टाइम के लिए है। एक बार सेंटर विजिट कर लीजिए, आप देख पाएंगे कि सेंटर में क्या क्या है। लोगों को गांव से उनके घर से निकाल कर सेंटर लाना ही पहले हमारे लिए चैलेंज बना 7 महीने बाद जब वो लोग नहीं आ रहे थे। तो उन उसके लिए हम लोगों को सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लग रहा था वो सेल्फ हेल्प ग्रुप लग रहे, क्योंकि आप पूरे गाँव में जाओगे आपको पूरा दिन लग जाएगा, बट एक ग्रुप जहाँ पर कम से कम 40-45 औरतें मौजूद हैं, मतलब उनकी पेरेंट्स हैं और वो हर वुमेन एक अलग फैमिली से आ रही है। तो कहते हैं ना अगर आपने मदर को एजुकेट कर दिया तो पूरी फैमिली एजुकेट हो गई। तो हमने मदर्स को पकड़ा, मदर्स को बताया कि आपने ये करना है अपने बच्चों के साथ, कि मैम बच्चों को अकेला तो नहीं खेलेंगे, हमने कहा तो आप आइए, आपको आपके लिए भी सेंटर है, सेंटर तो सबके लिए है, आप आइए आपको हम अडल्ट लिटरेसी की क्लासेस देंगे, आप आइए आपके हस्बैंड आएंगे हम उनको भी अडल्ट लिटरेसी की क्लासेस देंगे, आप हमसे भी सिखाएंगे, आपके बच्चों को हम कंप्यूटर सिखाएंगे, आपके बच्चों को हम ट्यूशन पढ़ाएंगे। इतना इतना बताने के बाद मैम जो स्टार्ट हुए हैं उस गांव के लोग आना, हम लोग को लग रहा था कि हम शायद कम मोबिलाइज करना चाहिए था, तो हम उसको संभाल पाते, इतना स्टाफ होने के बाद भी हमारे लिए वो चैलेंज हो गया कि अभी ने कैसे संभालेंगे। फिर ये हो चीज होती रही, फिर हमारे यहाँ मैम, एक मैम सीनियर मैम हमारी आती थी, उन्होंने बोला कि कम्युनिटी एक्टिविटीज करते हैं। फिर हम सब लोगों ने कम्युनिटी एक्टिविटीज स्टार्ट करी। हम लोग कम्युनिटीज में गेम्स लेकर जाते थे, कम्युनिटी के बच्चों के साथ वहीं पर गेम खेलते थे। उसके बाद जब हमारा गेम पूरा हो जाता था तो फिर हम अपने मोबिलाइजेशन स्टार्ट कर देते थे, क्योंकि अगर हम मोबिलाइज करने जा रहे हैं तो हम एक ही बंदे से बात कर पाते। उसमें क्या होता था, गेम खेलना स्टार्ट किया, आसपास वाले देख के इकट्ठे हो गए, सारे सोचते थे कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग। कभी कभी म्यूजिक बजा देते थे लाउड, लोग घर से निकल के आ जाते थे। फिर मोबाइल लाइब्रेरी की एक्टिविटी हमने स्टार्ट करी, हम लोग वैन में सारी बुक्स, स्पीकर्स, लैपटॉप्स लेकर जाते थे कम्युनिटी में, वहां पर सारे बच्चों को इकट्ठा करना। मैम वहां पर बच्चे तो किनारे रह जाते थे और उनके पेरेंट्स बाहर निकल के आ जाते थे, अच्छा आपके पास ये भी बुक है। हमारे पास ब्रेल्स तक की डिमांड आई थी कि आप ब्रेल्स लेकर आइए मैम, बिकॉज क्योंकि वहां पे कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें ब्रेल्स की जरूरत थी, तो पॉसिबल ही नहीं हुआ दोबारा जाना क्योंकि कुछ टाइम की वजह से। फिर ये कोविड आ गया तो वो चीज थोड़ी सी बीच में रह गई, बट अब वो हम लोग प्लान करेंगे कि हम ब्रेल्स मंगा करके हमको जाके प्रोवाइड करें। एटलीस्ट उनकी भी तो विश है कि वो पढ़ें, अब वो नहीं पढ़ सकते नॉर्मल बुक्स, तो ऑफकोर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें वो प्रोवाइड करा सके।
3: अभी हम ऑडियो बुक्स भी लेके आ रहे हैं, हमने टाई अप किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, स्पेशली फ्रॉम फॉर द कम्युनिटी हु आर नॉट एबल टू रीड, ये ऑडियो बुक्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं आपके सेंटर में, सो दैट जो नहीं पढ़ सकते किताबें वो ऑडियो बुक्स भी सुन सकें। वेरी वेरी वास्ट वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स आपके यहाँ पे चल रहे हैं सना। आपने मैंने ये देखा कि आपने हेल्थ के ऊपर और लाइफ स्किल्स के ऊपर भी काफ़ी काम किया है, स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड। थोड़ा आप बताना चाहेंगे कि विद स्पेसिफिक इश्यूज ऑफ हेल्थ एंड लाइफ स्किल्स आपने क्या काम किया है?
2: यस मैम, तो हमने हेल्थ के सेशन हमारे यहाँ अप्रैल से जनवरी 2019 से स्टार्ट हुए थे, तो उसमें डॉक्टर निधि लाठी जो हमारी कंसल्टेंट है उन्होंने आकर हमारे सेंटर्स पर सेशंस लिए थे। सेंटर के जो बच्चे सेंटर पर मौजूद होते थे वो उन्हें कनेक्ट कर लेते थे अपनी फैमिलीज को ऑनलाइन, तभी भी वो रिकॉर्ड कर लेते थे सेशन अपने फोन में हम लोगों, और वो जाकर अपनी मम्मी को बताते थे कि देखिए मैम ने बताया सब्जी ऐसे धो के बनाते हैं, हमने बताया है कि ऐसे वॉश करना है, खाना ढक के रखते। तो ये सारी चीजें जो मैम ने बहुत मेहनत करी इन बच्चों के साथ, मैम क्योंकि मैम डॉक्टर है तो जब वो बताती थी तो हम लोग जितना बताते थे उससे ज्यादा उनके बताने से उन्हें समझ आता था कि ये उनको बताते थे बच्चों को ये डॉक्टर है, स्पेशली आपसे मिलने आई है, आपके लिए सेशन लेने आई है। तो सारे बच्चे मतलब एक मैम के एक सेशन में 20-25 ऐसे बेनिफिशियरी हो जाते थे। मतलब फिर उसके बाद मैम ने सेशन लिए, मैम ने हर टॉपिक पर सेशन लिया, उनकी मेंस्ट्रुएशन पर, उनकी फिजिकल फिटनेस पर, उनके हाइजीन पर, उनके न्यूट्रिशन पर। मैम ने 2-3 साल में मैम कॉन्टिन्यूसली सेशन ले रही थी और मैम के सेशन से काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ मैम बच्चों पर, स्पेशली जो गर्ल्स आती थी ऐसे ऐसे टॉपिक्स निकल कर आते थे निधि मैम के सामने कि मैम मुझे भूख ही नहीं लगती, तो मैम उनको बेस्ट सोल्यूशन बताती थी कि आप ऐसे खाओ, आपके टाइम मत बनाओ, आपको इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग खाना चाहिए, फिर आपको धीरे धीरे भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी। मैम से बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते थे, मैम उनके आंसर्स करती थी, क्वेरीज उनकी मैम सारी चीज़ें वो करती थी जो वो बेस्ट अपना दे सकती थी। तो निधि मैम के सेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं हमारे सेंटर पर।
3: थैंक यू सना। जब हम आपके सेंटर पर आए तो हमने ये भी देखा कि बहुत ही खूबसूरत चिकनकारी का काम वहाँ पर चल रहा था, चिकनकारी जो क्राफ्ट लखनऊ का तो फेमस है ही और ये आपके एरिया तक भी काफ़ी स्प्रेड आउट है, सो उसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि आपने लाइवलीहुड को कैसे प्रमोट किया? बिकॉज मिंट एक बहुत ही कैश क्रॉप की तरह लिमिटेड जो है लाइवलीहुड प्रोग्राम है, सो कैसे आपने और स्पेशली ड्यूरिंग कोविड कैसे अगर महिलाओं को हेल्प हुआ, एक एडिशनल स्किल थी उनके पास, सो क्या इस चीज़ से उनको थोड़ा बहुत मदद हुई स्पेशली ड्यूरिंग दिस टफ टाइम?
2: हम लोगों ने स्टार्ट करा था जब हमारा सेटअप हुआ था, तो चिकनकारी में पहले लोगों को लग रहा था कि यहाँ बनाएंगे तो यहाँ पे कैसे दिखेगा क्योंकि लखनऊ के बहुत करीब है, तो फिर हम लोगों ने तो ये बोला कि आप सीख लो, आपको नहीं पता कि टाइम कैसा आएगा, आपका हमेशा आप खेती नहीं कर सकते। जैसे अभी मैं बाद में इसके बारे में बात करूंगी कि जब जो बारिश हो रही है इसके बारे में बाद में डिस्कस करूँ, तो मैंने उनको यही बोला था कि आप सीखो, आप पहले देखो चिकन क्या है, आप समझो चिकन का काम कैसे होता है, वो कहाँ सेल होगी नहीं होगी वो हमारी एडिट है, ओरिएंट इंडिया लिखेगा वो हम देखेंगे कि हमें कैसे फेल आउट करता है। आप पहले काम सीखो। तो जो जितनी भी लड़कियां थी, जो बहुत सारे बच्चे मैम ऐसे भी थे जो कहते थे कि मैम हम खेती नहीं करना चाहते, बट हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर हम खेती ना करें तो हम क्या करें। तो मैंने बोला कि यही आंसर है आपके जवाब का कि आप स्किल सीखो, आप चिकनकारी का वर्क सीखो, आप हमारे प्रोडक्शन यूनिट में जो डिजाइनर कुर्ते बन रहे हैं आप उन कुर्तों को सीखो, आप स्टिचिंग सीखो, आप एडवांस स्टिचिंग सीखिए, और आप लिमिट मत रखिए कि अगर आपने सेविंग सीखा है तो आप कंप्यूटर नहीं सीख सकते। आप डेफिनेटली कंप्यूटर के कोर्सेज भी करिए, आप अलग अलग जगह पर वैकेंसी निकलती है, शायद आप हमारे से सीखकर आप कहीं पर काम करने लग जाओ, या चिकन मकारी का वर्क ऐसा है हम आपको काम देते रहेंगे, आपको हम उसका पैसा भी देंगे, हम आपको पे करेंगे, आप जो भी पीसेस बनाओगे जितने बनाओगे हम उसके अकॉर्डिंग आपको पे करेंगे। तो वो लोग पीसेस बनाते थे, हमारे पास थोड़ा सा माल इकट्ठा हुआ, फिर सेलिंग का पॉइंट आया, तो जितने हमारे यहाँ नाम अभी आपने पिक्चर्स डिस्प्ले करे हमारे इतने सारे विजिटर्स आते थे, तो हम लोग हर विजिटर के सामने मेन चाहे हमारे कैलसन्स के डोनर्स आए या हमारे कोई भी विजिट सेंटर पर होती थी हम सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करते थे, और वो उन्हें और ऐसा मैम होता भी था कि वो जनरली विद अ गुड हार्ट को बाय भी करते थे उस चीज़ को। मैंने कितनी बार ये चीज़ रिपोर्ट भी करी है कि वो आते थे और वो हमारे प्रोडक्ट्स बाय करते थे, तो उससे उन लड़कियों की फेस पर जब वो प्रेजेंट होती थी ये मैंने मैम इन्होंने खरीद लिया, हमने कहा हाँ तुमने मेहनत करी है इसलिए इन्होंने खरीदा है, इनको ये बाहर भी मिल जाता, ये लखनऊ जाएंगे ये लखनऊ में ले सकते थे, ये दिल्ली जाएंगे दिल्ली में ले सकते थे, बट इन्होंने इसलिए खरीदा क्योंकि तुम लोगों ने मेहनत करी। मैम दैट वो वर्ड्स उन्हें इतना कॉन्फिडेंस देते थे, उनको मोटिवेशन मिल जाता था कि नहीं मैम आप सही कहती हैं, हम सीख लें हम सीखेंगे इसको।
3: वेरी नाइस, ऐसी कोई स्टोरी जो आप इतने सारे बेनिफिशरीज के साथ काम करते हैं, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ आप काम कर रहे हैं, इतने सारे आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसी कोई एक दो लाइफ चेंजिंग स्टोरी या इंस्पायरिंग स्टोरीज जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं?
2: श्योर मैम, चिकन की स्टोरी पहले आपको बताते हैं। मैम हमारी जो ट्रेनर थी, ट्रेनर से स्टार्ट करते हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी सेंटर पे ज्वाइन करने से एक साल पहले। मैम मैंने 3 लोगों का इंटरव्यू लिया, बाद में उनको ही मैंने फाइनलाइज करा जस्ट बिकॉज उनकी क्राफ्ट बहुत अच्छी थी, और जब उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया मैम उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि उनके हस्बैंड नहीं है, बिकॉज ही सेड कि अगर मैम हम आपको ये पहले बता देते तो शायद आपको लगता कि नहीं इन्हें रख लेते, बट उनके अंदर वो चीज थी कि नहीं मुझे मेरे स्किल जॉब मिलनी चाहिए, मेरे रीजन के लिए जॉब नहीं मिलनी चाहिए, एंड दैट थॉट चेंज माई माइंड कि नहीं शी इज राइट, उनमें स्किल है। मैम जब फर्स्ट टाइम उन्होंने कुर्ता बनाया और जो मैंने मैम को दिया था गीता मैम को, एंड मैम शी वाज सो हैप्पी कि मैम ये पहले ही मैम इतनी बड़ी, हम 2 कुर्ते देते सॉरी एक कुर्ता मैम आपको और एक गीता मैम को, तो मैम शी वाज लाइक ये दोनों मैम इतनी हाई मैम इतनी हाई प्रोफाइल मैम है ये हमारे लाइफ कुर्ते पहनेंगे, मैंने कहा डेफिनेटली पहनेंगी मैम पहन कर आएंगे और आप देखोगे, तो मैम शी वाज लाइक मतलब उनकी कोई लिमिट नहीं थी खुशी की कि वो कैसे कितना खुश थी। फिर मैम उन्होंने यहाँ पर 1 साल 1.5 साल तक की जॉब की ड्यूरी कोविड में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई थी, बट उन्होंने यहाँ पर 1 साल जॉब किया एंड मैम शी वॉज एबल टू फीड हर किड्स, उनकी 2 बेटियाँ हैं 1 बेटा है, मैम शी वॉज सो हैप्पी कि मैम आपने मुझे जॉब दिया, मैम मैं अपने बच्चों को सपोर्ट कर पा रही हूँ। दिस मैम हमारे यहाँ की सेकेंड स्टोरी है, एक सेकेंड स्टोरी है मैम जिसको हम लोगों ने महिपाल जी ने जिसकी स्टोरी कवर की थी गायत्री पाल मैम, उसके वो यहाँ पर सीलिंग पहले करने के लिए आई थी बेसिक सीलिंग का कोर्स, मैम उसने बेसिक सीलिंग में एडमिशन लिया, उसने बेसिक सीलिंग किया, फिर उसने कंप्यूटर्स देखे बोला कि मैम मैं सीखूँ कैसे, मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती। मैम मैंने खुद उसे 3 महीने बैठकर इंग्लिश पढ़ाई है और इतनी मेहनत से पढ़ाई है कि मैम उसने फिर कंप्यूटर कोर्स किया है, देन उसने एडवांस टीचिंग में एडमिशन लिया, फिर मैम उसने एडवांस टीचिंग सीखा, उसके बाद बोलते कि मैम मुझे मेरे पास पैसे नहीं है मुझे मशीन खरीदनी है, मैंने कहा ठीक है तुम मुझसे ले लो तो मशीन खरीद लो, तो बोलती मैम आप वापस ले लेंगी, मैंने कहा नहीं हम वापस ले लेंगे, ठीक है तुम जो पहले मशीन खरीद लो, फिर दूसरे दिन आके बोलती मैम थैंक यू बट मैंने मशीन ले ली है, एंड मैम एट दिस टाइम उसके पास इतने सारे ऑर्डर्स आते हैं पूरे गांव के, मैम वो कपड़े बनाती है एंड शी इज सो हैप्पी बिकॉज उसके फादर भी नहीं है अभी जल्दी एफआईआर हो गए, तो शी इज सपोर्टिंग हर मदर हर लिटिल ब्रदर एंड सिस्टर फॉर इन देयर एजुकेशन। तो मैम खुद को भी ये फील होता है कि लीड इंडिया के थ्रू हम लोग ये कर पा रहे हैं कि लीड इंडिया ने इतना अच्छे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रखे हैं कम्युनिटी के लिए कि जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत है मैम, ये इसे हम नहीं एनालाइज कर सकते पैसों के साथ, ये जो खुशी होती है हम यहाँ कभी एनालाइज नहीं कर पाएंगे पैसे के साथ कि हम पैसे तो कोई भी दे सकता है मैम किसी को, मैम ये स्किल उनके साथ लाइफ टाइम है।
3: Absolutely. ये स्किल उनके पास हमेशा रहेगी लाइफ में, कभी भी कोई भी मुसीबत आए, जैसे कि आप बताना चाह रहे हैं कुछ बारिशों के बारे में, आई थिंक अभी जो रेन्स आ रही हैं उसके बारे में, चाहे कोविड हो चाहे ऐसा कोई।
2: मैम ये दोनों चीजों ने यहाँ की मतलब पूरी कम्युनिटी को हिला दिया था। पहले तो कोविड पूरा 20 जैसे गया मैम, सबके बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गए, सबके जो भी स्मॉल स्टार्टअप है वो खत्म हो गए, जो जो हालत मैम, जो रेट फार्मर्स को यहाँ पर मिला है, मतलब उनको तो ये था कि फसल में ना ऐसे आग लगा देते हैं, इसको बेचेंगे नहीं। मैम इतना वो मायूस हो गए थे बिकॉज क्योंकि रेट ही नहीं आ रहा था। अब इतनी बुरी हालत चल रही है, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता था मैम, गवर्नमेंट के भी हाथ में नहीं थी वो चीज, बिकॉज वो बिल्कुल हो गया था। और मैम कोविड खत्म हुआ फिर दूसरा वेव आया, सेकेंड वेव में मैम जो बचा था जिसके पास वो भी खत्म हो गया। उसके बाद से मैम ये रेगुलर रेन अभी हो रही है, आपको न्यूज में देखते होंगे यूपी में इतने जबरदस्त तरीके से अलर्ट जारी हो गए थे, इतनी

0: कर रहे हो। सो
1: मेरे पास
0: जी
1: यस मैम, मेरे पास मैम बच्चों के कॉल आने स्टार्ट हुए, बच्चे मिलने भी आए थे सेंटर पर कि मैम आप हमें कुछ काम दे दीजिए। तो मैंने बोला कि ठीक है हम आपको चिकन का देते हैं, आप चिकन का स्टॉक बनाकर आप हमें चिकन करके दो उन कुत्तों पे, हम उनका स्टॉक करेंगे फिर हम उन्हें सेल आउट करके आपको हम आपके अमाउंट देते हैं, तो एटलीस्ट कुछ हेल्प आपकी हो जाएगी। मैंने उन्हें बोला देखो इसीलिए मैंने बोला था कि चिकन सीख लो शायद तुम्हें कल काम आए। उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि ये पैंडेमिक आएगा, फिर ये रेन आएगी, फिर पैंडेमिक सेकेंड वेव आएगा, थर्ड वेव आएगा। तो मैम ये सब चीज़ें वो खुद रियलाइज करने लगे कि स्किल सीखना कितना जरूरी है। फिर मैम वो बाकी अपने फैमिली वाले बच्चों को भी लेके आते कि मैम इनका भी एडमिशन कर लीजिए आप, इन्हें भी सिखाइए।
2: वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मैं सभी को बताना चाहूंगी कि हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग वही कपड़ों को हम भी इनकरेज करते हैं कि इवन विद इन द रीड एंटायर टीम हम लोग चाहते हैं कि हमारे सेंटर्स में जो बन रहा है हम भी उसके क्या कहते हैं वी आर एम्बेसडर्स ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। तो हम बहुत खुश होते हैं अगर सेंटर से हमें कुछ ऐसा लेने को मिलता है। जिस चिकनकारी कुर्ते की सना बात कर रही थी हमने उसे बहुत पहना है, आप प्लीज अपनी ट्रेनर को बता दीजिएगा। इनफैक्ट मैम जो है हमारी वो तो कोशिश करती हैं कि जिस सेंटर पे जाएं वो जरूर वहां से एक कुर्ता स्टिच करवाएं, क्योंकि ये जो आपने बात कही थी ना कि जब उस औरत को लगता है कि उसके हाथ का बना हुआ कपड़ा कहीं बाहर जा रहा है और इतना अप्रिशिएट हो रहा है, उसकी सेल्फ एस्टीम जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसके, उसको हम किसी भी लीडरशिप सेशन और किसी भी मोटिवेशनल सेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। सो इनफैक्ट हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम इन प्रोडक्ट्स को अपने सर्कल में, अपने मार्केट में, जो हमारा नेटवर्क है रीड का जो नेटवर्क है उसमें प्रमोट करें, चाहे हमारी फैमिलीज हैं चाहे हम लोग खुद हैं। सो प्लीज पास दिस मैसेज टू योर टीम ऑल्सो दैट आपके प्रोडक्ट्स काफ़ी जो हैं मतलब मार्केट में अप्रिशिएट होते हैं। सो कीप अप द गुड वर्क एंड आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम टू कॉल आवर कोर मेंटर डॉक्टर गीता मल्होत्रा, बिकॉज उन्हीं की ये विजन है जिसको हम सब मिल के आगे लेके जा रहे हैं। सो I welcome ma'am to the show. Good evening ma'am. We have Sana from Barabanki today.
3: Yeah, I have been listening the discussions. Sana, your answers were very, very encouraging. Good afternoon. And I highly appreciate your dedication and the commitment you have given to the Reed Community Library and Resource Center in Barabanki in Vadagaon. सना बिकॉज मुझे पूरी मेमोरीज मेरी रिवाइव हो गई हैं जब से मैं बाराबंकी जाना शुरू करा था और जगह ढूंढनी शुरू करी थी सेंटर बनाने के लिए व्हेन इंटरैक्टेड विद कैलिसंस टीम इन यूएस एंड देन वी थॉट दैट वी हैव टू स्टार्ट द वर्क देयर। जो सबसे पहली कंडीशन हमारी थी कि हम मिंट फार्मिंग कम्युनिटीज को अल्टरनेटिव लाइवलीहुड देंगे, बिकॉज तब हमें पता नहीं था कि पैंडमिक आएगा या कुछ और चैलेंजेस आएंगे लाइफ में। सो वी स्टार्टेड दैट वी विल गिव सेकेंड लाइवलीहुड टू द मिंट फार्मिंग कम्युनिटी बिकॉज मिंट इज अ सीजनल क्रॉप राइट। एंड आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू दैट हाउ मेनी मिंट फार्मिंग कम्युनिटीज यू रीच थ्रू योर इंटरवेंशंस एंड हाउ मेनी हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम दैट।
1: Ma'am, we have, as per you know, ma'am, we have reached to till 25 to 30 villages, and they have maximum population of mint farmers there. So, ma'am, if we calculate like this, that 80% of the population in each village is committed to the center. They are connected. They are coming to the center. They have learned the skills, and they have moved out. Ma'am, there are many children in mint. I remember one boy was there. His name was Ram, I think. So he was from farming communities and he was working in the farms earlier. But when he came to the center and he said, ma'am, I have passed out my 12th. Now what should I do? So I asked him to learn computers because you're a boy, you can learn computer and do something. And you can search for a job also, but not only computer, but you should continue with your studies. So he asked me, ma'am, should I do graduation? So I said, yes, please go and get admission in graduation and come to the center. We will teach you computer, take English classes from here, take the books, use the library because, and when he came to the library, he was like, ma'am, itni sari kitabe hain yahan par, ma'am,

0: ये भी किताब है मैम, ये भी बुक है मैम, अगर मैं कुछ मंगाऊं तो मिल जाएगा? वो जाए यस प्लीज आप ऑर्डर दीजिए, हम मैम को लिस्ट फॉरवर्ड करते हैं, मैम मुझे सारी बुक प्रोवाइड करवा दीजिए, मैम हमारे डिमांड्स पर सारी बुक इंडिया में देता है, हेड ऑफिस तुरंत अप्रूव करता है बुक्स की जब भी डिमांड जाती है। आप प्लीज मुझे बताइए आपको कौन से बुक्स चाहिए, तो मैम ही डिमांड है और बहुत सारे बच्चों की डिमांड है, बुक के लिए हमने डाला था, फिर अप्रूवल होके मैम बुक्स भी आ गई थी हमारे पास, एंड मैम वो लाइक ही वो सिटिंग इन द लाइब्रेरी फॉर 3 to 4 hours रेगुलरली, एंड after that I won't believe he was in second year only and he got the job in Lucknow in Fun Mall and he's earning 15,000 to 18,000 per month right now, and he was like he came with to me with a box with a sweet box and he was like ma'am ye sab aapki wajah se hua, maine kaha ye maine nahi kaha, ye India ne kaha, please say thanks to ma'am. These are the stories which inspire me a lot.
1: No, Sana, this is your contribution. Teed India is just a facilitator because you are sitting there and you are in touch with the villages. I also wanted to know कि बड़ा गांव में तो बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे, तो आसपास के कितने और गांव हैं जिससे कम्युनिटी इतनी दूर दूर से चलकर आती है आपके सेंटर पे, और कोई ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है जहाँ तक मुझे नॉलेज है, तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू लिसन दैट टू रिवाइव माई मेमोरीज अबाउट दैट.
0: Yes, ma'am. Today only I visited one place, Hasnapur, ma'am, and that, ma'am, I was tired by going by car. But ma'am, the children, the girls from that village is coming to the center on bicycles. Ma'am, I was so shocked. कि ma'am, आज मैं सोच रही थी कि वो जब बच्चे आएंगे तो मैंने पूछूंगी कि आप 25 किलोमीटर साइकिल चलाकर आते हो सिर्फ सेंटर के लिए. तो अभी तो वो आए भी नहीं, बारिश होने लगी. But ma'am, इतने ऐसे ऐसे विलेजेस है, दिस इज द लेटेस्ट डिस्टेंस मैं टेलिंग यू कि ये 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर मैम 25 to 30 किलोमीटर बहुत टफ है साइकिल चलाकर सेंटर तक आ पाना, एंड मैम दे आर कमिंग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर मैम, इतने इतने डिस्टेंस से लड़कियां आती हैं, और मैम वो आके बस इतना ही करती है मैम प्लीज हमारा टाइमिंग मॉर्निंग के बैचेस में लगा दीजिए, हम इवनिंग में जाएंगे तो देर हो जाएगी हमें, तो मैम वो सारे बच्चों को हम लोग मॉर्निंग में इंटरटेन करते हैं, सॉरी क्लासेस की हम लोग मॉर्निंग में ही लेते हैं.
1: सना, ये बात सुनकर मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके पेरेंट्स भी कितने सपोर्टिव हैं, बिकॉज वो भी अलाउ करते हैं कि हमारी बेटियां इतनी दूर साइकिल चला के चली जाए, और उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि एक सेफ स्पेस पे जा रहे हैं, और रास्ते में भी क्योंकि वो ग्रुप में आती है इकट्ठी तो उनको कोई ऐसा चैलेंज फेस नहीं करना पड़ता. दैट इज द ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम योर साइड बिकॉज you motivate them for continuing their education and they find this space safe, protected, support itna milta hai, books unko yahan se milti hain, knowledge support milta hai, aap unke issues resolve karti hain, to yahi ek community library ka jo services hain you are providing more than what is needed actually, so that is highly appreciated. You are providing more than what is needed actually. So that is highly appreciated. मैं और भी मेरे मन में तो बहुत सारे questions हैं, पर मैं थोड़ा और भी आपसे जानना चाहूँगी कि एक तरफ तो आप community को handle करती हैं, जिनको समझाना, motivate करना, encourage करना, और फिर उनको time भी देना, और दूसरी तरफ है आपके विजिटर्स जो नेशनल और इंटरनेशनल डोनर्स हैं और जो विजिटर्स हैं, क्योंकि कैलिसंस हैव द ऑफिस इन पुणे, दे कम टू यूपी क्वाइट ऑफन बिफोर कोविड, तो आप कैसे अपना दोनों तरफ बैलेंस बना के रखते हैं?
0: मैम समटाइम्स सो वी हैव द इंफॉर्मेशन दैट दे आर कमिंग एंड समटाइम्स दे कम लाइक दिस ओनली, सो मैम आई एम वेरी पंक्चुअल, I am regular in the office because I don't like taking leaves at all, and I don't allow the staff also to take leaves unnecessarily. So this is the thing that when they come without any information, we all are here. We all are present in the center. So we know that अभी वो आए हैं तो I have to give my at least they take my 1 hour. So I have to stop all the children कि आप लोग library में जाके बैठिए, अभी मैं कोई session नहीं लूँगी, अभी मैं इन लोगों से बात कर रही हूँ. फिर मैम उनके साथ पूरा उनको एक्सप्लेन करना पूरे सेंटर के बारे में, कैसे हम काम करते हैं, मैम दे आस्क सो मच अबाउट एवरीथिंग अबाउट इन इंडिया, अबाउट बिकॉज दे आर नॉट द डोनर्स एग्जैक्टली, बिकॉज दे आर कमिंग विद द डोनर्स, सो दे आर फ्रॉम डिफरेंट

0: नहीं, गली में कूड़ा है, पार्कों में कचरा, दुनिया हमारी अब स्वर्ग नहीं। ए भाई
1: जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चों की बीमारियों का कारण आपके मोहल्ले का कूड़ा भी हो सकता है? पर यह कूड़ा आता कहाँ से है? अरे जनाब, आप ही के तो घर से। आपने कूड़े को निकाला, भरा और फेंक दिया, और बदले में आपको क्या मिला? बदबूदार नालियाँ, मक्खियाँ जो लाती हैं बीमारियाँ। आपका बच्चा घर से बाहर जाए और बीमारियाँ घर लाए।
2: तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें आप क्या कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं। कर सकते हैं कूड़े का विभाजन। कूड़े को दो तरह के थैले में बांट लें। एक में गीला कूड़ा, जैसे कि फल व सब्जियों के छिलके, बचा खाना, और दूसरे थैले में सूखा कूड़ा, जैसे कि पेपर और प्लास्टिक डाल दें।
1: सरकार ने आपके मोहल्ले में दो प्रकार के कूड़ेदान रखे हैं, हरा गीले कूड़े के लिए और नीला सूखे कूड़े के लिए। यदि आप कूड़ा अलग अलग करके इसमें डाल देते हैं तो गीले कूड़े में खाद बनाई जा सकती है और सूखे कूड़े को तैयार कर दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है।
2: इससे दूर रहेंगी बीमारियां और सुंदर होगा वातावरण। तो अब जब आपका बच्चा घर से बाहर जाए तो बीमारी घर में लेकर ना आए।
1: याद रखिए,
3: कूड़ा निवारण स्वस्थ जिंदगी।
4: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
5: नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, देश इस वर्ष 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इसी के साथ देश भर में हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू हो गया है। इस वर्ष ये अभियान 9 अगस्त से 17 अगस्त तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत देशवासियों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और इस अभियान में भाग लेने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री ने 26 जुलाई को मन की बात के 136वें एपिसोड में कहा कि तिरंगा सिर्फ हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये उन वीरों के त्याग और बलिदान की याद भी दिलाता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने नागरिकों से इस वर्ष भी पूरे सम्मान और उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आह्वान किया।
6: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है, अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है।

0: स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के साथ ही देश भर में हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू हो चुका है। देश भर से लोग इस अभियान में भाग ले रहे हैं और अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। इस बार अभियान देश के साथ साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी मनाया जा रहा है। आइए अब जानते हैं हर घर तिरंगा 2026 में क्या खास है और आप इसमें कैसे भाग ले सकते हैं।
1: हर घर तिरंगा की भावना अब देश की सीमाओं से बाहर भी पहुंच रही है। इसी का एक खास उदाहरण है सूर्य पथ तिरंगा अभियान। सूर्य पथ तिरंगा के तहत दुनिया के अलग अलग देशों में स्थित भारत के दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके जरिए भारतीय प्रवासियों, भारत के मित्रों और स्थानीय लोगों को भी हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ा जाएगा। इस पहल में भारत के 54 राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा ले रहे हैं। 15 अगस्त को ये डिजिटल रिले फिजी से शुरू होगी और सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगी। इसकी खास बात यह है कि ये यात्रा अलग अलग देशों में होने वाले सूर्योदय के क्रम के साथ आगे बढ़ेगी, यानी तिरंगे की ये डिजिटल यात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेगी और दुनिया के अलग अलग हिस्सों को भारत के स्वतंत्रता दिवस के उत्सव से जोड़ेगी। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान कई तरह के कार्यक्रमों के साथ मनाया जा रहा है। इनमें तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली, तिरंगा कॉन्सर्ट, तिरंगा सेल्फी स्थल, तिरंगा दौड़ और तिरंगा श्रद्धांजलि जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा तिरंगा और वंदे मातरम प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें राष्ट्रीय ध्वज के विकास के साथ साथ वंदे मातरम के इतिहास और उसके महत्व को दिखाया जाएगा। श्रोताओं, हर घर तिरंगा अभियान में आप भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अभियान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर भाग लेने के लिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, राज्य और देश जैसी जरूरी जानकारी देनी होगी। इसके बाद तिरंगे को सम्मान के साथ फहराकर उसके साथ एक साफ तस्वीर या सेल्फी लेनी होगी। इस तस्वीर को वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है। तस्वीर अपलोड करने के बाद वेबसाइट पर दी गई प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद भागीदारी का डिजिटल प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री की देशवासियों से अपील के महत्व और हर घर तिरंगा अभियान के विषय पर आकाशवाणी समाचार ने वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को चलाया था और लोगों से आह्वान भी किया था और इस बार भी 26 जुलाई 2026 को जो प्रसारित मन की बात में भी प्रधानमंत्री ने फिर से भारतवासियों को, भारतवंशी जो विदेश में रहते हैं, उन सबको स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर घर तिरंगा अभियान को फिर से इस बार भी पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाने का आह्वान किया था और उन्होंने कहा था कि ये तिरंगा हमारे संविधान के आदर्शों को संजोए हुए है और ये देश को एकजुट करता है। तो इस आह्वान का अर्थ यही था कि लोगों को याद कराना कि जब इस बार 9 अगस्त से 17 अगस्त तक ये जो हर घर तिरंगा अभियान चलेगा, इसमें लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें।
0: इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर से भी जोड़ा गया है। साथ ही सूर्य पथ तिरंगा के जरिए ये अभियान देश की सीमाओं से बाहर भी पहुंचेगा। इस वर्ष के अभियान की इन खास पहलों को किस तरह देखा जाना चाहिए, आइए सुनते हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन से।
2: देश के हर जिले और ब्लॉक में स्थानीय सांसदों, विधायकों और सामाजिक संगठनों के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिनमें युवाओं, जेंजी को बढ़ चढ़कर लेने का मौका मिलेगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल इस बार की गई है, उसका नाम रखा गया है सूर्य पथ तिरंगा, यानी विदेश मंत्रालय के सहयोग से एक पहल शुरू की जा रही है। दुनिया के 54 देशों में मौजूद जो भारतीय दूतावास या हाई कमीशन हैं या कॉन्सुलेट हैं, वो उगते सूरज की दिशा के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर एक के बाद एक तिरंगा फहराएंगे। तो ये एक हमारा जो डायस्पोरा है उनको साथ जोड़ने की भी बात है और हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो दुनिया भर के देशों को भी एक संदेश देना की कोशिश होगी।
0: वर्ष 2022 में इस अभियान के पहले संस्करण में 23 करोड़ से अधिक घरों पर तिरंगा फहराया गया और करीब 6 करोड़ लोगों ने वेबसाइट पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड की। अगले संस्करण वर्ष 2023 में 10 करोड़ से अधिक सेल्फी अपलोड की गई। वर्ष 2025 में भी अभियान में बड़े स्तर पर लोगों ने हिस्सा लिया और 7 करोड़ 50 लाख से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई। हर घर तिरंगा अभियान के जरिए देश भर में तिरंगे के प्रति सम्मान और जुड़ाव की भावना को मजबूत किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराकर इस अभियान से जुड़ रहे हैं, लेकिन तिरंगे के प्रति सम्मान केवल उसे फहराने तक सीमित नहीं है। इसे फहराते समय उसके सम्मान और सही तरीके का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। आखिर तिरंगा फहराने के क्या नियम हैं? इसे किस तरह प्रदर्शित किया जाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जानते हैं अगली रिपोर्ट में।
1: भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, लेकिन तिरंगा फहराने और उसे प्रदर्शित करने के भी कुछ नियम हैं। ये नियम मुख्य रूप से भारतीय ध्वज संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में बताए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं घर पर तिरंगा फहराने की। आम नागरिक अपने घर पर किसी भी दिन और किसी भी अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। जुलाई 2022 के बदलाव के बाद घर या खुले में तिरंगा दिन और रात दोनों समय फहराया जा सकता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, तिरंगा सम्मान के साथ फहराया जाना चाहिए। फटा मैला या अस्त व्यस्त झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। तिरंगे का आकार कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका अनुपात हमेशा 3:2 होना चाहिए। और हाँ, केसरिया पट्टी हमेशा ऊपर होनी चाहिए। तिरंगे के ऊपर या उसके बराबर कोई दूसरा झंडा या झंडियों की लड़ी नहीं लगाई जा सकती। एक ही ध्वज दंड पर तिरंगे के साथ कोई दूसरा झंडा भी नहीं फहराया जा सकता। तिरंगे का इस्तेमाल सजावट के लिए, मेज ढकने या मंच पर लपेटने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसे कपड़े की तरह पहनना या कुशन, रुमाल और नैपकिन जैसी चीजों पर छापना या काढ़ना भी सही नहीं है। और अगर आप अपनी कार पर छोटा सा तिरंगा लगाने की सोच रहे हैं तो यहाँ भी एक जरूरी नियम है। आम नागरिक अपनी कार पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगा सकते। ये अधिकार ध्वज संहिता में बताए गए कुछ गणमान्य व्यक्तियों को ही दिया गया है। अगर तिरंगा किसी दूसरे देश के झंडे के साथ फहराया जा रहा है तो उसके लिए भी नियम तय हैं। सीधे क्रम में लगाए जाने पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज सबसे दाईं ओर होगा और दूसरे देशों के झंडे उनके अंग्रेजी नामों के वर्णमाला क्रम में लगाए जाएंगे। और अंत में अगर तिरंगा क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसे भी सम्मान के साथ हटाना चाहिए। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: श्रोताओं, हर घर तिरंगा सिर्फ तिरंगा फहराने का अभियान नहीं बल्कि आज़ादी के उन मूल्यों को याद करने का अवसर है जिनके लिए हमारे वीरों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तिरंगे के प्रति हमारा गर्व, वंदे मातरम के प्रति हमारा सम्मान और देश को आगे बढ़ाने का हमारा संकल्प, यही मिलकर विकसित भारत की राह को मजबूत करते हैं। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक मोहित सिंह।

लिखी रहे जिला जजर और माजरी गाम और इंदु बड़बोला की तरफ तय सब ने राम राम। तो मैं इंदु बड़बोला आप सभी के सामने दो चार शायरी प्रस्तुत करना चाहती हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। तो सबसे पहले मम्मी पापा के ऊपर है एक के रह, जब मैंने उनका जिक्र कर दिया ना तो बात किसे का समाणी कोनी। के रह, जब मैंने उनका जिक्र कर दिया ना तो बात किसे का समाणी कोनी। अरे या दुनिया मैंने बहुत आजमा के देख ली मेरे भाई, इब और आजमानी कोनी। और उनने मेरे ऊपर बहुत उपकार कराखे है मेरे भाई, मेरे माँ बाबू वर्गे तो कोई राजा रानी भी कोनी। एक है भाई के ऊपर है के रह, दुनिया में माँ बाप के अलावा एक और प्यारा है। के रह, दुनिया में माँ बाप के अलावा एक और प्यारा है, और वो है मेरा भाई जो सब तन्यारा है। और जब भी वो मैंने बुंडी शक्ल की कवे है ना, बेशक ते चिड़ो है पर उसका मजा ही न्यारा है। एक सुनियो फौजियों के ऊपर है के रह, गले में माला पहरणिया और संतरी बाणा पहरणिया, और किसे मानस ने जोगी नहीं कह सकते। के रह, गले में माला पहरणिया और संतरी बाणा पहरणिया, और किसे मानस ने जोगी नहीं कह सकते। और जो मारे खातर खून पसीना बाक दिन रात बॉर्डर पर लड़े जाने मेरे भाई, जय फौजी नहीं हो ना तो हम एक रात भी चैन नहीं सो सकते। एक सुनियो के रह, शर्म ओढ़न पहरण की ना होया करे, आख्या की बतेरी होया करे। और जी मैं कुछ करण की लगन होने वो बंदा दिन रात नहीं सोया करे, और जो जमके करे मेहनत वो कामयाब जरूर होया करे। वाई बात है, राम के घर देर होया करे पर अंधेर नहीं होया करे। तो आप सबका धन्यवाद।

0: स्वतंत्रता आंदोलन की नायिका मातंगिनी हाजरा, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि देश के लिए मर मिटने की कोई उम्र नहीं होती। वर्ष 1932 में अपनी झोपड़ी के बाहर से निकलने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन के जुलूस का शंखनाद से स्वागत करने वाली मातंगिनी 62 वर्ष की उम्र में आजादी के आंदोलन से जुड़ी। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामलुक में इसकी कमान मातंगिनी हाजरा ने संभाली। मातंगिनी ने तामलुक में एक बड़ी रैली निकालने का निश्चय किया और 29 सितंबर को 6000 लोगों के जुलूस के साथ मातंगिनी हाजरा तामलुक थाने की ओर चल पड़ी। ब्रिटिश प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी, लेकिन मातंगिनी हाथ में तिरंगा लिए वंदे मातरम के उद्घोष के साथ बढ़ने लगी। अचानक एक गोली मातंगिनी के दाएं हाथ पर आ लगी। घायल मातंगिनी दूसरे हाथ में तिरंगा लिए फिर आगे बढ़ने लगी। गोलियां चलनी बंद नहीं हुई और लगातार तीसरी गोली 72 वर्ष की मातंगिनी हाजरा के माथे पर जा लगी। आखिरी सांस तक हाथ में तिरंगा और जुबां पर वंदे मातरम, यही थी मातंगिनी हाजरा। अद्भुत साहस, उत्साह और आजादी पाने के ललक से युवाओं को भी पीछे छोड़ने वाली मातंगिनी हाजरा पूरे देश के लिए एक मिसाल है।
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, भारत की समृद्ध हथकरघा परंपरा, बुनकरों की अद्भुत कला और उनके अमूल्य योगदान को सम्मानित करते हुए आज देश 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वर्ष 2025 के 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए गए, 2 विशेष प्रकाशनों का विमोचन हुआ और पुरस्कार विजेता उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का महत्व क्या है, इस वर्ष दिए गए पुरस्कार क्यों विशेष हैं, सरकार हथकरघा क्षेत्र को किस प्रकार सशक्त बना रही है और ये क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति तथा ग्रामीण आजीविका के लिए कितना महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, भारत की हथकरघा परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक भारतीय बुनकरों ने अपनी कला, कौशल और रचनात्मकता से दुनिया में अलग पहचान बनाई है। हर वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 1905 के स्वदेशी आंदोलन की याद दिलाता है, जिसने भारतीय उत्पादों और विशेष रूप से हथकरघा उद्योग को नई ऊर्जा दी थी। वर्ष 2015 से इस दिवस को राष्ट्र स्तर पर मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से भारत के समृद्ध हथकरघा परंपराओं को बढ़ावा देने का आह्वान किया है।
3: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होगा, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाए और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
2: आज भारत का हथकरघा क्षेत्र केवल सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक ही नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार भी है। देश में 35 लाख से अधिक बुनकर और संबद्ध श्रमिक इस क्षेत्र से जुड़े हैं, जिनमें 72% से अधिक महिलाएं हैं। ये क्षेत्र लाखों परिवारों की आजीविका का आधार होने के साथ साथ पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ उत्पादन का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। हथकरघा क्षेत्र के विकास, सरकार के विभिन्न पहलों और भविष्य की संभावनाओं पर विकास आयुक्त हथकरघा डॉक्टर एम बीना ने आकाशवाणी संवाददाता उत्पल कुमार से विशेष बातचीत की, आइए सुनते हैं।
4: डॉक्टर बीना, सरकार ने हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रमुख कदम उठाए हैं और अब तक इसकी मुख्य उपलब्धियां क्या रही है?
5: भारत के हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो इसके तहत हमारा अप्रोच है क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट, क्योंकि वीवर्स जो हैं ज्यादातर एक ही इलाके में रहते हैं, तो उस पूरे इलाके को एक क्लस्टर आइडेंटिफाई करके वहां पर विकासशील कार्यक्रम और योजनाएं हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसमें दो तरह की योजनाएं हैं, एक तो है स्मॉल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहां 500 लगभग वीवर्स जहां रहते हैं तो वहां पे हम ये योजना चलाते हैं, 2 करोड़ तक उसका हम सहायता देते हैं। इसमें हम लूम्स, सोलर लाइटिंग, वर्कशेड वगैरह का हम सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा क्लस्टर में जो एक क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव होगा जब तक ये क्लस्टर कार्यक्रम चलाया जाएगा, और एक क्लस्टर डिजाइनर भी रहेगा ताकि वीवर्स को नए डिजाइन से भी वो उनको अवगत किया जाएगा। दूसरा हमारे मेगा क्लस्टर्स, माने जो बड़े क्लस्टर्स हैं जहां 10,000 से ऊपर वीवर्स है, तो वहां पे मेगा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो 30 करोड़ तक उसका हम असिस्टेंस देते हैं। वो राज्यों के साझेदारी से ये कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सपोर्ट हैं, जैसे कि स्किलिंग सपोर्ट। देखो, वीवर को नए वीविंग टेक्निक्स के बारे में, नए डिजाइन्स के बारे में वगैरह के लिए हम समर स्कीम के तहत उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, और उनको डिजाइन सपोर्ट, प्रोडक्ट नया करने के लिए भी उनको सपोर्ट देने के लिए डिजाइन रिसोर्स सेंटर्स भी बनाया गया है।
4: हथकरघा बुनकरों की आजीविका में सुधार लाने में सरकार की कौन सी योजनाएं सबसे अधिक प्रभावी रही है?
5: बुनकर की आय को बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उनका जो रॉ मटेरियल है, सूता जो है, उसमें हम सब्सिडी देते हैं। तो अगर आप नेचुरल फाइबर जैसे कि कॉटन हो गया, लिनन हो गया, या फिर सिल्क हो गया, या वूल हो गया, तो उसमें हम 15% हम प्राइस सब्सिडी देते हैं, और जो भी अगर इसके अलावा जो नॉट नेचुरल फाइबर्स है उनके लिए हम ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी देते हैं। तो इस तरह से रॉ मटेरियल का कॉस्ट में हम कमी लेके आते हैं। दूसरा, वीवर को मुद्रा लोन का भी फैसिलिटी है, और जब प्रोडक्ट बन जाए तब उनको वीवर को चाहिए मार्केटिंग सपोर्ट, तो उसके लिए जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और नेशनल स्तर पर बुनकर मेले लगाए जाते हैं।
4: डॉक्टर बीना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार केवल उत्कृष्ट बुनाई के लिए नहीं, बल्कि नवाचार, डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप, उत्पादक कंपनियों और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण जैसे विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए भी दिए जाते हैं। संत कबीर हथकरघा पुरस्कार देश का सर्वोच्च सम्मान है, जो जीवन भर के उत्कृष्ट योगदान और पारंपरिक बुनाई को संरक्षित रखने वाले बुनकरों को दिया जाता है। वहीं राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार उन बुनकरों और अन्य हितधारकों को सम्मानित करता है जिन्होंने परंपरा और आधुनिक तकनीक के संतुलित प्रयोग से गुणवत्ता और रचनात्मकता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं में जम्मू कश्मीर के मंजूर अहमद हाजाम और फैयाज अहमद वानी भी शामिल हैं, जिन्हें चंदर कानी शॉल की उत्कृष्ट बुनाई के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं पुरस्कार मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा।
6: मैं फयाज अहमद वानी और मेरे साथ है मंजूर अहमद हजाम। हम कानी हमा बड़गाम के रहने वाले हैं। हम बहुत ही खुश हैं और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं, और ये लम्हा हमारे लिए इज्जत और फख्र का दिन है, और हम ये अवार्ड उन कानी हमा के बुजुर्गों को डेडिकेट करते हैं जिन्होंने इस फन को नस्ल दर नस्ल हम तक पहुँचाया। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे गांव टूरिज्म विलेज और हैंडलूम विलेज करार देकर करोड़ों रुपयों की मावनत की। हम उनके भी बहुत ही आभारी हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसने हमें इस एजाज से नवाजा।
2: इसी तरह ओडिशा के प्रफुल्ल कुमार साहू को पारंपरिक जगतपुर साड़ी की उत्कृष्ट बुनाई के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार मिलने के बाद उन्होंने भी आकाशवाणी से अपने अनुभव साझा किए।
7: मैं प्रफुल्ल कुमार साहू फ्रॉम ओडिशा जगतसिंहपुर। आज मेरे लिए बहुत गर्व और भावुकता का क्षण है। मुझे 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से नेशनल हैंडलूम अवार्ड प्राप्त करने के सौभाग्य मिला है। यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि ओडिशा के जगतसिंहपुर जिलों के सभी बुनाकर और हमारी समृद्ध हथकरघा परम्परा का सम्मान है। मैं भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम, ओडिशा सरकार, वीवर सर्विस सेंटर, नेताजी तंतुबाई सहयोग समिति के सदस्य, बैनिकाओं और सभ्य संस्थाओं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हम जैसे बुनकर को प्रोत्साहन दिया। मैं इसी सम्मान को अपने परिवार अपने गुरुजन और सभी साथी बुनकर को समर्पित करता हूँ।
2: श्रोताओं, इन पुरस्कार विजेताओं की बातें ये बताती हैं कि भारतीय हथकरघा केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत है, जिसे आज भी पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय हथकरघा क्षेत्र ने तेजी से नए आयाम हासिल किए हैं। वर्ष 2025-26 में भारत का हथकरघा निर्यात लगभग 1,331 करोड़ रुपए रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन जैसे देश इसके प्रमुख बाजार हैं। सरकार ने हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 36 हस्तशिल्प वस्तुओं पर GST घटाकर 5% किया गया, हथकरघा क्लस्टरों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया, राष्ट्रीय फाइबर योजना तथा राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम जैसी नई पहलें शुरू की गयी। डिजाइन, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हैंडलूम हैकाथॉन 2026 जैसी पहलें भी की रही है। भारत की हथकरघा परंपरा केवल अतीत की धरोहर नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाओं से भी जुड़ी हुई है। आज भारतीय हथकरघा फैशन, डिजाइन, निर्यात, डिजिटल विपणन और सतत विकास के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हमें उन लाखों बुनकरों के श्रम, समर्पण और सृजनशीलता का सम्मान करने का अवसर देता है, जिनके हाथों से भारत की सांस्कृतिक पहचान दुनिया तक पहुँचती है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, तकनीकी सहयोग अरुणदीप का था। नमस्कार।
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
8: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ वैष्णवी। श्रोताओं, आज पूरी दुनिया के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, बढ़ती ऊर्जा की आवश्यकताएं और जलवायु परिवर्तन। ऐसे में ऐसे ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता है जो स्वच्छ भी हो, भरोसेमंद भी हो और लगातार बिजली उपलब्ध करा सके। यही कारण है कि दुनिया में एक बार फिर परमाणु ऊर्जा की ओर ध्यान बढ़ रहा है। सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोत स्वच्छ तो हैं, लेकिन उनकी उपलब्धता मौसम और समय पर निर्भर करती है। इसके विपरीत परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2400 घंटे लगातार बिजली उपलब्ध करा सकते हैं, इसलिए इन्हें बिजली व्यवस्था की एक विश्वसनीय आधारशिला माना जाता है। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार कई स्तरों पर एक साथ काम कर रही है। एक ओर शांति अधिनियम के माध्यम से कानूनी और नीतिगत ढांचे को आधुनिक बनाया गया है, वहीं दूसरी ओर स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकियों के विकास और नई पीढ़ी के रिएक्टरों पर निवेश बढ़ाया जा रहा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ईंधन सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि हाल के वर्षों में किस प्रकार भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को नई दिशा मिली है और इस क्षेत्र में हुई प्रमुख उपलब्धियां भारत की ऊर्जा सुरक्षा तथा स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को किस प्रकार मजबूती प्रदान कर रही है। श्रोताओं, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का एक लंबा इतिहास रहा है। वर्ष 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम देश के परमाणु कार्यक्रम की आधारशिला बना। इसके बाद संशोधनों के माध्यम से सरकार ने इस क्षेत्र में सरकारी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं, तकनीकी क्षमताओं और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े लक्ष्यों में तेजी से बदलाव आया है। ऐसे में आवश्यकता महसूस की गई कि परमाणु ऊर्जा से जुड़े विभिन्न प्रावधानों को एक आधुनिक और व्यापक कानूनी ढांचे में समाहित किया जाए। इसी सोच के साथ शांति अधिनियम 2025 लाया गया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं।
9: भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो देश के कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की वर्ष 2024-25 में हिस्सेदारी लगभग 3% रही, जबकि देश की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 8.78 गीगावाट है। सरकार का लक्ष्य स्वदेशी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से विकसित रिएक्टरों के माध्यम से वर्ष 2031-32 तक 22 गीगावाट से अधिक की क्षमता विकसित करना है। वहीं दीर्घकालिक लक्ष्य वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की घोषणा की गई। इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि देश में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMR के डिजाइन, विकास और तैनाती को बढ़ावा दिया जा सके। लक्ष्य ये भी है कि वर्ष 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी SMR विकसित किए जाएं। इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए लाया गया शांति अधिनियम 2025 भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक आधुनिक कानूनी ढांचा उपलब्ध कराता है। इसके तहत नियामकीय निगरानी के अंतर्गत निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सीमित भागीदारी की अनुमति दी गई है। वे परमाणु बिजली संयंत्रों के संचालन, बिजली उत्पादन, उपकरण निर्माण और निर्धारित सीमा तक परमाणु ईंधन निर्माण जैसी गतिविधियों में भाग ले सकेंगी। हालांकि संवेदनशील गतिविधियां केंद्र सरकार या उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में ही रहेंगी। अधिनियम में परमाणु ऊर्जा और विकिरण से जुड़ी गतिविधियों के लिए लाइसेंस तथा सुरक्षा स्वीकृति की स्पष्ट व्यवस्था की गई है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी AERB को वैधानिक दर्जा देकर नियामक व्यवस्था को और सशक्त बनाया गया है। इसके साथ ही परमाणु क्षति से जुड़े दायित्व, मुआवजा, दावों के निपटान और अपील की प्रक्रिया को भी अधिक व्यवस्थित स्वरूप दिया गया है। स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और अनुसंधान जैसे शांतिपूर्ण क्षेत्रों में परमाणु तथा विकिरण तकनीकों के उपयोग के लिए भी स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था बनाई गई है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
8: श्रोताओं, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कोई अल्पकालिक योजना नहीं बल्कि 6 दशकों से अधिक समय में विकसित हुई एक दीर्घकालिक रणनीति का परिणाम है। सीमित यूरेनियम संसाधनों और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तैयार किया। इसकी खास बात ये है कि हर चरण अगले चरण की नींव तैयार करता है। पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम से बिजली उत्पादन किया जाता है, वहीं दूसरे चरण में उसी प्रक्रिया से प्राप्त ईंधन का उपयोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में किया जाता है। इसके बाद तीसरे चरण में भारत के विशाल थोरियम भंडारों के उपयोग का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी दूसरे चरण की दिशा में भारत ने इस वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। 6 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु के कल्पक्कम स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने पहली बार क्रिटिकलिटी प्राप्त की। सरल शब्दों में कहें तो इसका अर्थ है कि इस रिएक्टर में पहली बार नियंत्रित और सतत परमाणु श्रृंखला अभिक्रिय सफलतापूर्वक शुरू हुई। इसके साथ ही भारत ने अपने 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में औपचारिक रूप से प्रवेश कर लिया है। लेकिन आखिर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता क्या है और इसे भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों माना जा रहा है, इस विषय पर आकाशवाणी समाचार ने वरिष्ठ वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरन से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बताया।
10: एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी में हम लास्ट अबाउट 30 ईयर्स उसी कल्पाकम में टेस्ट कर रहा था। उस अनुभव का बेसिस में ये हम बिल्ड किया है। यूजुअली आप एक एटॉमिक रिएक्टर लिया तो वो एटॉमिक रिएक्टर से वेस्ट प्रोड्यूस होता है, बट इस रिएक्टर में एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो वर्ड ब्रीडर। ब्रीडर का मतलब किसी चीज को नया पैदा कर सकता है ना, तो उस तरह से फ्यूल को ये पैदा करता है, वेस्ट को पैदा नहीं करता है। इस रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन फास्ट तरीके से निकलेगा। इसके कारण वो क्या करेगा, ये रिएक्टर के बाहर एक कवच के रूप में हम किसी नॉन फिसाइल मटेरियल को हम रखेंगे, लाइक थोरियम को हम रख सकता है, उसमें ये फास्ट न्यूट्रॉन टकरा के उसको फ्यूल बन, एक न्यूक्लियर रिएक्टर में एक विशेष मात्रा में न्यूक्लियर फ्यूल होने के बाद अपनी आप एक चेन रिएक्शन में उसे एनर्जी प्रोड्यूस होगा, वो ये क्रिटिकलिटी। इंडिया का एक अपनी आप एटॉमिक पावर का प्लान है, उस प्लान में 3 स्टेज बोलेगा, ये सेकेंड स्टेज है, ये स्टेज बहुत क्रिटिकल है। इसमें हमको कामयाब हो गया तो होगा, पक्का होगा, मुझे यकीन है। सो कामयाब होने के बाद हम देखा तो स्टेज 3 में हम इंडिया में अवेलेबल है थोरियम, वो थोरियम को हम यूज कर सकता है। थोरियम बहुत सेफ विषय है, तो ये एटॉमिक पावर प्रोड्यूस करने का थोरियम यूज किया तो बहुत सेफ होगा। एंड सेकेंड वो पूरा की पूरा इंडिया में अवेलेबल, सो इसका मतलब दैट हमको एक एनर्जी सॉवर्निटी, एनर्जी इंडिपेंडेंस मिलेगा।
8: श्रोताओं, भारत के पास यूरेनियम के सीमित भंडार हैं, जबकि थोरियम के दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक भारत के पास है। भारत का 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम इसी सोच पर आधारित है कि भविष्य में इन विशाल थोरियम संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। आइए इस विषय पर वरिष्ठ वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरन की राय सुनते हैं।
10: लास्ट 20-30 वर्ष में एटॉमिक पावर के ऊपर एक नेगेटिव व्यू था, बट अभी पेट्रोलियम एंड कोल का ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट देख के बहुत लोग ये बोलने लगा दैट हम नया दौर पर नया दृष्टिकोण से एटॉमिक पावर को देख। तो एक एटॉमिक पावर ग्रीन एनर्जी है, इसका मतलब एक ग्लोबल वार्मिंग करने वाला चीज को नई पैदा कर। एंड हम थर्ड स्टेज दैट इज थोरियम यूज करने लगाया तो इवन एटॉमिक सेफ्टी का इश्यू बहुत इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सो फ्यूचर में आई थिंक सर्टनली ये एटॉमिक पावर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंडिया में, एंड बिकॉज वी हैव थोरियम इन ह्यूज रिजर्व, बहुत ज्यादा मात्रा में थोरियम इंडिया में है। सो फ्यूचर में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन एटॉमिक पावर प्ले करेगा।
8: श्रोताओ, आने वाले वर्षों में ऊर्जा की मांग और अधिक बढ़ने का अनुमान है, और ऐसे समय में पश्चिम एशिया और रूस यूक्रेन जैसे वैश्विक संघर्षों ने ये दिखाया है कि ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अनेक देश परमाणु ऊर्जा को एक दीर्घकालिक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। वर्ष 2023 में आयोजित COP28 सम्मेलन में 20 से अधिक देशों ने वर्ष 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को कम से कम 3 गुना करने की प्रतिबद्धता जताई थी। भारत भी अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लगातार विस्तार दे रहा है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागरिक परमाणु सहयोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया है। इस समझौते के अंतर्गत भारत के शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के कुल यूरेनियम संसाधनों का 1/3 से अधिक हिस्सा है। ऐसे में ये व्यवस्था भारत के बढ़ते परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए ईंधन सुरक्षा को मजबूत करेगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम की आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी और सुरक्षा प्रावधानों के तहत की जाएगी। साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG की सदस्यता के लिए भारत के समर्थन को भी दोहराया है। कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक है अलका सिंह।
11: सुर्खियों में
12: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, परीक्षा संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के ठोस कदमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
13: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज पाठक, और आज इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। ध्यान देने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि इन परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं, और आने वाले दिनों में इसे अमली ढांचा पहनाने के लिए विधि सम्मत उपाय भी किए जाएंगे। यानी संभव है आने वाले दिनों में हम एक नया कानून इसकी शुचिता बनाए रखने के लिए अस्तित्व में आता हुआ दिखें। इस विषय पर चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में राजनीतिक मामलों की वरिष्ठ विश्लेषक अदिति टंडन जी को। अदिति जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
14: धन्यवाद।
13: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाएं हुआ करती हैं, उसमें कई में हमने देखा कि कुछ लापरवाहियां रही या उचित कदमों में कहीं तालमेल का अभाव दिखा और प्रश्न पत्र लीक हो गए, इसका अंजाम अच्छा नहीं निकला, और अंततः सरकार ने कड़े कदम उठाने के आश्वासन दिए हैं। किन रूप में देख रही इन्हें?
14: देखिए, जैसा कि आपने कहा खुद ही अपने रिमार्क्स में,

0: चैलेंज है मनोज जी, हर सरकार के टाइम पर आया है और हर सरकार ने अपने तरीके से इसको प्लग करने की कोशिश की है, पर हम सब जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया है जो इससे लाभान्वित होता है और इंडिविजुअल्स हैं जो बहुत वेल एंट्रेंच हो चुके हैं सिस्टम में। जो लोग एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं, पेपर लीक के डायनामिक्स को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि ये कोई मामूली अपराध नहीं है, इसके जो तार हैं बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जो कल मैंने देखी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 ऑफिशियल्स को सैक किया गया है, और यह भी वक्तव्य आया है सरकारी सोर्सेस के हवाले से कि उनमें से बहुत लोगों पे अब मुकदमा भी चलने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो लेटेस्ट नीट यूजी जो मेडिकल अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, मई 3 को पेपर कैंसिल हुआ था, उसमें ऑब्वियस सी बात है कि ना सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स इन्वॉल्व हैं, अंदर के भी लोग कुछ इन्वॉल्व हैं। तो उसके लिए एक इस सिस्टम में ट्रस्ट को रीबिल्ड करने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम कल उठाया गया है। और आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री ने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें अपने वक्तव्य में कही हैं सिस्टम को फूल प्रूफ बनाने के लिए। एक तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ऐसा नहीं कि देश में है नहीं, लेकिन जो प्रधानमंत्री का मतलब है वो ये है कि डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे जो सिर्फ इस लॉ के तहत जो केसेस दर्ज होंगे उनको डे टू डे बेसिस पर सुनने के बाद 3 महीने में उनका ट्रायल खत्म करेंगे चार्जशीट फाइल होने के बाद। और हम और आप आज बात कर रहे हैं, बल्कि कुछ ही घंटों पहले जो बिल का मसौदा है, जो बिल प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था अपने वक्तव्य में परसों रात को जब उन्होंने एक वीडियो सेल्फी बना के देश के युवाओं से संपर्क करने की कोशिश की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम कैबिनेट में एक बिल लेके आने वाले हैं, जो पुराना बिल 2024 में सरकार ने पास किया है उसी को इम्प्रूव किया गया है और उसमें स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस किए गए हैं। और जो महत्वपूर्ण बात उसमें ऐड की गई है वो ये की गई है कि स्टैट्यूटरी बैकिंग दी जाएगी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को, जो प्रधानमंत्री ने घोषित किया परसों रात को अपने संदेश में, और कल कैबिनेट ने उसको पास कर दिया। आज बिल का मसौदा भी हम सबके सामने आ गया है और पार्लियामेंट में ये बिल मंडे को पेश भी होने जा रहा है।
1: यहाँ पर थोड़ा हम श्रोताओं के हित में समझना चाहेंगे कि ये जो मसौदा बिल आया है उसमें क्या सब बातें रखी गई हैं और कैसे ये आने वाले दिनों में सुधार के कारक बनकर सामने आएंगे।
0: इस बिल का जो नाम है वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। मैंने जैसे कहा कि ये नया बिल नहीं है, 2024 का बिल है, उसमें संशोधन लाएगी सरकार। संशोधन के माध्यम से नई पनिशमेंट्स घोषित करेगी और जो नए मसौदा तैयार किया है उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग देगी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, वो ये है कि पनिशमेंट बढ़ा दी गई है। जो पुराना बिल था 2024 का, उसमें ये कहा गया था कि जब कोई इंडिविजुअल पेपर लीक के मामले में लिप्त पाया जाएगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी 3 से 5 वर्ष की और उस पे जो फाइन होगा वो 10 लाख का होगा। अब उसको बदल के कहा गया है कि मिनिमम पनिशमेंट 5 साल की होगी और जो फाइन होगा वो 10 लाख से बढ़कर 1 करोड़ तक ले गए हैं। और सिमिलरली अगर यही क्राइम ऑर्गेनाइज तरीके से कोई कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस इन्वॉल्व है, तो उसके लिए सजा के प्रावधान और भी कड़े किए गए हैं। उस केस में कहा गया है कि मिनिमम पनिशमेंट अब 7 साल होगी और मैक्सिमम जो फाइन होगा वो 10 करोड़ होगा। तो ये मेन इस बिल की प्रावधान है। ये तो हो गया कि आपने पनिशमेंट बढ़ा दी, लेकिन सिर्फ पनिशमेंट बढ़ाने से कुछ नहीं होता। हमें पता है कि केसेस लंबित रहते हैं लंबे लंबे समय तक। उसको ठीक करने के लिए इस बिल में एक इम्पॉर्टेंट प्रावधान जो मुझे लगता है वो ये है कि तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को ये पावर्स दे दी गई हैं कि वो किसी भी कोर्ट ऑफ सेशंस को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट घोषित कर सकते हैं इस कानून के तहत दर्ज मामलों को निपटाने के लिए। और ये भी कहा गया है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स इन मामलों में होंगी वो हर दिन होंगी, डे टू डे बेसिस पर चलेगा ट्रायल, और ट्रायल 3 महीने में कंप्लीट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, उन्होंने ये भी कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एम्पावर कर दिया गया है कि जब जब ऐसा कोई बड़ा मामला आए नजर में तो इमीडिएटली स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करके उस एसटीएफ को ये मैंडेट होगा कि आपने 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है। अभी क्या हो रहा है ना, सिस्टम में मिसट्रस्ट इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि लंबित बहुत हैं केस। आप कानून लाकर सिस्टम को परिवर्तित नहीं कर सकते, आपको कानून को अमली जामा पहनाने के लिए जो सिस्टम्स चाहिए वो भी क्रिएट करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से बड़ा चैलेंज जो सरकार के सामने आएगा वो फाइनेंसेस का आएगा।
1: अच्छी बात कही है कि पिछले कानून से किस तरह ये कानून बदला हुआ होगा, अधिक सख्त होगा। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि एक मामला शुरू हुआ और आमतौर पर ये मामले दम तोड़ देते जब पुख्ता सबूत नहीं रखे जाते।

0: वहां पर कैसे कह लें कि उस प्रक्रिया का ध्यान रखा जाएगा, यानी अदालतें बन गई, जैसे अभी यदि हाल का एक मामला लें तो उसमें जिस व्यक्ति को आरोपी ठहराया गया उसके विरुद्ध फिलहाल कोई सबूत नहीं मिलने से वह छूट गया, तो वहां पर क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए?
1: इसमें मुझे लगता है कि प्रोसिक्यूशन की बहुत बड़ी भूमिका है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अपॉइंट होता है ऐसे केसेस में वो कितना लायक है, वो कितने अच्छी तरीके से आर्ग्यू कर सकता है मैटर, और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो कितनी क्विकली फॉरेंसिक एविडेंस गैदर कर सकती है, कितनी जल्दी डिजिटल इम्प्रिंट्स को देख सकती है, क्योंकि लीकेजेस तो अब डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं, हम सब जानते हैं कि सारा का सारा एग्जाम ऑनलाइन है, तो उससे क्या है, साइबर सिक्योरिटी चैलेंज है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को ये सोचना होगा कि जो स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया जाएगा ऐसे क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसमें आपको एक्सपर्ट्स भी कोऑप्ट करने पड़ेंगे। अब ये जो वक्त है, ये जो जमाना है, उसमें कन्वेंशनल पुलिसिंग मेथड से आप क्रिमिनल गैंग्स को नहीं हैंडल कर सकते, आपको बहुत हाई लेवल की एक्सपर्टीज हर सेक्टर में चाहिए।
0: यहाँ पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस दिशा में एनटीए क्या कर रही है और किस रूप में अपने आप को पेशेवर बनाने के लिए पेशेवर लोगों की सलाह लेने की योजना बना रही है।
1: इनफैक्ट परसों हमने देखा कि सरकार ने एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से नए पोस्ट्स घोषित किए हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में। उन्होंने ये कहा है कि नियुक्ति के लिए अब 4 जनरल मैनेजर्स बुलाए जाएंगे। अभी क्या है, अभी जो स्ट्रक्चर है बहुत सेंट्रलाइज्ड है, जैसे सबसे ऊपर एक चेयरमैन है, उसके नीचे सीईओ है, तो लेकिन अब डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है। इसके साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के जो प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों को भी भर्ती में शामिल किया जाएगा, उनकी भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एनटीए ने एक बयान में यह भी कहा है कि ये उपाय एजेंसी के जो संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा है उसके लिए हेल्प करेंगे।
0: यदि श्रोताओं, कुल मिलाकर सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है कि हमारी जो राष्ट्रीय परीक्षाएं हैं या राज्य स्तर की परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित की जाए, और इसके लिए जिस तरह तकनीक बदल रही है, तकनीक हावी हो रही है, उसके निदान के लिए जो हमारा वैधानिक ढांचा है उसमें वैसे ही दक्ष पेशेवरों की नियुक्ति की जाए। यहां पर अदिति जी, आपने कहा कि इसे वैधानिक स्वरूप दिया जाएगा, ढांचा तैयार किया जाएगा, किस रूप में परिवर्तन होता देख रही हैं आप वहां उस स्तर पर?
1: देखिए, परिवर्तन कितना हो पाएगा वो वक्त बताएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव सिग्नल इस वक्त है वो ये है कि परिवर्तन की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये जो लड़ाई है मनोज जी, ये बहुत लंबी है, और ये जो पेपर लीक का मामला है, ये सिर्फ पेपर लीक का मामला चीटिंग से लिंक करके नहीं आप देख सकते, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट्स के माइंड पे, बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट होता है। आप सब जानते हैं कि मिडिल क्लासेस बच्चा पैदा होते ही पैसा जमा करना शुरू कर देती हैं कि देश में अच्छे एजुकेशन में या अच्छे कॉलेज में अगर बच्चे की भर्ती करानी है तो उसे अच्छे स्कूल में भेजना है, उसकी एक कॉस्ट है, अच्छी कोचिंग दिलानी है, वो कितनी एक्सपेंसिव है हम सब जानते हैं, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे को सीट मिलेगी। यही वजह होती है कि बच्चों की इमोशनल और साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी पर ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स फीड करते हैं।
0: थोड़ा इसे और विस्तार देकर बताएं कि सिस्टम में बदलाव किस तरह का और उसका इम्प्लीमेंटेशन किस रूप में?
1: मेरा जो व्यक्तिगत मानना है वो ये है कि एग्जामिनेशन सिस्टम तब फूल प्रूफ हो सकता है जब उसमें ग्रेडिंग हो, ये प्रामाणिक है। आप देखिए कौन कौन से एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हमारे देश में हैं, जिनमें या तो आप बिल्कुल नहीं सुनेंगे कि लीक हुए हैं या बहुत नेग्लिजिबल हुए हैं। जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम देखिए, वो कभी क्यों नहीं लीक होता?
0: बिल्कुल,
1: आप उस मसौदे को समझिए,
0: आर्म फोर्स हैं उनके
1: आर्म फोर्सेस के लीक नहीं होते। आप और भी समझिए, जब से आपने आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को ग्रेडेड बना दिया है, जैसे पहले क्या होता था कि एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता था AIEEE, मुझे आज भी याद है 2011 में एक बहुत बड़ा पेपर लीक हुआ था जिससे बहुत सारे बच्चे बहुत त्रस्त हुए थे। उसके बाद ये सिस्टम शुरू हुआ कि किस तरीके से एग्जामिनेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाएगा। आप जानते हैं पहले JEE मेन कंडक्ट होता है, उसमें एक पर्टिकुलर लेवल के बच्चे जो टॉप 25% आते हैं उनको मौका मिलता है IIT में जाने का। उससे होता क्या है, जब आप ग्रेडेड एग्जामिनेशन सिस्टम बनाते हैं कॉम्पिटिशन के लेवल पे, आप डिसइंसेंटिवाइज करते हैं कि बच्चे पैसा देके पेपर खरीदें, क्यों? क्योंकि पहले लेवल पर आप निकल जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। जब कोई गारंटी नहीं है तो कोई इंसेंटिव नहीं है पैसा देने का, तो आप डिमांड और सप्लाई के साइकिल को तोड़ सकते हैं ग्रेडेड सिस्टम में। सिमिलरली यूपीएससी में 3 लेवल्स हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि प्रिलिमिनरीज होते हैं, उसके बाद मेंस होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है। किस किस लेवल पर कोई लीकेज के लिए पैसे देगा? सो ये एक सिंपल इजीली डूएबल एक फॉर्मूला है। जो एआई पीएमटी का एग्जाम भी पहले ग्रेडेड होता था, उस वक्त लीकेजेस मुझे लगता है कम होते थे। जब से आपने सिंगल एग्जाम बनाया है, ये जो नीट यूजी है, आपने जब से इसको सिंगल एग्जाम बनाया, 22 लाख बच्चे बैठते हैं। 500 सिटीज में होता है, जिसको कहते हैं बहुत बड़े स्केल पर ये एग्जाम होता है। 22 लाख बच्चों को एक साथ टेस्ट करना और उनको एक ही विंडो में एमबीबीएस की सीट देना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर हम ग्रेडेड एग्जाम करेंगे नीट यूजी को, जैसा कि पहले होता था दो लेवल्स पर, पहले स्क्रीनिंग और फिर सिलेक्शन, तो शायद ये लीकेजेस का इंटेंसिटी कम होगा। ये प्रामाणिकता से मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है।
0: अच्छा, कुछ राज्यों की ओर से इस नीट परीक्षा प्रणाली को ही लेकर विरोध जताए जा रहे हैं, उस दिशा में कुछ सुधार की या एकरूपता लाने की कोई भूमिका बनती नजर आ रही है आपको?
1: बिल्कुल, देखिए तमिलनाडु ने शुरुआत से नीट यूजी का विरोध किया है। उनका ये कहना था कि 12वीं कक्षा के एग्जामिनेशन के बेसिस पे हमारी स्टेट में एक एमबीबीएस की एडमिशन होती थी और वो चलती रहनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन मॉडल स्टडी करेंगे, उसमें जेईई मेन और जेई एडवांस्ड का मॉडल बहुत अच्छा है। आईआईटीज के टॉप डायरेक्टर्स ने मिलकर उसे बनाया है, उसमें बहुत लेवल हुई थी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की, और उसमें 12वीं के रिजल्ट्स का भी एक पोर्शन काउंट होता है। फिर वही मैं कहूंगी कि नीट यूजी बहुत बार लीक हुआ है, 3 बार तो रिसेंट हिस्ट्री में हुआ है। तमाम मॉडल्स को स्टडी करने के बाद आप ये भी देखिए कि क्या कहीं नीट यूजी के स्ट्रक्चर को ही चेंज करने की जरूरत तो नहीं है।
0: यानी श्रोताओं, एक आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता परीक्षा प्रणाली को है, ऐसा लग रहा। बस यहीं पर हम श्रोताओं आपकी ओर से अदिति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे परीक्षा संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के ठोस कदमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: सुर्खियों में
4: रीड इंडिया का कार्यक्रम सुनने वालों को गीता का प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ हैं वंदना जी, जो बच्चों के बारे में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। वंदना जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
5: थैंक यू सो मच गीता जी।
4: वंदना, आप मुझे बताएं कि जो छोटे बच्चे हैं 2 साल से 6 साल तक, गांवों में तो उनके लिए स्कूल ही नहीं है, आंगनवाड़ीज हैं, आंगनवाड़ी में बच्चे पढ़ते हैं, और हमें साइंस ये कहती है कि इन बच्चों को 6 महीने से एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देना शुरू कर देना चाहिए, तो इसमें आपका क्या विचार है?
5: बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम कि हमें 6 महीने के बच्चे से बच्चे को एक्टिविटीज स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जब एक छोटा बच्चा घर में आता है हमारे, तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो बढ़ जाती हैं। उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए माँ बाप का सबसे बड़ा रोल होता है कि वो बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं। एक्सपेक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन अपना रोल प्ले करना बहुत मुश्किल है। तो जब हम 3 महीने, आपने 6 महीने का बच्चा बोला और मैं 3 महीने से ही बोलती हूँ, या जब बच्चा घर में आता है, उसी दिन से हमें जो वैल्यूज बच्चे को देनी है, हमें उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि बड़ा होकर हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ लिख पाए, तो उसे किताबों की आदत डालिए। अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छी बातें बोले, तो उसके सराउंडिंग आप जो भी बात कर रहे हैं, उसमें वो चीज आप में भी आनी चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है छोटा बच्चा सुनता नहीं है, बट बच्चा माँ के पेट के अंदर से ही सुनना शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे जब वो फैमिली में आता है, 6 महीने का होता है, साल का होता है, तो घर के सिस्टम को ही हमें स्कूल में बदलना बहुत जरूरी हो जाता है।
4: वंदना जी, अगर आप शहर की बात करें तो सब माएं तो नौकरी करती हैं, और बच्चा जब जगता है उससे पहले ही वो दफ्तर चली जाती हैं, और जब वो वापस आती हैं तो एक घंटा ही बचता है उनके पास, बच्चे के सोने का टाइम हो जाता है। इस केस में बच्चे की ग्रोथ पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपके क्या विचार है?
5: ये आज की डेट में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि माँ बाप के पास बहुत कंप्लेंट्स हैं, लेकिन जो बेसिक वैल्यूज छोटे होते बच्चे के अंदर हमें डालनी है, उस टाइम पे वो मदर जो है वो एक वर्किंग वुमेन का रोल प्ले करना चाहती है। तो बहुत जरूरी है आपको उस बैलेंस को मेंटेन करना, उस क्वालिटी को मेंटेन करना कि अगर आप बाहर निकलना चाहती हैं तो ये आपको देखना है कि आप बच्चे को वो वैल्यूज कहाँ से देंगी। या तो आप एक ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स वो रोल प्ले कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज में रहना पसंद करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम मेड्स के ऊपर बच्चे छोड़ देते हैं। मेड्स के ऊपर बच्चे छोड़ने का मतलब है बच्चे के अंदर वो वैल्यू नहीं आएगी, उसका रहना बोलना वो नहीं होता। सेकेंड पार्ट है मोंटेसरी स्कूल्स, डे केयर्स, जिसमें बच्चों के अंदर वो वैल्यूज डाली जाती हैं। तो क्योंकि आजकल वर्किंग वुमेन का कल्चर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, उसी के लिए हम लोगों का जो मोंटेसरी सिस्टम है एजुकेशन का, वो हमें लाइन में लाना पड़ रहा है, सो दैट हम पेरेंट्स के साथ मिलकर बच्चों के अंदर उन वैल्यूज को इनकल्केट कर सके।
4: वंदना, आपके सुझाव सुनने के बाद मेरे दिमाग में तीन बातें आ गई हैं, और तीन बातें ही अलग अलग हैं। एक तो ज्वाइंट फैमिली का ब्रेक होना, पर ज्वाइंट फैमिली का होना भी एक प्लस पॉइंट है। पर अगर हम ज्वाइंट फैमिली का प्लस पॉइंट समझते हैं, तो आजकल एजुकेशन में इतना गैप आ रहा है कि जो यंग मदर है वो कहती है मेरे बच्चे को एक पर्टिकुलर ढंग से ट्रेनिंग दी जाए, जो मदर इन लॉ या मदर में वो टेक्निक नहीं होती है, तो वो भी गैप फिल करने के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। और जब न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं तो मेड्स को वो नहीं आता है तरीका बच्चों को रखने का, जिससे बच्चों को वो वैल्यूज नहीं आती हैं। तीसरी बात ये कि अगर वो मोंटेसरी स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स भी उसको एक जॉब की तरह लेती हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो मुझे तो ये इतनी बड़ी आगे आने वाले समय में समस्या लग रही है, और हम इससे झुलझ रहे हैं, हम भुगत भी चुके हैं, और आगे जो जनरेशन आ रही है उनको वैल्यू सिस्टम देना, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको हम कैसे एक बैलेंस ड्रॉ करें?
5: इस बैलेंस को ड्रॉ करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। सी, इट डिपेंड्स कि आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर फैमिली क्या है। जैसे आपने मुझसे पहला सवाल किया कि अगर ज्वाइंट फैमिली है तो हर मदर चाहती है कि मैं उसको अपने तरीके से वैल्यू दूं, क्योंकि जो ग्रैंड मदर है या ग्रैंड फादर है वो आउटडेटेड हो चुके हैं, उनको आजकल के बारे में नहीं पता। बट उस मदर का ये समझना जरूरी है कि जो एक बेसिक वैल्यू है वो सेम है, सिर्फ देने का तरीका बदल गया। 10 साल पहले या 20 साल पहले भी जो बच्चे बड़े हुए थे या जिस कैटेगरी में हम अपने आप को डालते हैं, तो हमें नहीं लगता कि हम किसी गलत सिस्टम में फॉलो करा हमने, कि हम आजकल के बच्चों को सिस्टम में नहीं ला सकते हैं। तो जो आजकल की जनरेशन, आजकल की जो मदर है, उसके माइंड में एक सिर्फ एक माइंडसेट उसका चेंज करना है कि जो वैल्यू आपके घर के लोग आपके बच्चे को दे सकते हैं वो बाहर की मेड कभी भी नहीं दे सकती। सेकेंडली, जो एक टीचर का आपने बोला कि आजकल 90% टीचर्स जो हैं वो ये मान के काम करती हैं कि हम प्रोफेशनलिज्म पे काम करें, कि हमारी हर मंथ की सैलरी हमारी पॉकेट में आ रही है, बट हमें बच्चे के साथ कनेक्शन नहीं बनाना। सो मेरी लोगों से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट होती है कि जिन लोगों में पेशेंस नहीं है, जिन लोगों में पर्सनल टच नहीं है, वो लोग टीचर की जॉब के लिए कभी भी आगे नहीं आए। बिकॉज एक टीचर है जो बच्चे को बनाएगी या बच्चे को तोड़ेगी। माँ बाप के पास बच्चा रहता है पूरा दिन, लेकिन बीच में 6 घंटे बच्चा जो है वो स्कूल में टीचर के पास आ रहा है। तो जब हम किसी टीचर को भी अपॉइंट करते हैं तो हमें उनके साथ मिलकर ये देखना पड़ेगा कि वो बच्चों से कैसे डील कर रही हैं। वैल्यू सिस्टम सालों से सेम चलता आ रहा है, उसको आगे पहुंचाने का तरीका धीरे धीरे साल में बदलता चला जा रहा है, जिसको हमें कनेक्ट करना है।
4: बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि वैल्यू सिस्टम्स तो वही है पर हमें देने का तरीका बदलना है
5: जी।
4: देने का तरीका बदलने पे मुझे एक और सामने समस्या खड़ी हो रही है कि जो प्रोफेशनलिज्म है वो कमर्शियल में बदलता जा रहा है। हर कोई पैसा देके डिग्री लेने की दौड़ में चला जा रहा है और जो वैल्यू है एजुकेशन की वो कहीं ना कहीं बिखरती जा रही है, उसको भी समेटने की बहुत जरूरत है। मैं इतना कहना चाहूंगी कि ये कार्यक्रम जो हमने ये बात करी, ये उस महिलाओं तक पहुंचनी चाहिए जहां पे रीड इंडिया के सेंटर्स हैं, और रीड इंडिया के जो सेंटर्स हैं उनके साथ हमने प्री स्कूल भी खोले हैं, और उन प्री स्कूल्स में हम कितने वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं और टीचर्स को कैसे हम ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज दे रहे हैं, जॉब भी दे रहे हैं, उससे हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, उनको पैसे भी उतने ही दे रहे हैं जो एक कमर्शियल स्कूल में मिलते हैं, पर जो हमारी ट्रेनिंग है, जो बच्चों का रखरखाव है स्कूल में और जो बच्चों को हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, मैं ये पढ़ाई नहीं कहूंगी, हम उनको वैल्यू सिस्टम दे रहे हैं। और अगर एक बच्चे की बुनियाद अच्छी बन जाती है तो वो बड़े होके इतना सक्षम हो जाता है कि वो अपने आप अपनी राह को तराश करने की कोशिश करता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये बात करने का।
5: थैंक यू सो मच।
6: नमस्ते मास्टर जी।
7: नमस्ते नमस्ते बच्चों। अरे कामाक्षी, मनीषा आज भी नहीं आई।
8: मास्टर जी, मनीषा की तबीयत खराब है और 2-3 हफ्तों से उसको खांसी भी हो रही है।
7: क्या उसके मम्मी पापा उसका इलाज करवा रहे हैं?
8: मास्टर जी, मुझे नहीं पता।
7: तो ठीक है, स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ उसके घर चलूंगा।
6: कामाक्षी, तुम मास्टर जी के साथ?
8: हाँ मनीषा, तुमसे मास्टर जी मिलने आए हैं।
7: मनीषा तुम कैसी हो?
6: मास्टर जी मैं ठीक हूँ।
9: क्या करूँ मास्टर जी, इसकी खांसी बंद ही नहीं हो रही। मैंने अदरक और शहद का घोल इसे बार बार पिलाया है पर फिर भी कोई असर नहीं।
7: क्या आपको लगता है कि घरेलू नुस्खों से इसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा? देखो सुलेखा बहन, आप मनीषा को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ, क्योंकि खांसी अगर 2 या 3 सप्ताह से अधिक हो तो वो टीबी का खतरा हो सकता है।
9: हाँ आपने सही कहा, मैं आज ही इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाती हूँ।

नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर निधि गुलाटी रीजेंटिया लखनऊ से आपके साथ आपके लिए कुछ सिखाने और सीखने के लिए ये कार्यक्रम आओ सीखे के अंतर्गत आप तक लाया गया है। श्रोताओं, जैसे कि हम जानते हैं बारिश का मौसम आ गया है जिसको हम मॉनसून सीजन कहते हैं। इसमें हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या स्वच्छता रखनी चाहिए, क्या क्या साफ सफाई रखनी चाहिए, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। मॉनसून स्थिर पानी, मच्छरों और रोग के साथ कई संभव स्वास्थ्य चुनौतियां ला सकता है। मॉनसून क्या है, चलिए जानते हैं। मॉनसून या बरसात का मौसम मौसम की मिजाज में एक ऋतु संबंधी बदलाव है जो समुद्र से भूमि पर गर्मी, नम हवा एक निरंतर अवधि के लिए वर्षा की उच्च अवधि बनाता है। गर्मियों के मॉनसून या बरसात के मौसम आमतौर पर बड़े पैमाने पर मूसलाधार बारिश के साथ आता है। आइए जानते हैं कि मॉनसून या बरसात का मौसम हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। मॉनसून या बरसात का मौसम आमतौर पर स्वास्थ्य चुनौतियां लाता है। बरसात होने पर हमने कई जगहों पर देखा है कि पानी जो है वो रुक जाता है, नालियों में, हमारे घर के बाहर। इससे क्या होता है कि मच्छरों का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है और मलेरिया और डेंगू जैसे बुखार फैलने की संभावना बढ़ जाती है। हमने ये भी देखा है कि बरसात के मौसम में पेट संबंधी बीमारियां भी होती है कि अगर हम ताज़ा भोजन नहीं खाते हैं, बासी भोजन खाते हैं, तो हमारे पेट में दर्द होता है और हमें दस्त लगने की भी शंका हो सकती है। बरसात के मौसम में खांसी, जुकाम और फ्लू जैसे बीमारियां भी हमें लग सकती हैं।

श्रोताओं, कहीं ना कहीं हम सबके मन में होता है कि हम इन मॉनसून से या बारिश के मौसम से कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। आइए जानते हैं कि बरसात के मौसम में मच्छरों से हमें कैसे बचना चाहिए। मच्छर से बचने वाली क्रीम लगाएं। मच्छरों को अपने वातावरण से बाहर रखने के लिए घर में कॉइल जलाएं। वातावरण को साफ रखें। अपने आसपास घर के कोई पानी जमा होने ना दें। ये सुनिश्चित करें कि मच्छर प्रजनन ना हो सके तो स्थिर पानी को जमा ना होने दें, जैसे कि रूम कूलर, कोई भी कंटेनर पानी का या आपका फूलदान, इसमें पानी जमा ना होने दें। अगर उसमें पानी जमा होता है तो मच्छर वहाँ पर उत्पन्न होंगे। अगर हम अपने घर के आसपास की सफाई रखेंगे और पानी नहीं जमा होने देंगे तो मच्छर उत्पन्न नहीं होंगे। श्रोताओं, अब जानते हैं कि भोजन और पाय पदार्थ के साथ हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। अच्छी तरह से पका हुआ भोजन खाना चाहिए। कच्चे उत्पाद जैसे कि सलाद या फल को भी हम अच्छी तरह से पानी में धोएं। कोशिश करकर हल्के गुनगुने पानी में हम सब्जियों को धोएं। इस समय हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वह हानिकारक बैक्टीरिया अधिक से अधिक होते हैं। खुद को अच्छी तरह से स्वच्छ और सुरक्षित पीने का पानी के साथ हाइड्रेट रखें, मतलब कि आपको साफ और सुरक्षित पानी पीना है। और इस दौरान हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होने की बहुत संभावना होती है, क्योंकि हम अपना पानी का इंटेक कम कर देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पीना है। श्रोताओं, आप जानते हैं कि हम अपने आप को कैसे स्वच्छ या साफ रख सकते हैं। अगर हम घर के बाहर जा रहे हैं तो हमारे हाथ में छाता होना चाहिए या रेनकोट होना चाहिए, ताकि हम बारिश से बच सकें और सूखे रह सकें। कीचड़ में चलने से बचें, क्योंकि हमारे पैरों के नाखूनों में ये फंगल इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। खुद को सूखा रखें और गंदे पानी से बचें, क्योंकि इनमें हानिकारक कीटाणु होते हैं। अच्छे से हाथ धोएं शौचालय जाने के बाद और खाना खाने से पहले, और खाना खाने के बाद अच्छे से साबुन से हाथ धोने चाहिए। ये हर दिन महत्वपूर्ण है। यह मॉनसून के दौरान वायरस और बैक्टीरिया के प्रयास से निपटने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तो घर आकर अपने आप को भी साबुन से धोएं। अपने कपड़ों को डिटॉल और डिटर्जेंट में भिगोकर रखें। अपने आप को सुखाने के बाद कोई भी टैल्कम पाउडर अपने शरीर पर लगाएं। इससे हम अपने आप को फंगल इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। श्रोताओं, अपने साथ अपने घर की साफ सफाई का भी हमें ध्यान रखना है। घर को साफ रखना है, घर के आसपास कोई पानी जमा ना होने देना है। घर में डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन से, जैसे कि डेटॉल हो गया या सेवलॉन हो गया, उसको पानी में डालकर पोछा लगाना है। घर की सफाई करनी है, ताकि हमारे घर में कोई भी मच्छर उत्पन्न ना हो और हमारे घर में कोई भी इन्फेक्शन ना आ पाए। खासकर उन जगहों पे जहाँ पर भोजन रखा है, और हमें भोजन और पानी को ढककर रखना चाहिए, जिससे कोई भी मच्छर या मक्खी उसके अंदर जाकर इन्फेक्शन ना पैदा कर सके, कोई भी आपकी पेट संबंधी बीमारियां ना हो पाए। श्रोताओं, इस मौसम में हमें अपना और अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगे और आप इन सारी बातों का ध्यान रखकर अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: बिना एसी का नाम
1: इसे क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बबलू?
0: ऑफ कोर्स, मुझे क्या हुआ है? एनीवेज, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस कोकिला एमबीबीएस। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ?
1: तुम्हें तो रातों रात ड्रास्टिक चेंजेस आ गए हैं।
0: हाँ, एक्चुअली लाइफ में पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि किसी के काम आने में कितना आत्मिक सुख मिलता है।
1: अच्छा,
0: एक्चुअली मेरे एक दोस्त को बहुत जरूरी काम से अचानक शहर से बाहर जाना पड़ गया, तो पूरे एक हफ्ते मुझे उसकी बूढ़ी दादी की देखभाल करने का मौका मिल गया। अभी मैं उन्हीं के पास से आ रहा हूँ। तुम्हें तो पता है ना कोकिला, वृद्धावस्था में पहुंच चुके लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? गठिया। दादी जी भी इसी की मरीज हैं।
1: ओ, तो ये बात है। और अगर मैं ठीक गेस कर रही हूं तो आज शायद तुम गठिया यानी आर्थराइटिस के बारे में विस्तार से जानना चाहोगे, राइट?
0: ऑफ कोर्स।
2: हर रोज ना जाने कितनी बार आप झुकते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, नाचते हैं। आप कभी नहीं सोचते आप ये सब इतनी आसानी से कैसे कर पाते हैं। सच मानिए, जब सब कुछ ठीक से चल रहा होता है तो आप चाहे जैसे अपने शरीर का इस्तेमाल करते रहते हैं, और इस लापरवाही का नतीजा निकलता है उफ, आह, आउच। हमें ये मोबिलिटी यानी गतिशीलता और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जॉइंट से। चलिए एक बड़ी मशीन के जरिए समझते हैं हमारे जॉइंट्स यानी जोड़ों की बनावट।
3: बड़ी बड़ी मशीनें भी हमारे जॉइंट्स की नकल करके बनाई गई हैं। मशीन ठीक से काम करे इसलिए इसकी रेगुलर ऑयलिंग की जाती है। ऑयलिंग नहीं की तो मशीन के जॉइंट्स घिस जाएंगे और काम ठप हो जाएगा।
2: ग्रीस के इस्तेमाल से मशीन के जॉइंट स्मूथली काम करते हैं। इस मशीन की तरह हमारे जॉइंट्स को भी ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है, और ये ऑयलिंग हमारे जॉइंट्स में नेचुरली होती है।
3: हमारे शरीर के जॉइंट्स को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है बॉल और सॉकेट जॉइंट्स, जैसे शोल्डर और हिप जॉइंट्स। दूसरा वर्ग है हिंज जॉइंट्स, जिनमें शामिल हैं एल्बो, नी और एंकल जॉइंट्स। बॉल और सॉकेट जॉइंट्स में जहां रेंज ऑफ मूवमेंट अधिक होती है, वहीं हिंज जॉइंट्स में रेंज ऑफ मूवमेंट लिमिटेड है।
2: इसको समझने से पहले आइए समझते हैं हमारे जॉइंट्स की संरचना। हमारे शरीर में दो हड्डियां जहां एक दूसरे से जुड़ती हैं, उनके जॉइंट्स पर एक नाजुक कवर होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। इस गद्देदार कार्टिलेज से जॉइंट्स का लचीलापन भी बना रहता है, जिससे जोड़ों को मोड़ने में आसानी होती है। हड्डियों का जोड़ एक कैप्सूल जैसी संरचना में सुरक्षित रहता है। इस कैप्सूल पर पतली टिश्यू की परतें होती हैं, जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। जॉइंट्स में ऑयलिंग का काम भी ये साइनोवियल मेम्ब्रेन ही करते हैं। दरअसल साइनोवियल मेम्ब्रेन एक चिकना फ्लूइड पैदा करते हैं जो जॉइंट्स में ऑयलिंग का काम करता है और हड्डियों को रगड़ से बचाता है, और इसके साथ साथ कार्टिलेज और हड्डी को नरिशमेंट यानी पोषण देता है। अगर किसी वजह से कार्टिलेज घिस जाए या उसमें किसी तरह का बदलाव आ जाए तो जोड़ों में स्टिफनेस यानी अकड़न और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होने लगती है, जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। जोड़ों को कई वजहों से नुकसान पहुंच सकता है और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। कई बार आर्थराइटिस से जॉइंट्स की शेप ही बदल जाती है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और इससे बेहद दर्द भी होता है। गठिया या आर्थराइटिस का शाब्दिक अर्थ है जोड़ों की सूजन या इन्फ्लेमेशन। बुढ़ापे की दहलीज पर तो आर्थराइटिस जैसे हमारा इंतजार करते मिलती है। उम्र के साथ शरीर जर्जर होता जाता है, जोड़ों के सिरों की कार्टिलेज भी घिस जाती है। कार्टिलेज के घिसने से जॉइंट्स के जोड़ों में रगड़ से दर्द होता है। संतुलित आहार न लेने से शरीर में कैल्शियम की कमी से बोन की डेंसिटी यानी घनत्व कम हो जाता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फैटी फूड खाने से शरीर का वजन बढ़ने लगता है, मतलब जोड़ों को ज्यादा और ज्यादा बोझ उठाना पड़ता है, और एक वक्त आता है जब शरीर में हड्डियों के ये जोड़ जवाब देने लगते हैं। इसके अलावा कुछ और किस्म की आर्थराइटिस भी हैं, जो किसी भी उम्र के लोगों में पाई जा सकती हैं।

0: वेलकम बैक। एपिसोड के इस भाग में हम बात करेंगे आर्थराइटिस के टाइप्स की। हालांकि आर्थराइटिस बहुत से रूपों में शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन
1: कोकिला, मुझे अब तक एक बात समझ में नहीं आई, आखिर आर्थराइटिस होने की वजह क्या है?
0: बिल्कुल ठीक पॉइंट पर आए तुम बबलू। एक्चुअली एजिंग आर्थराइटिस की एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे रीजंस हैं जो आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी की बड़ी वजह बन सकते हैं।
2: आर्थराइटिस के ज्यादातर मामले क्रॉनिक होते हैं, यानी लंबे समय तक इस बीमारी से जंग लड़नी पड़ती है। जोड़ों में दो हफ्ते से ज्यादा दर्द या स्टिफनेस और सूजन का मतलब है जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेने की चेतावनी। हो सकता है आप आर्थराइटिस के निशाने पर हों। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं इस बीमारी की ज्यादा शिकार होती हैं। महिलाओं में ये बीमारी पुरुषों के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा पाई जाती है। समय पर इलाज से इस बीमारी पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। इस बीमारी के लक्षण कभी तो अचानक सामने आते हैं और कई बार सिम्टम्स लंबे समय में धीरे धीरे दिखाई देते हैं। आर्थराइटिस के प्रमुख लक्षण हैं जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न। लेकिन सिर्फ डॉक्टर ही तय कर सकता है कि आर्थराइटिस है या नहीं, और अगर है तो किस तरह की, और फिर तय किया जाता है ट्रीटमेंट प्लान। आर्थराइटिस वैसे तो कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर आर्थराइटिस 4 तरह से हड्डियों पर हमला बोलती है। पहला ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा गॉटी आर्थराइटिस, तीसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस और चौथा इन्फेक्टिव आर्थराइटिस। पहले बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। इसे बुढ़ापे की बीमारी भी कहते हैं। बुढ़ापे में जॉइंट्स भी बूढ़े हो जाते हैं। हड्डियों में कैल्शियम की कमी से बोन डेंसिटी यानी हड्डियों में मिनरल्स कम होने लगते हैं और हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। कार्टिलेज भी सालों के इस्तेमाल से घिसती जाती है और बची खुची कसर कमजोर मसल्स पूरी कर देते हैं। वीक मसल्स जॉइंट्स पर पड़ने वाले दबाव को ज्यादा रोक नहीं पाते, जिससे कार्टिलेज रगड़ खाते हैं और घिस जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में शरीर के बड़े जॉइंट जैसे कंधे का जॉइंट, घुटनों का जॉइंट, हिप जॉइंट और रीढ़ की हड्डी पर यह बीमारी ज्यादातर असर डालती है। लगातार हड्डियों में रगड़ होने से जोड़ों में टूट फूट या रिसाव भी होने लगता है। कभी कभी तो कार्टिलेज असामान्य रूप से हड्डियों के किनारे पर बढ़ जाता है, जिसे बोनी स्पर्स कहते हैं। और अब बात करते हैं गाउटी आर्थराइटिस की। ये आर्थराइटिस हमारे मेटाबॉलिज्म में होने वाली गड़बड़ी से पैदा होती है। मेटाबॉलिज्म में खराबी के चलते हमारे खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ये यूरिक एसिड जब किसी जॉइंट पर जमा हो जाते हैं तो वहाँ तेज दर्द होता है। इस आर्थराइटिस का असर ज्यादातर छोटे जॉइंट्स पर जैसे पैर और हाथ के अंगूठे पर होता है। अक्सर किसी पैर के अंगूठे के जॉइंट में बहुत तेज दर्द होता है, रोगी को पसीना आता है और शिवरिंग महसूस हो सकती है। जॉइंट के ऊपर की त्वचा बाद में काफी नाजुक और लाल हो जाती है। खाने पीने की कुछ चीजों से ये बीमारी बढ़ सकती है, जैसे कि अधिक शराब पीने से गाउटी आर्थराइटिस के पेशेंट्स में बीमारी और बढ़ सकती है। अब बात करते हैं इन्फेक्टिव आर्थराइटिस की। इन्फेक्शन की वजह से जॉइंट्स में सूजन होने लगती है और इसे इन्फेक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं। अक्सर जो जॉइंट इस बीमारी का शिकार होते हैं वहाँ पहले कभी चोट लगी होती है, जिस कारण वहाँ जर्म्स इन्फेक्शन फैलाने में कामयाब हो पाते हैं। अगर समय पर इस पर काबू ना पाया जाए तो ये बीमारी लंबे समय तक परेशान कर सकती है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आर्थराइटिस कितना गंभीर रूप धारण कर सकती है। आप लोगों को एक बात बता दूं, हम में से बहुत से लोग आर्थराइटिस को वृद्धावस्था में होने वाला रोग समझते हैं, जबकि ये बीमारी किसी भी उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले सकती है। और तो और, ये कोई एक बीमारी नहीं बल्कि 100 से अधिक बीमारियों का एक बड़ा समूह है। आइए देखते हैं क्या है आर्थराइटिस के सिम्टम्स और इस बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशंस यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं।
1: आर्थराइटिस का एक ऐसा प्रकार भी है जिसकी वजह हमारे इम्यून सिस्टम में आई गड़बड़ी होती है। दरअसल हमारा इम्यून सिस्टम शरीर में आने वाले किसी भी फॉरेन पार्टिकल पर हमला करता है और उसे खत्म कर हमें रोगों से बचाता है, लेकिन कई बार हमारा इम्यून सिस्टम शरीर के किसी अंग को ही फॉरेन बॉडी मानकर उस पर हमला कर देता है। इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब जॉइंट्स पर असर करता है तो इसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी के बाद जॉइंट कैविटी और साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। जॉइंट की इन्फ्लेमेशन से दर्द होता है, अकड़न पैदा होती है और जॉइंट के आसपास का एरिया गर्म और लाल हो जाता है। जैसे जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस का असर बढ़ता है, कार्टिलेज घिसती जाती है, कभी कभी हड्डियाँ आपस में फ्यूज होने लगती हैं। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि आर्थराइटिस केवल बुढ़ापे की समस्या है, पर ये रोग बच्चों और युवाओं को भी अपनी चपेट में ले सकता है। अगर सही समय पर इसके टेस्ट और ट्रीटमेंट नहीं कराए गए तो बच्चों को आगे चलकर चलने फिरने में भी दिक्कत हो सकती है। जुवेनाइल रिमेटॉइड अर्थराइटिस ऐसी ही एक आर्थराइटिस है जो बच्चों और युवाओं को शिकार बनाती है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस पर और बात करने से पहले जानते हैं ये बीमारी किस तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस से अलग है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस किसी भी उम्र के लोगों को शिकार बना सकती है। इस बीमारी का असर शरीर पर छोटे जॉइंट्स पर होता है, जैसे उंगलियों और अंगूठों के जॉइंट्स। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है और इसका असर बड़े जॉइंट्स पर होता है, जैसे कंधे का जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट आदि। रिमेटॉइड अर्थराइटिस में शुरू से ही सूजन और दर्द होता है और ये समय के साथ बढ़ता जाता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन और दर्द काफी बाद में होता है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस में जॉइंट्स में दर्द अक्सर सुबह होता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द मूवमेंट करने से जॉइंट्स पर पड़ने वाले दबाव से होता है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। पेशेंट को दर्द कहां पर हो रहा है और दर्द कितना सीवियर है और कितने वक्त से है, ये अच्छे से समझा जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर दर्द वाली जगह की त्वचा, जोड़ और मसल स्ट्रेंथ का सही सही आकलन करते हैं। रिमेटॉइड अर्थराइटिस के डायग्नोसिस में एक खास तरह के ब्लड टेस्ट की भी मदद ली जाती है। दरअसल रिमेटॉइड फैक्टर, जिसे आर फैक्टर कहते हैं, एक खास तरीके का एंटीबॉडी प्रोटीन होता है जो कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट के ब्लड में पाया जाता है। हालांकि बीमारी की शुरुआत में ये आर फैक्टर एब्सेंट भी हो सकता है। इसके अलावा WBC और ESR टेस्ट के जरिए भी रिमेटॉइड अर्थराइटिस का डायग्नोसिस किया जाता है। ब्लड में सी रिएक्टिव प्रोटीन की मौजूदगी से इन्फ्लेमेशन की प्रेजेंस का पता चलता है, इसलिए सी रिएक्टिव प्रोटीन की मौजूदगी से भी RA की डायग्नोसिस में काफी मदद मिलती है। लेकिन ये टेस्ट रिमेटॉइड अर्थराइटिस होने के कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इस टेस्ट से सिर्फ ये पता चलता है कि शरीर में इन्फ्लेमेशन प्रोसेस चल रही है। एक्सरे से रिमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण हुई सूजन और जॉइंट्स को हुए नुकसान का आकलन किया जाता है। एक्सरे से सूजन काफी हद तक निर्धारित कर इलाज के निर्णय में डॉक्टर को आसानी होती है।
0: अब तो आप समझ ही गए होंगे, आर्थराइटिस बहुत से रूपों में शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सही ट्रीटमेंट एक सामान्य जीवन की संभावना को बढ़ा सकता है।
1: ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुख्य कारण हैं बढ़ती उम्र, ज्यादा वजन, असंतुलित आहार और व्यायाम की कमी।
2: व्यायाम करने से जो है, जो शरीर की मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, और जब शरीर की मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाती हैं तो वो जोड़ों को आपस में घिसने से बचाती हैं। तो एक प्रकार से ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोकने के लिए और जल्दी उसको तकलीफ ना होने देने के लिए उसमें काफी फर्क पड़ जाता है। और मांसपेशियां अगर अच्छी होती है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी लेटर स्टेज में कम होती है। एक तो ये कि अपना वजन संतुलित रखें, और इस प्रकार का आपके जो खान पीन है उसमें इस प्रकार की है कि आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नियमित रूप से व्यायाम कीजिए ताकि मांसपेशियां आपकी स्ट्रांग हो जाएं और वो जोड़ों को घिसने से बचाएं। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो कि अपना पोस्चर ठीक रखें, आपका बैठने का तरीका, आपका लेटने का तरीका या इस तरह की चीजें जो हैं उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगी।
1: गौटी आर्थराइटिस में चूंकि मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होने से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसलिए इसे दवाइयों और खानपान में बदलाव कर काबू में किया जाता है। मरीज को शराब पीने से परहेज करना होगा और कुछ खाने की चीजों से परहेज करना होगा। गौटी आर्थराइटिस के पेशेंट्स को NS8 के अलावा कुछ खास दवाई दी जाती है, जैसे कि एलोप्रिनॉल और कोल्चाइसिन। आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में पेशेंट को पेन और इन्फ्लेमेशन कम करने की नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी NS8 जैसे एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन दी जाती है। कुछ पेशेंट्स को स्टेरॉयड्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। जरूरत पड़ने पर जॉइंट्स में स्टेरॉयड्स के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट को कुछ एक्सरसाइज भी करने के लिए बताया जाता है। इन्फेक्टिव आर्थराइटिस में पेशेंट्स को NS8 दवाओं के अलावा एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में NS8 दवाओं के अलावा इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स को हीट थेरेपी भी दी जाती है। हीट थेरेपी से रक्त का प्रवाह तेज होता है और मरीज की दर्द सहने की क्षमता भी बढ़ती है। आर्थराइटिस के बहुत बढ़ जाने पर कुछ पेशेंट्स को ऐसी डिवाइस इस्तेमाल करनी पड़ती है जिनसे जोड़ों को सपोर्ट मिलता है और जॉइंट्स मूवमेंट में दर्द कम होता है। इन डिवाइसेस की जरूरत तब पड़ती है जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है। कुछ अति गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं। इन सर्जरीज में आती हैं नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। जॉइंट्स हमारे शरीर को मोबिलिटी यानी गतिशीलता प्रदान करते हैं। हमारे जॉइंट्स पर मौजूद नाजुक कवर को कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज से जॉइंट्स में लचीलापन आता है और मूवमेंट आसान होती है। कार्टिलेज के घिसने, उसमें बदलाव आने और इन्फ्लेमेशन होने को आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस को मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है। ज्यादातर इसका असर बड़े जॉइंट्स जैसे कंधे और घुटने के जोड़ों पर होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी उम्र के लोगों को अपना शिकार बना सकती है। ज्यादातर इसका असर शरीर के छोटे जॉइंट्स जैसे उंगलियों और अंगूठों के जॉइंट्स पर होता है। संतुलित भोजन, एक्सरसाइज और वजन को नियंत्रण में रखकर ऑस्टियोआर्थराइटिस को काफी हद तक काबू में रखा जा सकता है। आर्थराइटिस के पेशेंट का सामान्यतः NSAID और स्टेरॉयड से इलाज किया जाता है। कुछ अति गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं, जैसे नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में NSAID के अलावा इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है।
3: कोकिला, आर्थराइटिस पेशेंट्स की पेनफुल लाइफ को देखकर दुख होता है, क्या हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं?
0: क्यों नहीं कर सकते, वही कर सकते हैं जो तुम कर रहे हो। यस, ह्यूमन सपोर्ट। दोस्तों, मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं, मगर हम और आप भी आर्थराइटिस से जूझते लोगों की मदद कर सकते हैं। तो बस, बबलू जी की इस लाइफ के प्रति पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
3: बाय।

नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम डॉक्टर निधि गुलाटी, रीड इंडिया लखनऊ से आपके साथ, आपके लिए कुछ सिखाने और सीखने के लिए ये कार्यक्रम आओ सीखे के अंतर्गत आप तक लाया गया है। श्रोताओं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मॉनसून आ गया है, बारिश का मौसम आ गया है और ये बारिश का मौसम अपने साथ बहुत सी बीमारियों को लेकर आता है। आज मैं उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी के बारे में बात करूंगी जिसका नाम है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर क्या होता है? टाइफाइड फीवर एक बीमारी है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है और इसके बैक्टीरिया का नाम है सेल्मोनेला टाइफी। सेल्मोनेला टाइफी एक मेडिकल टर्म है और ये बैक्टीरिया हमारे जब बॉडी के अंदर घुसता है तब हमें टाइफाइड फीवर के होने के बहुत चांसेस हो सकते हैं। ये बैक्टीरिया पानी और खाने के जरिए लोगों के अंदर जाता है और इसके द्वारा बहुत से लोगों में ये फैल जाता है। सच ये है कि टाइफाइड का बैक्टीरिया जो होता है वो पानी या सूखे मल में हफ्तों तक जिंदा रहता है। इस तरह से वे दूषित पानी या खाद्य पदार्थों के जरिए शरीर में पहुंचकर संक्रमण का कारण बनता है। जब कोई व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति का जूठा खाद्य पदार्थ खाता है या पीता है तो इससे दूसरे व्यक्ति को टाइफाइड रोग होने का संभावना बन सकती है। आमतौर पर प्रदूषित पानी पीना व संक्रमित या बासी भोजन का सेवन करना टाइफाइड होने के मुख्य वजह है। किसी भी व्यक्ति को अगर घर में टाइफाइड है तो घर के अन्य सदस्यों को भी टाइफाइड होने का खतरा हो सकता है। मॉनसून में बदलाव और कुछ गलत आदतों के कारण इस बुखार का वायरस बहुत परेशान करता है। टाइफाइड एक तेज बुखार से जुड़ा रोग है। श्रोताओं, आप जानते हैं कि टाइफाइड होने का कारण क्या है? टाइफाइड बुखार, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सेल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से संक्रमित होता है। ये भोजन या पानी के सेवन से होता है या इस बैक्टीरिया से जो पीड़ित व्यक्ति होता है या जिसको पहले से ही टाइफाइड होता है उसके जूठा खाने से या उसके आसपास बैठने से भी हमें टाइफाइड हो सकता है। दूषित खाद्य पदार्थ से भी ये संक्रमित हो सकता है। पाचन तंत्र से पहुंचकर इन बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है। शरीर के अंदर ये बैक्टीरिया एक अंग से दूसरे अंग तक पहुँचता है। श्रोता, आप जानते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं? बुखार होता है, इसमें 104 डिग्री तक बुखार जाता है। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है वैसे वैसे भूख कम हो जाती है। टाइफाइड से ग्रस्त व्यक्ति को सिर में भी दर्द होता है। टाइफाइड के लक्षण के रूप में शरीर में दर्द होता है, ठंड की अनुभूति होती है, सुस्ती एवं आलस का अनुभव होता है, टाइफाइड से कमजोरी का भी अनुभव होता है, इसमें दस्त का भी अनुभव होता है, दस्त भी होने लग सकते हैं। आमतौर पर टाइफाइड से ग्रस्त व्यक्ति को 104 बुखार तक पहुंच सकता है। बड़े बच्चों को कब्ज की भी शिकायत हो सकती है तथा बच्चों में दस्त की भी शिकायत हो सकती है। श्रोताओं, आप जानते हैं टाइफाइड से बचाव का उपाय क्या है? आमतौर पर भोजन और जीवन शैली के असर के कारण भी टाइफाइड होता है। इसके लिए आहार और जीवन शैली को थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि क्या बदलाव कर सकते हैं। टाइफाइड में प्याज और लहसुन या वो खाद्य पदार्थ जिसकी बहुत तीव्र स्मेल हो उससे हमें बचना चाहिए। टाइफाइड में सभी मसाले जैसे कि मिर्च, सौंफ, सिरका आदि से परहेज करें। इस बुखार में गैस बनने वाले आहार जैसे अनानास, कटहल आदि से परहेज करें। टाइफाइड के लक्षण महसूस होने पर घी, तेल से परहेज करें। टाइफाइड में बाजार की बनी हुई चीजें ना खाएं। टाइफाइड में मांसाहारी भोजन
से भी परहेज करें। पेट भरकर कुछ भी ना खाएं। ऐसा भोजन ना करें जो देर से पचता है। चाय कॉफी का भी कम सेवन करें। श्रोताओं, आप जानते हैं कि जीवन शैली में क्या बदलाव लाने चाहिए। उचित स्वच्छता बनाए रखें। अपने हाथों को गर्म पानी से साबुन के साथ बार बार धोएं। साफ उबला पानी पिए और केवल बोतल बंद पानी पिए। कच्चा आहार ना लें। उचित तरीके से पका भोजन गरम गरम ही खा लें। भारी दुकानों से पाए गए पदार्थ ना लें। संक्रमित व्यक्ति को घरेलू कार्यों से दूर रखें। संक्रमण को रोकने के लिए संक्रमित व्यक्ति की व्यक्तिगत उपयोग और वस्तुओं को अलग रखें। पानी को स्वच्छ कर ही पिएं। कूड़े कचरे को सही तरीके से फेंकें और अच्छा स्वास्थ्य भोजन करें। संक्रमित व्यक्ति को अपने बर्तन और भोजन किसी से भी नहीं शेयर करने चाहिए, बांटने चाहिए। संक्रमित व्यक्ति को भोजन भी नहीं पकाना चाहिए। कच्चे फल और सब्जियां खाने से बचें। ज्यादातर गर्म खाद्य पदार्थ का सेवन करें और अपने आसपास सफाई रखें। श्रोताओं, आप जानते हैं कि टाइफाइड का उपचार में घरेलू नुस्खे क्या होते हैं। टाइफाइड जैसे रोग अक्सर डिहाइड्रेशन का कारण बनते हैं, इसलिए रोगी को कुछ कुछ समय के बाद अपने पदार्थ में पानी, ताजे फल का रस या हर्बल चाय का सेवन करना चाहिए। उबले पानी का ही सेवन करें। यह टाइफाइड में कमजोरी की स्थिति में भी आपकी मदद कर सकता है और बीमारी से राहत दिला सकता है। टाइफाइड में तुलसी का पानी भी बहुत अच्छा इलाज है। सेब का जूस भी टाइफाइड में उपचार के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सेब का जूस निकालें, इसमें अदरक का रस मिलाकर पिएं। इस तरह से बुखार में राहत मिलती है। आप टाइफाइड के उपचार के लिए लौंग का इस्तेमाल करें। लौंग में टाइफाइड ठीक करने के गुण होते हैं। 8 कप पानी में अगर आप 5 से 7 लौंग डालकर उबाल लेंगे, जब पानी आधा रह जाएगा तो उसे छानकर पी लें। इस उपचार को 1 हफ्ते लगातार करें, इससे टाइफाइड में हुई कमजोरी दूर हो सकती है। अगर बुखार तेज है तो ठंडे पानी की पट्टियां भी कर सकते हैं। टाइफाइड के उपचार के लिए शहद का सेवन भी बहुत अच्छा होता है। गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पानी को पी लें। ये टाइफाइड के उपचार के लिए उपयोग में लाया जाने वाला बहुत फायदेमंद उपाय है। श्रोताओं, ये तो मैंने आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताए थे, पर जब टाइफाइड होता है तो हमें डॉक्टर के पास भी जाना उतना ही जरूरी है। टाइफाइड के लक्षण दिखते ही हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसे अपनी बीमारियों के बारे में बताना चाहिए। नहीं

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: वेलकम फ्रेंड्स, जीते रहो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अरे बबलू, ये क्या कर रहे हो?
1: खुजला रहा हूँ, और क्या, तुम्हें तो दिखता रहेगा फिर भी पूछोगी।
0: नहीं नहाओगे तो ऐसे ही होगा, ये सब गंदगी का नतीजा है।
1: तुम्हें तो मौका चाहिए बस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पैर में ये छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, पर इसे कोई परवाह ही नहीं। जस्सी,
0: तो तुम खुजा के उसे और क्यों बढ़ा रहे हो? और तुम्हारे नाखून, देखो अपने नेल्स। दोस्तों, आप ये गलती कतई मत कीजिएगा। अगर दाने निकल रहे हों और दाने वाली जगह पर त्वचा लाल भी हो, तो प्लीज उसे नाखून से मत खुजाइएगा इस बुद्धू की तरह, बीमारी और बढ़ जाती है।
1: तुम इतना पैरानोइड क्यों हो रही हो? छोटा सा तो है, मैं तो बस चिढ़ा रहा था।
0: मैं जानती हूं तुम क्या कर रहे हो, और हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम त्वचा की बीमारी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। दोस्तों, ऐसा करना उचित नहीं है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील स्थान है।
2: हम एक दिन में न जाने कितने ही सेंसेशंस महसूस करते हैं। इन सेंसेशंस के महसूस होने में त्वचा का अहम रोल है। त्वचा हमारे शरीर का बहुत संवेदनशील अंग है। जाहिर है, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारी त्वचा हमेशा एक्सपोज रहती है। वातावरण में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी त्वचा को प्रभावित कर सकती हैं, जिनसे त्वचा की बीमारियां हो सकती हैं। हमारी त्वचा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है प्रदूषण से। प्रदूषण और हार्मफुल केमिकल से स्किन रैशेस, डर्मेटाइटिस जैसी त्वचा की परेशानियां हो सकती हैं। और अगर इतना काफी नहीं था तो परेशान करने के लिए मौजूद हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पूरा पारिवारिक समूह। जीवाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई भी त्वचा की बीमारियों की एक अहम वजह है। इनसे एक्ने, रिंगवर्म इन्फेक्शन और हर्पिस जैसी त्वचा की बीमारियां होती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है अपनी स्किन का ध्यान रखा जाए। वैसे कुदरत ने भी कुछ हद तक त्वचा का ख्याल रखा है। त्वचा पर मौजूद बाल बाहरी तत्वों से इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं और शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। हमारी त्वचा स्वेट ग्लैंड्स के जरिए भी बॉडी टेम्परेचर नियंत्रित करती है। ज्यादा तापमान, शारीरिक परिश्रम और स्ट्रेस की स्थिति में ये स्वेट ग्लैंड्स पसीने का उत्पादन करते हैं। ये पसीना त्वचा में मौजूद पोर्स यानी रोम छिद्रों से बाहर निकलकर जब इवेपोरेट यानी वाष्पित होता है तो शरीर को ठंडक पहुंचती है। जाहिर है, पसीना पसीना होना महज एक मुहावरा ही नहीं बल्कि हमारे शरीर की जरूरत भी है। ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स के अलावा त्वचा में करोड़ों की संख्या में अन्य स्किन सेल्स भी मौजूद रहते हैं। ये सभी त्वचा की तीन अलग लेयर्स में बटे रहते हैं, पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और तीसरा सबक्यूटेनियस टिश्यू। त्वचा की सबसे ऊपरी लेयर जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, कागज के टुकड़े जितनी मोटी होती है। एपिडर्मिस पर बाल और पोर्स यानी कि रोम छिद्र होते हैं। एपिडर्मिस की सबसे निचली लेयर में बेसल सेल्स मौजूद होते हैं। ये बेसल सेल्स टूटकर स्क्वेमस सेल्स बनते हैं जो केराटिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। यही केराटिन हानिकारक रसायन और इन्फेक्शन से त्वचा की रक्षा करता है। एपिडर्मिस के नीचे होती है त्वचा की सबसे मोटी परत जिसे डर्मिस कहते हैं। इसमें नर्व एंडिंग्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, मसल्स, ब्लड कैपिलरीज और डीप सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। तीसरी और अंतिम लेयर को सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं। इसमें मुख्यतः वसा होती है और इसके अलावा क्यूटेनियस नर्व्स और ब्लड वेसल भी होती है।

0: क्यूटेनियस नर्व्स ही स्किन से सेंसेशन लाने और ले जाने का काम करती है। सब क्यूटेनियस टिश्यू ही गर्मी कैद कर हमारे शरीर को इंसुलेशन प्रदान करता है और गर्मी को शरीर के अंदर रखता है। जहां तक त्वचा के रंग का सवाल है तो इसके पीछे मेलेनोसाइट्स नामक सेल्स का हाथ है जो कि एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। ये सेल्स मेलानोजेनेसिस प्रक्रिया के जरिए मेलानिन नाम का एक पिगमेंट बनाते हैं। जैसे ज्यादा चाय पत्ती डालने पर चाय का रंग काला हो जाता है, वैसे ही मेलानिन के ज्यादा बनने से स्किन भी डार्क हो जाती है। मेलानिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। भारतीयों में मेलानिन की मात्रा यूरोपियन से ज्यादा होने की वजह से हम अल्ट्रावायलेट रेस से होने वाले स्किन कैंसर से काफी हद तक बचे रहते हैं। हमारी स्किन शरीर के किसी और हिस्से के मुकाबले सबसे तेज रिप्लेस होती है। त्वचा की एपिडर्मिस लेयर में ऑयल ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, जिनमें से एक है सिबेशियस ग्लैंड। यही सिबेशियस ग्लैंड एक तरल पदार्थ का उत्पादन करते हैं जिसे सीबम कहते हैं, जो बाल और त्वचा का मॉइस्चर कंटेंट बनाए रखने में मदद करता है। गंदगी, अनुवांशिक कारणों या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई बार सेबम ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। यही सेबम जमा होकर मुहासे या पिंपल्स के रूप में त्वचा पर दिखाई देते हैं। सेबम के इस जमाव में बैक्टीरिया भी पैदा होने लगते हैं। जब बैक्टीरिया और सेबम त्वचा के सतह के नीचे रहते हैं तो वहां पर व्हाइट हेड्स दिखते हैं। त्वचा की सतह से बाहर निकलकर मेलानिन के साथ रिएक्ट कर ये जमाव ब्लैक हेड्स का रूप भी ले सकते हैं।
1: मुहासों का इलाज दो तरह से होता है, लगाने का भी है और खाने का भी है। एग्जामिनेशन जरूरी है ये देखने के लिए कि माइल्ड है या मॉडरेट है या सिवियर है। माइल्ड है जिसमें बोलते हैं सिर्फ कोमेडोन्स हैं, तो उसमें आपका लगाने का दवा जिसमें कई जेल्स आ जाते हैं, एंटीबायोटिक जेल्स हैं या बेंजोइल पेरोक्साइड जेल है या रेटिनॉइड जेल एक कैटेगरी आता है, वो जेल्स लगाएं। मॉडरेट में पस के दाने निकलते हैं जिसको पिंपल्स बोला जाता है कॉमन पार्लेंस में, उसके लिए एंटीबायोटिक्स खाने के लिए दिए जाते हैं और लगाने के लिए भी दवा दी जाती है।
0: एक्ने जैसे कॉमन डिसऑर्डर के अलावा त्वचा के कुछ और कॉमन डिसऑर्डर्स भी हैं, जैसे एक्जिमा जिसे डर्मेटाइटिस भी कहते हैं और सोरियासिस। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। एक्जिमा की शुरुआत होती है सूजन और खुजली से। एक्जिमा के कारण त्वचा पर ब्लिस्टर्स या फफोले भी पड़ने लगते हैं। यदि एक्जिमा लंबे अरसे तक रहे तो त्वचा सूखी, बर्तीली और बदरंग भी हो सकती है। ये एलर्जी एसिड और अन्य हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से हो सकती है। कुछ धातुओं जैसे निकल से बने चश्मों के फ्रेम और बटन के संपर्क में आने पर भी कई लोगों को स्किन एलर्जी हो जाती है। एक्जिमा के मूल कारण और रैशेज के आकार और जगह के आधार पर एक्जिमा के प्रकार निर्धारित किए गए हैं। जैसे अटोपिक एक्जिमा, ये अमूमन उन लोगों को होता है जिनमें एलर्जी होने की जेनेटिक टेंडेंसी यानी आनुवांशिक प्रवृत्ति होती है। ये नियमित रूप से आता जाता रहता है। एक ही जगह बार बार खुजलाने और रगड़ने पर भी एक्जिमा हो सकता है। जहाँ एक्जिमा के पीछे बाहरी कारणों का हाथ है, वहीं त्वचा की एक ऐसी बीमारी भी है जिसकी मूल वजह जेनेटिक है। इस बीमारी का नाम है सोरियासिस। त्वचा की बाहरी लेयर एपिडर्मिस में कोशिकाओं के प्रोडक्शन और रिमूवल की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब बेसल लेयर्स द्वारा निर्मित सेल्स का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है तब शरीर पर गठीले लाल रंग के पैचेस दिखने लगते हैं। इसी अवस्था को सोरियासिस कहते हैं। अधिकतर घुटने, कोहनी, पीठ, कूल्हे और सर, इन भागों पर सोरियासिस असर करता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है तो सोरियासिस का इलाज उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। सोरियासिस होने पर इलाज के लिए स्किन पर मलहम या क्रीम लगाई जाती है। यदि इनसे राहत न पहुँचे तो फोटोथेरेपी भी की जाती है। इसमें ज्यादातर प्रभावित क्षेत्र पर अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। सोरियासिस के काफी बढ़ जाने पर डॉक्टर्स खाने की दवाएं और इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब करते हैं।
2: अरे बबलू, तुम ये लंगड़ाते हुए क्यों आ रहे हो?
3: देखो ना, जहां मुझे खुजली हो रही थी वहां कैसे घाव हो गए हैं। कोई इन्फेक्शन तो नहीं है?
2: ओ, मगर आपकी माने तो ये इन्फेक्शन वगैरह तो सब किताबी बातें हैं ना?
3: प्लीज कुहू, दर्द भी हो रहा है और जलन भी, देखने में भी कितना खराब लग रहा है, रोना आ रहा है मुझे।
2: अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी साफ कर दूंगी, ठीक हो जाएगा।
3: नहीं, और भी ज्यादा दर्द होगा, नहीं मुझे।
2: कुछ नहीं होगा बबलू, घाव कैसा भी हो साफ तो करना ही पड़ेगा ना, और मर्ज कैसा भी हो इलाज तो जरूरी है ना।
0: स्केबीज एक पैरासाइट इन्फेक्शन है जिसमें तेज खुजली होती है। ये बीमारी फैलाने वाले माइट स्किन के अंदर अपने को छुपा लेते हैं। इनके काटने से तेज खुजली होती है जो रात में अक्सर बढ़ जाती है। ये माइट्स बहुत छोटे होते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास से ही दिखाई देते हैं। ये इन्फेक्शन इन्फेक्टेड व्यक्ति के कपड़ों और बिस्तर के इस्तेमाल से फैल सकता है। स्केबीज का इलाज क्रीम या लोशन से आसानी से हो जाता है, लेकिन मरीज के कपड़ों और बिस्तर के कपड़ों को उबालना जरूरी है जिससे माइट्स मर जाते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो माइट्स दोबारा इन्फेक्ट कर देंगे और किसी और को भी इन्फेक्शन लग सकता है। आइए अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन की। हमें से काफी लोगों ने रिंगवर्म का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल ये रिंगवर्म है क्या, इसके पीछे हाथ है टीनिया नामक फंगस का, जो हमारी त्वचा, बाल और नाखूनों में पनप सकता है। इसकी ग्रोथ गोलाकार स्वरूप लेती है, बीच में त्वचा नॉर्मल रहती है और इसके आसपास लाल, पथरीली और थोड़ी उभरी रहती है। इस कारण यह इन्फेक्शन रिंग जैसा दिखता है और यहीं से इसका नाम पड़ा रिंगवर्म। हालांकि हकीकत में त्वचा में कोई कीड़ा मौजूद नहीं रहता। ये बीमारी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, पैर के अंगूठों के बीच में, छाती, बांह और पांव पर अक्सर ये बीमारी असर करती है। इस फंगल इन्फेक्शन के होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, ये किसी संक्रमित व्यक्ति को छूने से हो सकता है। दूसरा, फंगाई ज्यादातर नमी वाली जगहों पर जैसे सार्वजनिक स्नान घर या शौचालय और स्टोरेज करने की जगहों में पनपती है। ऐसी जगहों से भी संक्रमण होने का खतरा रहता है।
4: देखिए, एंटी फंगल दवाइयाँ जो आती हैं वो दो तरह से आती हैं, एक तो क्रीम फॉर्म में आती हैं और एक टैबलेट फॉर्म में आती हैं। क्रीम फॉर्म के साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं कि जहाँ पर भी क्रीम लगाई है वहाँ पे खुजली मचना, जलन मचना और कुछ तरह के दाने हो जाना, ये साइड इफेक्ट्स कई बार देखे जाते हैं। तो अगर आपको ये हो जाए तो पेशेंट को दवाई को रोक के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ओरल जो दवाइयाँ आती हैं टैबलेट्स के फॉर्म में, उसके साइड इफेक्ट्स में एलर्जिक रिएक्शन होना वो बहुत कॉमन है, जिसके कारण से इसमें लाल चकत्ते पड़ जाना शरीर के ऊपर, या फिर पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाना, उल्टी जैसा लगना, नौजिया लगना, पेट में दर्द होना, ये सब चीज़ें, कई बार भूख भी कम हो जाती है पेशेंट की। अगर ये सब हो जाए तो पेशेंट को दवाई रोक के फिर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
0: इलाज से बेहतर है बचाव। रिंगवर्म या टीनिया इन्फेक्शन से बचाव के लिए त्वचा को साफ रखें और नमी से बचा कर रखें। कुछ और आम बातें हैं जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। जब जरूरी ना हो तब जूते उतार दें, मसलन घर पर, ताकि पैरों को जरूरी हवा मिल सके। मोजे और अंडरवेयर रोजाना बदलना, खासकर गर्म मौसम में। नमी वाली जगहों पर जैसे सार्वजनिक स्नान घर में नंगे पाँव ना चलें। त्वचा पर होने वाले बॉयल्स या फोड़े हेयर फॉलिकल से होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बॉयल्स त्वचा पर पस युक्त इन्फ्लेमेशन का रूप लेते हैं। बॉयल्स के इलाज में पस को सुखाया जाता है, इसके लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी करते हैं।

0: ब्रेक के बाद बबलू अपने इन टैटू वाले हाथों से आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता है।
1: टैटू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गए तो
0: ज्यादा पढ़े लिखे होने का यही नुकसान है, हर चीज में इन्फेक्शन ही दिखता है।
1: छोड़िए दोस्तों, इसको कुछ समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। आइए अब बात करते हैं वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की।
2: वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की श्रेणी में आने वाले दो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं वॉट्स यानी मस्से और हर्पीज यानी खाज या दाग। वॉट्स एक किस्म की स्किन ग्रोथ है जिसके पीछे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV का हाथ है। वॉट्स शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, चेहरे, हाथ के पिछले भाग पर, पैरों के तलवे पर, मुंह के अंदरूनी भाग में और यहाँ तक कि जेनिटल एरिया में भी। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है, यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। शारीरिक कॉन्टैक्ट या फिर इन्फेक्टेड व्यक्ति के तौलिए, कपड़े इत्यादि इस्तेमाल करने पर यह इन्फेक्शन फैल सकता है। काफी मामलों में वॉट्स कुछ महीनों में खुद ब खुद गायब भी हो जाते हैं, पर कई बार इनका इलाज दवाइयों या अन्य किसी ट्रीटमेंट पद्धति के जरिए ही करना पड़ता है। इलाज के कुछ कॉमन तरीके हैं रासायनिक, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड या कैंथराइडिन वॉट्स पर लगाना, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन के माध्यम से वॉट्स को फ्रीज कर देना। इस पद्धति को क्रायोथेरेपी भी कहते हैं। कुछ केसेस में वॉट्स को स्पेशल तरीके से जलाया जाता है, जिसे कॉटराइजेशन भी कहते हैं। जेनिटल वॉट्स बेहद कंटेजियस होते हैं और इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की निगरानी में करना चाहिए।
3: वॉट्स टच करने से फैलते हैं, तो पेशेंट उस वॉट को बार बार अपने हाथों से ना छुए, और दवाई लगाने के बाद अगर क्रीम्स हैं तो अपने हाथों को साबुन से या पानी से अच्छी तरह धोए। दूसरी बात यह है कि वॉट्स, जेनिटल वॉट्स जो है, यौन संबंध करने से फैलते हैं। मतलब अगर किसी आदमी को वॉट्स हैं तो वो अगर यौन संबंध बनाता है तो दूसरे उसके पार्टनर को वॉट्स हो सकते हैं।
2: वायरस से होने वाली त्वचा की एक और बीमारी है हर्पिस। ये बीमारी दो तरह के वायरस से फैलती है। पहला वायरस है हर्पिस सिंप्लेक्स, जो ओरल कैविटी और जेनिटल को इन्फेक्ट करता है। हर्पिस सिंप्लेक्स कॉन्टेजियस होता है और अधिकतर ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। हर्पिस फैलाने वाला दूसरा वायरस है हर्पिस जोस्टर। ये वायरस एक ही नर्व को अपनी चपेट में लेता है। जहाँ जहाँ वो नर्व निकलती है उस जगह पर दाने निकल आते हैं। इसमें बहुत दर्द होता है लेकिन ये कंटेजियस नहीं है। हर्पिस जोस्टर वायरस चिकन पॉक्स वायरस का ही एक किस्म है। इसके ट्रीटमेंट में कुछ एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन संपूर्ण रूप से ये अपने आप ही ठीक होता है, जिसकी अवधि 3 सप्ताह से लेकर 1.5 महीने तक हो सकती है। सीरियस इन्फेक्शन में दाने खत्म हो जाने के बाद भी दर्द 6 महीनों तक रह सकता है। ऐसे हालत में कुछ समय तक दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्कैल्प में होने वाली परेशानियां हैं डैंड्रफ। डैंड्रफ स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से होता है, जिसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। डैंड्रफ एक हल्के फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसका इलाज क्रीम और लोशन से किया जाता है। हेड लाइस एक पैरासाइट है जिसे जू भी कहते हैं। ये सर के बालों में रहती है। इसके स्किन के अंदर छुपने से इचिंग और इन्फ्लेमेशन होती है। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा पैचेस में होता है। इसकी वजह इन्फेक्शन हो सकता है या कोई ट्रॉमा जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। लेकिन सबसे कॉमन एलोपीसिया, जिसे एलोपीसिया एरिएटा कहते हैं, के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है। इलाज के लिए मेडिसिन और क्रीम के जरिए स्कैल्प के नरिशमेंट का ध्यान रखा जाता है। ज्यादातर मामलों में कुछ महीनों के बाद प्रभावित जगह पर बाल फिर से उगने लगते हैं। अब बात ल्यूकोडर्मा की। इसमें मेलेनिन की कमी से स्किन पर व्हाइट पैचेस हो जाते हैं। शुरुआत में और जब ये बीमारी शरीर के कुछ अंगों तक सीमित होती है तो इसका पूरा इलाज संभव है, लेकिन अगर ये बीमारी बहुत अधिक अंगों तक फैल जाए तो इस रोग का पूरा निवारण कई बार संभव नहीं होता। लेकिन गौरतलब है कि ये छूत की बीमारी नहीं है और इससे व्हाइट पैचेस के अलावा शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। इसका इलाज मेडिसिन, क्रीम्स और फोटोथेरेपी से किया जा सकता है। इस इलाज के बाद मेलानिन का बनना बढ़ जाता है और स्किन का सामान्य रंग वापस आने लगता है। एल्बिनिज्म एक जेनेटिक कंडीशन है, जिसमें जन्म से ही शरीर में मेलानिन नहीं पाया जाता, इसलिए रंग सफेद होता है। त्वचा पर मौजूद बाल शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। त्वचा को तीन लेयर्स में बांटा गया है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यूज। त्वचा में मौजूद मेलेनिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है और शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। हर्पीस की बीमारी दो तरह के वायरसेस से होती है, हर्पीस सिंप्लेक्स और हर्पीस जॉस्टर। स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से डैंड्रफ होता है, इसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, इसकी वजह इन्फेक्शन या ट्रॉमा हो सकती है जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। एलोपीसिया एरिएटा के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है।
0: वाह कोकिला, क्या इलाज किया, आज मान गए तुमको, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या बताओगी?
1: आगे वेल बबलू, समय हो गया है।
0: क्या बात करती हो कोकिला, अभी तो शुरू ही हुआ था। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।
1: जी हाँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।

अगर अपने भारत के शहरों में, भारतवर्ष के शहरों में अगर आप एक फलदार पौधा लगाना चाहते हैं, वो तो आप जामुन लगाइए। जामुन जो है वो एवरग्रीन भी होता है, जामुन में घनत्व बहुत होता है, इसका जो हरियाली का, इसकी जो क्षमता है, इसका क्राउन बहुत अच्छा होता है, बहुत ही प्यारा, बहुत तेज उगने वाला है, जल्दी कीड़ा नहीं लगता और नो नॉनसेंस पौधा है। इसको एक बार आपने लगा दिया, इसको आपने दो साल इसकी सेवा कर दी, पानी वानी अच्छा डाल दिया, तो ये बहुत बढ़िया निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको कभी भी जिंदगी में इसको परवाह करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बढ़िया निकलेगा। जामुन मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब देखिए बाकी जो हमारे जितने भी फलों के वृक्ष है ना, वो छोटे साइज के रह जाते हैं, जैसे चीकू हुआ, फिर आप नींबू ले लीजिए, आप अमरूद ले लीजिए, आम जो है स्लो ग्रोइंग है, वो धीरे धीरे उगता है, तब तक जो है गाय भैंस बकरी उसको अटैक कर जाती है। जामुन एक ऐसा है, आप देखेंगे हम अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीज शेयर कर रहे हैं, मैक्सिमम सर्वाइवल हुआ उसका, गाय ने भी खाया, भैंस ने भी खाया, नीलगाय भी आके खा गई, उसको बकरी भी चर गई, लेकिन फिर भी वो इतना रॉबस्ट पेड़ है, जैसे पीपल का वृक्ष होता है, ये उगता ही रहता है, उगता ही रहता है। अब जैसे यहां से भी बहुत जगह से इसकी प्रूनिंग हुई थी, ये देखिए यहां कोई काट के गया है, यहां काट के गया है, ये ब्रांच, ये वाली एक ब्रांच किसी ने काटी है, चॉप की है, फिर यहां से निकलना शुरू हो गया। तो इसकी जो ग्रोथ की क्षमता है, इसकी जो फैलने की क्षमता है, वो बड़ी प्यारी है। इसीलिए मैं जामुन प्रेफर करता हूं शहरों के लिए भी, है ना। और इरिगेशन कैनाल्स हैं, आपकी जो मेड़े हैं फार्म्स में, जो खेतों में, आप वहां पर भी जामुन लगा सकते हैं। जामुन का जो फल है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है, आपको अगर आप उसको कमर्शियली भी करना चाहते हैं, मार्केट में भी उसको बेचना चाहें, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। पक्षियों के लिए बहुत अच्छा है, बंदरों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, गिलहरी बहुत अच्छी आती हैं, इंसेक्ट पॉपुलेशन बहुत आती है, और फर्स्ट क्लास छाया आती है, इसमें बहुत ही ठंडी छाया है इसकी। तो जामुन का पेड़ आप जरूर लगाएं।

नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट खेती में। मैं आपको लेकर आया हूं आज चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में। पंजाब यूनिवर्सिटी में आप यहां पर देखेंगे बैम्बू फार्मिंग। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये रॉकेट की गति से तेजी से बढ़ने वाला बांस है जगेंडिस, और आप देख करके आपको लगेगा कि ये कहीं अमेजन के जंगलों में खड़े हुए इतने मोटे बांस है, लेकिन नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट भी नहीं है, ये चंडीगढ़ है और ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पूरे देश में कहीं भी हो सकता है। हम आपको बता दें कि बांस की करीब 1600 वैरायटी हैं पूरे हिंदुस्तान में, कुछ वैरायटी कहीं भी हो सकती हैं। और इस तरह से ये जगेंडिस जो है, यहां पर हमें पता लगा कि इसकी उम्र मात्र 3 महीने है, 3 महीने में भी ये इतना ऊंचा चला जाता है। उसके बाद जैसे ही वो ड्राई होता है, सूखता है, उससे पहले उसको काट लिया जाता है। उसके क्या उपयोग हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। बांस को लेकर जो सरकार ने जो अपना प्रोजेक्शन दिया था, उसे जो एक तरह से लकड़ी से घास में की कैटेगरी में उसको रखा, और बांस की खेती पर किसी तरह का प्रतिबंध, उसे काटने पर किसी भी तरह का प्रतिबंध न हो, ये एक नियम बना दिया गया, तब से पूरे देश में बांस को प्रमोट किया जा रहा है।

0: हमारे साथ चंडीगढ़ में जो एनवायरमेंट सोशियोलॉजी के हेड हैं डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी, आप यहां पर हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर साहब से सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो बांस है उसका इस एनवायरमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद आगे चलेंगे।
1: देखिए, बांस एकमात्र ऐसा पौधा है जो आपको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है। बाकी पौधों से अगर कंपेयर करें तो 135% तक ज्यादा ऑक्सीजन देता है।
0: क्या बात?
1: और ये बढ़ता इतनी तेजी से है कि आप जैसे देख रहे हैं कि 3-4 महीने में ये 90-100 फीट तक चला जाता है।
0: रॉकेट साइंस है,
1: रॉकेट है। और ये एक दिन में 3-3 फीट तक बढ़ सकता है। आमतौर पे 1 फीट तो रेगुलर बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन 3-4 फीट तक भी बढ़ सकते हैं। और इसमें 1600 के करीब वेरायटी है जो नॉर्थ इंडिया में है, वो अभी लगभग 30-35 वेरायटी अच्छे से चल रही है।
0: और ये आपने सिर्फ यहाँ पर डैमो के लिए, यहाँ पर ही ये हम सब देख रहे हैं कि इसका एक्सपेंशन भी किया गया है?
1: हम सैकड़ों एकड़ में इसकी खेती कर रहे हैं, मैं अपने खेत में भी कर रहा हूँ, मेरे दोस्त भी कर रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े इलाकों में हम लगा रहे हैं।
0: एक्यूरेट कितने एकड़ में किया होगा?
1: लगभग 500 एकड़ में पहुंच चुका होगा।
0: क्या बात? हाँ। कौन कौन से एरिया स्पेशली कवर किए हैं?
1: इसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्से हैं जो तेजी से लग रहे हैं, और हिमाचल में भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, वो लगा रहे हैं। और इसको लगाने के पीछे कारण ये रहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी घोषित किया, जो बांस पहले पेड़ की कैटेगरी में था उसको अभी घास
0: की कैटेगरी
1: में लगा दिया है। इससे क्या हुआ कि जो नॉर्थ इंडिया के किसान थे उनको भी बांस में इंटरेस्ट जागा है। पहले हमें ये लगता था कि बांस को कल्टीवेट करना, इसको आगे बढ़ाना ये इलीगल है, तो अभी इसको लीगल कर दिया है सरकार ने, उसकी वजह से ये बहुत तेजी से अभी फैल रहा है। ये CNG, चारकोल, एथेनॉल इससे बनना चालू हो चुका है, और इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही सुपीरियर होता है, और ये बर्निंग के लिए काम आता है, जो बड़ी बड़ी भट्टियां चलाने के लिए। तो ये डीजल, पेट्रोल और कोयले का एक अच्छा रिप्लेसमेंट है।
0: बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर आपको पता है कि अब बांस लकड़ी नहीं है, वो घास की कैटेगरी में है, उसको उगाना, उसको काटना, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, और इसी वजह से नॉर्थ इंडिया में भी किसानों ने इसको उगाना शुरू किया है। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इस इलाके में भी करीब 500 एकड़ जमीन पर तो उनके अकेले के प्रयास से ये शुरू हो चुका है, और इसके अलावा भी किसान अलग अलग तरीकों से उसे पहले से ही कर रहे हैं। यहां पर जो वैरायटीज हैं, हम उन वैरायटीज को जानेंगे, उनकी खासियत क्या है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस रॉकेट बैम्बू से।
1: जी, इसको नाम जाइगेंटस है और चाइनीज बैम्बू भी बोलते हैं, लेकिन चाइनीज बैम्बू थोड़ा डिफरेंट होता है। चाइनीज बैम्बू में क्या होता है, 5 साल तक वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, और 5 साल के बाद वो तुरंत 90-100 फीट का चला जाएगा विद इन 3 महीने में। और ये थोड़ा डिफरेंट है लेकिन उसके जैसा ही है, ये जाइगेंटिस बोलते हैं इसको। और इसकी खास बात यह है कि ये बहुत मोटा होता है, इसकी जो फर्नीचर बनने का, घर बनाने के लिए, पैलेट्स बनाने के लिए, और एक जो खूबसूरत फर्नीचर होता है उसके लिए इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये बहुत महंगा भी बिकता है। अगर प्रोसेस करके बेचा जाए तो किसान कई गुना ज्यादा मुनाफा इससे कमा सकते हैं।
0: यहाँ पर हम देख रहे हैं इससे उतर उतर कर इस तरह के प्लेट्स गिर रही हैं, आप इनको नेचुरल प्लेट कह सकते हैं, इनका क्या उपयोग?
1: देखिए, इसके हजारों उपयोग हैं। ये इसका पैकिंग मटेरियल बनता है, गत्ता बनता है, पेपर बनता है, कटोरियां बनती हैं, चम्मच बनते हैं, डिस्पोजल आइटम बनते हैं, ये सीधे भी पैकिंग मटेरियल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं अभी, इसकी पैलेट्स भी बनती हैं, खाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। और ये हर पोरी पे एक गिरता है, तो किसान मान लो कि एक बैम्बो है उसके पास और 50 पोरियां, तो 50 ऐसे गत्ते उसके पास गिरने वाले हैं, तो ये एक्स्ट्रा इनकम है किसान की। और इसका मल्चिंग के लिए भी किसान अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं।
0: हम यहां से कुछ और वैरायटीज हैं उधर चलते हैं और डॉक्टर साहब से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सामने हम एक और वैरायटी देख रहे हैं, इस वैरायटी का नाम क्या है, इसकी खासियत क्या है, और ये क्या उतनी ही तेजी से बढ़ता है जिस तेजी से जगंडिस बढ़ता है? जी डॉक्टर साहब,
1: देखिए लगभग सारे बांस बहुत तेजी से बढ़ते हैं, और ये न्यूटन, टोल्डा और बालकोआ, ये 3-4 वेरायटी हैं जो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा चलती हैं, उन्हीं में से ये एक है। और इसका भी बढ़ने का जो रफ्तार है वो बहुत तेज होता है, और इसमें आप देखेंगे जैसे हमने जाइगेंटिस में देखा, एक ही पौधे में हजारों डंडे निकले हुए हैं, इसमें भी उसी तरीके से हजारों निकलते हैं। और इसको संभालना और इसको मैनेज करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है और आप जितना चाहें इसको जिस तरफ चाहें बढ़ा सकते हैं।
0: आमतौर पर हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया की जो मार्केट है जिसमें बल्लियों की, जब आप बल्लियों की बात करते हैं तो उसमें ये बांस जो है ज्यादा इस्तेमाल में आता है।
1: जी, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आता है और ये भरा हुआ निग्गर बांस जिसको बोलते हैं वो है, वो खोल अंदर से खाली होता है, ये पूरी तरह भरा होता है तो इसमें वजन जाता होता है। तो अगर किसान इसको पर किलो के हिसाब से या पर टन के हिसाब से बेचे तो इसमें मुनाफा ज्यादा होता है।
0: बांस की तीसरी वैरायटी आई है हमारे साथ और ये आप पीछे देख रहे हैं, ये कुछ पतला बांस है, इसका क्या नाम है, इसकी खासियत क्या है? जी डॉक्टर साहब ये भी बताइए।
1: इसको टुल्डा रॉक्स बोलते हैं और इसकी खास बात यह है कि यह भी बहुत तेजी से बढ़ता है और ये बंच में बढ़ने वाला बांस है, इसको जितना काटेंगे उतना ज्यादा फैलता रहेगा ये। और जिस मान लो कि आपको कच्चा बांस है उसमें 50% आपने तोड़ के अगर उसका अचार मुरब्बा बना लिया तो 50% डंडे और ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, तो तुरंत आपको पैसा मिल गया अचार मुरब्बा से और जो 50% बाकी बचा वो आपके डंडे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के तैयार हो जाते हैं।
0: यहाँ पर बांस की उपयोगिता जो है वो बांस की वैरायटीज के साथ में बदलती रहती है और इस उपयोगिता में आप कुछ और बांस देखेंगे। बांस खेतों की बाढ़ लगाने के भी काम में आता है, आपको बाढ़ लगाने में नेट पर अवेलेबल है कि इतने हजार रुपया लगेंगे पर एकड़, लेकिन यहाँ पर आप ये देखेंगे क्या शायद ये बाढ़ के लिए उपयोग आने वाला बांस है?
1: ये अर्बन हाउसेज में जो दीवारों के साथ में लगाते हैं, हेज बेम्बो बोलते हैं इसको, तो ये बहुत ही खूबसूरत हेज बनाता है क्योंकि यहाँ पे इसको धूप नहीं मिल रही है तो बहुत कम बढ़
0: खेतों की भी हेज बना देता है।
1: हाँ, खेतों की बना सकते हैं लेकिन खेतों की हेज बनाना चाहिए आपको टुल्डा न्यूटन या बालकोआ से और या एक डी स्टिक्टस बेम्बो है उसके पीछे लगा हुआ है उस तरीके से, क्योंकि वो पैसे ज्यादा देते हैं, ये केवल देखने के लिए काम आता है। इसके चटाई वगैरह मैट और ये सब चीजें बनती हैं। जो पीछे हमारा लगा हुआ है उसको बुद्धा वैली बोलते हैं, उसका इससे पीछे वाला उसका डेकोरेशन के लिए
0: बुद्धा वैली, ये है, हम बुद्धा वैली के पास में ही आते हैं। ये बुद्धा वैली है जो गांठदार बांस है जी, इसके बारे में आप बता रहे हैं।
1: इसको बेम्बुसा वल्गरिस या बुद्धा वैली बोलते हैं, इसमें गांठें होती हैं छोटी छोटी और ये देखने में खूबसूरत लगता है, अर्बन हाउस होल्ड में भी लगाते हैं इसको। इसी तरीके से इसको व्हाइट बेम्बो भी बोलते हैं, पॉलीमार्फा बोलते हैं इसको वैसे अंग्रेजी में, तो ये व्हाइट कलर का रहता है और इसकी जो यूज है वो फर्नीचर में सीढ़ियां बनाने के लिए।
0: इसकी खास बात ये है कि इसमें जो है स्मूथनेस ज्यादा है।
1: हाँ, स्मूथनेस ज्यादा है, इसमें फालतू जो कांटे होते हैं जो डंडियां होती है वो नहीं निकला होता है। टुल्डा में, न्यूटन में और बालकोआ में थोड़ी बहुत डंडियां निकलती हैं।
0: बांस की एक और वैरायटी है, इस वैरायटी का नाम क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसका बनता क्या है स्पेशली, ये भी हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। जी डॉक्टर साहब,
1: ये बेम्बुसा न्यूटन वॉल बोलते हैं इसको। वॉल इसलिए क्योंकि इसके कांटे आपस में फंस के और एक दीवार बना लेते हैं, जैसे किसान ने अपनी मेड़ पे चारों तरफ लगा दिए तो उसका फायदा क्या होगा कि कोई जानवर इंसान अंदर नहीं आ पाएगा।
0: आप कह रहे हैं कि किसान को अगर अपनी मेड़ तैयार करनी है तो बेम्बुसा सबसे अच्छा है।
1: हाँ, इसको बोलते हैं लाइव फेंसिंग या लाइव वॉल, तो ये पशुओं को भी रोकता है, इंसानों को भी रोकता है और इससे पैसे भी आते हैं। ये दुनिया की एकमात्र बाउंड्री है जो पैसे खर्च नहीं करवाती, पैसे देती रहती है।
0: और स्पेसिफिक यही वाला बांस है वो?
1: हाँ, यही वाला है और इसके अलावा भी दूसरी वैरायटी लगा सकते हैं लेकिन ये पूरी तरह आपकी जो बाउंड्री उसको कवर कर लेगा।
0: तो क्या ये ऐसे फैलता नहीं है जैसे जगेंडिस वगैरह फैलता है इतना इस तरह से चूड़ा?
1: फैलते सारे हैं लेकिन आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, जिस साइड से आपको नहीं फैलाना उसके साइड से ट्रैक्टर निकाल देंगे तो वो नहीं फैलेगा। और आप एक पीढ़ी लगाएगी इसको बांस को, मान लो कि मैं लगा रहा हूँ तो मेरी 3-4 पीढ़ियों के लिए मौज है। ये लगभग 60 से 70 साल चलता है, इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है।
0: मतलब ये घास जरूर है लेकिन ये घास 70 साल तक आपके लिए उपयोगी रहती है। यहाँ पर ये भी पेड़ है, ये इसका नाम क्या है, ये भी हैज की तरह दिखता है कुछ कुछ लेकिन इसे भी समझेंगे।
1: हाँ, ये वाइल्ड बेम्बो हैं और इनको भी न्यूटन के आसपास की ये वैरायटी हैं, जैसे वहां पे काट के भी हमने डाले हुए हैं। तो ये सारे बेम्बो ऐसे हैं जिनको कहीं पे भी लगाया जा सकता है, खारा पानी, मीठा पानी, अच्छी जमीन, खराब जमीन का भी इनको कोई दिक्कत नहीं होता है। एक बार लगाने के बाद में 70 साल तक ये नॉन स्टॉप चलते हैं।
0: राजस्थान में जैसलमेर जैसी जगहों पर जहां खारा पानी नीचे बहुत है वहां पर भी?
1: अभी BSF का एक प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान के जो बाउंड्री है हमारी उसके साथ साथ में 1 किलोमीटर चौड़ाई और लगभग 200 किलोमीटर लंबाई में वो लगा रहे हैं बेम्बो। हाँ, वो दुनिया
0: स्पेशली राजस्थान के बॉर्डर पर
1: बिल्कुल, ताकि उससे एक तो फेंसिंग हो जाए एक डेजर्ट ना फैले, दूसरा जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं उनके लिए भी आसान रहे डिमार्केशन करना, और उससे पैसा भी निकलता रहे, और जो बीएसएफ या बाकी जो आर्म फोर्सेज हैं उनको जो बांस के डंडे चाहिए जो हजारों लाखों की संख्या में चाहिए होते हैं वो भी उनको वहां से मिल जाएंगे, और वो एरिया भी हरा भरा होना चालू हो जाएगा।
0: मतलब आप ये जो बैम्बू है, जो बांस है, इसकी आप जो महिमा है उसको आप समझ सकते हैं। 1600 तरह की वैरायटीज हैं। यहाँ पर एक और वैरायटी है, और इस तरह की वैरायटी जो नॉर्थ इंडिया में आसानी से हो सकती हैं, और मैंने पहले ही बताया ये जो घास है ये 60-70 साल तक चलेगी और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ ना कुछ और बहुत कुछ लाभ देती रहेगी। ये वैरायटी जो है बहुत स्मूथ दिख रही है, इसका क्या नाम है, ये किस उपयोग में आती है, ये भी हम देखेंगे।
1: ये व्हाइट बेम्बो है, इसको टूल्डा व्हाइट भी बोलते हैं, इसको और भी दो तीन नामों से जानते हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसके कोई कांटा नहीं है, बिल्कुल सीधा होता है ये, और इसकी जो हाइट है वो बढ़ती रहती है, और ये चारों तरफ भी फैलता रहता है जितना हमें चाहिए, और ये बहुत ही नजदीक नजदीक ग्रो करते हैं, और इसका इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में, केन बनाने में, या फिर जो सजावटी सामान है उसमें, और पशुओं के लिए बाड़ा वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। वैसे बेम्बो की किसी भी वैरायटी को किसी भी काम में लिया जा सकता है, लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी हैं जिनका स्पेसिफिक फीचर की वजह से किसी पर्टिकुलर काम में उनका ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर मान लो कि पशुओं के बाड़ा बनाना है, या फिर आपको उससे सीएनजी निकालना है, या फर्नीचर बनाना है, तो उसके हिसाब से वैरायटी में थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा। जैसे अभी हम ब्लैक बेम्बो देखेंगे, उसकी वैरायटी थोड़ी डिफरेंट है, हैमिल्टोनी बेमिल्टोनी करके तीन चार वैरायटी हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बांस से लगभग 25,000 प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो वो कैसे बनाएं और उसके बारे में हम बात कर सकते हैं।
0: यहाँ पीछे कम से कम 4-5 तरह के बांस के झुंड दिख रहे हैं, इनके नाम क्या हैं, इनकी खासियत क्या है, यहीं से एक बार डॉक्टर विनोद से हम जानने की कोशिश करेंगे, और उसी के साथ में फिर बांसों के अधिकतम उपयोग क्या हो सकते हैं उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। जी डॉक्टर साहब,
1: ये डंडा बांस है, लाठी बांस है, इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, और हर क्षेत्र में इनके नाम बदल जाते हैं, साइंटिफिक नाम सेम रहते हैं, लेकिन जो डंडा बांस है उसकी खासियत, जैसे पुलिस वाले डंडे रखते हैं, या फिर मच्छरदानी लगाने के लिए रखते हैं, या बायोमास में भी इनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हैमिल्टोनी, बेमिल्टोनी, और टूल्डा, न्यूटन, बालकोआ, इस तरीके से इनके एक पूरी फैमिली है, और इन फैमिली में दो तरीके के स्पेसिफिक बांस होते हैं, एक वो हैं जो दूर दूर फैलते हैं, और एक वो हैं जो बिल्कुल बंच में एक साथ में निकलते हैं। तो इसमें दो मेजर वैरायटी हैं, और ये कोई भी वैरायटी कहीं पे भी पैदा हो सकती है। जो ऐसी जगह है जहां पे बर्फ गिरती है वहां पे थोड़ा वैरायटी सोच के लगाना पड़ता है, और बहुत गर्म इलाकों में, उसके अलावा लगभग सभी वैरायटी सभी जगह पे चल जाती है।
0: बिल्कुल, यहाँ पर आखिर में मैं आपको ब्लैक बैम्बू की तरफ ले जाऊंगा, और वहीं से फिर बांस का पूरा का पूरी जो खासियत है, बांस की जो उपयोगिता है पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे।
1: इसको सिमेंसिस बोलते हैं। इस बांस की खास बात ये है कि ये पूरा बंच में उगता है, और ये बहुत ही गहरा होता है। आप देखेंगे एक पौधा लगाया था ये, और इस एक पौधे के कई हजार बन चुके हैं।
0: ये भी वॉल बनाने के काम आ सकता है।
1: हाँ, वॉल बनाने के लिए भी काम आ सकता है, लेकिन इसका ज्यादा अच्छा इस्तेमाल होता है फर्नीचर में, अगरबत्ती की काड़ी बनाने में, या जो आपके चॉपस्टिक्स हैं, ऐसी सीधी चीजें जिनको मार्केट वैल्यू ज्यादा है उनमें इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये वाले जो बेम्बो हैं, इसके खास बात यह है कि ये हजारों की संख्या में उग जाता है, और जिस साइड में इसको पानी मिलेगा, जिस साइड में इसको नमी मिलेगी, उस साइड में बढ़ना चालू हो जाएंगे। तो ये भी जैसे व्हाइट बेम्बो का एक वैरायटी है। इसका जो खास बात है ब्लैक बेम्बो का, ये इसको दो वैरायटी हैं, हैमिल्टोनी बेमिल्टोनी, इसको ब्लैक बेम्बो भी बोलते हैं, और इसकी खास बात ये है कि इसके पत्ते चौड़े होते हैं, और इसकी जो बॉटनिकल जानकारी है वो हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट के जो टीचर हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस पे। लेकिन इसको अगर आप देखेंगे तो इसका बिल्कुल ब्लैक कलर है, और इस ब्लैक कलर की खास बात यह है कि जो ही वो ग्रीन उगता है वो ताजा प्लांट है, और जो ही वो काला हो जाता है
0: तो काट
1: लेने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इसको बजा के देखते हैं कि अच्छा, जितना पुराना हो गया उतना अच्छा है। और इसको काटने के लिए किसान भाई को क्या करना चाहिए कि वो इसको तीन जनरेशन में डिवाइड कर ले, कि एक तो दादा है, एक बाप है, और एक पोता है। तो जो दादा है मतलब 3 साल पुराना जो हो गया उसको काटेंगे तो वो पूरी तरह पका हुआ है, तो पिछले साल वाले अगले साल तैयार हो जाएंगे, अगले साल तैयार हो जाएंगे, तो साल में एक बार इसकी अच्छे से कटाई करते रहें।
0: तो हमेशा आपको दादा को
1: निकालता रहना है क्योंकि उसकी उम्र हो गई है, उसको नहीं निकालेंगे तो वो खराब हो जाएगा। तो बांस एक ऐसा पौधा है जो जबरदस्ती पैसा देता है, अगर आप नहीं भी लेंगे तो बोलेगा कि भाई काटो मेरे को, मेरे पास पैसे रखने का अभी टाइम नहीं है। तो किसान के लिए एक जबरदस्त चीज है ये, अपने आप बढ़ता रहता है, कोई देखभाल नहीं, कोई कीड़ा नहीं लगता है, कोई बीमारी नहीं लगती है, तो ये किसान के लिए बहुत ही अच्छा एक चीज है।
0: शुरू में डॉक्टर साहब जब बांस की खेती करनी होती है किसी किसान को, उस समय तो कुछ समय के लिए उसका पानी, उसकी देखरेख, इस सब को थोड़ा सा समझना होता है।
1: इसमें ये घास की वैरायटी है, जैसे हरियाणा पंजाब राजस्थान में झुंडा एक उगता है, सरकंडा जिसको बोलते हैं, लगभग वही चीज है ये इसकी हाइट और जो मोटाई है वो बढ़ जाती है, इसको ज्यादा देखभाल की जरूरत है नहीं। जब स्टार्टिंग में लगाएंगे तो अच्छे से इसको सोच समझ के, इसके बारे में जान के लगाना चाहिए और आपके लोकल मार्केट में किस चीज की डिमांड है उसके हिसाब से लगाना चाहिए, फिर किसान को बेचने में दिक्कत नहीं आएगी। अभी सरकार की तरफ से भी और गैर सरकारी बहुत सारी संस्थाएं इसका चारकोल, CNG पैलेट्स और तमाम सारी दूसरी चीजें बनाना चालू कर चुकी हैं, तो बेचने के लिए वैसे भी दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन फिर भी ऐसी वैरायटी लगाएं जो लोकल मार्केट में जल्दी बिक जाती हैं, जैसे टूल्डा, न्यूटन, हैमिल्टोनी, बेमिल्टोनी, जैगेंटिस, तो ये फटाफट बिकने वाली वैरायटी है। और इसके साथ साथ में जब पहला 1 से 2 साल मान लें किसान की, उसको बेसिक देखभाल करनी चाहिए।
0: 1 एकड़ में कितने पौधे,
1: ये डिपेंड करता है कि फार्मर कितना जल्दी प्रोडक्शन चाहता है। तो कुछ फार्मर इसका 500 पौधे लगाते हैं, कुछ 600 लगाते हैं, कुछ 750, कुछ 1000 भी लगाते हैं। तो
0: आपका रिकमेंडेशन?
1: मेरा रिकमेंडेशन ये है कि 600 से 750 के बीच में लगाने चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो और आपके पास साइजेबल क्वांटिटी हो बेचने के लिए।
0: कुछ छोटी जोत के किसान इस देश में ज्यादा हैं, उनके लिए भी क्या ये लगाना जरूरी है या फिर आप उनको यही सलाह देंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा बाउंड्री पर लगाएं? तो
1: बाउंड्री से चालू करें और जब उनको बाउंड्री से पैसे आने चालू हो जाएं तो वो अपनी बाकी सारी फसल से ज्यादा पैसा देना चालू करें।
0: कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़े,
1: बिल्कुल, जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए तो फिर अंदर भी लगाना चालू कर दें। और ये इसकी खास बात ये है कि मान लो कि कोई छोटा जोत का किसान है, मात्र 1 एकड़ का किसान है, उसने खेत के चारों तरफ बैम्बो लगाया, बीच में एक पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर का सिस्टम है जिसको PQNK भी बोलते हैं, तो उस मॉडल पे उसने फल सब्जियां लगा दिया, बीच में थोड़ी बकरियां छोड़ दी या बाकी जानवर छोड़ दिए, तो उसके मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बन जाएंगे और उसकी दीवार भी उसको पैसा देना चालू करेगी। आपने और कोई दीवार नहीं सुनी होगी जो पैसा देती हो, लेकिन बैम्बो की दीवार पैसा देती है। इसके साथ साथ
0: दीवार के लिए ब्लैक बैम्बो भी अच्छा है,
1: कोई भी बैम्बो लगा सकते हैं। आपके खेतों में पशु का नुकसान कितना है उसके हिसाब से सोचना चाहिए।
0: आपने 500 एकड़ जमीन में किसानों को बांस लगवाया है अभी तक, इसको लेकर के आप कितना उम्मीद से हैं?
1: यूएन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें लिखा गया है कि पानी की भयंकर कमी होने वाली है हमारे देश में, खासकर नॉर्थ इंडिया में, और हम पहले से ही ब्लैक जोन और डार्क जोन में, रेड जोन में आ चुके हैं, तो पानी आगे मिलेगा ही नहीं खेती करने के लिए। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि जितना भी पानी अभी हमारे पास है उसका इस्तेमाल करते हुए बैम्बो लगाए जाए और एग्रीकल्चर की टेक्निक को समझ के पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर पे खेती की जाए, तो कम से कम पानी में किसान जिंदा रहेगा। इसके साथ साथ में पानी की कमी को पूरा करने के लिए बांस भी जिम्मेदार है, क्योंकि इसकी जड़ें लगभग 50,000 लीटर पानी को पकड़ के रखती हैं और हर बरसात में ये पानी ज्यादा पकड़ के रखती हैं और बाकी पानी जमीन में छोड़ती रहती हैं। जमीन को ये ऑर्गेनिक करते हैं, फर्टाइल करते हैं, इसके आप देख रहे हैं हर जगह पे पत्ते जो गिरे हुए हैं, ये पत्ते जमीन को ढक के उसको ज्यादा नेचुरल बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये कंप्लीट इकोसिस्टम जनरेट करता है और इससे रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, आप जो सोच सकते हैं वो सब बनता है। तो किसान को ये एक ATM मशीन जैसा है, जैसे बकरी को किसान का ATM बोलते हैं, वैसे ही ये भी ATM है। जब मर्जी उसको काटा और 200-300-400 रुपए का एक डंडा बिक जाता है, तो उसकी इनकम का एक स्टेबल जरिया ये रहेगा। इसके बाद में आपने क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत सारी सरकारों का और इंटरनेशनल बॉडीज के बारे में जो हल्ला मचा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन भी बांस है, क्योंकि कार्बन सिंक करने में बांस का कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। ये हवा से धूल कण, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सबको कंज्यूम करके अपने अंदर समा लेता है।
0: बाकी पौधों के अलावा ज्यादा CO2 को कंज्यूम करता है?
1: जी, लगभग 130 से 135% ज्यादा लेता है ये, और उसका फायदा ये होता है कि हवा बहुत जल्दी साफ हो जाती है और ये ऑक्सीजन भी ज्यादा छोड़ता है, क्योंकि इसकी ग्रोथ भी अनलिमिटेड है।
0: कार्बन क्रेडिट को लेकर के आपने डॉक्टर साहब कुछ काम किया है? मान लिया एक एकड़ में अगर 750 पौधे किसी किसान ने लगाए हैं, तो वो उसका कैलकुलेशन की भाई ये इतना CO2 कंज्यूम कर लेगा, और जो फैक्ट्री चलाने वाला आदमी है वो उसे इतना पैसा उसको मिल सकता है, ठीक है, क्या कंपनसेशन है उसका?
1: इसके लिए अभी यूरोप में चालू हो चुका है और इंडिया में भी कुछ कंपनियों ने चालू किया है, और लगभग $75 पर टन के हिसाब से कंपनियां इस पे स्पेंड करेंगी, ये कंपलसरी उनके लिए हो चुका है। और जो इनकम है कार्बन क्रेडिट सेल करके, वो काफ़ी अच्छा होने वाला है किसान को। एक मोटा मोटा अंदाज़ा मैं दूँ तो 10-15 हज़ार से लेके और 60-70 हज़ार पर एकड़ उसको मिल सकता है बिना कुछ और एक्स्ट्रा किए,
0: अकेले कार्बन क्रेडिट से।
1: और प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल इसको लॉन्च किया है 15 अगस्त को कि कार्बन क्रेडिट हम सेल परचेज कर सकते हैं, जैसे हम शेयर मार्केट में सेल परचेज करते हैं ठीक उसी तरीके से। तो ये कार्बन क्रेडिट का जो बिजनेस है इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ
0: से मैं आपको बता दूं कि भारत में, जबकि उन्होंने डॉक्टर साहब का कहना है और हम भी मानते हैं कि कार्बन क्रेडिट जैसी बातें यूरोप में, पश्चिमी देशों में, विकसित देशों में ज्यादा होती हैं, फिर भी भारत के अंदर 4,000 करोड़ रुपया जो है कार्बन क्रेडिट के मार्केट में वहां से वो उठाया गया है। तो एक बात यह है कि जमीन से लेकर के और पूरे इकोसिस्टम को कैसे डील करता है अकेला बांस, ये एक बात यह है। एक साथ में बहुत बड़ी बात है जिसको हर किसान समझना चाहता है, क्योंकि वो अपने वॉलेट की तरफ देखता है। आपने बैंबू की इकोनॉमी को समझा है, एक एकड़ में अगर वो 750 पौधे लगाता है तो एक एकड़ से वो साल भर में कितना पैसा वो अपने घर में ला सकता है, इसका कुछ अंदाजा?
1: जी देखिए, लगभग 3 साल बाद में, चौथी साल में कटना चालू हो जाता है, और ये एक पौधा लगाया गया था, आपके सामने है, ये हजारों की संख्या में निकल चुके हैं। इसमें हम मान लें कि वो 10 से 15 डंडे ही काट पाएगा, तो अगर वो 10 डंडे भी काटेगा 7,500 डंडे उसके पास होते हैं, पर डंडा अगर 100 रुपए का भी बिक रहा है तो 7,500 रुपए का बनता है। तो आप 7,500 छोड़िए 6 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा उसको। तो उसकी इनकम ये स्टार्टिंग है और वो हर साल बढ़ता रहेगा, और कार्बन क्रेडिट भी मिलने की संभावना अभी बढ़ती जा रही है। उसके अलावा सब्सिडी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल बैम्बो मिशन के अंडर दे रही है, कुछ राज्यों में हम चालू करवाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो जल्दी ही सब जगह चालू होने की संभावना है। तो किसानों के लिए एक ये परमानेंट ATM जैसा है, और वो लगाएंगे तो इससे मल्टीपल फायदे उठाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि ज्यादातर किसान सब्जी की खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, सब्जी की खेती में एक एकड़ में वो लगभग 20,000 के जो बांस के डंडे होते हैं वो खरीद के लगाते हैं। तो अगर उसके खेत में 2 बांस भी लगे हुए हैं तो उसको अपनी जो बेसिक जरूरतें उससे पूरा कर लेगा। अगर उसने थोड़ा ज्यादा लगाया तो मान लो वो 20,000 रुपए वहां पे सेव कर रहा है, पशुओं के बाड़े बनाने पे सेव कर रहा है, बाउंड्री को अच्छे से बना लेता है ताकि आवारा पशु उसके खेत खराब नहीं करें, तो उसको एक कंटिन्यूअस इनकम का स्ट्रीम चालू हो जाता है। इसके बीच में वो पशुपालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन और तमाम सारे दूसरे कार्य भी कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी को बढ़ई का काम आता है, इसका फर्नीचर बनाए, इसकी कटलरी बहुत अच्छी बनती है और डिस्पोजल आइटम बहुत अच्छे बनते हैं, तो अनलिमिटेड चीजें इसकी बना सकते हैं। और ये छोटे हथकरघा जो उद्योग होता है, इसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उसका भी वो फायदा उठा सकता है, और ज्यादा से ज्यादा वो स्वरोजगार की तरफ जाएगा, तो हर रोज उसके घर में बैठ के उसको अच्छे खासे पैसे आते रहेंगे जितना वो किसी नौकरी में नहीं कमा पाएगा।
0: कई बार बांस के ट्रीटमेंट को लेकर के बात होती है कि ट्रीटमेंट अगर उसका नहीं किया गया तो उसकी जो एज है वो कम रह जाएगी, वो उतना ज्यादा सक्सेस नहीं होगा।
1: इसमें बोरोक्स पाउडर वगैरह से इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, वो उस वजह से करनी पड़ती है। अगर आपको मान लो कि फर्नीचर बनाना है, घर बनाना है, तो आपको ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर अदरवाइज अगर कुछ और काम कर रहे हैं इसका, जैसे चारकोल, पैलेट, CNG, एथेनॉल, CD, ये सब बना रहे हैं, तो कोई खास जरूरत है नहीं उसके करने की, क्योंकि बांस की जो लाइफ है, आप उसको अगर हल्का सा वार्निश या पॉलिश करते रहे और हल्का सा ट्रीटमेंट भी कर लिया और उसका घर बना लिया, तो वो सैकड़ों साल में चला जाता है, है ना। तो बांस एक ऐसी चीज है जो रिन्यूएबल है, आप इसका घर अगर टूट भी गया तो दोबारा से आप बनाएंगे तो आपको सारी चीजें बांस से दोबारा मिल जाएंगी, और ये कार्बन नेगेटिव फुटप्रिंट वाला घर होगा। इसके साथ साथ में नेचुरल है, ब्रीदिंग हाउस होता है। आप नॉर्थ ईस्ट में अभी मेरे साथी जाके आए हैं, उन्होंने देखा कि बांस से खूबसूरत घर बना के अंदर से वो लिपाई कर देते हैं मिट्टी की।
0: नॉर्थ इंडिया में भी बांस से घर बनाने के कुछ मॉडल जो है, कुछ स्टार्टअप शुरू हुए हैं?
1: हाँ, बहुत सारे हुए हैं। आप चंडीगढ़ में भी देखेंगे सेक्टर 15 में वो रेडी वगैरह लगा रहे हैं, पूरा बांस से डेकोरेशन किया है, बांस का ही बनाया है। फाइव स्टार होटलों में मैंने कई सारी जगह पे देखा, उन्होंने बांस से बहुत अच्छा डेकोरेशन और जो रूफ टॉप है उसके ऊपर हट्स वगैरह बांस की बनाई है। इसके अलावा चंडीगढ़ के आसपास में बहुत सारे ऐसे जगह बनी हुई है जहाँ पे बांस से घर बने हुए हैं, और पटियाला में और भी कई सारी जगह पे लोगों ने फुल फ्लैज घर बनाए हुए हैं बांस के। और टूरिज्म इंडस्ट्री, नेचुरोपैथी सेंटर, कई बार खेतों में लोग हट्स बनाते हैं इसकी खूबसूरत वाली, तो इसकी दुनिया भर की चीजें ऑलरेडी बन चुकी हैं और बन रही हैं। पहले दिक्कत ये थी कि बांस अवेलेबल नहीं था, इसकी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत हाई है अगर आप नॉर्थ ईस्ट से लेके आएंगे तो उसकी वजह से इतना लोग ज्यादा एनकरेज नहीं फील कर रहे थे। अभी लोकल में जब हम बांस लगाएंगे तो इसकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो हजारों की संख्या में आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अगर सरकार भी सिग्नल दे चुकी है कि अब आपको बांस को काटने में, खरीदने में, ट्रांसपोर्ट करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी जो है बैम्बू वॉल जो है वो राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर पर वो करने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट को, और सबसे खास बात यह है कि ये ग्लोबल वार्मिंग को डील करता है, सबसे खास बात यह है कि ये पानी से डील करता है, अगर आपका स्लाइन वाटर है तो भी ये उस पानी में भी ये हो सकता है, आपके नमकीन पानी में भी ये हो सकता है, उसे बिल्कुल 7 PH का वाटर ही नहीं चाहिए, तो इसको लेकर के। और दूसरा, उसकी जो इकोनॉमी है पर एकड़ है, बाउंड्री को लेकर के है, ये सब इतना ज्यादा है कि अगर आपने बांस को अपना मिशन बनाया तो ये बैम्बू मिशन केवल सरकार का मिशन नहीं बल्कि हर परिवार का मिशन भी बन सकता है। तो स्मार्ट खेती में मुझे इजाजत दीजिए, अगर आपने किसी तरह का कोई बीड़ा उठाया है, अगर आपने अपने यहां पर किसी तरह की स्मार्टनेस दिखाई है खेती में, तो आप हमें जरूर बताइए, हम आएंगे आपके खेत तक और दुनिया को दिखाएंगे आपके यहां की स्मार्ट खेती।

हमारे देश में तुलसी का पौराणिक महत्व है। भले ही ये तुलसी के नाम से जाना जाता हो, लेकिन इसके दूसरे भी कई नाम हैं। मिसाल के तौर पर सुलभा, ग्राम्या, पुरसा, बहुमंजरी और होली बेसिल। दुनिया भर में इसकी करीब 150 किस्में पाई जाती हैं। ऑसिमम बेसिलिकम यानी बोवई तुलसी, ऑसिमम अमेरिकेनम यानी काली तुलसी, ऑसिमम ग्रेटिसिकम यानी वन तुलसी या राम तुलसी, ऑसिमम वेर्डी यानी जंगली तुलसी, ऑसिमम सैंक्टम और ऑसिमम किलीमंडस्क्रिकम इसकी कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। कमाल की बात तो ये है कि इसकी खेती कम उपजाऊ जमीन में भी आसानी से की जा सकती है। हाँ, खेत में पानी की निकासी का उचित इंतजाम होना जरूरी है। वैसे बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत उपयुक्त है। ये उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय दोनों तरह की जलवायु में हो जाती है। खेती दो चरणों में होती है। पहले बीज बोकर नर्सरी तैयार करेंगे और फिर रोपाई। बुआई के लिए जमीन जून के दूसरे हफ्ते तक तैयार हो जानी चाहिए। जमीन तैयार करने के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई करेंगे और फिर 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिला लेंगे। सतह से उभरी हुई 1 मीटर लंबी और इतने ही मीटर चौड़ी क्यारियां बना लेंगे। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 750 ग्राम से 1 किलो बीज, 20 किलो फॉस्फोरस और 20 किलो पोटाश की जरूरत होगी। इसका बीज सीधे नहीं बोना है, बल्कि रेत या बालू में मिलाकर बुआई करनी है। बीज कतारों में बोने हैं। एक कतार से दूसरी कतार की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी है। बीज को ज्यादा गहरा नहीं बोना है। जमाव के 15 से 20 दिन बाद 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन डाल देने से अच्छी पैदावार होती है। 5-6 हफ्तों में पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। रोपाई मौसम साफ रहने पर दोपहर के बाद ही करें और कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर जबकि पौध से पौध की 30 सेंटीमीटर रखें। चूँकि ये बरसात की फसल है, इसीलिए अगर ठीक ठाक बारिश होती रहे तो सितंबर तक कोई सिंचाई नहीं करनी पड़ती। उसके बाद जरूरत के हिसाब से पानी देते रहना है। रोपाई के 1 माह बाद पहली निराई गुड़ाई करनी है और निराई गुड़ाई के 3-4 हफ्तों बाद दूसरी। खेत अगर बड़ा है तो ये काम ट्रैक्टर से भी किया जा सकता है। तुलसी के लिए 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद रोपाई से पहले डालनी है। इसके अलावा 75 से 80 किलो नाइट्रोजन, 40 ग्राम फॉस्फोरस और 40 किलो पोटाश की जरूरत होगी। रोपाई से पहले फॉस्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा जबकि नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा देनी है। बाकी नाइट्रोजन 2 बार में खड़ी फसल में देना है। रोपाई के 10 से 12 हफ्ते बाद तुलसी कटाई के लिए तैयार हो जाती है। ये वो समय है जब पौधे में पूरी तरह से फूल आ जाते हैं और नीचे के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। इस तरह 1 हेक्टेयर फसल से 20 से 25 टन पैदावार ली जा सकती है, जिसमें 80 से 100 लीटर तेल निकल आता है।

0: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खेत खलिहान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। खेत खलिहान में लगातार हम आपसे जुड़े विषय जो हैं उनको शामिल करते हैं, और हमारे आज के कार्यक्रम का जो विषय है वो भी आपसे जुड़ा है। आज हम आपको जानकारी देंगे उन्नत बकरी पालन के बारे में, किस तरीके से उन्नत बकरी पालन करके आप मुनाफा कमा सकते हैं, और यही वजह है कि बकरी पालन एक रोजगार का जरिया भी बन चुका है। यही जानकारी देने के लिए हम आ पहुंचे हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा के मखदूम में। जी हाँ, और यहाँ के प्रधान वैज्ञानिक मनोज कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ये जानकारी लेते हैं किस तरीके से हमारे जो किसान भाई हैं वो उन्नत बकरी पालन कर सकते हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खेत खलिहान में।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे दर्शक हैं, किस तरीके से उन्नत बकरी पालन कर सकते हैं, उसके फायदे क्या हैं?
1: देखिए कि बकरी पालन के द्वारा किसान भाई अपनी आर्थिक उन्नति कर सकते हैं, अपने कुपोषण की समस्या से निजात पा सकते हैं
0: जी।
1: और ये रोजगार का बहुत अच्छा साधन है। उसके लिए जो बकरी पालन है उसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उनके ऊपर ध्यान रखना होगा। जैसे कि उन्नत बकरी प्रबंधन, उन्नत प्रजनन प्रबंधन, उन्नत पोषण प्रबंधन, उन्नत स्वास्थ्य प्रबंधन, उन्नत मार्केटिंग, स्मार्ट मार्केटिंग
0: जी।
1: अगर इन सारे बिंदुओं पर ध्यान रखा जाए तो प्रति बकरी एक किसान एक वर्ष में 6,000 से 10,000 रुपया मुनाफा कमा सकता है।
0: लेकिन इसके साथ साथ आपसे जानना चाहेंगे जो, क्योंकि उन्नत बकरी हम पालन कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो हमारी नस्ल है उसका चयन कैसे किया जाए, तो कौन सी जो उन्नत नस्लें हैं और कैसे उनका चयन, हमारे जो दर्शक हैं अगर वो बकरी पालन करना चाहते हैं तो चयन करें वो?
1: देखिए, हिंदुस्तान में बकरी की लगभग 24 नस्लें हैं
0: जी,
1: जिनको के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में हमारे पूर्वजों ने वहां की वातावरण एवं परिस्थिति के अनुरूप उनको विकसित किया
0: जी।
1: तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बकरी जिस क्षेत्र की हो वहाँ वही वही की नस्लों पर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बकरी पूर्वी भारत की है, जैसे पूर्वी भारत में ब्लैक बंगाल नस्ल पाई जाती है
0: जी,
1: तो वहाँ के किसान उसी बकरी के ऊपर ध्यान दें। और जैसे उत्तर भारत है या उत्तर प्रदेश है
0: जी,
1: तो उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक बकरी पालन के लिए जो बर्बरी बकरी की नस्ल है
0: जी,
1: ये अति उत्तम है।
0: बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि आसानी से बकरी पालन आप कर सकते हैं, लेकिन एक कम से कम अगर हम बात करें तो कितनी जगह इसके लिए चाहिए, क्योंकि बकरी पालन हम कर रहे हैं, जगह का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, और कम से कम कितनी बकरियों से इसकी हम शुरुआत कर सकते हैं?
1: दरअसल ये तो किसान के पास उपलब्ध उसके आर्थिक संसाधन उस पर निर्भर करता है
0: जी।
1: लेकिन जो हमारे संस्थान के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जहां पर के 20, 25, 50, 100 बकरी रखकर लोगों ने

0: पीछे देख भी रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर संस्थान द्वारा जो बकरियां हैं उनको रखा जाता है, आपको भी दिखाते हैं और भी जानकारी हम देंगे, आइए हमारे साथ। बिल्कुल डॉक्टर मनोज, जैसा आपने हमें बताया कि उन्नत नस्लें हैं और यहाँ भी हम देख पा रहे हैं, तो किस तरीके से जो हमारे किसान या दर्शक हैं किस तरीके से वो उन्नत नस्लें ले सकते हैं?
1: देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हमारे जो क्षेत्र में जो किसान भाई हैं वो बकरियों की जो उन्नत नस्ल है, जो प्योर ब्रेड है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे
0: जी।
1: तो किसान भाई को जब भी व्यावसायिक बकरी पालन आरंभ करें, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वो शुद्ध नस्ल के जानवरों को ही रखें। अब जैसे कि अभी हम बर्बरी के बारे में हैं
0: जी, बिल्कुल।
1: तो अब ये बर्बरी नस्ल के कुछ लक्षणों के बारे में मैं आपको बताता हूँ
0: जी।
1: जैसे कि ये जो है इसका जो कोट कलर है वो व्हाइट होता है, उस पे ब्राउन स्पॉट होते हैं
0: जी।
1: इसके जो कान हैं वो छोटे होते हैं और इरेक्ट होते हैं
0: जी।
1: आपने देखा हुआ कि हिरण की तरह
0: पहचान इसके हम कह सकते हैं,
1: ये बर्बरी नस्ल की पहचान है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे जितनी भी बकरियों की नस्लें हैं उनकी अलग अलग पहचान है
0: जी।
1: अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हम बकरियों का चुनाव कैसे करें
0: जी,
1: जो प्रजनक बकरे हैं उनका कैसे चुनाव करें।
0: बिल्कुल,
1: तो एक तो हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम बच्चा प्रजनक बकरे के रूप में चुन रहे हैं वो शुद्ध नस्ल का हो, यानी कि उसके जो माँ बाप हैं वो भी शुद्ध नस्ल के हों
0: जी।
1: दूसरी बात यह है कि उसकी जो बढ़वार है, जो विभिन्न उम्र के सोपान हैं, जैसे कि 3 महीना, 6 महीना, 9 महीने पे, तो उसकी बढ़वार तेजी से होनी चाहिए और उसकी माँ के नीचे पर्याप्त दूध भी होना चाहिए। तो ऐसा नर प्रजनक बकरे के रूप में बहुत उपयुक्त रहेगा
0: जी।
1: और हम आमतौर पे 10 या 12 महीने की उम्र में ऐसे नर का चुनाव कर लेते हैं
0: जी।
1: उसके बाद हम देखते हैं कि ये बकरियों पे माउंट करता है, उन्हें कवर करता है कि नहीं। अगर ये बकरियों पे माउंट करता है, उनको गर्भाधित करा देता है, तो ऐसा बकरा उत्तम रहता है
0: जी। बिल्कुल डॉक्टर मनोज, लेकिन इसके साथ साथ हम ये जानना चाहेंगे जो ऐसा कि आपने बताया जो बकरा है, लेकिन क्या कुछ उम्र जो होती है वो होती है कि उसके बाद ही उसका चयन आप लोग करते हैं? और एक अगर देखा जाता है कि जिसका बकरे का चयन कर रहे हैं, एक एक एक समय जो है वो निर्धारित होता है कि इतनी उम्र के बाद उसका चयन किया जाएगा?
1: देखिए, ये जो बकरियों में जो उम्र है
0: जी,
1: तो ये उनके आकार पर भी निर्भर करती है। जैसे कि जो बड़े आकार की बकरियां हैं उनमें प्रजनक बकरों को 2 उम्र का होने पर उपयोग में लाना चाहिए, जैसे कि जमुनापारी, सिरोही, झकराना। लेकिन चूंकि ये बर्बरी मध्यम आकार की है, तो जब प्रजनक बकरे की उम्र 1.5 वर्ष हो जाए तब उसे हमें उपयोग में लेना आरंभ करना चाहिए
0: जी।
1: और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक बकरे से एक दिन में 2 या 3 बकरियों को ही गर्भित कराएं। अगर हम एक दिन में ज्यादा बकरियों को गर्भित कराएंगे तो उनके गर्भाधारण करने की संभावना कम रहेगी।
0: बिल्कुल डॉक्टर मनोज, जैसा कि लगातार आप हमें सावधानियां जो हैं वो आपने बताई, लेकिन प्रजनन के समय भी कुछ तरह की जो सावधानियां हैं वो रखनी होगी, क्योंकि रोग की संभावना रहती है अगर बकरा और बकरी संपर्क में आते हैं।
1: देखिए, जो बकरे से जो प्रमुख बीमारी है जो बकरियों में फैलती है, जिसके द्वारा बहुत ज्यादा एबॉर्शन होता है, मिसकैरेज होता है, वो है ब्रुसोलेसिस
0: जी।
1: तो इस बीमारी से बचाव के लिए जरूरी है कि हम प्रतिवर्ष बकरे की स्क्रीनिंग कराएं, उसका जो रक्त है उसको लेके जांच करवाएं, क्योंकि अगर कोई बकरा ब्रुसोलेसिस बीमारी से पीड़ित पाया जाता है तो उसे हमें कदापि प्रजनन में उपयोग में नहीं लाना चाहिए। दूसरी सावधानी हमें यह भी रखनी है कि एक बकरे से एक रेवड़ में केवल उसे 1 से 1.5 वर्ष तक ही उपयोग में लाया जाए, क्योंकि इससे जो बच्चियां पैदा होती हैं वो पुनः जवान हो जाती हैं
0: जी।
1: तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें अंतर प्रजनन से बचाव के लिए इस तरह से मेटिंग प्लान बनाना होगा कि उसकी जो बच्चियां हैं या उसकी जो माँ हैं वो इस बकरे के द्वारा गर्भाधित न हो
0: जी।
1: दूसरा, हमें यह भी सावधानी रखनी होगी कि उस बकरे का जो बच्चा पैदा होता है, नर पैदा होता है, वह भी हम उसी रेवड़ में न इस्तेमाल करें। तो इसके लिए मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूंगा कि वो प्रत्येक 1 से 1.5 वर्ष के बाद अपने नर को बदल दें
0: जी।
1: और जो दूसरा प्रजनक बकरा है वो दूसरे किसी किसान भाई के यहाँ से लेके आएं
0: जी।
1: इसकी सुगमता के लिए वो ये भी कर सकते हैं कि अपना नर, अपना जो प्रजनक बकरा है वो किसी दूसरे को दे दें
0: जी।
1: और दूसरे का जो प्रजनक बकरा है उसे स्वयं इस्तेमाल कर लें, क्योंकि अंतः प्रजनन की दर बहुत ज्यादा होने पर उनकी जो वृद्धि दर है, जो बढ़वार

0: दर है, दूध देने की क्षमता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता है, वो कम हो जाती है।
1: बिल्कुल, इसलिए जरूरी यही कि जो तमाम सावधानियां हैं ये हमारे किसान भाइयों को रखनी होगी जो बकरी पालन कर रहे हैं और जो बकरी पालन करना भी चाहते हैं, लेकिन उन्नत बकरी पालन से जुड़े कुछ और भी पहलू हैं वो भी जानते हैं। आइए हमारे साथ। डॉक्टर मनोज, आपसे हम ये और जानना चाहेंगे, क्योंकि अब बेड़े में हमें यहाँ पर शेड में हम देख पा रहे हैं तमाम जो बकरियां हैं वो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन किस तरीके से यहाँ संस्थान में हमने देखा अलग अलग जो शेड हैं वो बनाई गई हैं, क्या किस वजह से क्या जरूरत पड़ती है अलग अलग शेड्स की?
0: दरअसल ये जो उन्नत बकरी पालन है इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है
1: जी
0: कि जो नर और मादा है उनको 3 माह के बाद अलग अलग रखा जाए
1: जी।
0: दूसरा ये है कि फिर जो है जो 3 से 6 माह की, 6 से 12 माह की या उससे जो अधिक उम्र की जो बकरियां हैं उनको फिर से अलग अलग रखा जाता है
1: जी।
0: जैसे कि कोई बकरी गर्भवती है, दूध देने वाली है, उनको भी फिर अलग अलग रखते हैं।
1: बिल्कुल, और जिस शेड में अभी हमें है, कितनी उम्र की यहाँ पर बकरियां हैं?
0: ये जो इस शेड में जो बकरी हैं ये आप देख रहे हैं ये सभी 6 से 9 माह की हैं
1: जी।
0: तो इस समय क्या है कि इनको एक अलग तरह का दाना भूसा चारा दिया जाता है
1: जी।
0: और जब ये बकरी 10 माह की हो जाएंगी फिर हम इनको गर्मी में आने पर गर्भाधित कराएंगे
1: जी।
0: अगर इनमें से कोई बकरी अभी गर्मी में आती है, स्ट्रेस शो करती है
1: जी,
0: तो हम उसे गर्भाधान के लिए नहीं भेजते हैं
1: जी,
0: क्योंकि ऐसा करने पर बकरी के ब्याने के समय उसका जो बच्चा है वो छोटा पैदा होगा
1: जी,
0: बकरी का स्वास्थ्य भी गिर जाएगा और आगे आने वाले ब्यात में उसका उत्पादन कम हो जाएगा
1: जी।
0: इसलिए हम ये तय करते हैं कि जैसे कि बर्बरी नस्ल है
1: जी,
0: कि इसमें जब तक कि बकरी 10 माह की न हो जाए
1: एक औसत उम्र हम मान सकते हैं,
0: औसत उम्र जो है, और उसका जो वजन है वो भी 18 किलो होना चाहिए
1: जी,
0: उसके बाद ही हम बकरी को गर्भाधित कराते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर मनोज, हम यहाँ देख भी रहे हैं जो बकरियां हैं तमाम वो आहार की आपने बात की थी, चारा प्रबंधन की, किस तरीके से एक विशेष आहार की जरूरत होती है, क्योंकि आपने कहा कि 6 से 9 माह हो चुके हैं इन बकरियों को और उसके बाद 10 माह की जब बकरी हो जाती है तो वो गर्भ धारण कर सकती है, वहां भी एक अलग आहार की आवश्यकता पड़ती है?
0: देखिये बिल्कुल ठीक बात है कि जिस समय खासतौर से जैसे बकरी के बच्चे हैं
1: जी,
0: तो जैसे कि जन्म लेने से 3 माह की उम्र तक उनकी जो बढ़वार दर है वो सबसे ज्यादा होती है
1: जी।
0: जैसे कि बर्बरी नस्ल में 80 से 100 ग्राम वजन प्रतिदिन बढ़ता है, तो छोटे बच्चे होते हैं उस समय तो हम उनको 50 से 100 ग्राम दाना देते हैं
1: जी,
0: लेकिन जब वो 3 से 6 माह या 6 से 12 माह के हो जाते हैं तो उनकी दाने की मात्रा बढ़ती जाती है
1: जी।
0: लेकिन चूंकि 12 महीने की उम्र पे ये बकरियां परिपक्व हो जाती हैं तो इनको केवल मेंटेनेंस राशन दिया जाता है
1: जी।
0: लेकिन इससे पहले जैसे कि 6 से 9 माह की ये है तो इनको जो दाना है वो इनकी बढ़वार के लिए दिया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो जैसे कि बर्बरी नस्ल में हम 6 से 9 माह या 6 से 12 माह की उम्र में इनको 300 ग्राम दाना प्रतिदिन देते हैं, अगर ये बकरी जब 10 से 11 माह की हो जाती है और ये गर्भित हो जाती है तो इनकी एडवांस प्रेगनेंसी स्टेज पे हम उनको 200-250 ग्राम दाना और बढ़ा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो बकरी है
1: जी,
0: ये तकरीबन 8 से 9 माह की है
1: जी,
0: ठीक है ना, और इसका जो वजन है वो तकरीबन 16-18 किलो है।
1: बिल्कुल,
0: अब ये बकरी 1-2 माह के अंदर गर्भधारण कराने के लिए तैयार है
1: जी,
0: और ये उसकी एकदम परफेक्ट एज है, परफेक्ट अवस्था है, इसका वजन निश्चित तौर पर 18 किलो से अधिक होगा
1: जी।
0: हाँ, तो अगर ऐसी बकरी को हम प्रथम बार गर्भाधित कराते हैं तो आगे चल के ये बहुत ज्यादा प्यांत देगी, अच्छा उत्पादन देगी, ज्यादा बच्चे देगी, ज्यादा दूध भी देगी।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई जो वयस्क बकरियां हैं, जैसा कि हमने देखा अलग अलग उम्र की यहाँ पर बकरियां हैं, लेकिन जो नवजात हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी कैसे देखभाल करनी है, हम चाहेंगे उनके पास भी हम चलें, उनके बेड़े में, उनके शेड में, और वहां हम जाने कि कैसे उनकी देखभाल आप कर सकते हैं जी।
2: क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने, जो आपके हित में है उसे जाना आपने, पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार, बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार, हर सवाल हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श में, शुक्रवार शाम 7:30 पर।

0: तो बिल्कुल डॉक्टर सिंह, यहाँ जैसा कि हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं जहाँ पर छोटे बच्चों को रखा जाता है, और खासतौर से यहाँ अगर डॉक्टर सिंह बात की जाए, हरियाली भी हमें नजर आ रही है, कई तरह के जो पेड़ हैं वो लगाए गए हैं, तो ये सिर्फ छाया के लिए है, इनका कुछ अलग महत्व है?
1: देखिए, जो बकरियों के छोटे बच्चे हैं
0: जी,
1: उनका प्रबंधन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सेंसिटिव विषय है,
0: जी
1: क्योंकि बकरियों में अगर छोटे बच्चों की देख रेख अच्छे से न की जाए,
0: जी
1: उनकी सफाई का ध्यान न रखा जाए,
0: जी
1: उन्हें समय पर पानी न पिलाया जाए, तो वो कमजोर हो जाते हैं, फिर उनमें बीमारी भी तरह तरह की हो जाती हैं।
0: जी
1: तो छोटे बच्चे जहाँ पे हों वहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ सफाई बहुत अच्छे से हो,
0: बिल्कुल
1: सफाई बहुत पर्याप्त हो, और उन्हें समय समय पर पीने का पानी और चारा भी मिलता रहे। जैसा कि आपने कहा कि ये जो वृक्ष आपने लगाए हुए हैं ये हरियाली के लिए हैं, ऐसा नहीं है, ये हरियाली के साथ साथ समुचित मात्रा में चारा भी उपलब्ध कराते हैं,
0: जी
1: और जो इन पेड़ों से जो चारा मिलता है वो हाई क्वालिटी का होता है, उच्च गुणवत्ता का होता है, इससे उनकी जो बढ़वार दर है वो बहुत ज्यादा होती है और उनमें बीमारियां भी कम होती हैं।
0: जी बिल्कुल, और खासतौर से क्योंकि हम देख पा रहे हैं जैसे नीम जो है उसकी पत्तियां यहाँ पर फिलहाल जो ये छोटे बच्चे हैं ये खा रहे हैं, और किस तरह की इनके लिए विशेष देखरेख की जरूरत होती है?
1: देखिए, जो छोटे बच्चे हैं वो या बकरियां की
0: जी
1: सभी अवस्थाओं में वो सभी तरह के चारों को खाती हैं।
0: जी
1: यहाँ आप देख रहे हैं कि नीम है, पीपल है, पाखर है, बरगद है, देसी बबूल है, सूबबूल है, मलबेरी है,
0: जी
1: तो बकरियां इन सबको बहुत चाव से खाती हैं। और मैं किसान भाइयों को एक जरूर कहना चाहता हूं
0: बिल्कुल
1: कि जहां कहीं पर उन्होंने अपने बकरी का बाड़ा बनाया हुआ है,
0: जी
1: कृपया आप इस मॉडल को फॉलो करें और वहां पर तरह तरह के वृक्ष लगवाएं, और जब भी चारे की कमी हो उनको चारा खिलाएं।
0: बिल्कुल, तो ये तमाम सावधानी हम कह सकते हैं हमारे जो किसान भाई हैं उनको रखनी होगी, तभी आप देखिए उन्नत बकरी पालन कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हमने बात कही कि जो छोटे बच्चे उनका कैसे आप ख्याल रखेंगे, इससे ना सिर्फ जो पर्यावरण है वो हमारा अच्छा रहेगा, और एक संदेश भी जाता है कि अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आप एक पेड़ के आप कई पेड़ आप जरूर लगाएंगे, क्योंकि आपके जो बकरी पालन है, जो बच्चे हैं उनके आहार की बात है, और ये जरूरी है कि उनको सही आहार मिले, तभी उसके बाद अगर आप सोचते हैं उनको मुनाफा अगर आपको मिल रहा है, क्योंकि रोजगार के अवसर यहाँ पे संभावनाएं जो है वो काफी है, वो तभी सार्थक सिद्ध हो सकती है जब आपको मुनाफा ज्यादा मिलेगा, और मुनाफा तभी होगा जब आप इनकी सेहत का ख्याल रखेंगे। और आज यहां पर हम पहुंचे थे मखदूम में, जैसा कि हमने आपको बताया, डॉक्टर सिंह जो लगातार हमें जानकारी दे रहे थे, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की अगर बात की जाए, यहाँ से लगातार जो किसान हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ से जानकारी लेकर जाते हैं। उसके बाद एक बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर की भी अगर बात की जाए, यहाँ पर हमारे जो किसान हैं वो उन्नत बकरी पालन कर रहे हैं। एक यहाँ पर और भी जो किसान हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं जानकारी लेने के लिए, उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं किस तरीके से वो उन्नत बकरी पालन कर रहे हैं और यहाँ इस संस्थान से कितनी जानकारी उन्हें मिली है जिसका फायदा वो अभी तक उठा चुके हैं।
1: केंद्रीय बकरी अनुसंधान से बकरा मुझे प्राप्त हुआ और मुझे बकरियां भी कुछ प्राप्त हुई और बाहर से कुछ मैंने बकरियां परचेज करी, जिसमें मुझे जो है उनसे प्रोडक्शन हुआ और कम टाइम में, कम समय में मुझे अच्छे जो है उनसे बच्चे और उन्नत नस्ल के बच्चे प्राप्त हुए।
2: हमने संस्थान से प्रशिक्षण लिया था अपना ये अक्टूबर 2014 में, और संस्थान का एक कार्यक्रम स्टार्टअप कार्यक्रम के अंतर्गत हमें कुछ ब्रीडिंग मेल और बकरियां मिली थी, जिससे कि नस्ल सुधार में हमने उनको यूज़ किया है। कुछ बकरियां हमने बाजार से भी ली हैं जो कि इतनी प्योर नहीं थी, और जो संस्थान से बक मिला हुआ था हमें प्योर नस्ल के जानवर, उसकी वजह से हमारे यहाँ अब बहुत सारे जानवर प्योर नस्ल के पैदा हो गए हैं और जिनसे हमें जो है काफ़ी मुनाफा हो रहा है।
3: यहाँ से सही नस्ल से हमें जो है फ़ायदा काफ़ी मिला, अच्छी नस्ल पैदा करने की वजह से बाज़ार में उसका रेट काफ़ी बढ़िया मिला और 10,000 से लेकर 20,000 25,000 तक के हमने बकरे बाज़ार में सेल करे। एक औसतन करीब 18 से 20,000 रुपये हमें हर बकरे के मिल जाते हैं बाज़ार में।

0: केंद्रीय भक्ति अनुसंधान संस्थान की अगर बात की जाए, यहाँ के निदेशक जो हैं मनमोहन सिंह चौहान जी, वो सब हमारे साथ मौजूद हैं। मनमोहन सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खेत खलिहान।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर संस्थान की हम बात करें, किस तरीके से लगातार जो संस्थान है ये काम कर रहा है?
1: देखो, ये हमारा जो है बकरी, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो हमारे यहाँ है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हिंदुस्तान में जितने भी बकरियाँ हैं, जितने भी डिफरेंट ब्रीड्स की हमारे पास जो है जो बकरियाँ हैं, उन पर पहले खोज हो, उन पर हम ये करें कि किस ढंग से अच्छी जो है नस्ल को बढ़ावा दें, और जो नस्ल हमारे पास पैदा हो जाती हैं, जो होती हैं, उसको हम जो ये है कि फार्मर्स तक पहुँचाएँ। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो ये और भी है कि बकरियों में क्या होता है कि हर बकरी हर जगह नहीं हो सकती है, उपलब्धता नहीं होती। तो हमारा ये है कि कोई खास जो ब्रीड है, जो एक एक जगह, जैसे हमारा है कि जहाँ बरसात ज़्यादा होती है वहाँ पर कोई ब्रीड होगी, जहाँ पर बरसात कम होती है वहाँ पर दूसरी ब्रीड होगी, जहाँ पर ऐसी है कि कोई जो है उसका जो टेम्परेचर अलग है वहाँ पर और कोई ब्रीड होगी। तो हमारा ये है कि कौन सी ब्रीड कहाँ पर फिट होगी, और इस ढंग से हम काम कर रहे हैं। हमारे संस्थान में डिफरेंट एरिया पर हमारे यहाँ हो रहा है काम।
0: बिल्कुल डॉक्टर चौहान, जैसा कि आपने बताया जो तमाम नस्लें हैं वो इस संस्थान में है, और इसी की जानकारी जो है वो आप लगातार किसानों को भी देते हैं, लेकिन क्या ये पूरी प्रक्रिया है, कैसे जो किसान है वो नस्लों के बारे में जाने, यहाँ पहुंचे और इसकी जानकारी ले सकते हैं?
1: हमारे यहाँ क्या होता है कि हम हर साल जो है 4 या 5 हम मतलब किसानों के लिए ट्रेनिंग करवाते हैं
0: जी।
1: यहाँ पर किसान आते हैं, हम उनका रख रखाव का ध्यान रखते हैं, 10 से 12 दिन वो हमारे साथ रहते हैं
0: जी।
1: और उनको जो भी हमारे पास जो ब्रीड है, जो हमारे पास जमुनापारी है, बरबरी है
0: जी,
1: या जखाना है, उसके बारे में हम ब्रीड के बारे में उनको डिटेल में नॉलेज देते हैं कि कैसे उनका रख रखाव होता है, कौन कौन सी वैक्सीन उनको होगी, कैसे उनके दवाइयों का वो होता है, ताकि जो है वो सारा सीख कर जाते हैं
0: जी।
1: जब किसान वापस जाते हैं तो उसके बाद में वो अपने यहाँ देखते हुए हमारे यहाँ एक एप्लीकेशन भेजते हैं कि हमें इस ब्रीड का ये बकरी चाहिए या ये बकरा चाहिए, तो हमारे पास एक थोड़ा सा गाइडलाइंस है कि किस हिसाब से हमें उनको देना है, और हम किसानों तक वो अपने यहाँ की जो नस्ल है उनको पहुँचाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसके साथ साथ हम ये ध्यान रखते हैं कि वहाँ पर वो ठीक ढंग से रख रखाव करें, तो उसको डिटेल में हम ये कूद देते हैं कि ताकि आप ये जो आपने जो ब्रीड ले गए हैं इसका रख रखाव कैसे हो सके। अगर उसके उससे हम फोन नंबर ले लेते हैं, उससे फोन पर पूछते हैं कि तुम्हारा ठीक ठाक से हो रहा, चल रहा है कि नहीं चल रहा, कोई दिक्कत है तो हमें बताओ, ताकि हम यहाँ से अपने वैज्ञानिकों
0: समस्या का समाधान हो सके। बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर चौहान, अगर बात की जाए बकरियों की, तो गरीब की गाय कहा जाता है उसको, लेकिन अब इतने फायदे नजर आते हैं इस गाय के भी, क्योंकि प्रसंस्करण जो है वो काफी ज्यादा हम देखते हैं कि चलन में आ गया, और इसका काफी फायदा जो है वो किसानों को होता है, तो क्या प्रसंस्करण की भी यहाँ पर जानकारी दी जाती है?
1: देखो, अगर हम इसकी बात करें गरीब की गाय का, तो जो दूध इसका है, दूध में मुख्य गुण कुछ ऐसे हैं जो गाय और भैंस के दूध में नहीं है
0: जी।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे बायोपेप्टाइड्स हैं जो गाय और भैंस में नहीं होते हैं, और इनका काम क्या होता है ये दूध का, कि अगर हम हमारे मानना है कि अगर इसका दूध को पिया जाए तो उससे क्या होगा कि जो भी उसके जो एक तो हजम आराम से हो जाता है, ये कहा गया है कि ये इसका दूध कहीं ना कहीं आदमी के दूध के बराबर मिलता जुलता है
0: जी।
1: तो इसका मतलब है कि जो विटामिन्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं इसमें इस ढंग से हैं, ताकि वो बच्चे के लिए भी हो या बड़े के लिए भी ढंग से इस्तेमाल हो सके
0: जी।
1: और इसमें एक और है कि इसका जो फैट होता है, फैट का साइज जो है वो छोटा होता है, तो जिसको फैट को हजम करने की दिक्कत होती है उसका आराम से हजम हो जाता है
0: जी।
1: इसके अलावा हमारे इसके दूध में ये पाया गया है कि कुछ ऐसे वो होते हैं कि जो हमारा रोगी के जो रोग के वो होती है, जिसको इम्यूनिटी होती है, ये इम्यूनिटी को कहते हैं कि इनहांस करता है, बढ़ाता है।
0: बिल्कुल, उसको बढ़ा सकता है।
1: हाँ, बढ़ा सकता है। तो इसकी वजह से हमारा जो है इस दूध को ये माना गया है कि ये अच्छा है।
0: साथ ही हम चाहेंगे हमारे जो दर्शक यानी हमारे जो किसान है उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो उन्नत बकरी पालन की ओर?
1: देखो, अब सबसे पहले जो भी होता था बकरी पालन, उसमें क्या होता था कि जो बकरी ले गए वो अपने हिसाब से पालते रहते थे। अब हम ये कहते हैं कि वैज्ञानिक ढंग से इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे यहाँ से जो शिक्षा है हम दें, हम कई बार ये है कि अपने पंपलेट हैं हमारे यहाँ से छोटी छोटी किताबें हैं जो हिंदी में हमने की हैं, संस्थान से हम डिफरेंट जगह पर दूसरे पार्ट में भेजते हैं। हमारे यहाँ एक ऑल इंडिया जो है कुछ वो है प्रोग्राम है, जिसमें हम की सारे जगह जहाँ जहाँ पर जो भी फार्मर्स हैं, जो भी वहाँ पर है केवी के हैं, किसी जो है
0: विज्ञान केंद्र है,
1: वहां तक हम पहुंचाते हैं, और ताकि वहां पर फार्मर्स आकर वैज्ञानिक जो ढंग से अगर इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको वो करते हैं, तो इससे एक तो ये है कि कम से कम उसमें कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट लें, और दूसरा ये है कि उनको नुकसान ना हो।
0: बिल्कुल, देखिए जो किसान है वो अच्छे से और ज्यादा अच्छे से ना सिर्फ एक आजीविका के रूप में बकरी पालन कर सकते हैं बल्कि पूरे परिवार का उससे भरण पोषण भी कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी, हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू।
0: साथ ही हमारे दर्शक जो है वो और अच्छे तरीके से अब समझ पाए होंगे कि अगर वो उन्नत तरीके से बकरी पालन करते हैं और उसके साथ साथ देखिए जो वैज्ञानिक पहलू हैं उनका भी आपको ख्याल रखना होगा, तभी एक उन्नत ढंग से आप बकरी पालन कर सकते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए कार्यक्रम में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अर्चना कुमारी बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के बेनीपट्टी सेंटर से हूँ। गीता मैम और रीड इंडिया, मैं आपके आभार हमेशा रहूंगी क्योंकि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मैं फर्स्ट टाइम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मुझे थोड़ी सी नर्वस भी हो रही है। और मैंने अपनी लाइब्रेरी में मैम एक ही बात शेयर करती हूँ कि ये फाइनेंशियल इरा है तो सबको पैसे कमाने की चिंता लगी हुई है, लेकिन जो भी आ रहे हैं, क्योंकि यदि हमारे पास एक रुपए है और मैं आपको दे देती हूँ तो आपके पास दो रुपए जरूर हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन नॉलेज यदि हम शेयर करते हैं तो मेरे पास भी एक है और आपके पास भी एक है, तो फिर जब हम शेयर करेंगे तो मेरे पास भी दो हो जाएंगे और आपके पास भी दो हो जाएंगे। तो इस तरह बच्चे हमारी लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं और अपने नॉलेज को शेयर भी करते हैं। और मैं आभारी रहूंगी हमेशा क्योंकि सर सब अपने स्टोरी के, सब अपने लाइफ के नायिकाएं हैं, सब स्ट्रगल करती हैं अपनी लाइफ में। हमारी भी गवर्नमेंट जॉब जब छूट गई थी तो मैम ने मुझे पनाह दी, इसलिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी आजीवन। और मैम मैं तो इतनी लायक नहीं हूँ कि जी से स्टार्ट करूँ, लेकिन मैं आपके ए को बरकरार रखूंगी जय तक। थैंक यू मैम।

0: विज्ञान वाणी के विज्ञान वार्ता प्रसारण में आपका स्वागत है।
1: विटामिन ऐसी चीज है जिसे अगर खाया नहीं जाए तो हम बीमार पड़ सकते हैं। विटामिनों की ये परिभाषा नोबल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट स्टेंस ग्योर्गी ने दी थी। उन्होंने विटामिन सी का पता लगाया था और जीवित कोशिकाओं में इसकी भूमिका की खोज की। विटामिन मानव शरीर के सामान्य विकास और कार्य संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनमें से कुछ विटामिन तो मेटाबॉलिक क्रियाओं यानी कि शरीर की चयापचय क्रियाओं में को एंजाइम की तरह से काम करते हैं। को एंजाइम एक ऐसे गैर प्रोटीन पदार्थ हैं जो कुछ एंजाइम के साथ मिलकर जटिल संरचनाएं बनाते हैं। एंजाइमों के सुचारू रूप से कार्य संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। विटामिन कोशिकाओं की झिल्ली के निर्माण और रखरखाव में मदद करते हैं। कैल्शियम और फॉस्फोरस के अवशोषण और चयापचय में भी ये सहायक है। जीवित कोशिकाओं में कई जरूरी प्रक्रियाओं में इनकी भूमिका रहती है। जीव जंतुओं को अधिकतर विटामिन बाहर से प्राप्त होते हैं, ये उनके शरीर में नहीं बनते। सिर्फ विटामिन बी और विटामिन डी के निर्माण में जीवों की कुछ भूमिका रहती है। विटामिन डी पाचन प्रणाली में मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और विटामिन डी धूप में त्वचा द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ खास तरह के भोजन की आवश्यकता के बारे में विटामिनों की खोज से काफी पहले से पता था। 1970 के दशक में स्कॉटलैंड के एक डॉक्टर जेम्स लिंड ने पता लगाया कि स्कर्वी नाम की बीमारी नींबू का रस पीने से दूर हो जाती है। एक डच चिकित्सक क्रिश्चियन इजिकमैन ने 1890 में बेरी बेरी बीमारी और कुछ खाद्य पदार्थों के बीच संबंध स्थापित किया। 1906 में ब्रिटेन के जैव रसायनज्ञ सर फ्रेडरिक गार्लैंड हॉपकिंस ने पता लगाया कि जब जब चूहों को एक खास तरह की खुराक दी जाती है तो उन्हें जीवित रखने के लिए सहायक तत्वों की भी जरूरत पड़ती है। पोलैंड के रसायन शास्त्री कैसिमर फंक ने 1912 में सबसे पहले बेरी बेरी बीमारी की रोकथाम के तरीके का पता लगाया। उन्होंने इसे विटामिन यानी विट प्लस अमीन नाम यानी अमीन नेसेसरी फॉर लाइफ दिया। लैटिन भाषा में जीवन को वाइटा कहा जाता है। आज भलीभांति इस बात का पता लग चुका है कि बेरी बेरी बीमारी की रोकथाम करने वाला तत्व और कुछ नहीं बल्कि विटामिन B1 ये थायमिन है। थायमिन एक रासायनिक यौगिक है जिसमें अमाइनो समूह मौजूद रहता है। शीघ्र ही सहायक तत्व के स्थान पर विटामिन शब्द का उपयोग किया जाने लगा। बाद में ये भी पता चला कि विभिन्न विटामिनों के अलग अलग रासायनिक गुण होते हैं। कुछ में तो अमीनो समूह जरा भी इस्तेमाल नहीं होता, मगर फंक द्वारा इजाद किया गया विटामिन शब्द इस्तेमाल होता रहा। सिर्फ विटामिन की अंग्रेजी स्पेलिंग में से आखिरी अक्षर मा हटा दिया गया। तरह तरह के भोजन में कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं। विटामिनों को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहले वर्ग में वे विटामिन आते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी और विटामिन बी। दूसरे वर्ग में वसा में घुलने वाले विटामिन जैसे कि ए डी ई और के शामिल हैं। विटामिन ए या रेटिनल हमारी आंखों के दृश्य रंगों का आवश्यक घटक है। वसा में घुल सकने वाला ये विटामिन बीटा कैरोटीन नाम के पदार्थ से बनाया जाता है। इस विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं मछली का तेल, कलेजे का मांस, दूध और इससे बनने वाले पदार्थ, फल तथा सब्जियां आदि। बीटा कैरोटीन जिससे कि विटामिन ए बनाया जाता है हरी पत्तेदार सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इस विटामिन की कमी से मुंह तथा श्वास नलिका की झिल्ली में सूखापन आ जाता है। इसके अलावा अंधापन, शरीर के विकास में असामान्यता और संक्रमण जैसी बीमारियां भी इसकी कमी से हो सकती हैं। विटामिन ए से त्वचा तथा श्लेष्मा बनने वाले ऊतकों का निर्माण भी होता है। विटामिन बी पानी में घुलनशील कई विटामिनों का समूह है। इसके अंतर्गत विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लोबिन, विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन, विटामिन B12 साइनाकोल कोबेलामिन, नियासिन, निकोटिनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, विटामिन एच और फॉलिक एसिड आते हैं। विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थों के पाचन में सहायक होता है। इस विटामिन के प्रमुख स्रोतों में अनाज, फलियों के अंतर्गत आने वाली दालें, मटर और मांस शामिल हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो सकता है। इस बीमारी से शरीर की परिधीय तंत्रिकाओं पर असर पड़ता है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द होने लगता है। इसी तरह की एक अन्य बीमारी जिसे वेट बेरी कहा जाता है, भोजन में प्रोटीन और विटामिन बी दोनों की कमी से शरीर के अंगों में तरल पदार्थ का जमाव बढ़ जाता है। इससे अंगों में सूजन आ जाती है और बाद में दिल की बीमारी भी हो सकती है। विटामिन B2 कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के पाचन में सहायक होता है। ये खमीर, जिगर के मांस, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियों और मांस में पाया जाता है। इसकी कमी से शरीर की बढ़वार रुक जाती है। विटामिन B6 खमीर, जिगर, दूध, फलियों के अंतर्गत आने वाली दालों और अनाज में पाया जाता है। अमीनो एसिड के चयापचय में इस विटामिन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हालांकि इसकी कमी से कोई खास बीमारी होने का खतरा नहीं पाया जाता, मगर आहार में इसकी मात्रा न होने से केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली में गड़बड़ी तथा त्वचा संबंधी सामान्य विकार पैदा हो सकते हैं। विटामिन B12 इसका निर्माण आम तौर पर आंतों में मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। कलेजे के कच्चे मांस में ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B12 की कमी से एक तरह की खून की कमी पैदा हो जाती है। पर्निशियस एनीमिया नाम की इस बीमारी में लाल रक्त कणिकाओं का विकास धीमा पड़ जाता है और मेरुदंड में विकार उत्पन्न होने की आशंका रहती है। पेंटोथेनिक एसिड कोएंजाइम ए का हिस्सा है, जो शरीर में अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं में काम आता है। यूनानी भाषा में पेंटोथिन का नाम है, रिपीट, यूनानी भाषा में पेंटोथिन का मतलब है चारों ओर से। इसके प्रमुख स्रोतों में जिगर, खमीर, अंडे, मांस, डेयरी उत्पाद, शीरा, फूलगोभी और फल आदि शामिल हैं। अगर जानवरों को पेंटोथेनिक एसिड से रहित खाद्य पदार्थ खिलाए जाते हैं तो उनकी बढ़वार रुक जाती है, उनके बालों का रंग उड़ने लगता है और उनमें त्वचा संबंधी विकार भी पैदा हो जाते हैं। बायोटिन, विटामिन एच खाद्य पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और आंतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया में भी इसका निर्माण होता है। फैटी एसिड्स के पाचन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विटामिन एच को एंटी एज फैक्टर के रूप में भी जाना जाता है। फॉलिक एसिड पत्तेदार सब्जियों, खमीर, जिगर, गुर्दे और ताजे फलों में पाया जाता है। इसे फॉलिक एसिड नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। लैटिन भाषा में पत्तेदार सब्जी को फोलियम कहा जाता है। इस विटामिन की कमी से अस्थि मज्जा में विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसे परिपक्व रक्त कोशिकाएं नहीं बन पाती। पर्निशियस एनीमिया नाम की बीमारी में रोगी को फॉलिक एसिड और विटामिन B12 दिए जाते हैं। नाइसिन का इस्तेमाल पेलाग्रा नाम की रिपीट नाइसिन का इस्तेमाल पेलाग्रा नाम की बीमारी के उपचार में किया जाता है। इस बीमारी में अमाशय और आंत संबंधी विकार पैदा हो जाते हैं तथा खाल फटने व मानसिक गड़बड़ी के लक्षण भी दिखाई देते हैं। विटामिन सी की आवश्यकता कई शारीरिक प्रक्रियाओं में पड़ती है, खास तौर पर स्वस्थ योजक ऊतकों के लिए ये बेहद जरूरी है। विटामिन सी सब्जियों और ताजे फलों, विशेष रूप से नींबू प्रजाति के फलों में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। इस बीमारी में कमजोरी, जोड़ों में दर्द आदि की शिकायत हो जाती है और बाद में मसूड़ों तथा अन्य अंगों से रक्तस्राव आरंभ हो जाता है। विटामिन डी स्टेरॉल्स नाम के अनेक मिले जुले यौगिकों के समूह का नाम है, मगर मुख्य घटक हैं कोलिकैल्सिफेरॉल और एर्गोकैल्सिफेरॉल। विटामिन डी कैल्शियम और हड्डियों का निर्माण करने वाले खनिजों को जमा करने के काम आता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। बच्चों को होने वाली इस बीमारी का असर हड्डियों पर पड़ता है। विटामिन डी भोजन में तो मौजूद रहता ही है, धूप में हमारी त्वचा भी इसका निर्माण करती है। विटामिन ई एक तरह के अनेक यौगिकों के समूह का नाम है। इन्हें टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। ये यौगिक जैव एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में भी काम करते हैं, यानी ये फैटी एसिड्स में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकते हैं। इस तरह ये विटामिन फैटी एसिड्स को परऑक्साइड्स और रेडिकल से बचाता है। विटामिन ई चोकर वाले आटे, गेहूं के अंकुर, जिगर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। टोकोफेरॉल्स का व्यावसायिक इस्तेमाल वसा, खास तौर पर वनस्पति तेलों में बनाने में भी किया जाता है। विटामिन के पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है। आंतों में कुछ लाभप्रद बैक्टीरिया भी इसका निर्माण करते हैं। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है और इसकी कमी से खून का थक्का आसानी से नहीं जम पाता। विटामिन के अंतर्गत नैप्थेक्विनोन यौगिकों का एक समूह भी आता है। रक्त को जमाने में काम आने वाले रसायनों के संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। विटामिनों की आवश्यकता बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पड़ती है। सामान्य संतुलित भोजन में आदमी की जरूरत के तमाम विटामिन मौजूद रहते हैं। दुर्भाग्य से बहुत से लोग संतुलित भोजन नहीं खाते, जबकि बहुत से अन्य लोग संतुलित भोजन खाने की स्थिति में नहीं होते।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: माई नेम इज़ नौशाबा अंसारी, मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन 10th है और मैंने हॉस्पिटल में जॉब की है। उसके बाद मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई थी, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई थी। फिर मैंने जॉब की 2 साल आगरा में ही हॉस्पिटल में। उसके बाद मेरी शादी हो गई थी, मेरा 1.5 साल का बेटा है। उसके बाद मुझे रीड इंडिया के बारे में पता चला, तो यहाँ पर मैंने टीजी का एंड एनटीटी का कोर्स किया, कर रही हूँ मैं यहाँ से। हाँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ करके, मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, अपना फ्यूचर बना सकती हूँ, अपने बेटे का भी फ्यूचर बना सकती हूँ। मेरे इन लॉज भी एग्री हैं, मेरे हस्बैंड भी एग्री हैं यहाँ के लिए। यहाँ पर अभी तक भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है एनजीओ के सिवा, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर और भी खुलने चाहिए ऐसे, जो उससे सभी लेडीज़ को, लड़कियों को बाहर निकलने का मौका मिले, जिनके फादर मदर निकलने नहीं देते घर से। यहाँ अच्छा लगता है, टीचर्स भी अच्छे हैं यहाँ के सारे।
2: हेलो, मेरा नाम दीपा है, मेरी उम्र 23 साल है और मैं मैरिड हूँ। मेरा एक बेटा है और मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मैं 12th तक की पढ़ाई की है, उसके बाद मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर के फॉर्म भी भरे थे, पर मैं 6 मंथ का ही कोर्स कर पाई कि बीच में मेरी शादी आ गई, जिसके कारण मैं आगे की पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाई। शादी के 1.5 साल बाद मेरा बेटा हुआ। जैसे ही बेटे होने के बाद तो जैसे मैं डिप्रेशन में रहने लगी, उसके बाद मुझे रीड इंडिया के बारे में पता चला, तो मैंने अपने इन लॉज को कन्वेंस करने की कोशिश की, पर राजी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन काफ़ी समझाने के बाद उन्होंने मुझे परमिशन दे दी, उसके बाद मुझे अपने हस्बैंड को मनाने में भी काफ़ी कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि मेरा बेटा अभी 1.5 साल का ही हुआ था। लेकिन धीरे धीरे वो भी मान गए। उसके बाद मैं यहाँ आई तो मैंने एनटीटी का कोर्स किया, उसके साथ साथ ही मुझे वहाँ पे सर्वे करने आए, तो मुझे यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स के बारे में भी पता चला। फिर मैंने यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स में भी एडमिशन ले लिया, कंप्यूटर का कोर्स भी किया, उससे मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा। उसके रीड इंडिया आकर मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा, मुझे काफ़ी कम महसूस होता था और मैं अपने आप को काफ़ी आज़ाद महसूस करती थी। मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था। मैं शादी के बाद और बच्चों के बाद काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी, उसमें भी मुझे काफ़ी ये लगा कि मेरा डिप्रेशन दूर हो रहा है, खुल के सांस ले पा रही थी मैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सारे काम अपने आप से खुद कर सकती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सकती हूँ, मैं अपने आप को अच्छा फ्यूचर दे सकती हूँ, मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मुझे कंप्यूटर सीखने के बाद तो मुझे काफ़ी कुछ ऐसा लगता है कि हाँ भाई, मैं कुछ कर रही हूँ, मेरे काफ़ी काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग या फिर बिल पे करना, टिकट करना और भी काफ़ी बैंक में के काम सभी घर पे हो जाते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है खुद से अपना काम करके, या फिर भाई पहले बहुत बहुत देर तक धूप में लाइन में जाना पड़ता था, अब मैं घर बैठे ही अपना सब कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू रीड इंडिया।
3: मेरा नाम रिया है, मैं 10th में स्टडी करती हूँ और मेरी क्लास बीच में अभी कुछ दिनों से बंद हो गई थी, क्लास आना बंद हो गया था मेरा, और मेरे घर वाले एग्री नहीं थे, लेकिन मैम ने कॉल करके समझाया, फिर मेरे घर वाले एग्री हुए, मेरे को भेजा। मैम भी बहुत अच्छी है यहाँ की, और जो भी कोर्स आता है, मैं पहले टीचर ट्रेनिंग भी कर रही थी, फिर उसके बाद अब मैंने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया है। ये महसूस किया मैंने कि हाँ, जो मैं चाहती हूँ फ्यूचर में बनना, अपने करियर में कुछ करना, उससे ये हुआ है कि हाँ, मैं बिल्कुल, मेरे को हो गया है, घर वालों का सपोर्ट हो गया है, टीचर्स ने समझाया था, कॉल की थी कि हाँ, ये कर सकती है कुछ।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: റീഡ് ഇന്ത്യ മാനെ റൂറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഗ്രാമീൺ ശിക്ഷ എവം വികാസ് ഹമാരാ കാം തോ ലൈബ്രേരീസ് ബനാന ഹൈ ഓർ ആജ് കേ സമയ മേ ജോ ചർച്ച ഹോ രഹി ഹൈ ലൈബ്രേരീസ് ഖാലി കിതാബ് പഢ്നേ കേ ലിയേ നഹീ ഹൈ ലൈബ്രേരീസ് ഏക് ഐസി ജഗഹ ഹൈ ജഹാൻ ഹം ബഹുത് കുഛ് അപ്നേ ലിയേ ഭി കർ സക്തേ ഹൈ ഓർ സമുദായ കേ ലിയേ ഭി കർ സക്തേ ഹൈ മാനേ പഢേ തോ ഹം ഹം അപ്നേ ബച്ചോ കോ ഭി പഢായേ ഹം ബഡോ കോ ഭി പഢായേ ഹം ഛോട്ടേ ബച്ചോ കേ സാഥ് ഭി ആക്ടിവിറ്റീസ് കരേ കി കിതാബ് ക്യാ ചീസ് ഹൈ ഓർ കിതാബ് ഉൻകേ ജീവൻ മേ ക്യാ മഹത്വ രഖതി ഹൈ പർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ജർണി ഇസ് സമയ കേ സാഥ് സാഥ് ഹംനേ യേ സോചാ കി ഹമേ മഹിലാഓ കേ ലിയേ ഭി കുഛ കാര്യക്രമ കർനേ ചാഹിയേ അഗർ മഹില അപ്നേ ആപ് കോ നിഖാർ സക്തി ഹൈ അപ്നേ ആപ് കോ സക്ഷം ബനാ സക്തി ഹൈ और जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे ले सकती है कि अपने बच्चों का विकास कैसे करना है वो भी रीड इंडिया अपने कम्युनिटी लाइब्रेरीज और रिसोर्स सेंटर्स में करती है। हमने औरतों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए, जैसे सिलाई सिखाना, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देना और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो हम अपने सेंटर्स में करते हैं, पर उसका जो आउटकम है जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके, अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं, ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं, अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं। और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े बीबीए और एमबीए की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीड इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो बीए कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाके अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।
1: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों वह महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
2: हेलो, मेरा नाम नीलम है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं घर में रहती हूँ। मुझे यहाँ पे एक बार रीड इंडिया वाले हमारे उधर सर्वे करने आए थे, उनके थ्रू मुझे रीड इंडिया के बारे में पता लगा, फिर मैं इधर आने लग गई, मैं रीड इंडिया से जुड़ गई। यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ से पार्लर भी सीखा है और कंप्यूटर भी। इस टैग के कोर्स में मैंने आईटी बनाना और किसी की लोकेशन सेंड करना, और पहले मैं घंटों उसकी लाइन में, बैंक की लाइन में खड़ी रहती थी, बट जब से फ़ोन, मतलब इसकी नॉलेज मुझे हुई है कंप्यूटर की, तब से मैं अपने फ़ोन में ये डाउनलोड करके कहीं भी पैसे सेंड कर सकती हूँ। पैसे भेज सकती हूँ और उससे मतलब कैब करके मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। अब मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। और सबसे बड़ी बात जो रीट इंडिया से जुड़ने के बाद मेरे साथ हुई है वो ये कि मैं घर में रह के डिप्रेशन में रहने लगी थी, अब मैं फ्री माइंड हो गई हूँ, मैं मतलब आज़ाद होकर सोच सकती हूँ और थोड़ा मेरा दिमाग भी मतलब सही रहने लग गया है। पहले मैं बहुत परेशान रहती थी घर में रह के, मैं बाहर भी कहीं नहीं जाती थी और घर में रह के यही रहने लग गया था, बस डिप्रेशन नहीं रहने लग गया था। अब यहाँ आके मैं बिल्कुल ठीक रहने लग गई हूँ। हाँ, मैं हाउसवाइफ के लिए ये कहना चाहूँगी कि आप लोग बाहर आइए, आपको नहीं सीखना नहीं है वो ठीक है, बट आप आइए, सीखने के बहाने से ही आइए ताकि आप मतलब मेंटली तौर पर सही रह सकें और आपको एक दूसरे से बात करके कुछ नया पता लगे। मतलब किसी चीज़ की नॉलेज ना हो तो कुछ अच्छा ही पता लगे अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, उनकी परवरिश के बारे में, बहुत कुछ आप यहाँ आके जान सकते हैं। थैंक यू रेड इंडिया।
3: हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लेंसी एंड आई पास 10th क्लास। देन आई थिंक टू जॉइन रीड इंडिया एकेडमी टू इम्प्रूव माय कंडीशन। मैंने एकेडमी ज्वाइन की रीड इंडिया और उसमें हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ TEG, टेक्नोलॉजी एम्पावरिंग गर्ल्स। ये एक कोर्स है जो वुमेन और गर्ल्स के लिए है। ये वुमेन और गर्ल्स की बैड कंडीशन को इम्प्रूव करता है। जैसे पहले घरों में महिलाएं निकलती नहीं थी और कोई निकलने नहीं देता था, भाई और उनके पिता। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज ये प्रोग्राम चला है तो इसके लिए सब यहाँ पे वुमेन और गर्ल्स आती हैं, कंप्यूटर कोर्स करती हैं और सिलाई करती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती हैं जिनसे वो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं और आगे भी ये प्रोग्राम चल रहा है। मैंने एक कंप्यूटर कोर्स किया है 21 डेज का भी और मैं बेसिक कंप्यूटर भी कर रही हूँ। और मैंने इंटरनेट के थ्रू मेलिंग सीखी है, वेबसाइट से लिंक बनाना सीखा है और मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी है। पहले मतलब मुझे कुछ नहीं करना आता था, मुझे किस सबकी ज़रूरत होती थी, लेकिन आज कल मैं खुद कर रही हूँ ये सब और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती। बस मैं बहुत इंडिपेंडेंट फील करती हूँ। थैंक यू रीड इंडिया एकेडमी।
4: गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ तनु तनवर। आई पास 10th क्लास एंड आई जॉइन रीड इंडिया एकेडमी इन शाहबाद मोहम्मदपुर। दिस इज़ ओनली वन एकेडमी हु टीच अस कंप्यूटर। दिस एकेडमी हेल्प्स टू बी अ वुमेन इंडिपेंडेंट। रीड इंडिया स्टार्ट्स टैग प्रोग्राम फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स ओनली टू इम्प्रूव द बैड कंडीशन फॉर वुमेन्स and it helps us in form filling and also we helps our parents, then we also reserve tickets. Thank you.
5: I'm Shweta. I study in IGNOU University or I done NPTT course for Polytechnic Institute Rajouri Garden. और हमारे जो यहाँ पे शाहबाद में ये है ना NGO, मैं यहाँ से क्लासेस ले रही हूँ टैग की, तो इससे मेरे को काफ़ी चेंजेस आए हैं और थोड़ा सा लगा के भाई यहाँ पे आके हाँ बाकी को भी करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और काफ़ी हेल्प है, मतलब टीचर्स अच्छे से समझाते हैं, कोई दबाव नहीं, किसी का कोई प्रेशर नहीं है। और दूसरा फिर इससे ये है कि नॉलेज बढ़ती है यहाँ पे आके एक दूसरे को, मतलब हम जाके जैसे हम आ रहे हैं किसी को बता रहे हैं डिटेल दे रहे हैं तो इससे काफ़ी चेंजेस आते हैं, मतलब किसी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक तो पास में है और ऊपर से यहाँ पे कोई ऐसे प्रेशर वाली बात नहीं, ऐसे कोई मतलब फोर्स कर रहा है किसी चीज़ के लिए, कोई बता नहीं रहा, इसमें ये होता है। और मतलब होना चाहिए कि हर घर से कोई एक भी आए ना, तो ये नहीं मतलब कि सिर्फ घर में या एक फैमिली में, इसमें पूरे एरिया में चेंजेस आ सकते हैं अगर हम लाना चाहे तो। और उसके बाद जैसे होती है ना फैमिली टाइम से पहले मतलब लड़कियों को मतलब घर बिठा लेते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल कंडीशन लगा लो, कुछ भी हो, जिससे लड़कियाँ घर बैठ जाती हैं, पढ़ाई कर नहीं पाती, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है इससे, इस लाइन में आने से, क्योंकि इनमें मतलब इतना कोई ज़्यादा हाई फाई फीस वगैरह भी नहीं लगती कि जिससे भाई कोई अफोर्ड नहीं कर पाए। इसमें नॉर्मली होता है फाइनली, मतलब ये कि जैसे नॉर्मली फैमिली होती है वो भी कर सकती है और जो मतलब बिल्कुल लो होती हैं वो भी कर सकती हैं। और जैसे मतलब भाई होती है कुछ फैमिली जो लड़कियों को सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ लड़कों को करती हैं कि भाई लड़के ही आगे बढ़ सकते हैं, लड़कियां नहीं बढ़ सकती, और शादी वादी कर देते हैं, उनकी पढ़ाना नहीं चाहते उनका आगे, तो उनके लिए भी मतलब है कि भाई वो कर सकती हैं आके, तो उनको लगेगा, खुद ही लगेगा, मतलब चेंजेस आ जाते हैं। और इससे मतलब इतना कुछ सिखाते हैं हमें यहाँ पे, ये कि मतलब हमें खुद लगता है कि हम अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग वर्क में, और हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना या ऑनलाइन मतलब कुछ भी वर्क है वो हम कर सकते हैं। तो इससे हमें हमारी लाइफ में भी चेंजेस आते हैं और घर वालों के में भी आते हैं, और इससे ये आगे हमारा जो फ्यूचर होता है ना वो सेव हो जाता है, क्योंकि अगर हम आज अपने पैरों पर खड़े तो तभी तो अपने बच्चों को हम बना सकते हैं मतलब इंडिपेंडेंट। अगर बच्चों को कुछ सिखाना तो उसके लिए पहले खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, इससे बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले हमें कुछ जानकारी होगी, हमें कुछ डिटेल्स होंगी, तभी हम किसी के सामने मतलब रख सकते हैं। एक शादी करना और मतलब लाइफ को घर में दबा के रखना, ख़त्म कर देना, सब कुछ नहीं होता आज के टाइम में। मतलब जितना बढ़ो आगे उतना कम है, और हर किसी को बढ़ना चाहिए, किसी एक को नहीं, हर किसी को, जहाँ से जैसी हेल्प मिलती है, जो मिलती है वो करनी चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है कि सिर्फ यही कर सकता है, यही बोल सकता है, मैं नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। सबको है मतलब एक फ्रीडम होती है अपने आप में, लाइफ अपनी है, किसी का प्रेशर नहीं होता कोई के, मतलब हम किसी के प्रेशर में आके अपनी लाइफ ख़राब कर दें, मतलब बोल ले नहीं, कुछ नहीं करें, आगे नहीं बढ़े। एक दो बार मतलब होता है भाई, डर होता है एक, लेकिन बार बार निकलने से ना सब डर खत्म होने लग जाता है धीरे धीरे, क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है ख़त्म करने से ख़त्म होएगा, ऐसे डरने से तो डर बढ़ता ही है, कोई मतलब दूसरा उसको ख़त्म नहीं कर सकता आके। अब हम हैं जैसे कुछ होती हैं लड़कियाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की को फ्रीडम होता है, फैमिली का सपोर्ट होता है, जैसे कि मैं हूँ, मेरे सिर्फ पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया है, बाकी फैमिली वाले नहीं चाहते थे कि मतलब मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि सबको ये था ट्वेल्थ कर लिया, पास आउट हो गया, स्कूल शादी कर दो, ये वो। लेकिन मेरे पेरेंट्स शुरू से वर्किंग है, तो वो चाहते हैं, उनको पता है पैसे की कीमत क्या है, तो वो चाहते हैं मतलब तो बच्चे कुछ अच्छा करें, ताकि उनको इस लाइन में ना जाना पड़े और वो अपने पैरों पर खड़े हो, मतलब अच्छे से अच्छा काम करें और दुनिया में मतलब उनकी एक अलग पहचान हो। तो इसलिए उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया और आज मैं यहाँ हूँ। और एक शादी की तो एक लास्ट में एक वो होता है कि भाई अब तो करनी है, वो तो एक लास्ट मोमेंट होता है कि अब तो भाई स्टेप लेना ही है। उससे पहले ना सिर्फ स्टडी के बारे में सोचना चाहिए, कैसे लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाया जाए। ज़रूरी नहीं होता कि मतलब घर वालों ने बोल दिया आप सुन के बैठ गए, चलो भाई कोई नहीं, उनको समझाना चाहिए अपने तरीके से, ऐसे भी नहीं कि लड़ लो, ये कर दो वो कर दो, नहीं, प्यार से समझाओ, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस बताओ, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या दुनिया में क्या हो रहा है, कितनी इंपॉर्टेंस है। और वैसे भी आजकल तो हर कोई लड़का भी अच्छा नहीं मिलता, हर कोई फैमिली भी अच्छी नहीं मिलती, वो तो किस्मत की बात है, सुख दुख तो किस्मत का होता है। तो इसलिए हमें जितना हो सके ना अपने पैरों पर खड़ा होकर इंडिपेंडेंट होकर मतलब सोचना चाहिए, लास्ट एक मोमेंट होता है जो स्टेप लेना है, उससे पहले अपनी लाइफ बनाओ, जो करना है वो करो, बाकी करो सिर्फ ऐसा ही कि घर वालों को भी अच्छा लगे और खुद का भी एक स्टैंड और दुनिया में अपनी पहचान हो।

0: तीजगढ़। दौसा जिला में बसा हुआ एक खूबसूरत गांव, NH-11 से 10 किलोमीटर दूर। इसकी आबादी लगभग 15,000 है।
1: गीजगढ़ अपनी खूबसूरती के लिए आसपास के गांव में बहुत प्रसिद्ध है। गीजगढ़ की अपनी एक छटा है, इसमें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं।
0: गीजगढ़ जो कि खूबसूरत और खुशहाल गांव है, लेकिन रोजगार की समस्या के सामने गांव के लोगों ने यहां से पलायन करना स्टार्ट कर दिया है।
1: गीजगढ़ अपनी खूबसूरती और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। लोगों के अनुसार राजा गिद्ध यहाँ के महाराज थे, उन्हीं राजा के नाम पर इस गांव का नाम गीजगढ़ हुआ है। यहाँ का किला बहुत ही प्रसिद्ध है।
0: आइए जानते हैं कुछ गीजगढ़ के बारे में। सबसे पहले हम चलते हैं गीजगढ़ के किले की ओर। यहाँ 280 सीढ़ियां चढ़ने पर हम पहुँचते हैं राम झरोके पर। आगे चलकर हम किले के अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों, यह किला सुदृढ़ता और सुंदरता के लिए विख्यात है।
1: किले के अंदर चलते हैं। ये हैं किले की बावड़ियाँ। ये प्राचीन समय में पेयजल का स्रोत रही है। और ये किले के अंदर आप देख रहे हैं शिव मंदिर, ये है रामदेवरा, यहाँ जगदम्बा माता का स्थान है। यहाँ ऊपर इस जगह पर चलने पर पूरे गांव को एक साथ आप देख सकते हैं।
0: ये है किले का दूसरा दरवाजा। यहाँ से निकलकर हम किले के पिछले हिस्से पर पहुँचते हैं। यह तोप प्राचीनता और वीरता की गवाही दे रही है। ये है गीजगढ़ बस स्टैंड। यहाँ पर हम चल रहे हैं बाकली के बालाजी की तरफ। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध है। यहाँ पर दशहरे पर हजारों की संख्या पर भीड़ जुड़ती है।
1: यह है यहाँ का शीतला माता मंदिर। यहाँ पर शीतलाष्टमी पर बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है और होली के अवसर पर होलिका दहन के उत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है।
0: आगे आपको ले चलते हैं यहाँ के प्रसिद्ध बावड़ी के बालाजी के मंदिर। इस मंदिर का नाम बावड़ी वाला बालाजी होने का कारण है मंदिर के पीछे बसी हुई बावड़ी। सन 1985 तक इसमें खूब सारा पानी भरा हुआ था। अब लगभग 1995 से यह बावड़ी सूख रही है।
1: इसी क्रम में अब हम आपको लेकर चलते हैं बूटेश्वर महादेव मंदिर। आप यहाँ पर देख रहे हैं इन छतरियों की शोभा देखते ही बन रही है। इनको यहाँ के महाराजाओं ने बनाया था। चलिए इसी क्रम में हम आगे चलते हैं।
0: कोटेश्वर महादेव मंदिर, गणेश मंदिर, गोपाल जी का मंदिर, राधा वल्लभ जी का मंदिर, बिहारी जी का मंदिर।
1: यह है रामदेवरा और आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो घंटाघर यहाँ पर बनाया गया है, ये बहुत ही प्राचीन समय में बनाया गया था। पहले इस पर बहुत बड़ी घड़ी भी जो है लगी हुई थी, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। और यह भी गांव के बीच में बसा हुआ गांव की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है।
0: गीजगढ़ के लोगों ने बताया कि यहाँ गीजगढ़ चार दीवारियों से घिरा हुआ था। गीजगढ़ के अंदर चार प्रमुख दरवाजे हैं, जिससे कि गीजगढ़ को एक बंद गांव के रूप में देखा जाता है। गीजगढ़ के आसपास गांव और ढाणियां मिलाकर कम से कम यहाँ की आबादी 25,000 है। आइए दोस्तों, अब चलते हैं गांवों के लोगों की तरफ, देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अभी हमारे साथ है बिजराज सिंह जी। नमस्कार बिजराज सिंह जी।
2: नमस्कार सर।
0: सर, आप इस गांव गीजगढ़ के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
2: जो गीजगढ़ जो नाम है वो एक गिद्ध राजा के नाम से पड़ा था, जो कि यहाँ पहले राज करते थे। क्या है कि वो पानी मतलब पहले भरा हुआ था गीजगढ़ के अंदर, तो उनका रानी का जो हार गिरा हुआ था वो अपने त्रिवेणी जी के मंदिर में गिरा था, तो उसको हार को निकालने के चक्कर में पानी निकाला गया, मतलब जगह जगह से पहाड़ काट गए, तो ये धीरे धीरे बसावट होती गई गीजगढ़ की। तो राजा ने बसावट कर दी सबकी, धीरे धीरे सब आदमी उन्होंने घर बना लिए, ऐसे करके ये गांव बसा हुआ है गीजगढ़।
0: बिजराज जी, यहाँ के लोगों के आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है?
2: आजीविका का स्रोत है अपने यहाँ पे खेती वगैरह और दुकानें वगैरह। तो अब धीरे धीरे लोग जो पढ़ रहे हैं तो वो यहाँ पे क्या धंधा वगैरह नहीं है, तो वो दुकान पे तो सहमत नहीं है, तो जयपुर वगैरह से मतलब बाहर जाके मतलब काम कर रहे हैं। तो मतलब धीरे धीरे आदमी यार रह नहीं रहे, पलायन कर रहे हैं सब। इसलिए गांव पहले बहुत खूबसूरत था, पर अब क्या है कि मतलब धीरे धीरे पलायन की वजह से मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा गांव के ऊपर। और जो अभी ऐतिहासिक जगह है अपनी देखने की गीजगढ़ में, उन पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
0: जी धन्यवाद। दोस्तों, हमारा गीजगढ़ प्राचीन समय से ही राजस्थान में एक खुशहाली का प्रतीक रहा है, पर मौजूदा परिवेश में पलायन बेरोजगारी और प्राकृतिक समस्याओं के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है। अब समय है हम लोगों को मिलजुल कर हमारे गीजगढ़ की बेहतरीन के लिए काम करने का, जिसमें स्थानीय लोग विशेषकर युवा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, वरना गीजगढ़ सिर्फ इतिहास ही बनकर रह जाएगा।

0: विज्ञान वाणी के विज्ञान वार्ता प्रसारण में आपका स्वागत है।
1: प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी सन 1769 और 1799 के बीच 30 साल की अवधि में ब्रिटिश सेना और हैदर अली तथा उसके बेटे टीपू सुल्तान के बीच 4 मैसूर युद्ध लड़े गए। इन युद्धों के दौरान अंग्रेजों को 2 अत्यंत महत्वपूर्ण भारतीय तकनीकों रॉकेट निर्माण और प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जानकारी मिली। बाद में इन दोनों ही भारतीय तकनीकों का पहले इंग्लैंड में और तदनंतर यूरोप के अन्य देशों में तेजी से विकास हुआ। अंग्रेजों ने भारतीयों से किस तरह प्लास्टिक सर्जरी की विद्या सीखी, ये एक दिलचस्प दास्तान है। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच तीसरा मैसूर युद्ध एक संधि के द्वारा समाप्त हो चुका था। उसके कुछ दिन बाद की ही घटना है। अंग्रेजों की खिदमत करने वाला कवसाजी नाम का एक मराठा गाड़ीवान और 4 तिलंगे मैसूर राज की सीमा में दाखिल हुए तो टीपू सुल्तान के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और उनके हाथ नाक कान सभी कुछ काट दिए। फिर उन्हें अंग्रेज कमांडर के पास वापस भेज दिया गया। उसके कुछ दिन बाद की बात है, वहां अंग्रेज कमांडर एक भारतीय व्यापारी से कोई और सौदा तय कर रहा था तो उसने देखा कि व्यापारी की नाक कुछ अजीब तरह की है और उसके ललाट पर जख्म के निशान भी हैं। कमांडर के पूछने पर व्यापारी ने बताया कि परस्त्री गमन के अपराध के दंड स्वरूप उसकी नाक कान काट दी गई थी और कुम्हार जाति के एक मराठा वैद्य से उसने नाक कान बनवा लिया था। अंग्रेज कमांडर ने उस वैद्य को बुला लिया और उससे कवसाजी तथा 4 तिलंगों की नाक की प्लास्टिक शल्यक्रिया करने को कहा। शल्यक्रिया पुणे के पास एक स्थान पर हुई। उस समय 2 अंग्रेज डॉक्टर थॉमस क्रूसो और जेम्स फिंडले वहां मौजूद थे। कुछ दिन बाद उस सनसनीखेज शल्यक्रिया का सचित्र विवरण मद्रास गजट में प्रकाशित हुआ। फिर लंदन में प्रकाशित होने वाला जेंटलमैन मैगजीन नामक पत्रिका के अक्टूबर 1794 के अंक में वो विवरण पुनः मुद्रित हुआ। 200 से भी कुछ अधिक साल पहले भारत में की गई नाक की प्लास्टिक सर्जरी के उस विवरण की प्रमुख जानकारी को यहाँ प्रस्तुत करना उपयोगी होगा। सर्वप्रथम नाक का सही माप लेने के लिए मोम की एक परत तैयार की गई, फिर ललाट से उसी आकार की त्वचा काटी गई पर आंखों के बीच थोड़ा हिस्सा रक्त संचार के लिए ललाट से जुड़ा रहने दिया गया। उसके बाद नासा छिद्रों के लिए ठीक से स्थान बनाकर नाक की चतुर्दिक सीमा की त्वचा में चीरा लगाया गया। फिर ललाट से काटी गई त्वचा को आधा मोड़कर नीचे नाक पर लाया गया और चीरे से फंसा दिया गया। फिर कपड़े की पट्टियों पर भीगे कत्थे का लेप लगाकर उसकी 4-5 परतें त्वचा की जोड़ पर लगा दी गई। जख्म को भरने के लिए कत्थे के उस सीमेंट के अलावा और किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया। 4 दिन बाद उन्हें हटाकर घी में डुबोई हुई पट्टियां जख्म पर लगाई गईं। 20वें दिन ललाट से जुड़ी हुई त्वचा को काट दिया गया। इस शल्यक्रिया के बाद मरीज को 5-6 दिन तक पीठ के बल बैठाया गया। नासा छिद्र पर्याप्त खुले रहे इसीलिए 10वें दिन उसमें मुलायम कपड़े के टुकड़े रखे गए। अंत में इस शल्यक्रिया के विवरण में एक टिप्पणी है, नाक की ये प्लास्टिक शल्यक्रिया हमेशा सफल रही है। ये बनावटी नाक मजबूत होती है और काफी हद तक कुदरती नाक की तरह दिखाई देती है। कुछ अरसे बाद ललाट का दाग भी काफी हद तक मिट गया है। भारत में ही की गई नाक की प्लास्टिक सर्जरी का ये विवरण लंदन में प्रकाशित हुआ तो इसे पढ़कर वहां के अनेक सर्जन चकित रह गए। उस सचित्र विवरण ने 30 साल के तरुण सर्जन जोसेफ कॉन्स्टेन कारपूर को सबसे अधिक प्रभावित किया। उससे इस प्रकार की शल्यक्रिया के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की। फिर उसने साहस करके लंदन में 23 अक्टूबर

1814 को नासिक संस्थान की ठीक वैसी ही शल्यक्रिया की जैसी भारत में कवसाजी और तिलंगों पर की गई थी। उसके साथ ही यूरोप में आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का युग शुरू हुआ। लंदन में नाक संस्थान की वह पहली शल्यक्रिया करने में कारपुए को कुल 37 मिनट का समय लगा। उस पहली सफलता के बाद कारपुए ने जल्दी ही नाक संस्थान की दूसरी शल्यक्रिया की भी, जिससे उसे खूब प्रसिद्धि मिली। भारतीय नाक यूरोप में मशहूर हो गई। समीप के अंग से त्वचा लेकर अंग भंग के स्थान पर जोड़ी जाती है, तो उस विधि को आज भी भारतीय प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है। कारपुए ने नासिका संधान के अपने अनुभवों के आधार पर सन 1816 में एक छोटी पुस्तक भी प्रकाशित की थी। उससे प्रभावित होकर जर्मन सर्जन ग्रोएफ ने हाथ की त्वचा लेकर नासिका संधान की प्लास्टिक शल्यक्रिया शुरू कर दी थी। इस जानकारी से सहज स्पष्ट हो जाता है कि आज बहुत अधिक इस्तेमाल होने वाला संश्लेषित प्लास्टिक पदार्थ से प्लास्टिक सर्जरी का कोई सारोकार नहीं है। प्लास्टिक शब्द यूनानी भाषा के प्लास्टिकोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सांचा बनाना या आकार देना। प्लास्टिक शल्यक्रिया में शरीर के खोए हुए अंग को पुनः स्थापित किया जाता है अथवा विरूपता या विकृत अंग को दुरुस्त किया जाता है। हालांकि प्लास्टिक शल्यक्रिया एक बहुत पुरानी तकनीक है, परंतु तेजी से इसका विकास प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही हुआ है। प्राचीन यूरोप से प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। बाइबल में इसका कोई उल्लेख नहीं है। होमर ने अपने महाकाव्यों में युद्ध जनित अनेक जख्मों और उनके उपचारों की जानकारी भी दी है, परंतु अंग भंग कहकर प्लास्टिक सर्जरी का कोई भी जिक्र नहीं है। रोमन चिकित्सक सेल्सस होंठ, कान और नाक की प्लास्टिक शल्यक्रिया उल्लेख करता है, मगर लगता है कि स्वयं उसने कोई शल्यक्रिया नहीं की थी। रोमन साम्राज्य के अवसान के बाद फिर हमें मध्ययुग तथा यूरोप से प्लास्टिक शल्यक्रिया के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। यूरोप में प्लास्टिक सर्जरी के उल्लेख 15वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। दरअसल कॉफ्रे के पहले ही नासिका संधान की भारतीय विधि की जानकारी दक्षिण यूरोप के देशों में पहुंच चुकी थी। सिसली द्वीप के सर्जन ब्रांका ने 1442 ईस्वी में नासिका संधान की शल्यक्रिया की थी। उस शल्यक्रिया में उसने गाल की त्वचा का उपयोग किया था। बाद में ब्रांका के पुत्र एंटोनियो ने पिता के कार्य को जारी रखा। हाथ से त्वचा लेकर नासिका संधान की शल्यक्रिया करने वाला एंटोनियो यूरोप का पहला सर्जन था। पिता पुत्र ब्रांका के बाद 16वीं सदी के आरंभ में इटली के बोयानी परिवार ने प्लास्टिक सर्जरी का काम किया। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इटली के बोलोना विश्वविद्यालय में शल्य चिकित्सा के प्राध्यापक जास्पारो ताग्लियाकोजी ने नाक संधान के सर्जन के रूप में खूब ख्याति अर्जित की। उसने हाथ से त्वचा लेकर नाक संधान की शल्यक्रियाएं की। उसने कर्णबंध और ओष्ठबंध की शल्यक्रियाएं भी की। ताग्लियाकोजी ने 1597 ईस्वी की कागड़ा की प्लास्टिक सर्जरी की परंपरा के बारे में जानकारी दी है। पता चलता है कि अकबर के शासनकाल में कांगड़ा के बिधा नामक एक वैद्य ने नासिका संधान की शल्यक्रिया की थी। ईसा की 7वीं या 8वीं सदी के प्रख्यात चिकित्सक बाणभट्ट के ग्रंथ अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में भी प्लास्टिक शल्य क्रम के बारे में जानकारी मिलती है, परंतु सबसे प्राचीन जिस भारतीय ग्रंथ में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है वो है सुश्रुत संहिता। प्राचीन भारतीय चिकित्सा ज्ञान के दो महान विश्वकोश हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। इसमें चरक संहिता अधिक प्रसिद्ध है और अधिक प्राचीन भी है। सुश्रुत संहिता की रचना कोई 2000 साल पहले हुई। चरक संहिता प्रमुख रूप से औषधि विज्ञान का ग्रंथ है। सुश्रुत संहिता में मुख्यतः शल्य चिकित्सा की विशद जानकारी दी गई है। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में एक ग्रंथ प्रकाशित किया गया था, उसे आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का पहला वैज्ञानिक ग्रंथ भी माना जाता है। हाथ से त्वचा लेकर ताग्लियाकोजी ने नासिका संबंध की जिस विधि का विकास किया था वो अब इटालवी विधि के नाम से जानी जाती है। ताग्लियाकोजी ने चिकित्सा विज्ञान की अमूल्य सेवा की थी।
फिर भी उसे ईसाई चर्च का कोभाजन बनना पड़ा। उसे धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया और उसके शव को चर्च के कब्रिस्तान से निकालकर दूसरे सामान्य स्थान पर गड़वा दिया गया। मगर बोलोना के नागरिकों के दिल में अपने इस देशवासी के लिए अगाध श्रद्धा थी। उन्होंने टागलियाकोजी की स्मृति में एक मूर्ति स्मारक खड़ा किया। उस मूर्ति के एक हाथ में नाग है। टागलियाकोजी के बाद उसके शिष्य प्लास्टिक शल्यक्रियाएं करते रहे।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

नमस्कार बहनों, मैं दिनेश मिगलानी आपका रीड इंडिया की कार्यशाला में स्वागत करता हूं। यह कार्यशाला रीड इंडिया के द्वारा आयोजित की गई है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य व्यापार कैसे किया जाए, स्वरोजगार पैदा करना एवं आपको आत्मनिर्भर बनाना है। इस कार्यशाला को हमने तीन भागों में बांटा है। पहले भाग के अंदर हम यह सीखेंगे कि व्यापार क्या होता है, उद्यमी कैसे बना जाता है, इसके अलावा एक सफल उद्यमी या सफल व्यापारी में क्या क्या गुण होते हैं, तथा एक व्यापार करते समय या आप जब अपना कार्य करते हैं उसको करते समय किन किन कार्य को आपने करना है। इसके अलावा हम यह भी सीखेंगे आत्मनिर्भरता का हमारे जीवन में, हमारे परिवार में क्या महत्व है। कार्यशाला के दूसरे भाग के अंदर हम यह सीखेंगे कि व्यापार की शुरुआत कैसे की जाती है और शुरुआत से लेकर व्यापार को खड़ा करने में हम कैसे छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें ताकि हम एक सफल व्यापार की तरफ अग्रसर हो सकें। कार्यशाला के तीसरे भाग के अंदर जो व्यापार हमने स्थापित किया है उसकी वृद्धि कैसे की जा सके एवं उस व्यापार के आंतरिक चीजों को में क्या क्या आपने ध्यान रखना है, कैसे अपने व्यापार के अकाउंट्स या लेखा बनाने हैं, किन किन चीजों को आपने संभाल के रखना है ताकि भविष्य में अगर आप किसी बैंक के पास जाएं तो कैसे उस व्यापार की वृद्धि की जा सके। तो बहनों चलो हम स्टार्ट करते हैं, हम शुरुआत करते हैं हमारे कार्यशाला के पहले भाग से जिसका मुख्य उद्देश्य यह समझना है व्यापार क्या है। मैंने बोर्ड पे एक छोटा सा चार्ट भी बनाया है आपको समझाने के लिए। तो पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूं व्यापार क्या है। बहनों आप देखते हैं आपके आसपास में कुछ लोग बैंक में नौकरी करते हैं, कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, इसके अलावा कोई किसी कारखाने में कार्य करता है। तो यह नौकरी करना जीविका कमाने का एक साधन है। तो इस तरह के जीविका कमाने को हम कहते हैं कि नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग आपके आसपास ऐसे भी होंगे जो एक छोटी मोटी दुकान चलाते हैं या किसी ने कोई कारखाना खोला हुआ है। तो जीविका कमाने के इस साधन को हम कहते हैं स्वरोजगार या व्यापार। ये तो हम जानते हैं कि जीवन जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है और पैसे से ज्यादा जरूरी है हमारा आत्मनिर्भर होना। यदि आप आत्मनिर्भर हैं तो हमारे अंदर एक अलग सा विश्वास होता है। एक सफल गृहिणी या एक महिला जो आत्मनिर्भर है वह उस आत्मनिर्भरता से पूरे परिवार का पालन पोषण कर लेती है। आज के समय में सरकारी नौकरियां काफी कम हैं और हमारी बहनें जो गांव में रहती हैं कम पढ़ी लिखी हैं। यदि आप शहर में रहते हैं तो छोटी मोटी नौकरी या जीविका का कोई साधन आसानी से बनाया जा सकता है, पर गांव में रहने के कारण छोटी मोटी नौकरी भी नहीं मिल पाती। तो हमारी बहनों के पास में अपना कार्य शुरू करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता, क्योंकि गांव में आप देखेंगे काम भी नहीं मिलता आजकल। क्यों? क्योंकि गांव में कोई रोजगार का साधन तो है नहीं, तो इसके लिए हमें छोटा मोटा कार्य तो करना पड़ेगा और वो जो कार्य है वो एक तरह से हमें व्यापार करने या उद्यमी बनने की तरफ अग्रसर करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे मन में पहली चीज अब ये आती है कि ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आत्मनिर्भर होने के लिए। अब वो करना जो है वो कोई ना कोई आपको व्यापार करना है या कोई ना कोई आपको आत्मनिर्भर होने के लिए स्वरोजगार शुरुआत करनी है। तो स्वरोजगार की आप जो शुरुआत करेंगे, शुरुआत करते समय सबसे पहले हम यह समझें कि जो एक सफल उद्यमी है, जो एक सफल व्यापारी है, उसमें क्या क्या ऐसे गुण होते हैं जिसके कारण वह एक व्यापारी बन पाया या एक उद्यमी बन पाया, ठीक है। तो मैंने एक पहला चार्ट बनाया यहां पर आपको ये समझाने के लिए कि एक सफल उद्यमी में क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहला जो गुण है, सबसे पहली जो चीज है जो हमारी बहनों में भी है, वो होती है पहल।
पहल से हमारा क्या मतलब है। जैसे ही हमारे आसपास आप देखते हो, रोजाना हमारे मन में कई तरह के नए नए विचार आते हैं, ठीक है। वो विचार आने के बाद हम उनके बारे में थोड़ा सोचते हैं और फिर हिचक के उनको कार्यान्वित नहीं करते, ठीक है। अब एक जो सफल व्यापारी है, अगर उसके सामने कोई विचार आता है तो विचार आने के बाद वह उसके बारे में चीजों को समझता है और समझने के बाद वह ये देखता है कि यदि उससे कोई बिजनेस बनाया जा सकता है, कोई व्यापार किया जा सकता है, तो वह उसके तरफ अग्रसर हो जाता है। तो सबसे पहली चीज होती है पहल। तो हमारी बहनें जो अब यहां बैठी हैं, अगर आपके मन में कोई भी विचार है, कुछ बहनों को ऐसा लगता होगा कि वो अचार बहुत अच्छा बनाती हैं, या पापड़ बहुत अच्छे बनाती हैं, ठीक है, या चटनी अच्छी बनाती हैं, इसके अलावा हमारी बहनों के पास में सिलाई कढ़ाई बुनाई या गांवों के अंदर मिट्टी के बर्तन या हम कहें मिट्टी के खिलौने या आजकल साज सज्जा की जो चीजें हैं जो गांव की महिलाओं को बचपन से सिखाई जाती हैं, जो उनको आती हैं। तो इस तरह का अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई ऐसा विचार है जहां आपको ये लगता है कि उसमें आप काफी अच्छे हैं, तो पहल अगर आप करेंगे तो एक सफल व्यापारी की तरफ यह आपका पहला स्टेप होगा, ठीक है। एक सफल उद्यमी का दूसरा जो सबसे गुण होता है वह होता है जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति। अब देखो, आप कोई भी व्यापार करते हैं, सबकी इच्छा यह होती है कि व्यापार आपका सफल हो, पर ऐसा होता नहीं है, हर व्यापार सफल नहीं होता। फिर भी हमारे अंदर जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यदि हम जोखिम ही नहीं उठाएंगे, यदि हम किसी भी कार्य में जोखिम नहीं उठाएंगे, तो वह कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वह है हमारा जोखिम उठाना, क्योंकि जोखिम उठाने से ही कार्य होगा। फिर होता है अपने अनुभव से सीखना। व्यापार करते समय, कोई भी कार्य करते समय गलतियां तो होती हैं, ठीक है। अगर उन गलतियों से हम नहीं सीखेंगे तो हमें ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादा नुकसान जो होगा उसको हम सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जोखिम उठाने की शक्ति काफी कम है। तो इसलिए हमें अपने अनुभव से सीखना चाहिए। एक बार गलती हो जाए कोई बात नहीं, पर यदि दोबारा वह गलती फिर से होगी तो यह हमारी बहुत भारी गलती होगी। फिर प्रेरणा, हमारे अंदर एक प्रेरणा होनी चाहिए, हमें प्रेरित होना चाहिए। मान लीजिए हम बहनों के बीच में कोई एक बहन ऐसी है जो कुछ कार्य करती है, कार्य करना मतलब वो आत्मनिर्भर है, कुछ ऐसा कार्य करती है जिससे धन कमाया जाता है, पैसा कमाया जाता है, तो हमें उससे प्रेरित होना चाहिए। अगर आप उससे प्रेरित होंगे तभी आपके मन में यह इच्छा जागेगी कि मुझे भी उस बहन की तरह आत्मनिर्भर होना है। इसके अलावा आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में वही सफल होता है जो अपने पर विश्वास करता है। यदि आप अपने पर विश्वास ही नहीं करेंगे तो आप सोच के देखिए दूसरा कोई व्यक्ति आप पर क्यों विश्वास करेगा, इसके पीछे कोई भी कारण नहीं है। तो आप अपने पर विश्वास पैदा कीजिए, आपको यह समझना चाहिए कि आप यह कार्य कर सकती हैं। व्यापार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक महिला जो सुबह से लेकर शाम तक अपने पूरे घर को संभाल सकती है, अपने बच्चों को पाल सकती है, खाना बना, आप देखो आप कार्य देखिए, एक महिला की सुबह से आप दिनचर्या की शुरुआत करें आखिर तक शाम तक देखें तो एक महिला इतना कार्य करती है कि अगर उसी कार्य को व्यापार के रूप में रूपांतरित कर दिया जाए तो एक बहुत अच्छा आत्मनिर्भरता होने का जरिया बन सकता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे जो महत्वपूर्ण है, वह होता है निर्णय लेने की योग्यता, ठीक है, या निर्णय लेने की क्षमता। आप देखेंगे आपके जीवन में या कोई भी कार्य करते समय काफी बार ऐसे मौके आते हैं जहां आपको कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ता है। यदि आप उस निर्णय लेने की में क्षमता रखते हैं,
तो निर्णय लिया, आपका निर्णय गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। देखो धरती पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जिसके सभी निर्णय सही होंगे। निर्णय हमारे गलत भी हो सकते हैं, निर्णय हमारे सही भी हो सकते हैं, बट हमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, हमें निर्णय लेने का आत्मविश्वास होना चाहिए। तो एक सफल जो व्यवसायी है उसमें यह गुण तो सबसे पहले है। और मेरे हिसाब से हमारी बहनें जो यहाँ बैठी हैं, इन सब बहनों में ये सब बातें हैं, इन सब बहनों में ये सब बातें हैं, बट उन्हें उनको बस अपने अंदर झांकना है, उनको अपने अंदर से प्रेरणा लेके आनी है, उनको यह करना है कि हमें भी कुछ करना है, हमें भी आत्मनिर्भर होना है, हमें भी स्वरोजगार पैदा करना है जिससे हम अपने परिवार का अच्छे ढंग से भरण पोषण कर सके, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सके, ताकि उन बच्चों को भविष्य में इस तरह की मुसीबतों का सामना न करना पड़े जो शायद आज हमारी बहनें गांव में रहकर कर रही हैं। इसके बाद दूसरा जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, कि अगर आप एक उद्यम शुरुआत करना जा रहे हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि उसकी शुरुआत के बाद आपको किन किन कार्यों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिन कार्यों को आपने करना पड़ता है मैंने चरणबद्ध उन कार्यों को लिखा है ताकि आप यह समझ सके कि आप अगर एक बिजनेस या कोई भी व्यापार या कोई भी स्वरोजगार की शुरुआत करते हैं तो यह कार्य आपको जरूर करने होंगे। सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वह होता है अवसर की पहचान करना। ठीक है, हमारे जीवन में अवसर आते जाते रहते हैं। आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, घूमते घूमते आपने देखा कि फला जगह पर काफी लोग आते हैं, वहां खाने पीने का कोई भी सामान नहीं है। ठीक है, अगर आपने यह सोच लिया क्यों ना मैं हर रोज दोपहर के वक्त वहां जाकर कुछ खाने का सामान बनाकर जो घर में बनाया जा सकता है, ऐसा सामान जिसको आसानी से बनाया जा सकता है और वह खाने लायक है और आसानी से लोग खाते हैं, अगर आप वहां जाकर बेचना शुरू कर दें, हो सकता है शुरुआत में लोग ज्यादा ना खरीदे, पर अगर वह सामान आपका बिकने लग जाए तो यह अवसर होता है। इसे हम अवसर कहते हैं। अवसर कहीं भी आपको मिल सकता है, अवसर को पहचानने वाली आंखें होनी चाहिए। हर जगह पर अवसर है। ठीक है, तो सबसे पहला जो उद्यमी का कार्य है, जो आपके लिए भी है, आपके लिए पहला कार्य यह है कि आप उस अवसर की पहचान करिए। आप यह देखो कि ऐसी क्या चीज आपके पास में है, ऐसा क्या मौका आपके पास में है, यदि आप उसे उस मौके को फायदा उठा पाए, उस मौके को व्यापार में बदल पाए। तो सबसे पहला काम है हमारा है अवसर को पहचानना। अवसर को पहचानने के बाद विचारों को कार्यान्वित करना। कई बार क्या होता है कि मैंने पहले भी आपको बोला कि आपको पहल करनी है, अवसर तो मिल गया, आपको लग गया हाँ भी ये कार्य किया जा सकता है। अब उस कार्य को करने के बाद आपको यह देखना है कि उस विचार जो आपके मन में आया है उसको कैसे एक व्यापार के फॉर्म में लाया जाए, कैसे उसको जमीनी स्तर पर आप उस पर कार्य करिए। तो यह एक उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वह होता है अपने विचारों को जमीनी स्तर पर लाकर कार्यान्वित करना ताकि कुछ शुरुआत की जा सके। इसलिए मैंने यहां सबसे पहले ही आपको बताया पहल सबसे इम्पोर्टेंट है, पहल आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है, और पहल विचारों को कार्यान्वित करना तभी हो पाएगा जब हमारे अंदर कुछ करने की इच्छा होगी। फिर संसाधनों को उपलब्ध कराना, जब आपके मन में यह बात बिल्कुल बैठ जाए कि अब तो मुझे कुछ कार्य करना है, आपने यह फाइनल कर लिया, यह आपने निश्चित कर लिया कि यह कार्य आप करेंगे, इस तरह का व्यापार आप शुरुआत करेंगे, तो फिर आप ये देखेंगे उसको करने के लिए किन किन संसाधन आपको चाहिए, क्या क्या संसाधन आपको चाहिए। तो एक व्यापारी को इन सभी संसाधनों को इकट्ठा करना और उन संसाधनों को उपलब्ध कराना उसका कार्य होता है। जैसे मान लीजिए मैं खाने की बात, अब मैं देखो अगले भाग के अंदर मैं अलग अलग एक एक उस पे आऊंगा, अभी मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। मान लीजिए कहीं हमने खाने का छोटा मोटा सामान बेचना शुरुआत किया, तो खाने को बनाने से लेकर उसकी पैकेजिंग तक,
बनाने से लेकर उसकी पैकेजिंग तक हर तरह का संसाधन आपने जुटाना है, और क्योंकि हमारे पास में पैसा भी कम है, जोखिम उठाने की क्षमता कम है, तो इसलिए हमें यह सोचना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कैसे कम से कम पैसे से हम अपनी शुरुआत कर सकें। स्थापना करना, व्यापार को स्थापित करिए, शुरुआत करिए, उसके बाद प्रबंधन करना, ये सब एक व्यापारी का कार्य है। शुरुआत हो जाती है कई बार, शुरुआत में हमें रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता, बट धीरे धीरे अगर हम डटे रहेंगे, अगर हमारी पहल ठीक थी, अगर हमारा अवसर ठीक था, तो उसमें वृद्धि भी होगी और उसमें फायदा भी होगा। आप देखेंगे जीवन में कभी भी ऐसा, कई बार ऐसा मौका आ जाता है, हमें यह लगता है कि अब यह कार्य करना हमारे बस की बात नहीं है। अगर हम कुछ समय और कार्य करते रहे तो वह कार्य सफल हो जाता है, वही चीज व्यापार में होती है, ठीक है। तो यह सब चीजें हमें अपने दिमाग में बिठाकर फिर हम सोचेंगे कि क्या हमारी बहनें व्यापार करने के लिए उनमें इच्छा शक्ति है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्रेरित होके वो अपने अंदर इच्छा शक्ति लेके आए, आत्मविश्वास पैदा करें, और उनके साथ साथ इन बातों का भी ध्यान रखें कि ये कार्य उन्हें करने पड़ेंगे। अंत में इस कार्यशाला के अंतिम भाग में मैं यह जरूर बात करूंगा कि आपको स्वरोजगार के फायदे क्या है, व्यापार का आपके जीवन में क्या फायदा है, ठीक है। देखो, व्यापार का हमारे जीवन में सबसे पहला, सबसे मुख्य फायदा जो होता है वह होता है आत्मनिर्भर होना। हम अपने जीवन में जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे, जब तक हम दूसरों पर आधारित रहेंगे, तब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा नहीं होता, और आत्मनिर्भर होने के बाद हम अपने परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आत्मनिर्भरता के साथ साथ जो आत्मविश्वास हमारी बहनों में आएगा, और उसके साथ जो उनके परिवार की तरक्की होगी, क्योंकि परिवार की तरक्की होगी तभी देश की तरक्की होगी। अगर परिवार ही हमारा उन्नति नहीं करेगा तो देश उन्नति नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से दो चीजों में फायदा होता है, एक तो हमारी परिवार उन्नति करता है और परिवार के साथ साथ देश भी उन्नति करता है, परिवार आगे बढ़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, हमारी एक विशिष्ट पहचान बनती है। अब हमारी जो बहनें बैठी हैं, मैं कहना चाहूंगा कि इसमें कुछ बहनें ऐसी होंगी जो आत्मनिर्भर हैं, जो कुछ ना कुछ कार्य करती हैं और उस कार्य करने से धन कई अर्जन होता है उन्हें, तो वो जो उनकी एक विशिष्ट पहचान बन जाती है समाज में, उनकी एक विशिष्ट पहचान होती है। तो जो विशिष्टता आपके अंदर आएगी, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका परिवार और देश उन्नति करेगा। तो अंत में कार्यशाला के पहले भाग के अंदर मैं यह आपको फिर से कहना चाहता हूं कि हमारी बहनें जो घर में रहती हैं, वो कृपया करके अपने मन में यह जरूर लेके आए। देखो, सबसे पहली चीज आपकी इच्छा शक्ति है। जब तक आपके मन में इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें अपने मन में इच्छा शक्ति जागृत करनी पड़ेगी, आत्मविश्वास अपने अंदर लेके आना पड़ेगा, उसके बाद ही हम यह सोचेंगे कि किस तरह का व्यापार हमें करना है, कितना जोखिम हम उठा सकते हैं, और उस व्यापार को करने के लिए संसाधनों को कहां से एकत्रित करेंगे। रीड इंडिया हमारी बहनों को काफी सपोर्ट करती है, सहायता भी करती है। तो इस कार्यशाला के माध्यम से हमने व्यापार के बारे में सीखा। कार्यशाला के दूसरे भाग में हम व्यापार की स्थापना से लेकर व्यापार के बाकी भागों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।

0: रीड इंडिया रेडियो में फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अनुजा। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रम लेकर के आए हैं अपनी सभी महिला साथियों और बेटियों और बहनों के लिए और बाकी और श्रोताओं के लिए भी। हॉस्पिटैलिटी एक ऐसा शब्द है जिसको हम ज्यादातर होटल इंडस्ट्री में सुनते हैं, लेकिन हॉस्पिटैलिटी किस तरीके से, और घर में तो रोज ही हम हॉस्पिटैलिटी करते हैं, लेकिन हॉस्पिटैलिटी घर अपने रोजमर्रा के कामों में किस तरीके से आपको और आपके परिवार के मन, चित्त और स्वास्थ्य को सुंदर रख सकती है, और कैसे आपके आपका जो असर है दूसरों के ऊपर वो एक बेहतर कर सकती है, और कैसे आप इससे अपने लिए कोई काम काज भी खोज सकते हैं और अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं, इस पर ही बात हम करेंगे आज। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे पास है, और इस पर बात करने के लिए आज हमारे बीच में है दीक्षा। तो दीक्षा, आपका रीड इंडिया रेडियो में स्वागत है।
1: थैंक यू
0: दीक्षा। अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं।
1: मेरा नाम दीक्षा है, मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। मैंने अपना बैचलर्स करा है होटल मैनेजमेंट में, उसके बाद मैंने एक साल का डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करा था कुकिंग में, जो कि एफिलिएटेड था ले कोर्डोर ब्लू पेरिस से, जो कि एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, मेरे पास उसका भी सर्टिफिकेट है। तो अब मैं रीड इंडिया में आई हूँ और रीड इंडिया में लोगों को हॉस्पिटैलिटी के बारे में सिखाऊंगी।
0: क्या चीज आपको खींच के होटल मैनेजमेंट की ओर ले गई, जबकि आज भी दुनिया में डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम लोग बहुत ही ग्लैमरस व्यवसाय समझे जाते हैं, तो क्या चीज थी जो होटल मैनेजमेंट की ओर आपको खींच ले गई?
1: जैसे कि आपने बोला कि ग्लैमरस, एक्चुअल ग्लैमर आपका होटल इंडस्ट्री से आता है। मैंने होटल इंडस्ट्री इसलिए ज्वाइन करी थी कि मेरे को मौका मिलेगा, मैं अलग अलग देश के अलग अलग लोगों से मिलूंगी, उनको सर्व कर सकती हूँ या उनके साथ बैठ के मैं उनसे बात कर सकती हूँ, उनसे इंटरैक्ट कर पाऊंगी, तो मैं उनको और उनके कल्चर को जान पाऊंगी। उनसे अगर मेरे को मतलब मौका मिलेगा किसी से बात करने का, तो मेरे को एक तरीके का जैसे कि किसी नए इंसान से मिलने में हमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है, मेरे को वो उत्साह था, तो मैंने इसलिए होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करा था।
0: तो देखिए दीक्षा हर बार कुछ नए लोगों से मिलना चाहती थी, कुछ नया जानना चाहती थी, और इसीलिए दीक्षा ने चुना होटल इंडस्ट्री को, और उन्होंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करी, और कुछ नया सीखने सिखाने के लिए वो फिर अब आपके बीच में भी हैं। तो दीक्षा के होने का हमें फायदा मिलना ही चाहिए, क्योंकि दीक्षा अब हमारे साथ रीड इंडिया की बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारी लड़कियों को जो गांव में हैं, जो बाहर अभी निकली भी नहीं है, जो रोजमर्रा की चीजों में आनंद लेती हैं, मजा लेती हैं, वो अच्छी बात है, बट उसको और कैसे सुंदर बनाया जाता है, इस पर बहुत जल्दी आपके बीच में आने वाली है। तो दीक्षा हमें आप बताइए कि होटल मैनेजमेंट में एक टर्म होता है, एक शब्द होता है हॉस्पिटैलिटी, क्या है ये हॉस्पिटैलिटी?
1: हॉस्पिटैलिटी लोग अक्सर जब सुनते हैं हॉस्पिटैलिटी, तो कुछ लोग उसको हॉस्पिटल के पास ले जाते हैं, वो नहीं है। हॉस्पिटैलिटी होता है जैसे अब मैं आपके यहाँ पे आई हूँ रेडियो पे, तो मेरे को आप अच्छी हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं, मतलब आप होस्ट है और मैं गेस्ट हूँ,
0: मतलब कि हम कैसे आपका स्वागत कर रहे हैं, कैसे आपकी आवभगत कर रहे हैं। अभी हॉस्पिटैलिटी में वो हमारे साथ क्या करने वाली हैं दीक्षा, इसके बारे में थोड़ा बताइए।
1: मैं हॉस्पिटैलिटी में जो मेरे पास लेडीज होंगी उन सबको मैं अच्छे से ट्रेन करूंगी। किस में? सबसे पहले मैं उनको किसी से अगर कोई आता है उससे कैसे उसकी आवभगत करनी है, कैसे बात करनी है, कैसे उसके साथ पेश आना चाहिए, क्या जैसे हम कभी होटल में जाते हैं तो हम देखते हैं अंदर घुसते ही हमें टाइम के हिसाब से लोग ग्रीट कर रहे हैं, मतलब विश कर रहे हैं गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, तो ऐसे मैं उन लोग को पहले सिखाऊंगी कि हम लोग को अपना पोस्चर, मतलब कैसे बैठना चाहिए, कैसे किसी के सामने आना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ये वो बात है। हॉस्पिटैलिटी में सबसे बड़ा की पॉइंट होता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, मतलब जब आपको इंसान पहली नजर में देखेगा जो इम्प्रेशन तब पड़ेगा वो पहला और आखिरी इम्प्रेशन है, उसके बाद आप इम्प्रेशन कुछ भी करते रहो वो इम्प्रेशन कभी नहीं बदलेगा आपका। तो मैं हमारी सारी लेडीज को ऐसे ट्रेन करूंगी कि लोग अगर कहीं वो बाहर जॉब अप्लाई करने जाते हैं, कुछ करते हैं, लोग देखें ये ना बोले कि ये लोग गांव के हैं, ये बोले यार ये गांव के होके भी ऐसे हैं, इनको तो हमने लेना ही लेना है।
0: थोड़ा सा दीक्षा ये बताइए कि आपको लग रहा है कि ये गांव की औरतों के साथ या गांव की बेटियों के साथ या गांव के लड़कों के साथ हम इस कोर्स को करेंगे अगर, तो उससे उनके लिए क्या अवसर खुलते हैं, क्या मौके खुलते हैं?
1: ये एक सिर्फ टर्म है कि हम गांव के लोगों के साथ कर रहे हैं। अभी अगर आप देख लो कि जो हमारे शहर के लोग हैं और जो गांव के लोग हैं, अगर मैं अभी कंपैरिजन करूं तो मेरे गांव के लोग ज्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं शहर के लोगों से ज्यादा। शहर के लोगों के सर पे हवा चढ़ी हुई है, गांव के लोग उतने ही हैं कि हाँ हमें कुछ करके दिखाना है, तो उनके लिए काफी अवसर है। अब जैसे आप मुझसे बात करें कि मैं उनको अगर पोस्टर्स भी सिखाऊंगी, जेस्टर्स सिखाऊंगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैसे किसी को ग्रीट करना है वो सिखाया जाएगा, कैसे बैठना है, कैसे अपने आप को पेश करना है लोगों के सामने, एक बार ये चीज सिखाई जाएगी तो उनमें अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ के अब आप पूछेंगे इसका होटल में क्या काम है। अगर ये लोग किसी क्वालिफिकेशन की वजह से आगे फ्रंट होटल के फ्रंट में नहीं जा सकते तो ये बैक ऑफिस में काम कर सकते हैं। होटल में एक होता है सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर हर होटल का बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। तो सर्विस सेंटर में गेस्ट, जितने भी गेस्ट होते हैं, हमें लगता है हम गेस्ट हैं हम फोन कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट रिसेप्शन पे जा रहे हैं, वो कॉल जाती है सर्विस सेंटर में। ये लोग उठाते हैं, ये लोग ग्रीट करते हैं, ये लोग बात करते हैं, ये लोग होटल को रिप्रेजेंट करते हैं गेस्ट के सामने, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उसके बाद अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि ये सॉल्व नहीं कर पाते तब फ्रंट ऑफिस पे जाती है वो बात, रिसेप्शन पे तब जाती है, ऐसे नहीं जाती। तो ये ही लोग संभालेंगे, तो इनके लिए ये अवसर है।
0: एक बात मैं और पूछना चाहूंगी आपसे कि बहुत अच्छी बात आपने ये कही है कि बैक ऑफिस के लोग जो होते हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने फ्रंट ऑफिस वाले, और सच में वो बड़े प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होते हैं कई बार। एक होटल इंडस्ट्री के अलावा एक नई तरीके की सीरीज, एक नए तरीके का फूडिंग कल्चर डेवलप हो रहा है हमारे देश में सब तरफ, खासकर अगर आप हाईवे पर देखेंगे जो ढाबे खुल रहे हैं वो ढाबे ज्यादातर लोकल लोग ही खोलते हैं, चाहे वो शहर के हों चाहे वो गांव के हों। ये जो हॉस्पिटैलिटी का कंपोनेंट हम पाते हैं अपने होटल्स में, जो हाई ग्रेड होटल्स हैं, 3-star, 2-star, 1-star, 4-star, 5-star, वहां से अगर हम इन ढाबों का कंपैरिजन करें, देखिए ढाबों का स्वरूप भी बदलता जा रहा है, पहले गुमटी होती थी, फिर थोड़ा कहीं कोई खाना बना लेता था, वो अपने अपने इनकम और अपने कैपिटल के हिसाब से करते हैं। फिर अभी मैं क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, रोड ट्रैवल भी बहुत करती हूँ, तो मैं कई अलग अलग तरीके की जगहों पर जा रही हूँ जहां पर लोग ढाबों को एक अलग शक्ल में पेश कर रहे हैं, जहां पर वो लोकल टेक्सचर देते हुए ढाबों को प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने हट शेप में केबिन्स बना रखे हैं, कुर्सियां रख रखी हैं। मुझे लगता है कि हॉस्पिटैलिटी के अंदर इन ढाबों को और बेहतर, कम खर्च में और बेहतर करने, और यहाँ के जो बच्चे हैं जो काम करते हैं यहाँ पर या जो पकाते हैं, हालांकि ढाबे के खाने का एक अलग टेस्ट होता है लेकिन वो वहां पर उतनी वैरायटी में नहीं आपको मिलता है कि अगर मैं एक दिल्ली के होटल में चली जाऊं और उनको बोलूं कि मुझे वेज दलिया दे दीजिए तो वो दे देते हैं। तो क्या हम ढाबे को की नजरिए से भी हॉस्पिटैलिटी को देखेंगे कि वो खुद कैसे रहें, कैसे प्रेजेंट करें, कैसे सफाई रखें, कैसे फूडिंग करें, कैसे सॉल्व करें चीजों को, वो सारी चीजें भी क्या आप इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि जो होटल मैनेजमेंट में जाएंगे वो एक ग्रुप हो सकता है मगर कुछ लोग अपना खुद का शुरू कर सकते हैं जी, तो इसमें क्या संभावनाएं हैं?
1: जरूर उसकी पूरी संभावना है, मैं आपको बताती हूँ। एक ढाबा, अगर आप ढाबे के नजरिए से देखें ढाबा, आप भी वही ढाबा चूज करेंगे जो साफ सुथरा आपको लगेगा, गंदे ढाबे में तो आप भी पैर नहीं रखेंगे। तो हॉस्पिटैलिटी वहां भी आपकी काम करती है। एक ढाबा किस तरीके से ढाबा आपको लॉन्च करना है, स्टार्ट करना है, जरूरी नहीं है एक ढाबा आप शुरू करें तो उसमें आप 100 चीजें एक साथ रखें, आप 10 चीजें रखें लेकिन उन 10 चीजों का पूरा टेस्ट रखें और पूरी सफाई से अपने ढाबे को साफ रखें। आप साथ ही में बात कर रहे थे कि ढाबे को कैसे डेकोरेटिव वे में आजकल रखा जाता है, तो जैसे कि एक नाम इंसान की अगर लैंग्वेज में मैं बोलूं तो जो दिखता है वो बिकता है, तो वही आजकल केस है हमारे ढाबों के साथ। जो आप देखेंगे जो छोटे छोटे लोग भी होते हैं, जो गांव के ही लोगों का ढाबा देख लीजिए, वो अपने गांव की जो भी कल्चर होता है उस कल्चर के हिसाब से वो ढाबा बना के सुंदर तरीके से हाथ से डेकोरेट करके वैसा ढाबा रखते हैं। और अगर हम जैसे लोग वहां जाएंगे वो देखेंगे और सफाई है उस ढाबे में तो कौन नहीं रुकेगा उस ढाबे पे।
0: मतलब हमारा ऐसा विश्वास है हमारे सोसाइटी में कि जो जिस खाने में बहुत तेल और मसाला होता है वो खाना स्वादिष्ट होता है, जबकि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है।
1: ऐसा नहीं है, ये गांव के लोगों की सोच है कि उनको बचपन से जो सिखाया गया है कि बेटा ज्यादा तेल वाला खाना ही सबसे स्वाद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब मैं जो करूंगी इन लोग के साथ, मैं इन लोग को सिखाऊंगी इन्हीं का रोजमर्रा का खाना लेकिन कम तेल में,
0: और न्यूट्रिशन को बचाते हुए,
1: जी पूरा हेल्दी, उसका क्या मतलब जो वो खाते हैं वो कितना हेल्दी है उनको मैं सब एक्सप्लेन करूंगी, समझाऊंगी कि क्या कितना हेल्दी है। अगर इतना तेल यूज करोगे तो इतना हेल्दी है, इससे ज्यादा मात्रा में यूज करोगे तो वो ऑब्वियसली आपकी बॉडी के लिए और आपकी हेल्थ के लिए खराब है, तो वो समझाया जाएगा।
0: तो एक बात बहुत अच्छी है कि हमारे गांव आज भी बहुत ही साफ सुथरा और ताजा सामान के साथ खाना बनाते, क्योंकि सब्जियां वहां मिल रही हैं, अनाज वहां मिल रहा है, तेल वहां मिल रहा है, तो शुद्धता तो उनके पास है,
1: लेकिन सफाई और खाना बनाने के बाद की सफाई, उससे पहले की सफाई, खाना बनाते समय सफाई रखना, और कितना न्यूट्रिशन आप डाल रहे हैं। ज्यादा घी ज्यादा तेल न्यूट्रिशन नहीं होता,
0: ना न्यूट्रिशन होता है ना स्वाद होता है,
1: वो सिर्फ आपको आंखों में दिखता है जिनको तेल देखने की आदत है कि हाँ भाई बहुत तेल पड़ा है अच्छा ही होगा, लेकिन उसमें ना कोई स्वाद होता है, कुछ नहीं होता, वो आपकी बॉडी के लिए एक तरीके से जहर होता है।
0: क्योंकि समय बदल गया है तो अब खान पान के तौर तरीके भी बदलने की
1: जरूरत है।
0: तो दीक्षा बहुत जल्दी आपके बीच में आ रही है अपनी चटपटी मजेदार और अलग तरीके की चीजें आपको बता सकती हैं, और मैं बहुत सारा कुछ वो आप उनसे सीखेंगे। जरूरी नहीं है कि हमेशा चीजें बाहर काम करने के लिए ही सीखी जाएं, बहुत कुछ हम अपने को आनंद देने के लिए, मजा देने के लिए भी सीखते हैं, और दीक्षा हमारे साथ यही करने वाली हैं। तो तैयार रहिए अपना परचम उठा करके कि दीक्षा का स्वागत करने के लिए एक नई हॉस्पिटैलिटी के साथ। नमस्कार, और हम लेते हैं कार्यक्रम से विदा। धन्यवाद, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: भगवान ने अगर बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे और बड़ा करके तुम सामने वाले को घूरते रहो।
1: क्या क्या कह रहे हो तुम?
0: मैं कह रहा हूँ कि अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों को थोड़ा छोटा कीजिए और प्रोग्राम शुरू कीजिए।
1: राइट, फिर आज किस बारे में जानना चाहोगे तुम बबलू?
0: ये आंखें उफ युम्मा।
2: खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है, मगर आंखें खोलते ही देखने की प्रक्रिया जितनी सरल प्रतीत होती है उतनी है नहीं। इसके पीछे विज्ञान है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जीव से लाइट रिफ्लेक्ट या अपवर्तित होकर कॉर्निया पर पड़ती है। कॉर्निया के बाद लाइट एंटीरियर चेंबर से होकर गुजरती है, जिसमें एक तरल पदार्थ होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये तरल पदार्थ इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर पैदा करता है, जिससे आई बॉल्स की शेप बनी रहती है। कॉर्निया के बाद लाइट आयरिस पर पड़ती है, जो लाइट की तीव्रता के हिसाब से कम या ज्यादा खुलता है। कैमरे का अपर्चर कुछ ऐसे ही काम करता है। अगर रोशनी ज्यादा होती है तो कैमरे का अपर्चर और हमारी आंख का आयरिस कुछ बंद हो जाता है, और कम रोशनी में अपर्चर और आयरिस ज्यादा खुल जाते हैं। आयरिस से होकर लाइट प्यूपिल और लेंस से होती हुई रेटिना पर पड़ती है, और इससे रेटिना पर जो इमेज बनती है वो उल्टी होती है। इन इमेजेस को आंखों से ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है ऑप्टिक नर्व्स। ब्रेन में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनकी मदद से रेटिना पर बनने वाले इमेज को ब्रेन पढ़ता है। ब्रेन इमेज को सीधा करके देखता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये है कि आंखें सामने देखते वक्त अपने दोनों तरफ भी देख पाती हैं, और इसे आंखों का फील्ड ऑफ विजन कहते हैं। अक्सर जब आंखों के देखने की क्षमता कम हो जाती है तब फील्ड विजन कम हो जाता है। कई बार आंखों में डिफेक्ट आ जाते हैं, जिससे देखने की प्रक्रिया में मुश्किल होने लगती है। कभी लेंस में दिक्कत आने से रेटिना तक रोशनी पूरी नहीं पहुंचती और धुंधला दिखने लगता है। कई बार इमेज रेटिना पर ना बनकर उसके आगे और पीछे बनने लगती है, जिससे हमें चीजें साफ नहीं दिखती और चश्मा लगवाना पड़ता है। कई बार आंखों के इन्फेक्शन या आंख में चोट लगने से भी हमारी दृष्टि पर असर पड़ता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। इस बीमारी में धीमी लाइट में और अंधेरे में दिखना बहुत कम हो जाता है। इसके इलाज के लिए जरूरी है कि मरीज को विटामिन ए से भरपूर भोजन दिया जाए। इन बीमारियों का इलाज तो हो सकता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें लापरवाही करने से आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। वजह कुछ भी हो, पर आंखों की बीमारी यदि गंभीरता से ना ली जाए तो नतीजा एक ही निकलता है, दृष्टिहीनता। गंभीरता से ना लेने की एक बहुत बड़ी वजह होती है इन बीमारियों का धीरे धीरे बढ़ना।
1: ये तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में एक चमत्कारिक शक्ति है सेल रिपेयर करने की, यानी किसी भी अंग द्वारा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को रिपेयर या रिप्लेस करने की क्षमता। मगर आंखों की स्थिति जरा भिन्न है। इसके लेंस की कोशिकाओं को ना तो रिपेयर किया जा सकता है और ना ही रिप्लेस। इसलिए अगर लेंस को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो ये धीरे धीरे जमा होकर बीमारी का रूप धारण कर लेता है। ये बीमारी है कैटरैक्ट, यानी मोतियाबिंद। इस बीमारी में आंखों से धुंधला दिखाई देता है। आइए देखते हैं ये बीमारी होती कैसे।
2: मोतियाबिंद की बीमारी में लेंस की पारदर्शिता कम होती जाती है और लेंस क्लाउडी यानी कि धुंधला होता जाता है। इसकी वजह से लेंस से होकर जाने वाली रोशनी रेटिना तक पूरी नहीं पहुंचती और धुंधला दिखने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेंस के प्रोटीन में बदलाव आता है, जो लेंस को अपारदर्शी बना देता है। इसे अंडे के उबलने और ऑमलेट के बनने जैसी साधारण प्रक्रिया से समझा जा सकता है। अंडे की सफेद जर्दी प्रोटीन से बनी होती है और सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन जब अंडे को उबाला जाता है या पकाया जाता है तो अंडे के प्रोटीन में बदलाव आ जाता है जिससे वो अपारदर्शी हो जाता है। कैटरेक्ट में भी लेंस के प्रोटीन में आया बदलाव उसे अपारदर्शी बना देता है। कैटरेक्ट के बहुत अधिक बढ़ जाने पर आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। मोतियाबिंद के सामान्य लक्षण हैं धुंधला दिखना, और ये धुंधलापन बीमारी के साथ बढ़ता जाता है। अगर इलाज न किया जाए तो पूरी तरह दिखना बंद भी हो सकता है। रात में रोशनी वाली जगह पर चमकीले स्पॉट्स दिखना, चश्मे के नंबर में बार बार बदलाव आना और डबल विजन यानी हर चीज दो दिखना। बढ़ती उम्र के साथ होने वाला मोतिया सिनाइल कैटरेक्ट कहलाता है। इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति में लेंस के प्रोटीन में बदलाव के कारण प्रोटीन के क्लंप यानी थक्के रेटिना तक पहुंचने वाली इमेज की शार्पनेस को कम कर देते हैं। प्रोटीन के क्लंप के कारण लेंस की पारदर्शिता खत्म हो जाती है जिससे रेटिना तक समुचित मात्रा में रोशनी नहीं पहुंच पाती। दूसरी स्थिति में पूरे लेंस की पारदर्शिता धीरे धीरे खत्म होने लगती है जिससे दृष्टि में धुंधलापन आने लगता है। जैसे जैसे लेंस की पारदर्शिता कम होती जाती है वैसे वैसे धुंधलापन बढ़ता जाता है। जब आंख की किसी दूसरी बीमारी की वजह से आंख के लेंस में होने वाले इन्फेक्शन से कैटरेक्ट होता है तो इसे सेकेंडरी कैटरेक्ट कहते हैं। अगर कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद हुए इन्फेक्शन से दोबारा कैटरेक्ट हो जाता है तो इसे भी सेकेंडरी कैटरेक्ट कहते हैं। आंख में किसी चोट जैसे फायर क्रैकर के स्प्लिंटर्स या चिंगारियों से हुआ घाव और बिजली के झटकों से होने वाले कैटरेक्ट को ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट कहते हैं। आंख में गहरी चोट जो कॉर्निया से होते हुए लेंस को भी नुकसान पहुंचा दे उससे ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट हो सकता है।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर मैं और कुहू आपका स्वागत करते हैं। ये आंखें उफ यम्मा। अरे कोकिला, तुम मुझे दो क्यों दिख रही हो?
1: पता नहीं एपिसोड के अंत तक दिखूंगी भी कि नहीं। जाओ जाकर अपना इलाज करा लो, वरना आंखों की एक ऐसी बीमारी भी है जिसमें शुरुआत में इलाज ना कराने पर आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है।
0: वो तो मैं करा लूंगा, मगर आपने तो सिर्फ बीमारी के बारे में बताकर छोड़ दिया मैडम कुहू MBBS। इलाज नहीं है क्या?
1: बबलू, मैं इलाज के बारे में ही बताने जा रही थी। जानते हैं फ्रेंड्स, पुराने जमाने में मोतियाबिंद का इलाज करने के लिए उसके पूरे पकने का इंतजार करते थे, मगर आज किसी भी स्टेज में उसका इलाज किया जा सकता है। असल में इसे तीन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। शुरुआती दौर में इसे ट्रेस कैटरैक कहते हैं, फिर माइल्ड या मॉडरेट, और जब मोतियाबिंद पूर्ण रूप से बढ़ जाता है तो उसे पक्का मोतिया कहते हैं।
0: अब इलाज की बात करें।
2: मोतियाबिंद का डिटेक्शन व्यापक जांच के बाद होता है। इनमें आते हैं विजुअल एक्यूटी टेस्ट, डायलेटेड आई एग्जाम और अल्ट्रासाउंड। विजुअल एक्यूटी टेस्ट में एक चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ट के दौरान व्यक्ति 6 मीटर की दूरी से चार्ट के अक्षरों को पढ़ता है। इसकी रीडिंग फ्रैक्शन में लेते हैं। फ्रैक्शंस के आधार पर आंखों के पावर का निर्धारण ऑप्टोमेट्रिस्ट करता है। ये टेस्ट आंखों की दूसरी बीमारियों की जांच के लिए भी किया जाता है।
3: जांच के दौरान डायलेशन में आंखों में ऐसे आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं जो प्यूपिल को बड़ा कर देते हैं। इससे प्यूपिल के पीछे का हिस्सा जांचना आसान हो जाता है। पिछला हिस्सा देखने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोप नामक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इससे किसी भी प्रकार की आंख की बीमारी पकड़ में आ जाती है।
4: ओपेक लेंस को सर्जिकली रिमूव करके ही कैटरेक्ट का पूरा इलाज किया जाता है। कैटरेक्ट के शुरुआती दिनों में डॉक्टर कई बार चश्मा लगाने की सलाह देते हैं। इसके पश्चात सर्जरी की जाती है, जिसके जरिए लेंस को हटाकर उसकी जगह कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। ये सर्जरी दो तरह की होती है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी और फैकोइबल्सिफिकेशन सर्जरी।
2: एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी में कॉर्निया में चीरा लगाकर खराब हो चुके लेंस को बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद निकाले गए लेंस की जगह कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। जहां लेंस नहीं लगाया जाता, वहां मरीज को सर्जरी के बाद चश्मा लगाया जाता है। दूसरी सर्जरी है फैकोइमल्सिफिकेशन सर्जरी, जो एक मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है। इसमें कॉर्निया में एक बहुत छोटा सा सुराख किया जाता है, फिर इस सुराख के जरिए अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रवाहित की जाती हैं। इन अल्ट्रासाउंड वेव्स के कारण मोतिया यानी कि अपारदर्शी लेंस मुलायम होकर टूट जाता है और उस जगह पर कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड टेस्ट की मदद से लेंस लगाने से पहले लेंस का पावर और साइज तय किया जाता है। कैटरेक्ट सर्जरी आजकल लगभग आधे घंटे का मामूली ऑपरेशन है, जिसमें मरीज को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स.
1: मोतियाबिंद तो एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है, लेकिन आंखों की एक ऐसी बीमारी भी है जिसमें अगर एक बार आंखों की रोशनी चली गई तो फिर उसे वापस नहीं लाया जा सकता. ये बीमारी है ग्लॉकोमा. आइए देखते हैं ये बीमारी क्या है और इसका इलाज क्या है.
2: ग्लूकोमा

0: नर्वस ह्यूमर का निर्माण जरूरत से ज्यादा होने लगता है या इनका निकलना बाधित होने लगता है। ऐसी स्थिति में आई प्रेशर बढ़ जाता है। एक्वस ह्यूमर के बहाव में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ग्लूकोमा दो तरह का होता है। पहला ओपन एंगल ग्लूकोमा, ट्राबेक्युलर मेशवर्क जिससे होकर एक्वस ह्यूमर बाहर निकलता है उसमें धीरे धीरे आने वाली रुकावट से ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है तथा दोनों आँखों को प्रभावित करता है। दरअसल ट्राबेक्युलर मेशवर्क टिश्यूज कॉर्निया के पास होते हैं और इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर मेंटेन करने के लिए एक्वस ह्यूमर को बाहर निकालते हैं। अगर इनमें कोई रुकावट आ जाती है तो एक्वस ह्यूमर का लेवल बढ़ने लगता है और इससे इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर भी बढ़ जाता है जो आंख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है। दूसरी तरह का ग्लूकोमा है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, जिसमें आयरिस एक्वस ह्यूमर के फ्लो में रुकावट पैदा करता है। नतीजतन एक्वस ह्यूमर के बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है और इससे इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर भी बढ़ जाता है जो आंख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है।
1: क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में आंख का प्रेशर बढ़ने के कारण आंख की नस को नुकसान पहुंच जाता है जिसके कारण आपकी आंख की रोशनी जा सकती है। इसमें एक तो आंख में दर्द होता है, रेडनेस हो जाता है, सिर में दर्द होता है, जब आप लाइट को देखोगे कलर्ड हेलोस दिखेंगे, कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। अगर आपको ये सब सिम्टम्स है तो आपको जल्द से जल्द आई स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए।
0: ये एक इमरजेंसी की अवस्था है और अगर मरीज के इलाज में 24 से 48 घंटे की देरी हो जाए तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए भी जा सकती है। कोई भी इसका शिकार हो सकता है, बेशक वो अपने आंखों के डॉक्टर से नियमित रूप से जांच करवा रहा हो और आंख इससे पहले बिल्कुल ठीक हो। और अब बात सेकेंडरी ग्लूकोमा की। इन्फ्लेमेशन, आंखों का ट्यूमर और वेनस प्रेशर के बढ़ने से होने वाले ग्लूकोमा को सेकेंडरी ग्लूकोमा कहते हैं। आमतौर पर क्रॉनिक ग्लूकोमा में कोई निश्चित लक्षण नहीं दिखाई पड़ते और ये किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है, लेकिन कुछ लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो, जिनके परिवार में ग्लूकोमा की फैमिली हिस्ट्री हो, डायबिटीज, माइग्रेन या हाइपरटेंशन के मरीज हों, लंबे समय से स्टेरॉइड्स का सेवन कर रहे लोग या जिनकी आंखों में चोट लगी हो। ग्लूकोमा के डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उनमें प्रमुख है टोनोमेट्री। इसमें मोतियाबिंद के टेस्ट की ही तरह एक विशेष इंस्ट्रूमेंट द्वारा आंखों के प्रेशर को नापा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण टेस्ट है ऑप्थैल्मोस्कोप टेस्ट, जिसके जरिए आंखों के पीछे ऑप्टिक नर्व की जांच की जाती है। तीसरा टेस्ट है विजुअल फील्ड असेसमेंट। इस टेस्ट में एक स्क्रीन पर रोशनी की छोटी छोटी स्पॉट्स डाली जाती है और मरीज को रोशनी वाले स्थान को पहचानने के लिए कहा जाता है। इससे पता चलता है कि मरीज के विजन पर कितना असर पड़ा है। ग्लूकोमा का इलाज उसके वर्ग पर निर्भर करता है। ओपन एंगल ग्लूकोमा का आई ड्रॉप्स या खाने वाली दवाओं से इलाज किया जाता है। यदि दवाओं से इलाज न हो सके तब सर्जरी से इसे कंट्रोल करते हैं। सर्जरी में एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो के लिए एक नया रूट बनाया जाता है, इसको ट्राबेक्युलोक्टोमी कहते हैं। क्लोज एंगल ग्लूकोमा का इलाज कारगर रूप से सर्जरी के द्वारा होता है। सर्जरी में आयरिस की बाहरी सीमा पर एक छोटा छेद करते हैं, इससे एक्वस ह्यूमर बाहर निकल जाता है। इसके लिए ज्यादातर लेसिक सर्जरी या फिर मामूली ऑपरेशन किया जाता है और एक्वस ह्यूमर के निकलने के लिए दूसरा रास्ता बना दिया जाता है।
2: यो फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद हम लाए हैं कुछ खट्टी मीठी बातें। चलिए बताइए कि हम एक मिनट में कितनी बार पलकें झपकाते हैं। कोकिला, तुम शुरू करो।
3: यही कोई 15 बार।
2: क्या आप जानते हैं कि आंसू क्यों बहते हैं?
3: बबलू, तुम वही बताओगे जो सबको पता है, कुछ नया नहीं बता सकते।
0: विजन लॉस का

0: एक और कारण है कॉर्नियल अल्सर या कॉर्नियल डैमेज। दरअसल कॉर्निया शीशे जैसा एक पारदर्शी टिश्यू है। इसका व्यास लगभग 11 से 12 मिलीमीटर होता है। ये आंख के काले हिस्से का आवरण है। किसी भी प्रकार की चोट, इन्फेक्शन या अधिक ताप से कॉर्निया डैमेज हो जाने पर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय है। अगर कॉर्निया के उस हिस्से में डैमेज हुआ है जहां से विजन पर असर नहीं पड़ता तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। चूंकि कॉर्निया का पोषण रक्त से नहीं होता है बल्कि आंख के गोले के भीतर द्रव से होता है, इसलिए मृत्यु के पश्चात भी इसे ट्रांसप्लांट के लिए निकाला जा सकता है। आई डोनर की मृत्यु के 3 से 4 घंटों के भीतर कॉर्निया को निकाल लिया जाता है। सर्जन केवल कॉर्निया बदलता है, न कि आंख का पूरा गोला।
1: नेत्रदान महादान है। अगर आप नेत्रदान के इच्छुक हैं तो अपने पास के आई बैंक से संपर्क करें।
0: आंखों का एक और गंभीर इन्फेक्शन है जिसे पैन ऑप्थल्माइटिस कहते हैं। इसमें लेंस, कॉर्निया, आयरिस और रेटिना पर असर पड़ सकता है। अगर समय पर इसका इलाज न हो तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है और कई मामलों में पूरी आंख को ही निकालना पड़ सकता है। ट्राइकोमा आंखों का एक और इन्फेक्शन है जो एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे में एक दूसरे के सामान के इस्तेमाल से फैल सकता है। एक बच्चे से दूसरे बच्चे में और माँ से बच्चे में ट्राइकोमा का इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है। ये इन्फेक्शन अक्सर वहाँ होता है जहाँ गंदगी फैली होती है और साफ सफाई के लिए पानी की कमी होती है। ड्रायर क्लाइमेट्स यानी अति शुष्क जलवायु वाले इलाकों में ये इन्फेक्शन ज्यादा होता है। अगर इस बीमारी का इलाज नहीं किया जाए तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है।
2: So, कैसा रहा? खूब सारी बातें बता दी, नहीं?
3: अब बातें ही करते रहोगे या कुछ कंक्लूजन भी होगा?
2: ओहो, मेरे डायलॉग की चोरी। खैर, बच्चों को भी कभी कभी छूट दे देनी चाहिए।
3: बबलू,
2: बाय फ्रेंड्स,
3: तुमसे मैंने
2: नेक्स्ट वीक मिलेंगे, बाय।
3: सॉरी फ्रेंड्स, मुझे ना इसके बड़बोलेपन पर रोक लगानी पड़ेगी, इसलिए आपसे इजाजत चाहूंगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय
2: बबलू।
0: आइए अब एक नजर इस एपिसोड की कुछ खास बातों पर। आंख में लाइट कई जगह पर फोकस होती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जीव से लाइट रिफ्लेक्ट होकर कॉर्निया पर पड़ती है। रेटिना के ऊपर उल्टी इमेज बनती है। मस्तिष्क में हमें सीधा दिखाई देता है। मोतियाबिंद में धुंधला दिखने लगता है। ऐसा आंखों के लेंस में मौजूद प्रोटीन के आकार में परिवर्तन के कारण होता है। मोतियाबिंद का इलाज एक छोटे से ऑपरेशन से किया जाता है। ग्लूकोमा में आंखों की ऑप्टिक नर्व्स क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ग्लूकोमा काफी खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसका तुरंत इलाज कराना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए।

0: नमस्कार बहनों, मैं रीड इंडिया द्वारा आयोजित वर्कशॉप के दूसरे भाग में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम दिनेश मिगलानी है। इस वर्कशॉप के पहले भाग में हमने यह सीखा था कि हमारे जीवन में आत्मनिर्भरता की क्या उपयोगिता है, कैसे हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो घर की बहनें हैं, कैसे वो आत्मनिर्भर होके अपना एवं अपने परिवार को आगे बढ़ा सकती हैं एवं देश की उन्नति में अपना योगदान प्रदान कर सकती हैं। पहले भाग में हमने यह भी सीखा था कि व्यापार करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके अलावा व्यापार यदि आप करते हैं तो उसमें क्या क्या कार्य आपको करने पड़ सकते हैं। यह हमारा भाग दो है वर्कशॉप का। इस भाग दो के अंदर हमारा जो मेन पॉइंट है सीखने का वह यह है कि व्यापार की शुरुआत कैसे की जाए, व्यापार की शुरुआत कैसे की जाए। व्यापार जो होता है, व्यापार करने के लिए हमारी एक व्यापारिक मानसिकता होनी चाहिए, ठीक है। व्यापारिक मानसिकता क्या होती है? व्यापारिक मानसिकता होती है कि अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, अपने आप को आर्थिक रूप से आजाद करने के लिए हम जोखिम उठाते हैं। तो व्यापार का पहला मूल मंत्र क्या है? जोखिम उठाना, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे मन में यह दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि हमें व्यापार करना है, ठीक है। अब तक के सेशन में हमने यह तो समझ लिया था कि आत्मनिर्भरता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, बट अब इस सेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि व्यापार का पहला कार्य क्या है। व्यापार का सबसे प्रथम कार्य होता है अवसर की तलाश करना, सबसे पहला जो कार्य है। अगर आपके पास अच्छा अवसर है, ठीक है, अगर आपको यह पता चल गया कि मैं अगर ये काम करूं तो इससे मैं आत्मनिर्भर हो सकता हूं, तो आप मान लीजिए आधा कार्य आपका हो चुका है। जैसे हम जनरल एक हिंदी में बात कहते हैं ना कि किसी कार्य की शुरुआत अगर अच्छी हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वो आधा कार्य तो वहीं पर हो जाता है। ऐसे ही व्यापार में सबसे इम्पोर्टेंट यह होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह यह होती है कि अवसर की तलाश हो जाए, ठीक है। अब देखो, यदि हम व्यापार करने का विचार कर रहे हैं तो हमारे मन में कई तरह की संभावनाएं आती हैं, कई तरह की बातें आती हैं, क्यों ना ऐसा कर लिया जाए, क्यों ना ऐसा कर लिया जाए, ठीक है। कई तरह के अवसर हमारे दिमाग में आते हैं तो हमें हर जगह संभावना दिखती है, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि अगर मुझे किसी कार्य में संभावना दिख रही है तो मात्र उत्तेजना में आकर मैं वह कार्य शुरू कर दूं। पहले हमें यह समझना होगा कि क्या जो कार्य क्षेत्र में मुझे संभावना दिख रही है, क्या उस कार्य क्षेत्र के अंदर वो कार्य क्षेत्र व्यवहारिक है या नहीं है, क्या व्यवहारिक है उसमें व्यापार करना। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहां बात करेंगे पहले कि क्या क्या अवसर हमारे पास में, हमारी बहनों के पास में हो सकते हैं जो गांव में रहती हैं या ऐसी जगहों पर रहती हैं जो शहरों से ज्यादा दूर नहीं है, शहरों के आसपास है, ठीक है। या हमारी बहनें जो कम पढ़ी लिखी हैं, जो वैसे नौकरी नहीं कर सकती बट कुछ अपनी ओर से कुछ कार्य करके पैसा कमाना चाहती हैं, तो इसमें देखिए, वैसे आजकल के समय में, आजकल के समय में सबसे ज्यादा जो लोग इन्वॉल्व है, सबसे ज्यादा जो लोग शामिल है वह खाने पीने की चीजों से रिलेटेड व्यापार में है। क्यों? क्योंकि आज के समय में हर आदमी अपना कुछ पैसा खाने पर खर्च करता है। आप देखिए, अगर आप दिल्ली के पास किसी गांव में रहती हैं या आप चंडीगढ़ के पास कहीं रहती हैं या कोई बहुत बड़ा शहर या छोटा शहर भी आपके पास में है, तो अगर शाम को मार्केट में घूमने भी चले जाएं तो आप यह देखेंगे कि जगह जगह पर लोगों ने अपने ठेले लगा रखे हैं, ठीक है, और उन ठेलों पर वह वो सामान बेच रहे हैं, वो खाने पीने की चीजें बेच रहे हैं जो घर में बड़े आसानी से बनाई जा सकती हैं। जैसे कि मैं बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा आपको, क्योंकि देखो हमारी जो महिलाएं हैं उनके साथ जो पुरुष उनके घर में है या उनके कुछ बच्चे जो एज में उनकी काफी एज है तो वो उनकी सहायता कर सकते हैं बाहर जाके खाने पीने चीजों को बेचने में। जैसे कि गोलगप्पे हैं, पानीपुरी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। आप देखिए, पानीपुरी को बनाना कितना आसान है, कुछ भी नहीं लगता उसके अंदर, ठीक है। और एक पानीपुरी 2 या 3 रुपए की ज्यादा की आपकी बिकती है, और अगर आप किसी बड़े शहर में उसे बेच रहे हैं तो वो ज्यादा की आपकी बिकने वाली है। पानी तो बेचना आपने, ठीक है, तो चीजें आसान है तो आपको अवसर तलाशता है। तो खाने पीने की चीजों में आप और बहुत कुछ देख सकते हैं, ऐसी ऐसी सूखी चीजें होती हैं जो खाई जाती हैं, ठीक है, जो लोग पसंद करते हैं खाना, तो उनको बेचा जा सकता है। इसके अलावा कढ़ाई बुनाई और सिलाई से रिलेटेड बातें हैं, जैसे कि हमारी गांव की महिलाएं कढ़ाई और सिलाई में काफी तेज होती हैं, मतलब क्योंकि यह प्रशिक्षण उन्हें अपने परिवार से ही मिलता है, ठीक है। तो आज के समय में सभी महिलाएं शहर में आप देखेंगे या सभी लोग अपने घरों को चमकाना चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि उनके घर में साज सज्जा हो, तो जो हाथ से बुनाई हुई चीजें काफी ज्यादा अच्छी होती हैं, काफी ज्यादा आकर्षित करती हैं। तो यदि आप में हाथ की कला है जिसमें आप सिलाई कर सकती हैं, कढ़ाई कर सकती हैं, तो आप छोटी-छोटी कपड़ों पर कढ़ाई करके उसको एक डिजाइनिंग पीस में बना के शहर में बेच सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्वेटर एवं डिजाइनदार कपड़े, आज के युग में, आज के समय में जो महिलाएं शहरों में रहती हैं, नौकरियां करती हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वे अपने बच्चों के लिए स्वेटर बना सकें। तो जनरली वो महिलाएं क्या करती हैं, दुकानों पर जाकर स्वेटर खरीदती हैं। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर, जैसे मान लीजिए आप जहां रहते हैं आपसे पास कोई शहर या गांव है, आप उस गांव में अगर आप थोड़ी सी कोशिश करके देखें तो आपको स्वेटर बनाने के ऑर्डर मिल सकते हैं। तो आप एक बच्चे का नाप लेके उसकी स्वेटर बना सकती हैं। तो यह एक तरीके से आपका आत्मनिर्भर होने का जरिया हो सकता है। इसमें आपको फायदा क्या होगा, क्योंकि ऊन जो है वह तो जिस परिवार ने बनवानी है अपने हिसाब से आपको देगा, ठीक है। तो आपको तो ओनली जो आप अपने हाथों से काम कर रही हैं उसी की ही मेहनताना आपको मिलना है। इसके अलावा साज सज्जा का सामान है, मैंने पहले ही आपको बताया कि सभी लोग अपने घरों को ऐसा चाहते हैं कि उनका घर चमका चमका रहे, घर उनका शानदार सा दिखे, ठीक है। तो घर को शानदार दिखाने के लिए हम साज सज्जा का सामान बनाते हैं। तो यदि हमारी कुछ महिलाएं, अगर आप में कुछ ऐसा हुनर है जो आप ऐसे डिजाइन बना सकती हैं मिट्टी के उससे कपड़े के ऊपर जो घरों में यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सौंदर्य से आधारित, हर महिला अपने आप में सुंदर दिखना चाहती है, चाहे कोई भी महिला, मैं कहता हूं चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर महिला यह चाहती है कि वह सुंदर दिखे। अगर वह कहीं से जाए तो लोग माने कि हाँ वो सुंदर है, ठीक है। तो आज के समय में चाहे आपके पास पैसा है चाहे पैसा नहीं है, चाहे आपके आमदनी के साधन है चाहे आमदनी के साधन हमारे कम है, फिर भी हमारी महिलाएं जो भी उनके पास में चीजें अवेलेबल हैं उनको यूज करके सुंदर दिखना चाहती है। तो यदि आप सौंदर्य से आधारित कार्य कर सकते हैं जिसमें छोटा मोटा आपका ब्यूटी पार्लर हो सकता है, मैं एक ब्यूटी पार्लर नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि आप अपने घर से ही जिसमें छोटी छोटी महिलाओं की जो जरूरतें हैं वह कार्य सीख के आप अपना कार्य शुरुआत कर सकती हैं। जैसे कि हमारी जो संस्था है रीड इंडिया है, यह हम अपनी लाइब्रेरीज या अपने सेंटर्स के माध्यम से आपको ब्यूटिशियन कोर्स की ट्रेनिंग देती है, ठीक है। और यदि आप हमारी संस्था के थ्रू जुड़े हैं और आप अगर आप ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग लेते हैं तो इतना तो आप सीख ही जाते हैं कि कैसे महिला को सुंदर दिखाया जाए, ठीक है। तो यह एक आपका अच्छा कार्य हो सकता है। इसके अलावा आप बच्चों के खिलौने बना सकते हैं, लकड़ी से खिलौने बनाए जाते हैं, मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं, यह वो चीज है जो हमेशा चलती है। देखो कोई भी इंसान है जब उसका बच्चा कुछ भी मांगे उससे, ठीक है, जब छोटा बच्चा है तो खेलने के लिए इंसान, अब चाहे उसका इनकम सोर्स है या नहीं है, फिर भी वह बच्चों के लिए काफी पैसा खर्च करता है। तो आप कोई भी, जैसे आप देखेंगे शहरों के अंदर शाम को या सुबह में जो गुब्बारे वाले होते हैं वह भी एक अच्छी कमाई कर जाते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आपका बच्चा गुब्बारे की डिमांड कर रहा है, गुब्बारा मांग रहा है, तो आप उसे गुब्बारा लेके देंगे। और आप सोच के देखिए, एक गुब्बारे को फुलाकर और उसको एक डोर से बांधने में आपका कुल खर्च कितना है और कुल कितना पैसा उसके लिए लिया जाता है। ₹10 से कम गुब्बारा नहीं बिकता, ठीक है। और यदि आप उस गुब्बारे पे खर्चे की बात करें तो आपका ₹1 से ₹2 का गुब्बारा आता है, ₹1-2 आप यह मान लीजिए उससे जो आपने डोर बांधी है, तो ₹3 से ₹4 के खर्च को आप ₹10 तक बेच सकते हैं, ठीक है। ये एक सोच की बात है, अभी देखने में हमें लगता है कि यह बेचना बहुत मुश्किल होगा, पर आप देखिए हजारों लोग ये कार्य करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिट्टी के डिजाइनदार बर्तन आप सकते हैं बना। देखो गांव में हम बहुत तरह की कलाएं सीखते हैं, अगर हमारे हाथ में हुनर है, अगर हमारे हाथ में हुनर है तो हम ऐसी कोई भी चीज बनानी सीख सकते हैं, और यह सब चीजें शहरों में बड़ी आसानी से बेची जा सकती हैं। आप देखिए किसी भी बाजार के अंदर, कोई जो बड़े बड़े शहर है वहां तो सड़कों पर बाजार लगता है, ठीक है, सड़कों पर बाजार लगता है तो लोग आते हैं, अपने से जो भी सामान होने चाहिए उन्हें खरीदते हैं। तो यदि आप कोई ऐसी चीज बनाने में अगर आप में हुनर है तो यह भी आपके आत्मनिर्भर होने का रास्ता खोल सकती है। इसके अलावा पापड़, अचार, जो ऐसी सूखी चीजें हैं, देखो अचार है, जो लोग बहुत साफ सुथरा ढंग से अचार बनाते हैं, यदि वह शहर में जाकर उसका विपणन करें, उसकी मार्केटिंग करें, तो अचार बिकना शुरुआत हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से ताजी चटनी, कटी हुई सब्जियां, देखो आजकल के युग में जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, जो महिलाएं जॉब करती हैं, चाहे वह सरकारी नौकरी है चाहे वह प्राइवेट नौकरी है, तो वो महिलाएं चाहती हैं कि उनके घर के छोटे मोटे कार्य जो हैं वह उन्हें किए मिले। तो आजकल आप देखोगे पहले मार्केट में जाते थे तो वहां सब्जी खरीदी जाती थी, ठीक है, बट आज जमाना ऐसा आ गया है कि मार्केट में कटी हुई सब्जियां खरीदी जाती हैं। अब आप आलू वाले भैया को बोलोगे कि भैया मुझे 1 किलो आलू देना, अब आप ये नहीं कहोगे 1 किलो आलू देना, आप उसे ये कहेंगे मुझे आलू की सब्जी बनानी है तो 1 किलो कटे आलू देना, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि यह वो सारी बातें हैं जिनको जिनमें से आप यह देख सकते हैं कि व्यापार की, इन सब चीजों में व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा भी बहुत चीजें ऐसी हो सकती है, क्योंकि जब आप अवसर के बारे में सोचती हैं, अवसर के बारे में तलाश शुरू करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमें क्या आता है, ठीक है। और कई बार ऐसी चीज होती है जो हमें आती नहीं है, बट हमारे मन में आता है कि इस चीज से कोई ना कोई व्यापार किया जा सकता है। तो इस तरह से इन सभी अवसरों को कुछ मैंने यहाँ पर बताए हैं, या इसके अलावा बहनें हमारी इतनी सारी यहाँ बैठी हैं, और मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे बहनों की जो सोचने की शक्ति है वह सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो बहनें आपस में एक समूह में होती हैं। जब आप किसी समूह में बैठे होते हो तो इतने सारे दिमाग एक साथ कार्य करते हैं, तो आप आपस में शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं भी यह आइडिया आपके मन में है। तो जो भी आइडिया आपके मन में आए, जो भी व्यापार करने की बात आपके मन में आए, आप यह उस व्यापार करने के मुद्दे को अपने सहेलियों के साथ में उनसे बात करिए, क्योंकि जब आप किसी आइडिया को दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, उससे बात करते हैं, तो हो सकता है दूसरा व्यक्ति आपको उसमें से कुछ और अच्छी बात सुझा सकता है। तो पहला जो हमारा मुद्दा है वह है अवसर को तलाश करना। मैं फिर बार बार इस बात पे जोर डाल रहा हूं, यहाँ पर हमारी महिलाएं जो यहाँ पर बैठी हैं, यदि उनके मन में कोई भी अवसर है, यदि उन्होंने किसी अवसर को अगर तलाश लिया, ठीक है, और उत्तेजना में आकर व्यापार शुरू कर दिया, उत्तेजना मैं नहीं कहूंगा, पहले सोच समझकर अगर उन्होंने सारी बातें सोच समझकर कार्य करना शुरू करा, तो 100% उनका कार्य यह सफल होगा, ठीक है। अब अवसर तो तलाश लिया, ये मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है, मैं मान रहा हूं, कुछ बातें मैंने बताई हैं, कुछ आप लोग भी आपस में बात करेंगे, तो यह मैं मान के चल रहा हूं कि अवसर तो हमने तलाश लिया। अब अवसर तलाशने के बाद में यह नहीं है कि जैसे ही आपने अवसर तलाशा तो मतलब आपका व्यापार चल पड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अवसर तलाशने के बाद में हमारी जंग शुरू हो जाती है। हमारी जंग शुरू हो जाती है किसके साथ में? हमारी जंग शुरू हो जाती है भाग्य के साथ में। हमारी जंग की शुरुआत हो जाती है जो मार्केट में दूसरे लोग हैं जो उसी तरह के सामान को बेचते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा जो कार्य हमारे करना होता है वह होता है विपणन अनुसंधान। विपणन अनुसंधान, अब आपको लगेगा कि विपणन क्या होता है और अनुसंधान क्या चीज होती है। तो विपणन अनुसंधान से हमारा मतलब यह होता है कि आइडिया या जो हमने अवसर के बारे में बात करी है, अब हम यह देखेंगे कि उस अवसर में कितना दम है, क्या जो हमारा ग्राहक है क्या वह उसे पसंद करेगा कि नहीं करेगा, क्या हमारा ग्राहक जो हमारा जिसको हमें सामान बेचना है वो उसमें अलग क्या चाहता है। तो विपणन अनुसंधान के अंदर सबसे पहले हम ग्राहक की बात करते हैं, सबसे पहला हम क्या बात करते हैं ग्राहक की, क्योंकि अंत में पैसा तो आपको ग्राहक नहीं देना है, मतलब सारी बातें अपनी जगह, कोई भी अगर हम इसमें से सामान को चुनाव करते हैं, कोई भी व्यापार करने की शुरुआत करने की बात करते हैं, तो अंत में जो पैसा है जो सामान बेचा जाएगा वह तो किसको बेचा जाएगा, ग्राहक को ही बेचा जाएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें ग्राहक के बारे में सोचना होता है कि ग्राहक क्या हमारी वस्तुओं को पसंद करेगा या नहीं करेगा, और क्या ग्राहक हमारी चीजों के बारे में खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो ग्राहक को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राहक को समझने के लिए हम पहली चीज यह देखते हैं कि हमारी चीजों में क्या क्या विशेषता है, ठीक है, और ग्राहक की क्या क्या आवश्यकता है। दोनों में हमें एक तरह से बांध बनाना होता है, भाई ग्राहक की आवश्यकता क्या है, क्या हमारी जो वस्तु जो हमने बनाई है क्या उसकी आवश्यकता को पूर्ण करता है या नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि हम छोटा सा एग्जांपल लें, मान लो खाने पीने की चीजें हैं, ठीक है, अब देखो हर तरह के ग्राहक है, कुछ ग्राहक ऐसे हैं जो स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक है, ठीक है, तो वो ऐसी वस्तुएं खाना पसंद करते हैं जो काफी साफ सफाई से बनाई गई हों, इसके अलावा ज्यादा मसालेदार न हो, ठीक है, तो हमें उन ग्राहकों को हमें देखना होगा कि हम किन ग्राहकों को टारगेट करके अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अंत में पैसा तो ग्राहक ने ही देना है। इसके अलावा मार्केट में जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो सामान हम बना रहे हैं, उससे दूसरे सामान और क्या क्या अवेलेबल है, ये हमें जरूर देखना होता है। ऐसा नहीं कि उत्तेजना में आकर हम अपना कार्य शुरुआत कर दें और जब हम मार्केट में सामान बेचने जाएं तो हमें यह पता चले कि हमारे सामान के अलावा जो दूसरे सामान मार्केट में उपस्थित है वह क्वालिटी वाइज या उनमें गुणता हमसे ज्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें दूसरों के प्रोडक्ट्स को भी देखना है, उनको समझना है कि उनके प्रोडक्ट्स में क्या है और हम अपना जो सामान बनाएंगे हम उनसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि यदि हमारा सामान दूसरों के सामान से बेहतर होगा तभी उसका मार्केट में बिकने के चांसेस ज्यादा है, तभी हम एक अच्छी बाजार में अपने आप को अच्छा शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें दूसरों के सामान को भी देखना होगा। सामान को देखने के बाद फिर हम यह देखेंगे कि हम अपने सामान को दूसरों के सामान से कैसे अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, और फिर यह भी आपको समझना है कि क्या हमारा सामान जो हमने बनाया है क्या वह ग्राहक की इच्छाओं को पूरा करता है, क्या वह ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यदि हमारा सामान ग्राहक की आवश्यकताओं को दूसरों के सामान से ज्यादा पूरा करता है तो इसका मतलब हमारे सामान को मार्केट में चलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा एक मैंने एक वर्ड लिखा है यहां पर इंग्लिश के अंदर, पायलट टेस्टिंग। अब हमारी कुछ बहनें हैं वह नहीं समझ पाएंगी कि पायलट क्या होता है। अब ये तो आपको पता ही है बहनों कि पायलट का मतलब होता है जो जहाज उड़ाता है। ठीक है, अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि किसी को हम जहाज दे रहे हैं तो पहले ही उसे कहें जा बेटा जहाज उड़ा, हजार सवारी ले जा साथ में, ऐसा तो नहीं है। पहले हम कुछ थोड़े से पोर्शन पे ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बाजार में नमक खरीदने चले और हमने जो सड़क के किनारे नमक बेच रहे हैं उनसे बात करनी शुरुआत करी, वहां दो ढेरियां लगी हुई थी। ठीक है, एक ढेरी में नमक था और दूसरी ढेरी में भी नमक था। हमें यह देखना था किस ढेरी का नमक हम लें, तो हम क्या करते हैं चुटकी भर लेते हैं। अपनी जीप पर लगाते हैं और टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें जो नमक पसंद आता है उसको हम लेते हैं। सेम यहां पर है, यदि आपके मन में कोई अवसर आ गया और आपका मन पूरा बन गया कि मुझे इस अवसर पे व्यापार करना है, तो अपने ज्यादा पैसा खर्च करने की बजाय पहले हम थोड़ा सामान बनाकर देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सामान बनाकर देखेंगे और उसे उस थोड़े से सामान को मार्केट में बेचने का प्रयास करेंगे, यह समझने के लिए कि क्या हमारा सामान मार्केट में बिकने लायक है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि यदि हमारा सामान मार्केट में बिकने लायक नहीं है और हम काफी ज्यादा सामान बना लेते हैं तो इसमें हमारा जोखिम ज्यादा होगा, ठीक है। तो पहले कुछ सामान बनाकर हम मार्केट में बेचने की ट्राई करें, बेचने की कोशिश करें, और यदि हम अपनी कोशिश में सफल हो जाते हैं और ग्राहकों के फीडबैक से, जो ग्राहक हमें बताते हैं कि इसमें क्या क्या और चीज, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, तो हम आगे नई से नई चीजें बना सकते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आगे हम ज्यादा सामान नहीं बनाना चाहिए, पहले हमें उस सामान की मार्केट में पायलट टेस्टिंग करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि क्या वह हमारा सामान जो है मार्केट में बिकने लायक है या नहीं है। इसके अलावा साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आज के युग में, आज के समय में साफ सफाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी ग्राहक, कोई भी, मान लीजिए मैं ही हूं, मुझे अगर कुछ भी खरीदना है तो पहली बात मैं सामान को देखूंगा क्या साफ सफाई है, या जहां पर वह बनाया जा रहा है या जहां पर बैठ के आप उसे बेच रहे हो, क्या वह साफ सुथरी जगह है या नहीं है। तो सामान को बनाने से लेकर उसको बेचने तक, किसी भी सामान को बनाने से लेकर और उसे बेचने तक साफ सफाई का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि साफ सफाई हमारे देश की पहचान है। मोदी जी का नारा है ना स्वच्छ भारत, तो ये जो स्वच्छ भारत की बात है वो इसी बात से निकली हुई है, साफ सफाई का ध्यान होना चाहिए, ठीक है। खाने पीने की चीजें हैं, बच्चों के खिलौने हैं, जितनी ज्यादा साफ सफाई होगी उतना ही आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है पैकेजिंग। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, पैकेजिंग। पैकेजिंग आकर्षित होनी चाहिए। देखो आप मान लीजिए आप बाजार में जाते हैं, आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप सामान को देखते हैं, जो सामान सबसे ज्यादा आकर्षित ढंग से जिसको पैक किया जाता है हमारा मन पहला उसी पे टिकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी क्या उपयोगिता है, उसमें क्या चीजें हैं, ठीक है। और देखो सामान तो जब आप यूज करते हैं उसके बाद ही समझ में आता है कि वो कितना आपके लिए कारगर होगा, बट सबसे पहली चीज जो ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है वह होती है सामान की पैकिंग। तो पैकिंग आपको सीखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हम एक छोटे बच्चों के गिफ्ट की बात भी करें तो हर चीज को पैक किया जाता है, पैक करने का एक उपयुक्त तरीका होता है। तो रीड इंडिया के सेंटर्स के माध्यम से पैकेजिंग कोर्स भी चलाए जाते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि सामान को कैसे पैक किया जाए, कैसे रैप किया जाए अच्छे रैपर्स के अंदर। तो पैकेजिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आप अचार बेच रहे हैं, आप चटनी बेच रहे हैं, तो उसको किस ढंग से पैक किया जाए, ठीक है। पैक करने के बाद उसके ऊपर क्या क्या लिखा होना चाहिए ताकि ग्राहक उसको देखते ही समझ जाए कि इसके अंदर क्या चीज है, ठीक है। और अंत में हम बात करेंगे मूल्य निर्धारण की। अब यह काफी ज्यादा कठिन प्रश्न हो जाता है कि सामान का मूल्य क्या रखा जाए, सामान का मूल्य क्या रखा जाए, ठीक है। तो जो सामान हाथ से बनाया जाता है वैसे तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। हम तो एक चीज कहते हैं कि जो हाथ से बनाई जाती है वह अतुलनीय चीज है, वह मतलब बेशुमार कीमती है, पर ऐसा नहीं है। ग्राहक तो कीमत के हिसाब से ही, अपने सामान उपयोगिता के हिसाब से ही सामान खरीदेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ऐसा नहीं कि हम यह चाहें कि इतना मुनाफा कमा लें कि एक ही सामान को बेचकर मुनाफा कमाए। देखो मुनाफा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम अपने सामान की कीमत को ज्यादा रखें, ठीक है, दूसरा हम अपने सामान की कीमत में, हमने मन में सोच लिया कि यदि मेरी 100 रूपये लागत है और 100 रूपये की लागत के ऊपर मैं कम से कम 15-20% का लाभ चाहता हूं, ठीक है, तो मैंने एक परसेंटेज अपने मन में फिक्स कर ली, तो मैं सामान की कीमत को इस तरह से रखूंगा कि लागत के बाद जितना मुझे लाभ चाहिए उतना मैं लाभ उसमें जोड़ दूंगा, ठीक है। या हम क्या करें कि अपने सामान की सेल को बढ़ाएं, यदि ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा सामान बिकेगा, तो ज्यादा सामान बिकेगा तो कम, अगर कीमत कम भी है, कीमत अगर कम भी है तो भी हमें लाभ उतना ही होगा। तो हमें यह सोचना चाहिए कि एक बार में लाभ न कमा लिया जाए, लाभ कमाएं, मुनाफा कमाएं, बट ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा मुनाफा कमाएं कि ग्राहक दूसरी बार हमारे पास आए ना। तो हमारे सामान में क्वालिटी के हिसाब से, सामान की उपयोगिता के हिसाब से हमें उसका मूल्य निर्धारण करना होता है। मूल्य निर्धारण करते समय हमें यह भी देखना चाहिए कि मार्केट में जो दूसरे प्रोडक्ट बिल्कुल सेम जो है उनका मूल्य कितना है, ऐसा ना हो कि हमारे सामान का मूल्य उनके मूल्य से काफी ज्यादा हो, जिससे कि हमारे सामान के बिकने के जो चांसेस है वह कम हो जाए। तो हमें मूल्य निर्धारण पे भी काफी ध्यान देना चाहिए। तो इस भाग के अंदर हमने कई बातों पर बात करी, तो आशा है मुझे कि हमारी जो बहनें यहां बैठी हैं उनको यह समझ में आया होगा कि व्यापार करना जितना बाहर से आकर्षित करता है अंदर से उतना आसान नहीं है। हमें मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है हर हिस्से में, व्यापार के हर भाग में। ये नहीं कि हमने सामान बना लिया और हम यह सोचें कि हमारे घर से बिक जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसके अलावा सामान तो हमने बना लिया अपनी सोच के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से बनाया गया सामान ग्राहक की सोच से यदि मैच नहीं करता तो वह सामान हमारा बिकने वाला नहीं है, ठीक है। तो ग्राहक हमारे लिए देवता है, जैसा ग्राहक चाहेगा सामान तो हमें वैसा बनाना पड़ेगा। इसके अलावा उत्तेजना में आकर बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर, बड़े स्केल पर सामान बना दिया जाए और फिर हम उसे बेचने जाए मार्केट के अंदर, तो यह भी मूर्खता होगी। पहले हमें यह देखना चाहिए, थोड़ा बहुत सामान बनाकर बेचने की ट्राई करनी चाहिए और यह पता करना चाहिए कि किन किन मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ सकता है या हमारे सामान में किन किन बातों, किन किन चीजों से सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा पैकेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो चीज जितनी अच्छी पैक्ड होगी, जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी उसकी उतनी ही उपयोगिता ज्यादा है, उतने ही वह ग्राहकों को आकर्षित करती है और उसके बिकने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाते हैं। और मूल्य तो एक बहुत बड़ा कारण है ही है कि ग्राहक आपका सामान तभी खरीदता है जब वह सामान उसकी उपयोगिता के हिसाब से, जो मूल्य आप उसे बता रहे हैं उसके साथ यदि वह मैच कर जाता है तो ग्राहक आपका सामान जरूर खरीदेगा। आशा है इस भाग को, वर्कशॉप के इस दूसरे भाग को समझने के बाद आपको यह जरूर समझ में आया होगा कि व्यापार करने की शुरुआत कैसे की जाती है और कैसे कैसे हम अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। इसी वर्कशॉप के भाग 3 के अंदर हम यह सीखेंगे कि मार्केटिंग कैसे की जानी चाहिए। सामान तो आपने बना लिया, मूल्य भी निर्धारण कर लिया, कंपेयर भी कर लिया, कैसे मार्केटिंग करी जाए। और इसके अलावा, मार्केटिंग के अलावा हम यह भी देखेंगे कि कैसे अपने खाते बनाए जाए, मतलब आप कुछ ना कुछ खाता बना जरूर होना चाहिए ताकि आप यह देख पाए कि कितनी हमारी लागत लग रही है, कितना हमारा खर्चा आ रहा है और महीने या 2 महीने के अंत में हमें कितने का लाभ होगा। तो वह हम इस वर्कशॉप के भाग 3 में सीखेंगे। आशा करता हूं आपको यह सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।
1: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
2: माय नेम इज प्रियंका चंदेलिया। बाय प्रोफेशनली मैं मॉडलिंग करती हूँ, मैगजीन शूट्स करती हूँ ग्रह शोभा के, एंड रीड इंडिया से मैं कोर्स कर रही हूँ, हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग ले रही हूँ, जहाँ मैं दीक्षा मैम से मिली हूँ। दीक्षा मैम बहुत अच्छी है, इनका नेचर बहुत अच्छा है, सिलेबस भी काफ़ी अच्छे से रीड करा रही हैं मैम, एंड प्रैक्टिकल्स भी काफ़ी अच्छे से समझा रही हैं मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। एक्चुअली सर, मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है, शाहबाद मोहम्मदपुर विलेज गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। एंड मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब पे हैं, एमसीडी डिपार्टमेंट में क्लर्क है। मैं मदर भी एमसीडी डिपार्टमेंट में ही है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। सर, मुझे मॉडल बनना था, बट मैं अभी उस लेवल तक जा नहीं पाई। बट मुझे लगा अब काफ़ी टाइम हो गया, मुझे 4-5 ईयर्स हो चुके हैं मॉडलिंग लाइन में, बट मुझे इतना उसमें कुछ नहीं लग रहा। मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग से कुछ सीख सकूं, अच्छा कर सकूं। बट यहाँ पे आने के बाद मेरी पर्सनैलिटी भी डेवलप हुई है, एंड दीक्षा मैम ने बताया है मुझे कैसे क्या होगा। और एक्चुअली मैं यहाँ पे आने के बाद जॉब के लिए भी अप्लाई कर चुकी हूँ, पासवर्ड रेस्टोरेंट द्वारका सेक्टर 23। कुछ टाइम बाद मेरी ज्वाइनिंग है वहाँ पे। एक्चुअली सर, रीड इंडिया से मैंने एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी किया था, कुछ टाइम आई थी मैं यहाँ पे 4-5 ईयर्स से पहले। तब से ही मैं रीड इंडिया को जानती हूँ, एंड रीड इंडिया बहुत बेस्ट है। रीड इंडिया से सीखने को काफ़ी कुछ है, अगर हमें उस लायक बनना है तो हम किसी को, मैं बाहर जाके किसी को बता भी सकती हूँ रीड इंडिया से मुझे क्या क्या मिल रहा है, एंड मुझे क्या क्या सिखाया जा रहा है। जॉब के लिए, अच्छी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। एंड रीड इंडिया की जो कोर्सेज है, वोकेशनल्स वगैरह के, वो बहुत बेस्ट है। ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए।
3: मैं पूनम तनवर, शाहबाद गांव में रहने वाली, दिल्ली में। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। मुझे अपने पेरेंट्स पे इतना प्राउड है, उन्होंने मेरे लिए आज तक जो किया, सीरियसली उन्होंने जो भी किया सिर्फ मेरे लिए किया, और मैं अब उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ बन के दिखाना चाहती हूँ, जो लोग बोले कि ये उनकी बेटी है। मैं अपनी पहचान अपने पेरेंट्स के साथ बनाना चाहती हूँ, उनके लिए इतना कुछ करना चाहती हूँ कि लोग देख के बोले कि यार इन्होंने के लिए कुछ किया, बहुत अच्छा किया। उन्होंने मेरा एडमिशन पूर्णिमा स्कूल, शाहबाद गांव के पूर्णिमा स्कूल में कराया। वहाँ यहाँ पर मैं बचपन से पढ़ी 5th क्लास तक, फिर उन्हीं के साथ मैं हर काम, ऐसा एक काम नहीं था जो मैंने उनके बिना आज तक किया। हर चीज़, स्कूल भी, यहाँ तक कि स्कूल लेने जाना, मुझे छोड़ने जाना, मेरे स्कूल सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरा मिल्क शेक भी वही बनाते थे। मतलब स्टडीज़ करना, अपने स्कूल से आके, जो स्कूल में मैं पूरे दिन मस्ती करती थी, पढ़ाई करती थी, टीचर के साथ, फ्रेंड्स के साथ हर बात आके उनसे शेयर करती थी। कोई प्रॉब्लम होती थी सबसे पहले अपने पा के पास जाके अपनी शेयर करती थी। आज भी अगर वो थोड़ी देर के लिए भी कहीं चले जाते हैं तो मन उदास हो जाता है। मुझे अपनी मम्मी से भी बहुत लगाव है, बट लेकिन पा से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने, मतलब सारा दिन मैं अपने पापा के साथ ज़्यादा रहती हूँ। मम्मी मतलब स्कूल में, स्कूल के लिए अगर ट्यूशन छोड़ाना या फिर और कुछ कर देना, बट लेकिन मैं पा के साथ जो मैं करती हूँ, सीरियसली वो बेस्ट मोमेंट मेरे पापा के साथ जो है, बहुत अच्छे मोमेंट है। मैं अपनी लाइफ टाइम अपने पापा के साथ रहना चाहती हूँ, लाइफ टाइम। उनके लिए जितना करूँ मैं, जितना करूँ उतना ही कम है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती है। गर्ल पावर जो होती है, वुमेन पावर, वो एक सबसे बेस्ट पावर होती है। वो गॉड ही उनको पावर देके भेजता है। अगर गर्ल्स बनाई है, वुमेन बनाई, तो उनके लिए भी एक स्पेशल पावर भी उनको दी है। ऐसा कुछ नहीं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती है, बाहर जाके पढ़ नहीं सकती है, कॉलेज नहीं जा सकती, या फिर ये वाला काम उनके लिए नहीं बनाए। हर काम गर्ल्स के लिए बनाए। अगर भगवान ने गर्ल्स को, वुमेन्स को बनाया है, तो उनके लिए भी हर काम बनाया है। वो पावर उनके लिए उनको दी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि गाँव की लड़कियाँ ये नहीं कर सकती है, शहर की लड़कियाँ ये कर सकती है। हर काम लड़कियाँ कर सकती है, हर चीज़ पॉसिबल है। हाँ, रीड इंडिया सेंटर पे आके मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे फ्रेंड्स बनाए मैंने, टीचर्स के साथ बहुत मस्ती की। यहाँ पे आके मेरा कोई एम नहीं था कि मैं ये सीखे जाऊँगी, बस मस्ती के लिए आ गई थी। बट लेकिन यहाँ पे आने के बाद कुछ सीखने को भी मिला, इतनी अच्छी टीचर्स मिली। उनके साथ जब, मतलब वो डांटती भी है तो भी अच्छा लगता है। एक दिन बात ना करो तो टीचर भी परेशान हो जाती है, जिसको क्या हो गया। मतलब हर चीज़ यहाँ की, हर चीज़ अच्छी है।
4: I'm प्रियंका जायसवाल, आई बिलोंग यूपी इलाहाबाद एंड लिविंग शाहबाद मोहम्मदपुर। मैं यहाँ पे दिल्ली में कोर्स करने के लिए आई हूँ, फैशन डिजाइनर कोर्स। एंड वहाँ पे यूपी में अप्लाई नहीं था जॉब, मतलब कोर्स करने के लिए। हमारे पापा यहाँ गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मैं उसके उन्हीं के साथ रहती हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे सिलाई इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि मैं अपने गांव वाली लड़कियों को जो घर से बाहर नहीं निकल सकती ना, मैं उनको घर के बाहर निकालने के लिए सिलाई सेंटर खोलना चाहती थी और भी फ्री कोर्सेज के लिए। मैं इतना ही कहूँगी अपने हर लड़की माँ बाप को कि प्लीज उन्हें बाहर भेजें, कुछ करने के लिए उनको भेजें। अधिकतर यहाँ पे उसके हस्बैंड यही सोचते हैं कि ये बोझ है, तो ऐसे ना करें, उसे मतलब समझे कि ये बोझ है। कम से कम अगर वो कुछ करेगी बाहर जाके तो कम से कम उसके घर में हेल्प ही होगा, अच्छा ही होगा जो होगा। मेरी बचपन से यही हॉबी थी कि मैं पुलिस बनूं, लेकिन मेरी लंबाई छोटी होने के कारण मैं पुलिस नहीं बन सकी, इसलिए मैं ऐसे ही अपने गांव में ही हेल्प करना चाहती हूँ छोटा मोटा। और मेरी स्कूल लाइफ तो बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा, जो अभी तक नहीं मिली ना शायद न मिल पाएगी कभी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी अपनी लाइफ अच्छे बनाने के लिए, कोर्स करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए यही अच्छा मौका है। अपने माँ बाप से कहें हमें घर से बाहर करने के लिए, कोर्सेज के लिए जारी रखें। दिल्ली में पहले हमारे पापा लोग रहते हैं, हम तो बचपन से गांव में थे, तो इंटर मतलब 12th क्लास पास होने के बाद हम दिल्ली आए। जब दिल्ली यहाँ पे आए तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज थे, अच्छे अच्छे भी थे, तो इसलिए मैंने फैशन डिजाइनर का कोर्सेज अप्लाई कर लिया।

0: कृषि विशेष एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम जानकारी और कृषि शोध हम आपके साथ साझा करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए एक ऐसे औषधीय पौधे की जानकारी लेकर आए हैं जो हमारे खान पान से लेकर हमारी जीवन शैली और इसके साथ ही हमारे जीवन के हर हिस्से में एक अलग ही महत्व रखता है। बात करें अगर रीति रिवाजों की या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तो इसका विशेष महत्व है। हम बात कर रहे हैं हल्दी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, मैं हूं मोनालिसा। आइए कृषि विशेष में आज विस्तार से जानते हैं हल्दी के बारे में। शादी विवाह की बात हो या फिर सौंदर्य की, हल्दी का प्रयोग होता ही है। वहीं किसी भी चोट या घाव को हल्दी जल्द ही भर देती है, इसलिए इसे मैजिकल हर्ब भी कहते हैं। यही वजह है कि हल्दी की मांग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और किसान भी बड़े पैमाने पर इसकी खेती को अपनाने लगे हैं।
1: भारत वर्ष कृषि प्रधान देश है जिसकी अर्थव्यवस्था में कृषि रीढ़ की हड्डी के समान है। हमारे देश प्रदेश में हमारी आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है। कृषि किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है क्योंकि यह न केवल लाखों करोड़ों लोगों को भोजन प्रदान करती है बल्कि जीडीपी के समग्र विकास में भी योगदान देती है। और इस नए दौर का किसान अब सिर्फ परंपरागत खेती के ऊपर निर्भर नहीं है। किसान अब अपने खेत में विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाकर अच्छा मूल्य प्राप्त कर रहा है और ऐसी ही एक फसल है हल्दी। हल्दी एक औषधीय पौधे के रूप में जानी जाती है। हमारे भारत देश में बड़े स्तर पर हल्दी की खेती की जाती है। भारत देश के हर परिवार में हल्दी का स्थान महत्वपूर्ण है। घरों में खाना बनाने से लेकर किसी भी शुभ कार्य जैसे पूजा, शादी विवाह आदि में हल्दी का उपयोग पुराने जमाने से लेकर आज के आधुनिक युग तक हो रहा है। मसाला, औषधि, गृह उपयोग, फेस क्रीम बनाने में बड़े स्तर पर हल्दी का उपयोग किया जाता है। औषधीय गुण होने के कारण ये कई प्रकार की बीमारियों में भी लाभकारी है। यही कारण है कि हल्दी की मांग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इसी को देखते हुए आने वाले समय में हल्दी की खेती फायदेमंद साबित हो सकती है। भारत विश्व में सबसे ज्यादा हल्दी का उत्पादन करता है और हल्दी की सबसे ज्यादा खपत भी भारत में ही होती है। अर्थात हल्दी का सबसे अधिक उत्पादन और इसका सबसे बड़ा बाजार भारत में ही है। हल्दी अदरक की प्रजाति का 5 से 6 फुट तक बढ़ने वाला पौधा है जिसकी जड़ की गांठों में हल्दी मिलती है। हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है, इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का नंबर आता है। वैसे हल्दी की खेती कहीं कम या कहीं ज्यादा, लेकिन होती तो पूरे भारत में ही है। हल्दी को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है।
2: हल्दी एक महत्वपूर्ण मसाले की फसल है और हमारे देश में हल्दी की खेती व्यापक रूप से की जाती है और मुख्य रूप से ये एक बड़ी लंबी अवधि की फसल है। इसको बुआई से लेकर कटाई तक तकरीबन 8 से 10 महीने का कार्यकाल की आवश्यकता होती है। हमारे देश में हल्दी के ऊपर अनुसंधान कार्य किए गए और उसमें उन्नत किस्मों का विकास किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से जो संस्थान इसमें काम किए हैं उसमें नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद, दूसरा जो है हमारा केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश और अन्य कई संस्थानों के द्वारा। हमारा संस्थान है केरल में CTCRI जिसको बोलते हैं, वहाँ से भी हल्दी की किस्मों का विकास किया गया है।
1: भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की बात की जाए तो आयुर्वेद के अनुसार हल्दी एक औषधीय पौधा है और कोरोना संकट काल में इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए बहुत सारे नए किसानों ने हल्दी की खेती की शुरुआत की है। हल्दी एक ऐसा मसाला है जिसके बिना हम खाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा सोचिए, अगर आपकी सब्जी में हल्दी ना हो तो कितनी बेरंग लगेगी। लेकिन खाने में इसके उपयोग के साथ साथ इसके कुछ अलग विशेष फायदे औषधि के रूप में भी है, जैसे पाचन तंत्र को सुधारना, सूजन कम करना और अन्य कई बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती रही है। हल्दी त्वचा के लिए भी काफी लाभदायक है, इसी के चलते हल्दी को हम मिरेकल हर्ब भी बोल सकते हैं और हल्दी की इस फसल से किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
2: हल्दी एक बहुत महत्वपूर्ण मसाले की फसल है और इसके अंदर मिलने वाला जो तत्व है कुरकुमिन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी रोग रोधक क्षमता का विकास करने के लिए। और ये एंटी फंगल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखता है, इसके निरंतर इस्तेमाल करने से हमें स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। और पिछले हमने कई वर्षों में देखा है, जब कोरोना का बुरा समय हमारे देश को देखने को मिला या कहूँ मैं पूरी दुनिया ने देखा, तो उसमें हल्दी का बहुत बड़ा रोल रहा। हल्दी हमारी जो इम्यूनिटी है उसको सुधारता है, इसका निरंतर इस्तेमाल करना हमारे लिए आवश्यक है। हालांकि हमारी भारतीय खान पान जो पद्धति है उसमें हम अधिकांश सब्जियों की तैयारी में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसकी तुलना करें यूरोप के देशों में, वहाँ पे हल्दी का कम इस्तेमाल होता है, लेकिन जैसे जैसे विश्व स्तर पर इसकी व्यापकता बढ़ी है तो भारतीय हल्दी की मांग भी बढ़ी है।
0: तो अब तक आपने जाना हल्दी के महत्व के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि विशेष में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हल्दी की खेती के बारे में और जानेंगे कि किसान किस तरह से इससे लाभ ले रहे हैं। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।

0: दो दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम भरोसे का नाम तरका सुपर।
1: कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मैजिकल हर्ब हल्दी के बारे में। आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हल्दी की खेती के बारे में। आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरह से किसान हल्दी की बुआई कर सकते हैं और हल्दी की बुआई के लिए किस तरह की मिट्टी, जलवायु और बीज की जरूरत होती है। अगर हम बात करें हल्दी की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उचित रहती है, तो आपको बता दें कि हल्दी की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु उत्तम मानी जाती है। इसकी खेती के लिए 225 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। हल्दी की फसल के लिए तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस अच्छा होता है। और अगर हम हल्दी की अच्छी फसल के लिए मिट्टी की बात करें, तो ऐसी मिट्टी अच्छी मानी जाती है जिसमें जल निकासी की क्षमता अच्छी हो। अतः हल्दी की खेती बलुई दोमट या मटिया दोमट मिट्टी में सफलतापूर्वक की जा सकती है। हल्दी की खेती के लिए मिट्टी को अच्छी तरह तैयार करना जरूरी होता है, क्योंकि हल्दी जमीन के अंदर ही फलती फूलती है। जमीन को अच्छी तरह से भुरभुरी बनाया जाना आवश्यक होता है। हल्दी के खेत में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था होनी जरूरी है।
1: सामान्यतः इसकी बुआई किसान भाई अप्रैल के मध्य या मई के प्रारंभ तक करते हैं, और उसके लिए उन्नत किस्म के जो कंद होते हैं, राइजोम्स होते हैं, उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। बुआई से पूर्व उनको कुछ दिन के लिए नमीयुक्त स्थानों में रखते हैं या थैलों से लपेट के रखते हैं कपड़े से, ताकि उसमें अंकुरण प्रारंभ हो जाए और बुआई और खेत में जमाव में समय को कम किया जा सके। इसके लिए उष्ण ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जलवायु उपयुक्त रहती है, और क्योंकि ये एक राइजोम की फसल है, तो इसके बेहतर विकास के लिए संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल के साथ साथ प्रचुर मात्रा में गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद, अच्छी गुणवत्ता के ये जो खाद हों उनका इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है।
0: वर्षा होने पर हल्दी की फसल के लिए भूमि को तैयार

0: प्रकंद एक प्रकार का पौधे का तना है जो या तो मिट्टी की सतह पर या भूमिगत स्थित होता है। ध्यान रहे कि बीज रोग रहित होना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में हल्दी की फसल की बुआई क्यारियों या मेड़ बनाकर की जाती है। इसके बाद 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हाथ से खोदकर छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं। हल्दी की बुआई के लिए 250 किलोग्राम हेक्टेयर प्रकंद बीज की आवश्यकता होती है।
1: किस प्रकार से किसान भाई हल्दी की बेहतर उपज लें, उसमें जैसे पोषण का अपना महत्व है, खेत का चयन, बुआई का समय, किस्म विशेष की उत्पादकता, उसकी उत्पादन क्षमता, इन बातों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से आप अपनी फसल का प्रबंधन करते हैं। यानी कि अगर फसल को पानी की आवश्यकता है तो पानी देना है, उसमें पत्तियों को मुरझाने की अवस्था नहीं आने देनी है। अगर आपकी वानस्पतिक बढ़वार मध्यम दर्जे की होगी, अधिक वानस्पतिक बर्बाद होने की स्थिति में, जैसे इस बार मैं कह सकता हूं कि बहुत अधिक वर्षा के कारण वानस्पतिक वृद्धि अधिक हुई है, और जहां पे अब इसकी फसल लगाई हुई है हमारे किसान भाइयों ने, उसमें आप पानी को कम कर सकते हैं ताकि उसमें और वानस्पतिक बढ़वार को कम कर सके। क्योंकि वनस्पतिक बढ़वार अगर ज़्यादा होगी तो उसमें जो राइजोम बनने की प्रक्रिया है वो देरी से होगी या कम मात्रा में राइजोम बनेंगे। तो ये एक आपस में संतुलन बैठाने की बात है कि अगर हमको बेहतर उत्पादकता लेनी है तो इस बात पे ध्यान देना आवश्यक है। साथ ही अगर अच्छी गुणवत्ता के कंद बने तो उसमें आपको पोटेशियम उर्वरकों का इस्तेमाल भी करना आवश्यक है। अगर आपने पोटेशियम उर्वरक में पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया है तो निश्चित रूप से आपको बेहतर कंद राइजोम मिलेंगे। अगर नहीं किया है तो आप इसका 2-3% का पर्णीय छिड़काव भी अपनी खड़ी फसल में कर सकते हैं और उसका राइजोम के विकास में और उसकी गुणवत्ता के सुधार में उसकी मददगार हो सकती है। तीसरी बात आपको ध्यान रखने की है कि क्योंकि अधिक वर्षा की स्थिति में खेत में अगर लंबे समय तक पानी रहता है तो इसे वानस्पतिक बढ़वार और कंदों के विकास को, जो अपने सलकंद या राइजोम में कह रहा हूँ, उनको विकास को प्रभावित करते हैं। तो आपको वर्षा बंद होने के बाद खेत से जल निकास की समुचित व्यवस्था भी करना आवश्यक है। अगर खेत में लंबे समय तक पानी खड़ा रहता है तो जमीन के अंदर कंपैक्शन आता है और पौधे की बढ़वार में रुकावट आती है।
0: हल्दी की खेती वैसे तो सुरक्षित होती है, लेकिन फसल संरक्षण पर ध्यान देना जरूरी है। हल्दी की फसल तैयार होने के बाद खुदाई का समय आता है। हल्दी की खुदाई प्रजातियों के अनुसार बुआई के 7-9 महीने में किया जाता है। अल्प अवधि की प्रजातियां 7-8 महीने में, मध्य अवधि की प्रजातियां 8-9 महीने में और दीर्घकालीन प्रजातियां 9 महीने के बाद तैयार हो जाती है। खेत को जोतकर प्रकंदों को हाथ से इकट्ठा कर बड़ी सावधानी पूर्वक मिट्टी से अलग करते हैं। हल्दी की खेती के लिए हल्दी के बीज का भंडारण एक जरूरी प्रक्रिया है। इसके लिए ताजे निकले कंदों को ठंडे व सूखे स्थान पर भंडारण किया जाता है।
2: हल्दी की खेती के बारे में जानने के बाद अब बारी आती है इसके प्रसंस्करण की, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ।

0: रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले
1: जहां जाए रिश्ते बढ़ाए। गोल्डी मसाले।
2: कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3066।

कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें अब तक हमने बात की हल्दी की विशेषता और इसकी खेती के बारे में। आइए अब जानते हैं इसके प्रसंस्करण के बारे में। आइए देखते हैं कि किस तरह से हल्दी का प्रसंस्करण किया जाता है और किसान इससे अधिक मुनाफा कमाते हुए आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
1: व्यावसायिक सूखी हल्दी बनाने के लिए इसके कंदों को जमीन से निकालकर एक सप्ताह के अंदर उबाला जाता है, जिसे क्योरिंग कहते हैं। क्योरिंग एक महत्वपूर्ण काम है। इसके तहत हल्दी का व्यावसायिकरण होता है। हल्दी की फसल को घरेलू स्तर पर भी लोहे के बर्तन में उबाला जाता है और रासायनिक विधि द्वारा बड़े पैमाने पर क्योरिंग की जाती है। क्योरिंग करने से प्रकंद का आकर्षक नारंगी या पीला रंग विकसित होता है। हल्दी के प्रसंस्करण के लिए सबसे पहले खेतों से लाई गई हल्दी को धूप में सुखाया जाता है। लगभग एक हफ्ते तक सुखाने के बाद हल्दी प्रसंस्करण के लिए तैयार हो जाती है। हल्दी जब प्रसंस्करण यूनिट पर लाई जाती है तो सबसे पहले उसकी सफाई की जाती है। मशीन हल्दी में लगी मिट्टी और छिलकों को साफ करती है और उसे प्रसंस्करण के लायक बनाती है। मशीन को हाथ से चलाया जाता है। इसके हैंडल को 10-15 मिनट तक घुमाया जाता है। कुछ समय इसे सीधा तो कुछ समय इस मशीन को उल्टा घुमाया जाता है। इस मशीन को बिना बिजली के चलाया जाता है। मशीन के अंदर एक बार में 10 से 15 किलो तक हल्दी डाली जाती है। मशीन के नीचे एक तिरपाल बिछाया जाता है ताकि सारी गंदगी वहां गिर जाए। उसके बाद हल्दी को मशीन से निकाला जाता है, जिससे उसे पीसा जा सके। हल्दी को पीसने के बाद उसे पैक किया जाता है और फिर उसकी लेबलिंग की जाती है तथा उसे बाजार में भेजा जाता है।
2: फसल पक के तैयार हो जाती है फरवरी के अंत में। देश के अलग अलग भागों में अलग अलग समय पे ये तैयार होती है। कहीं कहीं दिसंबर के अंत में भी तैयार हो जाती है और इसको जो है किसान भाई फिर निकालते हैं, निकाल करके उनको धुलाई करते हैं और धुलाई करके इसका प्रसंस्करण करते हैं, सुखाते हैं, पाउडर बनाते हैं। और उसके लिए जो किसान भाई इसका मूल्य संवर्धन करना चाहते हैं, उसके लिए अपने कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र या जो हमारे FPO पहले से इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, उनसे संपर्क करके उसकी जो बेहतर प्रोसेसिंग पद्धति है उसकी जानकारी लेना आवश्यक है। और इसके संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या हमारे ICR के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसमें ऐसे उद्यमियों को या ऐसे किसानों को, युवाओं को इस क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर के उनको तैयार करते हैं किस प्रकार से मूल्य संवर्धन करके और हल्दी का बेहतर व्यापार और इसका निर्यात में बढ़ावा दे सकते हैं।
1: बाजार में हल्दी की बढ़ती मांग को देखकर हल्दी की खेती के बाद किसान इसका प्रसंस्करण करके भी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इससे किसानों की कमाई तो बढ़ती ही है, साथ ही वो आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं और दूसरे किसानों को रोजगार भी दे रहे हैं, जिससे वो भी संपन्न बनते जा रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं।
0: तो ये थी हल्दी से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हमें उम्मीद है कि कृषि विशेष का आज का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dd.krishivishesh@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय, जानेंगे उसके तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

नमस्कार बहनों, रीट इंडिया द्वारा आयोजित व्यापार को कैसे स्थापित किया जाए एवं आत्मनिर्भर कैसे बना जाए की वर्कशॉप के भाग तीन में मैं दिनेश मिगलानी आपका स्वागत करता हूं। अभी तक के दो चरणों में या दो भागों में हमने यह सीखा था कि आत्मनिर्भरता की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है एवं भाग दो के अंदर हमने यह सीखा कि व्यापार कैसे किया जाए, व्यापार की शुरुआत कैसे की जाए, शुरुआत करने के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे ग्राहकों की आवश्यकताओं को हमें देखना है और कैसे मूल्य निर्धारण करना है। भाग तीन के अंदर हम दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसमें पहला भाग हमारा जो है कि सामान को कैसे बेचा जाए, सामान की मार्केटिंग कैसे करी जाए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। देखो, वैसे तो मार्केटिंग जो सामान को बेचना है यह एक तरह की कला है, यह एक तरह की कला है और कला ऐसी होती है जो इंसान में आंतरिक तौर पर होती है, वंशागुणत होती है। मैं तो ये कहता हूं कि वह जन्म जाती होती है। हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ महिलाएं बहनें हमारी ऐसी हैं जो बातों को बहुत अच्छे ढंग से बताती है और इतने अच्छे या रोचक ढंग से बताती हैं कि सामने वाला उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है और सारा जो बाजार का खेल है वह केवल विश्वास का खेल है। यदि ग्राहक आपकी बातों पर विश्वास कर रहा है वह आपसे सामान खरीदेगा, उसके बाद सामान का उपयोग करेगा और यदि वह आप सामान का उपयोग और आपकी की गई बातें अगर आपस में मेल खाती हैं तो ग्राहक संतुष्ट ग्राहक माना जाता है, जो एक व्यापार अच्छे व्यापार का सूचक है। ठीक है, तो इस भाग के अंदर हम दो भागों में बात कर रहे हैं। पहला भाग जो है सामान को कैसे बेचा जाए। देखिए, सामान बेचने के लिए सबसे पहले हमारी अपनी सकारात्मक सोच होनी चाहिए, हमारी सकारात्मक सोच होनी चाहिए अपने सामान के बारे में। हमें यह लगना चाहिए कि हमारा सामान औरों से क्यों अच्छा है, हमारा सामान औरों से क्यों अच्छा है। यदि हमें यह लगेगा कि मेरा सामान बहुत अच्छा है तभी मैं अपने ग्राहक को यह बता पाऊंगी कि मेरा सामान औरों से क्यों अच्छा है। तो पहली जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमारी चीजों के तरफ एक सकारात्मक सी सोच होनी चाहिए, हमारे मन में यह कॉन्फिडेंस होना चाहिए या हमारे मन में यह आत्मविश्वास होना चाहिए कि जो सामान हम बेच रहे हैं यह मार्केट में उस दाम पर सबसे अच्छा मिलने वाला सामान है। ठीक है, सकारात्मक सोच के साथ साथ आपको अपने सामान के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए, सिंपल सी बात है, एक साधारण सी बात है, मैं अपने सामान के बारे में तभी बता सकता हूं जब मुझे अपने सामान की हर बात के बारे में जानकारी होगी। मैंने सामान कैसे बनाया, किस किस कच्चे माल का उसमें प्रयोग करा, बनाते टाइम मेरी विधि क्या थी, क्या मैंने साफ सफाई का ध्यान रखा या नहीं रखा, हर चीज के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। क्योंकि आप जब किसी दूसरे व्यक्ति को अपने सामान के बारे में बताते हैं तो आप तभी बता सकते हैं जब आपको उसके बारे में एक पूर्ण रूप से जानकारी होगी। ठीक है, तो सामान की जानकारी होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एक अच्छे मार्केटिंग के लिए। हम ये कहें अच्छे जो सामान बेचने वाला होता है उसके लिए महत्वपूर्ण बात यही होती है कि सामान की जानकारी और उसका सामान दूसरे सामान से कैसे अच्छा है। क्योंकि जब हमें अपने सामान की जानकारी होगी तो हम अपने ग्राहक को यह बता पाएंगे कि हमारा जो सामान, अगर जो सामान हम बेच रहे हैं वह दूसरे सामान से कैसे अच्छा है, कितना अच्छा है। ठीक है, क्योंकि तभी ग्राहक हमारा सामान खरीदेगा। तो सामान की विशेषताएं, जानकारी एवं दूसरे जो मार्केट में सामान अवेलेबल है उससे कंपैरिजन करना, या हम कहें कि उससे हम नाप पाए कि हमारा सामान उनसे कितना अच्छा है। इसके बाद हमारी वाक्पटुता होनी चाहिए। देखो, वाक्पटुता बोलने की कला है। बोलने की कला मतलब यदि कोई ग्राहक हमारे पास में आता है तो हमें बात करनी है उससे, ग्राहक से। ठीक है, क्योंकि हम यदि ग्राहक ने मान लीजिए मुझसे किसी सामान के बारे में पूछा और मैं उसे एक रूखा सा जवाब दे दूं तो सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि ग्राहक मेरा सामान नहीं खरीदेगा। और यहीं यदि मैं एक बहुत अच्छे ढंग से उसे जवाब दूं, अच्छे ढंग से अपने सामान की विशेषताओं के बारे में बताऊं तो ग्राहक उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और ग्राहक हमारा सामान खरीदता है। तो आपकी बातचीत की कला सामान बेचने के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक अच्छे बातचीत कला व्यक्ति या महिला
अपने सामान को बहुत अच्छे तरीके से बेच सकती है। और कुछ कार्य हमारे ऐसे हैं, मैंने शुरुआती लेक्चर में आपको बताया था कि कुछ कार्य हमारे ऐसे होते हैं जिन कार्यों में हमारा व्यापार जो है वह सारा जो आधारित होता है, जैसे कि एक ब्यूटिशियन का कार्य है, जो ब्यूटी पार्लर वाली महिला है जो साज सज्जा का सामान या सौंदर्य से आधारित जो काम करती है, तो उसको बातचीत में पारंगत होना चाहिए। यदि वह जिस महिला के सौंदर्य पे कार्य कर रही है, यदि वह उससे बातचीत करती है बहुत अच्छे ढंग से, उसे हर चीज को समझाती है, हर चीज की उपयोगिता बताती है, हर चीज का महत्व बताती है, तो जो दूसरी महिला है जो उसके पास एज ए ग्राहक आई है, अगली बार उसी के पास ही आएगी। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, मैं अपनी बात करूं, देखो मैं बाल कटवाता हूं, ठीक है, बाल कटवाता हूं तो मैं उसी नाई के पास जाना पसंद करता हूं जो बड़े प्यार से बोलता है। बोल तो मेरे घर के आसपास काफी नाइयों की दुकानें हैं, ठीक है, बट फिर भी हम हर बार एक ही नाई के पास जाते हैं। या मान लीजिए आप कहीं से सामान खरीदते हैं, तो ज्यादातर आप देखोगे, ज्यादातर आप एक ही दुकान पे जाएंगे, बार बार उसी दुकान पे जाएंगे। यदि वह दुकानदार आपसे कुछ पैसा ज्यादा भी लेगा तो भी आपको यह लगेगा कि उसी दुकान पर जाना ही आपके लिए लाभदायक है। क्यों? क्योंकि हम यह देखते हैं कि सामान खरीदने के साथ साथ हम जिससे सामान खरीद रहे हैं क्या वह हमसे अच्छे ढंग से बातचीत करता है या नहीं करता है, क्योंकि उसकी जो बातचीत है, जो उसकी बात करने की कला है, वह हमें सम्मोहित कर लेती है। तो हमारी बहनें जो यहाँ बैठी हैं, वह बातचीत करने में काफी अच्छी हैं। मैं पर्सनली जानता हूं, बहुत लोगों से हम बात करते हैं, तो महिलाओं की जो वाक्पटुता होती है, महिलाओं की जो बात करने की कला होती है, वह पुरुषों के मुकाबले काफी अच्छी होती है। तो उनकी जो बातचीत करने की कला है वह आपको अपना सामान बेचने में काफी ज्यादा सहायता करती है। इसके साथ साथ हमें कभी संकोच नहीं करना चाहिए। देखिए, मार्केटिंग का पहला नियम यही है कि अपने सामान के बारे में बताते समय कभी संकोच ना करें, मन में कभी संशय ना लाएं, ठीक है, ना ही कभी आपको ऐसा लगे कि मैं बार बार वही चीज बता रहा हूं, हर ग्राहक को बताता हूं और ग्राहक मेरे सामान को पसंद नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ग्राहक सामान खरीदना ही नहीं चाहता, तो यदि आप उसे विशेषताएं बताएंगे, उपयोगिता बताएंगे, तो आपकी बातों पर ध्यान ना दे। तो हमें निरंतर बिना संकोच किए एक अच्छे तरीके से अपनी चीजों के बारे में ग्राहकों को बताना चाहिए। साफ सुथरा रहें, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि आप मार्केट में जाके सामान बेचते हैं, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, तो वहां पर कोई भी ग्राहक अगर आपके पास आता है, तो ग्राहक पहले ये देखता है कि जो व्यक्ति सामान बेच रहा है वो किस वेशभूषा में है, कैसे बैठा है। यदि आप देखिए, मुझे कुछ खाने का सामान खरीदना, मान ली छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं, मुझे पानी पूरी खानी है, ठीक है, अब मेरे सामने तीन पानी पूरी वाले ठेले हैं, ठीक है, मैं किसी उस ठेले पर जाना ज्यादा पसंद करूंगा जहां जिस ठेले पर जो पानी पूरी खिला रहा है वह साफ सुथरा व्यक्ति होना चाहिए, हाथ साफ हो, कपड़े साफ हो, क्योंकि तभी देखो आज के युग में कोई भी ग्राहक है वह आपसे तभी बात करना पसंद करेगा, तभी आपकी दुकान पर आना चाहेगा जब आप एक साफ सुथरे होंगे, ठीक है। तो हमें अपने ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा मेहनत तो देखो पहली चीज है, मेहनत के बिना कोई भी व्यापार नहीं चल सकता, ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि आपने एक बार मेहनत कर दी फिर आप मेहनत करना बंद कर दें, तो ऐसा नहीं होता। किसी भी व्यापार को चलाने के लिए मेहनत कश होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिना मेहनत के आप कोई भी व्यापार नहीं चला सकते। इसके साथ साथ हमारा जो उद्देश्य व्यापार का है, लाभ कमाना तो है ही है, लाभ कमाने के साथ साथ ग्राहक की संतुष्टि लक्ष्य है। तो मार्केटिंग में या सामान बेचने में आप जो आपने ज्यादा ध्यान रखना है, एक तो ग्राहक की संतुष्टि, क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक मार्केटिंग से एक संतुष्ट ग्राहक उस पैसे खर्चने से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक जब दूसरे ग्राहकों को आपके सामान के बारे में बताएगा तो दूसरे ग्राहक भी आपके सामान के लिए आकर्षित होंगे। तो हमें यह हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी सामान बेचें, जिस तरह का सामान बेचें, जिस ग्राहक को हम बेचें, वह ग्राहक हमसे संतुष्ट होकर जाए, वह हमारे सामान से संतुष्ट हो, क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक आपका बेस्ट मार्केटिंग वाला पर्सन होता है, क्योंकि वह हर जगह जाकर आपकी बात को बताएगा। इसके अलावा अगर हम कुछ पैसा खर्च करके मार्केटिंग करना चाहें, तो हम कुछ पैम्पलेट छपवा सकते हैं अपने सामान के बारे में,
हमें पता है भी इस पर्टिकुलर एरिया के लोग हमारे सामान को खरीद सकते हैं, तो हम उनके घरों पे जाकर एक एक पर्चा फेंक सकते हैं। तो ये कई सारे माध्यम हो सकते हैं। आप देखो वैसे तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिल्कुल छोटे स्केल पर, मतलब उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जिनके पास ना तो काफी ज्यादा पैसा है, वह जो उनके पास साधन उनके पास है उन्हीं को ही यूज करके, उन्हीं का ही उपयोग करके आत्मनिर्भर होने की ट्राई कर रही हैं। तो यदि कुछ पैसा आ जाता है, यदि हमारा कार्य चलने लग जाता है, तो हम फिर अपनी मार्केटिंग के तरीकों को उसमें बदलाव कर सकते हैं। हम पर्चे छपवा सकते हैं, हम एक बैनर बनवा सकते हैं जिसपे जो भी सामान हम बेच रहे हैं उस सामान से, उस सामान में क्या क्या है, उस सामान में क्या क्या विशेषता है, जो मार्केट में दूसरा सामान अवेलेबल है वह सामान उनसे कितना अच्छा है, उस सब के बारे में उस पे बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सामान बेचने की ट्राई करिए, सामान बेचने की कोशिश करनी चाहिए, और जो एक मेहनत कश कार्य है जिसमें काफी मेहनत लगती है, और संतुष्ट ग्राहक को करना हमारा पहला उद्देश्य है। ये हुआ हमारा पहला पार्ट। भाग तीन के दूसरे पॉइंट, जो दूसरी बात हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होती है, खातों में हिसाब रखना। देखिए हम व्यापार तो शुरू कर देते हैं, ठीक है, और व्यापार शुरुआत करने के बाद शुरुआती दौर पर जब हमारे पास में कुछ जमा पूंजी होती है तो हम उसे खर्च करते हैं। ठीक है, कई बार हमारी बहनें या काफी लोग ऐसे होते हैं जो हिसाब किताब नहीं रखते, और कुछ समय के बाद में उनको यह नहीं समझ में आता कि उनका कितना पैसा किस चीज पर खर्च हुआ और उन्होंने कुल कितना पैसा खर्च किया, और जो अब वह लाभ कमा रहे हैं क्या वह उस उनकी कॉस्ट या उसके खर्चे के अनुरूप है या नहीं है। तो इसमें बहुत ज्यादा न जाते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा आपको कि अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं तो आप एक अपनी डायरी जरूर बनाइए, एक डायरी अपनी जरूर बनाइए। ठीक है, उस डायरी में कुछ भागों में आप उसे बांट सकते हैं। ठीक है, क्या क्या भाग बना सकते हैं? एक भाग के अंदर तो आप यह देखो, मान लीजिए ये मेरा पहला पेज है, आपने आगे जो लिखना था लिख दिया, ओम नमः शिवाय, भगवान जी का नमस्कार करके अपना स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया जो लक्ष्मी माता का प्रतीक है। उसके बाद पहले पेज पर आप ये देखिए, हमने इसके दो भाग कर दिए। ठीक है, एक भाग हुआ हमारा खर्चे का और एक भाग हो गया हमारा आय का। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां लिखेंगे सारा खर्चा, जो भी खर्चा होता है आपको एक एक करके रोज का खर्चा लिखना है, और यहां हमने लिखनी है आय, मतलब उससे हमें कितने का सामान बिका। मान लीजिए अगर मैं एक महीने की बात करूं तो एक महीने में मैं उस महीने में मैंने जितना भी खर्चा किया वह मैं सारा एक तरफ लिखता जाऊंगा। ठीक है, और जितने भी मुझे आय हुई सामान बेचने से, जहां जहां से पैसा आया वह मैं सारा यहां पे लिखता जाऊंगा। ठीक है, और महीने के अंत में हम जोड़ कर लेंगे दोनों तरफ का और यह देखेंगे हमें लाभ कितना हुआ। ठीक है, ऐसे ही अगले महीने आपने करना है। मतलब आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि यदि आपने 100 रुपए व्यापार में लगाए हैं तो 100 रुपए किस किस जगह पे आपने खर्च किए हैं। ठीक है, और यदि महीने के अंत में हमारी जेब में 500 रुपया है तो हमें यह जरूर पता हो कि वह कहां से हमारे पास में आया है। तो इससे हमें दो बातों में फायदा होता है, एक तो हम यह कंपेयर कर सकते हैं, यह हम आपस में तुलना कर सकते हैं कि मान लीजिए जो कच्चा माल मैंने आज खरीदा, अगले महीने अगर मैं वह कच्चा माल खरीदने दोबारा जा रहा हूं तो क्या उसकी लागत में कुछ बदलाव हुआ है या नहीं, उसकी मूल्य बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। यदि मैं कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करूंगा, यदि मैं कोई खाता नहीं बनाऊंगा, तो मैं इस चीज को ढूंढ नहीं पाऊंगा कि पिछले महीने मैंने जो सामान खरीदा था उसकी लागत क्या थी, उसका मूल्य क्या था, और इस महीने जो मैं सामान खरीदने वाला हूं उसका मूल्य क्या होगा। क्योंकि यदि सामान का मूल्य बढ़ रहा है तो हम उसी के हिसाब से अपनी जो वस्तु है, अपना जो सामान है, उसका भी मूल्य बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यदि अगर आपकी लागत बढ़ेगी तो हम अपनी वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप इस चीज को जरूर बनाइए, खर्चा सारा लिखो, आय सारी लिखो। ठीक है, इसके अलावा आप यह देखो कि व्यापार चलाने के लिए आपने किन किन चीजों को खरीदा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे एसेट हैं, एसेट का मतलब होता है कि जो लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे, वह भी उस डायरी में आप एक जगह पर लिखिए क्या क्या सामान आपने व्यापार के लिए खरीदा है। इसके अलावा आप जब ग्राहकों से मिलते हैं तो जो आपके संतुष्ट ग्राहक है, आप ट्राई करिए, कोशिश करिए उन संतुष्ट ग्राहकों के पते भी आपके पास में हो। यदि ग्राहकों के पते आपके पास में होंगे
तो किसी कारणवश अगर कोई ग्राहक आप तक सामान लेने नहीं आ रहा है तो आप अपने सामान को वहां तक जाकर बेच सकते हैं। जैसे जैसे आपका व्यापार आगे बढ़ता है फिर हम और चीजों पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए शुरुआती दौर पर हमने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, ठीक है, और 6-8 महीने की मेहनत के बाद में वह व्यापार में काफी वृद्धि हो गई। अब मुझे ये लगता है कि मैं अकेला उस व्यापार को नहीं संभाल सकता क्योंकि ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं और लागत बढ़ रही है, तो मैं अकेला उस व्यापार को नहीं संभाल सकता। तो फिर हम यह सोचते हैं क्यों ना किसी को साझेदार बना लिया जाए, तो फिर हम साझेदारी में आ जाते हैं। तो इस तरह से समय की मांग के साथ साथ, देखो मैं तो अंत में फिर ये कहूंगा, समय की मांग के साथ साथ हमें किस तरह के व्यापार के स्वामित्व पे जाना चाहिए, एकल व्यापार करना चाहिए या साझेदारी का व्यापार करना चाहिए, वह सब बात जो आती है वह बात आती है कि हमारे व्यापार का स्केल कितना है, क्या हमारे व्यापार में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। और जैसे जैसे आपका व्यापार बढ़ता जाएगा फिर आप बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, जो पैसा हमारे पास में एक्स्ट्रा होता है, मान लीजिए मुझे पता है कि अगले 6 महीने मेरे पास में इतना पैसा ज्यादा आएगा, फिर पैसा नहीं आएगा, तो वो पैसा मैं अपने बैंक में डाल सकता हूं जिसपे मुझे कम से कम ब्याज तो मिलेगा ही, ठीक है। उसमें आप अपना फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, यदि आपका सेविंग खाता है या आपका बचत खाता है तो कुछ ब्याज गवर्नमेंट आपको देती है, सरकार की तरफ आपसे मिलता है, तो इस तरह से आप बैंक खाता खुलवाइए। तो धीरे धीरे एक अच्छे व्यापार की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और यदि इसके बाद भी व्यापार और ज्यादा बढ़ रहा है तो हम बैंक से लोन ले सकते हैं, क्योंकि यदि बैंक में हमारा पैसा जमा होगा, हमारी साख होगी, तभी बैंक हमें फ्यूचर में हमारे व्यापार को बढ़ाने के लिए लोन प्रदान करेगा। अंत में फिर मैं एक बात को दोबारा दोहराना चाहूंगा, जो बहनें हमारी यहां पर बैठी हैं, इन वर्कशॉप के माध्यम से मैंने आपको एक कागजी तौर पर समझाया है कि व्यापार क्या होता है, व्यापार कैसे किया जाता है, व्यापार के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद अवसर कैसे तलाशते हैं, अवसर तलाशने के बाद हमें अपना सामान बनाना होता है, सामान बनाते समय किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, इसके अलावा उसका मूल्य निर्धारण कैसे करना चाहिए, और उसके बाद सामान बनाने के बाद उसको कैसे बाजार में बेचा जाए, और बेचते समय हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, इसके अलावा जो हमने सामान बेचा है या जो हमने खर्चा किया है या जो हमारी आय हुई है, उस आय को कैसे एक लेखा के तौर पर एक उसके खाते बनाए जाने चाहिए, एक कॉपी में जरूर, आप एक डायरी में जरूर उसको एंट्री करिए, और धीरे धीरे जब आपका व्यापार बढ़ जाता है तो किन किन बातों का आपने आगे ध्यान रखना है। आशा करता हूं मैं कि इन वर्कशॉप के 3 भाग जो मैंने आपको, आपने जो मेरे 3 भाग देखे, इनको सुनने के बाद आपके मन में यह इच्छा तो जरूर पैदा होगी कि आत्मनिर्भर होना चाहिए आपको, आत्मनिर्भर हुआ जा सकता है। हमारी बहनें, हमारी महिलाएं जो घरों में रहती हैं, जो कम पढ़ी लिखी हैं, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है और परिवार की जिम्मेवारी भी उनके ऊपर है, तो उन महिलाओं को उन महिलाओं में सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जरूर आना चाहिए कि वह भी आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार को पाल सकती हैं और अपना गुजारा कर सकती है। अंत में रीड इंडिया के माध्यम से मैं दिनेश मिगलानी आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी तत्परता से और इतने अच्छे ढंग से, इतने प्यार से, इतने अच्छे ढंग से मेरे लेक्चर्स को सुना। धन्यवाद, नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शीला, मैं कुम्हार बीघा से आती हूँ और हम यहाँ महिला संसाधन केंद्र के द्वारा यहाँ पड़ी हैं। और यहाँ जब हम लोग यहाँ आए तो हम लोग को मुनि दी बताई थी कि यहाँ पर एक सर आने वाले हैं जो हम लोग को रेडियो को बताने के लिए कुछ बताएंगे और वीडियो बनाने के लिए बताएंगे। तो हम लोग यहाँ आए, हम लोग को सिखाया जा रहा है यहाँ पर प्रोग्राम बनाना और कोई भी बड़ा चीज को छोटा करके लिखना, लिखकर उस बात को रिकॉर्ड करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनाना। हम अपनी बात को लोगों को तक पहुंचाने के लिए इस काम को कर रहे हैं और फोटो खींचना हम लोग को सिखाया गया है और इससे हम लोग को बहुत लाभ है। हमें तो लाभ है ही, बहुत सारे लोगों को भी लाभ है। हमारे गांव में जैसे गंदगी अधिक फैल जाती है तो हम उसको गांव से अधिक लोगों को बताने के लिए हम पहले कुछ लोगों का इंटरव्यू लेकर उनका आवाज़ रिकॉर्ड करके हम दूर दूर के लोगों तक पहुंचा सकते हैं, सरकार के पास भी पहुंचा सकते हैं जिससे हमारी समस्या का हल हो। और इससे वीडियो में बनाकर हम बता सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, मोबाइल में भी रिकॉर्ड करके लोगों को सुना सकते हैं, लोगों को जागरूक बना सकते हैं। जो औरतें पढ़ाई करने के बाद अपने घर में बेरोजगार हैं, जब हमारे गांव में एक रेडियो का कार्य खुल जाएगा तो यहां पर बेरोजगार महिलाओं को कार्य भी मिल सकता है। जो महिलाएं अधिक पढ़ लिख चुकी हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो यहां काम कर सकती हैं, इसमें जुड़ सकती हैं और वो कुछ आगे भी बढ़ सकती हैं। ये ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा हुआ, हम चाहते हैं ट्रेनिंग आगे भी हो क्योंकि इससे हम लोगों को अब जो आवाज़ हमारे ही पास सीमित थी वो आवाज़ बहुत सारे लोगों के बीच जा रही है। हम जागरूक हो रहे हैं, हम जागरूक होंगे तो हमारा देश भी जागरूक होगा, समाज के लोग भी जागरूक होंगे।
1: मेरा नाम उत्तम कुमारी है, मैं कुम्हार बीघा से आई हूँ और यहाँ हम कंप्यूटर क्लास करते हैं। और यहाँ जब करते करते मुन्नी जी बोले कि यहाँ मतलब सर आने वाले हैं, वो कुछ सिखलाएंगे, तो हमने कहा कि ठीक है हम सीखेंगे और साथ में कहें कि और लड़कियों को कह भी देना, तो उन लोग के भी कहे और साथ में आए तो सर आए और वो बोले कि मतलब सिखाने के लिए बोले, ट्रेनिंग देने के लिए बोले। हम लोग यहाँ आकर रेडियो प्रोग्राम बनाने के लिए लिखना सीखे हैं और रिकॉर्डिंग करना सीखे हैं, फोटो खींचना सीखे हैं, वो हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फोटो और दूसरे को भी मतलब बता सकते हैं और बात भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल द्वारा रेडियो प्रोग्राम को सुना भी सकते हैं। ये ट्रेनिंग आगे होना भी चाहिए जिससे हम मतलब आगे कुछ और सीख ले, टाइम मिल जाए।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरती है, मेरा घर कुम्हार बीघा है, मैं कुम्हार बीघा से यहाँ आती हूँ। इस ट्रेनिंग से मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा है। हम लोग घर में ऐसे ही बैठे रहते थे, एग्जाम देने के बाद तो कोई काम नहीं था तो हम लोग बैठे रहते थे, पर यहाँ आने से हम लोग का एक टाइम भी बन गया है कि यहाँ पे आना है और कुछ सीख भी रहे हैं हम लोग यहाँ सीखने से माइंड का भी विकास हो रहा है और यहाँ पे कुछ जो बोलने वाली जो मंत्र जैसा है वो सिखाया जाता है, उससे हम लोग को बोलने की ताकत हो रही है जिससे हम किसी लोग के सामने भी उसी आवाज में कुछ बातें कर सकते हैं और रिकॉर्ड और किसी और गांव में भी जा करके किसी दो महिला कुछ अच्छी बातें कर रही है तो उनकी बातों को अच्छे लोगों के पास सुनाने के लिए हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं ये बातों को।
3: ठीक, बोलो।
4: मेरा नाम अलका कुमारी है, जिला औरंगाबाद हरदे एवं बिहार से हूँ। मैं यहाँ पास पहले टीचर ट्रेनिंग करती थी लेकिन यहाँ पास एक प्रोग्राम आया रेडियो ट्रेनिंग का, इसमें मैं पार्टिसिपेट की हूँ और इस ट्रेनिंग के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और मेरे पास सर ने हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी और सब लाइव रेडियो की कैमरा चलाना एवं उन्होंने हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाया और उन्होंने हमें पहले हमारी आवाज़ बहुत ज़्यादा फंसती थी लेकिन उन्होंने हमें रियाज कराया कि अपने आवाज़ को साफ करने के लिए आप एक ट्रेनिंग दी जिसमें माँ बाप इसको रियाज करने से आपकी गला साफ हो जाएगी और आप आगे बढ़ सकते हैं, गा सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। इसलिए मेरे पास सर को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं चाहूँगी कि वो आगे आए, ट्रेनिंग दें हम लोग को आगे। इस ट्रेनिंग के माध्यम से पहले मैं कैमरा चलाना नहीं जानती थी, इसके कैमरा चलाना सीखी, स्टेप लिखना सीखी और दूसरे जगहों पर जाके उनके जगहों के बारे में जानने की कोशिश की और उसके बारे में लिखी, उसको रिकॉर्ड किया और उसे एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर हमने लैपटॉप या कंप्यूटर में उसे ऐड किया, उस एडिटिंग की और उसे मूवी मेकर द्वारा वीडियो बनाया, इसे लोगों को दिखाया और जो लोगों को काफ़ी पसंद आया। और मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ पास भवानीपुर में महिला संसाधन केंद्र में और भी सुविधाएं आए जिससे महिला को काफी फायदा हो और महिलाएं आगे बढ़े। हमारे भवानीपुर कमता सेवा केंद्र में महिलाओं को काफी सुविधा मिली है और मैं चाहती हूँ कि इस सुविधा को सब लाभ उठाएं, सुविधा से लाभ उठाएं और आगे बढ़े। मैं चाहती हूँ कि यहाँ कमता सेवा भवानीपुर में एक और भी ट्रेनिंग हो इंग्लिश स्पोकन के, जिसमें महिलाएं और भी लोगों को इंग्लिश सीखने का मौका मिले, वो अपनी आवाज को दूसरे के सामने इंग्लिश में रख पाएं और वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश बोलना भी सीखें।
0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती, मैं कुम्हार विवाह से आती हूँ। ऑडियो रिकॉर्डर करना, लिखना और एक दूसरे का बात रिकॉर्ड करके सुनना, फोटो खींचना, ऑडियो प्रोग्राम बनाना, बहुत सारा ऐसी चीज़ें सीखे हम लोग और हमको बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि ये ट्रेनिंग हो और इससे हमको बहुत हम लोगों का लाभ भी मिले और लाभ भी मिल भी रहा है।
5: मेरा नाम संगीता कुमारी है, मैं कुम्हार विहार से आई हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संगीता कुमारी है, मैं कुम्हार विहार से आई हूँ। इस ट्रेनिंग से हमें बहुत फायदा हुआ है, जो हम लोग को रिकॉर्ड करने नहीं आता था और रिकॉर्ड करना सीख गए, और बहुत बड़ा प्रोग्राम रहता था उसको छोटा मतलब कर रिकॉर्ड करना और सभी लोग को मतलब सुनाना।
6: मैं अंजू कुमारी गुप्ता बोल रही हूँ, मेरा ग्राम है चट्टी। सामुदायिक रेडियो द्वारा मैं मेरा उपस्थित किया गया है और नेपाल सर ने हम लोग को बहुत शिक्षा दी है और इसके बारे में जानकारी दी है। वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं सीखी और ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए।
2: मेरा नाम आरती है, मैं कुम्हार विहार की रहने वाली हूँ और यहाँ पे रेडियो समुदाय के से जुड़ी हुई हूँ। हम लोग यहाँ आकर के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखे और इससे हम लोगों को बहुत लाभ है। यहाँ पे आने से सबसे पहले तो हम एक दूसरे के बारे में या अपने फ्रेंड या अपने अगल बगल की या किसी के बारे में कुछ प्रोग्राम बनाना सीखे और फिर उसे मोबाइल रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करना। फिर इसके बाद हम लोग सीखे हैं कि आपस में 4 या 5 लड़के मिलकर एक समूह बनाकर और कोई एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाकर उसे रिकॉर्डिंग करना तो सीखा ही और फिर उसे कंप्यूटर पे एडिट करना भी सीख लिया है और कैमरा से फोटो खींचना भी सीखा हम लोगों ने। तो हमें इससे बहुत लाभ है, अगर हम चाहेंगे तो कुछ आगे भी बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को बहुत ऐसी चीजें हैं जिसकी जरूरत हम लोगों को आगे पड़ेगी और कुछ ऐसी जरूरत भी है जिसकी हम लोगों के पास नहीं है। तो हमारे पास 3-4 कंप्यूटर है और जिसमें हमारे हम लोग 20 लड़कियां हैं, तो हम लोग को 1-2 कंप्यूटर और होने चाहिए जिससे कि हम लोग आसानी से कंप्यूटर पे एडिट करना, जो हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं उसको कंप्यूटर पे एडिट करना सीख लें। और ये सब मतलब चाहिए। बिजली उजली की व्यवस्था यहाँ पे बहुत लाइट बहुत कम रहती है।
7: मेरा नाम सरिता कुमारी है, मैं देव की रहने वाली हूँ, मैं यहाँ की गर्ल हूँ और मैं 5वीं ट्रेनिंग यहाँ की हूँ। और देखिए दोस्तों, महिपाल सर ने यहाँ हम लोग का बहुत कुछ सिखाए हैं, इसलिए महिपाल सर को बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद। फर्क बहुत चीज नजर आया, जो हम लोग का बोलने में झिझकाहट लगता है वो हम लोग का गला साफ हो गया। जो आपने सिखाए जो माँ और पा ये सब कर वो हम लोग का बहुत अच्छा लगा। इस चलते कि जो जिसका गला जैसे बैठा हुआ वो गला जो साफ हो जाए तो हम लोग का वो बहुत अच्छा लगा। जिसके माँ है कहीं रेडियो पर या कहीं भी या स्कूल में गाने के लिए अगर मिलता है मन, तो कितना आदमी जो है से झुकझुकाहट हो जाता है कि हम नहीं गा पाएंगे या ऐसे वैसे बहुत तरह तरह की होता है। तो इसी चलते आप जो माई सबके बारे में सिखाएं से बहुत अच्छा सिखाएं तो बहुत अच्छा लगा, ताकि जिसका गला नहीं हो वो भी गला हो जाए, कि ताकि जो नहीं गाने के लिए पा रही है वो भी गाना अपना स्टार्ट कर दे। हमको बहुत अच्छा लगा। और आप जो सिखाएं रेडियो के बारे में, जो फोटो खींचना और किसी दूसरे से अपने आप को बात करवाना, जो पहले बार आपने सिखाए कि जो अपने आप में कुछ लेटर लिखें और अपने आप से बात करके मुझे सुनावे, वो भी बहुत अच्छा लगा। हम लोग आपस में दोनों वो मेरे बारे में लिखी, उनके बारे में हम लिखी। सेंटर में तो
8: सर भी बहुत खुश, हम लोग सोच रहे हैं कि टीचर ट्रेनिंग करें, लेकिन हम लोग का मिला है प्रिया स्कूल का, लेकिन हम लोग का सोच रहे हैं कि सर्टिफिकेट हम लोग का प्राइमरी में स्कूल का मिले ये मिले, और उसके बाद हम लोग टीचर ट्रेनिंग करने के बाद ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद हम लोग कुछ और भी करना चाहती हैं, उसके बाद फिर कंप्यूटर में आने के लिए चाहते हैं, कोशिश करें कि कंप्यूटर में हम लोग का आप मेरा तरफ से बहुत बहुत आपको शुक्रिया है कि आप कहें गीता दी या रेशमी दी जो भी हैं उनके आप कह के आगे बढ़ावे कि जो टीचर ट्रेनिंग का लड़की हैं उनको कंप्यूटर का चांस दिया जाए एक बार। इस चलते कि हम लोग का बहुत शौक है कि हम लोग भी कंप्यूटर सीखे, आजकल का ऐसा जमाना है कि बिना कंप्यूटर का बिना कुछ नहीं होता है, कंप्यूटर सीखना लड़कियों या अधिक का बहुत जरूरी होता है, आजकल जो भी है वो कंप्यूटर का वजह से चल रहा है, आइए बी ए लाख आदमी पढ़ रहा है लेकिन बिना कंप्यूटर बिना कुछ भी नहीं होगा। इसी चलते हम लोग सोच रहे हैं कि टीचर ट्रेनिंग करने के बाद एक बार हम लोग का कंप्यूटर का साथ जरूर मिले। महिपाल सर आपके लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
9: मेरा नाम है अंजू कुमारी, मैं कुम्हार विभाग में रहने वाली हूँ, मैं यहाँ रेडियो समुदाय के भाग ली हूँ, यहाँ फोटो खींचने के लिए मैं सीखा हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ लाइट आए और हम लोग भी चाहती हूँ कि आप कुछ भी सीखे, सिलाई भी सीखे, ब्यूटिशियन सीखे, कंप्यूटर भी सीखे। 7 दिन यहाँ ट्रेनिंग हुआ, मैं 7 दिन भी आई हूँ यहाँ, मैं फोटो खींचने के लिए सीखे, लिखने के लिए सीखे, आवाज बढ़ाने के लिए सीखे और गल्ला साफ करने के लिए सीखे।
10: मेरा नाम आरती कुमारी है, मैं कुम्हार विभाग से आई हूँ, मैं यहाँ रेडियो सामुदायिक रेडियो की तरफ से आई हूँ और यहाँ पर रेडियो समुदायिक में ट्रेनिंग किया जा रहा है, जिसमें 7 दिन से ट्रेनिंग चल रहा है, जिसमें मैंने सीखी है एक दूसरे का बारे में लिख कर उसे रिकॉर्ड करना और सुनना और फोटो खींचना और डिजिटल स्टोरी बनाना और
11: आगे इनको सीख करके आप क्या करोगे?
10: मैं अपने गांव वालों को और बगल के पड़ोसियों को मैं अपने ये सिखाऊंगी कि आप भी इसमें जुड़े और इसका लाभ।
1: मेरा नाम उत्तम कुमारी है, मैं कुमार भैया से आती हूँ, मैं कंप्यूटर क्लास की छात्रा हूँ और मैं रेडियो समुदाय में भाग लिए हैं, जिसमें 5-6 दिन से ट्रेनिंग हो रही है, जिसमें फोटो खींचना, प्रोग्राम बनाना और ऑडियो रिकॉर्डिंग करना इत्यादि सीखे हैं। और इससे मैं सीखने के बाद कंप्यूटर में भी इससे मतलब साफ करने के लिए सीखूंगी और इस प्रोग्राम को और अच्छे तरह से बना सकूंगी। सबसे पहले तो कंप्यूटर बनाने के लिए मुझे यहाँ लाइन की व्यवस्था नहीं है, आज भी देख रहे हैं दिन भर भी लाइट नहीं आया, कुछ नहीं काम लोग कंप्यूटर में कर पाए, इसके लिए लाइन की व्यवस्था पहले करवा दी जाए। और
11: डिजिटल स्टोरी के बारे में बताओ, वीडियो फिल्म बनाने के बारे में कुछ बताओ, फिल्म फोटो कैच करके जो फिल्म बनाई
1: और फोटो खींच कर उसका फिल्म बनाऊंगी और वो मतलब कि वो आगे उसको दिखलाऊंगी कंप्यूटर में साफ करके।
8: मेरा नाम आरती कुमारी है, मैं बेलसारा में रहती हूँ, मैं यहाँ टीचर ट्रेनिंग की छात्रा हूँ, मैं आज 1 सप्ताह से रेडियो समुदाय के बारे में सीख रही हूँ, वह मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें मैंने बहुत कुछ सीखी जैसे फोटो खींचना, प्रोग्राम बनाना, कंप्यूटर में प्रोग्राम को एडिट करना, इसी प्रकार मैंने बहुत कुछ सीखी। मैं चाहती हूँ कि मैं यह सीखकर आगे भी रेडियो चैनल पर आए,
11: ठीक है, और
8: मुझे भी मेरा प्रोग्राम भी लोग सुने, मेरी आवाज़ लोगों तक जाए। मैं प्रीति, घर बलसारा, थाना देव, जिला औरंगाबाद, बिहार, मैं यहाँ भवानीपुर सामुदायिक रेडियो सीख रही हूँ, इसमें बहुत कुछ सीखी जैसे कि कैमरा चलाना, आवाज रिकॉर्ड करना, स्टेप लिखना, गला को रिवाज करना, ये महिपाल सर सिखाए जो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, इसलिए महिपाल सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करती हूँ कि महिपाल सर फिर से हम लोगों के बीच में आए और ट्रेनिंग देने की कृपा करें। और हम सब एक बात और बताना चाहते हैं, टीचर ट्रेनिंग के साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान भी दिया जाए।
12: मेरा नाम पूजा है, मैं कुम्हार विभाग से आती हूँ, मैं यहाँ कंप्यूटर क्लास की छात्रा हूँ, मेरा एजुकेशन मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, और मैं इस 7 दिन की ट्रेनिंग में फोटो खींचना सीखी,
11: रेडियो कार्यक्रम बनाना सीखी
12: और
11: इसके लिए लिखना उसके लिए
12: स्क्रिप्ट लिखना सीखी, रिकॉर्डिंग करना सीखी और एडिट करना सीखी।
11: इसको करने के बाद आप क्या करोगे रेडियो प्रोग्राम को सीखने के बाद?
12: मैं चाहती हूँ कि हमारे भवानीपुर में एक रेडियो स्टेशन खुले और जिसमें मैं कार्यकर्ता के रूप में कार्य करूं और पूरे देव को अपना कार्यक्रम सुना। जब तक ये हमारे भवानीपुर में रेडियो चैनल नहीं खुलता है तब तक हम ये प्रोग्राम बनाते रहेंगे और अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके हम समूह में सुनाएंगे जिससे वो जागरूक होंगी। फोटो खींचना सीखी, स्क्रिप्ट लिखना सीखी, रिकॉर्ड करना।
11: आपको व्यक्तिगत क्या लगा ट्रेनिंग में, पर्सनली मतलब होता ना निजी तौर पे क्या लगा?
12: मुझे बहुत अच्छा लगा।
11: इस ट्रेनिंग के बारे में बताना, इस वर्कशॉप से निजी तौर पे आपको क्या अच्छा लगा?
12: मुझे अच्छा लगा कि हमारे देव में जो भी हाईलाइट में जो भी चीजें होंगे मैं उसे उसके बारे में लिखूंगी और उसका फोटो खींच के और मूवी सब बनाऊंगी।
11: वर्कशॉप के बारे में और चाहिए या नहीं चाहिए?
12: और चाहिए।
11: बोलो किस टाइप की वर्कशॉप होनी चाहिए आपको? इंग्लिश की भी चाहिए आपको, कंप्यूटर के साथ में टीचर की ट्रेनिंग के साथ कंप्यूटर क्लास भी चाहिए?
12: इंग्लिश में चाहिए
11: जी। बोलो
12: जी, कंप्यूटर के साथ में इंग्लिश स्पोकन भी चाहिए और
11: ICT बेस्ड और वर्कशॉप चाहिए आपको?
12: यस।
11: इस टाइप की और वर्कशॉप चाहिए आपको? और हाँ। और की मदद की आवश्यकता है कि आप परफेक्ट हो गए?
12: नहीं, अभी परफेक्ट नहीं हुए हैं, अभी हमें इसकी और आवश्यकता है, अभी तो शुरुआत है, हमें अभी हमें और जानकारी की जरूरत है,
11: प्रैक्टिस की जरूरत है।
12: प्रैक्टिस की जरूरत है।
11: चलो अंत में कोई संदेश हमारे लिए, ब्रीड इंडिया के लिए और किसके लिए कुछ कहना चाहोगे?
12: हाँ, हमारे भवानीपुर में इस महिला संसाधन केंद्र को उन्होंने खोला और हमें जागरूक किया, आगे बढ़ने की रास्ता दिखाए। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमें और आगे बढ़ने के लिए और सुविधाएं देती जाए।
13: सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।
14: इस वक्त हमारे साथ हैं जाने माने सर्जन डॉक्टर आईके धवन। डॉक्टर धवन से हम बात करेंगे कैंसर के बारे में और खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। डॉक्टर धवन, कैंसर की बीमारी के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन वो कैसे होती है, किस बीमारी को कैंसर कहा जाता है, इसके बारे में आप हमें बताइए।
15: ऐसे है कि बॉडी का जो नॉर्मल टिश्यू रिपेयर का सिस्टम या मैकेनिज्म है वो बड़ा रेगुलेटेड है, उसके रेगुलेटेड है और वो मतलब गलत नहीं होता, चलता रहता है, जैसे नेचर ने कहा है ऐसे ही रिपेयर सिस्टम होता रहता है, हर एक सेल मर जाता है फिर दूसरा आ जाता है, पर एक किसी ऑर्डर में आता है, किसी नियम से आता है। पर जब ये नियम टूट जाता है, जब सेल्स पे कंट्रोल नहीं रहता है, वो अपने आप ही मल्टीप्लाई करते रहते हैं और ट्यूमर बनते जाते हैं, तो फिर हम उसको कैंसर कहते हैं।
14: डॉक्टर धवन, क्या ये बात सच है कि ट्यूमर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं?
15: ये बात सच है कि दो किस्म के ट्यूमर होते हैं, एक तो जो मैलिग्नेंट होते हैं और एक जो बिनाइन होते हैं। जो बिनाइन होते हैं वो तो 100% इजीली क्योरेबल होते हैं, और जो मैलिग्नेंट होते हैं वो हर एक जगह, हर एक अंग के फर्क फर्क क्योर रेट्स होते हैं। और फर्क उनमें ये है, जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो सेल्स अपना रूप छोड़ते नहीं हैं, वैसे ही रहते हैं, थोड़ा सा ऑर्डर रहता है, डिसऑर्डरली नहीं होते। जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं वो अपना रूप छोड़ देते हैं, वो डिसऑर्डरली हो जाते हैं, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ब्लड वेसल में चले जाते हैं, लिम्फैटिक्स में चले जाते हैं, जो अपनी कैप्सूल होती है उसको तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो ये फर्क है दोनों में।
14: डॉक्टर धवन, इस बीमारी के साथ स्टेजेस हैं कि स्टेज वन का है, स्टेज टू का है, तो कई बारी पता चलता है जब तक कि इसको व्यक्ति को कैंसर है और ये कहा जाता है कि आखिर स्टेज का पता चला, तो ऐसा क्यों होता है?
15: ऐसे है कि ये सच है कि किसी किसी ऑर्गन्स में कैंसर जितनी भी आप कोशिश कर लीजिए देर से महसूस होता है, पर जैसे जैसे मेडिकल साइंस आगे बढ़ती है तो हर एक अंग में यही कोशिश है कि कैंसर जल्दी पकड़ा जाए, उस स्टेज पे पकड़ा जाए जिस स्टेज पे उसका इलाज हो सके। एक तो बात यह है। दूसरा बात यह है कि बहुत ज्यादा जोर और एम्फेसिस है अपनी लाइफस्टाइल पे। जो फैक्टर्स कैंसर को प्रमोट करते हैं, जो कैंसर को बढ़ाते हैं, उनको अपनी लाइफस्टाइल से निकाल देना चाहिए, जैसे स्मोकिंग एंड टोबैको यूज।
14: डॉक्टर धवन, अमूमन ये माना जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बड़ी उम्र की महिलाओं को ही होता है, क्या छोटी उम्र की महिलाएं भी इसकी शिकार होती हैं?
15: सच है कि ब्रेस्ट कैंसर यंग महिलाओं में भी, छोटी उम्र की महिलाओं में भी होता है, पर इतना कॉमन नहीं है।
14: डॉक्टर साहब, महिलाओं को इसकी सही सही जानकारी रहे इसके लिए क्या करना चाहिए?
15: थोड़ी सी गलतफहमियां भी दूर करना जरूरी है। सबसे दुनिया भर में अच्छा सिस्टम जो डेवलप और मोस्ट इफेक्टिव सिस्टम जो डेवलप हुआ है कि औरतों को 50 साल की उम्र या 40 साल की उम्र की औरतों को ये सिखाना चाहिए कि अपना ब्रेस्ट को कैसे पैल्पेट करें या फील करें। हम लोग यही कहते हैं कि महीने में एक दफा जब आप नहा रहे हों, जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाएं, पीरियड्स के बीच में, मतलब पीरियड्स के वक्त तो गांठें महसूस हो जाती हैं, पीरियड्स से पहले महसूस हो जाती हैं, पीरियड्स के बाद हफ्ता भर बाद आप अपना ब्रेस्ट नहाते वक्त, क्योंकि साबुन लगाएं ब्रेस्ट के ऊपर फिर अपना हाथ उसके ऊपर लगाएं तो गांठ जो हो वो अच्छी तरह महसूस हो जाती है। हमने देखा है कि जो अनपढ़, जिनको हम अनपढ़ कहते हैं औरतें, उन्होंने भी कभी रेडियो में सुना हो तो वो आते हैं क्योंकि हमने रेडियो में सुना, हमने अपना ब्रेस्ट को फील किया तो हमें ये गांठ मिली। सो ये बहुत सबसे अहम बात है कि औरतों को सिखाना। दूसरी बात ये है कि 50 साल की उम्र के बाद स्क्रीनिंग या 40 साल की उम्र के बाद ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा है 15 या 20 औरतों में से 50 साल की उम्र के बाद एक को जरूर होगा ब्रेस्ट कैंसर, इतना इसका इंसिडेंस हाई है। तो इसलिए हर एक की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। नाउ स्क्रीनिंग में थोड़ी सी गलतफहमी ये है कि मैमोग्राम करा लो तो स्क्रीनिंग हो गई, ये नहीं है। स्क्रीनिंग के दो भाग होते हैं, एक तो कोई डॉक्टर जो ब्रेस्ट कैंसर को देखते रहते हैं वो ब्रेस्ट को अच्छी तरह फील करें, और दूसरा एक साल में या दो साल में मैमोग्राम कराएं। सो ये दोनों भाग हो तब स्क्रीनिंग इफेक्टिव होती है। अगर एक ही भाग करें तो स्क्रीनिंग आधी इफेक्टिव होती है।
14: डॉक्टर धवन, अगर हम कामकाजी महिलाओं को देखें तो बच्चा होने के एक दो महीने के बाद से ही वो ऑफिस जाना शुरू कर देती हैं। ऐसे में बच्चे को दूध पिला पाना तो संभव नहीं है, इसका भी कोई असर होता है उनकी सेहत पर?
15: ये बिल्कुल कंसर्न है। एक तो ब्रेस्ट कैंसर के वजह से कंसर्न है और दूसरा बेबी के लिए भी कंसर्न है कि द बेबी डजंट गेट द मदर्स मिल्क, ही इज नॉट गेटिंग द बेस्ट न्यूट्रिशन और शी इज नॉट गेटिंग द बेस्ट न्यूट्रिशन। सो दोनों तरफ से कंसर्न है।
14: डॉक्टर धवन, आप हमारे स्टूडियो में आए और ब्रेस्ट कैंसर को लेकर इतनी सारी जानकारी आपने हमारे लिसनर्स को दी, हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं तो जरूर बताइए।
15: सबसे अच्छा सिस्टम तो यही है कि अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रखें। लाइफ स्टाइल में सबसे जरूरी चीज है कि टोबैको का इस्तेमाल या सिगरेट के रास्ते या तंबाकू खाने के रास्ते या नसवार रखने नाक में डालने के रास्ते, ये तो बिल्कुल बंद करना चाहिए, क्योंकि ना ही ये कई जगह कैंसर का रोग करता है। बाकी और लाइफस्टाइल, ओवरवेट जो लोग होते हैं उनको भी कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा होता है, और खासकर ब्रेस्ट कैंसर के लिए महिलाओं को यही एडवाइस होगी कि दे शुड गेट देयर चिल्ड्रन अर्ली इन लाइफ, दे शुड ब्रेस्ट फीड देम फॉर अ ईयर, ईयर एंड हाफ और टू इयर्स, एंड दैट विल बी अ बिग बोनस, एंड दे शुड फील देयर ब्रेस्ट्स वंस अ मंथ, अ वीक और 10 डेज आफ्टर देयर पीरियड्स, एंड इफ दे नोटिस एनीथिंग रॉन्ग, कुछ गलत मिले तो फौरन अपने कंसल्टेशन करें।

0: आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम शाहबाद की आवाज में।
1: धन्यवाद शाहिल जी।
0: तो सर, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा दिवस के ऊपर, तो आपके जीवन में शिक्षक या फिर शिक्षा दिवस क्या महत्व रखता है?
1: शाहिल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज

0: मार्गदर्शन देता है कि किस तरीके से आप इस पथ पे चल करके या इस रास्ते पे चल करके अपने जीवन के उद्देश्य को अचीव करो या अपने गोल को जो है प्राप्त कर लो। तो मैं मानता हूं कि हमारे जीवन के अंदर एक शिक्षक का जो है, चाहे वो अर्ली एज में माँ बाप बच्चे के शिक्षक हैं, चाहे वो कम्युनिटी के लोग हमारे शिक्षक हैं, हर एक व्यक्ति जिससे आप सीखते हो वो आपका शिक्षक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है, सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा रहता है हमारे पूरे जीवन में, वो एक स्कूल टीचर का रहता है। मैंने कल अपने गुरु को फोन किया जो मुझे संस्कृत पढ़ाते थे, उसके बाद मैंने एक दो मेरे और जो बहुत करीब हैं, जो आज भी मेरे संपर्क में रहते हैं, जो शिक्षक मेरे, जिनसे मैं टाइम टू टाइम गाइडलाइन लेता रहता हूं कि आगे मैं क्या करूं। तो हम अपने गुरु को अपने साथ जोड़े रखेंगे तो अपना हमारा जो जीवन है वो कहीं ना कहीं और अच्छा दिन ब दिन निखरता जाएगा।
1: तो जैसे कि शिक्षक दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण बच्चे को पढ़ाने वाले साधारण टीचर और स्पेशल टीचर। तो जैसे कि आप एक स्पेशल टीचर हैं जो स्पेशल बच्चों को ट्रेन करते हैं, पढ़ाते हैं, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको स्पेशल बच्चों को ट्रेन करते या फिर पढ़ाते समय?
0: बहुत अच्छी बात आपने कही कि दो तरह के अध्यापक होते हैं, और आज जो है हमारे विश्व भर में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं हमारे समाज की कुछ कमियां हैं, ये कह लो कि कुछ मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो हैं जिनकी वजह से इन बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, कि कुछ कुछ ऐसे इश्यूज हैं हमारे समाज में, जैसे कि चाहे वो लोगों का अवेयर ना होना, बहुत ज्यादा कम उम्र में शादी कर देना, पहले बाल विवाह होते थे, कहीं ना कहीं बंद हुए हैं, लेकिन फिर भी आज जो है एक और नई चीज है कि लोग 35 प्लस होकर के शादियां कर रहे हैं, वो भी एक चैलेंज है। दवाई है, नशा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऐसे एबनॉर्मल बच्चों को जन्म दे रही है। तो आपने कहा कि आप स्पेशल अध्यापक हैं तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहले जब मैं इस विशेष शिक्षा के अंदर आया था तो मुझे लगा था कि यार क्या मैं इसमें कभी कुछ कर पाऊंगा, लेकिन इसके अंदर धैर्य, संयम और आप ये कह लो कि बहुत ज्यादा लगन अपने अंदर भी होनी चाहिए और बच्चे में भी वो लगन जगाने की कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक प्रेरणा होनी चाहिए कि मैं इस बच्चे को करवा पाऊंगा। मैं अर्ली एज के बच्चों के साथ काम करता हूँ, जैसे कि एक ऑटिज्म डिसेबिलिटी होती है, वो ऑटिज्म के अंदर जो बच्चा है, स्वालीनता जिसको कहते हैं, कि बच्चा अपने अंदर लीन रहता है, कि वो समाज के अंदर नहीं आता है, समाज का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, वो अपने अंदर रहता है, कम्युनिकेशन नहीं करता है, एबनॉर्मल बिहेवियर करता है, कि और जो है बोलना उसका बहुत लिमिटेड होता है, कि वो कम्युनिकेशन बहुत कम करता है, बातचीत का बहुत कम करता है। तो ऑटिज्म के ये लक्षण हैं काफी सारे जो हम किसी दिन डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं जिन छोटे बच्चों के साथ काम करता हूँ वहां पे मेरा काम रहता है कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास को देखना। विकास तभी होगा जब हम एक बच्चे को उस तरह का माहौल देंगे। आप चुनौतियों की बात करें, चुनौती तो हम एक साधारण बच्चे को पढ़ाते हैं तो भी आती है, क्योंकि बच्चा एक एज के बाद जो है पर्सन पूछने की जो तादा वो पर्सन पूछने का जो उसका दायरा है वो बढ़ता जाता है, कि बच्चा जो है जैसे जैसे बड़ा होगा, जितना समझदार बच्चा होगा वो आपको हर एक चीज के बारे में पूछेगा कि माइक क्या है, इससे कैसे बात करते हैं, कैसे बनता है, ये है ये, तो चैलेंज आपको आता है, आपकी नॉलेज होनी चाहिए। एक बच्चा मैंने मेट्रो में देखा, अपनी मम्मी को बोल रहा है, पॉइंट कर रहा है, ये नॉर्मल बच्चा, साधारण जिसको आप कह रहे हो कि किसी तरह की कोई भी उसके अंदर मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांगता नहीं थी, तो वो बच्चा जो है एक मेट्रो के अंदर इतना चंचल और इतना शातिर बच्चा, जिसको हम कहते हैं इतना इंटेलिजेंट बच्चा, कि वो हर एक चीज के बारे में पूछ रहा है, और उसकी मम्मी पापा इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने जिस तरीके से बात किया तो मैंने उनको रोका कि नहीं, ये आपकी कम जानकारी है जिसकी वजह से आप इरिटेट हो रहे हो, बल्कि बच्चा आपका बिल्कुल सही है, आप इसकी मन की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हो, उनके जो पर्सनों के उत्तर है वो नहीं दे पा रहे हो, इसलिए आप परेशान होकर के आपने इस तरह का व्यवहार किया, ये बच्चे के ऊपर कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। अब आप स्पेशल बच्चों की बात करें तो अभी हमारा जो रीड इंडिया है वो एक प्रोजेक्ट लेके आया है, PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो मुझे जब इस प्रोजेक्ट में लाया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम यहाँ पे गांव के अंदर उस स्तर पे काम कर रहे हैं जहां पे लोगों की पहुंच बहुत कम है। बहुत अच्छा आपने बोला कि बहुत कम है, कम तो होता है कि कोई चीज नहीं है, मतलब बहुत कम है, लिमिटेड, यहाँ पे बिल्कुल वो सोर्सेज है ही नहीं, बल्कि जो हमारे सेंटर है वहां पे ऑलरेडी वो NCR के टच में है, लेकिन फिर भी जब मैं लोगों घरों में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनके उनसे बात करता हूँ, जब मैं उनके घरों

0: घरों को देखता हूँ, उनके माँ बाप से बात करते, तो हमें ये लगता है कि इस एनसीआर के अंदर रह करके भी माँ बाप जो है कहीं ना कहीं आज जो हम मानते हैं कि ग्रामीण स्तर में क्षेत्र में लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वही हालात है कि एक किसी विशेष गांव या शहर को हम ये नहीं कहेंगे वो पढ़े लिखे हैं वो अनपढ़ है, नहीं, लेकिन जहाँ पे जागरूकता नहीं है लोगों के अंदर, चाहे वो शहर है चाहे गांव है, एक जैसा ही हाल है। तो मैं जब द्वारका, गुड़गांव, नोएडा के गांव में जाता हूँ, जब मुझे बोला जाता है कि हम आज मोबिलाइज करने जा रहे हैं, लोगों को अवेयर करने जा रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि लोगों को सच्ची में नहीं पता है। बच्चे हैं उनके पास, लेकिन उनकी अपने बच्चों के प्रति काफी माँ बाप जो हमें पॉजिटिव मिलते हैं कि अच्छा सोचते हैं कि हाँ ये कोशिश कर रहे हैं, काफी माँ बाप जो है वो कोशिश ही नहीं करते हैं या फिर उनको कोशिश करने की प्रेरणा ही नहीं मिलती है, क्योंकि हर जगह पे विशेष शिक्षक अवेलेबल नहीं है। सरकार कोशिश कर रही है और हो सकता है कि टाइम लगे उसके अंदर, बट हमारे एनजीओ ने जो अभी ये पीडब्ल्यूडी का अभी शुरू किया हमने, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो हम चाहते हैं कि हम तीनों सेंटरों के अंदर हर एक डोर टू डोर जाकर के लोगों को अवेयर करें, उनको हमारे सेंटर तक लेके आए, चाहे वो किसी भी तरह से हमें उसको उनको बुलाना पड़े कि चाहे आप लेकर के आओ बैठो या फिर हमें काम करने का एक मौका दो। तो हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं, हम आप भी देखते होंगे, आप एक विद्यार्थी हैं, आप देखते हो ज्योति एक लड़की है और उसके साथ दो शाइना एक गुड़िया है और एक और दो तीन लड़कियां और भी हैं, तो आप देखते होंगे वो बच्चे भी आपके साथ बैठ के कंप्यूटर सीख रहे हैं, वो बच्चे भी लाइब्रेरी में आ रहे हैं, वो बच्चे भी एक क्लासरूम के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चे भी ब्लैक बोर्ड पर लिखना चाह रहे हैं, सब चीजें वो बच्चे कर रहे हैं। तो आप उनको कैसे कह सकते हो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं? चैलेंज आते हैं, बच्चे को लाना सबसे बड़ा चैलेंज है, उनके माँ बाप को ये समझा पाना कि नहीं ये कोई रोग या किसी पिछले जन्मों का कर्म पाप नहीं है, ये एक हमारी ही गलतियां हैं जो कहीं ना कहीं हमसे हुई है, चाहे वो बच्चे के जन्म से पहले है, चाहे वो बच्चे के जन्म के दौरान है या जन्म के बाद है, तो ये गलतियां हमारी हैं, लेकिन हम उनके अंदर दवाइयों से सुधार नहीं कर सकते, लेकिन हम एक थेरेपी एक स्कूल सेटअप के अंदर डाल करके बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। और कई सारी टेक्निक हम इसमें यूज करते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो तो डिपेंड करता है कि बच्चा कौन से स्तर का है, क्या बच्चा डिसेबिलिटी के साथ आ रहा है, क्या क्या वो इश्यूज अपने साथ लेके आ रहा है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसकी गोल सेट करते हैं, फिर उनके ऊपर हम काम करते हैं।
1: तो जैसे कि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, अगर इस प्रकार की सिचुएशन मेरी क्लास में किसी बच्चे को है कि वो पढ़ने में असक्षम है, तो मैं किस प्रकार से उसकी सहायता कर सकता हूँ?
0: आप कह रहे हो कि पढ़ने लिखने में बच्चे को समस्या आ रही है, वो समझ नहीं पाता है, मैं उसको कैसे पहचानूं? तो पहली बात तो ये है कि एक विद्यार्थी अपने सहपाठी को एक सहयोग दे सकता है, लेकिन आपको लग रहा है तो आप, मैं मानता हूं कि आप पढ़ने, अगर आप लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करें तो उसमें होता है कि आप लिखना पढ़ना गणित को समझना या भाषा के अंदर किसी तरह की असमानता ना हो, तो आप लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे को पहचान सकते हैं। आप उसकी नोटबुक देखो, क्या उसका लिखता है वो सही लिखता है, आपके आपका सहपाठी है क्या वो बोर्ड से देख करके लिख पाता है, लिख पाता है तो क्या वो कितनी गलतियां करता है, वो टै को ठह तो नहीं लिख रहा, ए को आ तो नहीं लिख रहा, कि आप ये समझो कि मेरा नाम राजीव है तो वो खाजीव बोल दे, रा को खै बोल रहा है, मतलब उसको शब्दों की पहचान नहीं है, बिना देखे लिख नहीं पा रहा है। आप देखते हो कि क्लास के अंदर एक अध्यापक ने एक पाठ पढ़ाया लेकिन उसको याद नहीं रह पा रहा है, तो आप ये मान सकते हो कि किसी तरह की उसके अंदर अक्षमता है, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, लेकिन आप पहले अध्यापक को बताओ, कि कभी कोई बच्चा खुल करके नहीं बता पाता है। अध्यापक का काम ही होता है कि जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वहां पे एक काउंसलर है आपके स्कूल में,
2: जी हाँ,
0: आप काउंसलर को बता सकते हो, क्योंकि आपका काम पहचानना नहीं है, आप एक विद्यार्थी हो, आप एक अपने साथी का या अपने सहपाठी का जो वीक पॉइंट है उसको आप सबके सामने उजागर मत करो, आप जाके डायरेक्ट अपने काउंसलर को बताओ, अपने टीचर को बताओ, ताकि उसकी उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। अब काउंसलर जो है एक प्रोसीजर में आएगा, एक प्रक्रिया में आएगा, वो क्या करेगा, वो बच्चे से मिलेगा। देखो हम किसी को, चाहे आपने देखा ज्योति इतना अच्छा कर रही है, अगर वो एक किसी स्पेशल स्कूल में जा रही होती तो सर इतना अच्छा ना कर पाती, क्योंकि उसको सब डिसेबल्ड बच्चे अपने सराउंडिंग दिखते, यहाँ पे वो नॉर्मल बच्चों को देखती है, आपको देख के भी सीखती है और वो दूसरे बच्चों को देख के भी सीखती है, उसके पहनने में, ओढ़ने में, खाने में, हर चीज में। आप, मैंने 2 महीने में इतने बदलाव देखे हैं जो शायद एक विशेष आवश्यकता वाले विद्यालय के अंदर जाके बच्ची लर्न नहीं कर पाती जितना वो यहाँ कर पाती है। सरकार भी चाहती है कि हमारा जो समाज है वो समेकित शिक्षा होना चाहिए, मतलब हमारे जो विद्यालय हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए कि जहाँ पे सब बच्चों को एक समान भागीदारिता मिले। आपने सबको शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, उसी तरीके से इन बच्चों का भी अधिकार है। तो आपने कहा कि मैं क्या करूं, आपका सबसे जो महत्वपूर्ण रोल है वो यही था कि आपने बच्चे को देखा, अब आपने विशेष शिक्षा का टॉपिक आपने लिया, इस पे आपने मुझसे बात की, तो आपकी कुछ न कुछ जानकारी बढ़ी है, तो आपको इस तरह के बच्चे लगते, तो आप उनको आप पहले अपने लेवल पे देखो कि क्या उनको सच्ची में इस तरह की दिक्कत है, कोई और है। आप एक दोस्त हो तो कभी कभी बच्चा जो है ना माँ बाप या घर के हालात ऐसे हो जाते हैं कि बच्चा जो है घर से इतना सारा बर्डन लेके आता है, कभी कभी होता ना कि माँ बाप के झगड़े, बाप का शराब पीना या इस तरह की घर की कई सारी समस्याएं होती है जो बच्चे को पढ़ने में बाधाएं डालती हैं। तो क्या आप उससे बात करके देखो, अगर आपके गली मोहल्ले का है तो आपका आप उसके घर का सिचुएशन देखो कैसी है, ये चीज अपने तक रखो, गुप्त रखो। उससे क्या होगा कि आप जो है पहले बच्चे का जो स्तर है क्या वो डिसेबिलिटी में आता है या फिर कोई और समस्याओं के साथ वो ये इन सब चीजों से संघर्ष कर रहा है। अगर ये सब चीज नहीं है तो आप एक काउंसलर को बता सकते हो जो आपके स्कूल में है, आप उनको बताओ कि मैम उस बच्चे को मुझे लग रहा है किसी तरह की कोई समस्या है, मैं उसको परेशान देखता हूँ, उसको पढ़ने में भी समस्या आ रही। तो आप एक काउंसलर जो है फिर उसका असेस करेगा, उसको देखेगा, उसके माँ बाप को बुलाएगा, उनसे बातें करेगा, तो फिर एक प्रोसीजर आएगा। फिर आपके स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर भी होते हैं आजकल, जो एनसीआर के स्कूल है उनके अंदर ज्यादातर स्पेशल एजुकेटर हैं, तो फिर धीरे धीरे एक प्रोसीजर शुरू होगा, फिर काउंसलर जो है स्पेशल एजुकेटर के पास भेजेगा, फिर वो आइडेंटिफाई करेगा, असेसमेंट करेगा, देखेगा बच्चा कहाँ अटका हुआ है। तो एक थोड़ा लंबा प्रोसीजर है लेकिन इसके अंदर पूरे समाज की भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: तो ये बात तो ये जैसे कि हम स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, फिर आसपास में हम जहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे बच्चों के बारे में, आज भी हमारे आस पड़ोस में जैसे मजदूर भाई होते हैं उनके बच्चे भी पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाते हैं, तो हम उन बच्चों की किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, क्योंकि उनके मम्मी पापा जो होते हैं इस बारे में ध्यान नहीं देते हैं कि वो बच्चा किस प्रकार से विकसित हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, और उनको ये पता भी नहीं रहता कि हाँ हम अपने बच्चे को किस प्रकार से ट्रेंड करें या फिर हम उसको कहाँ भेजें कि उसका मानसिक विकास हो सके।
0: आपने जो बात बड़ी अच्छी बोली है, क्योंकि आप बहुत होशियार हो और आप चीज़ों को पकड़ पा रहे हो, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, पर्सन बहुत अच्छा है ये कि उनको हम कहाँ भेजें। देखो वो स्कूल नहीं जा रहे हैं
1: जी,
0: तो मैं आपके इस गांव की बात करूं शाहबाद की, तो वहाँ पे हमारे पास अभी रीड इंडिया का जरिए प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट जो जो हमारे डायरेक्टर है गीता मैम, उन्होंने बोला था कि अगर ये रहे ना रहे लेकिन PWD हमेशा रहेगा, कि ये हमने रीड इंडिया के साथ जोड़ दिया है। तो अगर आपके गांव के अंदर आपको ऐसा बच्चा दिखता है तो आप उसके माँ बाप को बात नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं, आप हमें बताओ, हम उनसे जाके बात करेंगे, हम हमारे सेंटर के अंदर उस बच्चे के साथ काम करेंगे। यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर भी है, काउंसलर भी है, स्पीच थेरेपिस्ट भी है, हमारी एक पूरी टीम है, जैसे कि आप भी हो। अगर मैं आपको कहूंगा कि बेटा इस बच्चे को आप कंप्यूटर का कुछ सिखा दो या इसको कुछ कलरिंग करा दो, तो आप मना नहीं करोगे, क्योंकि आप इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा था ना, वो हमने पार्ट शुरू कर दिया ऑलरेडी। भारत सरकार की जो नई नई शिक्षा नीतियां आ रही हैं या फिर पुरानी जो शिक्षा नीति है वो स्कूलों तक है, लेकिन कहीं अच्छे तरीके से काम हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है। जो आपने कहा कि उन बच्चों को हम कहाँ पहुंचाएं, तो अभी तो मैं ये कहूंगा कि आपके आसपास अगर कोई स्पेशल स्कूल है तो वहां बता सकते हो। अगर जैसे कि हमारा रीड इंडिया है तो आप यहाँ पे हमें बताओ, हम उनसे मिलेंगे, उनके माँ बाप से बात करेंगे और उनको हमारे सेंटर में लेके आएंगे, और जब वो बच्चे हमारे सेंटर में आएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने इस बच्चे को पहचाना और ये आज यहाँ पे आ रहा है, और जब वो चीज़ सीखेगा तो आपको और ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो ज़रूरत है आज के युवा को विशेष शिक्षा से जुड़ने का, विशेष शिक्षा वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पहचानने का और उनके साथ एक प्रेम से रहने का, कि ये ना हो कि आप उनसे नफरत करें। आप जिस तरीके से मैं आपके अंदर ये एक उमंग देख रहा हूँ कि आप इस मतलब स्पेशल एजुकेशन या विशेष शिक्षा के बारे में जानने के लिए उत्तेजित हैं या इतने भावुक हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी क्लास के 30 और बच्चे भी इस चीज को जानने की कोशिश करें और आप उनको भी मोटिवेट करो, क्योंकि आपके अंदर जो है मुझे भी वो शिक्षक वाली चीजें नजर आ रही है कि आप चीजों को जल्दी पकड़ पा रहे हो, और एक अच्छे शिक्षक की ये खास बात होती है कि वो वातावरण के अंदर अपने आप को या वातावरण के अंदर जो समस्याएं हैं उनको निपटने के लिए उसी वातावरण के अंदर सोर्सेज ढूंढता है, मतलब स्रोत ढूंढता है कि किस तरीके से मैं इस समस्या को इसी वातावरण के अंदर खत्म कर दूं या इसको सोल्व कर दूं।
1: तो अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: तो मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि हमारे हर घर के आस पड़ोस में, हर गली में लोगों को बच्चों की समस्याओं के बारे में नहीं पता है कि विशेष आवश्यकता है या बच्चे के विकास में देरी हो रही है या बोल नहीं पा रहा या किसी तरीके से वो जो है अनजान है। जिन जिन श्रोताओं ने आज हमें सुना है, मैं चाहूंगा कि अगर वो थोड़ा भी उनको समझ में आया है, अगर उनके आस पड़ोस में ऐसे बच्चे हैं, तो अपने नजदीकी किसी भी एनजीओ में या उन माँ बाप को उस एनजीओ का पता बताए, या फिर ये देखें कि इन बच्चों के लिए समाज की कौन सी संस्था, कौन सी इकाई, कौन लोग जो काम कर रहे हैं। समाज सेवी भी होते हैं, बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, जैसे रीड इंडिया जो इस प्रोजेक्ट को लेकर के आया है और वो इस पे काम कर रहा है। तो जैसे कि अगर शाहबाद, वजीराबाद और नोएडा के एक गांव की बात करूं, तो हम अगर वहां के श्रोता सुन रहे हैं, तो हमारा सेंटर है जहां पे आप वहां पे बच्चों को भेज सकते हैं। और अगर जो जहां पे अभी हमने शुरू नहीं किया है, आगे चल करके हम करेंगे, तो वहां के जो लोग हैं वो अपने आसपास ऐसे स्रोत ढूंढे कि जहां पे इन बच्चों के लिए कुछ हो रहा है, जैसे स्कूल है, स्पेशल स्कूल है, या फिर कोई एनजीओ है, अभी तो बहुत सारे एनजीओ वगैरह काम कर रहे हैं, या फिर एक सरकार ने एक ना शिक्षक रखा हुआ है, घुमक्कड़ जिनको कहते हैं, वो सरकारी स्कूलों के अंदर आते हैं वीक में 3 दिन 4 दिन, आपके स्कूल में स्पेशल एजुकेटर है हाँ, तो वो कभी कभी आते हैं, इन बच्चों को एक रिसोर्स रूम, मतलब एक संसाधन कक्ष जिसको बोलते हैं, जहाँ पे इन बच्चों के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिनसे कि बच्चा पढ़ता है, जिनसे सीखता है, हाँ हाँ, तो वो एक रूम होता है हर स्कूल के अंदर, तो आप वहाँ पे भेज सकते हैं।

0: एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और इस चीज को जागरूकता के लिए हर स्कूल के अंदर एक एजुकेटर जो है होना चाहिए और उसको भी गांव के अंदर जागरूकता बढ़ानी चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए कि हाँ इस तरीके के बच्चे हैं तो आप हमारे पास लेके आइए, चाहे आप उनको गृह आधारित काम दे दो या फिर उनको आप रेगुलर क्लासें लो या जो भी है, लेकिन हमारे समाज के लोगों को ऐसे स्रोत ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पे अवेलेबल नहीं है कि हम इन बच्चों को कैसे और कहाँ भेज सकें।
1: तो राजीव जी, आप हमारे कार्यक्रम शाहवाद की आवाज में आए, आपने हमें स्पेशल

गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी लोग? मेरा नाम स्मिता है। लास्ट टाइम हमने ये डिसाइड किया था कि जो हमारे लाइफ स्किल के सेशंस होंगे वो लीडरशिप सेशंस के पैरेलल चलेंगे। जो जो टॉपिक्स मैम कवर करेंगे, हम उसको एक एक टॉपिक को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि एज अ लीडर तो ठीक है कि हमें वो चीजें समझनी, एज एन इंडिविजुअल भी हम उससे कैसे शुरुआत कर सकते हैं। मैम की प्री कमिटमेंट की वजह से इस बारी जो हमारा सेशन है वो अभी अगले वीक पोस्टपोन हो गया है। सो आई थॉट कि एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीम वर्क का, हमने पहले भी ये वाला सेशन लिया था, बट कुछ नए यूजर्स हमारे साथ जुड़े हैं, नए बेनिफिशरीज जुड़े हैं। सो मे बी वी कैन स्टार्ट विथ टीम वर्क, कि टीम वर्क की क्या इम्पोर्टेंस होती है, कि हमें एक साथ जुड़ के काम करना क्यों जरूरी है। सो आई होप जिनको ये रेपिटेटिव लग रहा होगा, इसका मतलब है आपने टीम वर्क में काम करना शुरू कर दिया है। और कुछ अगर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं तो टुवर्ड्स द एंड, छोटा सेशन है ये, वी विल हैव अराउंड 30 मिनट्स ऑफ माई स्पीकिंग एंड देन वी कैन शेयर योर व्यूज। तो टीम वर्क से क्या समझ में आता है, किसी को कुछ पता है ये टर्म टीम वर्क क्या होती है? टीम वर्क इंग्लिश की टर्म है, इसका मतलब है कि एक साथ जुड़ के, एक होता है कि अकेला चलता है, एक इंसान अकेला काम करता है, और दूसरा होता है कि हम आते दुनिया में अकेले हैं लेकिन रहना तो हमें सबके साथ है। और घर में हो गया, प्रोफेशनली हो गया, पर्सनली हो गया, हम कोई भी काम अलग से नहीं करते, अकेले नहीं करते, कुछ लोगों के साथ जुड़ के, कुछ लोगों की मदद से करते हैं, कुछ लोगों के साथ जुड़ के करते हैं, उसको हम टीम वर्क कह सकते हैं। रीड इंडिया में जो काम करते हैं लोग, उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टीम वर्क है, क्योंकि हम समुदाय के साथ काम करते हैं, समुदाय के लिए काम करते हैं और समुदाय में रह के काम करते हैं। हमारे जितने भी सेंटर्स हैं वो कम्युनिटी के अंदर हैं, कम्युनिटी के लिए हैं, और कम्युनिटी ही उनसे हमारे हम उनसे सेंटर्स के थ्रू इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि वो, अगर हमारे सेंटर्स पे कोई आता नहीं है तो हमारे सेंटर की कोई वैल्यू नहीं है। वो मशीनें, वो किताबें, वो जितनी हमने आपको रिसोर्सेज दिए हैं, चाहे वो मशीनें हैं, चाहे ब्यूटी का सामान है, इसीलिए हमारे सेंटर्स आज, जो जो 15-15 साल पुराने सेंटर्स भी हैं, आज भी वो लोग क्यों काम कर पा रहे हैं, क्योंकि नया नया समुदाय जुड़ रहा है और जो पुराना समुदाय है, जो पुराने बेनिफिशरीज हैं, जो पुराने बच्चे हैं जो सीख के गए हैं, वो आज भी आते हैं। शायद कुछ बच्चे किताबें पढ़ना शुरू किया था उन्होंने और आज वो कोई ना कोई लघु उद्योग की ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे भी बच्चे होंगे जो हमारे साथ पिछले 5-10 सालों से जुड़े हैं, तो उनको हम क्यों जोड़ के रख पा रहे हैं, क्योंकि हमारा काम जो है वो समुदाय का है। और हम अपनी सर्विसेज अगर सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं देंगे तो कोई हमारे सेंटर पे नहीं आएगा। कभी कभी हम ऐसा भी

0: देंगे। अब एनजीओस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बेनिफिशरीज हैं वो हमारे सेंटर पे आके सीखना चाहते हैं। कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या क्वालिटीज हैं हमारे सेंटर में, स्पेशली लड़कियां क्यों आके सीखना चाहती हैं? आप सभी लोग करीबन 10 साल, 8 साल, 5 साल, 2 साल से सेंटर चला रहे हैं। कोई मुझे बता सकता है कि जब हम टीम वर्क की बात करते हैं या टीम की बात करते हैं, टीम वर्क तो छोड़ दीजिए, टीम वर्क से हमें सिर्फ यही समझ में आता है कि वो 4 लोग जिनके साथ हम रीड में जुड़े हैं, यानी कि आप हो गए, लाइब्रेरियन हो गया, ट्रेनर हो गया, लेकिन हम अपने बेनिफिशरीज को नहीं भूल सकते। वो लोग जो हमारे साथ आके हमारे लिए जुड़ के काम कर रहे हैं, उनको हम नहीं भूल सकते। मैं एक रिसेंट एग्जाम्पल दूंगी, जो हम रामपुर में विजिट किया था उसका मैं अभी अभी आपको एग्जाम्पल दूंगी, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू कि आपको क्यों लगता है कि समुदाय हमारे साथ जुड़ के क्यों रहता है, बार बार क्यों आता है, साल दर साल, 10 साल, 15 साल तक क्यों आता है हमारे पास, हमारे सेंटर्स में? फ्री दे रहे हैं क्या, इसलिए आता है या कोई और रीजन है?
1: मैम, हमारा कमिटमेंट, जो हमारी कम्युनिटी के साथ कमिटमेंट है, जिस
0: क्या
1: तरह से हम
0: कमिटमेंट?
1: कम्युनिटी को लेकर चलते हैं अपने साथ, मैम, जो कनेक्शन हमने उनके साथ बिल्डअप किया है, जो कॉन्फिडेंस कम्युनिटी को हमारे ऊपर है, हमारे साथ सीखने में है, वो चीज उन्हें अलग जगह नहीं मिल रही, इसलिए वो हमारे साथ कनेक्टेड है। 5 साल से हम
0: ओके,
1: उन्हें रिटेन कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर द गुड कॉज। और उन्हें भी पता है कि वी आर डूइंग इट, मतलब नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि वी आर डूइंग इट विदाउट एनी प्रॉफिट। तो दिस इज आर डेडिकेशन टुवर्ड्स अ वर्क विच इज कनेक्टिंग द कम्युनिटीज।
0: तो आवर डेडिकेशन को हम एक पॉइंट रखते हैं कि हम जो एज ए टीम काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम डेडिकेटेड है, यानी कि वो 4-5 लोग जो सना के सेंटर में हैं, और सना के पास 2 सैटेलाइट सेंटर्स भी थे, जो इनकी टीम है वो एक क्वालिटी सर्विस दे पा रही है अपनी कम्युनिटी को, इसीलिए उनकी जो कम्युनिटी है वो लगातार साल दर साल इनसे जुड़ी हुई है। सिंस वी प्रोवाइड क्वालिटी ट्रेनिंग एंड ट्रस्ट फैक्टर, दीक्षा ने मैसेज में लिखा है, थैंक यू दीक्षा। और कोई बताना चाहेगा? इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है, हम ये समझने की कोशिश करें कि हमारी एज ए टीम, एज ए रीड इंडिया, आज यहाँ पे 80 लोग जुड़े हैं, क्या 80 लोग एक टीम है या हम अलग अलग सेंटर से जुड़े हैं? अगर हम एक हैं तो हमारी एक कॉमन क्वालिटी क्या है एज ए टीम? अगर हम अलग अलग हैं तो हमारे अलग अलग क्या क्वालिटीज हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। एनीबडी एल्स कोई कोशिश करना चाहेगा, कुछ बोलना चाहेगा?
2: गुड आफ्टरनून
0: गुड आफ्टरनून स्वाति जी।
2: मैम। एक तो सेफ इन्वायरमेंट है फॉर गर्ल्स गर्ल्स स्टूडेंट्स एंड बॉयज स्टूडेंट्स ऑल्सो, एंड सेकंड ये है कि हमारा जो इमोशनल अटैचमेंट होता है उनके साथ वो भी काफी अच्छा होता है, क्योंकि वो हमारे एरिया के होते हैं, उसके साथ साथ ही जो 3 महीने वो हमारे पास सीखते हैं, तो उन 3 महीनों में हम भी उनको ज्यादा अच्छे से मतलब पहचान सकते हैं और वो भी हमें अच्छे से जानते हैं, तो एक अटैचमेंट बन जाती है। छोटे बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, तो हमारे पास 3 टू 6 ईयर एज ग्रुप से लेकर मतलब अडल्ट तक के सारे लेवल का कुछ ना कुछ सबको सीखने का चांस है, सीखने के लिए साधन है हमारे पास, तो इसलिए वो हमारे पास मतलब सालों तक अटैच रहते हैं।
0: राइट राइट, थैंक यू स्वाति। और कोई कुछ बताना चाहेगा? बिल्कुल ठीक बोला है स्वाति ने कि जो क्वालिटी सर्विस है, जो डेडिकेशन है, और जो हम उनको जानने की कोशिश करते हैं, एक एक रिलेशनशिप बना के रखते हैं उनसे, उनकी तकलीफें जो हैं या उनके जो चैलेंजेस हैं उसको समझने की कोशिश करते
1: लाइट
0: हैं।
1: ऑफ हो जाएगी, मतलब देखिए लाइट आ गई है ना, ये यूपीएससी का कितना
0: तो वी आर गोइंग अ स्टेप अहेड, ये हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जैसे कि सना हो गई, स्वाति हो गई, एवरी ईच वन ऑफ अस, जितने भी लोग हमारे यहाँ कोऑर्डिनेटर्स हैं, सालों से जो जुड़े हुए हैं, हम लोग एक स्टेप फर्दर जा रहे हैं, फर्दर जा रहे हैं एज इन हम लोगों के घर में जा जाके उनको निकाल के लेके आते हैं कि नहीं आप आइए हमारे सेंटर पे सीखिए। सो दिस इज अ क्वालिटी ऑफ अ वेरी गुड टीम, जहाँ पे हम बियॉन्ड आवर कमिटमेंट जो है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वी बिलीव इन आवर मिशन, हम बिलीव करते हैं कि कोई हमारे सेंटर पे आएगा तो वो हमारे सेंटर से कुछ सीख के ही जाएगा, कुछ लेके ही जाएगा, और ऐसी चीज लेके जाएगा जो हमेशा साल दर साल उसके साथ रहेगी, क्योंकि अगर हमने किसी को कोई स्किल दे दिया तो वो स्किल हम वापस तो नहीं ले सकते ना। आपने किसी को 100 रुपए दे दिए तो वो 100 रुपए तो खत्म हो जाएंगे, वो शायद खाना खरीद लेगा उसका, या कपड़ा खरीद लेगा, या अपनी कोई भी जरूरत की चीज खरीद लेगा। लेकिन जिसको हमने कला दे दी एक बार, चाहे वो स्टिचिंग की स्किल है, ब्यूटी की स्किल है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की स्किल है, या फिर सॉफ्ट स्किल है यानी कि बातचीत करने का तरीका, या अपना आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सॉफ्ट स्किल हो गई, टेक्नोलॉजी स्किल हो गई, तो वो स्किल तो कोई वापस नहीं ले सकता। बट वी आर गोइंग अ स्टेप अहेड, हम लोग एज ए टीम काम करके एक और दरिया जो है वो पार करते हैं, जो कि है सोशली, सोशली जो दबाया जाता है कि नहीं आपको नहीं जाना है, सेंटर पे नहीं जाना है, बाहर नहीं निकलना है, उसको भी हम कोशिश करते हैं कि उस बांध को भी हम तोड़ें। दिस इज वन ऑफ द कोर क्वालिटी ऑफ आवर टीम, जो रीट की जो टीम है ये कोर क्वालिटी बन गई है। एनीबडी एल्स, कोई और कुछ, किसी ने कमेंट में लिखा है कुछ, लेट मी जस्ट रीड दैट। पॉजिटिव एनवायरमेंट, ज्योत्सना जी लिख रहे हैं पॉजिटिव एनवायरमेंट, वेरी गुड। कैन यू डिफाइन पॉजिटिव एनवायरमेंट?
2: गुड आफ्टरनून मैम,
0: गुड
2: गुड
0: आफ्टरनून,
2: आफ्टरनून
0: गुड
2: ऐसी
0: आफ्टरनून।
2: सोन। हाँ जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग यहाँ पे आते क्यों है कि एक उनको ट्रस्ट होता है जीव दुनिया के नाम से ही, इसलिए लोग हमारे पास आते हैं और लड़कियों को भेजते हैं हमारे यहाँ पे कि उनको पता है कि यहाँ पे बच्चियां जा रही है या लेडीज, हमारे घर से कोई भी लेडीज जा रही है तो यहाँ पे सेफ है इस चीज के लिए। और जो भी सिखाया जाएगा, जो भी चीज होगी यहाँ पे अच्छे से ही सिखाया जाएगा, उनकी ग्रोथ ही होगी, कभी वो डाउन नहीं होगी किसी चीज के लिए। तो कुछ
0: बिल्कुल
2: बेनिफिशियरीज मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं, उनसे आपसे बात भी करना चाहते हैं। दरअसल आप उन्हीं से बात करिए, वो लोग क्यों आते हैं यहाँ पे, क्या उनको आने से फायदा है, वो क्यों सीखते हैं यहाँ पे आने के बाद, बताओ
0: राइट
2: बेटा, आप बता
0: राइट,
2: सकते हो? कोई भी
0: गुड आफ्टरनून।
2: पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं, हमें यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है और इसके साथ हम आगे भी बढ़े और इससे हेल्प मिले उसके लिए हम आते हैं। रानी
0: ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो
2: आप
0: मच,
2: बोलना, बहुत कुछ बोलो। गुड आफ्टरनून
0: गुड आफ्टरनून।
2: मैम। हाँ, मुझे ना सिलाई करना बहुत पसंद है इसलिए मैं आती हूँ।
0: तो रीट के सेंटर पे क्यों आते? सिलाई सेंटर तो बहुत सारे खुले हुए हैं,
2: हाँ,
0: बहुत सारे
2: सीख
0: खुले।
2: भी रहे हैं उसके साथ नए नए डिजाइन में, मतलब सीख रहे हैं, जो बन रहा है वो सीख रहे हैं, मैम अच्छे से बताती हूँ इसके साथ।
0: अच्छा
2: बताओ, प्रोडक्शन में आप काम करके पैसे कभी कमा रहे हो उस टाइम? हाँ, काम
0: अच्छा
2: करके पैसे भी मिलते हैं।
0: अच्छा पैसे भी मिलते हैं, इसलिए आप आपको यहाँ आना अच्छा लगता है कि सीख भी रहे हैं और प्रोडक्शन का
2: हाँ
0: काम
2: हाँ
0: भी आ रहा है। वेरी
2: जी,
0: गुड वेरी गुड, थैंक यू ज्योत्सना जी। यू वर ट्राइंग टू से समथिंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट के बारे में, शायद आप कुछ कहना चाह रहे थे। हेलो
2: हाँ जी मैम। हेलो मैम,
0: हाँ
2: हेलो मैम,
0: बोलिए,
2: बोलो बोलो सर, मैं ये कह रहा था जो स्टूडेंट्स जब यहाँ आते हैं
0: सुमन
2: वो
0: जी, सुमन जी आप म्यूट। हाँ
2: हम जब आते हैं यहाँ पे वो थोड़ा सा प्रॉपर क्लियर नहीं होता उनके माइंड में, बहुत कुछ चीजें होती हैं, और थोड़ा सा ऐसे एनवायरनमेंट से आता है जो वो बहुत पॉजिटिव साइड पे सोचते नहीं है। तो यहाँ पे आके जब उन लोगों को हर चीज पॉजिटिवली सोचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और इंप्लीमेंट करने के लिए कहा जाता है तो उनके माइंड्स काफी क्लियर हो जाते हैं और पॉजिटिव सोचा। और सबसे अच्छी चीज है कि हम जो एनवायरमेंट है सिर्फ स्टडी वाला रखे हैं, और चीजों पे बातें करना, डिस्कस करना या कुछ ऐसी चीजें करना, उसमें हम लोग बच्चों को इंटरेस्ट लेने ही नहीं देते, जिससे क्या होता है वो लोग पॉजिटिव सीखते भी हैं और साथ साथ बात भी पॉजिटिव करते हैं। और एक
0: राइट
2: ही जगह उन्हें तीन तीन चार चीजें सीखने के लिए यहाँ पे मौका भी मिलता है। जैसे मैम, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेकअप सीख रहे हैं या वो कंप्यूटर सीख रहे हैं, लेकिन उनका बाद में इंटरेस्ट डेवलप होता है कि हम थोड़ा सा और भी कुछ सीख लें और आगे सीखें, तो ऐसे भी वो सीख सकते हैं।
0: वेरी नाइस वेरी नाइस, थैंक यू जोशना जी। सो मैंने कहा था मैं एक एग्जाम्पल दूंगी कि किस तरीके से हमारी टीम एक कदम आगे ही चल के काम करती है। अभी हम रिसेंटली रामपुर में गए थे और करीबन मेरे को लगता है 50, बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी उस दिन, और 50 से भी ज्यादा लड़कियां उस सेंटर में बैठी हुई थी। नया सेंटर जो रिलोकेट किया है हमने, हमारा रामपुर में जो सेंटर है, बहुत गर्मी थी एकदम, लेकिन एक एक बच्चा जो था, एक एक स्टूडेंट्स जो था, वो कुछ ना कुछ बोलना चाह रहा था, कुछ ना कुछ एक उमंग थी उनके अंदर कि हाँ हम रीड सेंटर पे आए हैं तो रीड सेंटर से कुछ सीख के जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे, इतना एनर्जी था। पहले शुरुआत में वो बहुत घबरा रहे थे बोलने में, बहुत ज्यादा, पहली बारी मिले थे, मैम थी हमारे साथ, तो बहुत ज्यादा उनको हिचकिचाहट हो रही थी बोलने के लिए, लेकिन 5-10 मिनट के बाद वो लोग कंफर्टेबल हुए, और फिर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी कोई भी लड़कियां, इतना उनके पास था शेयर करने के लिए। तो ये एनर्जी कहाँ से आई? ये एनर्जी आई जब हमारी टीम ने उनको ये कॉन्फिडेंस दिखाया कि नहीं, आप आइए सेंटर पे, आइए सीखिए, यहाँ पे सीखने के साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल, यानी कि आपस में जब आता है लोग, इंसान मिलते हैं तो उनको लगता है कि हम और भी कुछ सीख सकते हैं। देखो सिलाई तो कोई भी सिखा देगा, कोई भी सेंटर पे जाएंगे आप सीख जाएंगे, ब्यूटी भी आप कहीं ना कहीं सीख जाएंगे, आप हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग भी सीख जाएंगे, लेकिन एक माहौल जो हम क्रिएट करके रखते हैं अपने सेंटर में, जिसमें जो आप ही ने मुझे बताया कि हम पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट करके रखते हैं, हम एक अच्छे तरीके से सिखाते हैं, जो सना ने बोला कि जो भी हम सिखाते हैं हम बहुत अच्छी क्वालिटी ट्रेनिंग देते हैं, हम सेफ एनवायरमेंट रखते हैं कि ताकि अगर लड़कियां आ रही हैं या उनके पेरेंट्स को कोई ऐसा हिचकिचाहट ना हो, ज्योत्सना जी ने बोला कि हम फोकस करते हैं जिस काम के लिए आए हैं, पहले हम वो काम करें, उस पे फोकस रहें, इधर उधर गॉसिप नहीं करें, नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं फैलाएं। तो ये सारी चीजें जो कंपोनेंट्स हैं ना, ये मिलके ही किसी टीम को सक्सेस करा पाती हैं। तो यही कुछ चीजें आज मैं एक छोटी सी मैंने पीपीटी बनाई है, आई जस्ट ट्राई एंड शेयर विद यू। ऑल राइट, सो टीम वर्क यानी कि एक ग्रुप में एक साथ होके हमें जो एक कॉमन गोल, अब हमारे केस में कॉमन गोल क्या है कि हमारे सेंटर को इसी तरीके से ग्रोथ मिलती रहे, हमारा सेंटर कभी भी ऐसा ना हो कि हमारा सेंटर तो खुला है लेकिन कोई वहां सीखने ही नहीं आना चाहता। तो एक कॉमन गोल जो है, हम आज जितने 89 पीपल जुड़े हुए हैं, हम सबका एक कॉमन गोल है कि आपका छोटे दर पे गोल ये है कि आपका सेंटर जो है वो साल दर साल चलता रहे, उसमें बढ़ोतरी होती रहे और थोड़ा थोड़ा करके हम उसको सेल्फ सस्टेन कर सकें। ऐसे ही अगर हम सारे सेंटर्स को ले लेंगे और इन सबका जो एक कॉमन गोल होगा वो यही होगा कि हमारे सेंटर्स चलते रहें, इनमें कोई रुकावट नहीं आए, और जो हम मिशन है जो हमारा, जो कि कम्युनिटी को सर्विस देने का हमारा गोल है, वो हम एक साथ अचीव करें। अगर आप में से कोई भी एक सेंटर वो गोल अचीव करने में नाकाम हो जाता है, किसी एक सेंटर पे कोई प्रॉब्लम आती है, तो उंगली किसके ऊपर उठेगी? सीधा रीड इंडिया के ऊपर। तो जो टीम है हमारी, जो हम टीम वर्क की आज बात कर रहे हैं, तो अगर एक भी पुर्जा उस टीम का कमजोर हो जाता है या उसकी वैल्यूज मैच नहीं होती या वो किसी और रास्ते पे निकल जाता है, तो जो हमारी टीम है, जो एक माला है, अगर उसमें से एक मोती निकल जाता है तो माला टूट जाएगी। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि लगातार हम सेंटर से जुड़े रहें, हम सेंटर्स को अपनी कोर वैल्यूज से जोड़ के रखें, क्योंकि हम टीम वर्क की इंपॉर्टेंस समझते हैं, और इसीलिए रीड जो है, मैम भी है, हम सबको नर्चर करती हैं कि हम सबका जो कॉमन गोल है वो हमेशा एक ही रहे और लाइव रहे, यानी कि हम उसे चेंज कर सकते हैं ग्रोथ की तरह, लेकिन ऐसा ना हो कि अलग ही दिशा में चला जाए। मान लीजिए कोई सेंटर बोलता है ठीक है अब तो मुझे ये करना ही नहीं है, अब मैं इसमें जिम खोलना चाह रहा हूँ, अब मैं अपना सेंटर में जिम खोलूंगा, जी अब तो ये सेंटर हमारे को दे दिया गया, अब मैं इसमें जिम खोलूंगा, जिम की बहुत डिमांड है। क्या ये हमारा गोल है? नहीं, हमारा गोल है स्किलिंग का, हमारा गोल है एजुकेशन का, हमारा गोल है सॉफ्ट स्किलिंग का, हमारा गोल है कि हम महिलाओं को या लड़कियों को या जो कम्युनिटी है ऐसे एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड प्रोवाइड कर सके, जिससे कि उनकी ऑल्टरनेट इनकम हो सके, जिससे हम सेंटर भी सेल्फ सस्टेन कर सके। यही 5-6 गोल है, इसके अलावा तो और कोई गोल नहीं है हमारा। तो ये कॉमन गोल को डिफाइन करना और सभी पूरी टीम जो है, जो जितने भी लोग एक टीम में जुड़े हैं उसकी तरफ काम करने से ही वो हमारा गोल अचीव हो सकता है। कभी भी टीम में हम ये नहीं कह सकते अच्छा मैं तो अच्छा कर रही हूँ, कभी कभी हम क्वेश्चन करते हैं कि ठीक है आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ या आपके फाइनेंशियल डेटा नहीं आया या आपकी रिपोर्ट्स टाइम पे नहीं आ रही, बोले नहीं मैंने तो दे दिया था, आगे उन्होंने नहीं दिया या आधी ही आई या आधी रिपोर्ट ही आई, बट हमारा अचीव तो नहीं हुआ ना। तो टीम में जो लीडर होता है या जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ या चलिए मुझे ज्यादा तजुर्बा है, या कभी कभी लीडर जो होता है हम चुनते नहीं है लेकिन वो इतना रिस्पेक्ट कमांड करता है कि उसको मान लेते हैं कि हाँ ये लीडर है, तो ये एज ए लीडर या एज ए कोर मेंबर ऑफ एनी टीम, आप हम सबका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम कभी भी आई विन यू लूज, मतलब मैं तो जीतूं और तुम हार जाओ, कि दूसरे को नीचे खींच के हम ऊपर नहीं बढ़ सकते। ये टीम अच्छी टीम के कॉम्पोनेंट नहीं है, अच्छी टीम की कॉम्पोनेंट है कि मैं भी जीतूं तुम भी जीतो, यानी कि हम दोनों मिलके प्रोग्रेस करें, मेरी प्रोग्रेस थोड़ी ज्यादा हो सकती है, तुम्हारी कम हो सकती है, कि तुम्हारी कभी ज्यादा हो सकती है, मेरी कम हो सकती है, राइट? सो टीम में सबका मिल बांट के काम करना, सबके रोल्स डिफाइन होना. अगर रोल्स सही से डिफाइन नहीं होंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, और कंफ्यूजन में कोई भी ढंग से काम नहीं कर सकता. घड़ी जो होती है, घड़ी में पीछे हमको सिर्फ 3 सुइयां दिखती हैं, राइट? लेकिन कभी अगर हम उसको पलट के खोल के देखें तो पीछे बहुत सारे छोटे छोटे छोटे छोटे पुर्जे हैं जो काम करते हैं. अगर उनमें से एक भी पुर्जा काम करना बंद कर देता है तो घड़ी सही टाइम नहीं दिखाएगी, या टाइम दिखाएगी ही नहीं, राइट? वो 3ों सुइयां शायद मूव नहीं करेंगी या गलत मूव करेंगी. तो हम जो पीछे हैं, पर्दे के पीछे हैं, पर्दे के आगे हमारी लीडरशिप है, हमारी ट्रस्टीज हैं, हमारी रिपोर्ट्स हैं, हमारी वेबसाइट है, लेकिन इसको बनाता कौन है? बनाते तो हम लोग हैं. तो जब हम आपसे रिपोर्ट्स लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, फोटोज लेते हैं, आप ये सोचिए, आप वो घड़ी का वो छोटा पुर्जा है जिसको टाइम तो देखेगा कोई, कोई होगा कॉर्पोरेट, उसने देखना है कि हाँ ये लोग क्या काम कर रहे हैं, तो वो टाइम दिखाना हो गया. लेकिन पीछे का काम तो हम सब मिलके कर रहे हैं ना, तो अपने काम को हम कभी भी छोटा नहीं सोचेंगे. कुछ भी अगर रीड में कुछ काम चल रहा है तो आप ये सोचिए कि ये काम सबसे इम्पोर्टेंट है, तभी तो मुझे दिया गया है. दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, कि कभी भी मत सोचिए कि आई एम अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग टीम. अगर मैं ये नहीं भी करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं 100% नहीं दूंगा इसका या नहीं दूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो फॉर अ गुड टीम, सारे कॉम्पोनेंट्स का एक साथ जुड़ के अच्छे से काम करना बहुत जरूरी है. अभी हमने बात करी कि रोल्स डिफाइन होने बहुत जरूरी होते हैं एक टीम में. अगर रोल्स डिफाइन नहीं होंगे कि भाई किसने सुबह सफाई करनी है, किसने स्विंग की क्लासेस लेनी है, किसने रिपोर्ट भेजनी है, किसने फाइनेंस का हिसाब रखना है, किसने देखना है कि भाई चाय पत्ती दूध चीनी सेंटर में है कि नहीं, किसने देखना है कि किताबें सही से लगी हुई हैं, मशीनें ठीक से काम कर रही हैं, अगर ये रोल्स ठीक से डिफाइन नहीं होंगे तो हमारा जो लाइब्रेरी है, हमारा जो सेंटर है, वो नहीं चलेगा, वो सही से नहीं चलेगा. देर इज सम जोक गोइंग ऑन, जो हमारा ये सेंटर है जूम यूजर वाला, आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू हियर दैट जोक. आप याद रखिएगा, वी विल कम बैक टू यू एंड वील हियर योर जोक. सो इस जो जो टीम वर्क होता है उसमें ऑनेस्टी बहुत जरूरी है. अभी सना ने और जो 2-3 लोगों ने बोला, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम फुल डेडिकेशन के साथ अपनी कम्युनिटी में काम करते हैं, उसी तरीके से एक अच्छी टीम का काम करने के लिए टीम में आपस में ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है. हम समय समय पे आपको पूरे आई वुड रिक्वेस्ट जूम यूजर, इधर आप चले जाएं बिकॉज देर इज सम गॉसिप गोइंग ऑन, या फिर आप अपनी स्क्रीन बंद कर दीजिए बिकॉज मेरे लिए बहुत अटेंशन डाइवर्शन हो जाता है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट. आई कैन हियर यू लाफिंग एंड आई कैन हियर यू यू नो, इट इज वेरी इरिटेटिंग. आई एम श्योर आपके पास ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, आप स्क्रीन बंद कर लीजिए, सिर्फ नाम वास्ते आप ऑनलाइन रह सकते हैं. आई हैव नो इश्यूज विद यू, राइट? प्लीज स्विच ऑन योर स्विच ऑफ योर स्क्रीन. आप अपने जोक्स कंटिन्यू करिए. आई विश यू ऑल द बेस्ट, राइट? ऑनेस्टी के साथ काम करना बहुत जरूरी है एक टीम में, बिकॉज अगर हम ऑनेस्ट नहीं होंगे तो दैट मीन्स हम टीम में इक्वली ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आ रहे, तो कहीं ना कहीं हम चीजों को छुपा रहे हैं, और ये हमारी टीम की हेल्थ के लिए और हमारी टीम की ग्रोथ के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है. आज आप यहाँ पे हैं, हो सकता है आप आगे जाके किसी और कंपनी में जाएंगे या किसी बड़ी संस्था के साथ काम कर सकते हैं. तो एज ए लीडर, क्योंकि हम लीडरशिप के भी सेशन लेते हैं, एज ए लीडर और एज ए मेंबर ऑफ द टीम, बहुत जरूरी है कि हम कोई चीज अगर हमें पता चली है और हमें लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, तो हमें सब मेंबर्स के साथ वो शेयर करना चाहिए. सो ऑनेस्टी

जो हम जितनी भी किताबें पढ़ते हैं, आपकी लाइब्रेरीज में बहुत किताबें होंगी टीम वर्क के ऊपर, हाउ टू विन पीपल, अच्छे जो टुगेदरनेस के ऊपर जो किताबें हैं, उसमें तीन चीजें बहुत जरूरी हैं कि ट्रस्ट, टॉलरेंस एंड टुगेदरनेस। यानी कि ट्रस्ट मतलब हमें पूरा ट्रस्ट होना चाहिए अपनी टीम के ऊपर। बट ट्रस्ट आएगा कैसे? वो ट्रांसपेरेंसी से आएगा, जिसकी बात हमने पहले वाली स्लाइड में करी। टॉलरेंस, अब टॉलरेंस सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान अलग है, हर इंसान को अलग चीज मोटिवेट करती है, हर इंसान के लिए अलग चीज जो है वो अच्छी है या बुरी है। तो हम एक टीम में एक जैसे तो नहीं होते, हर टीम में अगर 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 90 लोग हैं, तो हर कोई अलग अलग होगा। तो टॉलरेंस बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो जनाब यहाँ बैठे हुए थे, 3 4 लोग, उनके लिए कुछ और इम्पोर्टेंस था, बट हमें हमें उनके लिए भी टॉलरेंट होना है। मे बी आज वो सुन रहे हैं ये चीज, हो सकता है कल उनके काम पे आए, आज नहीं इम्पोर्टेंट लग रहे, बट वो आगे जाएंगे, किसी कंपनी में काम के लिए जाएंगे, तब शायद ये बात मेरी उनको याद रहे या याद आ जाए, जब उनको कहा जाएगा कि टीम वर्क कितना इम्पोर्टेंट है। सो हमें हर किसी को टॉलरेट करना सीखना पड़ता है, और जिनके पॉजिटिव्स हैं, जो नेगेटिव्स हैं, उस पे काम करना चाहिए एज ए गुड टीम। अगर एक टीम में किसी की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो और लेकिन अगर उनकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, तो एज ए टीम लीडर हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है तुम्हारी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं लेकिन स्पीकिंग स्किल्स तो अच्छी नहीं है, तो हम यू नो वी वोंट गिव यू अ रोल। हम स्वॉट एनालिसिस की बात करते हैं, तो हमें स्ट्रेंथ्स देखनी है कि हमारे टीम में जो अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, उनकी अलग अलग स्ट्रेंथ्स क्या है। किसी की फाइनेंस में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो सकती है, किसी की क्रिएटिविटी में बहुत अच्छी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी फाइनेंस में अच्छी है, लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि कुछ बोर्ड पे लिख दो या ड्रॉ कर दो, तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत बुरी है और ड्रॉइंग तो उससे भी बुरी है। लेकिन कोई बोले कि इसका फटाफट एक्सेल में कुछ बना दो, इसका जोड़ तोड़ कर दो, इसको बताओ कि इसका क्या, इसकी एक रिपोर्ट बनानी है जो फाइनेंस से रिलेटेड है, वो मेरे लिए बहुत आसान है। तो मुझे ये पता है, तो मैं अपने जो मेरे लीडर हैं, मैंने उनको पहले ही बताया कि अगर इस तरीके का काम करेंगे तो मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी, और अगर इस तरीके का काम मुझे दिया जाएगा तो शायद मेरी कैपेबिलिटी उसमें नहीं है। सो वी हैव टू बी टॉलरेंट, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ स्किल्स बट ऑल्सो टेम्परामेंट। टेम्परामेंट मतलब कुछ लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं, कुछ लोग बहुत विनम्र होते हैं, कुछ लोगों को जल्दी मतलब एकदम से वो घबरा जाते हैं, टेंशन आ जाते हैं, और काम करने में उनका दिमाग नहीं लगता, डाइवर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो वी हैव टू एज ए टीम लीडर हमें उनको फीडबैक देना है। आजकल सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा अटेंशन डाइवर्ट कर लेता है हम लोगों की। बार बार हम फोन देखते हैं, बार बार हम फोन पे देखते हैं कि क्या चल रहा है, अच्छा क्या न्यूज है। हम लोग भी न्यूज आज सुबह, कल से तो मैं भी न्यूज बार बार देख रही हूँ कि दिल्ली में क्या हो रहा है, अच्छा फ्लडिंग कहाँ पे हो रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो टीम में हमें टॉलरेट करनी है, लेकिन हमारा गोल कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर कोई रिपोर्ट आज जानी है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आज जानी है, तो एज ए लीडर हमें ये देखना है कि टीम में टॉलरेंस की जगह तो है, लेकिन कॉम्प्लेसेंसी यानी कि काम ना हो, इस चीज की जगह नहीं है, क्योंकि फिर हमारी टीम फेल हो जाएगी। ट्रस्ट, टॉलरेंस, टुगेदरनेस तो होगी, लेकिन टीम फेल हो जाएगी, है ना। सबसे ऊपर गोल है, गोल के अंदर जो कॉम्पोनेंट्स है वो हम पहला कंपोनेंट था कि टीम में सबका एक साथ मिलके चलना बहुत जरूरी है फॉर अ सक्सेसफुल टीम। टीम में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे की कमियों को टॉलरेट करना कुछ हद तक हमें सीखना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि कोई कुछ आके भी बोल जाए तो हम बोले नहीं नहीं ये तो हमारा टीम मेंबर है, और ये नहीं नहीं हम तो इसको कुछ कहेंगे ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। टॉलरेंस एज फार एज इट इज एडिंग टू आवर गोल, राइट, एंड टुगेदरनेस। हम अकेले तो कुछ, अकेले तो टीम है ही नहीं, अकेले तो फिर हम इंडिविजुअल है, राइट। एक ये खरगोश और कछुए की कहानी हम सबने सुनी है बचपन में, हमने ये कहानी छोटे बचपन से सुनते आए हैं कि एक खरगोश था और एक कछुआ था, और ये दोनों ही रेस लगाते हैं, और खरगोश सो जाता है क्योंकि उसे लगता है अरे मैं तो इतना तेज भाग रहा हूँ और इतनी तेजी से मैं फटाफट कर लूंगा, और मैं सो जाता हूँ, थोड़ी देर सो भी जाऊंगा। उसने पेड़, एक पेड़ ढूंढा और उस पेड़ के नीचे सो गया। इतने में जो कछुआ था वो अपने गोल पे कायम रहा, धीरे धीरे धीरे धीरे करके वो गोल की तरफ बढ़ता रहा, और

0: देखा कि कछुआ तो उसने देखा कि खरगोश तो सो रहा है, तो उसने कहा चलो ठीक है मैं इसको जगाता नहीं हूँ, ये तो सो ही रहा है, इन एनी केस मुझे जीतना है, ये रेस जीतने के लिए है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कछुआ जो था धीरे धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और अंत में वो रेस जीत गया। जब खरगोश उठा तो उसने देखा अरे मैं तो सो गया था और मैं ये रेस हार गया। ये स्टोरी सुनी है किसी ने पहले या इससे अलग कोई स्टोरी सुनी है किसी ने कछुए और खरगोश की? आप
1: हाँ जी
0: मेरी स्टोरी
1: सुनी है हम सबने।
0: सबने सुनी है। इस स्टोरी में एक ट्विस्ट लेके आते हैं। इस स्टोरी को अगर एज ए टीम सुनाना है हमको तो हम कैसे सुनाएंगे? अगर खरगोश और कछुए की टीम है, अभी क्या था कि कछुआ अलग भाग रहा था, खरगोश अलग भाग रहा था, वो एज ए टीम नहीं भाग रहे थे। कछुए की अपनी कुछ स्ट्रेंथ थी और खरगोश की अपनी कुछ स्ट्रेंथ थी। अभी वो तो जंगल में रहते हैं लेकिन हम लोग तो इंसान हैं, हमें तो एक साथ जुट के काम करना है, और हम हमारी क्वालिटीज कछुए और खरगोश जैसी ही है क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग अलग है। हाँ, हम सबकी जो शक्तियां हैं या सबकी जो वीकनेसेस हैं वो सबकी अलग अलग हैं। अगर ये स्टोरी थोड़ी सी टीम वर्क में सुनाई जाए तो उसमें हम ये डाल सकते हैं कि कछुआ और खरगोश एक रेस में थे। उस रेस में कई रुकावटें थी। पहले तो बहुत रास्ता जो था वो पथरीला था, बहुत उबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता था, और आगे जाके नदी आती है और फिर पहाड़ आता है, ये रेस उनको पार करनी थी। तो जब कछुए और खरगोश ने देखा कि ये रेस तो इम्पॉसिबल है पार करना, अलग अलग अगर हम करेंगे तो एक पड़ाव तक जाके हम रुक जाएंगे, हम ये रेस नहीं पार कर सकते। तो फिर कछुए और खरगोश ने बोला कि ठीक है क्यों ना हम टीम वर्क में काम करें। जब हम टीम वर्क में काम करेंगे तो जो पथरीला रास्ता है वो खरगोश फटाफट पार कर लेगा और मैं खरगोश के ऊपर चढ़ जाऊंगा, और जो पानी का रास्ता है वो कछुआ फटाफट पार कर लेगा और खरगोश उसके ऊपर चढ़ जाएगा, जो पहाड़ का रास्ता है वो फिर खरगोश कवर करके ऊपर पहुंच जाएगा और कछुआ उसके साथ चला जाएगा। तो अगर रेस पार करनी थी तीनों दोनों को तो ये तीनों पड़ाव पार करने थे। अब अकेले तो वो शायद नहीं कर पाते, खरगोश पानी में डूब जाता और ये दोनों ही हार जाते, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारी इज्जत का सवाल है और हम एज ए टीम काम करेंगे। सो एज ए टीम हमें ये देखना है कि हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम एरियाज हैं, क्या हमारे टीम वर्क करने से वो इश्यूज पार हो सकते हैं? क्योंकि हमारा गोल क्या था कि वो रेस को पार करना, गोल ये नहीं था कि जीतेगा कौन, राइट? अगर गोल रीडिफाइन कर दिया जाए, अगर गोल कॉमन हो, जो कि रीट का गोल है, कॉमन गोल है, हम कोई कंपनी नहीं है कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, हम एक संस्था है जो समाज समुदाय के साथ काम कर रहे हैं, समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या हमारे गोल में इंडिविजुअल का जीतना जरूरी है या एक टीम का एक कॉमन गोल की तरफ बढ़ना ज्यादा जरूरी है? कठिनाइयां उसमें भी आएंगी, हो सकता है कछुआ जो है खरगोश का भार ना सहन कर पाए, बट धीरे धीरे धीरे धीरे करके वो एज अ टीम शायद वो रेस पार कर लेंगे, क्योंकि ये तो कंफर्म्ड है कि अकेले वो नहीं पार कर सकते। हम ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक टीम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लियर रोल्स हो, क्लियर कम्युनिकेशन हो। आप देखेंगे बार बार मैम हमें कम्युनिकेट खुद से करती हैं, जहां भी चैलेंज आता है वो खुद से फोन उठाती हैं, हर एक से बात करती हैं, और जो प्रॉब्लम एरियाज है उसको वहीं के वहीं खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो एज ए लीडर हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कहीं भी कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, जो कम्युनिकेशन है वो लगातार सही तरीके से चलती रहे इन इन अ ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम्पल्स हम आसपास अपने, जैसे कि यहाँ इस फोटो में दिखाया गया है, चींटियां जो हैं बड़े से बड़ा पहाड़ उठा लेती हैं, अपने भार से कई गुना ज्यादा भार वो उठा लेती हैं एज ए टीम जब काम करती हैं। इसका एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, अगर आप देखें हनी बीज, हनी बीज जैसे काम करती है ना, उनका रोल्स बहुत डिफाइंड होता है। रानी मक्खी कौन सी है और वर्कर बी कौन सी है, शहद कौन इकट्ठा करके लाएंगी, और रानी मक्खी की जो क्या कहते हैं सोल्जर बीज होती है वो कौन सी है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन क्लियरली कि किसका क्या रोल है एक टीम में, क्योंकि जो कॉमन गोल है हमें वो अचीव करना है, राइट? और ज्यादातर टीम्स, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां आप देखोगे, ज्यादातर टीम्स जो है ना वो फेल इसलिए करती हैं क्योंकि शायद उनकी लीडरशिप अच्छी नहीं होती। शायद लीडर अच्छा है लेकिन लीडर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। शायद कम्युनिकेशन अच्छे से हो रही है लेकिन उनके गोल्स ही डिफाइन नहीं है। भाई बहुत अच्छे से किया लेकिन पता ही नहीं जाना कहाँ है, पता ही नहीं है करना क्या है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी कम्युनिकेशन अच्छे रखें। अपने लीडर को इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। गोल्स क्लियर होने चाहिए कि टीम किस लिए काम कर रही है। ये जो सेंटर हमने खोला है, इतनी जगह पे जो हमारा सेंटर है, किस लिए क्यों काम कर रहा है। और
1: हेलो,
0: हर,
1: मैं ऑन
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: स्मिता जी हेयर। आई वुड लाइक टू ऐड वन स्टोरी। अभी मैंने फुल टाइम पे
0: मैं एक मिनट अपना
1: अर्ली
0: कैमरा ऑफ करती हूँ क्योंकि मेरे को ना आवाज थोड़ी कम आ रही है। 1 सेकेंड, सॉरी। हाँ जी आप बोलिए, आप कंटिन्यू करिए।
1: आई हर्ड कि समबडी वाज सेइंग कि हम शुड वर्क लाइक सनफ्लावर्स। तो बाय सनफ्लावर, सनफ्लावर हमेशा सन की तरफ देखता है टू गेट एनर्जी, और वो पूरा दिन सन की तरफ देखता है, सन की तरफ ही जैसे साइड पे सन मारा जाता है, सनफ्लावर उधर ही मुड़ जाता है एनर्जी के लिए, ताकि वो अपना बाकी का जो उसका प्रोसेस है वो पूरा कर सके। एंड एट द टाइम्स जब सन नहीं होता है, वेदर की वजह से या कोई और रीजन की वजह से, तो सन के ना होने पे सनफ्लावर का, मैंने सुना कि वो सनफ्लावर्स एक दूसरे की तरफ फेस कर लेते हैं टू एक्सचेंज एनर्जी। तो जब हम अपनी टीम के साथ काम करते हैं, हमारा है, हमारे मेंटर्स हैं, वो लोग हमारी हेल्प करते हैं जहां तक वो कर सकते हैं वो करते हैं। जब वो लोग अपने किसी और काम में हैं, तो वी शुड ऑल्सो वर्क लाइक सनफ्लावर्स, एक दूसरे को सपोर्ट करके अपनी टीम को हर तरह से, हर हर सिचुएशन हम लोगों को आगे लेके जाने के लिए वी शुड वर्क। आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड।
0: इट इज अ ब्यूटिफुल रिप्रेजेंटेशन सीमा जी। अगर आप अलाउ करेंगी तो मैं ये स्लाइड अपने पैक जो हमारा पीपीटी है इसमें ऐड करना चाहूंगी। आई हैव नेवर हर्ड सच अ ब्यूटिफुल थिंग। मतलब डेफिनेटली ये वर्थ ऐड करने का है कि जब जब सूरज चमकता है, यानी कि जब पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी हैं, तब तो हम एज अ टीम काम कर रहे हैं। बट जब कठिनाइयां आ जाती हैं तो हमें एक दूसरे की तरफ देखना है, एक दूसरे का साथ जो है वो एज सनफ्लावर, एज ए गुड टीम मेंबर हमें वी शुड नॉट यू नो लेट गो कि अगर आज कठिनाइयां हैं तो आज हम टीम नहीं है, अब हम अलग अलग काम करेंगे। जब तक कि सब कुछ अच्छा था तब तक हम एक अच्छी टीम की तरह काम कर रहे थे। आज क्योंकि प्रॉब्लम आ गई, सन नहीं है, अब हमें रोशनी नहीं मिल सकती, तो रोशनी हमें एक दूसरे से लेनी है। वेरी गुड, थैंक यू सीमा मैम। सो दैट वॉज अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन आई हैड क्रिएटेड जस्ट ऑन टीम वर्क, वो हम आपसे शेयर कर देंगे। बट ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है, चाहे आज यहाँ पे हैं आप, चाहे कल बड़े हो किसी कंपनी में जाएंगे, चाहे हम ये प्रोफेशनली बात करें तो ज्यादा मतलब ये स्लाइड्स रहेंगी। पर्सनली भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पर्सनली भी हम घर में अकेले नहीं होते, हमारे माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे। और जब अगर शादी हो जाती है, स्पेशली फॉर लेडीज, महिलाओं के लिए हम दूसरे घर जाते हैं तो सास ससुर हो सकते हैं, वहां पे पूरी एक एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है, तो उनको भी हम कैसे एक परिवार को एक टीम की तरह देखें, ये भी शायद सोचने की हमें जरूरत है। क्योंकि आजकल इतने मनमुटाव हैं, इतनी प्रॉब्लम है, क्योंकि वही वाला एटीट्यूड है ना कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो। लेकिन हम सबको तो ये नहीं समझा सकते, सिर्फ खुद को ये समझा सकते हैं। इन छोटी छोटी चीजों को हम आप तक इसलिए लेके आते हैं क्योंकि हो सकता है ये छोटी सी चीज किसी की लाइफ में कोई बदलाव लेके आ सके। मुझे मेरे काम का ये पार्ट नहीं है लेकिन मुझे करने में मजा आता है आपसे सीख, जैसे आज मैंने नई चीज सीखी है सीमा मैम से, ऐसे ही मैं चाहूंगी जो लोग लगातार जुड़ रहे हैं वो कोई ना कोई नई चीज, कोई एक नई सीख हम सबके साथ शेयर करें। बिकॉज सिर्फ मेरा बोलना अच्छा नहीं है, सब सबके पास वो नॉलेज है, सभी पढ़ रहे हैं, सभी के पास वो एग्जाम्पल्स हैं। और कुछ भी एग्जाम्पल सही या गलत नहीं होता क्योंकि हम सब लाइफ से सीख रहे हैं। अगर हम सभी शेयर करने शुरू करेंगे तो आप सोचिए कितना कुछ हम सीखने को मिलेगा। इस सेशन में आना कोई जबरदस्ती नहीं है, जिनको लग रहा है कि कोई इम्पोर्टेंट काम है या कुछ और प्रायोरिटी है, आप प्लीज मत आइए इस सेशन में। ये सेशन इन एनी केस आपसे शेयर कर दिया जाएगा जब आपको लगेगा कि आपके पास वक्त है और आपका दिमाग इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार है, आप तभी भी सुन सकते हैं। सो देर इज नो मैंडेटरी, यहाँ कोई अटेंडेंस नहीं है, रिकॉर्ड किया जाता है जस्ट क्योंकि ये सेशन हम आपसे शेयर करेंगे ताकि वो आप जब चाहें सुन सकते हैं। सो ये जूम जूम यूजर का जोक तो हम सबको सुनना है, राइट? वो क्या जोक चल रहा था? फतेहपुर सेंटर, फतेहपुर, राइट?
2: सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी। जो ये चला था कि आपने वहां पे एक पॉइंट रखा था कि सब जो लीडर होता है वो ये चेक करता है कि जो किचन में चीनी है या नहीं, या फिर चाय की पत्ती है या नहीं। या मैम, बट आई लीडर, मैं ऐसा कुछ मैंने गलती की तो सो मुझे हंसी आई अपने ऊपर कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ। आज मैम जो बात कह रही है वो रियलिटी में मेरे साथ ऐसा हो रहा है,
0: राइट,
2: इसलिए
0: हमने
2: मुझे
0: खेल,
2: मैम,
0: बहुत
2: या मैम दैट नॉट
0: अच्छा
2: जोक मैम,
0: पॉइंट,
2: या मैम
0: बहुत
2: ये
0: अच्छा
2: जोक मुझे
0: पॉइंट।
2: मैम, यस मैम, क्योंकि
0: नहीं
2: मैंने
0: मैंने
2: ये
0: ये
2: गलती
0: जूम
2: फील की
0: यूज
2: कि
0: किया
2: मुझे
0: ना,
2: इन्हें किया है, सो मुझे थोड़ी सी हंसी आई अपने ऊपर आई इस बात को लेकर के, और मेरे
0: नो
2: जो
0: प्रॉब्लम,
2: मेंबर्स हैं उनको भी लगा कि हाँ, तो सो सॉरी मैम, मैंने ऐसा
0: नो
2: कोई
0: नो
2: रॉन्ग
0: सॉरी की
2: वर्ड
0: बात ही नहीं है, मुझे
2: कर।
0: लगा कोई अच्छी बात चल रही है तो
2: नो
0: हमें
2: नो
0: भी
2: नो
0: बोला
2: नो,
0: जाए। तो
2: नहीं
0: मैंने ये
2: मैम,
0: नहीं बोला था कि लीडर जो है वो ये देखेगा चाय पत्ती है कि नहीं, मैंने बोला था,
2: या मैम
0: मैंने ये
2: ओके
0: कहा
2: ओके
0: था कि रोल्स बहुत जरूरी हैं डिफाइंड होना, हमारे सेंटर में या हमारी टीम में किसका क्या रोल है। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया था, जैसे हमारे ऑफिस में ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कुछ चीजों का हिसाब रखना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे जो और 10 लोग हैं उनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर वो मान लीजिए कोई 2 लोग उसमें से उस दिन नहीं आए, तो एज ए टीम मैं ये नहीं कह सकती ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। एज ए गुड टीम मुझे थोड़ा सा आइडिया है अगर, तो मैं कह सकती हूँ ठीक है आज वो नहीं आए तो मैं उसका उसकी जगह ये काम करने को तैयार हूँ। तो दैट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड टीम वर्क, राइट? और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? वेरी
1: गुड आफ्टरनून मैम, सुनीता
0: गुड
2: फ्रॉम।
0: आफ्टरनून,
1: मैम जैसा कि आपने आज सारे पॉइंट इतने अच्छे से बताया, तो उसी का एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि जो स्प्रिंगवुड स्कूल शीतला कॉलोनी का है, इतना प्रोग्रेस कर रहा है, टीम वर्क की वजह से ही कर रहा है। कहाँ लास्ट सेशन जुलाई में मेरे पास 11 एनरोलमेंट थे और अभी मेरे पास 75 स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं
0: वेरी गुड, वेरी गुड,
1: और पेरेंट्स आ रहे हैं, और इसके लिए मुझे और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ रहा है, और ये रिजल्ट है हमारे टीम वर्क का और आपके सेशंस का, और जो भी मेरी हेल्पर्स हैं, मेड हैं, और जो भी मेरी टीचर्स हैं वो मुझे पूरा सपोर्ट करती है। अगर टीम वर्क ना होता तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाते।
0: नहीं
1: थैंक यू
0: कर
1: सो मच।
0: पाते। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे टीम्स अच्छी नहीं थी और वो नहीं कर पाई क्योंकि वो सिर्फ ये देख रहे थे कि भाई हमारी सैलरी आई कि नहीं आई, फोकस यही था कि इस मंथ हमारी सैलरी आई नहीं तो अब हम काम नहीं करेंगे। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हमारे पिछले कुछ दिनों में हमारे सामने आए। सैलरी इज नॉट एन इश्यू, बट अगर हमारे स्कूल चल ही नहीं रहा है, अगर हमारे बच्चे आ ही नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं तो कमी हमारे अंदर है ना, उस कमी को तो हम समझेंगे ना, तभी तो आगे बढ़ेंगे। वरना अगर बच्चे ही नहीं है, बच्चे हम मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे हैं ही नहीं, तो फिर स्कूल सिर्फ किताबें चेयर टेबल रखने से तो कोई फायदा ही नहीं है ना, अगर 10 ही बच्चे हैं। सो वेरी गुड एग्जाम्पल सुनीता जी, आपकी टीम इतने अच्छे से 75 बच्चों को मोबिलाइज कर पाई, अपनी अपने आप को

0: जगह पे आके इतना अच्छा सीख रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट भी जुड़े हुए मैम, आप उनके साथ भी बात कर लीजिए। देखो बहुत
1: हेलो
0: सारे
1: मैम,
0: स्टूडेंट्स
1: हेलो
0: हैं।
1: हेलो एवरीबॉडी, आपको कैसे?
0: वही हम बता रहे कि हमें इधर रीड इंडिया में आके बहुत अच्छा लगता है। रीड इंडिया, रीड मीन्स पढ़ना सीखना। यहाँ पे आके हम जो पढ़ते सीखते, मतलब पार्लर हुआ, जो जो इधर है वो सब हम पढ़ते हैं, हमें अच्छा लगता है। हमारे घर वाले हमें ना इनक्रीज करते कि लेडीज है, सिर्फ लेडीज है इधर, कि आप जाओ पढ़ो, आपको जो अच्छा लगता है वो पढ़ो, आगे पढ़ो ऐसा। और फिर इधर सोना मैडम भी हमें इंक्रीज करते कि ना आप आइए, और लेडीज होंगे, स्टूडेंट होंगे, कॉलेज स्टूडेंट या स्कूल स्टूडेंट है, वो भी इधर आते हैं, स्कूल से पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में, हमें अच्छा लगता है। थैंक
1: अच्छा
0: यू।
1: ठीक है, आपको सबको मैं देख रही हूँ काफी सारे यंग बच्चे हैं। सो
0: हाँ
1: अगला सेशन अगर हम इंटरव्यू स्किल्स पे रखें या फिर रेज्यूमे राइटिंग पे रखें, सो विल अगर जो जो लीडरशिप से लिंक्ड होगा वो तो हम करेंगे ही, बट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ यूथ हियर। तो यूथ के लिए अगर एक सेशन आप चाहेंगे तो हम रख सकते हैं। ये काफी इम्पैक्टफुल रहेगा मुझे ऐसा लगता है, बट आप बता सकते हैं इफ यू नीड। हम रेज्यूमे राइटिंग या इंटरव्यू स्किल्स पे एक सेशन कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन। ठीक है जी, ऑल राइट। सो सभी अगर किसी को और कुछ इनपुट देना है, कुछ शेयर करना है तो प्लीज करिए, अदरवाइज वी कैन क्लोज द सेशन।
0: जी मैम, सुमन
1: हाँ जी सुमन जी,
0: मैम, सबसे पहले आपका थैंक यू, रीड का थैंक यू कि हम लोग इतना कुछ सीखते हैं रीड से, और टीम वर्क में आप लोगों से सीखा है, टीम वर्क में कैसे काम होता है, कैसे क्या होता है। और शीतला बलून जैसे भी स्कूल हमारा टीम वर्क में बहुत अच्छा चल रहा है, उसी तरह से सेंटर में भी हम लोग टीम वर्क में ही काम कर रहे हैं। जो टीम है यहाँ की बहुत कोऑपरेटिव है, जैसे स्वाति जी है, मास्टर जी हैं, और सभी लोग जो जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पुराने भी आ रहे हैं और नए भी आ रहे हैं, टीम वर्क हुआ तभी हम लोग जो लेडीजों को रोजगार देने का एक मिशन है इसको हम लोग चला पाए, और इसको हम लोग आगे लेके जाना चाह रहे हैं इसीलिए। और आज वाले सेशन से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो थैंक यू मैम इस चीज के लिए, थैंक यू।
1: थैंक यू। मुझे भी सीखने को मिला क्योंकि मुझे सीमा मैम ने एक बहुत अच्छे से स्टोरी सुनाई है, और डेफिनेटली जब स्लाइड्स आपके पास पहुंचेंगी ये स्टोरी उसका पार्ट होगी। सो थैंक यू मेरी नॉलेज भी बढ़ाने के लिए, एंड आई होप ऐसे एग्जाम्पल्स और भी आए आगे। सो आप लोग सब सेफ रहेगा, स्पेशली जहाँ बहुत बारिश हो रही है। सीमा मैम आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
2: स्मिता जी, मैं आप सबको शायद पता भी है, मैंने कॉर्पोरेट के साथ भी बहुत साल तक काम किया है, तो एक बहुत ही मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत रिनाउंड कंपनी, उसके सीईओ, उनके साथ मेरी मीटिंग थी रिगार्डिंग माय कैफेटेरिया सॉर्ट ऑफ। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, वो मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग, वो मैं मेरे को इतना अजीब लगा। मैंने बहुत बहुत बार बहुत लोगों से सुना था कि कॉर्पोरेट सेक्टर इज लाइक एक दूसरे को क्रश करके ही आप ऊपर जा सकते, है ना, टीम वर्क का तो कोई सवाल ही नहीं होता होगा। वो
1: बिल्कुल
2: इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ से मेरी बात हो रही थी, एंड ही स्ट्रेट अवे सेड ऑन माय फेस, ही सेड कि 10 में से आपको आगे बढ़ना है तो 9 को यू हैव टू क्रश देयर हेड्स, यू हैव टू क्रश देयर हेड्स, उसके बाद ही आप नंबर 1 पे आ सकती है मैम। बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है, तो कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में आपने आपको सर्वाइव करना है, तो आप अपने आप को यूनिक रखिए, 9 को हटाइए, तब आप पहले नंबर पे आए। वो मेरे लिए बहुत खराब था सुनना, बिकॉज मैंने ऐसा सुना था, लेकिन अपने सामने मैंने ये देखा कि वो खुद मुझे कह रहे हैं कि आप अपने आप को सबसे अलग रखिए, सबको पीछे छोड़ के ही आपकी तरक्की है। लेकिन आज मैं रीड इंडिया के साथ काम कर रही हूँ, एंड वी आर टेकिंग सेशंस ऑन लीडरशिप, ऑन टीम वर्क, एंड सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट, सो लकी कि हम लोग टीम वर्क के बारे में सेशंस ले रहे हैं, टीम वर्क में और कैसे बेटर कर सकते हैं, अपने अपने सेंटर्स पे हम टीम बना के काम कर रहे हैं, और एक बिग फैमिली, बिग इंडिया की फैमिली जो कि महाराष्ट्र और कहाँ कहाँ तक पूरे इंडिया में पहुंची हुई है, उस पे हम लोग सब काम कर रहे हैं। वी आर नॉट क्रशिंग एनीबडीज हेड, वी ऑल आर टुगेदर, वी ऑल आर ग्रोइंग टुगेदर। थैंक यू सो मच इंडिया, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सीमा मैम। इट इज अ रियल थिंग। ऐसा ऐसा कॉरपोरेट में ऐसा ऐसा हर रोज हर घड़ी होता है कि हम किसी को दबा के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह पे ही हम देखेंगे कि हमें आगे बढ़ना है तो किसी को तो दबाना ही पड़ेगा, किसी को साथ लेके। सिर्फ हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ही चाहते हैं कि शायद मतलब माँ बाप ही हैं।

0: जो एक एक तरीके से चाहते हैं कि मतलब बच्चे हमसे भी आगे बढ़ जाएं। शायद और कोई इस दुनिया में नहीं चाहेगा कि कोई और मुझसे आगे बढ़ जाए, बट एज ए टीम जब हमें काम करना है, मैम ने मुझे कभी आगे बढ़ने से नहीं रोका। वो हमेशा बोलेंगी अच्छा तुम ये भी कर लो, अच्छा वो ये भी कर लो, अच्छा ये भी कर लो। अब वो करना है नहीं करना है वो मेरे ऊपर है, राइट? सो हमने मैम से सीखा है कि एज ए लीडर किस मुकाम तक हम पहुंच सकते हैं विद आवर टीम। अकेले तो वो शायद मेरे को लगता है यूएन की भी हेड, मतलब यूएन में, यूनाइटेड नेशन में किसी हो सकता है, किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी सब पार्ट में वो किसी लीडरशिप रोल पे होती है। बट उन्होंने ये अपने ऊपर रखा है कि मुझे सबको साथ लेके चलना है, रीड में काम करना है। अगर वो अकेले निकल जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी किसी मतलब सबसे आगे ही निकल जाएंगी। बट हम 5 लाख लोगों से जुड़ के हम कहते हैं कि हम आज यहाँ पे 80 लोग जुड़े हुए हैं, 80 लोगों के साथ शायद 10 10 लोग बैठे होंगे तो हम 800 लोग हो गए, 800 लोगों की भी फैमिली हो गई, तो आप उसको अगर 10 से गुणा करते हैं तो 8,000 लोग हो गए। ऐसे करते करते हम कहते हैं कि रीड सेंटर पे पिछले 17 साल से करीबन 5 लाख लोग आए हैं। अब वो 5 लाख लोग कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो सीख के गए होंगे, चाहे वो यही सीख के गए होंगे कि किताब खोल के पढ़ना कैसे है, 2 शब्द पढ़ के गए होंगे, कुछ सीख के गए होंगे। तो रीड का गोल यही है, और रीड का ये गोल हम इकट्ठे ही उसको अचीव कर सकते हैं, एक साथ ही अचीव कर सकते हैं, अकेले नहीं अचीव कर सकते। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम, स्पेशली इन आवर केस। और कहीं बाहर भी जाते हैं आप लोग, जो बच्चे सीख रहे हैं, जो बच्चे कुछ ना कुछ करेंगे आगे लाइफ में, आप ये देखेंगे कि हर कोई इसमें बिलीव नहीं करता। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आई विन यू लूज एटीट्यूड पे ही काम करते हैं। हमें कैसा होना है ये हमारी चॉइस है। जैसे सीमा मैम ने बोला शायद वो उस कंपनी में काम नहीं करना चाहती थी, बट वो कंपनी में कोई ना कोई तो काम कर रहा होगा, और वो अगर लीडर कह रहा है कि यू हैव टू विन तो ही और शी हैज टू विन अगर उस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें अपने अंदर कौन सी वैल्यूज लानी है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये चॉइस हमारे हाथ में है। तो जो लोग रीड में जुड़े हैं उनको तो हम यही कहेंगे कि प्लीज आप टीम वर्क में काम करिए, आई विन यू विन, मतलब हो सकता है विन थोड़ी छोटी हो लेकिन सबकी विन हो, इसी में ही हमारा यही हमारा कॉमन गोल। सो थैंक यू मुझे बर्दाश्त करने के लिए 1 घंटे के लिए, एंड लिसनिंग टू मी एंड शेयरिंग सो मेनी नाइस थिंग्स। सो कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी
1: मैम,
0: हाँ जी
1: मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने टीम वर्क के बारे में मुझे बताया, हम लोगों को अच्छा लगा और कि ये नॉलेज बढ़ती है कि हम कैसे टीम वर्क करेंगे, कैसे लोगों के साथ मेंटेन होकर के अपने वर्क को आगे बढ़ाएंगे। बट मैम, एक इन्फ्लुएंस करना होता है, किसी को बताना होता है कि कई बार हम ऐसी जगह पे स्टे करते हैं, रहते हैं, जहाँ पे हमने अपना सेंटर ओपन कर रखा है, कुछ करना चाहते हैं। वहाँ की जो आसपास के लोग हैं ना, वो कंजर्वेटिव टाइप के हैं। अब वो कंजर्वेटिव टाइप के हैं तो वो निकल ही नहीं रहे उससे, तो उन्हें कैसे, किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करें? मैम, ये तो समझ, हम लोग क्या है कि अभी कम एज के हैं, कुछ इतनी नॉलेज नहीं होती है, अभी जस्ट है, ग्रो में यूथ है,
0: तो
1: तो इतना
0: इसका,
1: समझ।
0: हाँ इसका जवाब तो मैं नहीं दूंगी, मेरे पास तो महारथी है इसका जवाब देने के लिए, मेरे पास सीमा जी
1: मैम, आई
0: है,
1: वांट
0: फरा
1: अ
0: है।
1: मेन, आई
0: नहीं
1: मीन
0: नहीं 1 मिनट आप रुकिए। सो
1: यस
0: आई
1: मैम,
0: वुड रिक्वेस्ट फरा, सीमा जी, मीना, सना, ये तो आप कंजर्वेटिव कम्युनिटी की बात कर रहे हैं।
1: हाँ जी मैम,
0: सो
1: कल बैठे
0: बिल्कुल बिल्कुल आपको जवाब यहीं पे मिलेगा। सो प्लीज प्लीज बी माई सपोर्ट, मैं इसमें वीक हूँ, मेरी टीम मुझे सपोर्ट करेगी।
2: यस मैम, एक्चुअली मैम आदित्य इज फ्रॉम माय सेंटर ओनली फतेहपुर। तो मैम अभी न्यूली लॉन्च सेंटर है तो इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। ये मैंने आदित्य को भी बोला था कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, बिकॉज इतनी जल्दी कम्युनिटी बाहर नहीं आती है। वी रियली नीड टू वर्क हार्ड फॉर दिस।
0: राइट। सो फरा, आप कुछ टिप्स देना चाहेंगी फतेहपुर सेंटर को? आप बताएं कि कंजर्वेटिव कम्युनिटी में कैसे लोगों को बाहर निकालते हैं।
2: पहले तो मैं थोड़ा सा हिंदी में जानना चाहूंगी क्योंकि इंग्लिश मेरे इतनी जल्दी समझ में नहीं
0: तो वो
2: आता।
0: ये कह रहे हैं फरा कि उनकी कम्युनिटी में लड़कियों, उनकी जो समुदाय है वो इतना खुले दिमाग का नहीं है। अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो प्लीज मुझे माफ करेगा, बट आई थिंक दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि वो लड़कियों को नहीं निकलने दे रहे हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि सेंटर पे लड़कियां आएं या महिलाएं आएं या कोई भी आए सेंटर पे सीखने के लिए।
2: जैसे कि इन्होंने बताया कि अभी इनका नया सेंटर खुला है, और अगर इनका नया सेंटर खुला है तो इतनी जल्दी वो लोग बाहर नहीं आएंगे, धीरे धीरे करके आएंगे। इनको थोड़ा सा समय
0: सब्र रखना पड़ेगा, उन लोगों को समझाना पड़ेगा। और अगर इन्होंने एक दो लड़कियां या पांच लड़कियों को भी बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत अच्छी वहां पर सेंटर की बातें पहुंची, तो ज्यादा से ज्यादा लड़कियां खुद आना शुरू हो जाएगी, इनको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट ये है कि हम समझा कैसे रहे उन्हें, हम किस तरीके से बता रहे हैं, क्या चीज उन तक पहुंच रही है, कि सिर्फ हम सिखा रहे हैं। 1 मिनट, सॉरी, ऐसा लग रहा है मैं खुद से बात कर रही हूँ। तो हम
1: एक्चुअली
0: वहां पर क्या चीज पहुंचा रहे हैं, पहले हम उनके उनको बताएंगे कि हमारा सेंटर किस लिए खुला है, लाइब्रेरी है, सिलाई है, पार्लर है, कंप्यूटर है, बट खुला है लेकिन लड़कियों के लिए क्यों खुला है, लड़के आगे इससे सीख के क्या करेंगी, उनके लिए ये किस तरीके का प्रॉफिट हो सकता है, किस तरीके से वो सक्षम बन सकती है, तो वो थोड़ा सा आप उनको समझाइएगा। और अगर वो आपकी बात नहीं समझे तो दो तीन टीचर्स को लड़कियों को लेके जाइए, उनसे थोड़ा सा बात करवाइए, जब तक आप अच्छे से नहीं समझाएंगे तब तक वहां के लोग नहीं निकल पाएंगे। थैंक यू फरा। नमस्ते
2: जी नमस्ते स्मिता जी।
0: नमस्ते, थोड़े आप हेल्प करेंगे हमारे दोस्त को यहाँ पे, इनका
2: जी
0: नया
2: जी
0: सेंटर खुला है।
2: जी मैम। हाँ देखो, सबसे पहले हमने जिस गांव में भी आज सेंटर निकालते हैं, नई कम्युनिटी होती है, तो सबसे पहले लोगों के साथ हमें एक रिश्ता बनाए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी जैसे हम लोग किसी गांव में जाते हैं और हमारी मीटिंग लेके जाते हैं कि हम रीड इंडिया में ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि उसके घर पर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कभी किसी का कोई बीमार है या उसके बच्चे को कोई स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले हम उसकी बात सुने। हो सकता है कि जो उसकी प्रॉब्लम है उसको हम हल कर दें। कभी कभी स्कूल में अपनी पहचान होती है कि चलो तुम्हारे बच्चे का एडमिशन हम करवा देते हैं, कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल तक ले गए, तो एक बार हमने जिस बंदे का काम कर दिया तो वो हमेशा हमारा फ्रेंड बन जाता। फिर उसको आप कहीं कहीं पे भी बोलो कि तुम इस सेंटर में आ जाओ तो वो तुरंत आने को तैयार है। और उसी गांव में जो हमारे सेंटर से जो लड़कियां सीख के गई हैं, आप देखो जब 10 लड़कियां दूसरी होती हैं और 5 लड़कियां हमारे जो सेंटर से निकल के जाती हैं उनमें एक अलग ही चेंज होता है, तो उन्हीं के माध्यम से वहां पे जाके कम्युनिटी में उनकी मीटिंग करवाएं कि देखो ये आपके यहाँ से लड़कियां नहीं थी और इनमें इनसे पूछो इन्होंने वहां पे क्या क्या देखा, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो शुरुआत में ये चीजें अगर हम करते हैं तो धीरे धीरे कम्युनिटी का एक रिश्ता बन जाता है हम लोगों के साथ, तो वो बहुत हेल्प करता है। जैसे अभी भी हम लोग नए नए और गांव को जोड़ रहे हैं, तो उसमें भी हम यही प्रोसेस कर रहे हैं। 5-7 लड़कियों को जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, मैं उनको लेके जाते हैं, उनसे बात कराते हैं, तो ऑटोमेटिक 10-10, 20-20 रजिस्ट्रेशन डेली होते हैं।
0: थैंक यू
2: और
0: मीना
2: मुझे
0: जी।
2: बताइए
0: सर कि वहां लड़कियां निकलना क्यों नहीं चाह रही है, क्या वो स्कूल नहीं जाती, या फिर वो पेरेंट्स मना कर रहे हैं, या वो कुछ कुछ से खुद से कुछ सीखना नहीं चाहती, कैसा माहौल है वहां का, क्योंकि हमने तो नहीं
1: एक्चुअली
0: देखा ना।
1: एक्चुअली मैम टाउन एरियाज में क्या है कि जब थोड़ा जो पिछले होते हैं ना, जब थोड़ा सा ग्रो करते हैं, तो आजकल आपको पता है ना सोशल मीडिया जो बहुत बच्चों को टाइम जो है वो खराब करवा रहा है, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, तो उनका मन ही नहीं करता है कि कुछ स्किल डेवलपमेंट करें, कुछ सीखें, या आते भी हैं तो कुछ नए तरीके से, या फिर लोग जॉब के लिए करते हैं कि हाँ ये ऑप्शन है तो मुझे सिर्फ जॉब सीधे मिल जानी चाहिए, वो स्किल डेवलपमेंट के लिए बढ़ ही नहीं रहे हैं, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आते हैं क्लास में बैठे, कोई कॉलेज भी जा रहा है, पढ़ रहा है, फिर वहां से निकल रहा है, उनको मार्क्स की चिंता भी नहीं है, उनके पेरेंट्स को उनकी जो बिहेवियर है या जो उनकी आजकल जो टाइम का चल रहा है उसकी भी कोई चिंता नहीं है, कोई गेम खेल रहा है तो कोई इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहा है, तो ये सारी चीजें लोगों के अंदर बनती जा रही है। एक्चुअली वो कंजर्वेटिव है लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए, अंदर से वो एकदम शांत है क्योंकि वो बच्चों को कुछ कहते ही नहीं है कि यहाँ पे ये सेंटर ओपन हुआ है, यहाँ पे आप स्किल डेवलपमेंट कर लो। तो इसके लिए मैम कोशिश की जा रही है, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि इन्फ्लुएंस करने का क्या और भी रीजन हो सकता है, जब मैंने अच्छे अच्छे सारे उनको चीजें बताई कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, एजुकेशन की तरफ आप बढ़ सकते हैं, एजुकेशन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से आप बैठ के, ढेर सारी बुक्स हैं आपके पास, कोई भी बुक आप बैठ के पढ़ सकते हैं, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, तो लोग आते हैं, लोग विजिट करते हैं फिर चले जाते हैं, उसके बाद बात ही नहीं करते, भूल जाते हैं, तो ये चीज करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन
2: आप
1: रखा।
2: एक चीज कर सकते हैं, आप देखिए कि किस तरह की स्किल्स की जरूरत है उस वाले एरिया में, आपके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन सी स्किल्स के लिए आप ज्यादा उनसे बात करेंगे तो उनके लिए बेस्ट रहेगा। जैसे हम लोग तो बिल्कुल एकदम टिपिकल गांव में बैठे हुए हैं, जहाँ पे इलिटरेट लोग चलते हैं, तो उनको तो हम ऐसी चीजें सिखाते हैं जैसे स्टिचिंग हो गया, या और कोई स्किल्स जो जो अनपढ़ औरतें भी कर सकती हैं उसपे फोकस करते हैं। आपके वहां देखिए कि किस टाइप की स्किल्स पे वो लोग थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं। उसी के फोटोग्राफ आप दिखाइए उसको, अपने सेंटर के फोटोग्राफ दिखाइए, और
1: जी मैम,
2: लेडीज स्टाफ को लेके जाइए उनके साथ,
1: और
2: दैट विल बी
1: आपकी
2: मोर
1: किटी
2: इम्पोर्टेंट।
1: ज्यादा डेवलप है तो फिर आप एडवांस कोर्स वहां स्टार्ट करिए। जैसे कि अगर बच्चे बेसिक कंप्यूटर नहीं सीखना चाह रहे कि बेसिक तो हमें आता ही है, तो थोड़ा टेली सीटेट मतलब ये चीजें स्टार्ट करिए, ट्रिपल सी का कोर्स वगैरह, कि जिससे बच्चों को सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट आए, वो लगे कि हाँ हमारे लिए सेंटर खुला। ये नहीं कि हमने बेसिक चीजें रख दी है, बेसिक कंप्यूटर सिखा रहे हैं, बेसिक सिलाई सिखा रहे हैं, बेसिक पार्लर सिखा रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं सिखा सकते, तो बच्चों को लगता है कि ज्यादा जहाँ एरिया डेवलप होता है कि ये चीजें तो हमें बेसिकली घर में आती है, हमारे किस काम आने वाली चीजें, तो एक्चुअली
2: थोड़ा सा
1: मैम,
2: एडवांस भी रखिए।
1: मैंने ये भी बताया कि मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को,
2: फ्रेंडली
1: मैंने ये
2: माहौल
1: भी कहा
2: चाहिए,
1: कि 10th और 12th तक के बच्चों को मैं एजुकेशन भी दे सकता हूँ। आपके कोई इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है, या आपके कुछ ऐसे आपके अंदर कुछ फीलिंग्स टाइप की प्रॉब्लम्स है, तो मुझे बताइए, शेयर कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं ट्यूशन के लिए भी कह रहा हूँ, स्पेशली बताने के लिए कि हाँ, मैं
2: हाँ
1: अलग से
2: हाँ बोल
1: आप
2: रहे म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए हैं।
1: ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने काफी हेल्प किया, हम लोग ट्राई करेंगे और बेटर करेंगे। ओके मैम,
2: तो
1: या
2: थैंक
1: मैम,
2: यू, ये टीम वर्क का
1: थैंक
2: बहुत अच्छा एग्जाम्पल था मेरे सामने सामने, सभी लोग चाह रहे थे कि इनका सेंटर जो है वो किसी तरीके से चल चल पड़े, और शायद हम लोग कभी मिले भी नहीं है, और शायद हमने अभी आपका सेंटर देखा भी नहीं है, बट एवरीबडी वांटेड कि ये टीम, ये रीड का सेंटर है और ये चल नहीं रहा है। सो मतलब कितने पैशन के साथ सबने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, तो आई थिंक इससे ज्यादा लाइव एग्जाम्पल नहीं हो सकता था टीम वर्क का। आई एम सॉरी मैं आपका नाम नहीं जान पा रही, फतेहपुर से जो है
1: आदित्य श्रीवास्तव, आदित्य,
2: आदित्य, आदित्य आपके ना ये जो सना का सेंटर है यहाँ पे कुछ बच्चों ने, आपका जो सना का ये जो सेंटर है यहाँ पे कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से सीख के अभी वो कुछ कर रहे हैं, तो आप उनको भी बुला सकते हैं अपने सेंटर पे ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और वो बच्चे भी शुरुआत में शायद उतना ध्यान नहीं देते थे और शायद वो इतने सीरियस नहीं थे, लेकिन आज 5 साल के बाद वो जहाँ पे है, मैंने हमने खुद सुना है उनके मुंह से कि कितना फायदा हुआ है सेंटर को। सना प्लीज हेल्प हिम टू मोबिलाइज, एंड आप कोशिश करिए कि जो आपका यस
0: जो जो स्टोरीज थी, जो जो बच्चे वो पीछे बोल रहे थे हम जब आए थे ज्ञानेश सर के साथ, दोज
2: मैम,
0: पीपल गो टू हिज सेंटर एंड वो मोबिलाइज करने में थोड़ा मदद करें, ये बताते हुए कि उनको कैसे फायदा हुआ है, शायद किसी को देख के हम सीख जाएं कि हाँ यू नो दिस सेंटर कैन बी एड वैल्यू टू अस।
2: लोग
0: गुड
2: वर्क
0: आफ्टरनून,
2: कर रहे हैं उस पर।
0: ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, थैंक यू। हाँ जी रितु जी,
3: मैम, मैं भी एक एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ।
0: हाँ जी
3: अभी मैम, हमें जब टारगेट मिला था तो हमने नूना माजरा, जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है मैम, तो वो लोकेशन हमने ली थी। वहाँ के सरपंच इतने हठी थे कि मतलब वो मान ही नहीं रहे थे कि भाई आप लोग एनजीओ चला रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो हमने उनको मतलब अपना पूरा डिटेल दिखाया, ऑनलाइन भी दिखाया उनको सारा, तो वो उनको डाउट्स थे जो उनके वो क्लियर हो गए। पैम्पलेट्स भी हमने दिखाई, फिर हमने सर को कहा कि आप हमारे सेंटर पे विजिट करिए, और
0: जी
3: आइए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो सर आए यहाँ पे, सर ने देखा कि हमें जो XDCP सर हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो रेडी हो गए। और फिर उन्होंने खुद ही, आशा वर्कर हैं और आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उनके साथ हम लोगों की मीटिंग करवाई, क्योंकि पहले वो हमें गांव में जाने ही नहीं दे रहे थे, बात ही नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा विजिट था वो सरपंच के साथ था कि हम सरपंच से बात करें कि वहां का कैसा माहौल है, हमें कहाँ बिल्डिंग लेनी चाहिए। तो उन्होंने सीधा मना कर दिया था, कि तो हम भी इतने हताश हो गए थे कि भाई पता नहीं यहाँ पे सेंटर चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन सर के विजिट से, क्योंकि हमने इतना उनको पूरा प्रूफ दिखाया कि हमारे कितने सारे सेंटर्स हैं, सारा उनको डिटेल दिखाया, तो वो एग्री हो गए। फिर अब वो इतना हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि पानी की हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने हमें फ्री जो जो गांव में पंचायत घर होते हैं वो हमें दिलाया है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी सपोर्ट करवाया उन्होंने, और बहुत सारा सपोर्ट करवाया है। क्योंकि जो ये हमारा कम्युनिकेट है वो देख के कि मतलब कम्युनिटी में हम कैसे काम कर रहे हैं, यहाँ के लोगों से मिले, बात की उन्होंने, तो मैम ऐसे भी उनके डाउट्स क्लियर होते हैं लोगों के। तो जब हम विजिट करवाते हैं, कम्युनिटी से मिलवाते हैं, तो जो डाउट होते हैं जिस बंदे के वो क्लियर हो जाते हैं यहाँ पे
0: बिल्कुल
3: आके। तो हमें
0: बिल्कुल
3: अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही वर्क अगले बंदे को दिखाने पड़ते हैं कि हमारे आगे कैसे सपोर्ट मिल रहे हैं हमें, और हम लोग क्या कर रहे हैं। थैंक
0: बिल्कुल
3: यू।
0: ठीक, बिल्कुल, क्योंकि एनजीओ बहुत सारे चल रहे हैं और शायद सभी एनजीओ का अपना अपना कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगा. हमारा स्ट्रेंथ जो शुरुआत में बताया था कि हम जो कमिट करते हैं वो कम्युनिटी को डिलीवर करते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ है. सो थैंक यू वंस अगेन. टाइम बहुत हो गया है, लोग छोड़ के मतलब बैठे हैं अपना काम. सो आई विश एवरीबडी सेफ. बहुत
3: हेलो,
0: बातें कहीं हो रही है. सो कौन बोलना चाह रहा है? फरजाना, फरजाना.
3: नमस्ते
0: हाँ जी नमस्ते.
3: मैं फरजाना। मैं सर के लिए एक थोड़ी सी बात मैं भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी ऐसे ही एरिया से बिलोंग करती हूँ। वो सर से सर आप ना टेंशन ना लीजिए, क्योंकि हमको पता है अभी आपका सेंटर नया नया है, और क्योंकि ऐसे एरिया में बहुत से लोग ऐसे भी रहते हैं जो एक दूसरे को कामयाब होते देखते हैं ना, तो उनके उनको देखा देख तो वो खुद को उनके मन में एक एहसास उठता है कि हाँ मैं भी ऐसा कुछ करूँ, क्योंकि बहुत से लोग देखा देख भी आते हैं। तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, रीड इंडिया हमेशा बड़ा है और बढ़ता रहेगा, देखना एक
0: वेरी
3: दिन बहुत
0: गुड.
3: अच्छा से
0: थैंक
3: बढ़ेगा।
0: यू
3: जी
0: फरजाना,
3: थैंक
0: थैंक यू. राइट,
3: यू मैम।
0: ऑल राइट, थैंक यू एवरीबडी. स्टे सेफ, एंजॉय, बाय बाय.

0: నా పేరు సరిత. మా గ్రామం పేరు కలిగుట్ట గ్రామం. నేను కడతెట్లపల్లి గ్రామంలో రీడ్ ఇండియా ఫౌండేషన్ ద్వారా సైబర్ సెక్యూరిటీ కోర్స్ నేర్చుకున్నాను. దానివల్ల నాకు చాలా లాభం జరిగింది. ఎందుకంటే ఫేక్ కాల్స్ నమ్మకూడదని, ఈమెయిల్ ఐడి, గూగుల్ పే, బ్యాంక్ అకౌంట్ లాంటివి చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవచ్చు. ఇంకా దీనిని నేను మా ఫ్రెండ్స్ కి, మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి, మా చుట్టుపక్కల వాళ్లకు నేర్చుకోవాలని చెప్పాను. దీని వల్ల మనకు చాలా లాభం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ రీడ్ ఇండియా.
1: పేరు ధనశ్రీ. మా ఊరు పేరు రంగం వరకల్లి. మా ఊరు నుంచి నేను 5 కిలోమీటర్స్ వరకు నడిచి కడపనాకంకి వెళ్లి చదువుకునేదాన్ని. అప్పుడు మా కడపనాకం పక్కనే కడతటపల్లి ఉంది. మా ఊరు నుంచి 2 కిలోమీటర్లు. అక్కడికి వెళ్లి నేను కంప్యూటర్ నేర్చుకున్నాను. అంతకుముందు అయితే అసలు నాకు ఓపెన్ చేయడం అసలు టైపింగ్ చేయడం అసలు ఏమీ రాదు. మా స్కూల్లో ఉంది కానీ అది ఎక్కువగా యూజ్ చేయరు, అసలు నేర్పిరు. నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా నాలెడ్జ్ పెరిగింది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 9th లో ఉన్నప్పుడు నేను నేర్చుకున్నాను. ఇప్పుడు 10th క్లాస్ కాబట్టి నాకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో కూడా చాలా యూజ్ అవుతా ఉంది. నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది వెళ్లారు, వాళ్ళకు కూడా నేను అర్థమయ్యేలా చెప్పాను. కాబట్టి కంప్యూటర్ క్లాసెస్ వెళ్ళినందుకు చాలా యూజ్ అవుతూ ఉంది నాకు. ఎంఎస్ ఆఫీస్ ద్వారా పెయింటర్, పవర్ పాయింట్ ఇంకా చాలా నేర్చుకున్నాను. నాకు కంప్యూటర్ నేర్చుకున్న ద్వారా చాలా యూజే ఉంది, కానీ ఏమీ నష్టం లేదు. కాబట్టి నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది చెప్పాను. చెప్పి వాళ్ళని కూడా అక్కడికి తీసుకెళ్లి ఇంకా చాలా రీడ్ ఇండియా సెంటర్ మాకు పక్కనే ఉంది కాబట్టి మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. దానివల్ల మాకు చాలా యూజ్ ఉంది కాబట్టి మా ఫ్రెండ్స్ తో పాటు మేము అందరూ వెళ్ళి కంప్యూటర్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. థ్యాంక్స్ ఫర్ రీడ్ ఇండియా.
2: హలో ఎవ్రీవన్, దిస్ ఈజ్ షామి ఫ్రమ్ బారెట్పల్లి. డ్యూరింగ్ కోవిడ్ పీరియడ్ ఐ అటెండెడ్ ది సైబర్ సెక్యూరిటీ క్లాస్ కండక్టెడ్ బై రీడ్ ఇండియా. బిఫోర్ దిస్ క్లాస్ వీ హ్యాడ్ నో ఐడియా అబౌట్ సచ్ థాట్స్. This class helped me and surrounding people a lot. We got to know that we should not share the OTP and passwords with others. Before this class, one of my friend lost 2000 rupees, but now we all are aware of such frauds. This class was really very helpful. We all are thankful to Read India. थैंक यू वेरी मच.
3: मेरा नाम रेखा सिंह है. हम कटहरी गांव में रहते हैं. हमारी उम्र 40 साल है. हम हाई स्कूल तक पढ़े हैं. ये हमारे यहाँ रीड इंडिया का सेंटर खुला है. वहाँ पर कंप्यूटर सिलाई सबसे जुड़ा है. हम लोगों को पता चला तो हम लोग अपना भी रजिस्ट्रेशन कराए और पढ़े सीखने भी आते थे. वैसे हम लोगों को बहुत सारा चीज सिलने और काटने का आ गया है. हम लोग कुछ नहीं जानते थे तो इतना तो बहुत कुछ आ गया है. मास्क वगैरह, फ्राक, कुछ बेबी मेकर और बहुत से सलवार, कुर्ता, कुर्ची, ब्लाउज, पेटी कोट बताया गया. सब कुछ काटे, अच्छे से सिले, अपना भी सिले, अपने घर वालों का सिले. थोड़ा सा हम लोगों का बचत भी हुआ.
4: मेरा नाम आकांक्षा शुक्ला है. मेरी उम्र 20 साल है. हमने यहाँ रीड इंडिया के सेंटर समराइज से सिलाई सीखी है. पहले हमें थोड़ी बहुत सिलाई आती थी. उसके बाद हम जब यहाँ सीखने आए तो हमें पूरी तरह से सिलाई आने लगी है. और पहले अपने कपड़े कहीं टेलर के यहाँ सिलवाते थे, अब हम अपने आप सिल सकते हैं. इससे मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आया. जब हम यहाँ सिलाई सीखने आए तो हमें कई सारी ट्रेनिंगें मिली और उससे मेरे जीवन में व्यक्तित्व में सुधार भी आया. और हम अब अपने जैसी लड़कियों को ट्रेनिंग देना चाहती हूँ.
5: मेरा नाम नैन्सी गुप्ता है. मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ. मेरी उम्र 16 साल है. रीड इंडिया सेंटर के जो कटहरी में खुला है उससे मुझे पर्चे के द्वारा पता चला. जो रीड इंडिया सेंटर के पर्चे छपे थे वो मेरे तक पहुँचे तो मैं यहाँ पर आई और इससे जुड़ी. मेरा एडमिशन हो गया और फिर मैं कंप्यूटर सीख रही हूँ, जिससे मुझे फ्यूचर में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलने पर मैं इससे जुड़कर काम कर सकती हूँ. पहले मुझे कंप्यूटर बहुत डिफिकल्ट लगता था क्योंकि मेरे आसपास कहीं भी कंप्यूटर सेंटर नहीं थे. लेकिन जब यहाँ रीड इंडिया सेंटर खुला तो मैं कंप्यूटर में सीखी और मुझे लगा कंप्यूटर बहुत आसान होता है और मुझे कंप्यूटर के सारे डर खत्म हो गए। और मैं रीड इंडिया सेंटर का बहुत बहुत थैंक यू सो मच करती हूँ और यहाँ पर जो मैम है और टीचर है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
6: मैं विनीता मौर्य है, मैं ग्राम कटहरी में रहती हूँ, मेरी उम्र 35 साल है, एक अच्छा तक पढ़ी हूँ। मेरे गांव में रीड इंडिया सेंटर खुला है, जब मुझे पता चला तो मैं यहाँ आई, अपना एडमिशन कराया और फिर सिलाई सीखना शुरू कर दिया। मुझे सिलाई करना लगभग आ चुका है, जैसे कि मास्क बनाना, बच्चों के कपड़े सिलना, औरतों के ब्लाउज सिलना, ये सब मैं कर लेती हूँ। अगर अवसर आया तो ये सब मैं सिलकर बाहर को निर्यात कर सकती हूँ।
7: कोमल पाल है, मेरी उम्र 17 साल है, मैंने रीड इंडिया सेंटर सिमराई बाराबंकी ट्रेनिंग ली है। पहले मुझे सिलाई के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, उसके बाद मैंने मतलब अपने कपड़े स्वयं सिल सकते हैं अपने पूरे घर परिवार के, और जो मतलब जो पहले था जो पैसे दूसरे को देते थे, अब वो पैसे मतलब खुद मतलब बचत कर सकते हैं। और मेरे ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया।
8: मेरा नाम विमलेश सिंह है। हमें अनेक प्रकार के हमारे जीवन में बदलाव आए हैं इस सिलाई को लेकर, और जब मैं जो भी चाहती हूँ सिलाई से संबंधित जो ग्रुप बनाकर वो आगे काम भी कर सकती हूँ, अपना सिलाई का कोई सेंटर खोल सकती हूँ या समूह बनाकर मैं इकट्ठे कपड़े सिल सकती हूँ, सिलकर मार्केट में भेज सकती हूँ, जो भी चाहती हूँ सिलाई संबंधित कार्य कर सकती हूँ।
9: असम है, मेरी उम्र 21 ईयर है, मैं बीए द्वितीय वर्ष में पढ़ती हूँ। मेरे ग्राम का नाम कटारी चंदाय है। जैसा कि मुझे पता चला कि मेरे गांव में रीड इंडिया का सेंटर खुला, उसके बाद हमने इसमें एडमिशन लिया और आज हम अच्छे से कंप्यूटर का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों को कंप्यूटर सीखने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि हम लोगों के घर से 10-10-15 किलोमीटर दूर सेंटर है और वहाँ पे हम लोगों को जाना पड़ता था, इसलिए घर के पेरेंट्स भी इसकी इजाज़त नहीं देते थे। उसके बाद जब से ये सेंटर खुला तब से हम लड़कियाँ आत्मनिर्भर हुए और कंप्यूटर के बारे में सब कुछ जान सके, और आज स्थिति ये है कि हम लोग कंप्यूटर को बहुत अच्छे से जान चुके हैं, अच्छे से चला भी रहे हैं, और ऐसा रीड इंडिया सेंटर की वजह से हुआ। कंप्यूटर को सीखकर हम आगे अपने रोजगार के अवसर अच्छे से खोज सकते हैं।
10: आई एम राखी फ्रॉम केलवाड़ा। मैंने हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है और इसे लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा। निधि मैम ने हमें बहुत कुछ सिखाया इस ट्रेनिंग में, जैसे कि हेल्थ वर्कर क्या होते हैं, वह समूह जो हेल्थ की जानकारी रखता है उसे हेल्थ वर्कर कहते हैं। इसमें हेल्थ वर्कर का कार्य रहता है कम्युनिटी डेटा इकट्ठा करना, उसमें मतलब जन्म और डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब जानकारियाँ ली जाती हैं। हमारे आसपास की सफाई भी जरूरी होती है, शारीरिक हाइजीन में होता ही है। और मैम ने बताया था कि हमें हैंड वॉश कैसे करना चाहिए, तो हैंड वॉश के मैम ने 5 चरण बताए थे जिसका हमें रेगुलर यूज करना चाहिए। यदि हम रेगुलर हाथ धोएंगे तो हमें कोई बीमारी भी नहीं होगी, हम स्वच्छ रहेंगे। तो मैम ने बताया कि हमें वो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हमें क्या लेना चाहिए, लो ब्लड प्रेशर होता है तो हमें क्या लेना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर में हमें कॉफ़ी की मात्रा लेनी चाहिए क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा पाई जाती है जो हमारे लिए अच्छी होती है। मैम ने बताया शारीरिक क्रियाएं वगैरह जो होती हैं हमारे शरीर में, उसके बारे में बहुत कुछ बताया है जो हमने अच्छे समझाए, सबको समझाया भी है। हमारे आसपास जो व्यक्ति थे हमने उनको हमारे मतलब संपर्क में उनको बताया कि मैम ने हमें ये बताया है, आप भी इसका उपयोग करें, समय पर एंटीबायोटिक दवाएँ लें। मैम ने हमें ये जल्द से होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताया है, जैसे कि हैजा, टाइफाइड, ORS घोल हैजा में लिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसे हमें लेना चाहिए, ये अच्छा होता है। और मैम ने COVID-19 के बारे में भी बताया था जो चल रहा है, इसे हमें बचना चाहिए, ये खांसी और छींक के माध्यम से फैल रहा है, इसलिए हमें मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा होगा। मैम ने अस्थमा के बारे में बताया था कि ये सांस की बीमारी होती है जिससे मतलब हमारी जो श्वास नली होती है वो उसमें सूजन आ जाती है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है और बलगम आता है तो मतलब सांस लेने में मतलब सीटी जैसी आवाज़ आती है, तो इसके उपचार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और एंटीबायोटिक दवाओं का यूज करना चाहिए। और बस मैम ने बहुत कुछ बताया है तो हमें बहुत अच्छा लगा और मैं इस संस्था को थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा है और हमें बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू।
11: आई एम पूनम कश्यप फ्रॉम केलवाड़ा। मैंने रीड इंडिया संस्था से हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है और हमें इस ट्रेनिंग में कई प्रकार की बीमारियों के बारे में बताया गया है और उनकी रोकथाम के बारे में और हमें किस प्रकार से उनका उपचार करना चाहिए वो भी बताया गया है। रीड इंडिया संस्था द्वारा हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई है। इसमें हमें मीना दीदी ने कई प्रकार की बातें समझाई हैं। उन्होंने हमें संस्था पर बुला करके कई प्रकार से बीमारियां जो चल रही हैं कई प्रकार की उनके बारे में जानकारी दी है। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी बट हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू। मैं रीड इंडिया का धन्यवाद करती हूँ।
12: मेरा नाम सरोज सुमन है, मैं खाकरा की रहने वाली हूँ। मैंने हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। इसमें दीदी ने बताया कि हमें किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए और कैसे हमें बीमारियों से लड़ना है और कोरोना के बारे में भी बताया और हमें ब्लड प्रेशर हाई व लो के बारे में बताया। कोरोना काल में हमें किस प्रकार से अपनी सावधानी बरतनी है, साबुन से हाथ धोना है, मास्क लगाना है, इस प्रकार हमें बताया। इससे हमें बहुत कुछ लाभ हुआ है और हमने गांव में जो लोग जानते नहीं थे उन्हें जाकर घर घर जाकर उन्हें बताया समझाया किस प्रकार हमें रहना है। धन्यवाद।
13: मेरा नाम मीना पांचाल है, मैं खाकरा गांव से रहने वाली हूँ। मैंने रीड इंडिया संस्था से हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है। इसमें दीदी ने कोरोना के बारे में जानकारी दी है, कोरोना काल में कैसे हमें अपना सावधानियां रखनी चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में बताया है कि हमें मास्क पहनना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, उसके बारे में बताया दीदी ने। और हमें ब्लड प्रेशर में बीपी लो हाई कैसे चेक करना चाहिए उसके बारे में, पल्स रेट के बारे में भी बताया कि हमें कैसे नापनी चाहिए, पल्स रेट का पता कैसे लगता है वो बताया। और उन्होंने पानी से होने वाली बीमारियां, हवा से होने वाली बीमारियां, घर की सफाई आदि के बारे में हमें बताया है, शारीरिक स्वच्छता के बारे में भी जानकारी दी है और हमें बहुत अच्छे से समझ में आया और इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। धन्यवाद।
14: हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांशी ठाकुर है, विलेज कांकरा राजस्थान से हूँ। मैंने रीन इंडिया के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है जो डॉक्टर निधि गुलाटी द्वारा ली गई थी। निधि गुलाटी मैम ने हमें सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ वर्कर क्या होता है और कम्युनिटी से कैसे जुड़ना होता है इसके बारे में हमें बताया। साथ ही मैम ने हमें कोरोना काल में स्टे सेफ के बारे में बताया। फिर मैम ने हमें हाउ टू हैंड वॉश के बारे में बताया और फर्स्ट स्टेज इसके हमें अच्छे से डिटेल्स में समझाए और हमें पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया और अगर हम पर्सनल हाइजीन नहीं करेंगे तो इसके साइड इफेक्ट्स बढ़ाए। शारीरिक क्लीनिंग एंड हाइजीनिंग के बारे में हमें डिटेल में समझाया और ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया। उसके बाद मैम ने हमें पल्स कैसे चेक करते हैं इसके बारे में समझाया। मैम ने हमें अच्छे से बताया कि हमें 2 फिंगर्स को थंब के नीचे रखकर कैसे हमारी 1 मिनट तक हमें हमारी पल्स चेक करनी चाहिए। साथ ही अपना बीपी बढ़ने पर हमें ज़रूरी पल्स चेक कराने के बाद ही अपना बीपी के बारे में श्योर होना चाहिए और नॉर्मल बीपी कितना होता है, हाई बीपी कितना होता है, इसके बारे में बताया। साथ ही उन्होंने हमारे बॉडी टेम्परेचर के बारे में बताया और बॉडी टेम्परेचर हमारा 2 तरीके से नापे जाता है, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट से। इसके बारे में हमें मैम ने बहुत डिटेल से बताया और इसके बाद मैम ने हमें ब्लड प्रेशर के बारे में बताया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, कब होता है। मैम ने हमें बताया कि ब्लड प्रेशर हमें 1 मिनट तक चेक करवाना चाहिए और हमारा दिल 1 मिनट में 60 से 80 बार धड़कता है। साथ ही वर्कआउट या कॉफ़ी टी पीने पर हमारा ब्लड प्रेशर हमें नहीं चेक कराना चाहिए क्योंकि ये एज यूजली सही नहीं आएगा, ये गलत ही आएगा। और साथ ही हमें बताया कि ब्लड प्रेशर 2 तरीकों का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसके साथ ही मैम ने हमें बताया कि ग्रामीणों में नॉर्मल क्या क्या बीमारियां होती है और उनके बारे में डिटेल से समझाया, जैसे टीवी, शुगर, पीलिया, चिकन पॉक्स, निमोनिया, मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया, ऐसी कैंसर जैसी और भी कई बीमारियों के बारे में बताया। उसके बाद मैम ने हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया, हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है, हमारा हार्ट किस तरह से काम करता है, लीवर, किडनी, इसके बारे में मैम ने हमें बताया। साथ ही हमारी बोन्स किस तरह से काम करती है और ये कैसे हमारी बॉडी में जुड़ी हुई है और भी काफ़ी सारी जानकारी मैम ने हमें डीपली समझाई। ये बहुत ही अच्छी जनरेट थी, अच्छे से मैम ने हमें समझाया एंड थैंक यू वेरी मच हमें इतनी सारी डिटेल्स।
15: मैं निर्मला पांचाल बोल रही हूँ और गांव भवरगढ़ की रहने वाली हूँ। और इसमें जो लॉकडाउन के दौरान रेड इंडिया की तरफ से जो ट्रेनिंग कराई गई थी उसमें हम लोगों ने भी भाग लिया था और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। हमें टेली के बारे में पहले कुछ भी मालूम नहीं था कि टेली क्या होती है, इसमें क्या सिखाया जाता है, क्या नहीं सिखाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई सूचना मतलब कोई जानकारी नहीं थी हमें। लेकिन उस ट्रेनिंग में हमें बहुत सारी जानकारी मिली है और हमने बहुत कुछ सीखा है, ऐसे बहुत कुछ सीखा है। और मैंने बीए कर रखी है और जैसे कि इसमें लागत मूल्य के बारे में सिखाया गया, लागत मूल्य वह होता है जिसमें कोई माल अथवा सेवा ऐसे जो करे वह प्राप्त किया जाता है उसको लागत मूल्य कहा जाता है। वसूली मूल्य वह होता है वसूली मूल्य जिसे बाजार में कोई चीज या कोई संपत्ति को बेचकर जो राशि प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, उसको वसूली मूल्य कहा जाता है। और जैसे कि संपत्तियां के बारे में बताया गया था, संपत्ति तीन चार प्रकार की होती है जैसे कि चल, अचल, द्रश्य, अदृश्य। द्रश्य संपत्ति वह होती है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो द्रश्य संपत्ति होती है। अदृश्य संपत्ति उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, एहसास नहीं कर सकते, तो वह अदृश्य संपत्ति होती है। बहुत सारी चीजें की जानकारी दी गई मैम ने और बाद में हमें सभी प्रकार के जो अकाउंट होते हैं उनकी एंट्री करना सिखाया है मैम ने।
16: हेलो, मेरा नाम रिंकू कुमारी है, मैं बारा जिले के मुसिन माता गांव की रहने वाली हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन के चलते ना तो कोई कहीं जा सकता है और ना ही कहीं से आ सकता है, तो इस माहौल में रीड इंडिया के द्वारा टेली हमें जूम ऐप पर घर बैठे ही ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई गई और उसमें हमें खाता खोलने के बारे में, लेन देन के बारे में, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, इन सब के बारे में बताया गया। और मान लो जैसे कोई बिजनेस करना हो या फिर दुकान खोलनी हो तो उसका हिसाब किताब कैसे रखते हैं, और साथ ही ये भी बताया गया कि डेली डायरी मेंटेन करनी चाहिए। और भी टेली के बारे में जैसे हमें पहले कुछ नहीं आता था और कुछ समझ में नहीं आता था, फिर हमसे पहले जो लड़कियां थी उन्होंने इसके बारे में सीखा और हमें इसके बारे में बताया विस्तार से सब कुछ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप की परचेज कैसे करते हैं, माल खरीदा कैसे जाता है, बेचा कैसे जाता है, और लेन देन के बारे में बताया और उसकी एंट्री कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हमें बहुत विस्तार से और बहुत बढ़िया तरीके से बताया। और हमने उनसे क्वेश्चन भी किए और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हमें सब कुछ बताया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी रीड इंडिया को, टेली को और मैम्स को जिन्होंने हमें घर बैठे ही कोरोना काल में भी ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई। थैंक यू।
17: हेलो, आप सभी को मेरा नमस्ते और रीड इंडिया को मेरा धन्यवाद। मेरा नाम वर्षा है और बारा जिले के पास ही के गांव की मैं रहने वाली हूँ, समरानिया से। रीड इंडिया को मेरा धन्यवाद इसलिए क्योंकि ऐसे लॉकडाउन में टेली की ट्रेनिंग घर पर ले पाना बहुत मुश्किल था, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, लेकिन फिर भी हमने टेली की ट्रेनिंग करी रीड इंडिया की तरफ से, जो कि बहुत अच्छे से कर पाए हम लोग। इतना सब कुछ सीखने को मिला हमें घर रहकर, कैसे क्या खरीदना है, कैसे क्या बेचना है, क्रय विक्रय, परचेज करना, लेन देन कैसे करना चाहिए, कैसा क्या देखना चाहिए, जो कि हम पहले नहीं सीख पाए थे। मैंने बहुत कोशिश करी थी सीखने की, लेकिन मैं नहीं सीख पाई थी। लेकिन इसमें रीड इंडिया की तरफ से जो ट्रेनर थे हमारे मैडम, उन्होंने हमको बहुत अच्छे से सिखाया। जो हम भूल जाते थे वो भी बार बार उन्होंने हमें बताया। उनकी मदद से हम बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर पाए। पता भी नहीं चला कि इतना टाइम कैसे निकल गया। मैडम सर सभी ने बहुत अच्छे से सिखाया। रीड इंडिया को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पूछे सवाल, जिनके ट्यूशन जो कि हम नहीं कर पाते थे वो ट्यूशन उन्होंने पूछकर हमारी कमियां भी दूर करी हैं, जिससे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग मिली है।
18: हेलो, मेरा नाम मुस्कान मलर्जी है। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ रही हूँ, और मैंने जब रीड इंडिया के बारे में सुना, मेरे पापा ने आके मुझसे बोला कि वहाँ पर रीड इंडिया की ट्रेनिंग हो रही है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आई। यहाँ पे आके मैंने फॉर्म भरा और एडमिशन किया। एडमिशन करने के बाद मुझे पहले से कंप्यूटर की कुछ बेसिक जानकारी थी, फिर भी मैंने यहाँ पे फोटोशॉप और भी कई चीज़ें सीखी है। सीखने के बाद मैं यहाँ से लैपटॉप लेके गई थी। मुझे बोला गया कि यहाँ से लैपटॉप ले जाओ, और तुम और भी बच्चे, रिश्तेदार, तुम्हारी मम्मी, इनकी जो भी महिलाएं हैं उनको तुम सिखाओ। तो मैं यहाँ से ले गई और उनको मैंने सिखाया। मैंने भी उनको वही सिखाया जो मैंने सीखा था, जैसे कि यहाँ से फोटोशॉप के अंदर जैसे फिल्टर, उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर करना, उसके बाद शरीर को अलग करने करके वहाँ पे चेहरा लगाना, ये सब मैंने सीखा था। जो जो मैंने वो सब अपने बच्चों को, इनके अपने स्टूडेंट को मैंने सिखा दिया।
19: हेलो नमस्कार रेड इंडिया वाले, मैं मंजू हूँ। मैं गांव परानिया की रहने वाली हूँ, और मैं कक्षा 12वीं तक पढ़ी हुई हूँ। मैं महिला समूह की सदस्य हूँ, और मैं राजभिका से जुड़ी हुई हूँ। हमें पता चला है कि ये रेड इंडिया वाले फ्री में कंप्यूटर या लैपटॉप चलाना सिखा रहे हैं महिलाओं को, लड़कियों को। हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर कुछ सीखा है, हमने जानकारी ली है यहाँ पर, हमने यहाँ पर फोटोशॉप वगैरह सीखा है हमें। और मुझे राजीविका वालों ने CSC ID बनाकर दे दी है, तो हम मैं पैसे की लेन देन कर रही हूँ। थैंक यू रेड इंडिया।
20: रेड इंडिया माध्यम से मैं जुड़ी हुई थी और ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया था, जो उसमें मुझे बहुत जानकारी मिली है, जैसे कि मोबाइल के बारे में, फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना, और बैंक का जो है, जो उसमें खाता नंबर, आधार कार्ड का नंबर किसी को नहीं देना चाहिए, उसमें नुकसान हमको ही होगा, इसलिए इसका जानकारी हमको मिला है। हम पहले से मान लो किसी ने फोन कर दिया कि जे तुम्हारा मोबाइल में इतना पैसा है, लॉटरी लग गया तुमको, जो नंबर दे दो बैंक का या आधार कार्ड का नंबर, ऐसे नहीं देना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। जैसे मोबाइल में फोन आए कि तुम्हारा फोटो भेजो या कुछ और भी भेजो, नहीं भेजना चाहिए, उसमें हमारा ही खराब होगा, इसलिए हम नहीं भेजते हैं, हम इसमें सतर्क रहते हैं। और भी है बहुत सारे, जो अभी मीटिंग में हम मिला हुए थे जो ट्रेनिंग में, जो उसमें अभी हम बढ़िया तरह से सीख गए। और मोबाइल में ऐसा करना चाहिए, उसमें स्टोर पासपोर्ट लगाना चाहिए, जो कोई लेके छेड़छाड़ी ना करे, और कहीं पे भी जाओ फिर भी नेट मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत खांसी भी आए, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा कम करो और अपने मोबाइल को सुरक्षित रखो। ट्रेनिंग से हमें बहुत सारी जानकारी मिला है, जो इसलिए आप सबको धन्यवाद।
21: नमस्ते, मेरा नाम काजल बाला, गांव नाटे से। मैं रीड इंडिया संस्था साइबर सेफ्टी से मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे हमें हमारे जैसे पर्सनल नंबर, मैसेज, OTP, ये सब किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, ना ही हमें सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग नहीं करनी चाहिए। हमें बैंक संबंधी ऐसे कोई मैसेज आए उस पर हमें क्लिक नहीं करनी चाहिए। हमें जैसे और भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिले, जो भविष्य में हमारे काम आएंगे। और इसके अंतर्गत हमने जैसे हमें हम जैसे शॉपिंग करते हैं उसके लिए अलग अलग वेबसाइट का हमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए जो हमें पता ना हो, और ना ही हमें इंटरनेट पे ज़्यादा कुछ जानकारी ऐसी मतलब जो ज़रूरत ना हो ऐसी चीज़ की जानकारी भी नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत ही काम की चीज़ हमने इस संस्था में सीखी है, और ये खुद मैंने भी मतलब ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है, और मैं इसके बारे में जैसे अपनी फैमिली को अपने फ्रेंड सभी को मैं इसके बारे में जागरूक करूँगी कि कैसे सेव रखा जा सकता है हमारे बैंक अकाउंट, हमारी OTP, ये सब मैं उनको भी इस सब के जागरूक करवाऊंगी।
0: मेरा नाम अंकिता बंसल है, मैं भवरगढ़ 12 राजस्थान से हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन में अभी तक BSc किया है। मैंने रीड इंडिया से साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दी है। इस ट्रेनिंग में मुझे साइबर क्राइम से कैसे बचे के बारे में बताया गया था, और हम किस तरह से अपने मोबाइल के डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं इसके बारे में बताया था। हम जैसे कि हमें किसी भी फर्जी ईमेल को नहीं खोलना चाहिए। आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारे लिंक्स आते हैं जिनमें होता है कि तुम इस लिंक पे क्लिक करो तो तुम्हें वाउचर मिलेगा, कोई गिफ्ट फ्री मिलेगा, लेकिन वो सब कुछ फर्जी होता है। वो कुछ हैकर्स होते हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी को हार्म पहुंचाना चाहते हैं। उन लोगों के द्वारा बनाई गई साइट होती है जो कि आपके फोन में आपके डाटा को चुरा सकती है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को उनके पास पहुंचा के वो आपको एक साइबर क्राइम के थ्रू ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपसे किसी भी तरह का कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से आपको कोई भी लिंक या फिर ईमेल जो भी है उन्हें नहीं खोलना चाहिए। ये लिंक्स कभी कभी हमारे फोन में एंटीवायरस भी ला देते हैं। इसके अलावा जो हमारा पासवर्ड होता है वो लंबी डिजिट का होना चाहिए, लाइक तुम्हारा नाम हमें भी छोटा मोटा नहीं होना चाहिए। उसमें #@ ऐसे वर्ड्स यूज किए जाने चाहिए ताकि कोई उन्हें हैक ना कर सके। और इसके अलावा हमें सोशल मीडिया के सभी जो भी एप्स होते हैं उनमें प्राइवेसी रखनी चाहिए ताकि आपके बारे में ज्यादा लोगों को पता ना चले। इस तरह से हम हमारे मोबाइल डाटा को सुरक्षित कर सकते हैं। थैंक यू।
1: राठौरे, मैं भवरगढ़ की रहने वाली हूँ, और रीड इंडिया से हमें होम मेकिंग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी गई थी, और इस पे हम घर पर बैठकर इस ट्रेनिंग से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, और इससे हमें रीड इंडिया पर हमें बॉडी बैग्स और बॉडी बटर ये चीज़ें हमको सिखाई गई थी, और इनमें वो शहद, घी और वो ग्रीसलीन और डिबाम ये चीज़ों से हमने वो प्रोडक्ट बनाया था। इसको पैकिंग किया था और इसको 3 तरीके से हमने पैकिंग किया था, लिपस्टिक के शेप में और डिब्बी में और वो पोटली वाले में, और रीड इंडिया में यह सब चीज़ हमको रिया दीदी ने सिखाया था, और इसमें मीना दीदी भी थी, और हम 8-10 लड़कियों ने ये चीज़ सीखी थी। थैंक यू रीड इंडिया।
22: मेरा नाम लीना यादव है, ग्राम हरिद्वार पोस्ट बोयल तहसील सावर डिस्ट्रिक्ट 12 से बिलोंग करती हूँ। मैंने रीड इंडिया ऑनलाइन सेलिंग से ट्रेनिंग ली थी जिसमें हमें बहुत सारे प्रोडक्ट शेयर करना, प्रोडक्ट सेलिंग करना, उन सारी चीजों के बारे में बताया गया था। हमको प्रोडक्ट कैसे सेल करना चाहिए ये हमें आना चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा कैसे शेयर कर सकते हैं, इन सब चीजों को लेके हमको उस ट्रेनिंग के बारे में बताया गया था। जैसा कि हमको सीखने को मिला, बहुत सारे ऐप्स होते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कई सारे वेबसाइटें होती हैं जिनसे हमको ये सब कुछ शेयर करना होता है। फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए हम अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर डालकर हम उसको शेयर कर सकते हैं, किसी भी जानी मानी वेबसाइट से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम अनजानी वेबसाइटों से ऑनलाइन शॉपिंग ना करें, और सार्वजनिक वाईफाई से बचें। और भी कई सारी चीजें थी उसमें, पेज बनाना ये सब कुछ था उसी में, और अपना ऑनलाइन अपना मोबाइल लैपटॉप वगैरह सब अप टू डेट रखें, और OTP वगैरह किसी के साथ शेयर ना करें। ये कई सारी चीजें हम लोगों को उसी के अंतर्गत सीखने को मिली। मैं बताना चाहूंगी कि ऑनलाइन सेलिंग के बारे में हमको बहुत कुछ जानकारियां मिली हैं। थैंक यू।
2: मेरा नाम जया बंसल है और मैंने रीड इंडिया से सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखा है। इसमें मैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन सब पर किस तरह से मार्केटिंग की जाती है वो सब सीखी है और फेसबुक पर पेज बना कैसे बनाया जाता है ये सब सीखा है, किस तरह से फेसबुक पर मार्केटिंग की जाती है और व्हाट्सएप पर किस तरह से प्रोडक्ट डाले जाते हैं, किस तरह से सेलिंग की जाती है और इस तरह से, और मैं करती भी हूँ, प्रोडक्ट्स डालती भी हूँ, इससे मेरी इनकम भी बढ़ी है और इस तरह से मैंने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। थैंक यू रीड इंडिया।
3: मेरा नाम सुनीता, मैं ग्रेटर नोएडा से आती हूँ। मैंने सीखा है यहाँ पे तुड़पाई करना सीख लिया, प्लाजो बनाना सीख लिया और पेंटिंग बनाने के लिए पेंटिंग ये बना ली मैंने और अब वो बना के आई अम्ब्रेला वाले बाद वो प्लाजो।
4: अभी जो यहाँ पे रीड के माध्यम से राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो भी उसमें भी आप थे?
3: हाँ, दो बार ले गई थी।
4: दो बार आप लेके गए?
23: मेरा नाम मीसा सिंह गौतम है और मैं तुगलपुर की रहने वाली हूँ और यहाँ मैं सिलाई मशीन सीखना चाहती थी पर वहाँ कहीं दुकान वकान भी नहीं थी, अब ही तो बहुत महंगे होंगे उसमें सिखाते थे। आसपास की लड़कियाँ सिलाई मशीन सीखने के लिए जाती थी और मैंने उनसे पूछा भी कि आप कहाँ जाती है, तो उन्होंने बताया कि एक केंद्र खुला पड़ा है विनटेक केंद्र, तो मैं भी उनके साथ जाने लगी यहाँ से सीखने लगी और मुझे आता भी कुछ नहीं था, मैंने तुरपाई से स्टार्ट किया था और मुझे अब सूट सलवार में बना देती हूँ और यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है कि अनजान इंसान मतलब अनजान जो लड़कियाँ बढ़ती आती हैं वहाँ कैसे रहा जाता है और कोई भी मतलब बुरा उरा नहीं होता, सब अच्छे होते हैं और यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, मतलब सही है। जब लॉकडाउन लगा था तो यहाँ से हमें मतलब बहुत काम वाम मिल रहा था और मैं जब भी सीखने आती थी क्योंकि यहाँ मतलब बहुत कम उसमें सिखाया था और हमें अच्छी बातें सिखाई जाती हैं कि बाहर जाके क्या करना है और यहाँ से मैंने अपनी एक मैंने सोचा है कि मैं जब यहाँ से पूरी मशीन सीख लूंगी, जब मुझे वो डिप्लोमा मिल जाएगा तो मैं एक दुकान भी खोलूंगी अपनी जिसमें मैं औरों को भी सिखा सकूँ और अपना काम भी वो कर सकूँ।
24: नमस्ते आप सभी को, मेरी तरफ से मैं तनु से भी मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैंने यहाँ के बहुत कुछ सीखा है, पहले मुझे कुछ नहीं आता था और यहाँ सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि यहाँ मतलब बहुत अच्छे सिलाई सिखाते हैं और यहाँ सबकी केयर भी बहुत अच्छे से होती है, सबकी हैप्पीनेस का भी ध्यान रखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें सीख ली बनाने में, कपड़े में बहुत सारे कपड़े सीख लिए जैसे सूट सलवार प्लाजो पैंट बहुत सारे।
4: खुद कटिंग कर लेती हूँ? पहले आपको कटिंग आती थी या पहले सिलाई आती थी?
24: कैंची भी चलाने नहीं आती।
4: कैंची भी चलाने नहीं आती थी? अच्छा, तो अभी सीखने के बाद आपका क्या है कि मैं क्या करना चाहती हूँ आप लाइफ में?
24: मैं ये दूसरों की हेल्प पहले तो,
4: हाँ,
24: और फिर अपनी छोटी सी शॉप
4: बुटीक टाइप। अच्छा, बुटीक खोलना चाहती हैं आप यहाँ सीखने के बाद?
25: मेरा नाम गीता है और मैं यही पास से तुगलपुर गांव से आती हूँ। पहले मैं यहाँ पढ़ने के लिए आती थी और लेडीजों के साथ, बहुत लेडीज पढ़ती थी, मैं भी पढ़ती थी यहाँ और फिर पढ़ते पढ़ते एक साल सा हो गया, उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे मुझे सिलाई का शौक था, थोड़ा थोड़ा घर में ही मतलब करती रहती थी और मैंने सीखा भी था कहीं थोड़ा बहुत। रीड इंडिया की तरफ से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, मुझे काम भी यहाँ रीड इंडिया की तरफ से ही मिला है। पहले घर में रहती थी ना, मन नहीं लगता था बिल्कुल भी, ऐसे लगता था कहाँ कैद में रहती हूँ और यहाँ आके तो एक नई जिंदगी सी मिली है। बस यही है कि उन्होंने हमें काम दिया, यहाँ बच्चों के लिए सेंटर खोला और फ्री चल रहा है यहाँ पे बच्चों के लिए, बड़े खुशी से आते हैं बच्चे, कौन सिखाता है, नहीं तो हजार हजार रुपए देते हैं मंथ के यहाँ पे, तो बच्चे गरीब बच्चे नहीं सीख पाते, बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जो मतलब टाइम से पहले आ जाते हैं सीखने के लिए, मतलब उनको लगन है सीखने की।
4: लगन है सीखने की।
26: उनका फायदा मेरे गांव, मुझे कुछ लोगों से पता चला कि हमारे गांव में रीड इंडिया सेंटर है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की कोर्सेज होते हैं जिससे कि मैंने ऑनलाइन सेविंग के बारे में सीखा है। इसके बारे में पहले मुझे कुछ नहीं पता था बट अब बहुत कुछ पता है, मैं इसके बारे में सीख चुकी हूँ और जानकारियां मैं देती रहूंगी और इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक इन सब पे कैसे हम ऑनलाइन सेविंग कर सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता चल रहा है।
27: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और मैं दिल्ली से हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पूनम मैम का जिन्होंने मुझे रीड इंडिया सेंटर से जुड़ने का मौका दिया। फिर मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ महिपाल सर का जिन्होंने मुझे रीड इंडिया फैमिली का हिस्सा बनाया और उससे जोड़ा, सभी को जानने का एक मौका दिया। रीड इंडिया के बारे में मैं नहीं जानती थी बट जब यहाँ पे जुड़ी मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और जो जो मैंने सीखा वो एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि फोटोज वगैरह, एडिटिंग वगैरह, वीडियोस, शॉर्ट्स, फोटोज ये सब लेना मुझे नहीं मालूम था। जब मैं रेडियो इंडिया सेंटर से जुड़ी मुझे मालूम हुआ, इन सब चीजों से मैं अनजान थी, बट जुड़ी तो मैंने एडिटिंग सीखी, वॉइस स्किल। जरूरी नहीं कि हमारे बोलने का तरीका कैसा है, हमारी वॉइस स्किल कैसी है, ये मायने रखता है। हम कैसे बोलते हैं, कितना उतार चढ़ाव हमारी आवाज में है, किस तरीके से हम बोल रहे हैं, जरूरी ये है। जैसा कि अब वॉइस स्किल में मुझे नहीं मालूम था कि कहाँ कितना ठहराव रखना है, लेकिन जब महिपाल सर ने हमें इतना सब कुछ सिखाया, हमने सीखा भी और बहुत कुछ किया भी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक में हम सभी के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए हैं। हम सभी ने आज से पहले ऐसा जीवन कभी नहीं देखा था, बट इस दौर में हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला। जैसे कि सब अपने घर में हैं, हम भी हैं, हमने इस समय में हम खाली नहीं बैठे, रीड इंडिया सेंटर से हम लोग जुड़े, फिर हमने सीखा कि ऐसे दौर में हर इंसान जब घर में बैठता है तो हर इंसान बोर होता है, दम घुटने लगता है लोगों का घर में बैठ के, लेकिन इस दौर में हमने घर में बैठ के नहीं बल्कि हमने सीखा, ऑनलाइन क्लास ली, सर से हमने बहुत कुछ सीखा। अब जैसा कि हमने बहुत सारे एफएम रेडियोस को सुना होगा, बट हमने सुना ही था लेकिन कभी उन्हें करीब से नहीं जाना था, लेकिन रेडियो सेंटर के जुड़ने के कारण हमने इसे करीब से जाना और उसे देखा और किया। और जैसा कि हम जानते लोगों की आवाजों को सुनते हैं पर ये नहीं जानते कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, जब हम इससे जुड़े तो हमने किया तो हमें पता चला कि लोग कितनी मेहनत करते हैं। हम लोगों को सिर्फ वॉइस के थ्रू हम सुनते हैं बट कभी जाना नहीं, जब किया तो लगता है कि हाँ कितनी मुश्किल है ये चीजें। बहुत अच्छा लगा ये सब चीजें जानकर, करने के बाद बहुत मतलब कि हमने किया तो बहुत एक्सपीरियंस मिला। अब जो मैं आपके सामने जो बोल पा रही हूँ ये सब महिपाल सर, पूनम मैम की, इन सभी की बदौलत है कि मैं इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर बोलने का ला पा रही हूँ आप सभी के सामने। इससे पहले मैं बहुत नर्वस हुआ करती थी, बोलने मेरी आवाज भी नहीं निकलती थी। इसी के साथ मैं आप सभी से धन्यवाद लेना चाहती हूँ और रीड इंडिया सेंटर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना सब कुछ सीखने का मौका मिला।
5: हेलो, मेरा नाम तनु है, मैं शाहबाद में रीड इंडिया सेंटर से बोल रही हूँ। यहाँ पे मैंने

0: एडिटिंग होती हैं क्लास की, वो सब मैं ही करती हूँ। इससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। अब मैं कोई भी काम आसानी से कर लेती हूँ। हमारी स्कूल असेंबलीज होती हैं, हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो सब मैं ही देखती हूँ एडिटिंग करने के लिए। और फ्यूचर में मैं इसको अपनी करियर में यूज करना चाहूंगी। थैंक यू।
1: टैली के बारे में पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन यहाँ रीड इंडिया सेंटर पर आने के बाद टैली के बारे में मेरी नॉलेज इम्प्रूवमेंट हुई है। इसलिए मैं अब अपनी नॉलेज को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आती हूँ।
2: मेरा नाम वंशिका जैन है, मैं 17 साल की हूँ। मैं यहाँ रीड इंडिया द्वारका सेंटर में ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स सीखती हूँ। मैंने यहाँ बहुत सारी ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सीखा और मैं अपने फोटोज एडिटिंग आसानी से कर सकती हूँ। और मैंने पोस्टर डिजाइनिंग करना सीखा और पैम्पलेट्स बनाना सीखा। मैं इसको अपनी डेली लाइफ में यूज कर रही हूँ और मैं अपना करियर ग्राफिक डिजाइनिंग में बनाना चाहती हूँ और मैं ग्राफिक डिजाइनिंग बनाना चाहती हूँ।
3: मेरा नाम उपासना है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रीड इंडिया सेंटर के बारे में अपनी एक फ्रेंड से सुना। यहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स मैंने किया, जहाँ पे मुझे सिखाया गया कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू अपना प्रोडक्ट कैसे सेल किया जाए, वो भी सेफली। थैंक यू।
4: मेरा नाम रेशमा वर्मा है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। जब पहले मैं यहाँ रीड इंडिया सेंटर में एडवांस्ड कोर्स कर रही हूँ। पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे थोड़ी बहुत सिलाई आती थी, पर मेरे हाथ में सफाई नहीं थी और ना मुझे इतनी ज्यादा चीजें आती थी जो आजकल चल रही है। अब मेरे हाथ में सफाई भी आ गई है, जैसे जिप लगाना और चैन वगैरह लगाना, सब प्लाजो में जेब लगाना, इन सब चीजों में। और अब मैं मुझे यहाँ आके बहुत सारा कुछ नया सीखने को मिला है, जैसे पैंट, प्लाजो, फ्रॉक सूट, ये सब। और अब मैं बहुत खुश हूँ सीखने के बाद। मैं अपने सूट अपने आप सिलती हूँ और मैं अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताती हूँ कि मैं हमारी रीड इंडिया सेंटर से सिलाई सीखी है। और वहाँ के मैडम और बाकी स्टाफ सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे से बिहेवियर करते हैं और बहुत अच्छे से सिखाते हैं। चाहे कितनी बार भी पूछो, बहुत अच्छे से बताते हैं। और अब मैं बहुत खुश हूँ, आगे जब मुझे कहीं जॉब मिलेगी तो मैं जॉब करूंगी, और नहीं तो मैं अपना घर बैठ के सिलाई भी करूंगी, अपने भी, बाहर के भी। और आगे कभी फ्यूचर में मिला तो कहीं और अप्लाई जरूर करती रहूंगी, जहाँ नौकरी मिले वहाँ मैं करूंगी। धन्यवाद।
5: मेरा नाम गरमा है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रीड इंडिया सेंटर से एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। मुझे पहले थोड़ा बहुत आता था और अब यहाँ पे आने के बाद मुझे सब कुछ आ गया है लगभग। अभी बस फिनिशिंग थोड़ी बहुत बाकी है, वो भी मेरी कम्प्लीट हो जाएगी। और इसके बाद मैं अपना एक बुटीक खोलना चाहूंगी, जिसमें मेरे पास थोड़े बहुत पैसे या कुछ भी होगा, जिससे मैं अपना कुछ कर सकूंगी, अपना काम निकाल पाऊंगी और अपना कुछ करियर कर पाऊंगी। जॉब भी करना चाहूंगी, अगर मेरे को फैसिलिटी मिलेगी आगे चल के तो मैं उसको जरूर अप्लाई करूंगी।
6: मेरा नाम अर्चना तिवारी है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर गाँव में रहने वाली हूँ। मैंने रेड इंडिया से स्टिचिंग, एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। पहले मुझे फिनिशिंग नहीं आती थी, अब मैंने सब कुछ सूट वगैरह, गले की डिजाइन, बाजू, सब कुछ करना सीख लिया है। अब मैं खुद से अपना कुछ करना चाहती हूँ।
7: मेरा नाम बेबी श्वेता है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रीड इंडिया सेंटर से एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। पहले भी मुझे सिलाई आती थी, लेकिन जब से मैंने एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है, जब से मेरे कपड़ों में और अच्छी फिनिशिंग आती है, मुझे बहुत कुछ नया नया सीखने के लिए मिला, जैसे कि चोली कट ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज, अम्ब्रेला कट बाजू, बोट नेक। और पहले मुझे गले की डिजाइन वगैरह, सूटों के डिजाइन, ये सब अच्छी तरीके से सिलना नहीं आता था। जब से मैंने ये एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है, मुझे बहुत अच्छे से सिलना आता है। मेरे कपड़े में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब मैं अपने फैमिली मेंबर्स के कपड़े खुद ही सिलती हूँ। मेरे पास बाहर से भी कुछ कपड़े सिलने के लिए आते हैं, जिससे मेरी अपनी खुद की जरूरतें पूरी हो जाती है। इस एडवांस स्टिचिंग करने से मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है। थैंक यू।
8: मेरा नाम मंजू है, मेरी उम्र 28 साल है। रीड इंडिया से मैंने एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी निजी जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। पहले मेरे पास स्टिचिंग के लिए कपड़े आते थे, लेकिन उनमें अच्छे से फिनिशिंग नहीं हो पाती थी, लेकिन रीड इंडिया में आने के बाद मैंने फिनिशिंग के साथ

0: साथ बहुत सारे नए नए डिजाइन बनाने सीखे। हाँ, मुझे नए नए डिजाइन सीखने को मिले जो मुझे पहले नहीं आते थे। लेकिन ये कोर्स करने के बाद मेरे पास बाहर से कपड़े सिलने के लिए भी आने लगे। रेड इंडिया में आने से पहले मुझे पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन स्टिचिंग सीखने के बाद मुझे दूसरों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अब मैं अपने निर्णय खुद ले सकती हूँ और खुद ही अपना पैसे कमा सकती हूँ। और अब मैं बाहर से गारमेंट स्टिचिंग करके अपने इनकम पा रही हूँ। रेड इंडिया में आने के बाद मुझे बहुत खुशी और सफलता मिली है।
1: मेरा नाम नीनू है। मैंने रेड इंडिया सेंटर से ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स किया है। पहले मैं इतनी कैपेबल नहीं थी जो मैं किसी के पास बोल नहीं पाती थी, बट मैं बोलती थी और मैं एक रिसेप्शन की जॉब भी करती हूँ सावाद मोहम्मद पुर में। थैंक यू सो मच।
2: मेरा नाम किरण राजपूत है। मैं 49 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैंने रेड इंडिया से मार्केटिंग ऑनलाइन का कोर्स किया था, जिसका बेनिफिट ये हुआ है मुझे कि मैं अपने जो काम मैं कर रही थी उसको मैं अच्छी तरह से और प्रेजेंट कर पाई हूँ और मार्केटिंग स्केल को और अच्छे से समझ पाई हूँ कि किस तरह से हम लोग मार्केटिंग को ऑनलाइन के साथ क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स और अपनी क्वालिटीज़ को किस तरह से हम और ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों के आगे प्रेजेंट करने में हमें मुझे आसानी हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ रीड इंडिया का, जिन्होंने ऑलरेडी ये कोर्स चलाया, जिससे कि हम मुझे बहुत बहुत बेनिफिट फ़ायदा हुआ है। थैंक यू फॉर द रीड इंडिया।
3: हेलो, मेरा नाम आशु है। मैं शाहबाद की रहने वाली हूँ। मुझे रीड इंडिया सेंटर के बारे में मेरे फ्रेंड से पता लगा। मैं यहाँ आई, फिर मेरी सुमन मैम से बात हुई। सुमन मैम ने मुझे बताया यहाँ पर मैं पार्लर एंड सिलाई सेंटर का भी काम सिखाया जाता है। फिर मैंने हर्बल के प्रोडक्ट बनाना सीखा। मैंने हर्बल के प्रोडक्ट में लिप स्क्रब, लिप बाम एंड बॉडी लोशन, फेस क्रीम और साबुन बनाना सीखा। मैंने उसको खुद घर पे यूज़ किया और मेरी फैमिली में भी यूज़ किया। उसके बहुत ही बेटर रिजल्ट आया। एंड थैंक यू सुमन मैम एंड थैंक यू रीड इंडिया सेंटर। थैंक यू सो मच।
4: नमस्कार, मेरा नाम सरिता सुबेदी। मैं शाहबाद के रहने वाली हूँ। मुझे अपने फ्रेंड से पता चला रेड इंडिया के बारे में। जैसे मैं वहाँ जाके पता करी तो वहाँ मुझे पता चला कि हर्बल प्रोडक्ट के अलावा वहाँ पर सिलाई, कंप्यूटर और पार्लर के कोर्स भी सिखाई जाती है। जैसे मैं सुमन मैम से मिली और सुमन मैम से जानकारी ली कि यहाँ पर हर्बल प्रोडक्ट बनाने सिखाई जाती है, तो मैंने ज्वाइनिंग किया और हर्बल प्रोडक्ट बनाना सीखा। मैम ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से नेचुरल, बिल्कुल बिना केमिकल के प्रोडक्ट बनाना सिखाया। हर्बल प्रोडक्ट जिसमें से बॉडी सोप, बॉडी वाटर, लिप बैम, लिप स्क्रब, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाना सिखाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ बॉडी लिप बाम, बॉडी स्क्रब एंड फेस क्रीम मैंने बनाया भी खुद और यूज किया। मेरी फैमिली को भी यूज कराया। सबको बहुत अच्छा लगा और सबने मतलब बहुत तारीफ किया। इसलिए थैंक यू सो मच सुमन मैम एंड थैंक यू सो मच रेड इंडिया इतने अच्छे प्रोडक्ट सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच।
5: मेरा नाम सोनिया है और मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना था तो मैं ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए पूछने गई तो मुझे वहाँ फीस बहुत महंगी बताई, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाती। तो मुझे किसी से रेड इंडिया सेंटर के बारे में पता चला तो मैं रेड इंडिया सेंटर में गई और मैंने वहाँ जाके मैम से पूछा कि मैम मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। तो मैम ने मुझे ब्यूटिशियन के कोर्स के बारे में बताया और साथ में वहाँ स्टिचिंग, कंप्यूटर और हर्बल प्रोडक्ट बनाना सिखाया जाता है। तो मैंने वहाँ पे ब्यूटिशियन का कोर्स करना स्टार्ट कर दिया और मुझे 3 मंथ्स हो गए ब्यूटिशियन का कोर्स करते करते और मुझे बेसिक पार्लर पूरा आ चुका है। तो मैं रेड इंडिया सेंटर को और सुमन मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिसके वजह से मुझे मेरा ब्यूटिशियन का कोर्स पॉसिबल हुआ हो पाया है, क्योंकि महंगी फीस की वजह से मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो थैंक यू सो मच सुमन मैम एंड थैंक यू सो मच रेड इंडिया सेंटर।
6: हाय, माझं नाव सामी आहे। मी जोगेश्वर आहे। माझं शिक्षण 11वीपर्यंत झालेलं आहे। मी रेड इंडियामध्ये 3 महिन्यामध्ये कोर्स करते। त्यामध्ये मी ब्लाऊज, साधा ब्लाऊज, कटोरी ब्लाऊज, परत प्रिन्स कटोरीवाला ब्लाऊज वगैरे सर्व शिकते।
7: हाय, मेरा नाम है रेशमा अलूरव जोगिनकर। मैंने 12वी की हूँ सायन्स से, गोरेगाव से, और मैं 3 महीने से रेड इंडिया से कोर्स कर रही हूँ। बेसिक टेलर कोर्स का, और उसके बाद मैंने उसमें सीखी हूँ झबला, बिनबाही का, सादी चड्डी, फैंसी बॉनेट, उसके बाद प्रिंस कटोरी ब्लाउज, फ्रॉक और पंजाबी सूट. थैंक यू.
8: हाय, माझे नाव अक्षता अशोक कांबळे. मी ऍग्रीकल्चर डिग्री करत आहे आणि इथे खामगाव मंडी इंडियामध्ये मशीन शिवण क्लास करत आहे. त्याच्यामध्ये जे दररोजच्या लागण्यासाठी जे कपडे आहेत त्याच्यामध्ये शिकवलं जात आहे. आणि इथे खूप काही गोष्टी शिकण्यासारख्या, रेड इंडियामध्ये खूप काही गोष्टी शिकण्यासारख्या मिळाल्या, त्यामुळे त्यांचे आम्ही आभार व्यक्त करते. थँक्यू.
9: नमस्कार, माझं नाव मनवा जीवन अडवीलकर. माझं शिक्षण पीवायबीए मधून झालेलं आहे. मी इथे रेड इंडिया सेंटरमध्ये 3 महिन्यापासून कोर्स करत आहे. त्या कोर्समध्ये मी बिनबाईचा झबला, कटोरी ब्लाऊज, प्रिन्स कटोरी, साधा ब्लाऊज, ड्रेस हे सगळं शिकली आहे. थँक्यू. रीड इंडिया,
10: माझं नाव नौशीन वजीर जोगिलकर. माझा शिक्षण 12वी. मी रीड इंडिया सेंटरमध्ये कोर्स केला आहे शिवण क्लास. 3 महिन्याचा कोर्स आहे. त्याच्यामध्ये बिनभाईचा झबला, चड्डी, सलवार कमीज, ब्लाऊज हे सर्व शिकवले गेला आहे. हा कोर्स भेटण्यामधून तुमचे आम्ही आभारी आहोत.
11: आपकी उम्र?
12: 22.
11: रीड इंडिया सेंटर से आपने कौन सी ट्रेनिंग ली?
12: कंप्यूटर के पालन की.
11: ट्रेनिंग लेने के बाद आर्थिक स्थिति के बदलाव के बारे में बताएं.
12: ट्रेनिंग लेने से हमें ये फायदा हुआ है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट सकते हैं, उससे हमारी इनकम बढ़ सकती है, ट्रेनिंग बच्चों को दे सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं.
11: आप आगे क्या करना चाहती हैं?
12: कंप्यूटर ही कोचिंग देंगे और कंप्यूटर में ही स्कोप है, कंप्यूटर से ही जॉब करेंगे
11: यहाँ पे. आपका नाम क्या है?
12: स्वाति.
11: आपकी उम्र?
12: 24.
11: रीड इंडिया सेंटर से आपने कोई ट्रेनिंग ली?
12: यस मैम, हमने 2 ट्रेनिंग ली थी, पार्लर का और कंप्यूटर का.
11: तो आपने कंप्यूटर में क्या क्या सीखा?
12: कंप्यूटर में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, नेटवर्किंग
11: बेसिक सीखा आपने. और पार्लर में?
12: पार्लर में मैम कटिंग, फेशियल, ब्लीच, वैक्सिंग.
11: ट्रेनिंग लेने के बाद आर्थिक स्थिति के बदलाव के बारे में क्या आप कुछ बता सकते हैं?
12: कंप्यूटर सीखने के बाद घर पर बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं कंप्यूटर के बारे में, उससे अच्छी खासी इनकम होती है.
11: और पार्लर का?
12: पार्लर में मैम बस साइड में चल रहा है.
11: अच्छा. जीवन के निर्णय और पारिवारिक निर्णय लेने की आपकी क्षमता में कोई सुधार हुआ?
12: यस मैम, पहले से ज्यादा इनकम होने लगी है, सेल्फ डिपेंडेंट हो गया.
11: गुड. आप आगे क्या करना चाहती हैं?
12: मैम पार्लर में कर रहा है, पार्लर खोल रहा है.
11: अपना पार्लर खोलना है? अच्छा. तो पार्लर की पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद मतलब आप चाहते हो अपना पार्लर?
13: माझे नाव आदिती संजय वाळणकर. माझ्या गटाचे नाव महालक्ष्मी गट, गाव विनेरे. आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड मेणबत्ती बनविण्याचे प्रशिक्षण घेतले. तेथे टाटरा मॅडम यांनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे मार्गदर्शन केले, मार्केटिंगचे आश्वासन दिले. त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्याची नवी उमेद मिळाली. रीड इंडिया सेंटर विनेरे व टाटर मॅडम यांचे आम्ही आभार मानतो.
14: जय बजरंग महिला बचत गट, गाव विनेरे. आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड व मेणबत्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण घेतले. तेथे टाटर मॅडमनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे सुद्धा मार्गदर्शन केले. मार्केटिंगचे आश्वासन मॅडमने आम्हाला दिले, त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आम्हाला नवीन उमेद मिळाली आहे. त्यामुळे आम्ही टाटर मॅडम आणि रीड इंडिया संस्थेचे विनेरेकडून आभार मानत आहोत.
15: माझे नाव शर्मिला मंगेश विसापूरकर. माझ्या गटाचे नाव जय बजरंग महिला बचत गट, गाव विनेरे. आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड व मेणबत्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण घेतले. तेथे टाटरे मॅडम यांनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे मार्गदर्शन केले, मार्केटिंगचे आश्वासन दिले. त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्याची नवीन उम्मीद मिळाली. या वतीने टाटरा मॅडम रीड इंडिया व टाटरा मॅडम यांचे मी आभार मानतो.
16: माझे नाव श्वेता संतोष सकपाळ, वय 24 वर्ष, रेड इंडिया सेंटर विनेरे येथून मी ग्राफिक डिझाईनचा कोर्स केला. यामध्ये मला फोटो एडिटिंग, बॅनर डिझाईन आणि व्हिडिओ बनवायला शिकवलं. त्याचा आम्ही नक्कीच भविष्यात उपयोग करू व रेड इंडिया सेंटरने आम्हाला जे फ्रीमध्ये कोर्स प्रोव्हाइड केले त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद.
17: माझं नाव श्वेता रोशन सप्पा, वय 29 वर्ष, रेड इंडिया सेंटर विनेरेकडून आम्हाला ग्राफिक डिझायनिंगचा कोर्स शिकवण्यात आला. या कोर्समध्ये आम्ही फोटो एडिटिंग, बॅनर डिझायनिंग आणि व्हिडिओ कशा बनवायचा हे शिकलो. या शिक्षणाचा उपयोग आम्ही भवितव्यात नक्कीच करू. रेड इंडिया सेंटरने आम्हाला हा जो कोर्स फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड केला त्याबद्दल त्यांचे मनापासून धन्यवाद.
18: मेरा नाम लक्षा है, मैं रीड इंडिया पडवाई सेंटर सिलाई सीखी है. मैं पडवाई में रहती हूँ और मैं इस सेंटर में आती जाती रहती हूँ. इस सेंटर से मैंने अच्छी सिलाई सीखी है. अपने घर के कपड़े सिलती हूँ और मोहल्ले के भी कपड़े सिलती हूँ. इस रीड इंडिया का धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं. इस रीड इंडिया में सिलाई सीख कर और सिलाई करती हूँ मैं और कपड़े सिलती हूँ. उससे जो पैसा आता है मैं अपने कॉलेज की फीस करती हूँ, जमा करती हूँ. मेरा नाम निशा है, मैं पडवाई रीड इंडिया से सिलाई सीखी है. मैं एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ और तरह तरह के डिजाइन के कपड़े सीना चाहती हूँ. और मेरा एक सपना ये है कि मैं एक सेंटर खोल सकूँ जिससे बच्चों को अच्छे से डिजाइन के कपड़े सिखा सकूँ. मेरे तरफ से सेंटर को धन्यवाद.
19: मेरी एज 21 है. मैं लास्ट डे पर रहती हूँ. मैं रीड इंडिया सेंटर में एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है. मुझसे काफी कपड़े सिलाई के आ गए हैं, जैसे कि डिजाइनिंग कुर्ती, डिजाइनिंग पैंट प्लाजो, गरारा, फरारा, लहंगा, चोली वगैरह वगैरह काफी सिलाई आ चुकी है. और मेरे डिजाइनिंग मैं अपने डिजाइन खुद करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपने डिजाइन सिलाई करना. और मेरे डिजाइन सिलाई के लोग भी मतलब कहते हैं मेरे भी सीधे, इस वजह से मेरे मतलब काफी सिलाई आती है घर पर. और मैं सिलाई की वजह से अपने घर में काफी हेल्प कर सकती हूँ. और मैं पहले मतलब अभी कुछ नहीं कह सकती थी अपने बारे में, पर अब मैं सबसे कुछ भी कह सकती हूँ और मैं अपना खर्च खुद ही उठा सकती हूँ. पढ़ाई वगैरह का भी काफी कुछ अपने लिए कर सकती हूँ. मैं एडवांस सिलाई सीख के मुझे काफी लाभ हुआ है.
20: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिजा है. मैं कलघर में घोसियान मोहल्ले में रहती हूँ. या कलघर सेंटर हर्बल कॉस्मेटिक का कोर्स कर रही हूँ जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ है, जैसे कि लिप बाम, बॉडी वेक्स, बॉडी बटर और वगैरह काफी कुछ सीखने मिला है और इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है. मैं रेड इंडिया कलघर सेंटर को धन्यवाद कहना चाहती हूँ.
21: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनम है और मेरी एज 18 ईयर्स है. और मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ. यहाँ पर रेड इंडिया सेंटर आने से पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी यहाँ आने के लिए भी बहुत ज़्यादा, और मेरी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा इनकम की प्रॉब्लम थी. मेरे पापा प्लम्बरिंग का काम करते हैं, मम्मी सिलाई करती हैं. तो मैं सोचती थी कि शायद मैं कुछ कर सकूँ अपने मम्मी पापा के लिए या अपने खुद के लिए, कि मैं अपना खुद खर्च अपना खुद लूँ, मम्मी पापा से नहीं लूँ. इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अपने खुद काम करूँ, खुद कुछ भी करके अपना खुद ही निकालूँ खुद भी. फिर मैंने मुझे यहाँ पर रेड इंडिया सेंटर के बारे में पता चला तो मैं यहाँ पर आई. मैंने यहाँ पर आके बेसिक सिलाई का भी कोर्स किया है और ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स किया है. इसके वजह से मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन और लाइफ स्किल्स और मेंटल हेल्थ का कोर्स है. और ये सब लेने के बाद मेरा माइंड बहुत फ्री रहता है. पहले मैं किसी के सामने बोल नहीं पाती थी, बिल्कुल भी बात नहीं कर पाती थी, और अब अच्छे से मैं सबसे बोल पाती हूँ, बात कर पाती हूँ. मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंट जागा है, दूसरों के सामने बोलने का, कुछ करने का एक हिम्मत आई है. पहले मुझे कुछ नहीं आता था बिल्कुल. यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है मुझे, बहुत अच्छा लगता था यहाँ आके. और अब भी मैं पूरी कम्प्लीट स्टिचिंग कर चुकी हूँ और इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है. इससे मैं अपनी इनकम भी अच्छे से काम कर लेती हूँ और मैं अपने खर्च खुद निकालती हूँ, किसी से कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती. और पहले मैं मेरी पढ़ाई रुक चुकी थी इस काम पैसों की वजह से ही और पापा की मजदूरी के काम की वजह से ही, मगर जब से मैंने अपना काम शुरू किया है या मैंने स्टिचिंग का कोर्स किया है उसके बाद मैं अपने खर्च और स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई खुद में करती हूँ, खुद अपना खर्च निकालती हूँ. और यहाँ पे आने के बाद मैंने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और फेसबुक से मैंने अपने डिजाइन अपलोड किए और मैं उसको अपसेल करती हूँ इस पे, उससे मुझे बहुत अच्छी इनकम हो जाती है और अपने मैं इस वजह से अपने घर में भी पूरी हेल्प देती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई वगैरह भी खुद कर लेती हूँ। और मेरी इंडिया सेंटर आने के बाद बहुत ज़्यादा मुझे फायदा हुआ है और मेरी इंडिया सेंटर को बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच इंडिया सेंटर।

वेलकम ऑन दिस सेशन। तो आज हम सेशन जो है, आप सबको पता है लीडरशिप पे ही मैं सेशन लेती हूँ। और सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी कि सबके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं। एवरीबॉडी शुड एक्नॉलेज कि हाँ, मैं एक लीडर हूँ, किसी ना किसी रूप में मैं लीडर हूँ। तो ये सब एग्री करते हैं इस बात पे कि लीडरशिप तो है, हम उसको इनवोक करते हैं कि नहीं करते, वो हमारा डिफरेंट कंसर्न है, बट एवरी बॉडी हैज अ लीडरशिप क्वालिटी इन दैट। एग्री करते हैं आप सब मेरे से? तो चैट में थोड़ा यस लिख दीजिए या हैंड रेस कर दीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, एवरीबॉडी एग्रीज दैट एवरीबॉडी हैज द लीडरशिप क्वालिटीज। किसी में परसेंटेज वेरी कर ज्यादा है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, बट एवरीबॉडी हैज दैट, राइट? तो मुझे लगता है कि आप सब लोग मेरी इस बात से सहमत करते हैं कि हर एक में लीडरशिप क्वालिटीज होती है, पर हमें क्या करना होता है, उस लीडरशिप क्वालिटीज को इन्वोक करना होता है। इन्वोक मतलब कि पहचानना होता है और उसको जागरूक करना होता है, जो हम नहीं कर पाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। मे बी कोई भी सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं, कोई चैलेंजेस ऐसे होते हैं, या हम अनइंटेंशनली भी नहीं कर सकते। इंटेंशंस तो सब में होती है कि हमें लीडर बनना है, पर हम अनइंटेंशनली भी उसको इन्वोक नहीं कर सकते हैं। इन्वोक मतलब कि उनको पहचानना, उनको रिकग्नाइज करना, और उनको एवरी टाइम वी हैव अ फीलिंग इन आवर माइंड, यस वी आर लीडर्स विद इन आवर सेल्स। सबकी कम्युनिकेशन स्किल्स अलग अलग होती है, कोई बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन करता है, कोई डरता है कि मैं बात बोलूं तो मेरी बात पता नहीं पहचानी जाएगी कि नहीं पहचानी जाएगी, शायद मैं ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, क्या मैं ठीक लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है जो स्मिता उसके ऊपर लाइफ स्किल्स का सेशन लेती है, और वो कल इस बात को भी हाईलाइट करेगी कि हाउ कम्युनिकेशन स्किल हेल्प अस इन डेवलपिंग आर लीडरशिप स्टाइल, आर लीडरशिप विद इन आवर सेल्स। इफ वी हैव लीडरशिप, हाउ टू इन्वोक दैट थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो, दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट विच स्मिता विल हाईलाइट टुमारो। द सेकेंड पॉइंट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हम जो कहना चाहते हैं अपने, जब हम लीडरशिप का रोल प्ले करते हैं, कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल। सबको पता है कि बातचीत के दौरान कम्युनिकेशन के तीन प्रकार के हम यूज करते हैं टूल्स। एक तो हम वर्बली बोलते हैं, दूसरा हम लिख के बताते हैं, और तीसरा 80% ऑफ आर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो स्पीक्स अबाउट आर लीडरशिप क्वालिटीज। कि हम किसी के सामने अगर टिमिड बन के बैठ जाते हैं, टिमिड मीन्स कि हम अपने आप को कमजोर साबित करते हैं कि हम कमजोर हैं, हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, हम वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस फुली व्हाट वी वांट टू से, दैट इज द बॉडी लैंग्वेज। बट यस, रिटन एंड ओरल आर द टू टूल्स नॉर्मली वी यूज फॉर शोइंग आर लीडरशिप क्वालिटीज एंड ऑल्सो कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। दो साइलेंटली ऑल्सो, जो बहुत सारे लोगों का ये भी विचार है और मैं भी सहमत करती हूँ उससे, कि साइलेंट कम्युनिकेशन ऑल्सो प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड दैट साइलेंट कम्युनिकेशन इज कन्वेड थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो। सो जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा बात, हम ये होते हैं सोचते हैं कि क्या हम ठीक है या गलत है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, कि क्या मैं जो कम्युनिकेट कर रही हूँ, वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, ये एक्सपीरियंस से, पढ़ने से, सुनने से, और
अपने आप को एक्सपोजर देने से इन राइट सोसाइटी, मेरे वर्ड्स अंडरलाइन करिए, इन राइट सोसाइटी, अगर हम बैठ के कुछ भी बात बोलते हैं या कुछ सुनते हैं या सीखते हैं, तो हमारे अंदर का जो लीडरशिप सैंक्टिटी है, मैं इसको सैंक्टिटी बोलती हूँ, मैं भी पहले ऐसे नहीं थी जो आज जो आपके सामने हूँ, तो इसलिए मैं बहुत क्लियरली आपको समझा पा रही हूँ कि लीडरशिप हर एक में होती है क्वालिटी, पर उसको उसको पॉलिश करना, उसके ऊपर जो धूल मिट्टी पड़ी है उसको हटाना और अपनी बाकी के स्किल्स को एनहेंस करना ही हमें हेल्प करता है अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को एनहेंस करने में। तो एक तो हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, वो हम कॉन्फिडेंट हो कि हम राइट बोल रहे हैं, राइट वे में कन्वे कर रहे हैं, जो हमारी लैंग्वेज है वो भी ठीक है, और जो हम बोल रहे हैं जिसको हम कंटेंट बोलते हैं वो भी ठीक है। तो ये कैसे आता है? पढ़ने से, सुनने से, आंखों से देखने से, कानों से सुनने से, और सोसाइटी में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, उसको जानने से हमारा कॉन्फिडेंस, हमें क्लैरिटी भी आती है, हमें करेज भी मिलता है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जो थर्ड पॉइंट है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, सब लेते हैं, सुबह उठते ही चाहे छोटा डिसीजन हो और रात के सोने तक चाहे छोटा डिसीजन हो, चाहे बड़ा डिसीजन हो, चाहे घर के बारे में हो, चाहे समाज के बारे में हो, चाहे बच्चों के बारे में हो, चाहे ऑफिस के बारे में हो, चाहे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके बारे में हो, या हम कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, सोचते हैं पहले कि ठीक है या नहीं। वो प्रैक्टिस से हमें आता है, जब हम उसको एनालाइज करते हैं कि वेदर वी आर राइट और रॉन्ग, और फिर हम डिसीजन अपना कन्वे करते हैं। और बहुत बारी हमें एक्सपीरियंस ये होता है कि हम डिसीजन शायद इमोशनली ले रहे हैं या हम अपना दिमाग इस्तेमाल करके डिसीजन ले रहे हैं। तो ये जो कश्मकश है हमारे दिल में, जो हम ये इसके बारे में सोचते रहते हैं, वो एक आर्ट है, उसको हमें प्रैक्टिस से ही आता है और उसको हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि हम वैरायटी ऑफ पीपल के साथ डील करते हैं और हमारा डिसीजन डिपेंड करता है कि हम उसको एनालाइज कैसे कर रहे हैं, उसके रिपरकशंस क्या होंगे, उसको हम ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन अपना कन्वे करें या नहीं करें। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं, और अगर हम इनको ध्यान में नहीं रखते हैं तो शायद हम कहीं ना कहीं अपने डिसीजन गलत भी ले सकते हैं। हम जब अपनी बात किसी के सामने रखते हैं, कोई उसको एक्सेप्ट करता है, कोई उसको क्रिटिसाइज कर देता है, या कोई उसको डिस्कार्ड कर देता है। सिमिलरली, मैं आज अगर सेशन ले रही हूँ तो अगर यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं, 29-30 लोग लाइन पे हैं, उनमें से हर कोई 100% एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ये हर एक के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। जब भी मैं किसी को सोचती हूँ तो मैं एक कुछ हद तक, मे बी 90%, मे बी 80%, मे बी 70% मेरी एब्जॉर्प्शन लेवल होता है। क्यों होता है, ऐसे वेरिएशन क्यों आता है? क्योंकि हमारे स्टेट ऑफ माइंड पे बहुत डिपेंड करता है कि हम कितने अलर्ट हैं। हमारे माइंड में कुछ और चल रहा है, शायद घर की टेंशन है, चाहे ऑफिस की टेंशन है, चाहे मैं आई रास्ते में मुझे बस नहीं टाइम से मिली, या मुझे ट्रांसपोर्ट नहीं मिला, या मेरे बच्चे के स्कूल का कुछ है, या हस्बैंड के साथ कोई बात है, एनी रीजन जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है, वो हमारे एब्जॉर्प्शन लेवल को
उसका असर होता है, राइट? तो हम तभी कहते हैं कि हमें अपनी सोच को उस हद तक ही एक्सटेंड करना चाहिए, स्ट्रेच करना चाहिए कि हम उसका उसका असर हमारी दिनचर्या पे नहीं हो। प्रॉब्लम सबके साथ है, चैलेंजेस सबके साथ हैं, पर ये प्रैक्टिस के साथ आता है। अगर हमारे अंदर कुछ लीडरशिप की शक्तियां हैं या कुछ लीडरशिप के भावना है अपने अंदर लीडरशिप को डेवलप करने की, तो विद प्रैक्टिस हम ये जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं हमारे ऊपर जो डे टू डे लाइफ में आते हैं, हम किसी हद तक उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हमें ये हमेशा ये लेसन हमें मिलता है कि हम अपने पास्ट को एनालाइज करें, अपने प्रेजेंट को उसी तरीके से एक्शन लें और अपने फ्यूचर को एनविजन करें। ये लीडरशिप की क्वालिटीज होती है, क्योंकि लीडरशिप थोड़ा हटके होता है, वो दिनचर्या के साथ, हम रोजमर्रा की जिंदगी के साथ उसको नहीं जोड़ सकते हैं। और मैं क्यों बार बार इस पे एम्फसाइज कर रही हूँ कि हमें अपनी लीडरशिप की जो क्वालिटीज हैं, जो सो रही हैं, उनको जगाने की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे आपको ये भी कहना चाहूंगी कि आज मैं आपको 10 E's की फिलॉसफी समझाऊंगी कि 10 E's क्या है। E मतलब कि कैपिटल E। एक तो हम बहुत ज्यादा, मैं जिस भी गांव में जाती हूँ, जिस सेंटर में जाती हूँ, हम बहुत ज्यादा इमोशनली एंटैंगल होते हैं, और हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इमोशनली एंटैंगल होते हैं किसी भी सिचुएशन के साथ। तो जब हम बहुत ज्यादा इमोशनली एंटैंगल होते हैं, तो हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल कम करते हैं। दिस इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट कि अगर हम इमोशनली बह जाएंगे तो हमें अपने दिमाग से जो सोचना है वो शक्ति हमारी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें इमोशनली स्ट्रांग बनना है। वी आर वर्किंग विद वुमेन फ्रॉम द पास्ट 2 डेज। आई वॉज ट्रेवलिंग, आई वॉज इन रामपुर, आई वॉज इन उधम सिंह नगर, आई मेट हंड्रेड्स ऑफ वुमेन जिनको मैं बार बार यही कहती हूँ कि देर इज अ नीड टू ड्रॉ अ बैलेंस बिटवीन इमोशंस एंड योर ब्रेन, दिमाग के साथ। तो ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, पर ये प्रैक्टिस से आता है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, और ये प्रैक्टिस के जो स्टेप्स हैं मैं आज आपको समझाऊंगी कि क्या स्टेप्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है कि ऑलवेज अगर कोई हमारे पास सेंटर में आ रही है कोई इशू लेके, अपना पर्सनल इशू है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और हम उसको सुनते नहीं हैं, हम अपना बिना सुने, बहुत 90% लोग क्या होते हैं, सुनने की क्षमता कम रखते हैं और अपना डिसीजन करने हम बहुत जल्दी करते हैं। इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी कि हम बिना सोचे समझे, बिना सुने, बिना उसको एनालाइज करे, हम अपनी बात पहले रखने की कोशिश करते हैं, और ये घर में भी होता है। हमें सिंपैथी से ज्यादा एम्पैथी अपनानी चाहिए। एम्पैथी मींस, एम्पैथी का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को उस सिचुएशन में रख के उस इंसान की प्रॉब्लम को रियलाइज करें। शायद आप उस प्रॉब्लम से ना गुजरे हो और दूसरा इंसान उस प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, और वो उसके पास एक ही उम्मीद है कि मैं सेंटर में जाऊंगी, मैं अपनी टीचर से ये बात कहूंगी, या अपने पीयर ग्रुप में ये बात कहूंगी, या मैं अपने कोऑर्डिनेटर के सामने ये बात रखूंगी, और हम लोग इतने बिजी होते हैं कि हम उनको टाइम नहीं दे पाते। पर हमेशा हमें उनकी सिचुएशन में अपने आप को रख के अगर हम वो प्रॉब्लम को एनालाइज करें, उस
प्रॉब्लम को इमोशनली ना देख के जो हमारे अंदर स्ट्रेंथ्स हैं लीडरशिप की या लाइक किसी की सिचुएशन को समझने की, उसको सामने रख के अगर हम उसको हेल्प करें तो हम बहुत ही रियलिस्टिक वे में उसकी मदद कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो मैंने दो चीजों को यहाँ पे एम्फेसाइज किया, जो भी मैंने अभी बोला है, कि इमोशंस को कंट्रोल में रख के और एम्पैथी के साथ अगर हम दूसरे की प्रॉब्लम को सुनते हैं, समझते हैं और उसको हम ठीक ढंग की सलाह देते हैं, तो वो इंसान भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा और हमको भी एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी कि हमने किसी के लिए कुछ किया। तो यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रही हूँ? ठीक है, आगे चलो। और हम हमेशा ये सोचते हैं कि वी शुड ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू ब्रेन बट वी कैन नॉट बी रथलेस। इसमें भी फर्क है। देखिए, एक तो मैं बोल रही हूँ कि आप 100% इमोशनली कोई डिसीजन कन्वे नहीं करें। दूसरा, मैं बोल रही हूँ कि आप अपने दिमाग का, ब्रेन का इस्तेमाल करके करें, उसको सोचें, उसकी सिचुएशन में अपने आप को रखें, बट हमें बहुत हार्श, बहुत रथलेस जो होते हैं, रथलेस मीन्स विदाउट, मैंने कम्युनिकेशन की पहले बात करी थी आपके साथ, कि विदाउट विदाउट एनालाइजिंग व्हाट वी आर कन्वेइंग, हाउ वी आर कन्वेइंग, व्हाई वी आर सेइंग दिस, इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर नॉट मैनेजर्स, वी आर लीडर्स। हम यहाँ पे लीडर्स की बात कर रहे हैं। मैनेजर तो ये बोलते ना कि मुझे नहीं पता तेरे घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, इट्स योर कंसर्न, मुझे तो ये काम चाहिए चाहिए, मुझे आज ही करके दो, नहीं तो कल से जॉब पे नहीं आना। ऐसे कभी सेंटर्स में बात हुई है? नेवर एवर। मुझे नहीं पता कि आज तक हमने कभी इस लहजे में किसी से बात की है, हम कभी भी नहीं करते हैं। दैट इज द वन ऑफ द मेजर वैल्यू ऑफ रीड इंडिया विच वी पास ऑन टू आर कोऑर्डिनेटर्स, आर टीम, आर स्टेक होल्डर्स, एवरीबॉडी। एम आई राइट? तो रथलेस बिल्कुल नहीं होना। एम्पैथी इज द आंसर, पुटिंग योर सेल्फ इन टू देयर शूज एंड एनालाइज व्हाई शी इज सफरिंग, व्हाई शी इज हैविंग दिस प्रॉब्लम टुडे, और उसको पूरा टाइम देना है उसकी प्रॉब्लम सुनने का। और ये मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती हूँ। मैं जब भी सेंटर में जाती हूँ, कोई भी लेडी मेरे पास आती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको टाइम देती हूँ, उसकी बात सुनती हूँ। बट हाँ, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जिसमें मैं नहीं जा पाई हूँ, जैसे बिहार के सेंटर्स हैं, मैं नहीं जा पाई। बैंगलोर का सेंटर है, कोविड की वजह से मैं नहीं जा पाई। बागेपल्ली मैं पहले बहुत बार गई हूँ, आंध्रा भी गई हूँ, श्री सिटी भी गई हूँ, पर जितना फ्रिक्वेंटली मुझे जाना चाहिए उतना फ्रिक्वेंटली मैं नहीं ट्रैवल कर पाती हूँ। अर्लियर बिकॉज ऑफ द कोविड, एंड सेकेंडली अभी इतने सारे सेंटर्स बढ़ गए हैं कि वो ट्रैवल करना ही थोड़ा सा टफ हो जाता है। नाउ जब हम एम्पैथी की बात कर रहे हैं, तो हमारे हमें अपनी एक प्रैक्टिस ये भी शार्प करनी चाहिए कि हम उस सिचुएशन को एनालाइज करें, इवैल्यूएट करें कि व्हाई दिस हैज हैपेंड टू हर। ऑल ऑफ सडन तो नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, उन रीजंस को हम नजरअंदाज कर देते हैं, हम उनको एनालाइज नहीं करते हैं, हम उनके बारे में सोचते नहीं हैं, और हम जल्दी से अपना डिसीजन लेके हम अपनी लाइफ को आगे ले जाते हैं। जब हम इस तरीके से अपनी लाइफ को आगे ले जाते हैं, या अगर हम इस तरीके से दूसरों को सलाह देते हैं, तो ये इसका इम्पैक्ट बहुत शॉर्ट टर्म होता है, बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होता। हम उस प्रॉब्लम को नजरअंदाज करके उस दिन के लिए अपना सोल्यूशन निकाल रहे हैं, पर वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है।
हमें हमेशा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के बारे में सोचने की आदत डालनी चाहिए अपने आप को। जितना हम इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, उतना हम अपने आप को ये जो वेब है चैलेंजेस का, प्रॉब्लम्स का, डे टू डे लाइफ का, वेब का मतलब क्या होता है, जाला, उससे हम अपने आप को आस्ता आस्ता बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने चौथा ई यहाँ पे क्या बोला, इवैल्यूएट करना, उस सिचुएशन को परखना, उस सिचुएशन को जांचना। और ये हम अगर आदत डालेंगे अपने, तो ये हमारी एक रूटीन बन जाएगी कि व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस, व्हाई आई एम एक्टिंग लाइक दिस, व्हाई व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट एक्शन आई एम टेकिंग। ये हमें आदत पड़ जाएगी और कोई ना कोई नेचुरल फिनोमिना हमें आके स्टॉप करेगा कि लेट अस नॉट बी वेरी एग्रेसिव इन कन्वेइंग आवर डिसीजंस, इन यूजिंग द रथलेस लैंग्वेज, इन यूजिंग द वर्ड्स व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड टू से। तो ये हमें क्या है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश भी करता है और ये डे टू डे लाइफ में हमारे रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत असर करती है ये चीज। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। फिर अगर हमारे में लीडरशिप का स्पार्क है, तो हम उस दूसरे पर्सन जो हमारे पास आया है अपनी प्रॉब्लम को लेके, हम उसको एनेबल करते हैं कि अपनी सिचुएशंस को खुद ही एनालाइज करो। हम अपना डिसीजन उनपे नहीं थोपे, हम अपना डिसीजन नहीं कन्वे करें कि यस आप तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो अगर हम उनके उनके अंदर एक आदत डालते हैं कि हम उनको एनेबल करते हैं कि आप अपनी सिचुएशन को खुद एनालाइज करो, और उनको बहुत ही हलीमी से हम उनको समझाते हैं, तो शायद हम उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद एनालाइज करें, खुद अपने जीवन में आगे बढ़े और अपनी प्रॉब्लम्स को उलझाना की बजाय उनको रिजॉल्व करने की आदत डालें। नेक्स्ट स्टेप है कि हम इस प्रोसेस से अगर हम चलते हैं, हम उसको एनेबल करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उनको एम्पावर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उनके अंदर जो छुपी हुई शक्ति है उसको किसी ना किसी तरीके से बातचीत करके, समझा के, उसको हेल्प करके उस शक्ति को भी हम उभारने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उसको एम्पावर भी कर रहे हैं। एम्पावर किसके लिए कर रहे हैं, जो सिचुएशन में वो फंसी हुई है, जो सिचुएशन से वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, उस सिचुएशन को एनालाइज करके कामली कंपोज मैनर में वो अपने सॉल्यूशंस खुद ही ढूंढ रही है और हम उसको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ एम्पावरिंग। हम भी ऐसे ही करते हैं। रीड इंडिया क्या करती है, एंगेज करती है, एनकरेज करती है, एम्पावर करती है और आपको आगे बढ़ने का खुद ही आप अपना रास्ता ढूंढते हो। मैं खाली जो आप लोग करते हो उसी को आपके सामने रख रही हूँ, मैं कोई नई चीज आपके सामने नहीं रख रही हूँ, ठीक है? जब हम एम्पावर करते हैं, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इनकलकेटिंग दी हैबिट ऑफ टेकिंग राइट डिसीजंस फॉर राइट एक्शन एट राइट टाइम। आप तीन चीजों को नोट करिए कि जब आप उसको एम्पावर एनेबल कर रहे हो, उसको एम्पावर कर रहे हो, तो आप उसमें एक आदत इनकलकेट कर रहे हो। इनकलकेट का मतलब उसको एक आदत उसमें ये बहुत अच्छे से डाल रहे हो कि वो
राइट डिसीजन ले, राइट एक्शन ले उस डिसीजन के ऊपर, और राइट टाइम पे ले। ठीक है, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। तो वो कैसे आती हैं? जब हम पिछले जो 5 स्टेप्स मैंने बताए हैं उन पे हम रेगुलर प्रैक्टिस करने की आदत डालें, उसको रोज प्रैक्टिस करें, अपने दिनचर्या को, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को उसके साथ हम जोड़ें। तो मैंने आपसे अभी तक जो बात की है वो इमोशंस की बात की है, एम्पैथी की बात की है, इवैल्यूएट करने की बात की है, एनेबलिंग करने की बात की है, एनकरेज करने की बात की है, और उनको एम्पावर करने की बात की है। तो ये पॉइंट्स आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो मैं सबको मेल भी कर दूंगी। ठीक है, सो विद दीज 5 ईज यू आर एनेबलिंग द अदर पर्सन टू एनलाइटन हिज और हर ओन पाथ ऑफ ग्रोथ। तो उसको एक रोशनी की किरण मिलती है कि हाँ, अरे ये तो ठीक ही है, इन्होंने मुझे बताया कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकल सकती हूँ, मुझे इन्होंने रास्ता दिखाया, डिसीजन मेरा है, उन्होंने खाली मुझे रास्ता दिखाया है कि आप इस रास्ते पे भी चल सकती हैं, सेकंड लेन में भी जा सकती हैं, थर्ड में भी जा सकती हैं, फोर्थ में भी जा सकती हैं, चॉइस आपकी है, क्योंकि आपने उसको डिस्कस किया है, उसको एनालाइज किया है, उसको इवैल्यूएट किया है, और आपने अपना राइट डिसीजन राइट टाइम पे लिया है आगे बढ़ने के लिए। अगर हम इसी बात को आगे लेके चलें तो मैं ये कहूंगी कि इतना आसान नहीं है, चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जो कभी तो वो विजिबल हैं सरफेस पे और कभी वो इनविजिबल भी हैं। विजिबल ये है कि हाँ, सामने सिचुएशन खड़ी है, सामने पहाड़ गिर गया है और मुझे सड़क पार करनी है, और जब तक मैं उस पहाड़ को, पत्थर को अपने रास्ते से नहीं निकालूंगी, नहीं आगे धकेलूंगी, तो मैं सड़क पार नहीं कर सकती। कुछ ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में होती हैं जो बिल्कुल इनविजिबल है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं, पर प्रॉब्लम्स तो हैं, उन प्रॉब्लम्स के लिए भी हमारे को रास्ता ढूंढना है, उन प्रॉब्लम से हम कैसे निकलेंगे, उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी लाइफ का व्हीकल आगे बढ़ाने के लिए। और वो कैसे बढ़ेगा कि हमें अपने आप को सेल्फ एनकरेज भी करना है आगे बढ़ने के लिए। जब तक हम अपने आप को सेल्फ एनकरेज नहीं करेंगे, हम अपने आप को वीक ही समझेंगे और हम कहेंगे कि वी विल गिव अप, नहीं, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, आई कैन नॉट डू दिस, आई शुड नॉट डू दिस। जब ये थॉट्स हमारे माइंड में आने शुरू हो जाएंगे तो हम वेवरिंग माइंड हो जाएगा हमारा, हम फिर भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो शुरू में मैंने क्या बोला कि हम अपने आप को इमोशनली वीक करें, या हम अपने आप को, अपने थॉट प्रोसेस को दिमाग से सोच के हम अपने आप को स्ट्रांग करें, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू। और उसको किसने करना है? आप लोगों ने करना है। कोई भी लीडर आपके दिमाग में घुस के आपकी सोच नहीं बदल सकता है, कोई भी लीडर आपके इमोशंस को नहीं बदल सकता है, कोई भी लीडर आपको उंगली पकड़ के चलाना नहीं सिखाएगा, लीडर खाली आपको रास्ता दिखा सकता है, उस रास्ते पे चलना किसने है? आपने चलना है। ठोकरें भी आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगे, इमोशनली वीकनेस भी आएगी, बट लीडरशिप सेज दैट यू हैव टू ब्रेक द बैरियर्स। ब्रेक द बैरियर्स मीन्स जो भी रास्ते में उलझने आ रही हैं उनको सही दिमाग से,
बहुत हलीमी से, पेशेंस से, परसिवरेंस से उनके सॉल्यूशंस निकाल के आगे बढ़ना है. बिकॉज देयर इज अ सेइंग दैट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, बट बिकॉज हमारा माइंड इतना वेवरिंग होता है, हमारे पे इतने प्रेशर्स होते हैं माइंड पे, हम राइट डिसीजन एट राइट टाइम नहीं ले पाते हैं, इसलिए हम कंफ्यूजिंग स्टेट में आ जाते हैं. अनलेस वी हैव क्लैरिटी इन आर माइंड, वी कैन नॉट डेवलप द करेज फॉर शेपिंग आर ओन लाइफ टू द बेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल. इज इट राइट? अगर हम हमेशा कंफ्यूज ही हैं, हमें क्लैरिटी नहीं है माइंड में, और क्लैरिटी प्रैक्टिस से आती है. अगर आप अपनी दो सिचुएशंस को एनालाइज करके उसका ठीक टाइम पे उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, तो आपकी क्लैरिटी अपने आप ही शार्प हो जाएगी. ये मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ. पर अगर हम हमेशा रट में ही रहेंगे, हम अपने आप को वीक ही समझेंगे, हमारे माइंड में थॉट प्रोसेस भी नहीं आए. अगर हम नेगेटिव ही सोचते रहेंगे अपने बारे में, दूसरों के बारे में, समाज के बारे में, कि मुझे समाज ने दिया क्या है, मेरे परिवार ने मुझे क्या दिया है, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे बच्चों ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे परिवार ने मेरे लिए क्या किया है, अगर हम ये क्वेश्चन मार्क की जिंदगी जिएंगे, तो हमें क्लैरिटी नहीं आएगी. हमें इस क्वेश्चन मार्क की जिंदगी से एफर्मेशन की जिंदगी में आना है कि हाँ, ये चैलेंजेस हैं मेरे सामने, इन चैलेंजेस को मुझे रिजॉल्व करना है, और इन चैलेंजेस की प्रायोरिटी भी आपने तय करनी है. कई बार हम क्या करते हैं, एक बहुत प्रायोरिटी सिचुएशन हमारे सामने है, हम उससे आंखें छुपा के हम दूसरी प्रायोरिटीज को रिजॉल्व करना शुरू कर देते हैं. ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये हम लोग सब करते हैं, इंक्लूडिंग मी. आज मैं ये सेशन आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं एक लाइफ सिचुएशन आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ. पर हमें प्रायोरिटीज भी अपने आप ही तय करनी है कि ये 100% प्रायोरिटी है, ये 80% है, ये 60% है, ये 40%. ये हमारे दिनचर्या ऑफिस में भी यही होता है कि हम अपने पूरे 8 घंटे ऐसे ही पास कर देते हैं. हम मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीजों को छोड़ के लेस प्रायोरिटी वाली चीजों के ऊपर फोकस कर देते हैं, और मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीजें हमारी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देती हैं. उनको रिजॉल्व करने के लिए हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है, जो हम बाकी चीजों को हैंडल नहीं कर सकते. तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ, और इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा. और अब हम बात करें कि हमने अपने आप को एनकरेज भी किया, और हमने अपनी लाइफ में एनविजन भी किया. जो मैंने आपको बोला था ना, मोस्टली स्टेटमेंट ये होती है कि यू लिव इन योर प्रेजेंट, राइट, इन अ मैनर दैट योर पास्ट गिव्स यू द हैप्पीनेस. आज का पल जो प्रेजेंट है, वो पल अगले मोमेंट में वो पास्ट बन जाएगा, बनेगा. जब वो पास्ट बन जाएगा, प्रेजेंट को इस तरीके से जिया है कि आपका पास्ट आपको खुशी नहीं देगा, तो आप दुख को ही लेकर आगे बढ़े. तो आपने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को यूज नहीं किया, आपने अपने प्रेजेंट को इस तरीके से नहीं जिया कि जब वो पास्ट बने तो आपको उसमें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले, आपको उसमें खुशी मिले. और खुशी अगर हम खाली अपने लिए ढूंढेंगे, तो बहुत छोटी सी खुशी होगी, वो एक बिंदु होगा. तो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि यू लिव योर प्रेजेंट इन अ मैनर, व्हेन इट बिकम्स पास्ट यू फील हैप्पी अबाउट दैट.
ये बहुत चार अक्षर की स्टेटमेंट है पर बहुत पावरफुल है। इस स्टेटमेंट को अगर हम इग्नोर करते हैं, इस स्टेटमेंट को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हम अपनी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं और हमारा फ्यूचर तो कभी एनलाइटन फिर हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसमें तो पास्ट का भी इफेक्ट आएगा, प्रेजेंट का भी आएगा और वो हमारा फ्यूचर बनेगा। सो वी हैव टू एनालाइज व्हाट वी आर डूइंग। हम एक समाज में रहते हैं, हमें हमेशा अपने दुख का गाना नहीं गाना है। वी लिव इन अ सोसाइटी, वी कैन नॉट जस्ट सिंग आवर ओन सॉन्ग्स, चाहे हमारी दुख हो चाहे हमारी खुशी हो। वी ऑल्सो हैव टू लेंड आवर इयर्स टू लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ अदर्स। हमें अपने कान जरूर दूसरों के लिए रखने हैं कि हम उनका भी गाना सुन सके, चाहे वो दुख सैड सॉन्ग हो, चाहे वो खुशी का सॉन्ग हो, चाहे वो स्ट्रगल्स का सॉन्ग हो, चाहे वो ग्लोरी का सॉन्ग हो। हमें दूसरों को भी स्पेस देनी चाहिए उनके बारे में सुनने की, विच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में। वी जस्ट रिएक्ट, दूसरे इंसान की बात ही खत्म नहीं होती है और हमारा सोचने का स्केल इतना हाई हो जाता है, वो हमें रिएक्ट करने के लिए इतना मजबूर कर देता है कि दूसरे इंसान की बात वो किस लहजे में कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या चीज उसको अंदर से प्रोत्साहित कर रही है ये बात कहने की, हम बिल्कुल उसके ऊपर क्रॉस मार देते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये जो जर्नी है ये लाइफ की हमारे हाथ में है, अब हमने डिसाइड करना है कि हम किस रास्ते पे चलें, कौन सा रास्ता अपनाएं और अपनी लाइफ की डायरेक्शन हम कौन सी रखें। वी शुड ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन आर अचीवमेंट्स एंड कीप ऑन रिड्यूसिंग द लिस्ट ऑफ चैलेंजेस। ये हमारा मिशन होना चाहिए। ये आसान नहीं है, प्रैक्टिस से आता है। जितना हम दूसरों की मदद करेंगे उतना जो सुपर पावर है वो हमारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। अगर हम अपना ही दुख को इतना बड़ा और इतना एनहेंस कर देंगे तो जो हमारी क्षमता है दूसरों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की वो खत्म हो जाएगी। तो इस बात को भी बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर हम ये आदत डाल लेते हैं, आप अगर मैं कल भी परसों रामपुर में मैं लड़कियों को बोलकर आई थी कि आप अपनी एक डायरी बनाएं और जो भी अच्छी चीज आपने सीखी, आपने समझी और आपने करी उसको अपनी डायरी में लिखें, और मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊंगी मैं वो डायरी देखना चाहूंगी। एंड दैट डायरी इज ए बाइबल फॉर यू, दैट डायरी इज ए कुरान फॉर यू, बिकॉज हमें स्पिरिचुअल बुक्स भी क्या कहती हैं, हम अपने आप को सुधारें, हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, हम अपना सुख भी लोगों के साथ बांटें, खाली दुख नहीं बांटें, और दूसरों के दुख में शामिल होके उनके चैलेंजेस में शामिल होके उनको भी हेल्प करें उसमें से बाहर आने की। यही कहते हैं हमारी स्पिरिचुअल होली बुक्स। और अगर हम अपनी एक होली बुक लिखना शुरू कर दें तो कितना वंडरफुल एक्सपीरियंस होगा आपका, जब एक साल के बाद आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप में कितनी अच्छाइयाँ हैं, है ना, कितना अच्छा लगेगा आपको वो पढ़ के। तो आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ये आपको हेल्प करेगा जब आप पेपर पे लिख

0: कोई कुछ कहना चाहता हो तो हमारे पास 10 मिनट हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जो मैंने इतने सारे ईज की आपके साथ आज बात करी है, वो मैं शिवानी को दे दूंगी, या मैं इसी मेल पे लिख दूंगी सबको। मैंने बात करी है इमोशंस की, एम्पैथी की, इवैल्यूएशन की, एनकरेजमेंट की, एम्पावरमेंट की, एनेबलमेंट की, एनलाइटनमेंट की, एनविजन करने की, लाइफ्स को एनरिच करने की, और लास्टली जब आप अपनी डायरी लिखना शुरू करेंगे तो आप एम्फेसाइज करेंगे दूसरों के सामने में कि इफ आई कैन डू यू कैन ऑल्सो डू, बिकॉज यू हैव जस्टिफिकेशन, यू हैव प्रूफ विद यू दैट यू हैव डन दिस। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई कोई कमेंट, और कोई शेयर करना चाहता है कुछ, तो प्लेटफॉर्म आपके पास है। हमारे पास 10 मिनट हैं और हम 10 मिनट में फिर इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मैम, अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच हमें इनक्रेज करने के लिए, इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच।
2: मैं सुवर्णा बोल रही हूँ मैम, पूना सेंटर से। बहुत अच्छा सेशन लिया मैम आपने, जैसा मोटिवेट किया। मतलब हम भी आपके सेशन से हम भी बहुत अच्छा, मतलब स्ट्रांग बन जाते हैं आपका सेशन अगर सुना तो।
0: बहुत अच्छी बात है। और एक पॉइंट, आप एक वर्ड शेयर कर दीजिए सबके साथ, जिस जो वर्ड ने आपको मोटिवेट किया है।
2: इमोशनली हम भी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं मैम आपका सेशन अगर सुना ना।
0: हाँ,
2: यस
0: वेरी गुड
2: मैम,
0: वेरी
2: थैंक यू मैम।
0: गुड।
3: मैम अंजू द्वारका सेंटर से,
0: हाँ जी अंजू,
3: आज का सेशन बहुत अच्छा लगा मैम। आपका लीडरशिप की क्वालिटी जो आपने बताई है,
0: वेरी नाइस वेरी नाइस। प्रैक्टिस करिए उसको, स्लोली स्लोली प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन सरपास एवरीबॉडी।
3: जी मैम।
0: ये बहुत जरूरी है, इसको खाली सुनने से तो समझ में आता है, पर प्रैक्टिस करने से और भी ज्यादा अच्छे से। थैंक
3: थैंक यू मैम।
0: यू, थैंक यू अंजू।
4: मैम इस पे चलने के लिए भी हमें पावर चाहिए। थोड़ा थोड़ा हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे जरूर इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि
0: हाँ,
4: बहुत कुछ है जिसपे प्रैक्टिस करना है। ऐसा लगता है चीज टूट जाती है, कुछ चलती रहती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि इसके बाद हमें लगता है कि हमें किस किस जगह चीज को इम्प्लीमेंट करना है। इससे हमें पता चलता है कि हमें अभी और क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है।
0: बिल्कुल
4: एग्जाम
0: बिल्कुल।
4: जी मैम।
0: पहले अपनी लाइफ को स्ट्रांग बनाना है, फिर दूसरों की लाइफ को भी स्ट्रांग बनाना है। दोनों
4: जी मैम जी मैम
0: चीजों का दारोमदार आपके कंधों पे है। गुड
4: जी मैम जी मैम, थैंक यू मैम।
5: आफ्टरनून मैम, फरहा बोल रही हूँ रामपुर से।
0: फरा, कैसी हो आप?
5: ठीक है मैम।
0: तुम्हारे
5: आपने बताया कि हमें कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है करना। कभी भी अगर हम सेंटर पे बेनिफिशियरीज को सिखाते हैं तो यही नहीं होना चाहिए कि उसका एडमिशन किया और सिर्फ हमारा मतलब है उसको सिखाने से, कि आज उसने क्या सीखा, कल क्या सीखा, वो क्या सीख रहा है। बट उसके साथ हमारा एक अंदर से बर्ताव भी अच्छा होना चाहिए कि वो फैमिली में कैसा चल रहा है उसका, उसके अंदर की क्या प्रॉब्लम है वो हमसे शेयर कर सके। अभी एक ही अभी मैंने लाइब्रेरी के सेशन में भी ये शेयर किया था और यहाँ भी शेयर करना चाहती हूँ। एक बेनिफिशियरी मेरे पास आ रही थी और वो आती थी, कंप्यूटर सीखती थी और चली जाती थी। काफी लड़कियां थी जो हंसती भी थी, बोलती भी थी, बट उसको किसी से कोई मतलब नहीं। आई और उसने सीखा और वो चली गई। तो मैंने नोट किया 15 दिन 20 दिन, एक दिन मैंने उसे याद करने के लिए कुछ दिया कि आपको ये याद करके लाना है। तो वो अगले दिन याद नहीं करके लाई और बहुत रोने लगी। मैंने कहा क्यों क्या हुआ? कि मैम आप हमें डांटेंगी। मैंने कहा आपने मतलब देखने से पहले ही सोच लिया कि हमें मैं डांटूंगी। मैंने कहा डांटूंगी नहीं, आप मुझे बताओ कि आप रो क्यों रही हो, कि मैंने ये स्पेलिंग याद नहीं की। तो मैंने कहा आपने याद क्यों नहीं की कि वो मेरी ना मम्मी मुझे बहुत परेशान करती है। मैंने उससे ऐसी धीरे धीरे बात निकलवाई, मम्मी क्यों परेशान करती कि मेरी पापा ने दूसरी शादी कर ली, मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, और वो कहती है अब तुम्हें कहीं पढ़ने नहीं जाना है, घर का काम करना है और भैंसों को देखना है, दूध वूध बेचना है, और तुम्हें कुछ नहीं करना है और मुझे पढ़ना है मैम। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी मम्मी से बात करने आऊंगी घर पे और उनको समझाऊंगी, और आप सेंटर पर आओ, आपको जो सीखना है वो सीखो।

0: बट ऐसे परेशान रहने से कुछ नहीं होगा, आपको भी बात करनी होगी खुद के लिए घर पर। तो उसको ये बात काफी समझ में आई, उसने अपने पापा, मम्मी तो नहीं सुन रही थी उसके बाद, लेकिन उन्होंने अपने पापा से वो बात की और हम उसके गाँव गए। हमने उसकी मम्मी से जब फेस टू फेस बात की तो वो बहुत तेज किस्म की थी, वो यही बोल रही थी कि नहीं अब ये क्या करेगी, पढ़ के नहीं पढ़ना है, इसकी शादी करनी है हमें और ये है और वो। और वो जो उनकी सगी बेटी थी उनको पढ़ा रही थी। मतलब गाँव में ये होता है कि वहां पर सगा सौतेले का थोड़ा सा रखते हैं कि इनको नहीं करना है, तो वहां उनको हमने बहुत इनकरेज किया और बोला कि शादी से पहले अगर आप 1-2 महीने हमारे सेंटर पे भेज दो, पूरी हमारी जिम्मेदारी रहेगी, आप सीखने दो जो वो सीखने के लिए बोल रही है, आप फीस मत देना, आपको लगता है कि मेरी बेटी के लिए वहाँ फीस जा रही है और मैं नहीं दे सकती, आप फीस मत दीजिएगा लेकिन इसको भेजो क्योंकि ये सीखना चाहती है। तो वो उस चीज से बहुत खुश हुई और उसकी मम्मी ने ठीक है आधे पौन घंटे के लिए सेंटर पे भेजना शुरू किया। तो वो जो उसकी बातें दिमाग से थी और जो वो सोचती थी डरती थी वो टेंशन में रहती थी, तो वो धीरे धीरे दूर हुई। तो वो सारी चीजें आपने हमें बताई कि हमें कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है सेंटर पे। अगर हमारे पास एक एक बेनिफिशियस आ रहा है तो हमें उससे हर एक बेनिफिशियस से बात करना चाहिए, क्या पता हम अपनी बात समझा के उसको कुछ इनकरेज करें उसकी लाइफ के लिए, क्या पता उसकी सोच चेंज करें, उसके जितने भी दिमाग में निगेटिव पॉइंट है उसको दूर करके उसको पॉजिटिव सोच में बदले। तो ये बात आपका ये पॉइंट हमेशा हम नोट भी करते हैं, करते भी आगे, और आज आपने जो बताया वो काफी हमारे लिए काम आता है। थैंक
1: थैंक
0: यू।
1: यू फरा, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और मैं सबको सबको ये बोलना चाहूंगी जितने भी लोग ऑनलाइन हैं। मैं परसों मैं कब थे हम फरा के सेशन में? ऑन ऑन ट्यूसडे, राइट। ऑन ट्यूसडे मैं स्मिता डिंपल मैम फरा और अकबर के सेशन में सेंटर में थे और इट वाज अमेज्ड। 50 से ऊपर लड़कियां थी जो इनके सेंटर में बैठी थी और सबने बुर्का पहना हुआ था। बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। मेरी हालत एकदम खराब थी बिकॉज मुझे बहुत पसीना आता है वहां पे, तो आई वॉज स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। पर वो माहौल देख के ना मैं अपने आप को रोक पाई, ना स्मिता अपने आप को रोक पाई, ना डिम्पल अपने आप को रोक पाई, ना फरह रोक पाई और ना ही अकबर रोक पाया। हम पांचों ने इतना उन लोगों के साथ बातचीत की, इतना उन लोगों को समझाया और वो ना वर्ड्स अपने आप आते हैं उनसे बात करने के लिए। एंड फरह, आई अकबर इज नॉट हियर टुडे, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे ऑनलाइन। आज आपका फेस्टिवल है पर फिर भी आप सेशन मिस नहीं कर रही हैं। और उस दिन इट में मेरे सामने से वो आंखों के आगे से वो सीन ही नहीं जा रहा है कि इतनी सारी लड़कियां वहां पे हमें सुनने के लिए आई हुई थी और पीछे की लड़कियां स्टूल्स पे खड़े होके हमारी शक्ल देख के हमें सुनना चाह रही। दैट वाज अमेजिंग फरा, यू आर अ रियल लीडर एंड यू आर वर्किंग इन द
0: थैंक यू
1: कम्युनिटी
0: मैम,
1: वेरी वेल, वेरी
0: ये सब
1: वेल।
0: आपसे ही सीखा है मैम, जो आप
1: बहुत
0: सिखाते हैं वो हम आगे करते हैं। थैंक
1: अच्छा
0: यू।
1: लगा उस दिन मुझे। डिम्पल ने अपने सेंटर के, स्मिता ने अपने एक्सपीरियंसेस, फरा ने अपने एक्सपीरियंसेस, जो मैं हमेशा फरा को कोट करती हूँ कि फरा को मैं जब फर्स्ट टाइम मिली थी तो दरवाजे की एक पार्टीशन थी, फरा उधर से बोल रही थी और मैं इधर से बोल रही थी। आज फरा सबके सामने इतनी कॉन्फिडेंटली बात करती है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। और अगर हमने ऐसे 10,000 या 20,000 भी लड़कियों को तैयार कर दिया तो वो लड़कियां कभी भी पीछे मुड़ के अपनी लाइफ को नहीं देखेंगी। और आप लोगों की भी गारंटी है बिकॉज यू पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड दैट, राइट? ठीक है, थैंक यू फॉर दैट।
0: गुड आफ्टरनून मैम।
1: गुड आफ्टरनून।
0: मैं
1: और
0: गरिमा गृहस्थ शशि।
1: हाँ जी शशि,
0: यस मैम, मैम लड़कियां आपसे बात करना चाहती हूँ। मैम वो आपका सेशन सभी सुन रही हैं और मैम सभी लड़कियां अभी आपके सामने हैं, लाइव हैं, वे कुछ बात करना चाहती हैं मैम।
1: हाँ जी बोलिए।
0: गुड
1: गरिमा
0: आफ्टरनून।
1: ग्रेस सेंटर से बोल रहे हैं मैम। मैम
0: हाँ
1: हम
0: जी
1: जो ट्यूशन सीख रहे हैं ना मैम, बहुत अच्छा सीख रहे हैं। शशि मैम हमें बहुत अच्छा सिखा रही है।
2: और हम चाहते हैं कि हमें और भी बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम हमने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ ट्यूशन भी सिखाया जा सकता है, लेकिन हमें यहाँ गरिमा गैस सेंटर में ट्यूशन आके बहुत अच्छा काम हुआ है मैम। एक और तो क्या कहना आता है ना, सुनना, हमें वो पहचानने के लिए मिला है मैम से, सती मैम से। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिल से बहुत खुशी आ रही है मैम इस चीज के लिए। थैंक
3: थैंक यू मैम, थैंक यू मैम,
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुन के। गरिमा गृह एक ऐसा सेंटर है, मैं सबको बताना चाहूंगी कि कीर्ति नगर में एक एमसीटी का टॉयलेट कॉम्प्लेक्स था जिसको पीवीआर नेस्ट ने बिल्कुल रेनोवेट कर दिया, और उसमें दो कमरे हमें दिए हैं जिसमें हमने लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेक्शन और स्टिचिंग सेक्शन और ब्यूटी एंड वेलनेस का सेक्शन बनाया है। और पैर रखने की जगह नहीं होती है, ये सब औरतें इतने इतने उत्साह से उस सेंटर में आती हैं, कोई इनहिबिशन नहीं है कि वो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है, वहां पे हमें नहीं बैठना, वहां पे हमने नहीं सीखना। जहाँ सीखने की इच्छा होती है वहां पे राह भी निकल आती है, ये मेरा विश्वास था, तभी हमने पीवीआर नेस्ट के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पे सेंटर खोला था। थैंक यू सो मच, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फरजाना आप कैमरे में आई और फिर चली गई, आप कुछ कहना चाहती हैं
3: थैंक यू मैम,
1: बोलिए।
3: आपका सेशन लेकर हमें ये महसूस होता है कि लीडरशिप सबके अंदर होती है, लेकिन आपका जब हम सेशन लेते हैं ना, हम अपने अंदर से उसे जगा पाते हैं। तो बात है तो सिर्फ उसे जगाने की है मैम, और फिर आपकी बातों से और आपके समझाने के तरीके से, आपके सेशन से हमें इतना अच्छा लगता है कि हमको ये अपने ऊपर कर पाते हैं कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से मैं भी बहुत कुछ हूँ।
1: अब फरजाना बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये शेयर करने का, और ईद मुबारक, आज आपका त्योहार है और फिर भी आप सेशन अटेंड कर रही हैं। और फरजाना एक ऐसी लड़की है जो इतने रिमोट एरिया से और आगे इतनी बढ़ गई है, और इसका थॉट प्रोसेस इतना चेंज हो गया, और ये इतनी औरतों को एम्पावर करती है, तो अभी ये अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के कभी नहीं देख सकती है, ये मेरे को पूरा विश्वास है ना फरजाना।
3: जी मैम, मुझे तो ना हर बार और अच्छा लगता है मैम, ऐसा लगता है पिछली जगह भी याद करती हूँ, ऐसा लगता है मैं वो फरजाना हुई नहीं, पता नहीं कैसे ऐसे हो गई। मैं बात करने का तरीका, मतलब जो भी पहले था, तो मैं ये कहना चाहती हूँ मैम, सिर्फ जो भी है आपकी वजह से है और हम बहुत अच्छा कर पाए, और आगे भी इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा करेंगे रीड इंडिया के लिए।
1: थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना। सना, यू ऑल्सो केम ऑनलाइन एंड देन यू क्लोज, यस
4: गुड आफ्टरनून मैम,
1: गुड आफ्टरनून,
4: हाउ आर यू मैम, हैप्पी
1: बिल्कुल ठीक। हैप्पी ईद टू यू ऑल, सबके परिवार को बहुत बहुत
2: गंदी
1: मुबारक, और सबने बहुत अच्छी खीर भी बनाई होगी आज, मुझे
4: यस
1: पता
4: मैम,
1: है। हाँ
4: थैंक यू मैम फॉर द सेशन, फॉर टेकिंग आउट टाइम हम लोगों के लिए, इतना टाइम निकालने के लिए थैंक यू
1: नहीं, ये तो मेरा फर्ज है और मेरा काम है,
4: मैम।
1: मैंने
4: एक्चुअली ये सेशन होता है, इसकी वजह से हम लोग इंटरेक्ट भी कर पाते हैं, ऐसे हमारी बात हो वीडियो कॉल पर, हम एक दूसरे से बात भी कर पाते हैं, सारे सेंटर्स के लोग इकट्ठा होते हैं, सबके एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं, तो हमें भी लगता है बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अदर सेंटर से भी सीखने को मिलती रहती है कि हम अपने अंदर क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी लर्निंग्स बढ़ती हैं, तो ये सारे सेशन बहुत बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए। और मैम कल का सेशन पता मैम का है, वो भी बहुत अवेटेड सेशन
1: और
4: है।
1: बहुत अवेटेड सेशन है, और मैं आपको बताऊं, स्मितो और मैं इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। इट्स नॉट
4: यस
1: दैट
4: मैम,
1: आई स्पीक एक्सटेम्पोर, मैं पहले अपने थॉट्स को कोलेट कर लेती हूँ, एक पेपर पे लिख लेती हूँ और स्मिता के साथ डिस्कस करती हूँ, क्योंकि हम कैसे एम्पावरमेंट जो है या लीडरशिप है, हम हवा में बात नहीं कर सकते, हमें बहुत ही पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करके, उसको समझा के, उसको कैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में ला सकते हैं, वो डिस्कस करने में हमें भी एम्पावरमेंट मिलती है, हमें भी एनकरेजमेंट मिलती है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, पर उन प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे एड्रेस करना है, कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, इट्स ए कलेक्टिव सेशन फॉर एवरीवन। हम सारे इकट्ठे तो एक ही प्लेटफॉर्म पे थैंक्स टू टेक्नोलॉजी की हम आ सकते हैं, अदरवाइज फिजिकली मिलना तो बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने बोला कि मैं फरा के सेंटर पे हम लोग गए थे, इट वाज इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी मैं आपको बता नहीं सकती। एंड थैंक्स टू ऑल द गर्ल्स हु केम देयर, मोर देन 50 to 60 गर्ल्स वर देयर एंड दे वर बबलिंग विद एनर्जी कि हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है, हमें अपनी लाइफ में कुछ करना। तो वो प्रोत्साहन देख के हमें भी एनर्जी मिलती है, हमें भी खुशी होती है और फिर हमारा और करने का दिल करता है। ठीक है, थैंक
4: वेरी ट्रू
1: यू,
4: मैम,
1: थैंक यू सना,
4: थैंक यू
1: थैंक यू।
4: मैम। मैं सेशन आपका पूरा सुना है, फिलहाल मैं बस में ट्रेवलिंग पे हूँ, पर आपसे बहुत कुछ सीखा सभी लोगों ने, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए। और आपसे सीख के कुछ आगे बढ़ने की कोशिश है लाइफ में, जो हम अपने टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू मैम।
1: सुमन इज अनदर एग्जाम्पल, जो जो मैंने आज एक पिक्चर आपकी आंखों के आगे दिखाने की कोशिश की है। सुमन इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट, फरा इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट, सना इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट, फरजाना इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट। तो ये हमारे सामने इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं और शायद ये लोग ही मुझे एनकरेज करते हैं ये सब बातें करने के लिए, क्योंकि ये सारी बातें अगर हम सब तक पहुंच जाए तो एक्चुअली रियल माने में हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। थैंक यू सुमित, बस में सेशन सुनने का थैंक यू सो मच,
4: थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक
0: यू मैम,
1: थैंक यू जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सबको फिर से ईद मुबारक, और सब लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।
1: एज ए पार्ट ऑफ द करियर काउंसलिंग में आज के सेशन में हम टीचिंग जॉब से रिलेटेड अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपके स्कूल लेवल पे हैं या कॉलेज लेवल पे हैं, तो आज हम सब के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ टीचिंग स्किल्स क्या क्या होती हैं, क्या चीजें आपके अंदर ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको एक यू कैन बिकम ए गुड टीचर, तो ये सारे इश्यूज पे आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी तक पिछले सेशंस में हमने सिविल सर्विसेज के बारे में, फिर हमने गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में किया था डिस्कस, तो आज का जो सारा सेशन है वो टीचिंग जॉब से रिलेटेड है। फिर लास्ट में आपकी जो क्वेरीज होंगी डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में, वो भी हम इस सेशन में सारी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है, देखिए टीचिंग जो है ना वो एक नोबल प्रोफेशन, और ऐसा नहीं कि मतलब आप को अगर अच्छा टीचर बनना है तो अच्छा टीचर आप किसी भी स्टैंडर्ड की क्लास के लिए बन सकते हैं। चाहिए क्या कि आपके अंदर हो, जोश हो पढ़ाने का, यू मस्ट हैव पैशन फॉर द टीचिंग, टैलेंट, नॉलेज धीरे धीरे इंप्रूव की जा सकती है। ठीक है, तो ये अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और विद द पैसेज ऑफ की आप एक बहुत अच्छे टीचर बन जाते हैं। तो हमारा जो मेजर पॉइंट है कि जब हम टीचिंग के बारे में बात करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। सीटेट है, एसटेट है, रीट है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट है, जेआरएफ है, डीएसएसबी, केवीएस, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, आर्मी स्कूल्स, तो मतलब इस तरह की सारी टर्म्स जो है वो जब भी कोई पर्सन एक गवर्नमेंट टीचिंग के टुवार्ड्स प्लानिंग करता है तो इस सारी चीजों के बारे में उसे पता होना चाहिए। उससे क्या रहता है कि अगर आपको स्टार्टिंग से ही क्लियर है कि हमें टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो आप उसी तरीके से अपने करियर को शेप अप कर सकते हैं, क्योंकि टीचिंग में जाने के लिए अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो उसके लिए कुछ असेंशियल क्वालिफिकेशंस भी है, कुछ आपको टेस्ट भी क्वालिफाई करने रहते हैं, तो उसके लिए इट्स बेटर कि आप यू कैन प्लान अर्ली, जितना जल्दी आप प्लान करेंगे उतना ही फिर आप एक अपने राइट ट्रैक पे जा सकते हैं। तो आज के सेशन में आपको मैं इन सब टर्म्स के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, किस एग्जाम में क्या क्या आपसे पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो ये सारा आपको मैं आज के सेशन में बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज क्या है बेटे कि हाँ अभी मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो जस्ट एक मैंने एक वो दिया है, परव्यू दिया है, अभी हम आगे एक एक फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जब आप टीचर की बात करते हैं तो ये कुछ जनरल सी वैकेंसीज होती है हमारे पास में, या तो आप प्राइवेट टीचर बन सकते हैं, उसके लिए तो आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशंस हो आपकी, आपने बीएड किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, तो आप एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको गवर्नमेंट में टीचर बनना है तो उसमें ये अलग अलग आपके लेवल्स होते हैं। सबसे जो एलिमेंट्री लेवल होता है वो प्राइमरी लेवल होता है, प्राइमरी टीचर जिसे हम कहते हैं, फिर आपके 9 से 12 स्टैंडर्ड तक के टीचर होते हैं। ठीक है, कॉलेज कैडर में भी टीचर रहते हैं, फिर आपके डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर और ये सारी वैकेंसीज आती है, तो ये एक स्किल होता है। तो मतलब स्टार्टिंग से प्राइमरी टीचर से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक का, और इसमें एंट्री के लिए अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं। तो आज अब हम समझेंगे कि करके कि सबसे एलिमेंट्री पर क्या क्वालिफिकेशन होती है और कैसे आप टीचर बनते हैं। तो सबसे पहले बात मैं करूंगा यहाँ पर सी टेट और एस टेट के बारे में, जो स्कूल लेवल टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स हैं हमारे, जो सीटेट होता है इसमें आपके क्लास वन से लेकर एट क्लास तक के टीचर आप बनते हैं, और उसके बाद में जो पीजीटी की वैकेंसीज होती है वो स्टेट वाइज आती है। तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये क्लियर हो कि प्राइमरी टीचर होता है फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक के जो क्लासेज है उनको जो टीचर टीच करता है उसे हम प्राइमरी स्कूल टीचर भी कहते हैं, पीआरटी भी कह देते हैं, एलिमेंट्री टीचर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में होता है सिक्स क्लास से लेकर एट क्लास तक, तो सिक्स क्लास से लेकर एट क्लास तक जो टीचर होते हैं वो टीजीटी टीचर उन्हें बोला जाता है, और ऐसे ही जो नाइन से लेकर ट्वेल्व तक होते हैं उन्हें पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कह देते हैं। तो नाइन से ट्वेल्व तक आपके पीजीटी टीचर्स कहा जाता है, सिक्स टू एट में टीजीटी, और क्लास फर्स्ट से लेकर फिफ्थ क्लास तक प्राइमरी टीचर होते हैं। अब इनके लिए अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले हम यहाँ पे आज अभी हम डिस्कस करेंगे सी टेट के बारे में। क्लास वन से लेकर क्लास एट तक अगर आपको टीचर बनना है, मतलब प्राइमरी टीचर बनना है या टीजीटी टीचर अगर आपने बनना है, तो उसके लिए आपके लिए सी टेट क्वालिफाई करना मस्ट है। मतलब दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में, कहीं भी जहां भी वैकेंसीज निकलती है, या आपकी केवीएस में निकलती है केंद्रीय विद्यालय के अंदर, या आर्मी स्कूल्स के अंदर, जवाहर नवोदय के अंदर, जहां भी वैकेंसीज निकलती है, तो सीटेट आपके लिए एक असेंशियल क्वालिफिकेशन होती है। अब हम सबसे पहले ये समझें कि सीटेट की फुल फॉर्म क्या है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और सीटेट जो है वो साल में दो बार कंडक्ट होता है। अभी इस साल कोविड 19 के कारण अभी एग्जाम अभी था सितंबर के मंथ में, तो उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। बट जनरली सी टेट का जो एग्जामिनेशन है साल में दो बार आपका होता है, ठीक है, और क्लास वन से लेकर क्लास एट तक के लिए, तो मतलब प्राइमरी टीचर के लिए, उसके साथ साथ टीजीटी टीचर के लिए, दोनों के लिए सी टेट का एग्जाम होता है। इसमें दो पेपर आपके होते हैं, फर्स्ट इज पेपर वन, सेकेंड इज पेपर टू। पेपर वन जो आपका होता है वो होता है क्लास वन से फाइव के लिए, और पेपर टू होता है सिक्स टू एट के लिए। इसका मतलब अगर आप क्लास वन से लेकर क्लास एट तक कोई भी क्लास के लिए टीच करना चाहते हैं तो आपको दोनों पेपर क्वालिफाई करने होते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे पेपर वन और पेपर ऑलमोस्ट मैंने अनम्यूट कर दिया है। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे क्या है, पेपर वन और पेपर टू अपीयर करते हैं। दोनों की क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। जैसे आपको क्या होना चाहिए, ट्वेल्थ में अगर आपको प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है तो ट्वेल्थ में 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, या आपके पास में कैंडिडेट शुड क्लियर ग्रेजुएशन विद 45% और ट्वेल्थ विद 50%। सी टेट के लिए जैसे एक तो जो आपका एलिमेंट्री टीचर्स के लिए है तो ट्वेल्थ में 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। जेबीटी या आपने एनटीटी का कोई भी ट्रेनिंग किया हुआ है वो आपके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या एग्जामिनेशन होता है, जैसे पेपर वन जो है, पेपर वन मतलब एलिमेंट्री क्लासेस के लिए क्लास वन से लेकर क्लास फाइव तक के लिए, तो इसमें आपका ये 150 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, लैंग्वेज वन एंड टू, ये दो लैंग्वेजेस में आपको देना है, मतलब टू लैंग्वेजेस आपकी होती है, जनरली हम इंग्लिश और हिंदी लेते हैं, इसके साथ साथ आपको मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज, तो ये मतलब फाइव सब्जेक्ट्स आपने प्रिपेयर करने होते हैं। 30-30 मार्क्स के फाइव सब्जेक्ट आते हैं। 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है जो पेपर वन होता है, जिसके थ्रू अगर आप पेपर वन क्वालिफाई करते हैं तो एलिमेंट्री टीचर, जिसको हम क्लास वन से क्लास फाइव तक की जो टीचिंग है वो आप हर गवर्नमेंट जॉब में एंटाइटल हो जाते हैं। आप देखते हैं कई बार दिल्ली में काफी वैकेंसीज आती है, जब भी आती है, या आजकल तो अगर एज ए गेस्ट टीचर भी लगाना है वहां भी आपको सी टेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो फाइल करने के लिए आपको पहले पेपर वन जो देना है वो आपका ये रहता है 1-5 के लिए, और सिमिलरली पेपर टू होता है, पेपर टू स्कीम है, उसमें क्या है कि बाकी सब चीजें सेम है, जैसे आपके फर्स्ट सब्जेक्ट आपका सेम है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज भी आपको टू लैंग्वेजेस आपको लेनी होती है, इंग्लिश और हिंदी, उसके साथ साथ फिर आपको या तो मैथमेटिक्स और साइंस का कॉम्बिनेशन होता है या आपका सोशल स्टडीज और सोशल साइंस का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब आप जैसे मैथ्स के टीचर रहेंगे या साइंस के टीचर रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको कॉम्बिनेशन ऑप्ट करना रहता है, और 60 मार्क्स का आपका पेपर रहता है वो, तो टोटल 150 मार्क्स का पेपर हो जाता है। तो एक तरह से अगर आपको टीचिंग में जाना है तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि सीटेट आपने क्वालिफाई करना है। और अब मैं आपको बताऊं कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वैसे तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो इतने डेप्थ नहीं होते, मतलब जैसे आपकी लैंग्वेज है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज है, या इसके साथ साथ आप जो मैथमेटिक्स साइंस या एसएस पढ़ते हैं तो वो 8th स्टैंडर्ड तक का आपको क्लियर होना चाहिए। और उसमें भी बेटर यही है कि आप एनसीईआरटी बुक्स को अपना फॉलो करिए, और एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। तो अगर आप टीचिंग में जाना चाह रहे हैं तो फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक का एनसीईआरटी, आपने मैथमेटिक्स का, साइंस का और एसएस का, आप उसको स्टडी करिए। उसके साथ साथ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए आप बीएड के लेवल में चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक्स आती हैं, तो कोई एक अच्छी सी बुक आप परचेज कर सकते हैं। या मार्केट में भी एक नंबर ऑफ बुक्स आर अवेलेबल जिसमें अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, पेडागोजी की, तो आप उन बुक्स को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मार्केट में अवेलेबल रहते हैं सीटेट के, क्योंकि हर साल में दो बार होता है और पेपर पेंसिल बेस्ड होता है तो उसके पेपर्स भी अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आप 4-5 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेंगे, एक वहां से आपको एक क्लियर आइडिया हो जाता है किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपका सीटेट के बारे में है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है सीटेट के अंदर। हाँ, आप चाइल्ड देखिए उसमें क्या है कि अरिहंत पब्लिकेशन बुक आती है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, ठीक है, तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपका प्रतियोगिता किरण पब्लिकेशन की भी बुक आती है, या बीएड में चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की बुक्स होती है। अगर आप मतलब अगर आपने जेबीटी किया है, बीएड आपने किया है, तो बीएड में चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक्स होती है, तो आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जनरली सीटेट में देखा गया है कि बहुत ही इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये भी अच्छी बुक है, ये जो ध्रोवर की बुक है, प्रतियोगिता ध्रोवर है, ये एक तरह का पब्लिकेशन है, तो इनकी भी अच्छी बुक्स है, ठीक है। बट उसमें वही सेम चीज है जैसे आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया कि पहले एक स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो करिए, एक बुक को जब आप देखते हैं उसके बाद फिर आप जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चन है, और जो बुक आप पर्टिकुलर फॉलो कर रहे हैं क्या उस बुक में उस लेवल के क्वेश्चंस कवर्ड है या नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना होता है। मैं आपको बीएड की जो बुक्स आती है उसमें नेम ऑथर आपको मैं कंफर्म करके एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होती है सीटेट के एग्जाम में कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता आपका, तो आप सारा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपना सीटेट का प्रिपरेशन करिए। हाँ, ये एक चीज मैं फिर ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर दोबारा से कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, क्योंकि साल में दो बार होता है और सारे पेपर्स अवेलेबल हैं, तो आप अगर 5-7 पेपर्स उनको अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे, तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स है वो सारे स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब उसमें कोई चेंज होने का नहीं है, कोई आपका जो करंट का क्वेश्चन तो आता नहीं उसमें, तो सारे हैं जो आपके फिक्स ही हैं। तो पिछले कुछ सालों के पेपर जब आप चेक करते हैं तो उससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है, और फिर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये एक पहला स्टेप है आपके लिए, अगर आपको प्राइमरी या टीजीटी टीचर में जाना है तो आपको सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना। आजकल तो प्राइवेट स्कूल्स में भी सीटेट के एग्जाम की मतलब दे ऑल्सो आस्क फॉर क्वालिफिकेशन इन सीटेट, तो मतलब ये आपको पहला स्टेप आता है। अभी आता हूं बेटे एनटीटी के बारे में भी आता हूं। अब इसके बाद सेकंड होता है हमारा जेबीटी, मतलब अब मैं आपको बताऊंगा कुछ हमारे जो अलग अलग चीजें हैं, जैसे जेबीटी कह लीजिए या आपका एनटीटी का प्रोग्राम होता है 2 ईयर का, या इसके अलावा
2: आपका डीएलईडी होता है, ठीक है, जो बेसिकली डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, ठीक है। तो देखिए क्या रहता है कि ट्वेल्थ के बाद आप जेबीटी कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री जो टीचर है, जो प्राइमरी टीचर है, प्राइमरी टीचर के लिए या तो आपने जेबीटी किया हो, जिसको हम जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कहते हैं, जो जूनियर बेसिक ट्रेनिंग है ये ट्वेल्थ के बाद होती है, ये एक तरह का डिप्लोमा होता है 2 इयर्स का, जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। इसमें स्टेट वाइज कॉलेजेस है, बाकी फॉर्म्स निकलते हैं जब आप ट्वेल्थ के एग्जाम देते हैं उसके बाद में। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ट्वेल्थ में 45% की है, राइट। ये एक तरह से जो डीएलडी होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के इक्वल होता है, ये प्राइमरी टीचर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस है। ऐसी एंटिटी का आपका होता है, उसमें भी आपको 2 ईयर का डिप्लोमा रहता है एंटिटी का, बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या रहती है कि आपको जहां से भी आप ये जेबीटी करें, चाहे आप अपना डीएलडी करें, चाहे आप एंटिटी करें, वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। कई बार मार्केट में कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं होते, तो वो फिर बाद में आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो आज से 4-5 साल पहले, व्हाट हैपेंड, आज से 4-5 साल पहले जम्मू से जेबीटी करने का ट्रेंड हुआ था, ठीक है। तो जम्मू से जेबीटी करने का ट्रेंड हुआ तो बहुत लोगों ने जम्मू से जेबीटी किया, ठीक है, और बाद में फिर पता चला कि वो तो आपका वैलिड नहीं है। तो ये इस तरह से कई बार प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि जिसमें हम ऐसा अपना कोर्स डिप्लोमा कर लेते हैं और जो बाद में वैलिड नहीं होता, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है इसमें कि आप जहां से भी करिए वो आपका वैलिड होना चाहिए। तो जेबीटी है, चाहे आपका एंटिटी है, ये आपको एक टाइप से मतलब एक टाइप से एलिमेंट्री जो टीचर्स होते हैं, जो हमारे प्राइमरी टीचर्स होते हैं, उनके लिए ये मस्ट होती है ये क्वालिफिकेशंस। आप अब इसमें स्टैंडर्ड मतलब क्या पैटर्न क्या है, पैटर्न कैसे है, देखिए कैसे वैकेंसीज आती हैं और कैसे आप उनमें अप्लाई करते हैं। जैसे अलग अलग स्टेट का अपना पैटर्न है, जैसे मैं पहले हरियाणा की आपको बताऊं, हरियाणा में क्या है कि एच टेट का फॉर्म निकाला जाता है। वैसे तो जो सी टेट है वो पूरे इंडिया में वैलिड है, ठीक है, बट हरियाणा में क्या है कि हरियाणा में एज ए टीचर लगाने के लिए एच टेट का फॉर्म निकाला जाता है, जो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। तो जो टीईटी का मतलब यही होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अब हरियाणा में क्या है कि 3 स्टेजेस में वैकेंसीज आती है, मतलब उसमें आपके प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज आती है, आपके टीजीटी की वैकेंसी आती है जिसको हम ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, और ऐसे ही आपकी पीजीटी की वैकेंसी आती है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राइमरी टीचर जो होते हैं वो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के लिए हैं, जो टीजीटी टीचर होते हैं वो क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं 8 से अबो। अब इनके लिए जो क्वालिफिकेशंस भी अलग अलग है, जैसे जो पीजीटी आपकी जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आती है उसमें आपकी 12th होनी चाहिए, और 12th के साथ साथ आपने जेबीटी किया हो, एंटिटी का कोर्स किया हो, या आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो, ठीक है, तो उसमें आप प्राइमरी टीचर के लिए एंटाइटल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए जाना है, जिसको हम टीजीटी कहते हैं, तो टीजीटी के लिए आपको बैचलर डिग्री के साथ साथ बीएड करनी है। अब देखिए बीएड क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के चलिएगा, अगर आपको प्राइमरी टीचर से ऊपर किसी भी पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, चाहे वो टीजीटी है और चाहे वो पीजीटी है, तो दोनों के लिए बीएड होना आपके लिए मस्ट है, ठीक है। और ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में क्या होता है कि मास्टर डिग्री के साथ साथ बीएड होना चाहिए। तो देखिए क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड क्या है कि प्राइमरी टीचर के लिए तो 12th इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन, साथ में आपने जेबीटी एनटीटी कुछ भी किया हो। अगर आपने टीजीटी टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन के बाद आपको बीएड करनी है, और उसके बाद अगर आपने पीजीटी के लिए जाना है तो मास्टर डिग्री भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये एचटेट की एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो इसलिए जनरली बच्चों को टीचिंग के लिए जो इंटरेस्टेड होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि बेटे आप पहले आप अपनी ग्रेजुएशन करिए सबसे पहले, तो क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन करते हैं और ग्रेजुएशन होने के बाद आप बीएड करो, ठीक है। नहीं इसमें केवल आर्ट से या साइंस नहीं, इसमें आप बेटे किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं। जैसे क्या होता है कि जो आपका प्राइमरी टीचर है वो तो किसी भी स्ट्रीम का हो सकता है आपके पास, चाहे मेडिकल है चाहे नॉन मेडिकल है, चाहे आपके पास में कॉमर्स है चाहे आर्ट्स है, आपने उसके बाद में जेबीटी किया हुआ है, ठीक है। अगर आप टीजीटी के लिए जाते हैं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, वो भी आपकी किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है। आपने बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, उसके बाद आपको बीएड करना होता है। बट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जाते हैं फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे मान लीजिए आपको मैथमेटिक्स का टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन में भी एज ए मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, इसके साथ साथ मास्टर्स में भी आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, और आपका जो एस्टेट क्वालिफाइड है वो भी मैथमेटिक्स में ही क्वालिफाइड होना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में थोड़ा सा क्वालिफिकेशन ज्यादा रहती है, अदरवाइज हम जो टीजीटी है या जो आपके प्राइमरी टीचर्स है उसमें कॉमन क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अब इन सब का अलग अलग एग्जाम है, तो जनरली क्या होता है कि अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की क्वालिफिकेशन पूरी है तो आप बाकी सबके लिए भी एग्जाम अपियर कर सकते हैं। हरियाणा में जो एस्टेट 2020 की जो एज आई है 18 से लेकर 38 ईयर्स तक है, बट कुछ कैटेगरीज में एज का रिलैक्सेशन भी है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या पैटर्न रहता है, एक बार मैं एस्टेट का आपको पैटर्न बताऊं। एस्टेट का तीनों लेवल के जो पेपर होते हैं, पेपर वन है चाहे पेपर टू है चाहे पेपर थ्री है, 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस उसमें आते हैं, 2.5 आवर के अंदर आपने करने होते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और तीन अलग अलग पेपर हैं, अगर आपको प्राइमरी का देना है तो आप पेपर वन देंगे, ऐसे ही अगर आपको टीजीटी के लिए देना है तो आप पेपर टू देंगे, और अगर आपको पीजीटी के लिए देना है तो आप पेपर थ्री देंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ना ही सेक्शनल कट ऑफ होता है। जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो बिल्कुल सेम, जो सब्जेक्ट का पैटर्न है कि हरियाणा में अब पीछे इन्होंने सब्जेक्ट्स में चेंज किया था, जैसे क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। जनरली जो सीटेट में है उसमें ये चीज नहीं आती। आपने देखा होगा अभी मैंने पीछे आपको सीटेट का पैटर्न बताया जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी थी, वहां दो लैंग्वेजेस थी, ठीक है। अब हरियाणा में क्या पैटर्न है, आपका मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग आएगी और जनरल अवेयरनेस, तो 30 क्वेश्चंस आएंगे। ये एक तरह के बहुत ही जनरल से क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग में सभी टॉपिक से आपके जो कवर हो जाते हैं, जिसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, ये सारे टॉपिक आते हैं, एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। ऐसे जो मैथमेटिक्स होता है वो भी बहुत ही स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, जैसे एक जनरल आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें अब बेसिक अर्थमेटिक है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन है, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के भी होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स का, फिर हिंदी इंग्लिश के 15 क्वेश्चन है, फिर आपका मैथमेटिक्स है 30 मार्क्स का, और एनवायरमेंटल स्टडी जिसको हम ईवीएस कह देते हैं। तो ये हमारा पेपर वन है एलिमेंट्री टीचर के लिए हरियाणा के अंदर। इसके साथ साथ आप अगर टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको पेपर टू अपियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेपर टू किस टाइप का है, क्या पैटर्न है पेपर टू के अंदर, तो इसमें आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स के हैं, फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी इंग्लिश यहाँ तक कॉमन है, फिर आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एसएस, साइंस या कुछ भी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया हुआ है, क्योंकि उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली फिर आप वैकेंसीज जो निकलती हैं उसमें आप अप्लाई करते हैं। और अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जाना है तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए फिर आपको जिस सब्जेक्ट में आपने जैसे आपको साइंस में जाना है या अगर आपको मैथमेटिक्स में जाना है तो उसी सब्जेक्ट का पेपर आप उसमें अपियर करते हैं, ठीक है। तो एस्टेट का जो पेपर जनरली होता है, आपने अगर एक बार क्वालिफाई कर लिया तो 5 ईयर तक वैलिड होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हर साल आपको देना है, ऐसे ही आपका सीटेट का पेपर है कि आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो कुछ सालों तक वो पेपर आपका चलेगा, ठीक है। तो ये एक तरह की मिनिमम क्वालिफिकेशंस है। अब हरियाणा में वैकेंसीज का पैटर्न कैसे होता है कि पहले तो आपका एस्टेट का पेपर होता है, एस्टेट का पेपर आप क्वालिफाई करेंगे, फिर अलग अलग वैकेंसीज आएंगी, फिर वो अपना स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर उसमें से जो बच्चे निकलते हैं उनकी फिर फाइनल जाके ज्वाइनिंग होती है। हाँ ये हरियाणा में जो 5 साल का ना बेटे एस्टेट जो है, ये अभी शायद कुछ चेंज करने की इसमें बात चल रही है 7 साल के लिए, क्योंकि पीछे जो एस्टेट सीटेट एस्टेट हुआ था उसके बाद में फिर वो तब उसके बाद की वैकेंसी नहीं आई बहुत सालों से, तो ये कुछ उसमें चल रहा है अभी इसको 7 साल के लिए कर दें, तो ये पीछे दैट वाज इनटू द न्यूज ऑल्सो। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे राजस्थान है वहां पे रीट का पेपर होता है, जैसे हरियाणा में आपका एस्टेट का पेपर है, ऐसे ही राजस्थान के अंदर रीट का पेपर होता है, तो वो भी बेसिकली इसीलिए है। जैसे आपकी वैकेंसी अभी जैसे पीछे इट वॉज इन टू द न्यूज कि रीट 2020 में अराउंड, हाँ यूपी का भी होता है बेटे, यूपी का टेट होता है, तो उसमें हर स्टेट अपना पेपर कंडक्ट कराता है, बट मोर और लेस जो इनके सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। सभी स्टेट्स में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एज ए सब्जेक्ट आता है, सभी स्टेट्स में आपका लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज है, उसके साथ साथ फिर आपका सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स एज ए ऑप्शनल, जैसे भी आपने जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। तो अभी जैसे रिसेंट में राजस्थान में रीट 2020 का, हाँ मतलब अप्लाई आप कर सकते हो बेटे, क्या होता है ना देखिए, क्या जैसे हरियाणा में भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर कोई यूपी का बच्चा उसे एस्टेट देना तो वो यहाँ भी अपियर कर सकता है, क्योंकि जो टीचिंग जॉब में कोई ये तो फिक्स नहीं होता कि हरियाणा का ही होना चाहिए, आप कहीं भी किसी भी स्टेट के टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ये एक तरह के उनके टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब वैकेंसी से पहले आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले ये टेस्ट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। हाँ, इसमें बेटे जो आपका जीके का पैटर्न होता है बस वही थोड़ा डिफरेंस है कि उसमें जैसे हरियाणा में क्या है कि आपका अभी पहले उसमें जीके का सेक्शन नहीं आया करता था, तो लास्ट ईयर से उसमें जैसे 30 क्वेश्चन में 10 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स के, 10 मार्क्स रीजनिंग के, और 10 मार्क्स जो है वो जनरल अवेयरनेस के उसमें ऐड कर दिए हैं, तो वो जो 10 मार्क्स जनरल अवेयरनेस के हैं उसमें फिर वो हरियाणा जीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे ही और स्टेट्स में भी ऐसे ही होता है कि जैसे आप हम रीट की बात करें तो रीट का जो एग्जाम पैटर्न है वो इस तरह से है, जैसे उसमें भी रीट में भी 2 लेवल के पेपर्स रहते हैं, लेवल 1 है और लेवल 2 है, तो लेवल 1 जो है वो आपका एलिमेंट्री टीचर के लिए है, तो उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी लैंग्वेज मैथमेटिक्स एनवायरमेंटल स्टडीज रहता है। नहीं एक्चुअली देखिए क्या है बेटे कि प्राइमली ये जो टीचिंग के टेस्ट है ना, देखो ज्यादातर मैं आपको वैसे पर्सनल ओपिनियन दूं, इसमें हरियाणा में यूपी में राजस्थान में टीचर्स की जो सैलरीज है, ठीक है, या अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट टीचर्स की जो वैकेंसीज है वो कंपैरेटिवली अदर स्टेट के मुकाबले में ज्यादा आती है। महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट टीचर्स की वैकेंसी काफी कम आती है क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज्यादा टीचर लगाए जाते हैं, तो वो अपना इस तरह का उनका भी एग्जाम होता है, वैसे होता है मतलब वो भी अपना टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं, या कई बार क्या करते हैं कि जो सीटेट का एग्जाम है उसी के मार्क्स के बेसिस पे, मतलब अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है तो उसके बेसिस पे वो करते हैं, पर एज ए जनरल नॉर्थ इंडिया में टीचर्स की सैलरी ज्यादा है एज कंपेयर टू द महाराष्ट्र और वेन यू गो इन टू द साउथ, तभी हम देखते हैं कि नॉर्थ में बहुत बच्चे ऐसे हैं बेटे जो एक टाइप से टीचिंग के लिए स्पेसिफिकली प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो ये रीट का ये पेपर 1 है, ऐसे ही आपका पेपर 2 होता है, हाँ ऐसे ही आपका पेपर 2 होता है जिसमें आपका अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे हरियाणा में है, चाहे आपका राजस्थान में है, चाहे यूपी में है, कि ये रेगुलर अफेयर है, हर साल 2 साल के बाद में कुछ ना कुछ वैकेंसी आती है, कोई ना कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका होता रहता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चे यहाँ पे टीचिंग जॉब्स के लिए काफी बच्चे जाते हैं। तो स्कूल लेवल में टीचर बनने के लिए आप 2-3 चीजें बेटे आप अपना ध्यान रख लीजिए, ये मैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा ऐड कर दूं। एक तो आप बेटे ये लेवल्स इनको समझो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अगर आपको प्राइमरी टीचर्स में जाना है तो ट्वेल्थ के बाद आप कुछ ना कुछ अपना जेबीटी करिए, चाहे आप बेटे एनटीटी का कोर्स करिए, ठीक है, चाहे आप डीएलडी करिए, ठीक है, मतलब एक तरह से कुछ ना कुछ आपने, चाहे आप डीएड करो। रीट में क्या है कि नहीं, इसमें रीट में यहां पर आपका लेवल थ्री की वैकेंसी नहीं है, जैसे लेवल टू में तो वो साइंस और एसएसटी में च्वाइस नहीं देके कुछ क्वेश्चन साइंस के होते हैं, मतलब उसमें एक तरह से जो कॉम्बिनेशन मेक किया हुआ है साइंस और मैथ का कॉम्बिनेशन हो गया, तो कुछ क्वेश्चन साइंस के हैं, कुछ क्वेश्चन मैथ के हैं, एसएसटी का भी कॉम्बिनेशन ऐड कर दिया उसमें। पर मैं एक जनरल अपना वो बताऊं आपको बेटे कि अगर आप टीचिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी लेवल के लिए, तो टीजीटी लेवल में तो आप ये मान के चलो बेटे आपको मैथमेटिक्स, साइंस और एसएसटी तीनों सब्जेक्ट्स में ही आप अपनी कमांड लेके चलिए, क्योंकि पीजीटी में फिर भी कुछ स्पेसिफिक आपका वो हो जाता है कि आप मैथ्स के टीचर हैं या साइंस के आप टीचर हैं, पर जनरली टीजीटी में ये देखा गया है कि सेम टीचर जो है वही मैथ्स भी ले रहा है, साइंस भी ले रहा है, एसएसटी भी ले रहा है। तो आप थोड़ा सा मतलब अगर स्टार्टिंग से अपना परव्यू ऐसा लेके चलिए कि तीनों, क्योंकि देखिए आपको ओनली एट्थ क्लास तक का मैथ्स करना है, एट्थ क्लास तक की आपको साइंस करनी है, एट्थ क्लास तक का आपको एसएसटी पढ़ना है, तो वो तीनों सब्जेक्ट्स को अगर आप कमांड लेके चलेंगे तो आगे फिर आपको हर तरह का एग्जाम क्वालिफाई करना इजी हो जाता है। तो मेन थिंग आपने अब ये ध्यान रखना है बेटे कि अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए जा रहे हैं तो ट्वेल्थ करने के बाद से ही अपना जेबीटी कर लीजिए, एनटीटी कर लीजिए, कोई भी एक आधा कोर्स करिए, डिप्लोमा करिए टीचिंग के अंदर, और सिर्फ प्राइमरी के लिए एंटाइटल है और सीटेट का पेपर क्वालिफाई करिए। सिमिलरली अगर आप अपना लेवल इंप्रूव करना चाहते हैं तो ट्वेल्थ के बाद आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद फिर आप बीएड करिए। अब देखिए दिक्कत क्या है, आजकल की बीएड भी आपकी टू इयर्स की है, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद फिर आपको दो साल बीएड में स्पेंड करने पड़ते हैं, ठीक है, तो वो पांच साल ट्वेल्थ के बाद कम से कम आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बीएड में कुछ चेंज किया गया है, अब देखो जब अप्लाई होगा तभी वो चीजें क्लियर हो पाएंगी, बट अभी जो एट प्रेजेंट जो पैटर्न यही है कि आपको ट्वेल्थ के बाद कम से कम फाइव इयर्स लगाने पड़ेंगे, तीन साल का ग्रेजुएशन और टू ईयर का बीएड, और वहीं अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो फिर आपको मास्टर डिग्री भी करनी है, तो कम से कम सेवन ईयर ट्वेल्थ के बाद आपको स्टडी करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप अपना टेस्ट क्वालिफाई करिए जो अलग अलग होते हैं और फिर आप कहीं जाके अप्लाई कर पाएंगे। रीट की बेटे आपकी राजस्थान में लोकल लेवल की काफी किताबें आती हैं, मतलब जैसे आप राजस्थान में किसी भी जहां भी आप स्टे करते हैं कोई ऐसे कुछ स्पेसिफिक तो एक तरह से जो पब्लिकेशन नहीं है, बट कई सारी जो बुक्स अवेलेबल है उपकार पब्लिकेशन की भी आती है रीट की, या आपके लोकल में भी कई इंस्टीट्यूट भी है जो काफी टॉप इंस्टीट्यूट है जिनकी अपने स्टडी मटेरियल भी आते हैं, तो ऐसे तो क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग नहीं करता तो मुझे वहां की बुक्स के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। अब जैसे हरियाणा में है तो हरियाणा में तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक चलती है, ठीक है, या यहाँ पर विद्यापीठ टाइम्स है और भी कई सारे लोकल पब्लिकेशन है जिनकी काफी बुक्स आती है। तो अब सेकेंड पॉइंट क्या बेटे की ये जो वैकेंसीज कहाँ कहाँ निकलती है, टीचर की वैकेंसीज कहाँ कहाँ आती है, एक तो आपकी स्टेट वाइज वैकेंसीज आती है, ठीक है, जैसे नहीं महाराष्ट्र में इस तरह का एग्जाम नहीं है बेटे, महाराष्ट्र में क्या है कि वो एक तो आपका जो सीटेट का एग्जाम एक तो लेते हैं, मतलब प्राइमरी टीचर के लिए या आपका जो टीजीटी के लिए, ठीक है, हम मेडिकल तो वो तो बेटे बाद की स्टेज है ना, वो तो क्या होता है कि वो तो जैसे पहले आपने ये टेस्ट क्वालिफाई किया जो भी आपने एसटेट सीटेट या रीट जो भी आपने दिया, उसके बाद फिर वैकेंसीज आती है, स्टेट वाइज वैकेंसीज होती है, जैसे हरियाणा अपनी वैकेंसी अलग निकालता है, यूपी की वैकेंसीज आती है, राजस्थान में वैकेंसीज आती है, दिल्ली में डीएसएसबी की वैकेंसीज आती है, ठीक है, तो उसमें भी कई बार काफी टीचर्स की जॉब्स आती है। आपका केवीएस है, केंद्रीय विद्यालय है, तो केवीएस में सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए आपका, तो केवीएस की भी काफी वैकेंसीज आती है, हर साल एक तरह का फिक्स पैटर्न है, ठीक है, तो ऐसी आर्मी स्कूल्स है इंडिया में, नंबर ऑफ आर्मी स्कूल्स आर देयर, आर्मी स्कूल्स भी अपनी वैकेंसीज निकालते हैं टीचर की, इसके साथ साथ जवाहर नवोदय विद्यालय है, इनकी भी वैकेंसीज आती है, तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी सीटेट होती है। तो अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है और उसके बाद आप वहाँ फॉर्म फिलअप करते हैं, फिर फॉर्म फिलअप करने के बाद वो अपना टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। अब टेस्ट कंडक्ट होता है, उसमें फिर जैसे जैसे आपका स्कोर आता है, फिर उसके बाद में इंटरव्यू होता है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, तो ये सारी चीजें इस तरह का रहता है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि देखो इसमें क्या है कि मैक्सिमम तो आपकी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है, बट कई बार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में भी आपको सीटेड मांगते हैं। एक्चुअली इंडिया में क्या पैटर्न हो गया कि आपको अगर टीचर बनना है, अगर चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, चाहे आप एक्चुअल गवर्नमेंट जॉब पे है, तो उसमें सीटेड तो आपसे मांगेंगे मांगेंगे। तो मतलब आपके लिए ये पहली चीज है कि अगर आपको टीचिंग में जाना है तो सीटेट मस्ट बी क्वालिफाइड, क्योंकि तभी आप फिर कहीं एंटाइटल हो पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सीटेट का पेपर तो आपका पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो स्कूल लेवल में इस तरह से अलग अलग एरियाज में वैकेंसीज आपकी आती हैं, ठीक है। तो बाकी फिर भी ये है कि देखिए अगर आप मेहनती हैं, आप पढ़ने वाले हैं, टाइम तो लगता है, क्योंकि अभी पिछले जैसे मैं आपको बताऊं आज से 3-4 साल पहले हरियाणा में हजारों में वैकेंसी आई थी। मतलब हालात ये थी कि जिस पर्सन की क्वालिफिकेशन पूरी है, अगर उसने अपना एमए एमएससी जो भी किया हुआ है और उसने एसटेट का पेपर क्वालिफाइड है, तो वो जॉब पे लग गया था। फिर उसके बाद में वैकेंसी आनी कम हो गई, पिछले 3-4 सालों से वैकेंसी काफी कम है, ठीक है। तो फिर भी क्योंकि जो टीचिंग की वैकेंसीज है, अगर आपकी स्पेयर होती है तो उसके बाद वैकेंसीज निकालनी पड़ती है। चाहे स्टेट, अभी जैसे मैं पढ़ रहा था, आज ही चेक कर रहा था कि राजस्थान में रीट 2020 के अंदर 30,000 की अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज आएंगी। तो 30,000 वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती है। अब 30,000 वैकेंसीज आएंगी, चाहे वो अलग अलग सब्जेक्ट्स की है, तो अगर क्वालिफिकेशन पूरी है, हमने मेहनत कर रखी है, तो उनको कहीं ना कहीं हम अपना वे आउट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसा होता है, जनरली क्या होता है कि देखिए आप अपना अपने क्वालिफिकेशन पूरा किया, अपना आपने स्टार्टिंग में प्राइवेट स्कूल में टीच करना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे एक्सपीरियंस एड ऑन होता जाता है, और जब भी आपकी एक टाइम से गवर्नमेंट सेक्टर में जब वैकेंसीज निकलती है तो आप वहां अप्लाई करते हैं और कहीं ना कहीं आपकी सेटलमेंट हो ही जाती है, जॉब कहीं ना कहीं आपको लग जाता है, ठीक है। तो ये हमारी स्कूल लेवल की टीचिंग जॉब्स होती है, ये सारी टाइप की आपकी वैकेंसी है। हर साल फॉर्म निकलते हैं, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो सीटेट का है वो तो साल में 2 बार एग्जाम होता है, एसटेट भी ऑलमोस्ट साल में 1 बार तो कंडक्ट होता ही है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप रीट की, मतलब अगर आप राजस्थान की बात करें, तो साल 1.5 साल में 1 बार एग्जाम जरूर होता है, यूपी टेट का भी एग्जाम होता है, ठीक है। तो जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है, तो वहां तो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो एक रेगुलर उस पे होते ही है। डीएसएससी की वैकेंसी आती रहती है, मतलब हर साल 2 साल में वैकेंसी आती है। केवीएस की ऑलमोस्ट हर साल वैकेंसी आती है, आर्मी स्कूल्स की है, चाहे जवाहर नवोदय की है, तो ये वैकेंसी तो रेगुलर बेसिस पे आती है। तो अगर हमारी क्वालिफिकेशंस पूरी है, और इनमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि कोई ऐसा एसच वो नहीं कि हम ये कहें कि पेपर आउट हो गया, सिफारिश चल गई, आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है, एक क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, वो क्वालिफाइंग मार्क्स आपने अचीव करना है, और उसके बाद आपका टेट क्वालिफाई हो जाता है, फिर आप वैकेंसीज के अकॉर्डिंगली अप्लाई करते रहते हैं। मार्क्स की वेटेज रहती है, आपके 12th में कितने मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन में कितने हैं। देखिए अगर आप टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हैं, तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारा एजुकेशनल रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, पढ़ने में हम अच्छे हो, तभी आगे हम एक वी कैन बिकम ए गुड टीचर। तो ये तो सारा मैंने आपको स्कूल वही, फिर हम पास में ऐसा नहीं कि हम स्कूल लेवल पे, हम कॉलेज लेवल पे भी जा सकते हैं एज ए टीचर। तो कॉलेज लेवल में जैसे हरियाणा में है या और स्टेट्स में है, तो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज होती है, मतलब जो कॉलेज जो कैडर की वैकेंसीज आती है, जिनको हम असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं। और ऐसे ही जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट है, तो उनमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती है। तो स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल के टीचिंग में एंट्री में थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? आप जैसे मैंने आपको बताया अभी स्कूल लेवल में अगर आपने टीजीटी या पीजीटी में आपने जाना है तो आपको बीएड करना मस्ट है। वही कॉलेज के लिए आपको बीएड करने की नीड नहीं है, आपने सिंपल मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद फिर आपने मास्टर डिग्री कर लिया, मास्टर डिग्री के जब आप फाइनल ईयर में होते हैं मास्टर डिग्री के, तो आपको फिर नेट का पेपर क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है, जो प्राइमरी आपका नेट का एग्जाम होता है। एनटीए कंडक्ट करा रहा है, पहले यूजीसी कराता था, उसके बाद सर कुछ साल सीबीएसई बोर्ड में कंडक्ट कराया, तो नाउ दिस नेट एग्जाम इज कंडक्टेड बाय एनटीए, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, जो नेट का एग्जाम है वो हमारे लिए मस्ट है, ठीक है। उसमें भी दो तरह के आपके नेट होते हैं, एक तो जो नेट के सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, ये तो आपका एनटीए कंडक्ट कराता है, और साइंस से रिलेटेड जिसमें आपका मैथमेटिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, वो सीएसआईआर कंडक्ट कराता है। तो इस तरह से दो आपके नेट के एग्जाम्स होते हैं। तो जिस भी स्ट्रीम के आप है, जिस भी स्ट्रीम में आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है, उसी स्ट्रीम का आपको नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना रहता है। जो नेट में भी आपका एक जेआरएफ होता है जिसको हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं। जैसे आपने मास्टर डिग्री करने के बाद नेट का पेपर दिया, उसी नेट के एग्जाम में जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है, 55% है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और जेआरएफ के लिए 30 इयर्स की एज होती है। जेआरएफ का मतलब क्या है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिलता है अराउंड 25,000 रुपीज पर मंथ का स्टाइफंड आपको मिलता है पीएचडी करने के लिए। तो इसमें क्या रहता है कि उसी नेट एग्जाम में कुछ टॉप के स्टूडेंट लिए जाते हैं, उनको जेआरएफ लगता है, और फिर वो जब स्टडी करते हैं तो उस स्टडी टाइम में उन्हें स्कॉलरशिप्स मिलते हैं। अब नेट का पेपर जो है, एनटीए का जो नेट का पेपर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो पेपर होते हैं इसमें। फर्स्ट पेपर जो है वो आपका कॉमन है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, उसमें जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एबिलिटी या कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जिसको हम एनटीए पेपर वन कहते हैं। और सेकंड होता है एनटीए पेपर टू, वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिस सब्जेक्ट में आपने नेट क्वालिफाई करना है उसी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा। जैसे मैं पैटर्न बताऊं आपको, जो एनटीए का पैटर्न है, जैसे पेपर वन है, पेपर वन में 50 क्वेश्चंस आते हैं। पहले पैटर्न अलग था, पिछले कुछ टाइम से पैटर्न चेंज हुआ है।

0: पेपर कंडक्ट कराते हैं, उसमें जिस सब्जेक्ट की वैकेंसीज आई हैं आपने उसी सब्जेक्ट में अप्लाई किया है, और अगर आप डिपार्टमेंट वाइज वर्क करना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहां भी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है दैट इज द नेट, कि अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो आप वहां पर जॉब के लिए एंटाइटल है, वैकेंसीज निकलती है, इंटरव्यू कंडक्ट होता है, और इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यू कैन बी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है हमारे कॉलेजेस में जाने के लिए कि नेट का पेपर आपको उसी सब्जेक्ट में जरूर क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप टीचर बन सकते हैं, मतलब स्कूल लेवल में थोड़ा ये डिफरेंस है कि वैकेंसी ज्यादा आती है। अगर हम कॉलेज लेवल की बात करें तो कॉलेज लेवल में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है कंपैरेटिवली कम है, बट फिर भी एडवांटेज क्या है कि अगर आप किसी भी लेवल पे एंटर करना चाहो, अगर स्टार्टिंग में सपोज आपने क्वालिफिकेशंस पूरी है बट हमें जॉब नहीं मिलता, बट इंडिया में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस काफी ज्यादा है। आप देखेंगे चाहे आप बेटे किसी भी लेवल पे देखिए, चाहे आपके ग्रेजुएशन के अंदर है, चाहे मास्टर डिग्री के अंदर है, चाहे प्रोफेशनल कोर्सेज में है, चाहे हम स्कूल्स की बात करें, तो काफी ज्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो फिर क्या रहता है कि आप अपनी कहीं ना कहीं जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार आपने अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे आप अप्लाई करते रहिए, और विद द पैसेज ऑफ टाइम कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है, बट अगर क्वालिफिकेशन पूरी है तो। हाँ, अब सपोज आपने बीएड नहीं कर रखा, अगर आपने बीएड नहीं किया हुआ तो फिर दिक्कत है। तो क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट करना सबसे पहला काम है, और एक बार आपकी क्वालिफिकेशंस पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद फिर आप अपना टेस्ट पास करिए। तो आज नहीं कल नहीं परसों, विद द पैसेज ऑफ टाइम जॉब्स लगती है, वैकेंसीज काफी ज्यादा आती है टीचिंग में, काफी वैकेंसीज आती है, तो उसमें जॉब लगने का स्कोप रहता है, ठीक है। तो इस तरह से बेटे ये हमारे सारे एग्जाम्स होते हैं जो टीचिंग से रिलेटेड है, राइट। तो ये बेटे दैट इज फ्रॉम माय साइड। अब आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं किसी भी टाइप से रिलेटेड, तो अब मैं आपकी क्वेरीज का आंसर करूंगा। मैंने अपनी ओर से एक बार आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया कि किस किस टाइप के एग्जाम्स है, किस किस टाइप की जॉब्स है, क्या रहता है इसके अंदर। हाँ, सैलरीज काफी अच्छी है, मतलब अगर हम आज के टाइम में गवर्नमेंट टीचर्स की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 40,000 प्लस स्टार्टिंग सैलरी है, चाहे आप एलिमेंट्री टीचर भी हैं, और उसके बाद में एवरी ईयर इंक्रीमेंट्स आर देयर, तो आपकी सैलरी मतलब 15 से 20 साल अगर आप गवर्नमेंट जॉब में एज ए टीचर रहते हैं तो 80,000 प्लस आपकी सैलरी कम से कम रहती है, और असिस्टेंट प्रोफेसर में तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 60-70,000 प्लस रहती है। तो सैलरीज अच्छी है, वर्कलोड कम है इंडिया में, ज्यादा पढ़ाने का इतना बड़ा प्रेशर नहीं होता है, बस एक बार एंटर करना इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए, उसके लिए आपको रेगुलर एफर्ट करना रहता है। तो अब आप कुछ भी पूछना चाहें तो हम आंसर करेंगे एक एक करके।
1: दिनेश जी, एक मेरे पास क्वेश्चन है, ये सभी के लिए शायद कॉमन होगा, ये शायद इन लोग के पास भी कुछ आइडिया हो जाए। ये सीटीटी के बारे में जो आपने बताया है, जो ऑलरेडी आप प्राइमरी टीचर के लिए जो आप जो है 1 से 10th क्लास तक के आप जो अप्लाई करेंगे, उसको करने के बाद बहुत सारे होते हैं जो जो गवर्नमेंट का जो निकलता है स्कूल वाइज या फिर सेंट्रल स्कूल का या अदरवाइज लेकर के प्राइवेट स्कूल वाले भी आजकल एंट्रेंस, इससे कोई एंट्रेंस का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि काफी लोग पैटर्न भी स्टेट वाइज अपना रखते हैं कि चलो भाई
0: प्राइवेट स्कूल्स जो है वो कई बार एलिजिबिलिटी टेस्ट जरूर मांग लेते हैं कि आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, exactly, वो कई बार या आपसे बीएड मांग लेते हैं कि बीएड होना चाहिए आपका, अदरवाइज तो प्राइवेट स्कूल का तो सिंपल सा पैटर्न है कि वो तो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, उसमें तो वो तो उनके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको टीचर चाहिए होता है, तो उनका पैटर्न अलग है, ऐसे कोई हम नहीं कह सकते पर्टिकुलर टेस्ट आपको अपीयर करना है फॉर द प्राइवेट स्कूल टीचर, उसके लिए ऐसे कुछ क्वालिफिकेशंस भी नहीं है,
1: नहीं है।
2: जैसे वो ये बता देते हैं कि पेपर है ये, अगर आप हैं तो पेपर है और कुछ नहीं होते।
0: हाँ,
3: गुड आफ्टरनून सर, फराह बोल रही हूँ रामपुर से। सर मुझे ये पूछना था सी टेट या यूपी टेट में से हमें एक ही क्वालिफाई करना है या फिर दोनों क्वालिफाई करना है?
0: एक्चुअली क्या रहता है, देखिए जो सीटेट का एग्जाम है ना, वो आपका एक टाइप से जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, जैसे आपने दिल्ली की कोई वैकेंसी आई, ठीक है, कहीं

0: भी वैकेंसी आएगी वो आपसे मतलब जो क्वालिफिकेशन एक्सपेक्ट करेगा वो एफिलिएटेड करेगा। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी स्कूल में वैकेंसी आएगी तो वहां पर आपको सीटेट पास करना पड़ेगा। बट जब स्टेट वाइज वैकेंसी आती है ना तो फिर वो अपने स्टेट का ही वो मांगते हैं, एग्जाम मांगते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी में अगर प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई है तो वहां पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखेगा ना वहां पर वो यूपी टेट लिखेगा, तो फिर आपको यूपी का टीट वो करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको टीचिंग में जाना है तो दोनों ही पास करना है आपको।
1: जैसे अभी हमने बीटीसी कर ली है तो
0: हाँ
1: सी
0: जी
1: टेट का भी एग्जाम दिया था, तो अभी 3 नंबर से रह गए थे हम।
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: मैं
0: हाँ जी
1: पूछ रही हूँ कि सी टेट या यूपी टेट से अगर हमारा एक ही क्वालिफाई होता है तो क्या उसके बाद पर
0: उसमें
1: टेट फिर आएगा
0: नहीं
1: तो
0: नहीं ये क्या
1: हम दे
0: करते
1: सकते हैं?
0: हैं, ये जो स्टेट वाइज वैकेंसीज निकालते हैं ना तो उसमें वो सी टेट को नहीं मानेंगे, वो अपना पेपर मानेंगे जो यूपी टेट का होगा,
1: यूपी
0: तो वो
1: टेट का
0: थोड़ी सी
1: मानेंगे।
0: प्रॉब्लम करते हैं। बट ये है कि अगर आप जो सी टेट का क्वालिफाई करते हैं तो बाहर कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
1: अच्छा, यूपी में नहीं हो सकता ये,
0: मतलब
1: यूपी में
0: नहीं
1: यूपी का ही
0: चल
1: चलेगा।
0: जाता है, मतलब क्या रहता है ना कि वो उसमें अब जैसे क्या है कि अगर आपकी पीजीटी की वो आएंगी, अगर आपकी पीजीटी की आती है वैकेंसी तो अप्लाई नहीं हो पाएगा। फिर पेपर वन है, पेपर टू है, तो मतलब आपका चल जाता है, पर वो उसमें लिखा होता है। मतलब जैसे जो फॉर्म निकलते हैं ना तो उसमें,
1: हाँ
0: क्योंकि देखिए क्या है कि इसका प्रोसीजर क्या होता है कि जो टेट का पेपर है वो ओनली एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जब जब आपकी वैकेंसी आती है ना तो उसमें फिर लिखा होता है भी आपने, आपका या तो टेट क्वालिफाई हो या आपका सी टेट क्वालिफाई हो या उसके अलावा कोई और भी कोई एग्जाम अगर है तो वो लिखा हो तो वहां आपका चल जाता है।
1: अच्छा सर, जो सुपर टेट है, यूपी टेट हमारा जैसे क्लियर हो गया, उसके बाद हमने सुपर टेट भी क्लियर कर लिया, तो उसके बाद भी हमारा इंटरव्यू या कोई एग्जाम वगैरह होता है या डायरेक्टली हम डाल सकते हैं फिर?
0: नहीं उसमें ये क्या करते हैं, देखिए अभी जैसे पहले तो क्या होता था कि जो टेट क्वालिफाई होता था उसी के बेसिस पे होता था, जॉब लग जाती थी।
1: जी
0: अभी उन्होंने क्या किया हुआ है कि अभी ये जैसे टेट को कर रखा है अलग, ये तो एक टाइप का ये हो गया कि आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया। फिर जब
1: हाँ
0: वैकेंसीज निकालते हैं तो वैकेंसीज निकालेंगे तो उसमें ये लिखेंगे कि मिनिमम वही पर्सन अप्लाई कर सकता है जिसका टेट क्वालिफाई हो।
1: जी
0: फिर वो अपना अलग से पेपर लेते हैं एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग।
1: ओके
0: जैसे हरियाणा में क्या है कि आपने एस्टेट क्वालिफाई कर लिया, एस्टेट पास करने से जॉब नहीं मिलेगी आपको, जब वैकेंसी आएगी वो फिर से पेपर लेंगे आपका। तो इस तरह से चलता है इसमें।
1: ठीक है सर, थैंक यू सर।
0: हाँ थैंक यू। एक ये क्वेश्चन है सीमा सिंह जैसे पूछ रहे हैं कि बीएड करने का क्या प्रोसेस। देखिए जो बीएड करने का प्रोसीजर है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कर सकते हैं, डिस्टेंस से बीएड नहीं होती है। पहली चीज, ओनली इग्नू ऑफर करता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, बट उसमें भी उसमें आप किसी ना किसी स्कूल में एज ए टीचर वर्क कर रहे हो तो उसमें जो लोग एज ए टीचर जॉब कर रहे होते हैं उनके लिए प्रोसेस है कि वो बीएड जो है डिस्टेंस से कर सकते हैं। बट इन जनरली जो बीएड है वो आपको एज ए रेगुलर कोर्स ही करना पड़ता है। तो आपने बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी आपने किया है तो उसके बाद आपको 2 ईयर का बीएड करना पड़ेगा। ये आपका जैसे सर मैंने डीएलडी किया है, टेट क्लियर है, इंटर कॉलेज जॉब्स का क्या स्कोप है, क्योंकि तो इंटर कॉलेज जैसे ये मेरे हिसाब से यूपी से बिलोंग करते हैं ना आप, यूपी में इंटर कॉलेज होता है। हाँ
1: जी
0: तो वैसे तो इन जनरली क्या होता है, जैसे मैं अपनी हरियाणा या और जगह की बात करें तो वहां पर जो कॉलेज की वैकेंसी तो आपकी अलग से आती है। यूपी में क्या है कि इंटर कॉलेज मतलब जो 12th को करता है टीच, मतलब आपका 8 to 12th, एक टाइप जो पीजीटी कहते हैं ना उसे हम बोलते हैं, तो उसमें तो आपको बीएड करनी पड़ेगी। देखिए क्या रहता है कि पीजीटी के लिए बीएड क्वालिफिकेशन आपकी मस्ट है पूरे इंडिया में, ठीक है। और अगर आपको एलिमेंट्री टीचर का करना है तो आपने जैसे डीएलडी किया हुआ है तो आप उस टाइटल है, तो आपको ये थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। हाँ सीमा सिंह आस्किंग वन हैज टू गो टू कॉलेज एवरी डे। देखिए नहीं उसमें क्या है कि बीएड में देखिए आपके 2 तरह के कॉलेजेस हैं, एक जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, एक प्राइवेट कॉलेज है। तो प्राइवेट कॉलेजेस तो फीस ही चार्ज करते हैं बस, मतलब आपको कॉलेज जाने की नीड नहीं है। मैक्सिमम जो बीएड है वो आपकी इसी तरह से होती है, बट रेगुलर कोर्स है, मतलब उसके साथ आप कुछ और नहीं कर सकते। बीएड एक तरह का रेगुलर कोर्स है। अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तो आपको कॉलेज जाने की उम्मीद नहीं है, एग्जाम्स होंगे बस आपके, ठीक है। बट उन दो सालों के अंदर अंदर आप उसके साथ कोई और डिग्री नहीं हो पाएगी आपकी, आप केवल बीएड ही करेंगे, क्योंकि काफी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो बीएड करवाते हैं। तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर सकते हैं, वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के साथ में एफिलिएट होगा। अकबर जी पूछ रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में टीचिंग जॉब के लिए नेट की आवश्यकता होती है। देखिए क्या है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर वो पूरे स्केल की सैलरी देंगे तो नेट आपसे मांगेंगे जरूर। देखिए क्या होता है ना, प्राइवेट में भी मतलब जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वो टू टाइप के टीचर रखती है। एक तो वो टीचर रखती है जो वो अपने रोल्स पे दिखाती है, मतलब जिनको एक नंबर में सैलरी पे दिखाती है, तो वहां तो नेट क्वालिफाइड होना कंपलसरी है, क्योंकि आप कॉलेज लेवल पे टीचर तभी बन सकते हो जब आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है। तो कुछ टीचर्स को वो एडवोक पे दिखाती है, तो वहां पर आपका चल जाता है। मतलब तो ये है कि स्टार्टिंग की जा सकती है, बाकी अगर आपको कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचिंग करनी है तो नेट क्वालिफाई करना मस्ट है आपके लिए, उसके बिना आपको सैलरी कभी पूरी नहीं मिल पाती। सुनील जी पूछ रहे हैं एसटेट का सिलेबस क्या रहेगा, बीएड एसएसटी इंग्लिश से है, बीएड एसएसटी उसमें देखिए अगर आप टीजीटी का दे रहे हैं पेपर तो उनकी तो आपके टॉपिक वाइज आपको बुक्स मिल जाती है उसमें, जैसे जो टीजीटी का पेपर है हाँ उसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे 150 नंबर का पेपर आता है तो 30 क्वेश्चंस तो आपके हरियाणा में जैसे मैथ्स रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के हो गए, 30 क्वेश्चन चाइल्ड पेडागोजी के हैं, और उसके बाद जो 30 क्वेश्चंस हैं वो आपके इंग्लिश और हिंदी के हो गए, और फिर बच्चे 60 क्वेश्चन आपके बचे, उन 60 क्वेश्चंस में आपका एसएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके टीजीटी में। जितने आपकी कॉलेज रेगुलर करना चाहिए ना वो नहीं, देखिए क्या क्या रहता है कि आप कॉलेज कैसे भी कर सकते हैं, आपने बीए चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस से किया हुआ है चाहे आपने रेगुलर किया हुआ है वो मैटर नहीं करता, बट हाँ उसमें मार्क्स आपके मैटर करते हैं, क्योंकि जब भी वैकेंसी आती है ना तो उसमें कुछ ना कुछ जो वेटेज है कुछ आपके मार्क्स को होता है वेटेज, तो आपने कहीं से कोर्स किया हो वो आपका चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस से है चाहे आपका रेगुलर कोर्स है वो इक्वलेंट ही ग्राउंड पे होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता एज ए जॉब के लिए। देखिए कॉलेज रेगुलर करना ही बेनिफिशियल होता है, वो बिल्कुल ठीक बात है आपकी, मतलब जनरली आप बीए बीकॉम जो भी करिए मतलब आप हर कोर्स को रेगुलर से ही करिए तभी बात बन पाएगी, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस से एक तो ना तो मार्क्स आपके अच्छे आते पहली चीज और ना ही आपकी सब्जेक्ट में इनडेप्थनेस हो पाती है, तो ये तो एडवाइजेबल होता है कि करना तो रेगुलर ही चाहिए।
2: आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी?
1: यस मैम शो हो रही
2: है। हाँ जी, सो आज का जो हमारा सेशन है सामुदायिक स्वास्थ्य डेटा हम कैसे लेते हैं, जब हम किसी हम जब जाते हैं हम जब जाएंगे अभी आपको जो मैं सेशंस दूंगी आप जाकर बाहर बोलेंगे जब बाहर बताएंगे या आप सर्वे जब करने जाते हैं हम तब हम एक डेटा लेना होता है हमें लोगों का, उस डाटा में क्या क्या लेना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। फिर हाथ धोना, क्योंकि सारी जो बीमारियां हैं वो हैंड वॉश से ही शुरू होती हैं, मतलब अगर हम हैंड वॉश नहीं करेंगे तो हमारी बीमारियां बढ़ती जाएंगी। हम हैंड वॉश करेंगे तो हम बीमारियों से बच सकते हैं, अगर हम हैंड वॉश नहीं करेंगे तो हम बीमारियों के चपेट में आते जाएंगे, हम मतलब बीमारियां हमें लगती जाएंगी। तो हैंड वॉश बहुत जरूरी है और कैसे हैंड वॉश करना है। फिर हम बात करेंगे पर्सनल हाइजीन के बारे में कि पर्सनल हाइजीन मतलब अपनी साफ सफाई नहीं करते हैं तो क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और क्या क्या पर्सनल हाइजीन में जरूरी है, ये सब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समुदाय का जो डाटा लेते हैं जब हम जाते हैं जब आप लोग जाओगे, बाहर जाओगे, जब आप लोग करोगे, सर्वे करोगे, तो उसमें क्या क्या पूछोगे? सबसे पहले आप नाम पूछोगे, उसकी उम्र लोगे, लिंग पूछोगे, मतलब महिलाएं हैं या पुरुष हैं, पता, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, संपर्क कहाँ किया जाए, क्या केस हिस्ट्री है, मतलब क्या उनको कौन सी बीमारी है, क्या समस्या है, कब से ये समस्या चली आ रही है, क्या उन्होंने इस बीमारी के लिए किया है, कोई रिपोर्ट है तो उसको आप वो लगाएंगे, कोई जांच है तो आप उसको देखेंगे कि उसकी जांच में क्या है, उसकी फोटोकॉपी आप लगाएंगे अपनी डायरी में, ताकि आप जब डॉक्टर के पास जाएं तो आपके पास उस मरीज का सारा डाटा हो कि उस मरीज को क्या क्या बीमारी थी, क्या क्या उसने इलाज कराया, क्या रिपोर्ट्स हैं, उसका ताजा बीपी, मतलब प्रेजेंट में बीपी क्या है, उसका शुगर कितना है, ये सब आप एक अपनी डायरी में लिखकर जाएंगे जब आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर क्या वेट है, ये भी हम देखेंगे, बच्चे की जानकारी ले रहे हैं या बच्चे को, बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या टीकाकरण करा है, कौन सा लगाया है, कब लगाया है, आंगनवाड़ी, आशा दीदी और ANM के साथ संपर्क है या नहीं है, ये सब भी हम उनसे जानकारी लेंगे। ये सब जानकारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये सब जानकारी नहीं लेते हैं, बिना इन सब जानकारी के चले जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत की बात हो जाएगी, हमें नहीं पता चलेगा कि उनको क्या बीमारी है, उन्होंने क्या इलाज कराया है, और इसका आगे जाकर डॉक्टर से जैसे संपर्क करना है तो कैसे संपर्क करना है, उनको क्या बताना है, ये सब जानकारी देनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब हाथ धोना, मतलब हैंड वॉश किसको कहते हैं, हाथ धोना क्या है, हाथ धोना जैसे हमारे हाथों की स्वच्छता, मतलब हाथों को साफ रखना, हाथ धोने को कहते हैं। हमें हमारे हाथों में बहुत सारे वायरस, जर्म्स, बैक्टीरिया, गंदगी चिपकी होती है जो हमें अपनी आंखों से दिखती नहीं है, क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं। तब जब ये हमारे हाथों में चिपका होता है गंदगी, तो इसको हम साबुन और पानी से धोते हैं, साफ करते हैं। और जब हम साबुन और पानी से इसको धोने के बाद, जब आप साबुन और पानी से इसको 20 सेकंड तक धोएंगे, इसको धोने के बाद आप इसको सुखाना भी उतना ही जरूरी है, टॉवल से या टिश्यू पेपर से आप इसको सुखा सकते हैं। अगर गीले हाथों को ही आप कहीं और किसी गंदगी चीज पे लगाते हैं या कहीं और चीज को छूते हैं, तो हाथ और गंदे हो जाते हैं। तो अपने हाथों को धोने का एक प्रक्रिया है, आप उसको फॉलो करें। हर चीज को छूने के बाद या तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें या हाथों को जरूर धोएं। तो 20 सेकेंड तक अपने हाथों को जरूर धोना है, ताकि आपके हाथ जो हैं वो साफ रहें। हमें कब कब अपने हाथ धोने चाहिए, आप सबको पता है कि आपको कब कब अपने हाथ धोने हैं। तो खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के दौरान में और बाद में अपने हाथों को जरूर धोना है, हम सबको पता है, पर हम फिर भी कहीं ना कहीं इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, हम कहीं ना कहीं इसको करते नहीं है। तो खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के दौरान और बाद में अपने हाथों को जरूर धोएं। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी अपने हाथों को धोना चाहिए। घर में किसी भी व्यक्ति की अगर आप देखभाल कर रहे हैं, और चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो बच्चे हैं, आप अगर उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो पहले भी और बाद में आप अपनी हाथों को जरूर धोना चाहिए। पहले इसलिए कहते हैं कि उस व्यक्ति को आपसे कोई इन्फेक्शन ना हो, और बाद में इसलिए कहते हैं कि उस व्यक्ति की इन्फेक्शन आपको और आपके घर वालों को ना हो। अगर कोई चोट लगी है, कोई घाव है, स्पेशली जब हम ब्लड के साथ, खून के साथ अगर हम फर्स्ट एड पे दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, या बच्चों को चोट लगती है, हम डेटॉल लगाते हैं या कुछ, तो उसके बाद अपने हाथों को जरूर धोना चाहिए, क्योंकि ब्लड से बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हमारी बॉडी में फैलता है। वॉशरूम यूज करने के बाद अपने हाथों को जरूर धोना चाहिए। बच्चे हैं घर में, डायपर्स बदलते हैं, बदलने के बाद अपने हाथों को जरूर, बच्चों का खांसते छींकते वक्त अपने हम अपने हाथों, वैसे हम यही बोलेंगे कि आप अपने हाथों को आगे रखें खांसते हुए भी और छींकते हुए भी, और फिर जब आप खांसते हैं और छींकते हैं अपने हाथों पे, तो जो वायरस और बैक्टीरिया आपके हाथ में आया है क्योंकि आप बीमार हैं, तो उसको आपको धोना चाहिए, अपने हाथों को धोना चाहिए, ताकि वो किसी और को, किसी चीज को छूने के बाद ना लगे। किसी जानवर, आपके घर में कोई जानवर है, पशु है, कोई पालतू जानवर की अगर आप सेवा कर रहे हैं घर में, तो जब आप उसको देखते हैं तो उसके बाद अपने हाथों को जरूर धोएं। कचरा छूने के बाद अपने हाथों को जरूर धोना चाहिए। हम सबको ये पता है कि हमें अपने हाथ कब कब धोने चाहिए, पर हम बहुत ज्यादा निग्लेक्ट कर देते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, या हम जान कर भी अनजान बन जाते हैं, तो हमें ये इसको नहीं करना है, और हैंड वॉश जरूर करें। कुछ स्टेप्स हैं आपको वो फॉलो करने हैं जब आपको अपने हाथ धोने होते हैं। तो हाथ में जब कीटाणु जम जाते हैं, जब कीटाणु हमारे हाथों में होते हैं, उसको हम अपने शरीर के अंदर ना घुसने दें, इसलिए हम कहते हैं कि अपने हाथों को साफ करें। साफ हाथों को कीटाणु से मुक्त करने के लिए, मतलब एक व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है, अगर वो हाथ नहीं साफ करता है, तो उससे दूसरा व्यक्ति बीमार पड़ता है, और फिर कम्युनिटी भी बीमार पड़ती है, ऐसे रोग फैल जाता है। तो अपने हाथों को धोने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं जब हम अपने हाथों को धोते हैं। 20 सेकेंड तक अपने हाथ को धोना है। थोड़ा सा साबुन, मैं आप सबको यही बोलूंगी कि डेटॉल, जो लिक्विड वॉश होता है, लिक्विड वॉश का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम जब केक का जो साबुन की टिकिया जिसको बोलते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन उसमें रह जाता है। अगर आप साबुन की टिकिया भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आप साबुन को अपने हाथों में मल कर ऐसे ही छोड़ देंगे, तो वो इन्फेक्शन किसी दूसरे को भी लग सकता है, क्योंकि उस साबुन के ऊपर इन्फेक्शन है। आप उसको अपने हाथ धोने के बाद साबुन को एक बारी पानी से निकाल कर रख देंगे, तो वो इन्फेक्शन भी निकल जाता है। पर द बेस्ट वे, जो बेस्ट साबुन है, वो हम डिटॉल लिक्विड को अगर हम इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा अच्छा होता है। अपने हाथों में थोड़ा सा साबुन लेकर, हाँ, पानी लेकर अपने हाथों को मलना है, अपनी हथेलियों को मलना है, हथेलियों के पीछे वाले हिस्से को मलना है, उंगलियों के बीच में, उंगलियों के पीछे पीछे वाले हिस्से को मलें, अंगूठे को मलें, और दोनों हाथ से को पानी से अच्छी तरह से धो लें। इसको धोने के बाद टॉवल या टिश्यू पेपर से अपने हाथों को सुखा लें। ये स्टेप्स हमें, 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले अपने हाथों में साबुन लें, पानी डालें, हाथों में झाग बनाएं, हाथों को धोएं, हाथों के आगे वाले हिस्से को, हाथों के पीछे वाले हिस्से को, उंगलियों के बीच में, उंगलियों के पीछे, अंगूठे को रब करते हुए अपने हाथों को पानी से धो लें, और उसके बाद टॉवल और टिश्यू पेपर से उसको सुखा लें। ऐसा करने से हम अपने हाथों से कीटाणुओं को धो देते हैं और बीमारी फैलने से बच जाते हैं। तो ये अगर हम अपनाएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे और हम बीमारी नहीं फैलाएंगे। और मैं आप सबको बोलती हूँ कि ये अपने घर में भी अपनाएं, अपने बच्चों को भी बताएं कि ऐसे करने से हम बीमारियों को फैलने से रोक रहे हैं। पर्सनल हाइजीन, अब हम पर्सनल हाइजीन पे बात करते हैं कि पर्सनल हाइजीन क्या है। पर्सनल हाइजीन मतलब अपनी साफ सफाई, अपने आप को साफ रखना। प्रतिदिन स्नान करना बहुत जरूरी है, आप सब करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि बीमार हैं, ठंड बहुत है तो हम नहाएंगे नहीं आज, और बीमार हैं तो हम नहाएंगे नहीं आज। तो ऐसा नहीं करना है, रोज नहाएं, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत गंदगी है। क्यों, हम बाहर अगर जाते हैं, बाहर जो लोग जाते हैं वो बाहर के कीटाणु अपने शरीर पे लगाकर आते हैं तो हमें पता नहीं चलता है। और हमारी स्किन ऑयली जब हो जाती है, जब हमारी स्किन नेचुरल जब सिक्रीट करती है ऑयल, तो वो हमारे शरीर के अंदर से जितनी भी गंदगी है वो ऑयल के थ्रू बाहर आता है। तो हमें नहाना चाहिए। दिन में 2 बारी दांतों को ब्रश करना है, एक बारी सुबह एक बारी रात को सोने से पहले। हफ्ते में 2 बारी बालों को जरूर साबुन या शैम्पू से धोना है। वॉशरूम जाने के बाद साबुन से अपने हाथ जरूर धोने हैं। खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के दौरान, खाना बनाने के बाद भी अपने हाथों को धोएं। हम लोगों को ये इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर कोई बच्चा बाहर से जब खेल कर आता है, माओं को खासकर ध्यान रखना है, जब बाहर से खेल कर आता है तो वो तुरंत अपने हाथों को धोए, क्योंकि बाहर से जब वो खेल कर आएगा उसके हाथों में गंदगी है, उसके हाथों में मिट्टी है, और वो आते ही अगर खाना खाएगा तो वो सारी मिट्टी और गंदगी उसके खाने के साथ उसके पेट में जाएगी, जिसकी वजह से उसको डायरिया जैसी बीमारी भी लग सकती है। तो खेलने के बाद अपने हाथों को बच्चों को जरूर बोले धोने के लिए। रोजाना साफ कपड़े पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों को धोकर उसको सूरज की किरणों में सुखाएं, सूरज पे सुखाएं। सूरज की किरण में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि वो आपके घर में या आपके कपड़ों में जित गंदगी या स्मेल जो भी होती है वो उसको खत्म कर सकते हैं। कपड़ों को धूप में जरूर सुखाना चाहिए। आजकल जैसे सर्दियां हैं, धूप नहीं निकल रही है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उन कपड़ों में कुछ गलन सी स्मेल आती है, अजीब सी स्मेल आती है। तो वो कपड़ों में जो स्मेल है वो डिटर्जेंट की है, वो पानी की है, तो वो जब मिक्स हो जाती है तो वो सीलन जैसी जो स्मेल है वो हमें आती है। अपने कपड़ों को धूप में जरूर सुखाना चाहिए। धूप नहीं निकल रही है तो प्रेस से जरूर उसको प्रेस कर कर अगली बार पहनना चाहिए। खांसते छींकते के समय नाक और मुंह को जरूर ढककर रखें ताकि इन्फेक्शन किसी और को ना आए। हफ्ते में एक बारी नाखूनों को जरूर काटें। नाखूनों के बीच में जो काली गंदगी आ जाती है उसकी वजह से आपके, जब आप मुंह खाना खाते हैं तो वो आपके पेट में चली जाती है। तो हफ्ते में एक बारी नाखूनों को जरूर काटें, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, हमें जरूर काटने चाहिए। फिर इसके साथ हमें और क्या करना है? ये तो कुछ टिप्स थे। तो जब व्यक्तिगत स्वच्छता का क्या है, जब मैंने अभी आपको बताया कि स्वच्छता उसे कहते हैं शरीर का अपना देखभाल। इस अभ्यास में स्नान करना होता है, हाथों को धोना, दांतों की सफाई, और जो हम रोजमर्रा में अपने लिए करते हैं साफ सफाई, उसको हम व्यक्तिगत स्वच्छता कहते हैं। हर दिन हम बहुत कीटाणुओं का सामना करते हैं और इससे संपर्क में आते हैं, और इसी से हमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। सो जब हमें बीमारियां लगती हैं, आसपास बहुत सारा इन्फेक्शन है, तो हम वो बीमारियां जब हमें लगेंगी तो हम आगे भी फैला सकते हैं। इसलिए अपनी साफ सफाई रखना भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब व्यक्तिगत स्वच्छता मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्या थी। अब हम जैसे वॉशरूम यूज करते हैं, वॉशरूम यूज करने के बाद अपने हाथों को जरूर धोना है। 20 से 30 सेकंड तक अपने हाथों को साबुन और पानी से जरूर धोएं। हथेलियों को उंगलियों के बीच में, जैसे अभी मैंने आपको सब बताया, उसको धोने के बाद टॉवल से सुखा लें। फिर नहाना रोज है। ऐसे करने से अक्सर स्नान करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहीं करते हैं, बट हमें साबुन और पानी से स्नान करना है ताकि हमारे जो शरीर में कीटाणु है, बैक्टीरिया है, बाहर जाते हैं। घर में रहते हैं तब भी हमें कीटाणु बैक्टीरिया लगते हैं। कुछ लोग बीमार होते हैं, बीमारी में तो स्पेशली स्नान करना चाहिए ताकि आप एक फ्रेश महसूस करें अपने आप को, और टॉवल से जरूर सुखा लें अपने बदन को और साफ कपड़े पहनें। अपने बालों को हफ्ते में 2 बार ही जरूर साबुन और शैम्पू से धोएं। ऐसे करने से हम अपने बालों की गंदगी, उसमें जो ऑयल सेक्रीट हो रहा है नेचुरल, उसको हम निकाल रहे हैं बालों से। फिर नाखूनों की स्वच्छता, अपने नाखूनों को काटा का छोटे रखें। बहुत लोगों की आदत होती है नेल बाइट करने की। नेल बाइट करने से भी हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन जाता है, तो नेल बाइट ना करें। हफ्ते में एक बार ही अपने नाखूनों को जरूर काटें। सबको अपने दांत सफेद, जैसे सफेद दांत चाहिए होते हैं, तो अपने दांतों और मसूड़ों की देखभाल करने के लिए, उसको रोकने के लिए, तो हमें 2 मिनट तक ब्रश करना है दिन में 2 बारी, एक बारी सुबह, एक बारी रात को सोने से पहले। अदरवाइज आपके दांतों में से दांतों की बीमारियां लग जाएंगी, और दांतों का जो दर्द है वो बहुत बर्दाश्त के बाहर होता है, तो आपको दांतों को साफ रखना है। घर में कोई बीमार है तब भी आपको अपनी देखभाल रखनी है और उसकी भी देखभाल रखनी है, तो आप अपने हाथों को जरूर साफ रखें। अब जब हम नहीं अपनी ये साफ सफाई रखते हैं तो कुछ उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। अगर हम अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाते हैं, आदतें अपनाते हैं, तो हम बीमारियों को अपने आप से दूर रखते हैं। और अगर वही हम अगर अपनी आदतें नहीं अपनाएंगे, साफ सफाई नहीं रखेंगे, शरीर गंदा रहेगा, तो हमसे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा, हमारी पर्सनालिटी नहीं रहेगी, वो हमारा जो आत्मविश्वास है वो भी कम हो जाएगा, हम लोगों के सामना नहीं कर पाएंगे, लोग हमसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। यदि आप अपने हाथ बार बार नहीं धोते हो तो आसानी से कीटाणु आपके शरीर के अंदर चले जाएंगे, चाहे आंखों के जरिए, चाहे मुंह के जरिए, चाहे नाक के जरिए, और आप बीमार पड़ सकते हैं। वहीं अगर आप दांतों को नहीं साफ रखेंगे, ब्रश नहीं करेंगे, तो पायरिया जैसी बीमारी हो सकती है, दांतों में कीड़े लग सकते हैं और दांत खराब भी हो सकते हैं, दांत हिल भी सकते हैं, दांत टूट भी सकते हैं। और स्वच्छता को अपना एक आदत बनाएं, प्रैक्टिस में लाएं। जैसे हम रोजमर्रा का में काम करते हैं, खाना खाना जरूरी है, काम करना जरूरी है, वैसे ही अपनी सफाई भी रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें इचिंग हो सकती है, शरीर में कीड़े लग सकते हैं, बालों में कीड़े हो सकते हैं, दस्त की बीमारी हो सकती है, और रिंग वर्म जैसी बीमारी भी लग सकती है। रिंग वर्म एक गोल आकार होता है, अभी मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में। व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो आपको कैसे अपने आप को, मतलब आप इसको कैसे धारण करें, कैसे इसको अपनाएं, रोजमर्रा, मतलब आपको इसको अपनाना चाहिए, हैबिट में लाना चाहिए, रोज टाइम टू टाइम इसको करना है। कब आपको हाथ धोना है, कब सफाई रखनी है, कब अपनी सफाई रखनी है, ये करना बहुत जरूरी है, और बच्चों को भी आपने प्रोत्साहित करना है। बच्चों के लिए हम एक साइन बोर्ड बना सकते हैं, हम इसको सेंटर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं कि कि साइन बोर्ड्स बनाएं बच्चों को जब वो सेंटर में आते हैं या घर में आते हैं, तो उनको सबसे पहले अपने हाथ धोने हैं, और जैसे वॉश बेसिन के ऊपर अपना हैंड वॉश का स्टेप्स बना सकते हैं ताकि बच्चे इंटरेस्टली अपने हाथ धोएं। प्लेट्स को जब अंदर रखने जाएंगे, जूठी प्लेट्स अंदर रखते हैं, तब अपने हाथ धोने खाने के बाद। तो ऐसे साइंस अगर हम हेल्प करें इम्प्रूव करने के लिए, तो बच्चे भी अपने हाथ धो सकते हैं। और एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स द माइंड परफेक्ट। जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी हम इसको अपनी जिंदगी में अपनाएंगे, तो हम सफाई के उतने ही पास जाएंगे। अब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सफाई नहीं रखते, जैसे मैंने अभी आपको बताया स्केबीज एक बीमारी है, जिसको हम छोटे छोटे दाने जिसको कहते हैं हमारे शरीर में लाल हो जाते हैं। ये भी एक कंटेजियस है, मतलब एक दूसरे से लगने वाली बीमारी है। ये स्प्रेड करती है बहुत ज्यादा जब एक बंदा एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है। और ये कहाँ होता है, हम अगर नहाएंगे नहीं तो जो दो शरीर के जॉइंट्स होते हैं, जैसे घुटना हो गया, आपके एल्बोज हो गए, कहीं पर भी जहां साफ सफाई नहीं हो पा रही है प्रॉपरली, वहां पर ये दाने हो जाते हैं। वहां पर इचिंग होती है, खारिश करने का मन करता है, लाल कलर के दाने हो जाते हैं। तो लाल कलर के दाने ऐसे दिखते हैं आपको, जैसे स्क्रीन में दिख रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। ब्लिस्टर्स जैसे जिसको हम बोलते हैं, वो स्किन में दिखते हैं। कहीं पर भी हो सकते हैं, शरीर के किसी भी हिस्से पे हो सकते हैं ये। और इसको हम अगर नहीं, ये किस लिए होते हैं, क्योंकि हम अपनी साफ सफाई नहीं रखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए अगर जब हमें ये होते हैं, तो सबसे पहले अपनी साफ सफाई रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिसकी स्किन सेंसिटिव है, बहुतों की स्किन साबुन से भी सेंसिटिव होती है, जिसको कोई साबुन नहीं सूट करता है, तो उसको भी ऐसे दाने हो सकते हैं। तो इसके लिए आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो लैक्टोकैलामाइन क्रीम होती है, लैक्टोकैलामाइन लोशन होता है, जिसको आप इस्तेमाल कर कर इस दानों को सब्साइड कर सकते हैं। पर सबसे जो फोरमोस्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो यही है कि आप अपने साफ सफाई रखें, रोज नहाएं और साफ कपड़े पहनें। ऐसे ही रिंगवर्म होता है, जिसको हम दाद बोलते हैं। रिंगवर्म जो है बॉडी में कहीं पर भी हो जाता है, ये फंगल इन्फेक्शन है। रिंग की तरह ये दिखता है आसपास, जब ये गोलाकार में होता है तो वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, और बीच की जो सरफेस है वो बिल्कुल रेड हो जाती है। इसमें भी हमको इचिंग होती है, रैशेज हो जाते हैं। सिम्टम्स जो हैं, ये हमें इचिनेस देते हैं, खुजली करने का मन करता है, कलर चेंज होता रहता है इसका, कलर रेड से वाइट भी हो जाता है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन यूजली वाइट कलर का होता है। और उभरा हुआ ये इन्फेक्शन होता है, गोल शेप में होता है। इसका ट्रीटमेंट यही है कि या तो आप डॉक्टर को दिखाएं, नहीं तो साफ सफाई रखें, लोशन लगाएं इसके ऊपर, लैक्टोकैलामाइन लोशन होता है, ये इन्फेक्शन को सबसाइड कर देता है। और एंटी फंगल अगर डॉक्टर को दिखाएंगे, तो एंटी फंगल पिल्स भी होती हैं जो डॉक्टर्स देते हैं, वो आप ले सकते हैं इस इन्फेक्शन को हम साफ क्लियर करने के लिए। बट जो फोरमोस्ट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो यही है कि आप अपनी साफ सफाई रखें, नहाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और साफ कपड़े पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रही हूं, आप अपने घर में भी लागू करें, अपने आसपास भी लोगों को बताएं, ताकि वो लोग भी इस चीज को फॉलो करें। एंड आप अपने क्योंकि अब आपको CHW की ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो चुकी है, आप ट्राई कर सकते हो, घर घर जाकर बात कर सकते हो कि आप ऐसे ट्रेनिंग ले रहे हो, और आप रिकॉर्ड ले सकते हो कि कितने लोग कितने घर में रहते हैं, उनमें आसपास क्या बीमारी चल रही है, साफ सफाई है कि नहीं है आपके घर के आसपास, ये सब आप रिकॉर्ड लेकर हमें रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। कोई कुछ कहना चाहेगा या पूछना चाहेगा?
3: हेलो मैम, नमस्ते, मैं रजनी बोल रही हूँ।
2: हाँ जी
3: अभी जैसे मेरी मम्मी है वो बेड पे है अभी, तो उनको ना ठंड बहुत ज्यादा लगती है, जैसे हम अभी ठंड में उनको भी जल्दी जल्दी मिला नहीं सकते, तो उसके लिए मैं आपसे पूछ रही थी कि उसके लिए हमें क्या मतलब रखना पड़ेगा कि हाँ साफ सफाई रहे।
2: हाँ, उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है साफ सफाई रखना। अगर वो नहीं उठ पा रही हैं तो आप गर्म टॉवल से गीला कर कर, मतलब टॉवल को गीला कर कर उनके बदन को पोंछ कर साफ कपड़े पहनाइए उनको रोज, अदरवाइज उनको इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं।
3: जी मैम, ठीक है मैम। वैसे तो हम साफ सफाई रखते हैं मगर इतना वो नहीं करते क्योंकि उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है।
2: नहीं, आप प्लीज इसको अपनाएं अपनी लाइफ में, नहीं तो उनको इन्फेक्शन हो सकता है बहुत।
3: ठीक है, ठीक।
4: मेरी मेरे को लगा कि आज का सेशन इतना सिंपल था जो हम सब अपने मतलब अपने लिए, तो हम उसको अपने लिए लेकर आ सकते हैं ये सारी चीजें। और स्पेशली हमारी जो टीम है, हमारे पिंक सेंटर्स में जो टीम है, उन लोगों के लिए इतना इतना बड़ा इंफॉर्मेशन था मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारे डीलिंग है डेली इतने सारे पब्लिक से जो डेली हमारे सेंटर्स को विजिट करते हैं, तो ये सारे इंफॉर्मेशन इनफैक्ट ये बहुत कंफर्टेबली इजीली ये ट्रांसमिट कर सकते हैं अपने सारे यूजर्स के साथ भी जो कंटिन्यूसली हमारे सेंटर्स में आते हैं, क्योंकि हमारे सेंटर्स में सिर्फ सैनिटेशन पर्पस के लिए नहीं, कई बार खाना खाने के लिए आके बैठते हैं ये लोग, और वॉशरूम यूज करने के बाद भी रेस्ट करने के लिए बैठते हैं। तो आपका जो आज का सेशन मुझे लगा इतने सिंपल वर्ड में थे, और इतनी छोटी छोटी चीजें जो कई बार हम नजरअंदाज करते हैं उसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और बाकी लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा
2: एग्जैक्टली,
4: लगा
2: थैंक
4: मुझे
2: यू,
4: सुन आपका।
2: थैंक यू सो मच।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: ओजेर के पास कुछ इनपुट्स आए थे, उन इनपुट्स के बेसिस पे हमने जब काउंट किया तो स्टेज फियर या फिर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही कॉमन इश्यू निकल के आया था, जिसपे कि सभी लोगों को लगा कि एक सेशन होना चाहिए। तो ये जो सीरीज में हमारा ये सेशन में नया सेशन है आज, और दिस इज फोकस्ड ऑन स्टेज फियर एंड फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। किसी को पता है ये किसी के साथ होता है स्टेज फियर या पब्लिक स्पीकिंग का? मतलब किसी के सामने अगर बात करनी है, एक जन या दो जन से ज्यादा अगर लोग हैं और बात करनी है, खड़े होके बात करनी है, किसी को लाइफ में कभी घबराहट हुई है, किसी ने कोशिश करी है स्टेज पे बोलने की, या फिर जब शुरू में स्टेज में क्लास में बोलते थे, स्कूल में करते थे?
1: मेरा नाम फातिमा है। मुझसे बात नहीं होती है, घबराहट होती है सबके सामने बात करने में,
0: तो अभी तो
1: बात
0: आप
1: करने
0: इतने अच्छे से
1: जाती
0: बात कर रहे हो, घबराहट क्यों होती है फातिमा जी?
1: है। टेस्ट पे मुझसे बात नहीं हो पाती है।
0: स्टेज पे जाके बात नहीं हो पाती, ठीक है? अभी हम ये आप मानते हैं कि स्टेज पे जाके बात करने में घबराहट होती है, लेकिन अभी देखो आपको मिला के शायद 51 लोग आपको सुन रहे हैं, 51 पीपल आर लिसनिंग टू यू। अभी क्यों घबराहट नहीं हो रही है आपको? हो
1: वो तो रही थी अभी, लेकिन अब आपसे बात
0: रही
1: हुई तो कम हो गई।
0: अच्छा, घबराहट हो रही थी, फिर भी हिम्मत करा आपने और आप आगे आई और आपने उसको ओवरकम किया और फिर भी
1: जी
0: अपनी बात कहने की कोशिश करी। तो क्या फरा मैम ने इनकरेज किया आपको? क्या उन्होंने कहा कि यू नो यू कैन टॉक, ऐसा नहीं है कि तुम भी अपनी बात आगे रख सकती हो? तो अगर कोई हमें इनकरेज करे या अगर हम थोड़ा सा उस पर काम करें, तो शायद धीरे धीरे करके हम उस स्टेज फियर या लोगों के सामने बात करने का जो फियर होता है उसको ओवरकम कर सकते हैं। क्या हम सभी ये बात मानते हैं? अगर
1: जी
0: हम
1: मैम,
0: मानते हैं तो हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे।
1: जी मैम, मुझे पराही मैम ने कहा था आपको घबराहट होती है, आप मैम को बोलिए, वो आपको सोल्यूशन बताएंगी।
0: देखिए सॉल्यूशन किसी के पास नहीं होता, लेकिन टिप्स और टेक्निक्स होती हैं जिसके ऊपर हमें खुद काम करना पड़ेगा। ऐसा कोई गोली नहीं है कि मैं आपको बोलूं आप इसकी दो डोज सुबह ले लीजिएगा, दो डोज शाम को ले लीजिएगा, तो आपका जो पब्लिक स्पीकिंग का फियर है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी टिप्स हैं और आपको खुद पे अपनी मेहनत करना होगा, जिससे कि ये कोशिश करके धीरे धीरे हो सकता है ये फियर कम हो जाए। आप इतने अच्छे से बात करती हैं, आपकी आवाज इतनी अच्छी है, आप जब बात करती हैं तो आपकी आंखों में एक चमक रहती है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको खुल के बात करना चाहिए। और कोई है हमारे साथ जिसको डर
1: थैंक
0: लगता है स्टेज फियर? कभी अभी नहीं, हो सकता पहले लगता हो। मुझे बहुत डर लगता था, स्टेज फियर बहुत ज्यादा था एकदम। मैं किसी के सामने तो शायद बिल्कुल ही नहीं बोल पाती थी, स्कूल से ही ऐसा फियर था। इवन रीड में आके भी बहुत फियर था, वो तो मैम ने इनकरेज किया लगातार कि नहीं तुम लोग कर सकते हो, यू कैन डू। तो अगर कोई इनकरेज करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है, हम खुद पे काम करते हैं, तो वो काम आसान होता है धीरे धीरे। क्या कोई और कुछ कहना चाहता है? किसी और को ये फियर है या हम ये टॉपिक पे नहीं बात करना चाहते हैं?
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून।
1: मैम आबिदा रामपुर कलर से।
0: अच्छा आबिदा जी,
1: जी मैम, जैसे आपने अभी बोला कि सेम यही मेरे साथ होता था कि जब मैंने न्यू न्यू रीड ज्वाइन किया था, उस टाइम में लड़कियों तक से बात नहीं कर पाती थी। बहुत घबराहट फील होती थी कि मैं लड़कियों से अपनी बात समझा पाऊंगी या नहीं। लेकिन जब मैं रीड के साथ लगातार जुड़ी रही, बात करती रही, लाइफ स्किल्स के सेशन लेती रही, तो मेरे अंदर काफी घबराहट दूर हुई। और फिर अकबर सर ने काफी मुझे इंकरेज किया, बताया कि आबिदा आपके अंदर इतनी स्किल्स है और आप क्यों नहीं बताते हो, क्यों नहीं बोलते हो। तो फिर मैंने कोशिश की और आज मैं अच्छे से बात कर पाती हूँ आपसे।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपने कहा आपको ये फीडबैक मिला और आपने उस पर कोशिश करी। अच्छा आपको ये पता है कि सभी से मैं बात कर रही हूँ कि ये जो स्टेज फियर है या फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है रिसर्च का। और एक स्टडी हुई थी फॉरेन कंट्री में, इंडिया से बाहर ये स्टडी हुई थी, शायद इंडिया में भी हुई हो। ये 75% लोगों में रहता है किसी ना किसी लेवल पे, यानी कि 100 में से 75 लोग ऐसे होंगे। कुछ लोग पैदा होते हैं और उनको कॉन्फिडेंट होता है, वो शुरू से ही बहुत आउटस्पोकन होते हैं, उनको कोई झिझक नहीं होती अपनी बात रखने में, वो एक कैटेगरी है। बट उसके अलावा 75% लोग हैं, अगर 100 लोगों में गिनती करेंगे, उनको किसी ना किसी लेवल पे स्टेज फियर जरूर होता है। और इसका एक साइंटिफिक नाम है, कोई मुझे बता सकता है बिना गूगल करे कि उसका नाम क्या है? किसी को पता है? इस फियर का नाम है ग्लॉसोफोबिया। ग्लॉसो फोबिया, यानी कि ये आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ आपको ही है या सिर्फ गिने चुने लोगों को ही है। इसको एक साइंटिफिक नाम भी दिया गया है, इसका नाम है ग्लॉसोफोबिया। अगर आप सर्च करेंगे तो ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। ये बहुत ही कॉमन एंजाइटी है या फियर है ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है जब आप स्टेज पे जाते हैं, कोई बता सकता है क्या होता है? अगर आपको स्टेज पे भेज दिया गया है, माइक दे दिया गया है, तो क्या फियर होता है? क्यों आपको लग रहा है कि आपको स्टेज फियर है? क्या ऐसी चीजें होती हैं? हाथ कांपने लगते हैं, सांसें भारी होने लगती हैं, लोगों से आई कांटेक्ट करने में मुश्किल होता है, जो बोलना चाहते हैं वो भूल जाते हैं, ऐसा होता है किसी के साथ?
1: जी मैम, अर्चना बोल रही हूँ
0: हाँ जी,
1: मैम। एक्चुअली वो क्या होता है, पैर एकदम से कांपने लगता है, और हम जो बोल रहे होते हैं ना, तो बस पता नहीं लाइन गैप होने लगता है, उसके वर्ड जो है हम भूलने लगते हैं, पीच का लेवल हाई हो जाता है, और अजीब बहुत ही नर्वस फील होने लगता है।
0: वेरी गुड अर्चना, वेरी गुड, एग्जैक्टली ऐसा।
1: अभी अभी मैं आपको इवन मैं अभी आपको बोल रही हूँ तो मुझे गूज बम्स हो रहे हैं कि मैं यदि आप सामने रहते तो शायद मैं नहीं इतना बोल पाती।
0: अच्छा, बिल्कुल यही बात होती है कि जब हम किसी से बात करने जाते हैं तो हमें लगता है कि मुंह सूख रहा है और क्या बोलना चाह रहे हैं ना, जो बोलना चाह रहे थे वो भूल गए हैं हम। अच्छा, बात जो है आधी ही बीच में रह जाती है और हम उस पॉइंट से कहीं और डाइग्रेस हो जाते हैं, ऐसा होता है। फिर हाथ एकदम कांपते हैं, पैर एकदम ठंडे ठंडे होने लगते हैं कि आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है, किसी से आंख मिलाते हुए डर लगता है। अच्छा, भी ऐसा होता है कि ये टीचर ना मुझसे क्वेश्चन ना पूछे, मैं पीछे बैठ के आराम से, मतलब मुझे बस आई कांटेक्ट नहीं करना, जैसे आई कांटेक्ट होगा तो टीचर मुझसे क्वेश्चन पूछ लेगी। ये भी एंजाइटी हुई है किसी को? ये भी पार्ट ऑफ ग्लॉसोफोबिया ही है। तो हमें ये स्टेज फियर होता क्यों है, या पब्लिक स्पीकिंग में जो ये फियर होता है हमें क्यों होता है? ज्यादातर अगर मोटे मोटे उसको भागों में बांटा जाए तो हमें ये लगता है कि जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन, जो हमारा फर्स्ट या सेकंड सेशन था लाइफ स्किल्स का, कम्युनिकेशन स्किल, वो हमारे वीक है। यानी कि हम बोलते हुए घबराते हैं, या हमें बोलने में कौन से शब्दों को इस्तेमाल करना है उसमें हम घबराते हैं, हमारी प्रैक्टिस नहीं है बोलने के लिए, तो हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि जो बात हम रखना चाह रहे हैं दूसरे के सामने वो दूसरे के इंटरेस्ट की है, वो दूसरे को, हम ये जजमेंटल होना शुरू कर देते हैं कि क्या पता उसको मेरी बात पसंद नहीं आए, क्या पता वो मुझे जज जज करना शुरू कर दे, और इस चीज से घबरा के हम एंग्शियस हो जाते हैं, और फिर जो है हम शब्द भूलने लगते हैं और हमें लगता है कि शायद जो मैं बोल रहा हूँ या मैं बोल रही हूँ ये दूसरे के सामने मैं बोलने की काबिल नहीं हूँ, सक्षम नहीं हूँ। ये भी हो सकता है कि शुरुआत में या बचपन में हमने कभी कोशिश करी हो और मजाक बना दिया गया हो, हमारा हमारी बात का मजाक बना दिया हो, तो वो दिमाग में ना कहीं सबकॉन्शियस में यहाँ पे पीछे फिट हो जाता है कि अगर मैं बात करूंगा या बात करूंगी लोगों के सामने तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो पुराने बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से भी कभी कभी हमें वो स्टेज फियर पैदा होने लगता है। शुरुआत में हो सकता है ना हो, लेकिन आप कभी स्टेज पे गए अपनी असेंबली में, या अगर आप ट्रेनर हैं, आप ट्रेनिंग करते हुए कुछ ऐसा बैड एक्सपीरियंस हुआ है, या आपको माइक दिया है स्टेज पे कुछ बोलने के लिए और आपके साथ कुछ आप नहीं बोल पाए, तो वो भी हमारा कॉन्फिडेंस और कम कर देता है। ऐसा होता है किसी के साथ, या हुआ है किसी के साथ? मुझे लग रहा है आप लोग बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, शायद इसी वजह से ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हुए हैं आपके साथ। और किसी वजह से स्टेज फियर आपको लगता है होता है बच्चों में, हम में, या फिर इन जनरल पब्लिक में स्टेज फियर होता है? किसी के पास कोई इनपुट है? क्योंकि यही 5 रीजंस नहीं है, इसमें बहुत सारे और भी रीजंस हैं। कई बार हमें बोलने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया जाता जब हम छोटे होते हैं, या हमारे घर में, या हमारे स्कूल में अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो सबको तो कॉमन नहीं दिया जाता ना, जो वॉलेंटियर करेगा, हाँ बेटा तुम बोल लो असेंबली में, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में शुरुआत से छोटे से ही शुरू होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये जो फियर ऑफ टॉकिंग इन पब्लिक है ये और बढ़ता जाता है कम होने की बजाय, अगर हम इस पे काम नहीं करें या हम प्रैक्टिस नहीं करें। क्या सब मानते हैं इस चीज को?
1: नमस्ते नमस्ते मैम।
0: नमस्ते ईशा जी।
1: मैम कभी कभी ऐसा होता है कि हम बच्चों को खड़ा करते हैं जैसे प्रेयर वगैरह में कुछ बोलने के लिए असेंबली में, कि कुछ पोयम सुनाओ, तो
2: बच्चों को आने के बावजूद भी वो नहीं बोल पाते, अपने घर पे तो सुना देते हैं लेकिन हम लोगों को नहीं सुना पाते, क्योंकि उनमें एक डर सा पैदा होता है कि हम सबके सामने बोलेंगे तो हमसे बोला नहीं जाएगा, या मैम से डर लग रहा है, इस चक्कर में बच्चे बोल ही नहीं पाते, एक फियर सा रहता है हर समय।
0: तो वो फियर ऑफ जजमेंट है, यानी कि दूसरों का ओपिनियन जो है, जो नेगेटिव ओपिनियन है, उसको हम पहले से ही सोच लेते हैं हम बोलेंगे और लोग हमें नेगेटिव जज करेंगे, है ना। फियर ऑफ जजमेंट जो होता है, दूसरे लोगों के ओपिनियन, नेगेटिव ओपिनियन को हम ज्यादा बढ़ावा देते हैं, बल्कि जो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस है, आप कह रहे हो कि बच्चे को पोएम आती भी है तभी भी वो सुनाने में झिझकता है, क्यों? क्योंकि वो जब आसपास के बच्चों को देखता है या दूसरे टीचर्स खड़े हैं या और पेरेंट्स खड़े हैं असेंबली में, तो उसको लगता है कि ये मेरे अंदर जो है मेरे को जज करेंगे, और अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो वो मुझे हंसेंगे या मेरा मजाक उड़ाएंगे या कुछ करेंगे। इसे कहते हैं फियर ऑफ जजमेंट। अभी तो आप बच्चे की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं ना, ये फियर ऑफ जजमेंट मतलब दूसरों की ओपिनियन की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती रहती है, और हम अपनी कॉन्फिडेंस पे काम नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि हम बोले ही नहीं ताकि हमें जज ही ना किया जाए। क्या ऐसा होता है? जब हम बोलेंगे ही नहीं तो हमें जज कौन करेगा? नहीं, बात सही है। जब हम हाथ ही नहीं खड़ा करेंगे आंसर देने के लिए तो हमें कोई जज ही नहीं करेगा। तो हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की बजाय वो फियर को और बढ़ावा देते हैं। बट हमारा मकसद यही है कि जब हमारे यहाँ से जो बच्चे जा रहे हैं या जो हमारे यहाँ से महिलाएं आगे काम करने जा रही हैं, एटलीस्ट वो अपनी बात को कह सके। पब्लिक स्पीकिंग मतलब अगर 10 लोग भी खड़े हैं, जरूरी नहीं है कि पूरी रैली हो या पूरा ऑडिटोरियम भरा हो, उन लोगों के सामने ही बात करनी है। अगर 10 लोग भी खड़े हैं और अपनी बात को अगर हम सही से नहीं रख पा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं फेयर है, मतलब हम कहीं ना कहीं उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है। इस फियर को कम कौन करेगा? अगर ये हमारे अंदर है तो हमको ही इस पे काम करना पड़ेगा, राइट? इसके लिए हम कुछ टिप्स और टेक्निक्स कर सकते हैं कि पहले तो हम इसकी बहुत ज्यादा ये ना करें कि हम जो जो दूसरे हमें देख रहे हैं या जो तो दूसरों का ओपिनियन है वो ही सच है। हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे पैदा होगा? पहले तो ये है कि जो टॉपिक पे आपको बात करनी है, मान लीजिए कोई टॉपिक अगर ऐसा है जिसपे कि आपको पता है आपको बोलना है, तो आप उस टॉपिक पे अच्छे से रिसर्च करके जाइए। अगर आपको पता है आपने क्या बोलना है, अगर 10 पॉइंट्स आपने बनाए हुए हैं, तो आपको पता है कि एक एक मिनट आप इन 10 पॉइंट्स पे बोलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन करना है ऑडियंस से, तो क्वेश्चन करेंगे और आपका स्पीच खत्म हो जाएगा। अगर डिबेट है या अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे आपको अपनी व्यू पॉइंट देने हैं, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से रिसर्च करके जाइए। जब आपको पता है आपने क्या बोलना है, तो आप स्टैमर नहीं करेंगे, यानी कि सोचेंगे नहीं। ऐसा होता है ना, हम बात बात करते करते ऊपर देखने लगते हैं, फिर हमें याद नहीं आता, फिर हम करते हैं ये सब चीजें भी हम अवॉइड करेंगे, कर सकते हैं अगर हम अपने टॉपिक, जैसे मुझे आज आपके साथ ये वाला टॉपिक पे बात करना था, तो मैं 2 दिन से रिसर्च कर रही थी इस टॉपिक के ऊपर, और इस टॉपिक के ऊपर मेरे को लगा कि हम एक बिगनर्स लेवल के लिए कितने पॉइंट्स हम कवर कर सकते हैं। अब एक दिन के अंदर किसी का कॉन्फिडेंस तो बिल्ड नहीं हो सकता कि वो स्टेज पे जाके और पूरा अपना स्पीच दे दें, लेकिन कुछ ऐसी टिप्स छोड़ सकते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स छोड़ सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस छोड़ सकते हैं। तो मैंने अपने टॉपिक पे रिसर्च करी, अब मुझे पता है, और फिर मैंने प्रैक्टिस करी कि अच्छा इस पॉइंट पे मुझे क्या बोलना है, अगले पॉइंट पे मुझे कौन सा एग्जाम्पल देना है। तो इससे क्या है, आपको भी आसानी है और मैं टाइम भी वेस्ट नहीं कर रही, और मुझे कॉन्फिडेंस भी है कि मैंने क्या बोलना है आपके साथ। तो फर्स्ट इज कि आप अपने टॉपिक पे रिसर्च करेंगे। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है और आपको इम्प्रॉम्प्टो नहीं, पहले से पता है आपका टॉपिक, तो आप उस पर रिसर्च करके जा सकते हैं, ठीक है। जब आप बात कर रहे हैं, अपने पॉइंट्स को सिंपल रखिए, बहुत बड़े बड़े शब्द और बहुत सारा डेटा मत यूज करिए, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े शब्द और डेटा हमें कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। जब आप अच्छे स्पीकर बन जाएंगे, तब आप कोशिश करके उसको अपने टॉक में इंक्लूड कर सकते हैं। बट अगर आप शुरुआत में पब्लिक स्पीकिंग पे या स्टेज पे बोलने पे काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी जो आपकी बात आप रखना चाह रहे हैं उनको छोटे छोटे सरल सेंटेंसेस में तोड़ के आगे बोलने की कोशिश करें। अगर आप अपनी जो बात कहना चाह रहे हैं उसको आपने लिख लिया छोटे छोटे शब्दों में, उसको छोटे छोटे सेंटेंसेस में तोड़ दिया, तो अब आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मैंने पहले भी कहा था कि शीशे के सामने प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि शीशे में आप देख पाते हैं कि आप कैसे लग रहे हैं। आजकल तो आप मोबाइल में भी अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो, और देख सकते हैं कि जब मैं अपनी बात कह रही हूँ स्टेज पे या पब्लिक स्पीकिंग में, कुछ मेरे को किसी बात पे चर्चा करनी है तो मैं कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ। और हो सकता है मैं हाथ ज्यादा मूव कर रही हूँ, जैसे मेरी आदत है मैं हाथ काफी मूव करती हूँ, तो क्या वो अच्छा लग रहा है, क्या वो बुरा लग रहा है। कई लोग होते हैं वो ऐसे पेन को भी, पेंसिल को भी ना ऐसे ऐसे करते हैं या ऐसे ऐसे भी करते हैं, तो इवन स्टेज पे भी, या माइक पकड़ा है तो माइक को ऐसे ऐसे कर लेंगे, तो माइक पे आप जो बोल रहे हैं ना वो लॉस्ट हो जाता है। जब आपने माइक छोड़ा तो माइक इधर उधर करा, क्योंकि हाथ का मूवमेंट का आदत होता है, तो वो माइक से जो आप कहना चाह रहे हैं वो लॉस्ट हो जाएगी आवाज। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी किसी भी चीज को आप माइक बना लीजिए, इसको माइक बना लिया, अब मैं शीशे के बात करना है। तो पहला हो गया कि हमने अपने पॉइंट्स बना लिए, तो जिस टॉपिक पे मुझे बात करनी है वो टॉपिक कि मैंने

0: जो कहना चाह रहे हैं वो शब्द ठीक से बन के बाहर नहीं आता, फंबल हो जाता है। अगर आप किसी स्टेज पे पहुंच बोलने वाले हैं ना, तो कोशिश करिए कि वेन्यू, वेन्यू मतलब जहां पे आपने बोलना है, स्कूल का वेन्यू है या कोई इंटरव्यू है, इंटरव्यू में पहले से पहुंच जाइए ताकि आप एनवायरनमेंट को पहले से देख लें। अच्छा, जगह कैसी, कई बार क्या होता है जगह इतनी इंटिमिडेटिंग, इंटिमिडेटिंग मतलब वो प्रभावित कर लेती है आपकी सोच को, और आपको जो है आप जो कहना चाह रहे हैं उसको आप नहीं कह पाते ठीक तरीके से, क्योंकि आप इंटिमिडेट हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं उस एनवायरनमेंट से। बट अगर आप पहले से ही वहां पहुंच जाएं, 5-7 मिनट पहले पहुंच जाएं, वहां बैठ जाएं, बैठ के आप देखें, अच्छा, यहाँ से लाइट आ रही है तो यहाँ से मेरे को यहाँ पे खड़े होके बोलना है, ये 10 लोग हो सकता है सामने, अगर 10 चेयर्स पड़ी हैं तो अच्छा ये 10 लोग यहाँ से देखेंगे, तो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बन जाता है। क्या आप मानते हैं इस चीज को कि अगर पहले से ही आप चले जाते हैं कहीं किसी जगह पे और फिर धीरे धीरे 1 घंटा पहले ही पहुंच जाइए, कहने का मतलब है कि अगर आपको बात करनी है या कुछ बोलना है तो इमीडिएटली, कभी कभी हम एंटर करते हैं किसी रूम में ना, तो वो रूम के एनवायरमेंट से भी हम कंफर्टेबल नहीं होते। तो जाकर आप चाहें तो अपने वेन्यू पे पहले से पहुंच जाइए, उसके साथ आप एक अपना रिश्ता बना लीजिए कि हाँ मेरे को पता है कि ये इस तरह से दिखाई देता है और इस तरीके से लाइटिंग है और यहाँ पे खड़े होके मुझे बोलना होगा और ये मेरा टॉपिक है, इसको मैंने प्रिपेयर करा है, प्रैक्टिस करा है। अपनी सांस, ब्रीदिंग को हमने पुराने कई सेशंस में, मेंटल हेल्थ के सेशंस में, इवन जो योगा का सेशन था उसमें ब्रीदिंग के ऊपर बात करी थी कि ब्रीदिंग से जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो कई हद तक कम हो जाता है। अगर आपको किसी टॉपिक पे बोलने को बोला जा रहा है और आपको घबराहट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम ब्रीदिंग पे भी काम कर सकते हैं, यानी कि लंबी सांस ली, लंबी सांस छोड़ी, इससे क्या होगा, कुछ हद तक हमारी जो एंजाइटी है वो कम हो सकती है। हमने प्रिपेयर तो पहले ही कर लिया, हमारे पास हमारे पॉइंट्स भी हैं बोलने के लिए, हमने प्रैक्टिस भी कर ली शीशे के सामने, हमने ये भी देख लिया कि वेन्यू कैसा है, मैं कहाँ जाके बोलना है मुझे, या बोलना किस जगह पे खड़े होके बोलना है। और अब अगर घबराहट कम करनी है तो हम आंखें बंद करके या वैसे डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, इससे भी कई हद तक हमारा जो है मेंटल एक स्टेबिलिटी आ जाती है। कभी कभी हाथ ठंडे हो जाते हैं तो आप हाथ को भी ऐसे रब कर सकते हैं। जब आपका शरीर कंफर्टेबल होगा ना, तो आपका जो घबराहट है कई हद तक कम हो जाएगा। समझ आ रही है सभी को?
1: यस मित्र जी, वेरी नाइस
2: जी मैम,
3: यस मैम,
0: लग रहा है कि कुछ हेल्पफुल है ये टिप्स,
4: यस मैम,
2: काफी है मैम।
0: अच्छा, आपने देखा होगा बड़े बड़े स्पीकर्स जो होते हैं, जो काफी इनफैक्ट अच्छे स्पीकर्स होते हैं, वो कभी कभी ना अगर उनको काफी डेटा देना है या कोई फैक्ट्स, फैक्ट्स मतलब जो सत्य है उसको कोट करना है, तो वो क्यू कार्ड, छोटे क्यू कार्ड्स देखें आपने, छोटे क्यू कार्ड्स होते हैं, मतलब पेपर को छोटा छोटा काट के वो अपने हाथ में रखते हैं। कभी देखा है आपने, कोई स्पीकर्स हैं या फिर जो जो मास्टर ऑफ सेरेमनी यानी कि जो होस्ट कर रहे हैं, वो अपने हाथ में क्यू कार्ड्स रखते हैं, किसी ने देखा है क्यू कार्ड, क्या होता है क्यू कार्ड?
1: नहीं, देखा नहीं कभी।
0: क्यू कार्ड क्या होता है, छोटा कार्ड होता है, उसपे आप जो बोलने वाले हैं उसके मेन मेन पॉइंट्स लिखे होते हैं। मान लीजिए आज मुझे लाइफ स्किल्स पे बोलना है, तो लाइफ स्किल्स पे मुझे कौन सा टॉपिक कवर करना है, पब्लिक स्पीकिंग, तो पब्लिक स्पीकिंग पे मुझे कौन से टॉपिक कवर करने, पब्लिक स्पीकिंग क्यों होता है, पब्लिक स्पीकिंग के लिए हम कौन से टिप्स एंड टेक्निक्स कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है, फियर ऑफ पीपल जजिंग यू, फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमने अभी पढ़ा था ना, ग्लॉसोफोबिया, ग्लॉसोफोबिया बोलते हैं इसको, है ना। तो ये चीजों को हम क्यू कार्ड पे लिख सकते हैं। प्रेजेंटेशन हो सकता है हर हर किसी के पास वो ना हो, आप जहाँ पे बोलने जा रहे हैं हो सकता है वहां पे पीपीटी ना हो, अगर मेरे पास पीपीटी नहीं होती तो मैं छोटे छोटे क्यू कार्ड माने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पे अपने की पॉइंट्स को छोटे शब्दों में, और जो मैं कहना चाह रही हूँ उसके अलग अलग पॉइंट्स बना के मैं छोटे छोटे 5 या 6 क्यू कार्ड्स रख लेती, ताकि जो पॉइंट मैं बोलना चाह रही हूँ वो मिस ना हो जाए। आप अपने

0: जैसे अगर सेशन ट्रेनर्स हैं जो हमारे, वो ट्रेनर्स अपने सेशन को प्लान करते हैं, सेशन को प्लान करते हुए वो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, आज मुझे ब्लाउज बनाना सिखाना है तो मैं कटिंग सिखाऊंगी, मैं उसकी ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी और मैं उसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी, फिर उसको मेजर कैसे करना है और अलग अलग ब्लाउज कैसे बनाना है, ये 5 पॉइंट लिखते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं। उसी को अगर हम एक छोटे कागज पे लिख रहे हैं तो उसे क्यू कार्ड बोलते हैं। क्यू कार्ड मतलब अगर मैं पॉइंट भूल रही हूँ तो वो मुझे क्यू कार्ड एक क्यू एक एक आइडिया दे देगा कि अच्छा मुझे इस पॉइंट पे भी बात करनी थी, कहीं मैं भूल ना जाऊं। समझ में आया? अदरवाइज मैं एग्जाम्पल्स या फोटोग्राफ्स के थ्रू और भी बता सकती हूँ। किसी को समझ में आया क्या? कोई बता सकते हैं क्यू कार्ड्स क्या होते हैं? कभी किसी ने यूज करा है क्यू कार्ड अपने ट्रेनिंग सेशन में? हमारे साथ बहुत सारी टीचर्स जुड़ी हुई हैं, क्या टीचर्स ने यूज किया है क्यू कार्ड कभी?
1: हेलो जी मैम, सुमन
0: जी। सुमन जी
1: हाँ जी मैम, जैसे अगर हमें कहीं पे बोलना होता है तो पहले मैं क्यू कार्ड का मतलब तो मुझे खैर आज ही पता लगा है, हाँ जी, पर मैं अपने नोट्स हमेशा लिख लेती हूँ कि मुझे क्या क्या बोलना है वहां पे, ये मैं हमेशा करती हूँ उस चीज के लिए, हाँ जी। और बोलते हुए थोड़ा सा मुझे लगता है मैं ना बीच बीच में रुक जाती हूँ कभी कभी, हाँ जी।
0: कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस से होता है, जितना ज्यादा आप खुल के कोशिश करेंगे वो रुकने रुकना, पॉज इज नॉट अ नेगेटिव थिंग, अगर आप अपनी बात कह रहे हैं, और अननेसेसरी पॉज नहीं है, एक पॉज दिया है आपने अपने थॉट्स को कलेक्ट करने के लिए तो वो गलत नहीं माना जाता, वो
1: जी
0: माना
1: जी
0: जाता है कि आप अपनी सोच को 2 सेकंड दे रहे हैं और उसको रिकलेक्ट करके फिर से उस मुद्दे पे आ रहे हैं, है ना। और
1: जी
0: क्यू
1: मैम
0: कार्ड मतलब वो आपको इशारा देता है, क्यू का मतलब होता है इशारा देना कि अच्छा ये टॉपिक था, इस पे ये वाला पॉइंट भी आपको बोलना था। तो अगर आपके
1: जी
0: टॉपिक
1: मैम
0: में 6 पॉइंट्स हैं तो आप हर एक पॉइंट को अलग अलग क्यू कार्ड पे लिख सकते हैं बड़ा बड़ा, ताकि आपको मेहनत ना लगे उसको पढ़ने में, क्योंकि इतने सारे 50 लोग आपको घूर रहे हैं और ऐसे सबकी आंखें ऐसे हो रही कि अच्छा ये
1: जी
0: क्या
1: मैम
0: बोलने वाला है, आगे क्या बोलेगा या बोलेगी, तो घबराहट हो जाती है। अगर बड़ा बड़ा लिखा हो कि अच्छा अब मुझे ये बोलना है, तो वो आपका जो अगर ध्यान भटक रहा है या कॉन्फिडेंस कम हो रहा है ना, तो योर कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये तो मैंने रिहर्सल करी थी, इसके तो मैंने बात करी थी, तो मैंने प्रैक्टिस
1: जी
0: करी
1: मैम
0: थी, तो मैं ये बात कह सकती हूँ। तो वो क्यू क्यू का मतलब इशारा करना कि अच्छा ये जो है आप ये वाला पॉइंट भूल रहे हैं और ये भी आपको बोलना है।
1: जी मैम,
0: अगर
1: इसीलिए मैं लिख
0: प्रेजेंट,
1: लेती हूँ हमेशा।
0: हाँ एब्सोल्युटली, हाँ आप लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। अगर प्रेजेंटेशन नहीं है तो जरूर लिख लीजिए या क्यू कार्ड्स का यूज करिए, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है आपको सारी बात कवर करने में और सारे की पॉइंट्स कवर करने में। अगर प्रेजेंटेशन है भी तभी भी आप लिख के जाएगा, बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में भी ऐसा होता है कि आपने प्रेजेंटेशन बनाई, मेहनत करके 2-3 दिन लगा के प्रेजेंटेशन बनाई, प्रैक्टिस भी करी, और जब प्रेजेंटेशन को लगाया तो टेक्नोलॉजी ने धोखा दे दिया, वो प्रेजेंटेशन चली ही नहीं या कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो फिर आप घबराने लग जाएंगे, अरे अब मैं क्या बोलूं, मुझे तो पता ही नहीं है मुझे क्या बोलना है, मेरे तो पॉइंट्स ही लॉस्ट हो गए। तो अगर आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है या आपके पास ऐसे छोटे छोटे कार्ड है, क्योंकि बड़ा सा पर्चा लाएंगे ना तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में कि अच्छा ये तो लिख के लाए हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट टू बिकम अ बेटर स्पीकर या टू बिकम अ मतलब अच्छा और अच्छा स्पीकर बनने के लिए आप क्यू कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख के भी ला सकते हैं, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: थैंक यू मैम।
0: और कोई कुछ शेयर करना चाहता है एक्सपीरियंस?
2: जी एक बार मेरे साथ क्या हुआ, हम लोग का यहाँ पे 26 जनवरी का फंक्शन था हमारे सेंटर पे,
0: जी
2: तो मैंने कोई स्पीच प्रिपेयर नहीं करी थी, बट मेरे स्टाफ ने और गांव वाले सब इकट्ठे थे, देयर वाज ऑलमोस्ट 800-1000 पीपल वर देयर, और चेयर सब भर गई, लोग खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इधर। तो मेरे को एकदम से माइक पकड़ा दिया गया, एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट, आई वाज अबाउट टू स्पीक, तभी मैंने देखा मेरे जो जेठ हैं वो सामने खड़े हैं, उनको देख के मैं एकदम घबरा गई, पता नहीं मुझे क्या हुआ, क्योंकि वो बहुत खिंचाई करते हैं, वो ना बहुत मजाक बनाते हैं चीजों को लेके,
0: फियर ऑफ
2: तो मैं
0: जजमेंट।
2: राइट राइट तो मैंने एकदम से इमेजिन किया वो सामने है ही नहीं, और मैंने उनको
0: एब्सोल्युटली
2: बिल्कुल नजरअंदाज करके आई स्पोक सो वेल, सारी चीजें मैंने उसमें कलेक्ट करी और पूरा सबको डिटेल में बताया कि हु वी आर, व्हाट वी आर डूइंग हियर, सब कुछ सबको बताया, दैट वाज रियली वेरी नाइस, बट वो एक मिनट के लिए तो मैं घबरा गई थी तो फिर मैंने वही अब वही चीज मैंने सोचा वो है ही नहीं सामने,
0: है ही नहीं बिल्कुल। जो चीज आपको घबराहट दे रही है, यहाँ पे सीमा जी के साथ क्या हुआ, उनको वो फियर ऑफ जजमेंट आ गया कि तो मेरी फैमिली है, अच्छा ये मेरी खिंचाई करेंगे बाद में जाके। लेकिन अब इतनी बड़ी ऑडियंस थी, 800,000 लोग थे, उनको भी लगा कि भाई वो इम्पोर्टेंट है या मेरा कॉन्फिडेंस, जो मेरी नॉलेज है, जो मैं दिन रात काम करती हूँ, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपकी फैमिली है, लेकिन उस वक्त वो क्या कर रहे थे, वो नेगेटिव फियर आप में पैदा कर रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं किया, आपके ही दिमाग ने आपको बोला कि सीमा देखो हो सकता है वो कल को तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, बट यू हैड दैट कॉन्फिडेंस, आपने वो कॉन्फिडेंस था जिसने उसको ओवर पावर किया। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस इज व्हाट द स्टेज फियर इज, कि दूसरे के जजमेंट को लेके हम इतना बड़ा अपने दिमाग में हवा बना लेते हैं कि हम अपना जो बात कहना चाह रहे हैं उसको भूल जाते हैं। दूसरी बात ये भी होती है कि हमें पता ही नहीं हमें क्या कहना, तो नेचुरली स्टेज फियर होगा ही, अगर हमें पता ही नहीं हमें बोलना क्या है तो स्टेज फियर आ ही जाता है। तो इस पे पैनिक नहीं करें, इस पे वर्क करें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू वर्क ऑन इट स्लोली, स्टेप बाय स्टेप। कुछ टिप्स जो हमने अभी शेयर करी हैं उसको फॉलो करें। जब आप कहीं बोलने जा रहे हैं उससे पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं शीशे के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने। कोशिश करिए कि छोटे ग्रुप से स्टार्ट करिए, अगर आप न्यू स्पीकर हैं, शुरुआत कर रहे हैं तो छोटे ग्रुप से स्टार्ट करिए। और ये मत सोचिए कि आपका दूसरे लोग कितना हंसेंगे या कुछ, जो आप कहना चाह रहे हैं प्रिपेयर इट वेल एंड ट्राई एंड डिलीवर इट। और फीडबैक आप ले सकते हैं, फीडबैक से डरिए मत, फीडबैक पे काम करना सीखिए। अगर आपके दोस्त ने या आपके फैमिली में किसी ने बताया है कि आप बात करते हुए ऐसे, ये कुछ भी पॉइंट्स आपको अगर बताए हैं तो आप उस पर काम कर सकते हैं, उससे घबराना नहीं है। सो स्टार्ट विथ स्मॉल ऑडियंसेस, टेक पॉजिटिव फीडबैक लीजिए और उस पर काम करिए। बहुत हद तक अगर आप दूसरे लोगों को बोलते हुए सुनते हैं तो हम जरूर सीखते हैं, क्योंकि हम जो सीखते हैं ना वो हमारी एक इंद्री है बोलने वाली, बट और जो बाकी की इंद्रियां हैं जब हम सुनते हैं तो वो भी हमारे काम में आती हैं। आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, तो हम जब दूसरे लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं ना उससे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है। आप किसी को हिंदी में बोलते हुए सुन सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हुए सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं कि उनका टॉकिंग स्टाइल क्या है और एक अपना टॉकिंग स्टाइल डिवेलप कर सकते हैं। तो अगर आपको फियर ऑफ टॉकिंग इन पब्लिक है तो आप जरूर जो मोटिवेशनल वीडियोज हैं, फ्री वीडियोज हैं ऑनलाइन, उनको देखिए, उससे काफी हद तक आपको टिप्स मिलेंगी कि आपको किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है, जब आप कहीं पे बोलने जा रहे हैं आप अपने आप को कंफर्टेबली ड्रेस करिए। अगर आपका ड्रेस अप कंफर्टेबल नहीं है ना, अगर आप उस ड्रेस अप में कंफर्टेबल नहीं है आप कभी भी अच्छी बात नहीं रख पाएंगे। आप हमेशा कॉन्शियस रहेंगे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसी दिख रही हूँ। दैट डजंट मीन कि बहुत मेकअप करके या बहुत डेकअप होके जाइए। अगर आप प्रोफेशनली बोल रहे हैं तो हमने आई थिंक फिफ्थ या सिक्स्थ सेशन में टिप्स थी कि हाउ टू ड्रेस अप प्रोफेशनली। प्रोफेशनली ड्रेस अप होके जाइए और अवॉइड करिए ऐसी चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। बड़ी बड़ी बालियां चूड़ियां जब आप पहनेंगे ना तो वो डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। आई एम नॉट सेइंग डोंट डू दिस, आई एम सेइंग कि अगर वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या आपको लग रहा है वो आपको स्पीकिंग में या जो स्टेज शो है उसमें प्रॉब्लम देगा, तो आप अपना कंफर्ट पहले देखिए कि मैं किस चीज में कंफर्टेबल हूँ। ऐसा भी नहीं कि चप्पल में चले जाएं, प्रोफेशनल ड्रेसअप में जाएंगे लेकिन एक कंफर्टेबल चीज में जाएंगे। कोई बहुत टाइट कपड़े, बहुत ऐसे कपड़े जो पब्लिकली हम नहीं पहनने चाहिए या एक प्रोफेशनली नहीं पहनने चाहिए वो अवॉइड करने चाहिए। जब आप कहीं बोलने जा रहे हैं तो खाना अच्छे से खा के जाइए, क्योंकि अगर आपका शरीर जो है वो कंफर्टेबल होगा, अगर उसे भूख लग रही है या आपने बहुत सारा चाय कॉफी पी लिया है और एसिडिटी हो रहा है, तो जब आप कंफर्टेबल फिजिकली नहीं है तो आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे पब्लिक स्पीकिंग के लिए। एम आई राइट? अगर आप बहुत सारा खाना खा लेंगे तो क्या होगा, नींद आने लग जाएगी, हमारी एनर्जी खुद ही कम हो जाएगी। अगर हमारी एनर्जी कम हो गई तो हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो उतने अच्छे से हम नहीं कह पाएंगे। खाना खाइए, हल्का खाना खाइए। अगर आप एक लार्ज गैदरिंग को एड्रेस कर रहे हैं या अगर आपको पता है कि आप में नेगेटिव एनर्जी आ सकती है, आलस आ सकता है, उबासी आ सकती है. अब आप स्टेज पे बात करें और बीच में ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा. नहीं तो कोशिश करिए कि बहुत हैवी ऑयली खाना ना खाएं अगर आप नेक्स्ट स्पीकर हैं या आप आपका जल्दी ही बारी आने वाला है. लेकिन भूखे भी मत रहे, पेट में गुड़गुड़ हो रही होगी तो वैसे ही हाथ पांव सब ठंडे हो जाएंगे, बिल्कुल हम बोल नहीं पाएंगे. लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, प्रैक्टिस वेल, दैट इज द ओनली, मैंने पहले भी बताया कोई गोली नहीं है कि दो दो डोज सुबह लीजिए, दो डोज शाम को लीजिए और अच्छे पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे. नहीं, हमें खुद पे काम करना होगा. टिप्स हमने शेयर करी, इन टिप्स पे काम करेंगे डेफिनेटली. मैं बता रही हूँ कि ये प्रैक्टिस से ही बेटर हो सकता है. तो अपने टॉपिक पे रिसर्च करेंगे तो ही आप अच्छे से बात कर सकते हैं. कभी कभी जो अच्छे स्पीकर होते हैं ना, वो ऑडियंस के साथ एंगेज करते हैं. मतलब जैसे हम कोशिश करते हैं आप लोगों से बात करने की, ताकि ऐसा ना हो कि ये बोरिंग हो जाए. हो सकता है आपके ऑडियंस आपसे एंगेज नहीं करना चाहते, तो उसमें आपकी कोई कमी नहीं है. हो सकता है टॉपिक उनका इंटरेस्ट का ना हो, हो सकता है उनको समझ नहीं आ रहा, या उनके दिमाग में क्या बातें चल रही हैं वो उस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके साथ इंटरेक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है. तो घबराइए मत. अगर आप अपने कोई क्वेश्चन पूछते हैं और कोई आंसर नहीं आता है तो घबराइए मत. स्टिल ट्राई एंड एंगेज विद योर ऑडियंस. सो उससे क्या होगा, आपको एक इंटरेक्टिव सेशन करने में आसानी होगी और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होगा. बट ये सब चीजें तब पॉसिबल नहीं है अगर आपको एक टॉपिक पे बोलने को बोला जाए. ये तभी पॉसिबल है अगर आप ट्रेनिंग में हैं या आप टीचर हैं, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है. बट अगर आपको एक लेक्चर, मतलब एक टॉपिक पे बोलना है, डिबेट है, या फिर किसी टॉपिक पे आपको सिर्फ बोल के जाना है, तो आप एंगेज नहीं कर सकते. वो तो सिर्फ ऑडियंसेस को सुनना है और वो दैट इज अबाउट इट. तो अपने जो ऑडियंस है ना, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आप जो अपनी बात कहना जा रहे हैं वो किसके लिए कह रहे हैं. जैसे अभी मुझे पता था कि ये हमारे लाइफ स्किल का जो सेशन है वो किस एज ग्रुप के लिए है. तो जो हमने अपने सेशंस प्रिपेयर करे और जो इसका नंबर ऑफ स्लाइड्स रखा, वो इसी हिसाब से रखा कि हम इसको एक घंटे में खत्म भी कर ले, ये सरल भाषा में भी हो, इसमें जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स, वो कवर हो जाए. बहुत इस पे पता है लोगों ने बहुत रिसर्च करी है पब्लिक स्पीकिंग पे, इसके बहुत सारे टूल्स एंड टिप्स हैं. अगर हम इसी एक फर्स्ट सेशन में ही वो सारी चीजें करेंगे ना, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा. तो हमारे ऑडियंस कौन है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी हमें हेल्प करता है हमारे टॉपिक पे प्रिपेयर करने के लिए. मेरी आदत है, जैसे कि अगर मैं ट्रेनिंग सेशन में हूँ तो मैं लोगों के बीच बीच में जाके भी क्वेश्चन पूछती हूँ. अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपके आसपास 10-15 लोग, 25 लोग बैठे हैं और आप कंफर्टेबल हैं लोगों के बीच में जाके बोलने का, तो वो भी एक सही तरीका है. अगर आप कंफर्टेबल हैं एक पोजिशन पे खड़े होके बोलने का, वो भी कंफर्टेबल है. इसमें कोई सही या गलत नहीं है. बट आप ये देखिए कि अगर आप ज्यादा मूव अराउंड कर रहे हैं तो कहीं वो डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा. कभी हॉल इतना बड़ा होता है कि पीछे के लोग क्या सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, या अगर आप स्टेज पे होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता. तो जैसे मैंने कहा, आप अपना एक तरीका अपना सकते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग के टाइम आपको किस तरीके का तरीका अपनाना है. एक जगह पे खड़े होकर बोलना आपके लिए कंफर्टेबल है. अगर आप ट्रेनिंग सेशन में है तो एंगेज कर रहे हैं अपने ऑडियंसेस के साथ, तो आप थोड़ा बहुत चल के भी जा सकते हैं उनके पास, उनको माइक दे सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनको एंगेज कर सकते हैं. जैसे कि अभी सीमा जी ने कहा कि उनको आई कांटेक्ट में प्रॉब्लम आया कि उनके जो फैमिली मेंबर थे वो आए और उनसे वो आई कांटेक्ट करा जब उन्होंने, तो उन्हें लगा कि मैं सब कुछ भूल रही हूँ. अगर आई कांटेक्ट मतलब दूसरे की आंखों में डायरेक्टली देखने से आपको डर लगता है और आप शुरुआत में काम करना चाहते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, तो ज्यादा देर तक किसी एक आई कांटेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं. जैसे कि अगर आप किसी को लगातार देखते रहते हैं ना, तो थोड़ी घबराहट होने लगती है, अब ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में, अब ये मेरे बारे में कुछ तो गलत ही सोच रहा है, वो इतना ब्लैंक फेस, कभी कोई कुछ बोल रहा होता और हम लोग ऐसे देख रहे होते हैं, होता है ऐसा, तो हमें लगता है अब ये पता नहीं क्या सोच रहा है. अगर ऐसा है तो आई कांटेक्ट मोर देन 5 सेकंड्स आप अवॉइड कर सकते हैं. आपके सामने अगर ऑडियंस है तो आप एक तरफ, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, चौथी तरफ, फिर आप अवॉइड करके, जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप आई कांटेक्ट करिए, उनके साथ इंटरेक्ट करिए, ये धीरे धीरे ही बिल्ट हो सकता है। कभी कभी बहुत अच्छे स्पीकर्स जो होते हैं ना, वो कोई शेरो शायरी या कोई कोट, जैसे बड़े बड़े लोगों ने जो कोट बोला है उससे या तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं या अपने टॉपिक को एंड करते हैं। तो अगर आप में कॉन्फिडेंट है, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि पहले के 30 सेकेंड बहुत जरूरी है कि आप क्या बोलने वाले हैं, और आखिरी के जो 2 मिनट हैं वो बहुत जरूरी हैं कि आप किस तरीके से उसको एंड कर रहे हैं। बीच का भी जरूरी है, बट अगर आपने पहले के 30 सेकेंड या 1 मिनट में अपने ऑडियंसेस को अच्छे से इंगेज करा है, तो ज्यादातर आपका जो स्टेज फियर है वो कंट्रोल में रहेगा। खत्म तो नहीं होता, किसी का भी खत्म नहीं होता, कंट्रोल में होता है, उसको हम मैनेज करना सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं शेरो शायरी, लेकिन टॉपिक से हटके नहीं, कि टॉपिक तो कुछ और है और आप प्यार मोहब्बत पे शेरो शायरी करें, ऐसा भी मत करिएगा। एजुकेशन का टॉपिक है तो एजुकेशन पे बात करिए, स्किलिंग का टॉपिक है तो स्किलिंग पे बात, ये बात नहीं करेंगे कि वो आज ये हो गया था आज वो हो गया, ऐसे कहानी नहीं डालेंगे, नहीं तो लगेगा कि हम बेफालतू में ऐसे ही बोल रहे हैं खाली बोलने के लिए। पता चल जाता है कि हमने फिर प्रैक्टिस नहीं करी है, खाली हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं बस ऐसे, तो वो भी मत करिएगा। बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी की कोट है, और नॉट मतलब पॉलिटिकल नहीं हो लेकिन मोटिवेशनल हो, ऐसे लोगों की कोट्स भी बोल सकते हैं, लेकिन वो कोट को सही तरीके से बोलना, एग्जैक्टली जैसे उन्होंने बोला है वैसे ही बोलना, अपने शब्द उसमें मिक्स ना करना, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। ओके हाँ, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी हमें धोखा दे देती है, हमने पीपीटी पे बना लिया सब कुछ हो गया, लेकिन टेक्नोलॉजी ने धोखा दे दिया और जो हम कहने आए थे हमने पीछे पीपीटी देखी, पीपीटी तो चल ही नहीं रही और हम ब्लैंक, अब मैं क्या बोलूं। तो उसके लिए हम कुछ चीजें, कुछ चिट्स होते हैं ना, उसी को क्यू कार्ड बोलते हैं, क्योंकि हमने लिख के रखा हुआ है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं भी चली तो मेरे पास मेरे जो पॉइंट्स हैं वो मेरे लिखे हुए हैं कि मुझे इन पॉइंट्स पे बात करनी है। तो दिस वाज द फर्स्ट सेशन ऑन स्टेज फियर, पब्लिक स्पीकिंग। कुछ टिप्स थी, कुछ टेक्निक्स थी जो मैंने करीबन 2 दिन लगाए इसको क्रिएट करने में। आई होप दिस इज हेल्पफुल, ये प्रैक्टिस से ही जाएगा। और ये समझना कि सिर्फ मुझे स्टेज फियर है ऐसा गलत है, 75 से 80% लोगों को ये फियर रहता है और वो उस पर काम करते हैं और उसको अपने कॉन्फिडेंस में बदल के लाते हैं। तो डोंट थिंक दैट यू आर अलोन, ये सब में होता है, हर लेवल पे होता है, लेकिन हम जितना बात करते हैं दूसरे से ये फियर कम हो जाता है या मैनेज हो जाता है और हमें कॉन्फिडेंस आता है। आई होप दिस इज हेल्पफुल। मेरे पास कोई शेरो शायरी नहीं है और कोई कोट नहीं है ये बंद करने के लिए सेशन को, बट एनी क्वेश्चन, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। एंड प्लीज आप ये सेशन बच्चों के साथ करिए, बेनिफिशियरीज के साथ करिए, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल, आई होप सो।
3: नमस्ते मैम, फ्रॉम बायरेड्डीपल्ली।
0: यस यस अंकल।
3: हाँ मैम, मुझे भी बहुत स्टेज फियर था मैम, अभी भी है, पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। और आपका लाइफ स्किल्स के लिए पहले जो मैंने सेशन अटेंड किया था मैम, मुझे आई कॉन्टेक्ट बहुत प्रॉब्लम है मैम, ये आदत ही नहीं थी, अभी मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ, इम्प्रूव कर रही हूँ अपने आप को। रियली वेरी हेल्पफुल मैम, थैंक यू सो मच।
0: मोस्ट वेलकम संगीता जी, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन, कि हम आपस में बातचीत करके हम ये महसूस कर सकें कि ये कॉमन इश्यूज हैं, कॉमन चैलेंजेस हैं, और ये इसलिए है कि कहीं हम जब बचपन में थे तो छोटे होते हुए हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उतनी अपनी बात को कहने के लिए, या हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमें जजमेंटल बना दिया हमें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या हमें उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं है जिस टॉपिक पे बोलने को बोला गया है। इन 3 या 4 मोटे मोटे वजहों से ही हमें स्टेज फियर आता है हमारे दिमाग में, पर बहुत सारी ऐसी वजह हो सकती है, जरूरी नहीं है, बट दिस इज द मोस्ट कॉमनली स्टेटेड सिंड्रम्स और कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्टेज फियर। सुनीता जी कुछ कहना चाह रही हैं?
4: गुड आफ्टरनून मैम, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मुझे याद आया अभी जब भी हमारे 2018 में आपके साथ ही इनोग्रेशन था हमारे स्कूल का, that was the first time to hold the mic in my hand, and I am very nervous at that time, and you are with me at that time, I remember that. So that I am faint, but I can say then you helped me so much, even speak your name, your family, about all that. And after that, that day, ma'am, I am very confident to handle a mic in any place.
0: कई बार ऐसा होता है कि ना माइक हमने पहली बार लाइफ में पकड़ा होता है, ऐसा होता है. जो मैंने पहली बार माइक अपने हाथ में पकड़ा, मुझे लगा ये क्या है. और ऐसा बहुत बार होता है कि हम जो फर्स्ट टाइम माइक पकड़ते हैं तो हमें लगता है ये आवाज हमारी अपनी ही है, क्योंकि हमें आदत नहीं है सुनने की अपनी आवाज को. तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो आपने फर्स्ट टाइम जब बोला तो वो एक फियर था, लेकिन वहां से आज आप इस स्टेज पे आ गई हैं कि खुद ही पेरेंट मीटिंग करती हैं, खुद ही बात करते हैं बच्चों की बात पेरेंट्स से, तो वो एक पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट ही है. आप इतनी अच्छे बड़े फोरम पे बात कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आपने काफी वर्क किया है. रेखा ने कुछ कमेंट दिया है, तो रेखा जी ने बताया कि है स्टेज फियर है, जैसे मैंने बताया सभी को ही होता है, तो उनको भी है. वो अपनी बात, हमने अभी कुछ सेमिनार किया था, वो कह रही कि वो अपनी बात रखना चाहती थी लेकिन वो इसी फियर की वजह से वो अपनी बात नहीं कह पाई. तो रेखा क्यों डर लगता है आपको माइक पकड़ने से या इस चीज से कि लोगों के सामने बोलना, क्यों डर लगता है?
5: मैम वैसे लोगों के सामने बोलने से डर नहीं लगता, क्योंकि जैसे मोबिलाइजेशन करने जाते हैं तो हम लोगों से बातें करते हैं. बट पता नहीं वो फर्स्ट टाइम था मेरा, तो बस थोड़ा सा नर्वस हो गई. मैंने जैसे आपने बोला अपने पॉइंट लिखो, तो मैंने अपने पॉइंट भी लिखे थे, बट मैं सामने जाके और बोल नहीं पाई.
0: मैं आपको एक मतलब पर्सनल टास्क दे सकती हूँ कि अब आप जाओगे ना, ये जो पॉइंट आपने लिखे थे प्लीज इसका वीडियो बनाओ या फिर मिरर के सामने जाके इसको प्रैक्टिस करो और देखो कि रेखा कैसी लगती है. क्योंकि मैंने आपको बोलते हुए देखा है, रेखा आप साफ बोलती हो, आप सरल शब्दों का इस्तेमाल करती हो और जितनी बात कहनी है उतनी ही बात कहती हो, तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं. सो यू ट्राई एंड नेक्स्ट टाइम वेन एवर हम कोई ऐसा सेशन कर रहे हैं, आई विल मेक श्योर दैट यू आर देयर टू टॉक नाउ. डोंट बी वरीड, कोई वरी करने की जरूरत नहीं है. वहां सभी लोग अपने थे और वहां पे कोई भी आपको जज नहीं करने वाला था, और अगर जज कर भी रहा था तो वो उस इंसान के अंदर की भावनाएं हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. बिकॉज वो आपके रिलेशन में नहीं है, उनकी जजमेंट का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. रेखा तो वैसे ही रहेगी, उसकी लाइफ वैसे ही चलेगी.
5: हाँ जी मैम, इस बात का डर लगता है पता नहीं मेरी बात कुछ वैल्यूएबल है भी कि नहीं.
0: एग्जैक्टली
5: exactly. मेरे पॉइंट पे वो हंसेंगे किसने क्या बोल दिया, बस थोड़ा सा ये माइंड में चीज आती है तो अपनी बातें नहीं रख पाती.
0: जो आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना वो दूसरे के पास नहीं है. जो आपके चैलेंजेस थे या जो पॉइंट्स आपके पास थे रेखा, वो आपके ग्राउंड चैलेंजेस थे, उसको शेयर करने के लिए दूसरा बंदा जज ही नहीं कर सकता सही से, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि जो आप कह रहे हो कि वो सही है कि गलत है. फॉर एग्जाम्पल जो और लोग थे जिन्होंने शेयर, जैसे फरा थी उन्होंने शेयर करा, सीमा जी ने शेयर करा था, उनकी जो बातें हैं वो उनको पता है कि उनकी कम्युनिटी में क्या चैलेंजेस हैं. तो आप जज भी कर लोगे तो क्या कर लोगे, सही और गलत तो है ही नहीं उसमें कुछ भी, है कि नहीं?
5: हाँ जी मैम.
0: तो वो कॉन्फिडेंस रखो कि जो आप कहना चाह रहे हो वो वैल्यूएबल है, लेकिन वो तभी हो सकता है अगर आप पहले से अपने पॉइंट्स लिख के रखोगे और आपको उसमें वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो बात मैं कहना चाह रही हूँ, दो ही लाइनें बोलो, जरूरी नहीं है कि 10 लाइनें बोलोगे तभी इफेक्टिव होगा. अपनी बात को 2 लाइनों में करो, देखना धीरे धीरे करके वो 2 लाइनें, 4 लाइनें, 6 लाइनें, और फिर बोलना पड़ेगा रेखा चुप कर जाओ बस करो और मत बोलो, ऐसा भी सिचुएशन आएगा. अभी आप बोले इतने सारे लोगों के बीच में बोले, कोई आपको झिझक नहीं थी. तो आई कॉन्टेक्ट से डरना नहीं है, आई कॉन्टेक्ट से अगर आपको डर लगता है तो अपनी आईज को आप 5-7 सेकंड के बाद मूव आउट कर सकते हैं. लेकिन अगर 1-to-1 डिस्कशन हो रही है तो आई कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी है. ये बातें हमने इंटरव्यू स्किल्स में करी थी कि अगर इंटरव्यू स्किल्स चल रही हैं और सामने बैठ के कोई बात कर रहा है तो आई कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी है. बट पब्लिक स्पीकिंग में क्या है ना, आप मूव आउट मूव इन कर सकते हो. अगर कोई इंसान आपको लग रहा है कि अजीब से एक्सप्रेशन दे रहा है या बोरिंग उसको लग रहा है, उसकी तरफ देखो ही मत. नहीं देखोगे ना तो वो कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा. उसकी तरफ देखो जो आपकी बात को समझ रहा है. कुछ लोग होते हैं करते हैं, उनको देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तो उनकी तरफ देखो, ये धीरे धीरे करके आप में आ जाएगा।
6: गुड इवनिंग मैम, मैं ही बोल लेती हूँ, कोई नहीं बोलता है तो।
0: गुड इवनिंग ताला।
6: तो स्टेज पे जाते हुए तो मुझे भी बहुत डर लगता था, अब नहीं लगता है। फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी स्टेज पे तो ऐसे दिल हो रहा था, बहुत धक-धक, और जो अपनी बात में कहना चाह रही थी वो भी नहीं कह पा रही थी कि मैं कुछ कहूंगी, मतलब इतना डर लगता था कि स्टेज पे जाके जो बात कहनी थी वो सब भूल जाया करती थी। बट अब जब मैं स्टेज पे जाती हूँ तो बहुत कॉन्फिडेंस होता है अपने आप में कि मैं वहां जाके अपनी बात भी रख लेती हूँ और बहुत अच्छे से लोगों को शायद समझा भी पाती हूँ।
0: एब्सोल्युटली फरा, तो आपने उसके ऊपर काम किया, ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में वो हुआ। वही बात हमें अपने बेनिफिशियरी से भी बतानी कि घबराओ मत, दूसरे के जजमेंट से डरो मत, जो बात तुम कहना चाह रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, कॉन्फिडेंस रखो और इधर उधर की बात ना। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बोलने लग जाओगे और दूसरे टॉपिक को मिक्स कर दोगे तो नेचुरली यू नो इट विल बी नॉट अ गुड साइन ऑफ अ गुड स्पीकर। तो इसलिए क्योंकि आप पॉइंट्स लिख लेते हो, आपको क्या बातें करनी है आपके दिमाग में रहती है या नोट्स में रहती है, इससे आप अच्छा बोल पाते हैं।
2: सेम तो परा शायरी भी करती है।
0: परा शायरी
2: अब तो परा शायरी की शायरी से बंद कर अपना टॉपिक क्लोज करती है।
0: क्योंकि उनको ये था कि उनको अपने ऑडियंसेस को एंगेज करना है
6: जी।
0: और उनकी जो
6: जो सुन भी नहीं रहा है ना मुझे, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, तो वो मेरी तरफ देखे कम से कम शायरी पसंद करके देखे।
0: एब्सोल्युटली, किसी को अगर एक बात कहने में जो उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता है शायरी में इंटरेस्ट हो। कई लोग गाना भी गाते हैं, मैंने ये देखा है कि शायरी के साथ वो स्टेज पे आएंगे तो मैं गाने के साथ शुरुआत करता हूँ।
6: ऐसे भी मिला था मैम, हमें रमाडा में ही मिला था फर्स्ट अवार्ड मैम ने दिया था, तो वहां पर मैंने गाने से एंड किया था अपना। मैंने सोचा शायद लोग कहेंगे फरा हर बार स्टोरी ले आती है और वही स्टोरी सब कुछ, शायद कुछ लोगों को बुरा बोरिंग लगता हो, तो मैंने कहा क्यों नहीं थोड़ा सा कुछ हो जाए, तो वहां मैंने एंडिंग जो की थी वो गाने पे की थी। तो
0: क्या आपने प्रिपेयर किया था उसके लिए पहले से?
6: हाँ मैम, मैंने प्रिपेयर किया था।
0: क्या आपने पहले अपनी दोस्त के सामने या मम्मा के सामने या भाई के सामने कभी किसी या शीशे के सामने उसको कोशिश करी मैं कैसी लग रही हूँ?
6: मैम भाई के सामने तो नहीं, लेकिन एक दिन पहले जब हमारा दूसरे दिन को वो अवार्ड फंक्शन था तो एक दिन पहले स्वाति और ईशा मैम मेरे रूम में थी, तो मैंने उनको गा गा के सुनाया था, मतलब पहले सर्च किया फिर मैंने उन्हें गा गा के सुनाया, तो थोड़ा डर लगा, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने उन्हें सुनाया तो उन्हें भी अच्छा लगा, तो फिर वो मैंने
0: गा। अगर मुझे कोई बोल दे कि गाने के लिए स्टेज पे, तो मैं तो भाग जाऊंगी वहां से। तो इट्स अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप कितने कंफर्टेबल हैं, आप जिस चीज में कंफर्टेबल हैं उस पे प्रैक्टिस करिए और उस पे काम करिए, तो जरूर अच्छे अच्छा स्पीकर बनेंगे और स्टेज फियर जो है उसको आप मैनेज कर पाएंगे, जैसे कि अभी हमने परा के एग्जांपल में देखा।
6: वही है ना कि एक बार गलत होगा, दो बार होगा, तीसरा आके हम लोग ठीक हो जाएगा। हमें नहीं देखना चाहिए लोग क्या सोचेंगे क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं उनको इतना मतलब वो कर दो कि वो मजबूर हो जाए सुनने में कि हाँ भाई कोई बंदा बोल रहा है।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई लाइक दैट। दयाराम जी, आपने भी बताया था कि आपको मुश्किल होती थी पहले बोलने में और अभी।
7: जी मैम, जैसे टाइम में कहा था वैसे कि जैसे प्रार्थना सदन में जब हमारा नंबर आता था तो हम भाग जाया करते थे और घंटे लेट आया करते थे, बोलने में झिझक थी और लोगों के सामने, जैसे स्कूल में तो बहुत सारे लड़के या लड़कियां होती थी तो कुछ फ्रेंड्स भी होते थे क्लास के, तो वो के बाद में मजाक उड़ाते थे तो ऐसे तो झिझक रहती थी। लेकिन जैसे काम किया है तो किया, जैसे कम्युनिटी में जाते हैं और महिला पुरुष रहते हैं अक्सर, शायद सभी बड़े रहते हैं, तो जैसे हम करते गए तो हमारा कॉन्फिडेंस वो भी जो इनका लेवल बढ़ता गया, तो भी कोई भी जब मैं कंप्यूटर क्लास जाता तो उसमें 11th और 12th लड़कियां हैं।
0: अच्छा,
7: वो करीब 17 या 18 से ऊपर, तो कभी कभी मुझे डर लगता है कि मैं कुछ गलत ना बताऊं, लेकिन नहीं, मेरे ऊपर मुझे विश्वास रहता है कि जो मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले क्या, मैं यहाँ पे भी प्रिपेयर होता हूँ कि हाँ मुझे ये आप बताना, इसलिए शायद वो कुछ बातें पे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रिपेयर अगर आप करके जा रहे हैं तो जरूर आप अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे। तो मैंने भी बताया जैसे कि जरूर आप अपने टॉपिक पे काम करिए अगर आपको टॉपिक पहले से पता है। अगर एकदम से किसी टॉपिक पे बोलने के लिए बोला गया है तो घबराहट हो सकती है, लेकिन आप 2 मिनट लगा के अपना ख्याल तैयार कर सकते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हैं और फिर आप अपनी बात कह सकते। अगर किसी और को कोई शेयर नहीं करना तो वी कैन क्लोज दिस सेशन। आई होप इट इज ऑफ एनी यूज। अगर छोटा सा भी इसमें एक टिप भी अगर ऐसी थी जो आपके लिए हेल्पफुल थी सो इट्स माय वर्क डन। सो प्लीज मुझे शेयर करिएगा और अपनी कम्युनिटीज के साथ प्रैक्टिस करिएगा शीशे के सामने। मुझे वीडियोस भेज सकते हैं, मैम को भेज सकते हैं फीडबैक के लिए, शिवम सर को भेज सकते हैं कि हम कैसा बोल रहे हैं अगर किसी को सपोर्ट चाहिए।

0: सो अभी तक किसी को किसी सेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? लास्ट टू सेशंस जो हमने करे थे उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
1: मैम अंजुम का जो कि स्टूडेंट है ब्यूटी की, उनका सवाल है, वो एक बार एक सवाल करना चाहती है। मैम आप प्लीज उनका आंसर दीजिए।
2: मैम अंजुम बोल रही हूँ। यस
0: आप टीवी के बारे में पूछना चाह रही हैं?
2: मैम, यस मैम।
0: क्या पूछना चाह रही है टीवी के बारे में?
2: मैम वो जो आपने कल बताया था ना, तो वो थोड़ा समझने क्लियर समझ नहीं आया। उसके लक्षण क्या है, उनके जैसे क्या कर सकते हैं उनसे बचने के लिए, थोड़ा क्लियर समझ नहीं आया।
0: टीबी जो है आपके फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं, और टीबी के जो लक्षण होते हैं वो खांसी होती है लगातार 3 से 4 हफ्ते तक, उसके साथ अगर ब्लड आता है और चेस्ट में जकड़न होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती है, बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाता है, बुखार चढ़ना, थकावट होना, ये सब उसके लक्षण हैं। इससे कैसे बचा जाए कि आपके एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होनी चाहिए टीबी जैसी बीमारी से लड़ने के लिए, और घर में रहना है, अगर किसी को भी टीबी होता है उसको घर में रहना है, मास्क पहनकर रहना है, बार बार अपने हाथ धोने हैं, खांसते छींकते वक्त अपने मुंह को कवर करना है। टीबी जो है उसमें आपको जो दवाई दी जाती है टीबी अस्पताल से उसको पूरी लेनी है, उसका कोई डोज मिस नहीं करना है। अगर हम मिस करते हैं तो टीबी हमको ठीक नहीं होता है और फिर से हो सकता है, या बहुत टाइम लग सकता है उसको ठीक होने में, पर टीबी की दवाई कोई मिस नहीं करनी होती है। सिर्फ इसका जो डायग्नो मतलब आपके अब कैसे पता चलेगा अगर खांसी ज्यादा लंबे तक महीना 2 महीना चल रही है, जकड़न भी है आपके फेफड़ों में और आपका सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप ब्लड टेस्ट करा सकते हो और चेस्ट एक्सरे करा सकते हो, जिससे आपको पता चलता है कि टीबी आपको है या नहीं। और ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इसकी मेडिकेशन है, जो आपको दवाइयां मिलेंगी उसको दवाइयों को लेना है, टाइम से टाइम लेना है, अपना अलग रहें, अपना अलग कमरे में जो भी टीबी का मरीज है उसको अलग कमरे में रखें, और उनके जो भी उनका देखभाल कर रहा है उनको भी सावधानी बरतनी है, कहीं इन्फेक्शन उन्हें ना हो जाए, इसलिए उन्हें भी सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जिसका प्रश्न था उसको समझ आ गया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडोलेसेंस और प्यूबर्टी पे। एडोलेसेंस और प्यूबर्टी जो किशोर अवस्था जो स्थिति होती है, जो हर बच्चे के दौरान हर बच्चे की जिंदगी में आती है, हर इंसान की जिंदगी में मैं बोलूंगी आती है, हम भी उस स्टेज से गए हैं जिसमें एडोलेसेंस और प्यूबर्टी की जो स्टेज होती है, जिसमें बॉडी में चेंजेस आते हैं, मानसिक स्थिति में चेंजेस आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो पीरियड होता है लाइफ का, ये बच्चा बच्चा नहीं रहता है और हम उसको बड़ा भी नहीं कर सकते, ये बच्चे और बड़ा होने के बीच का पीरियड होता है, जो हम कहते हैं 10 से 18 या 19 साल का पीरियड होता है। इसमें बहुत ज्यादा मानसिक और मानसिक चेंजेस होते हैं, और आपके हाव भाव में आपका बिहेवियरल चेंजेस भी बहुत ज्यादा हमें दिखने को मिलते हैं, हर हर किसी में दिखने को मिलते हैं। तो इसके 3 स्टेजेस होते हैं, अर्ली, मिडिल और लेट। अर्ली की उम्र होती है 10 से 13 साल, मिडिल 14 से 16 साल, और लेट की होती है 17 से 19 साल की उम्र। तो अर्ली जो एडोलेसेंस होता है, अर्ली मतलब जल्दी जो आता है हमारा 10 से 13 साल की उम्र में आता है, इसमें मूड चेंजेस बहुत होते हैं, मतलब आपकी बच्चे के मूड चेंज बहुत होगा। बच्चा जो है अपनी चैलेंज अपनी इंडिपेंडेंट मांगता है, चैलेंजेस को फेस करता है, जो उसकी लाइफ में आते हैं चैलेंजेस उसको फेस करता है, फैमिली मेंबर्स लोगों से दूर जाना पसंद करता है, अपनी प्राइवेसी चाहता है कि उनके काम में कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, उनके काम में कोई उसको बोले ना, तो ये सब चेंजेस दिखते हैं। अर्ली एडोलेसेंस में। फिर मिडिल एडोलेसेंस में क्या होता है, जब 14 से 15 साल की होता है, बहुत सारे प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल डिसीजंस ये लोग बच्चे लेना शुरू कर देते हैं। एंड इसमें बहुत ज्यादा ख्वाब भी लेने शुरू कर देते हैं, बहुत ऐसे ख्वाब होते हैं जो कभी पॉसिबल हो पाते हैं, कभी नहीं हो पाएंगे। और खासकर दोस्तों के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज्यादा शुरू करते हैं कि दोस्त कैसे हैं, उनके दोस्त दोस्तों के ऊपर एक्सपेरिमेंट है कि ये अच्छा है ये बुरा है। बहुत आपने सुना होगा कि बच्चे, आज मेरा ये नया दोस्त बना, कल वो आकर बोलेंगे कि नहीं आज मैं उससे नहीं बात करा, उसने ये कर दिया तो आज मैं दूसरे दोस्त बन गया। तो दोस्तों पे एक्सपेरिमेंट रिस्क हो जाता है, किस संगति में वो जा रहे हैं, किस फ्रेंड से वो मिल रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा देखने की जरूरत होता है। खासकर ये स्टेज जो होती है लड़कों की या लड़कियों की, जो भी है, गलत संगति में जाकर गलत आदतें शुरू हो जाती हैं, ड्रग्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली ये स्टेज होती है। फैमिली के साथ लो पेरेंट्स से दूर होना, पेरेंट्स से बातें छुपाना शुरू हो जाना, एक अपनी वैल्यू बनाना, किसी को कुछ ना बताना, शायद ये स्टेज आती है। फिर लेट एडोलेसेंस जो होती है 17 से 18 या 19 साल, उसमें वो लोग प्लान करते हैं कि उनको बड़े होकर क्या बनना है, तो उस गोल की तरफ वो लोग पढ़ाई भी और अपनी सोशल जिंदगी भी उस गोल की तरफ लेकर जाते हैं। अपनी फिजिकल चेंजेस जो उनकी बॉडी में आए हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उनकी जो शारीरिक चेंजेस बॉडी में आए हैं उसको एक्सेप्ट कर लो। उसको एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है बच्चों का। और अपनी हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना और अपनी एडल्ट लाइफ की तरफ आगे बढ़ना, ये एक एडल्ट लेट एडोलेसेंस में होता है। अब हम प्यूबर्टी की बात करते हैं, जिसको हम किशोर अवस्था बोलते हैं। किशोर अवस्था क्या होती है कि हमारी जो शारीरिक चेंज बच्चों में दिखते हैं उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी आपकी फिजिकल चेंजेस, आपकी शारीरिक चेंजेस बॉडी में जो होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको हम शारीरिक चेंजेस को प्यूबर्टी बोलते हैं। जब एक बच्चा बॉर्न होता है और जब जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे ये चेंजेस हमें दिखने को मिलते हैं। कुछ के जल्दी आ जाते हैं, कुछ के लेट आते हैं। कोई जात नहीं देखी जाती, कोई रिलीजन नहीं देखा जाता, कोई नेशनैलिटी नहीं देखी जाती। हर बच्चे के, हर इंसान, दुनिया में जितने भी इंसान हैं, उनकी जिंदगी में ये चेंजेस हमें दिखने को मिलते हैं। लड़कियों में जो चेंजेस होता है, सबसे ज्यादा जो बड़ा चेंज है, वो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होना, पीरियड्स का शुरू होना 8 से 9 साल या 10 साल की उम्र में होता है। अब कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि लड़कियों को 12 से 13 साल की उम्र में भी पीरियड्स नहीं शुरू होते। ऐसा है, ये हर एक की अपनी अपनी एक बॉडी होती है। आपकी, आपको शरीर जो भगवान ने दिया है और मुझे जो शरीर भगवान ने दिया है, हम दोनों को अलग अलग शरीर दिया है। चाहे चीजें अंदर सेम है, पर जो अंदर की फंक्शंस हैं, आपकी मेटाबॉलिज्म, मेरा मेटाबॉलिज्म, आपकी इम्यूनिसिटी, मेरी इम्यूनिटी, बहुत फर्क करती है। तो हर किसी की बॉडी पे ये फर्क पड़ता है कि कब पीरियड शुरू हो रहे हैं और कब जल्दी हो रहे हैं या लेट में हो रहे हैं। बहुत सी लड़कियों को ये पीरियड्स 8-9 साल की उम्र, 10 साल की उम्र में हो जाते हैं, किसी किसी को 13-14 साल की उम्र में भी होते हैं। फिजिकल चेंजेस दिखती हैं, ब्रेस्ट का बढ़ जाना, मतलब चेस्ट बढ़ना, हेयर ग्रोथ होना, आपका फेस पे पिंपल्स होना, बॉडी ऑर्डर, शरीर से स्मेल आना, और क्रैम्प्स पड़ना, शरीर में दर्द होना, ये सब हमें दिखते हैं। हार्मोनल चेंजेस जब अंदर बॉडी में होते हैं तो ये सब चीजें हमें शरीर में दिखने को मिलती हैं। वेट में गेन होना भी एक मेजर शारीरिक चेंज है। प्यूबर्टी इन बॉयज क्या होता है, लड़कियों, लड़कों में क्या चेंजेस हमें दिखते हैं? आवाज जो है उनकी, वो भारी हो जाती है, उनके वेट गेन हो जाता है, उनके भी शरीर में एक्ने, पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ, फेस पे हेयर ग्रोथ, दाढ़ी, मूछें आनी शुरू हो जाती हैं, हार्मोनल चेंजेस दिखने हैं, शरीर में बॉडी ऑर्डर भी आना शुरू हो जाता है। तो ये लड़के लड़कियों में अलग अलग चेंजेस होते हैं, पर ये हर एक किसी की जिंदगी में आता है। अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है हर एक औरत को, हर एक लड़की को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है। आप सबको ही पता है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जब आती हैं तो एक औरत प्रेगनेंसी के लिए तैयार होती है, और ये हमारे हार्मोन्स इसको कंट्रोल करते हैं। बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो इसे कंट्रोल करते हैं, और हर महीने ये साइकिल आती है। किसी का 25 दिन का साइकिल होता है, किसी का 30 दिन का साइकिल होता है, कि उनको 30th डे पे ही आता है, किसी को आगे भी बढ़ जाता है। पर मैं यही सबको एडवाइस करूंगी कि अगर किसी को मेंसेस में प्रॉब्लम है तो गायनिक गायनेकोलॉजिस्ट जो होती हैं इसके लिए, उससे ही संपर्क कर कोई मेडिकेशन शुरू करें, अपने आप से कोई मेडिकेशन नहीं शुरू करें। अब मेंसेस जब पीरियड्स के दौरान हमें कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले जो हाइजीन होता है उसका ध्यान रखना है, और सैनिटरी नैपकिन्स, प्लीज सैनिटरी नैपकिन्स का बहुत ज्यादा ध्यान। आज भी बहुत सी औरतें जो हैं कपड़ा यूज करती हैं जिससे इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा साइज, कौन सा डिजाइन, और किस किस चीज आपको किस चीज कंफर्टेबल है, कौन सा सैनिटरी नैपकिन आपके लिए कंफर्टेबल है, उससे आपको उसी को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और फर्स्ट 2 डेज, पहले 2 दिन जो हैं, हमें 3 से 4 घंटे के बाद सैनिटरी नैपकिन को चेंज करना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि फर्स्ट 2 डेज बहुत ज्यादा फ्लो होता है, और जब फ्लो होता है तो बहुत गंदी स्मेल भी आती है बहुत लोगों के में से। तो फिर हमें हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, इन्फेक्शन हमारे यूट्रस में ना जाए दोबारा से, उसको मेंटेन करने के लिए हम 3 से 4 घंटे के बाद अपने सैनिटरी नैपकिन को चेंज कर सकते हैं। और सैनिटरी नैपकिन को चेंज करने के बाद उसको रैप कर डस्टबिन में थ्रो करना है, न्यूज़पेपर में रैप करके डस्टबिन में थ्रो करें। मेक श्योर डस्टबिन जो है आपके रूम में ना हो, किचन में ना हो, ऐसी जगह हो जहां पर स्मेल उस सैनिटरी नैपकिन में से स्मेल किसी भी घर के अंदर ना आए। और जो फ्रेश पैड लगाकर अपने हाथों को, सैनिटरी नैपकिन लगाकर अपने हाथों को पानी से और साबुन से वॉश कर लेना है। ये हमें हाइजीन मेंटेन करनी है। साथ ही साथ हमें नहाना भी है, रोज नहाएं, ल्यूकवार्म वाटर गुनगुने पानी से जरूर नहाएं। लूज कपड़े पहने, जितना हो सके लूज कपड़े पहने, टाइट कपड़े ना पहने, रैशेस पड़ने का